0: अरे अरे, अरे भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषणः। प्रथमम् स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसन्ति अधिकं मुने सा बभार तदाहारं दिव्यरत्न समन्वितं वलयानि महारानि शुद्ध चामी करानि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में संघ, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
2: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि
0: विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
0: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं प्राय सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं
0: बड़े आराम से।
1: हाँ,
0: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
0: लीला जी आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
1: हो जाते हैं।
0: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
0: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
0: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
0: हुआ,
1: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
0: लीला जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्म विभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, कि अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
2: तभी से है,
1: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाई ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
2: सबसे बड़ा दान,
1: ये सबसे बड़ा दान
2: दान कहलाता है।
1: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया, तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो, प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्केयम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणेश तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन, वाच्ये महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
2: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: रेडियो मनोविष्णा 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रांगा और लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूँ, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में।
3: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस आध्यात्म की बातें करते हैं तो और ये वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
2: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
3: बिल्कुल।
2: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
4: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
2: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पर आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्राम है आत्मबोध और हम श्री रामचरितमानस शुरू कर चुके हैं, यानी कि पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी विशेषताएं जानी। इसी के साथ आज भी बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ बीके प्रिया जी और ज्योति जी से। अच्छा बीके ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस हम आगे शुरू करें, उससे पहले मैं नमन वंदना देख रही थी, इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है
3: जी।
2: जिनको धिकारा जाता है, यहाँ पर उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत गहराई से जानने की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
2: जी,
3: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है, उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के पर।

0: ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस सृष्टि में हम जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं, या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं, या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं, या फिर राक्षस हैं। उन्होंने उनमें बताया, जैसे कि राक्षसों की बात कही गई, तो रावण में, रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई है। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें, या हम जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं,
1: कोढ़िन
0: को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं, उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें, ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारे कोई कमी है, तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है, तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है। तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी, वो चार्ज हो जाती है, और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये है कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के इस श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है। और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं। जितने भी श्रोतागण हैं, उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने।
1: जी, और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है, जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने इसी में ही देखी, और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है, तो उसके लिए राम नाम ही काफी है।
2: जी।
1: इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है संसार से।
2: जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहां दो शब्द विशेष करा रहे हैं जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि नाम और रूप यहां दो चीजों की चर्चा हो रही है। तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने IQ लेवल जो उस समय उनका लेवल था उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है जो समझ सकते हैं वो समझें और जहां मैं गलत हूं वहां उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूं कि उनका IQ लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है, तो उन्होंने वहां इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं, और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है जो र आ और म को संबोधित कर रहा है। यहाँ र आ और म ब्रह्मा विष्णु और शंकर अर्थात महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए जैसे अग्नि सूर्य और चांद ये उनसे भी पावरफुल है, और जो पूरी सृष्टि का ही जिसको कहे स्थापना पालना और विनाश के लिए निमित्त बताए जाते हैं ये उनसे भी बड़ा है। तो ये वो राम जो नाम लिया जा रहा है ये इतना पावरफुल है, इतना सृष्टिकर है कि अगर इसको हम जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं कि मरा मरा मरा मरा भी अगर हम बोलते हैं तो भी ये बाद में आकर आपको सुनाई राम राम राम देगा। तो ये इतना सृष्टिकर है कि अगर आप इसे उल्टा भी पढ़ते हो तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है,
1: इतना पावरफुल,
2: इतना पावरफुल है। लेकिन अगेन कि हमें नाम और रूप को पूरी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेते वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है पर मुंह मतलब दिख मुझे सेब ही रहा है पर मुंह से मैं आम बोल रही हूँ, तो वो चीज फिर क्लैश होती है। तो वो चीज मुझे मेरे अंदर को संतुष्टता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। फल वो भी है आम और फल वो भी है सेब, लेकिन मैं चाहती सेब खाना हूँ पर मांग में आम रही हूँ तो फिर वो पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसको बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाम है वो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जो रूप जब हम नाम लेते हुए अपने मनस पटल पर धारण करते हैं, अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है, इसीलिए श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की है। यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है।
1: जी, यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी, ये बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है। और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, आप राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो हैं, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अलग हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है? क्या ये एक ही रूप हैं या ये अलग अलग रूप हैं? और अलग अलग रूप हैं तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
2: जैसा कि चार राम की बात कही गई है तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा
1: ही।
2: तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेटा, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगी श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे, उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है। कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो, माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाए कि समझूत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इस उपाधि अखत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते हैं। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं।
1: हाँ जी,
2: भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप
1: बन गए,
2: भगवान को याद किया लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है, लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी, माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी ना किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर दें किसी को डिनाई करके। तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेजते तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
1: बिल्कुल,
2: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी, लेकिन हमें दिखता रूप है
0: तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं?
1: रूप में।
0: रूप में नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं। जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में। तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
1: उजाले,
0: लेकिन जो उजाला है, जो अंधकार को दूर करने वाला है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है, लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है। इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
1: जी, हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से। बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है, वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
2: जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
1: बुलाना कैसे।
2: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है, तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर। तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश, ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, या आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं, कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए। और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए, और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री राम चरित्र मानस को भी समझना है कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा
1: है,
2: क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के है, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा। तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवत्व, देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है, तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद्व में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी, और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
1: भेजी।
2: जी, तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद ना परती बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महर्षि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है। यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है। और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है, जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़ ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपने पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंडसेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मनस्पटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ जो हम करते हैं, नॉर्मली हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनस्पटल है जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीभ से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है
1: बिल्कुल,
2: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है तो जो जीभ से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
1: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें कहें कि उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जुबान से निकलेगा और उसकी कहें कि फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं, अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है और राम नाम या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है। बहुत खूब, ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत, और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।
3: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
4: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
3: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
4: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
3: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
4: तो फिर एक वादा करो,
3: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
4: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
3: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, तो श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, बहुत सारी कथाओं के बारे में। और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से जो विदुर हैं वो गए थे पांडवों के पास उनसे भेंट करने, जब धृतराष्ट्र ने उनको एक तरह से निकाल दिया था, और उनके जाने के बाद बहुत व्याकुल भी हो गए थे धृतराष्ट्र। जबकि ये सारी कहानी हमने जानी, मैत्री मुनि का अपमान दुर्योधन ने जिस तरह से किया, ये वाली कथा भी हमने जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से आगे की कथा जानते हैं। जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन की तपस्या जी के साथ युद्ध, पशुपास्त्रों की प्राप्ति।
0: जी,
1: तो अर्जुन हिमालय कटीले जंगल में जा पहुंचे, क्योंकि अर्जुन अभी वनवास में है, 12 वर्ष के वनवास में, क्योंकि उन्होंने लंघन किया था। और युधिष्ठिर जी जब द्रौपदी जी के साथ थे एकांत में, तो उन्होंने वहां जाके अपने अस्त्र लिए थे। यही वो रखी गई थी कि कोई भी भाई के उसको लंघन नहीं किया जाएगा, यदि जो करेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास रहना
0: पड़ेगा।
1: इसलिए अर्जुन अभी वनवास है। तो अर्जुन हिमालय लांग कर एक बड़े कटीले जंगल में पहुंचे, वस्त्र दंड वृक्षाला कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। बड़े बड़े ऋषि उन्होंने भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन की तपस्या से तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का ताजा मकतवा भील का रूप ग्रहण किया, सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ अर्जुन के पास आए। भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आके देखा कि एक मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। संख्य बाणों से शुक्र का शरीर बेद गया और दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अर्जुन ने उनको मार डाला। ये शुक्र मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था, मैंने पहले ही इसे उसको मारने का विचार कर लिया था, फिर उसका वध क्यों किया, भील कह रहे हैं, अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते वह उन्हें पकड़ लेता। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए और अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू कर दिया। भील ने अर्जुन धनुष भी छीन लिया, तलवार का प्रहार किया, वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने से पहले ही छीन लिया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, दम घुटने लगा, लहू लुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया, उन्होंने मिट्टी की एक योगी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़ाया वही भील के सिर पर है। उन्होंने भील को चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। अर्जुन ने कहा, शरणागत को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। शंकर जी ने कहा, आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांधी धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है, अब तुम इन्हें ले लो, तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पता अस्त्र दे दीजिए। फिर जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर सोने पर पशुपता अस्त्र हजारों त्रिशूल भयंकर गदाओं और सर्पाकार बाण उससे निकल पड़ते हैं, मैं उस पशुपत अस्त्र के बीच में द्रोण कृपाचार्य और कुतुवादी कर्ण सबके साथ लड़ू। इंद्र यमराज कुबेर वरुण और वायु भी इस अस्त्र को धारण और प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है, मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, किंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ दे, अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत

0: का नाश कर डालेगा। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास गए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। शंकर जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। यमराज जी ने मधुर वाणी में कहा, अर्जुन देखो सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं, आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो, तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है, अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ, मैं तुम्हें अपना दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वरुण ने कहा, मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता, घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्य को पकड़कर कैद कर लिया था, तुम इसके द्वारा चाहे जिसे भी कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास शिकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, तुम मुझसे ये अंतर्ध्यान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो, इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, इसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। मातली सारथी ने अर्जुन को पास आके प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके इस प्यारे रथ पर सवार होकर शीघ्र ही चलिए। अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जाकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बिठा लिया और फिर अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से सिर सुना। अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया, उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना चाहते थे, किंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। प्रिय अर्जुन अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो, साथ ही मृत्यु लोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीख लो। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। उस दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाके कह मेरा संदेशा देना कि वे अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ चंद्र स्नान किया। सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहन कर उर्वशी जब तक प्रकार से सज भर चुकी, तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षणभर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। वे कहने लगी, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है, मैं काम के वश में हूँ, बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन तो संकोच के मारे धरती में गड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले, हरे हरे ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो, देव स्वभाव ही मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा था, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था और गुरु वंश की यही आनंदमयी माता है, तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी, मेरे लिए बड़ों से भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी है। उर्वशी ने कहा, वीर हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बिठाना उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा, जैसे कुंती माद्री इंद्रपति शक्ति मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम पूर्व वंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता है, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, तुम मेरी माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनते उर्वशी क्रोध से मारे कांपने लगी, उसने बाहों टेढ़ी करके अर्जुन को शाप दिया, अर्जुन मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई, फिर भी तुम मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते, इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं अब किस तरह से उर्वशी ने जो है अर्जुन को एक श्राप दे दिया है, जिसके बारे में अभी राघदेखदास जी ने बताया, और जिस तरह से बताया कि अर्जुन जो है वो 12 साल के वनवास पर हैं और अभी जो हमने जाना इंद्र से उनकी भेंट के बारे में, शंकर जी से उनकी भेंट के बारे में, और उर्वशी जो हैं वो अर्जुन से मिलने जब गई और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ और किस तरह से उर्वशी ने अर्जुन को जो श्राप दिया उसके बारे में भी राघलेखदासी जी ने बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे जानते हैं जी।
0: अर्जुन श्रीजता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और हंसते हुए कहा कि प्रिय अर्जुन, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया है। उर्वशी ने जो तुम्हें श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिप कर ये श्राप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बाद के समय उनकी चिंता मिट गई तो गंधर्वराज चित्रसेन के साथ स्वर्ग के सुख लूटने लगे। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग से आए। उन्होंने देखा अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए पर मनुमन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया। देवराज इंद्र ने लोमश मुनि की मन की बात जान लिया। उन्होंने कहा, महर्षि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यधारी देवता है। ऋषि में तो इसका अवतार हुआ है, ये सनातन ऋषि नर है। उसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। नल दमयंती की कथा, दमयंती का सुंदर और विवाह। महर्षि बृहदासव ने कहा, धर्मराज आपका ये कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं है। क्योंकि धर्मराज जो थे दुष्ट कहने लगे कि मैं बहुत दुखी राजा हूँ, जंगलों में भटक रहा हूँ और मुझसे क्योंकि मैं तुमसे अधिक दुखी और मंदभागे राजा का वृतांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाऊ। धर्मराज दुष्टों के आग्रह पर महर्षि बृहदासव ने कहना आरम्भ किया, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। उसने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए और हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके दिनों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वह उनका विदर्भ देश में गए। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठा, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़ कर विदर्भराज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। ऐसे निर्णय पाते कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। दमयंती एक एक करके देखकर सबको आगे बढ़ने लगी। स्वयंवर आरम्भ हुआ। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के राजा इकट्ठे 5 बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया, ये राजा नल, ये राजा नल को नहीं पहचान सकी। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने पति रूप में वर्णन कर लिया है। शैलशाली लोग पालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दो, उससे मैं पुण्य लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्थ विलाप सुना। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलके गिरती नहीं, माला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, फिर है परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के शरीर पर छाया पड़ रही है, माला कुमलाई गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलके बार बार गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवता और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया और फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वही मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। और उन्होंने कहा जहाँ तुम जाओगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के घर से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ।
1: जी।
0: जिस समय दमयंती ने स्वयंवर से लौट कर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उसी समय उनके मार्ग में कलयुग और द्वापर की भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा क्यों कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा अजी वे स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भर कर कहा ओ अब तो बड़ा अनर्थ हुआ, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको उसको दंड देना चाहिए। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इसी बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लोभी शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया और साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषिद्ध राजा के राज्य प्राप्त करूं। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ खेल लिया। उन्होंने उसी समय पासा खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते हुए हार जाते। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा और राजा नल बार बार हारते गए। पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए कुछ नहीं है। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकली। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। एक दिन राजा नल ने देखा बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान चमक रहे हैं। नल ने सोचा इनके इनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उनके ऊपर पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचा किए खड़े हो गए। पक्षी ने कहा दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। मैं अब तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं, पक्षी में जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कही। दमयंती ने कहा यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें, मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहाँ सुख से रहिएगा। नल ने कहा ये तुम्हारे पिता राजा है और मैं कभी राजा था, उस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर पन्ने इधर उधर घूमते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। नल सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण मैं इतना दुख भी भोग रही है, यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी। राजा नल ने विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना श्रेयस्कर है, परंतु फाड़ू कैसे, शायद ये जग जाए। ये धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़ कर अपना शरीर ढककर रख लिया। दमयंती ने नींद में थी, राजा नल उसे छोड़कर चले गए। शरीर में कल उसका प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। ये अंततः वे अपने प्राण दिया पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वे उन्मत्त होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को निगलने लगा। उसी समय दमयंती की आवाज एक व्याध के कानों में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था, वह दौड़ कर आया। उसने देखा दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह उसने चीर डाला। दमयंती ने व्याज के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तो उसने उसे शाप दे दिया, यदि मैंने निस्संदेह राजा नल को छोड़कर किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो ये पापी शूद्र व्याज मरकर जमीन पर गिर जाए। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते व्याज के प्राण कठोरे उड़ गए। नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। तीन दिन तीन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं, वे वृक्षों की छाल और मृगशाला धारण किए हैं। ऋषि ने कहा, स्वागत है, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। सब शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा, अब थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। तो इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर धारण हैं।
1: जी, तो श्रोताओं बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। नल और दमयंती की कथा हम जान रहे हैं, किस तरह से उनका मिलन हुआ, किस तरह से वियोग हुआ, ये सारी कथा हमने अभी जान ली है। लेकिन अब वो पुनः दोबारा मिलेंगे या नहीं, किस तरह से मिलेंगे, ये कथा हम आगे जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। तो राघलेखा दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं अगले एपिसोड में महाभारत के इस प्रसंग को, नल दमयंती की इस कथा को आगे जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बहुत सारी बातें आज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जुड़ी हुई है गुरु दीदी। जी हाँ, गुरु दीदी आ जाती हैं अपने अलग अलग टॉपिक्स के साथ और हम करते हैं उस पर चर्चा। बहुत सारी आज भी बातें होने वाली हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी गुरु दीदी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।
0: टाइम मैनेजमेंट, ये जो है मतलब शब्द जो है बहुत ही आसान लगता है हमें कि टाइम मैनेज कर लो हो जाएगा, लेकिन ये होता बड़ा डिफिकल्ट है अगर हम असल जिंदगी में हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करें तो। लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारे लिसनर को आज जरूर बता देंगे कि किस तरह से हम इजीली इफेक्टिवली अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं।
1: जी, तो साक्षी ये जो टाइम मैनेजमेंट का आज आपने टॉपिक लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और मुझे लगता है कि आज के समय में चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय है, चाहे वो वर्किंग हमारे जो कम्युनिटी है कोई भी हो, चाहे घर में हाउसवाइफ हैं, उन सभी को टाइम मैनेजमेंट जो है करना पड़ता है। और सभी से हम ये सुनते भी हैं कि टाइम नहीं होता है ना, तो वो टाइम नहीं होता है तो टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है। तो टाइम के लिए मैं पहले टाइम मैनेजमेंट का यही कहना चाहूंगी कि ये एक तरह से एक प्रोसेस है, या एक कह लीजिए कि हमारी तरह एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज इन द सेंस कि हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसमें हम ये देखें कि हमारी जो पूरे दिनचर्या की जो एक्टिविटीज हैं, जो पूरा दिन जो डेली रूटीन हमारा रहता है, उन सभी एक्टिविटीज को हम किस तरीके से कितना टाइम दे रहे हैं, वो प्लान करना, उन चीजों को कॉन्शियसली वो एफर्ट्स करना। तो अगर हम वो एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से लिस्ट डाउन कर लेते हैं, अगर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, और इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट।
0: बिल्कुल। तो गुरु दीदी मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी कि आज हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, हम बात करेंगे आज ना थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं अपने सेशन को, वो इसलिए ताकि हम जो है ये बता सके सभी को कि पहले इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग अगर कैटेगरीज हो जाती है तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हर किसी का टाइम को मैनेज करने का तरीका और वैल्यूज अलग अलग होती है। अब यहां पर अगर बात करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि अब स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो हमें बस इतना ही लगता है स्कूल से आओ और उसके बाद अपना खाना खाया, थोड़ी पढ़ाई कर ली और बस फिर उसके बाद होमवर्क करके सोने चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम को मैनेज करना, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है कि पेरेंट्स के साथ भी बैठे, तो बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे एक शेड्यूल जो है वो बना सके कि अच्छे से पढ़ाई भी हो सके, पेरेंट्स को टाइम भी दे सके, क्योंकि पिछले सेशन हमारे इसी बारे में था कि पेरेंट्स को टाइम देना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
1: देखो, क्योंकि आपने साक्षी सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए उठाया है
0: जी,
1: तो स्टूडेंट्स का अगर हम लोग उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सबसे अहम एक्टिविटी उनके लिए होती है उनकी पढ़ाई। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि दे शुड यूज प्लानर टू एलोकेट द स्पेसिफिक टाइम फॉर देयर स्टडी सेशन। जितने भी उनके जो स्टडी सेशन हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक प्लानर बनाएं, और प्लानर में क्या करना है उनको, दे हैव टू बैलेंस देयर सब्जेक्ट्स। कई बार ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमें आसान लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की अपनी एक डेडलाइन होती है कि उनको हमें मैक्सिमम समय देना है, उनको हमें ज्यादा समय देना है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, यूजुअली जब स्टूडेंट्स भी बात करते हैं, तो जैसे अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स है या आप साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे रिक्वायर मोर टाइम, है ना। तो उनको हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हमें अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं कि हमें रोज में कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं, जब हम अपना प्लानर बना रहे हैं, तो उसमें हमें इंक्लूड करने चाहिए ब्रेक्स भी। और ब्रेक्स किस लिए, क्योंकि दीज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं या जो हम एक मोनोटनी जो कहते हैं कि हम बच्चे कहते हैं ना, हम पढ़ के बोर हो गए, पढ़ के मामा थक गए, मैम हम थक गए, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे हैं, जो भी हम अपना टाइम टेबल बना रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में हमारा टाइम टेबल होता है,
0: करेक्ट,
1: एवरी सब्जेक्ट का जो है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स एक एलोकेशन होता है। इसी तरीके से जब बच्चे घर पर आ जाते हैं, अपना कुछ समय थोड़ा रेस्ट करने के बाद, अपने माता पिता के पास बैठने के बाद, उनका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड देन प्रिपेयर अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट डिफिकल्टी एंड कि सब्जेक्ट की डेडलाइन क्या है. कई बार होता है कि कुछ हमें अपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए. वो टाइम टेबल भी मैं यही कहना चाहूंगी कि टाइम टेबल बहुत लंबे समय के लिए नहीं बनाए. टाइम टेबल शुड बी फॉर 1 वीक और 15 डेज, उसके बाद फिर उसको रीशेड्यूल करें. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. तो वो आपका 1 वीक या 10 दिन के लिए वो टाइम टेबल बनाए और उसके बाद उसका रीशेड्यूलिंग करें.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए, इस तरीके से अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को तो आप बना के रख सकते हैं. इसके साथ साथ देखिए, जब आप पढ़ाई का शेड्यूल बना लेंगे ना, तो मुझे लगता है उसके बाद टाइम थोड़ा सा आपके पास बच जाएगा. वो टाइम देना है आपको अपने पेरेंट्स को, वो टाइम देना है जो एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या आपको खेलने जाना है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया, वो आप कर सकते हैं. तो जब आप ये पूरा दिन मैनेज करना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है स्टडीज में भी, जो रिजल्ट है वो बेहतर होने लगेगा. टाइम को मैनेज करना जितना हमें आसान है ये कहना, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल है. लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि चीजें देखिए हो नहीं सकती हैं. अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, तो हर चीज पॉसिबल है ना. तो चलिए अभी हम जानते हैं कि मैम, जैसे कि सवाल मेरा अगला है आपसे कि बात करें अभी यहाँ पर प्रोकेस्टिनेशन की बात करें, तो पहली बात तो ये प्रोकेस्टिनेशन होता क्या है इस बारे में, क्योंकि हमारे लिसनर को ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना है. अक्सर ये टर्म जो है हम बड़ा सुनते हैं आजकल, बड़ी पॉपुलर, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे ये होता क्या है.
1: प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जैसे हम कहते हैं ना आज नहीं तो कल, टालम टोल जैसे हम बात करते हैं, तो वही होता है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, इसीलिए हमें इन वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है कि आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़े समय बाद कर लेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब आपका बहुत ही अच्छा सवाल रहा कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कि आपने कहा कि इसका मीनिंग बताइए, और बहुत लोग इसका सहारा भी लेते हैं. तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए. राइट, तो हमें अपने जो डेडलाइंस को सेट करना पड़ेगा कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमें उनको एक डेडलाइन सेट करना पड़ता है कि हमारे काम को कितना टाइम लगेगा या हम कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे. और कोशिश करना चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको पूरे फोकस के साथ करें. तो साक्षी, मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगी कि देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू यू नो इंक्रीज योर फोकस, कि हम अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन सा टेक्निक है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक. तो उससे जो है एक फोकस जो है वो इंक्रीज होता है. अदरवाइज भी अगर हम छोटे छोटे मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी हमारा फोकस जो है वो मेंटेन रहता है. और सबसे बड़ी बात कि हम टालम टोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी भी काम को जब हम कर नहीं पाते हैं तो हमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. पर जब हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं, जब हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें खुद को ही उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए. तो आई थिंक जब हम अपने को पैट करते हैं ना कि यस वेल डन, यू हैव डन इट, आई हैव डन इट, तो दैट मींस कि वी आर रिवॉर्डिंग आवर सेल्फ. और जब हम रिवॉर्ड अपने को कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी हो जाते हैं. तो उस केस में हम प्रोक्रास्टिनेशन की मदद नहीं लेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, टालम टोली की मदद नहीं लेंगे. जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है, बच्चे बहुत करते हैं कि बच्चे जब हम पढ़ाई के लिए उन्हें कहते हैं कि अच्छा ये होमवर्क कर लो, अच्छा कल कर लेंगे. अगर सैटरडे संडे होता है ना, तो इसमें ज्यादातर होता है. फ्राइडे बच्चा आता है स्कूल से, आता है, और उसके बाद जब मम्मी कहती है कि अच्छा बेटा होमवर्क करो, तो वो कहते हैं कि ना मम्मा कल, पक्का कल हम करेंगे, क्योंकि सैटरडे है. और उसके बाद होता है जब सैटरडे आता है तो मम्मा कल संडे है, कल भी तो छुट्टी है. और उसके बाद हर संडे मुझे लगता है सारी मम्मियां रात के टाइम बच्चों को लेके बैठी होगी कि नहीं अब तो करना ही करना है, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना है. तो ये इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ा उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिस वजह से बच्चे थोड़ा सा ज्यादा चीजों करने में उनको आसानी महसूस होगी. और वो ना सारा होमवर्क करके या कोई भी पढ़ाई करके या कोई भी वर्क करके, कोई भी काम करके, कोई भी खेल कूद करके उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि सामने से उन्हें इस चीज का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. और जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड में उनको आपको गिफ्ट ही देना है, आपका एप्रिसिएशन, आपकी बातें, आपकी मोटिवेशन भी उनके लिए एक रिवॉर्ड होगी. दीदी, मेरा अगला सवाल, क्योंकि हमने अब बात करी स्टूडेंट्स की, अगली कैटेगरी हमारी जो ऑफिस गोइंग है, जो एम्प्लॉयज हैं, तो सबसे ना मुश्किल हो जाता है डेडलाइंस को हैंडल करना. हम अक्सर सुनते हैं कि डेडलाइन आ गई है लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस. अच्छा, ये जो स्ट्रेस है ना, ये डेडलाइन की वजह से ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाता है हमारा. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो कैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को हैंडल कर सकता है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट करे तो किस तरह से आप उन्हें हेल्प करेंगे या क्या टिप्स उन्हें देंगे?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल साक्षी आपने पूछा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने जो मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनकी डेडलाइंस को वो कैसे मीट करें. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. अब उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी जो हमें प्रोजेक्ट दिए गए हैं या जो हमें टास्क असाइन किए गए हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारा लीस्ट प्रायोरिटी का काम कौन सा है और हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा काम जा रहा है. तो वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो इमिडिएटली हमें प्रेजेंट करना है या हमें सबमिशन देना है उसको हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा. कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कि जिसके बिना हो सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर टास्क नहीं हम कर रहे हैं तो आगे के टास्क भी सफर होंगे या पूरे डिपार्टमेंट का टास्क सफर होगा. तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल दी फोरमोस्ट थिंग एम्प्लॉय शुड डू इज कि वो अपने जितने भी टास्क हैं, जो अगर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं तो उनको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. एंड दे शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स. देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं. एक बहुत ही सिंपलेस्ट है जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, तो उससे हमारे को हमारी ट्रैकिंग रहती है कि अगर हम गैंट चार्ट बना के चल रहे हैं कि हमारा क्या डेडलाइन है, हमने कितना अचीव कर लिया है. तो दैट इज अ वेरी कॉमन जो आजकल एम्प्लॉयज यूज करते हैं गैंट चार्ट को, तो उससे भी हम लोगों को पता चल जाता है कि हम कहां पर हैं, कितना हमने अचीव कर लिया या कितना हमको अचीव करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, आप एक आइसोलेशन में तो काम करते नहीं है. तो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर्स टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज. अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ उन डेडलाइंस को या अपने प्रोजेक्ट को या जो मल्टीपल टास्क आपको असाइन किए गए हैं उनको आप कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आप डिस्कशन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सॉल्यूशन टू मीट दोस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजमेंट.
0: बिल्कुल. अच्छा गुरु दीदी, ये भी बहुत बार देखा गया है कि जब भी ये टाइम आता है, जैसे मंडे जब आता है तब हम क्या करते हैं कि ट्यूजडे हो जाएगा काम, वेंसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और ऐसे करते करते हम खुद ही अपनी डेडलाइन को, हम खुद ही एक जो लिमिट है बहुत ज्यादा उसको कर देते हैं कि हमारा जो वर्क प्रेशर है हम पे खुद ज्यादा आ जाता है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: ये तो साक्षी वही वाली बात हुई जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात करी कि हम टालम टोल कि ठीक है आज तो हमारे पास टाइम है, अभी ट्यूजडे होगा, मंडे अगर हमको मान लीजिए कोई चीज फ्राइडे को सबमिट करना है तो हम कहते हैं कि ठीक है अभी हमारे पास एक दिन और है, दो दिन और है, तो हम वो टालम टोल करते रहते हैं. तो रादर दिस इज एक्चुअली अ सेल्फ प्रैक्टिस. हमारी ये अपनी टाइम मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने टाइम को. यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी साक्षी, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी कि 24 आवर्स तो 24 आवर्स ही होते हैं ना, तो 24 आवर्स से ऊपर एक सेकंड भी हमें नहीं मिलता है.
0: करेक्ट.
1: तो उन 24 आवर्स को नॉर्मली व्हाट वी डू, वी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप. अब 8 आवर्स ऑफ वर्क, अगर हम वो 8 घंटे बिल्कुल अपने जद्दोजहद के साथ, अपने दिल के साथ, जो भी हमारे पूरे दिन का काम है अगर उनको हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट डे तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारा एक्यूमुलेशन नहीं होगा. और यही बात अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें कुछ सबमिशन करना है, मान लीजिए थर्सडे और फ्राइडे को, तो हम कहते चलो ट्यूजडे को कर लेंगे, वेनेसडे को कर लेंगे. तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअल बिहेवियरल प्रैक्टिस है. जितना हम उस पे वर्कआउट करेंगे एज एन इंडिविजुअल तो हम इस चीज को कम कर सकते हैं कि हम अपने काम को पाइलअप ना करें. जब काम पाइलअप नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे माइंड में भी स्ट्रेस नहीं रहेगा. क्योंकि जब स्ट्रेस होता है, जब हमको लगता है अरे इतना काम हो गया, अब तो ये भी सबमिट करना है, वो भी सबमिट करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. और उस स्ट्रेस में हम लोग अपना बिहेवियर भी खराब करते हैं, अपना एटीट्यूड भी खराब करते हैं, और एट द एंड हमको वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करें, कम्युनिकेट करें एंड ट्राई टू डेलीगेट द थिंग्स एज मच एज यू कैन।
0: बिल्कुल बिल्कुल। गुरु दीदी मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे कि अच्छा ये भी बहुत बार होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम ना डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं
1: जी।
0: कोई भी चीजें हैं, अच्छा कोई कुछ कह रहा है तो हम उनकी ना बात सुनने लग जाते हैं, उन बातों में हम कॉन्वर्सेशन में हम पार्ट लेने लग जाते हैं। अच्छा कुछ और कुछ कर रहा है तो हम वो करने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सके, क्योंकि ये जब डिस्ट्रैक्शन जो है बढ़ती रहेगी टाइम हमारा वेस्ट होता रहेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
1: इसके लिए साक्षी मैं एक छोटा सा आपको थंब रूल देना चाहूंगी, एक छोटा सा ही फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या करना है। देखो हम नॉर्मली 8 घंटे ही अपने ऑफिस में बिताते हैं राइट, और अगर हम उन 8 घंटों में अपने जितने भी हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हम एक अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि ये 3 घंटे अब सब लोग मन लगा के काम करेंगे तो सब मन लगा के काम करेंगे, बीच में छोटा छोटा ब्रेक दें कि अभी ठीक है 1/2 घंटा है, अब आइए हम सब बैठते हैं और अपना बातें करते हैं और जो है काम करेंगे। पर कई बार ऐसे होता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि सभी का ही सेम टाइम ब्रेक का रहे या सभी का वही टाइम वर्क का रहे, तो उस केस में हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं, कुछ ऐसे एप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कोई आपके साथ जो आपका कुलीग बैठे हैं वो कुछ फोन पे कोई गेम्स खेल रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या ऊंचे आवाज में बातें कर रहे हैं, तो आप अपने जो हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं, अपने जो वर्क प्लेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें। क्योंकि कई बार चीजें होती हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन की जो चीजें होती हैं कि कई बार हम अपना जो वर्क प्लेस है ना वो ओवर क्राउडेड भी कर देते हैं, हमारा जो टेबल है वो जैम पैक्ड रहता है चीजों से, तो मुझे लगता है वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है कि कहीं हमारा पेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कहीं हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कहीं चार्जर गिरा हुआ है, कहीं और प्लग लगा हुआ है, तो मुझे लगता है वी नीड टू ऑर्गेनाइज दी वर्क प्लेस प्रॉपरली। दूसरा हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज करें, और आजकल तो बहुत सारे एप्स भी आ रहे हैं जो डिस्ट्रैक्शन को यू नो कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर सर्टेन नोटिफिकेशंस ऑन दी वेबसाइट, देयर आर नोटिफिकेशंस ऑन दी फोन दैट अ पर्सन इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि ऐसा देखा जाता है बार बार ना। अच्छा बहुत सारी ऐसे रील्स भी वायरल हो रही हैं कि चलिए हम तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ये इतना ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा अब 9 बजे का हमारा चेक इन हो गया है, उसके बाद 15-20 मिनट काम किया, एक चाय ब्रेक हो जाए। चाय ब्रेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, अपने काम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे। नहीं तो वो डेडलाइंस जो है बाद में आप ही के ऊपर प्रेशर आके मीटिंग्स में फिर उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा परेशानियां हमें झेलने को मिलती है और फिर स्ट्रेस हो जाता है और फिर हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। तो अगर ये सारा प्रोसेस नहीं चाहते आप तो अपना टाइम आप थोड़ा सा मैनेज करिए और चीजें ठीक हो जाएंगी। अब एक ऐसी मैं कैटेगरी की बात करना चाहती हूँ जिनके पास टाइम तो है लेकिन ये डिवाइड नहीं कर पाती अपना टाइम, पूरा दिन उनको ये लगता है कि बस काम चलता ही रहता है चलता ही रहता है, उनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, इनफैक्ट इतना भी नहीं कि वो अपना जो खाना है वो भी टाइम पर खा सके। और मुझे लगता है इस कैटेगरी को तो बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं

0: बात कर रही हूँ होम मेकर्स की। तो बात करें कि अगर होम मेकर्स की बात करें तो ये जो है अपने पूरे काम में जो है एक के बाद एक काम में लगी रहती हैं, तो इनको मैनेज करना कितना जरूरी है और कैसे मैनेज हो सकता है?
1: होम मेकर की बात करें साक्षी, तो सबसे पहले तो मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहूंगी जो होम मेकर्स हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि दे आर दी वर्ल्ड बेस्ट मैनेजर्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे बड़े मैनेजर्स होते हैं, बट उस मैनेजमेंट में वो कहीं ना कहीं टाइम को मिस कर जाते हैं। वो काम तो बहुत करते हैं, जैसे तुमने कहा कि सुबह से लेके शाम तक रात तक वो लगे रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो समय को कभी देखते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो तो घर में उनके पास समय ही समय है, तो वो समय को इतना जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अपने शेड्यूल को फिर से लिस्ट डाउन करें। शेड्यूल तो वही है, सुबह उठेंगे, पहले बच्चों को तैयार करेंगे, घर का ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर घर को संभालेंगे, मतलब वो एंड द लिस्ट इज एंडलेस उनके लिए। बट दे हैव टू सी कि ये पूरा टाइम वो खुद ही लगे रहें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको अपने फैमिली मेंबर्स को भी टास्क को डेलीगेट करना चाहिए, चेकलिस्ट बनाएं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोशिश करें, मोस्टली घर में गृहिणी जो होती हैं या जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो लाड प्यार में या कहते हैं कि बहुत एक जैसे कहते हैं दिल से जैसे काम करते हैं, तो वो हर चीज अपने हाथ से करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और समय तो वो कभी घड़ी देख के तो वो काम ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी उनको देना चाहिए कि टाइम मीन्स टाइम। तो उनको अगर सुबह ब्रेकफास्ट का काम खत्म करना है, आप देखो कभी भी नॉर्मली हमारे इंडियन सिस्टम में संडे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो मतलब दोपहर में ऑलमोस्ट 11:30-11 तक वो महिला जो है ना होम मेकर खड़ी रहेंगी किचन में कि अब सब लोग तैयार होकर आ जाएं, नहा धोकर आ जाएं, और अब जो है वो ब्रेकफास्ट खाया जाएगा। वो सुबह 7 बजे से खड़ी रहती हैं जो अपने किचन में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेने के लिए सभी मेंबर्स जो हैं वो 11:30-11 तक टेबल पर आते हैं। दैट मींस कि हाउ मच टाइम शी हैज डिवोटेड इन द किचन, और जबकि वो जरूरत नहीं थी, वो 1 घंटे में भी काम खत्म हो सकता है। तो वो टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि होम मेकर्स के लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें, और मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और अपने को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। जब हम लोग कहते हैं कि अपने घर के कामों को कैसे मतलब संजो कर रखें, और थोड़ा सा अपने लिए भी उनको टाइम निकालना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए घर में। देखिए ऐसा होता है बहुत बार हम ये देखते हैं कि अच्छा मैं ये चाहती हूँ गुरु दीदी ये जरूर बताएं कि एप्रिसिएशन भी कितना ज्यादा वर्क करता है एक महिला के लिए जब वो जो होम मेकर है उनके लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो लगी रहती हैं, उनको कोई ये भी नहीं पूछता है कि आपने कुछ खाया नहीं खाया है, या जो वो पराठे दे रही हैं क्या उनके लिए वो खाना बचा है या नहीं बचा है, और उसके बाद ये होता है कि जब सब कुछ हो जाता है तब वहां पर क्या आता है कि उनके लिए कि खाना नहीं बचा है, अब वो कहती है कि अब मुझे दोबारा खाना बनाना भी नहीं है, वो बस अच्छा 2 ब्रेड पड़ी होगी, 1 रोटी पड़ी होगी, मैं ये खा लूंगी मेरा हो जाएगा, और के बाद फिर से अपने काम में लग जाती है। तो इन चीजों को किस तरह से और बेटर किया जा सकता है फैमिली में, ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनका जो लाइफ पार्टनर है और इनफैक्ट जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी अगर एप्रिसिएशन मिले, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, यू नो होम मेकर्स के लिए एप्रिसिएशन जो है ना बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको कहीं और से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उनको अपने वो घर वालों से ही एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर कभी आपने देखा होगा, नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि आप तो पूरा दिन घर पे रहते हो करते क्या हो, अब वो करते क्या हो अगर एक दिन वो महिला घर में सिर्फ बैठी रहें और कोई काम ना करें, तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो करते क्या है। यू नो इसके लिए पीछे एक स्टोरी भी है जो आई थिंक हम सब लोग सुनते हैं कि जो एक बड़ी महिला थी उनके उन्होंने हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तो नेक्स्ट डे उस महिला ने क्या किया कि सुबह उठी और वो कुछ काम नहीं किया उन्होंने, तो जब शाम को जब हस्बैंड घर में आए तो उन्होंने जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो कुछ बर्तन गिरे हुए हैं, कुछ बैग स्कूल बैग इधर गिरा है, सॉक्स इधर गिरे हैं, बच्चे स्कूल से आए थे तो उनको खाना नहीं मिला, पूरा किचन जो है वो फैला हुआ था। तो तब उन्होंने बोला कि क्या हो गया आपने, मतलब आप कुछ प्रॉब्लम है, तो बोले हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो मैंने सोचा आज कुछ नहीं करते हैं, तो ये वो रियलाइज कराना चाहती थी कि भाई हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो बच्चों से एप्रिसिएशन मिले, चाहे उनके बेटर हाफ से उनको एप्रिसिएशन मिले, चाहे उनके घर में इन लॉज हैं या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं उनके तरफ से एप्रिसिएशन मिले, वो एप्रिसिएशन उनका एक रिवॉर्ड होता है। और क्योंकि वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए, तो उनको वही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। और सभी का ये रोल है, सभी का ये कर्तव्य है, सभी का ये फर्ज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, कि हमें होम मेकर का काम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे आर दी बेस्ट मैनेजर्स इन दी वर्ल्ड और बहुत काम करते हैं, उनके बिना अगर काम नहीं करें तो शायद हस्बैंड एक दिन भी बाहर ऑफिस के लिए नहीं जा सकते, और बच्चे भी जो है अपना खुशी खुशी ना तो पढ़ाई कर सकते हैं ना स्कूल जा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। मैं यहाँ पर बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट करने में उन्हें इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि जैसे अब क्या होता है, बच्चे हैं स्कूल गए, उन्होंने सारा घर समेटा, अब इतने में सारा टाइम निकल जाता है घर ठीक करने में, बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं और फिर से क्या होता है कि उनकी बुक्स उनकी कॉपीज फिर से वो हेल जाती हैं, फिर उन्हें काम करना होता है और उसके बाद टाइम हो जाता है कि हस्बैंड जो है अब ऑफिस से आ गए हैं, अब उनका काम समेटना। ऐसे करते करते जो टाइम है, अगर ये जो काम है छोटे छोटे ये हस्बैंड हो गए या फिर जो बच्चे हैं वो खुद समझ जाए और खुद करने लगे, तो हो सकता है कि जो होम मेकर्स है उनके पास अपना खुद का टाइम जरूर निकले। गुरु दीदी, हमने बात करी है स्टूडेंट्स के बारे में, ऑफिस वर्कर्स के बारे में, बात करी हमने होम मेकर्स के बारे में, लेकिन अब एक जरूरी बात और वो आती है हमारे बड़े बुजुर्गों की। देखिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना हमारे, उनको हमें लगता है कि वो तो फ्री हैं, बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ बैठ जाइए अपना अखबार जो है वो पढ़ लीजिए या आप थोड़ा न्यूज देख लीजिए, लेकिन कभी कभार होता है कि उनको भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो अब बात करें कि किस तरह से वो अपना डेली रूटीन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि कभी वो होता है कि जल्दी टाइम से उठ जाते हैं, वॉक कर ली अब वो बैठे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा टाइम हो जाना, किसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना भी होना एक प्रॉब्लम साबित होता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: साक्षी, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, मुझे लगता है कि उनका टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है, है ना
0: जी।
1: तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि हमारे दादाजी या हमारे इन लॉज उनका एक टाइम टेबल बिल्कुल सेट है कि वो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद अपना नहा धोकर वो पूजा पाठ करेंगे, फिर वॉकिंग के लिए भी जाएंगे, फिर वो अपना जो भी, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली कई बारी मेडिकेशन भी होता है, डॉक्टर्स के पास जाना होता है, तो दे हैव अ सेट टाइम टेबल। एंड मैं उन घर में जो भी हाउस होल्ड्स हैं, जो ज्वाइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, जहां पे ओल्डर एडल्ट्स रह रहे हैं, मैं उन सबको ये एक बताना चाहूंगी कि जो उनका टाइम टेबल है वो बहुत अच्छा रूटीन होता है। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को फॉलो करें, वो अपने समय के बड़े पाबंद थे और आजकल की जनरेशन बल्कि पाबंद नहीं है, तो हमें उनको बल्कि फॉलो करना चाहिए कि वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है ना, जो उनका एक फॉर्मूला होता था हमारे बड़े बुजुर्गों का, आई थिंक अगर हम लोग वो आज फॉलो कर लें तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की समस्या के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें बड़े बुजुर्गों को फॉलो करना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, बिकॉज दे हैव अ यू नो डेली प्लानर, वो एक अपना कैलेंडर, उनका एक सेट रूटीन होता है। आप देखो कभी भी बड़े बुजुर्गों को अगर आप उनको टाइम को कुछ भी उनके रूटीन को अगर इधर उधर करने की कोशिश करोगे तो वो अनकंफर्टेबल भी रहते हैं और वो मना कर देंगे, कहेंगे हाँ। नहीं, ये हमारा पूजा का समय है, ये हमारा ब्रेकफास्ट का समय है, ये हमारा सोने का समय है। दे हैव अ प्रॉपर रूटीन। तो मुझे लगता है वो डेली प्लानर, डेली रूटीन या जो कैलेंडर उन्होंने सेट किया है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पार्क में जाके थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ बैठना, या शाम को मंदिर या गुरुद्वारे जाना, या लाफिंग क्लब जो आजकल पार्क्स में बहुत आजकल एक प्रथा चली हुई है, उसको ज्वाइन करना, या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ योगा क्लासेस लेना या मेडिटेशन की क्लासेस लेना, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है और ये होना भी चाहिए। और अगर कहीं पे लगता है कि बहुत एज बढ़ती चली जा रही है और हम टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो उस केस में दे कैन यूज देयर फोन्स टू फॉर द रिमाइंडर्स, क्योंकि आजकल फोन में बहुत सारे अच्छे ट्रैकिंग एप्स भी आ गए हैं, तो दे कैन सेट द रिमाइंडर्स कि अभी इनको दवाई खानी है, अभी इनको सोना है, अभी इनको खाना खाना है, अभी इनको बाहर घूमने जाना है या टहलने जाना है। तो वो अगर हम लोग फोन पे ट्रैकिंग अपना रख लेते हैं तो ओल्डर एडल्ट पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वो भी अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और मैं यहाँ कहूंगी कर सकते नहीं, वो करते भी हैं।
0: करते भी हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा अच्छे से जो है वो टाइम को मैनेज कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट भी है टाइम को मैनेज करना। तो आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जो बाल है ऐसी सफेद नहीं हुए, ये हमेशा एक तकिया कलाम होता है हर बुजुर्ग का कि ये बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो देखिए वो एक्सपीरियंस, वो जो जमा पूंजी है ना, वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उनका एक्सपीरियंस है जो आपको लेना है, वो गेन करना है वहां से सीखना है। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टाइम मैनेजमेंट कितना आसान भी है और कैसे इसे आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर जो हमारे साथ सभी जो मेल हैं या फिर ऑफिस गोइंग लोग हैं, एक बैलेंस होता है एक पर्सनल लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इसको मेंटेन करना कितना जरूरी है। और क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, अब जैसे होता है कि चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, घर पे जो काम करें या बाहर भी जाके जो काम करें, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है खुद के लिए, बहुत ज्यादा एक हौच पौच रहती है, बहुत ही मैसी सी एक पूरा दिन उनका रूटीन रहता है। इसको कैसे मैनेज किया जा सके?
1: साक्षी देखो, वर्क लाइफ बैलेंस जो किसे हम लोग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ में और हमारे जो वर्क में जो है वो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब वो हम इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देते हैं। हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि वो उसका जो बर्डन है, जो वर्क, जो काम का जो बर्डन है, वो हम घर लेके भी चले जाते हैं। तो इन दैट केस हम लोग एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हमें अपनी क्लियर जो बाउंड्रीज हैं, जो एक बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा क्लियर कि ये हमारा ऑफिस का काम है, ये हमारा घर का काम है। हमें घर में भी अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है। हमें अपने घर में अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बैठना है और उनके साथ एक यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हमें अपने लिए एक रिलैक्सेशन का जो टाइम है वो भी निकालना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो महिलाएं वर्किंग होती हैं या जो हस्बैंड्स जब ऑफिस से आते हैं तो वो अपने काम का बोझ साथ में लेकर आते हैं, अभी आते हैं चाय पीते हैं लैपटॉप ऑन करके बैठ जाते हैं। तो दैट मींस वी आर नॉट मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द टू। जब हम घर में आए हैं तो हमें घर में टाइम देना है, घर के काम में टाइम देना है, घर के लोगों के लिए टाइम देना है और अपने लिए टाइम देना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम दोनों में एक बाउंड्री सेट कर पाएंगे कि ये हमारा प्रोफेशनल काम था, ये यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ पे हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो, पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई है, अब हमने ये काम करना है, अब हमने अपने बच्चों को टाइम देना है, अब हमने अपनी वाइफ को टाइम देना है या हस्बैंड को टाइम देना है या इन लॉज को टाइम देना है, अपने घर के कामों को टाइम देना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। गुरु दीदी, मेरा एक और सवाल यहाँ पर आपसे कि अभी हमने बात करी है जो बाहर ऑफिस के लिए जा रहे हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड भी है, ये कुछ टाइम से जब से लॉकडाउन हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम का ये जो कल्चर है ये आया है सामने। अब इसमें होता है कि सुबह से जो काम शुरू होता है वो फिर रात तक चलता ही चलता है, तो ऐसे में बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता है ना फैमिली के लिए ना ही अपने लिए, और उसके बाद हम एक जगह बैठे बैठे अपना काम करते करते एक जो मोनोटनस है वो भी आ जाती है, बोरियत हो जाती है, ना ही आपके पास कोई और है बात करने के लिए, क्योंकि ऑफिस में होता था कलीग्स हो जाते हैं, हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं, चाय ब्रेक हो गया, कोई भी ब्रेक हो गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में कैसे टाइम को मैनेज करें ये आप हमें बताएं।
1: साक्षी, वर्क फ्रॉम होम की जब हम बात करते हैं ना, इसका भी हमने एक्चुअली कंसेप्ट को बिगाड़ दिया। वर्क फ्रॉम होम, आई हैव सीन दी एम्प्लॉयज जो वर्क फ्रॉम होम लेते हैं, जो घर में काम करते हैं, और कॉर्पोरेट्स जो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं उनका मैंने देखा है सिस्टम, दे हैव अ वेरी रोबोस्ट सिस्टम, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम होता है। अगर उनका सुबह 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है तो वो उसके बाद 2 घंटे के बाद दे विल प्रोवाइड दी यू नो बीच में एक ब्रेक देते हैं कि भई आप जाइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए या जो भी आपको टाइम देना है कर लीजिए, उसके बाद फिर से वो अपने काम पे लगते हैं। एंड डॉट अगर वो यू नो 9 से 5 का ऑफिस है या जो भी उनका जो 8 आवर्स का या 8.5 आवर्स का जो शेड्यूल है, उसके बाद दैट ऑफिस इज क्लोज, मतलब ऑनलाइन वो ऑफिस क्लोज हो जाता है। नाउ इट इज द इंडिविजुअल जो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। एक एज अ हम लोग जैसे कहते हैं एम्प्लॉय, हम घर में बैठे हमें लगता है कि अच्छा चलो हम अभी ये भी काम कर लें, अभी हम ये भी बैठे हैं। कई बारी दो एस्पेक्ट हैं कि जो घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसके लिए दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो आपने कहा कि वो मोनोटनस सा हो जाता है, वो मोनोटनस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है लैपटॉप पे बहुत टाइम से, वो उसको कंटिन्यूसली स्क्रीन को देख रहा है तो वो मोनोटनस सा है, तो वो बीच में वो छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। कई बार हम खुद ही उसको मोनोटनस बना देते हैं कि हम लगे रहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो उतना काम जरूरी है या नहीं है। अगर उसको नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, हम ऑफिस काम नहीं कर रहे होते उसमें, हम कई बार कुछ और काम लेकर बैठ जाते हैं, हम अपनी मेल्स चेक करना शुरू कर देते हैं, हम व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, तो आई थिंक हम अपने आप ही अपने को बिजी कर देते हैं
0: वर्क
1: फ्रॉम होम वाले कल्चर में। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हमें थोड़ा सा उस रूम से बाहर निकल के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग बातें करें या कुछ छोटे छोटे काम कर लें, म्यूजिक सुन लें या डांसिंग कर लें या किचन में चले जाएं या कोई और काम कर लें, तो
0: बिल्कुल
1: वो मोनोटनी हम ब्रेक कर सकते हैं।
0: कर सकते हैं बिल्कुल। और अभी हमने बात करी है वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जो नया चला है, आपने बताया किस तरह से मैनेज कर सकते हैं टाइम। मैं अब जानना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं। अब ये बड़ा टफ हो जाता है कि पूरी रात जब काम किया ना तो अगले दिन, क्योंकि हमारी जो रात की नींद होती है ना, अगर हमने वो चाहे 8 घंटे की ली हो चाहे वो 7 घंटे की, वो रात की नींद होती है, वो अगर कंप्लीट नहीं होती तो हमें लगता है वो जो पूरा दिन है उसमें हमें पूरा दिन नींद आती रहती है और हम पोड लेते भी हैं। ऐसे में जब पूरा दिन चला गया है, शाम का टाइम है, खाना खाया और फिर से हम काम करने बैठ गए, टाइम कहीं भी मैनेज नहीं हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे और किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं यहाँ?
1: तो साक्षी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं ऑब्वियसली उनको टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि 24 आवर्स ही हमारे पास होते हैं, तो 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो रात को 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो अपने घर पे आके उनको ये एक देखो हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो चेंज हो जाता है, बट उनको आके रेस्ट करना चाहिए, उनको आके सोना चाहिए। तो जब वो 1-2-3 दिन ये प्रैक्टिस करते हैं तो उनका बॉडी क्लॉक वैसा ही बन जाता है। तो इन दैट केस देन दे आर इन अ पोजीशन टू मैनेज देयर टाइम कि उन्होंने रात भर काम किया, सुबह आके थोड़ा रेस्ट किया, दोपहर तक जब वो उठते हैं तो उनके पास वो शाम तक रात तक का टाइम होता है जिसमें वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हम लोग जब रात का काम करके आते हैं, नाइट शिफ्ट में जो लोग होते हैं, तो वो सुबह आके कोशिश करते हैं कि वो ना सोएं, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं तो उनको लगता है कि हम उनसे बातें कर लें, तो वो अपना टाइम उसमें व्यर्थ कर देते हैं। तो आई थिंक उनको रेस्ट करना और उनको सोना बहुत जरूरी है। जब वो सोकर उठेंगे तो वो फ्रेश रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे और उनके पास काम करने की क्षमता रहेगी और वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज भी कंप्लीट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो देखिए, ये तो बात रही टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आज हमने बहुत सारी बातें इन डिटेल जानी है। गुरु दीदी, मैं जानना चाहूंगी वो आखिरी सवाल, क्या वो खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात है, आपने काफी सारे डिटेल में जानकारी जो है हमें दी है, लेकिन जाते जाते क्या वो कुछ कहना चाहेंगे आप सबसे, कुछ मैसेज जो होगा आपकी तरफ से?
1: हाँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो यू नीड टू वर्क स्मार्टर देन हार्डर। हम वर्क हार्ड ठीक है, जरूरी है, बट हमें स्मार्टली करना चाहिए। और जब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं तो हमको जो हमने अभी पूरा डिटेल डिस्कशन किया है कि हमें अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, गोल्स को हम सेट करके रखें, हम हर चीज को प्लान बना के करें, प्लानिंग के साथ करें, हम कोशिश करें कि अपने चाहे हम घर परिवार में हैं या हम वर्क प्लेस में हैं, हम अपने काम को थोड़ा थोड़ा डेलीगेट भी करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि हमको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं हम नो भी कहने की क्षमता रखें। कई बारी एवरी टाइम सेइंग यस यस एंड यस विल गिव यू लॉट ऑफ बर्डन, वो बहुत बर्डन हो जाता है लाइफ में और वो कहीं ना कहीं आके वो स्ट्रेस बन जाता है हमारी लाइफ में। तो हमको नो कहना भी आना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड इन आवर लाइफ कि जो भी काम करें पूरी फोकस के साथ करें, 100% होकर करें, खुश होकर करें, अगर खुश होकर करेंगे तो वो हमारा टाइम से खत्म होगा एंड वी आर इन अ पोजीशन टू यू नो अपना टाइम मैनेजमेंट हम कर पाएंगे। और लास्ट में सिर्फ 4 D's के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 D's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू, काम करिए, बट डेलीगेट भी कीजिए, डेलीगेट, डेफर एंड डिलीट। सो विद दिस मैं ये सभी श्रोताओं

0: को एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि काम हंस के कीजिए, खुशी से कीजिए, देखिए आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा।
1: बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम यही तो बात करते हैं ना, पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। और गुरु दीदी थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ स्टूडियो आई, इतनी सारी बातें करी है हमारे लिसनर्स तक, इतनी सारी जानकारी पहुंचाई है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू साक्षी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, कल होगी फिर से आपसे मुलाकात, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

रेडियो मानवराज आवर 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ प्रोग्राम द किचन एक्सप्रेस। और इस किचन एक्सप्रेस में लेके आती हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपीज। और साथ साथ इन रेसिपीज के थ्रू आप देखिए, जो रेस्टोरेंट स्टाइल आप खाना होता है आप वहाँ खाते हैं, आपको लगता है कि ये तो घर पे बन ही नहीं सकता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए, कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है, आई एम पॉसिबल। जी हाँ, जो चीजें पॉसिबल है आप जरूर उसे बना सकते हैं, इतनी आसान सी। बस जब भी आप किचन में जाएं, एक बात का ध्यान रखना है, पेशेंस। ये जरूरी है कि आप पेशेंस के साथ बनाएं, और जितना पेशेंस आप में रहेगा उस टाइम खाना बनाने के टाइम पर, उतनी ही चीज आपकी अच्छी बनकर निखर के आएगी। उसका टेस्ट, उसका कलर, और वो डिश खुद उस प्लेटिंग में भी आपको लगेगा, मतलब देखते ही ना भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही होता है कि हम जैसे मसाले डालते हैं घी में या तेल में मसाले डालते हैं, कुछ भी ऐसा बनाते हैं, तो देखिए खुशबू आती है, और उस खुशबू से ना धीरे धीरे भूख बढ़नी शुरू हो जाती है, ना सिर्फ आपकी बल्कि जो आपके घर में है, लोग वहां पर मौजूद है, घर में मौजूद है, जिन्हें किचन में से खुशबू आ रही, वो भी कहते हैं अरे क्या बन रहा है आज। बाहर पड़ोसी कहते हैं कि अरे आज क्या बन रहा है, जरा बताइए, हमें जरा टेस्ट कराइए, या फिर हमें भी तो रेसिपी बताइए ना। तो आज ऐसे ही कुछ बहुत ही बढ़िया उम्दा रेसिपीज के साथ मैं आ गई हूँ आपके पास, और आपको बताऊंगी कि आज की रेसिपी क्या होने वाली है। आज बहुत सारी रेसिपीज ऐसे में लेके आई हूँ, उनमें से चुनिंदा कुछ बहुत बेस्ट रेसिपीज आपको बताऊंगी, जो आप संडे की मॉर्निंग जो है इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, आज की जो रेसिपी है, सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आपको आलू पनीर की टिक्की। ये स्ट्रीट स्टाइल में बड़ी फेमस है, मतलब जब भी हम जाते हैं, या फिर बर्गर पैटीज हो गए उसके रूप में आप ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी टिक्की चाट जो होती है ऐसा बना सकते हैं इसे, तो बच्चों को, बुजुर्गों को, आपको भी बहुत पसंद आएगी। इवन जब भी हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, देखिए आजकल थोड़ा माहौल है, वेडिंग सीजन चल रहा है, जब भी हम किसी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले हम टिक्की जरूर ट्राई करते हैं। तो ये जो टिक्की है ना, आलू पनीर की टिक्की, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और बाहर से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जो मुंह में घुल जाए, यही तो हमें चाहिए होता है ना। और आज बता रही हूँ मैं आपको आलू पनीर की टिक्की कैसे बनती है। तो सबसे पहले बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट क्या होने वाले हैं। तो इंग्रेडिएंट है, आप पहले 100 ग्राम पनीर ले लीजिए। पनीर आप देखिए जितना मर्जी आप ले सकते हैं, आधा किलो ले लीजिए या 1 किलो ले लीजिए, जितने लोग आपके घर में है, जितना आपको चाहिए कि क्वांटिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप पनीर जो है वो ले लीजिए, और उसके बाद उसे ग्रेट जरूर कर लीजिएगा, कद्दूकस कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने कद्दूकस करके एक बोल में आपको अलग से रख देना है पनीर, आपका कसा हुआ पनीर। अब क्या लेने हैं, आपको आलू लेने हैं। अब आप 2 से 3 या 4 आलू ले सकते हैं, जिस हिसाब से आपका पनीर है उसकी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आपको, या उसके ही लगभग बराबर क्वांटिटी में आपको लेना है आलू। तो आलू हो गया कि पनीर की बाइंडिंग जो होगी वो अच्छे से हो जाएगी, तो पनीर जो है वो आपका जो होता है, जैसे पनीर बनाएंगे कभी फ्राई करेंगे तो आपका थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रहता है, वो नहीं होगा क्योंकि वो आलू के साथ बाइंड हो जाएगा, तो एक अच्छा फ्लेवर टेस्ट देगा और दिखने में भी अच्छा होगा, और एक प्रॉपर जो है वो शेप ले लेगा टिक्की की। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आलू को उबाल लेना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून आपको काली मिर्च पाउडर लेना है, और 1/4 टीस्पून आपको लाल मिर्च पाउडर लेना है, 2 टीस्पून आपको सिंघाड़े का आटा लेना है। सिंघाड़े का आटा क्या करेगा, जैसे आप आलू बनाते हैं तो आलू बाहर ना निकले तो वो एकदम आलू को बंद कर देगा, एक प्रॉपर एक पैटी की शेप देगा, और ये आपको करना है। एक टिक्की प्रॉपर अगर बनानी है आपको तो क्रिस्पी के लिए भी सिंघाड़े का आटा हो गया कि थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी। अब जो सिंघाड़े का आटा होगा ये ध्यान में रखिएगा कि वो भुना हुआ हो, नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के आप उसे भून लीजिए, लेकिन उसमें कुछ डालिएगा मत, घी या कुछ भी मत डालिएगा, हल्का सा भून लेना है आपको, या फिर आजकल तो मार्केट में आपको भुना हुआ जो सिंघाड़े का आटा है वो अवेलेबल हो ही जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 2 से 3 टेबल स्पून आपको क्या करना है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको बारीक कटे हुए, और उसके साथ लेना है सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबल स्पून आपको घी लेना है, देसी घी आप ले सकते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अब आप देखिए कि ऑलिव ऑयल ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा आपके लिए, तो आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लीजिए ताकि आप डीप फ्राई कर सकते हैं, अगर डीप फ्राई करना है आपको थोड़ा सा ज्यादा ऑयल ले लीजिएगा। और अगर आपको बनानी है ये पैटीज जो है जो तवा है उसमें बनानी है, जो हमारा नॉनस्टिक पैन होता है उसमें बनानी है, तो आप कम में भी जैसे ब्रश कर लिया बस, तो आप उतना भी ऑयल ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डीप फ्राई करनी है या फिर आपको थोड़ा सा बस अच्छे से शैलो फ्राई ऊपर से आपको करके खाना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बताऊंगी विधि। तो सबसे पहले आपको घी या फिर ऑलिव ऑयल जो भी आपने लेना है वो ले लीजिए और मिक्स फ्रूट को उसमें डालकर आप अच्छे से मिक्स फ्रूट जो भी आपके है जैसे बादाम हो गए काजू हो गए उनको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए और उसके बाद एक बाउल में उसके बाद उसे निकाल लीजिए। सारी सामग्री जो सामग्री आपके पास उसे मिक्स करें आप और थोड़ा सा जो मिश्रण है उसे लेकर हथेली पर रखकर आपको क्या करना है एक फ्लावर टाइप बनाना है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को डालना है। जैसे कि आप ले लीजिए आपका जो पनीर और आलू का जो मिश्रण है वो आप ले लीजिए, सिंघाड़े का आटा आपने डाल दिया है अच्छे से आपको देखिए एक पूरा डो की तरह वो तैयार हो जाएगा। एक लोई जैसे मान लो तोड़नी है आपको और लोई के बाद उसको अपने हाथों पे फ्लैट करना है। अब उसके अंदर एक गड्ढा करना है और एक कटोरी की शेप में ले लेगा। अब उसमें जो ड्राई फ्रूट्स आपने फ्राई करे हैं ना ये आपको डाल देने हैं और उसके बाद आपको वो बंद कर देना है। ऐसा करने से होगा कि आपके ड्राई फ्रूट्स जो होंगे अंदर अच्छे से आपकी टिक्की की आ जाएंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को आपको अपने हथेलियों की मदद से चपटा कर लेना है और उसके बाद अपना जो पैन लेना है आपको उस पर ऑलिव ऑयल ब्रश करना है और उसके बाद आपको टिक्कियों को रख देना है ताकि टिक्कियां अच्छे से फ्राई हो जाए। दोनों तरफ से अच्छे से जब फ्राई हो जाए आप देखिए जो आपकी टिक्कियां होंगी वो क्रिस्पी हो जाएंगी और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी। ऑलरेडी पनीर और आलू हमारा जो है वो बना हुआ है, आलू हमने बॉइल कर लिए थे, मसाले उसमें डाल दिए थे सारे जो इतने मसाले हैं तो ऑलरेडी आपको ज्यादा अंदर से आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पकेगा, सब पका पकाया है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप पनीर आप ले रहे हैं कद्दूकस करने से पहले उसको बॉईल कर लीजिएगा ताकि उसमें जितने भी चीजें हैं केमिकल्स है वो सारी चीजें निकल जाए और आपके पास एक अच्छा पनीर जो सॉफ्ट पनीर है वो आपके पास रहे। और पनीर को आप जब भी बॉईल करेंगे तो गैस को फ्लेम को ऑफ करके पहले आप पानी गर्म कर लीजिए, फ्लेम को करना है ऑफ, उसमें नमक डालना है, पनीर को रख दीजिए और ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए आपका पनीर कितना ज्यादा मुलायम हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा और उसके बाद आपको ग्रेट करना है और फिर आपको इसकी जो टिक्कियां हैं वो बनानी है। और साथ ही साथ नॉनस्टिक पैन पे आपने अगर आप अपनी सुनहरे रंग की होने तक उसको जब आप ब्राउन कलर की कर लेंगे तब आपको अच्छे से उसे फ्राई करना है। क्रिस्पी होने के बाद आपको क्या करना है, हरी मिंट की चटनी या फिर आप नॉर्मल सॉस के साथ उसे एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप बर्गर की पैटी के रूप में उसे ले सकते हैं या फिर आप उसका जो टिक्की है आप उसकी जो चाट है वो भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके घर वालों को बिल्कुल पसंद आने वाली है और मुंह में पानी तो आ ही रहा है मेरे। तो आप ये जरूर डिश ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये डिश ट्राई की है तो आपको कैसी लगी, आपके परिवार वालों को कैसी लगी। क्या करना है आपको, नंबर हमारा बड़ा ही आसान है 8010781078, इस नंबर पर आपको भेज देना है इस डिश के बारे में कि आपको कैसी लगी कैसे नहीं लगी है, फीडबैक जरूर भेजना है। मैंने आपको भी बताया कि पनीर की टिक्की कैसे बनेगी, अब बता रही हूँ आपको कि शकरकंद पूरी कैसे बनेगी। जी हाँ, हमने नॉर्मल पूड़ियाँ खाई है, कचौड़ियाँ खाई है, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ शकरकंद पूड़ी के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो नोट डाउन कर लीजिए। आपको चाहिए 2 शकरकंद आपको चाहिए और उबली हुई या मैश करी हुई आप कर लीजिए, उसे पहले उबाल लीजिएगा और उसके बाद उसे मैश कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 1.5 कप सिंगाड़े का

शकरकंद आ ही गई है और शक्कर घर में अवेलेबल होती है, आपके घर में अब सिंगाड़े का आटा मौजूद होगा, तो सारी चीजें आपको लेनी है और उसके बाद हम बताने वाली हूँ मैं आपको क्या होने वाली है इसकी विधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तलने के लिए घी को आपको छोड़कर सारी सामग्री को मिलाना है और अच्छे से एक आटा जो होगा वो गूंथ लेना है। अब 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देना है और लोइयां जो है उसके बाद उसकी तैयार कर लेनी है, जैसे आप पूरी के लिए तैयार करते हैं। अब आपको क्या करना है, कढ़ाई में आपको घी गरम करना है और इन पूरियों को सुनहरा होने तक आपको तलना है और दही या फिर हरी चटनी के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। अच्छा, ये जो पूरी है ना हमारी, इसमें क्योंकि हमने देखिए कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करी हैं और चाहे सौंफ हो गई, सौंफ का एक अलग टेस्ट आएगा, सिंघाड़े का आटा हो गया और शकरकंद हो गई, तो ये बड़ा ही अलग कॉम्बिनेशन है और बड़ा ही टेस्टी कॉम्बिनेशन होगा। आपने इसमें दूध यूज किया है तो आप देखिए दूध जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, तो वो पूरियां एकदम मुलायम एकदम घुल जाएंगी आपके मुंह में जब आप खाएंगे। आप इसे दही के साथ ट्राई कर सकते हैं, चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं और मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये हेल्दी रेसिपी ट्राई करी है तो आपको कैसी लगी है, क्योंकि शकरकंद अभी सीजन का ये सब्जी है कि आप इसे सीजन में ले सकते हैं, विंटर सीजन चल रहा है तो शकरकंद बिल्कुल आपको मिलेगी मार्केट में अवेलेबल। और ये आपको डिश कैसी लगी फीडबैक जरूर देना है आपको, नंबर हमारा बड़ा ही आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना और बताना है कि आपको ये डिश आपके परिवार वालों को कैसी लगी। फिर से बहुत ही प्यारी एक रेसिपी लेके आ गई हूँ, कमाल की जबरदस्त बेहतरीन रेसिपी है ये। तो अब मैं बता रही हूँ आपको समा के जो राइस होता है, समा के चावल होते हैं, उसका उत्पम के बारे में बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने वाला है ये। तो समा के जो चावल होते हैं और ये आपको हम देखिए कि जब भी नवरात्रि आते हैं हम ढेर सारा स्टॉक जो है खरीद लेते हैं और उसके बाद नवरात्रों के बाद समा के चावल जो है वो हम एक डब्बे में रख देते हैं। जी हाँ, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, आप बताइए कि ये आपके घर में कैसा होता है, और अगर आपके घर में नहीं अवेलेबल है अभी तो मार्केट में जरूर आराम से मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपको, एक कप आपको समा के चावल लेना है और उसका जो चावल का आटा होता है वो लेना है आपको, और उसके बाद समा के चावल का आटा अगर हो गया आपके पास, अब देखिए ये जो आटा होता है बड़ा क्रिस्पी होता है। अब आपको क्या लेना है, एक टमाटर लेना है और 2 से 3 हरी मिर्च लेनी है, दोनों बारीक कटी हुई होनी चाहिए एकदम, एक गाजर हो गई कद्दूकस की हुई, थोड़ा सा आपको धनिया लेना है कटा हुआ, 2 टेबलस्पून आपको घी लेना है, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, आधा आधा टीस्पून आपको काली मिर्च पाउडर लेना है और जीरा लेना है। अब 2 टेबलस्पून आपको पनीर छोटे टुकड़े कटे हुए आपको लेना है और 2 टेबलस्पून आपको अनारदाना लेना है और 1 टेबलस्पून आपको सफेद तिल लेना है। ये सारी चीजें देखिए कितनी ज्यादा हेल्दी हैं, आप इसे बनाने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब भी बात आती है आपकी हेल्थ की तो बात करती है आपसे साक्षी, और साक्षी आज बहुत ही कमाल की डिशेस आपके लिए लेके आ गई है जिसे खाकर आप बोलेंगे अरे वाह आज तक ये हमने ट्राई क्यों नहीं की, भाई मुझे जल्दी आना चाहिए था ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जो डिशेस लेके आई हूँ उसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब तो अब बताऊंगी विधि, इनग्रीडियंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बता रही हूँ आपको क्या होने वाली है इसकी विधि। सबसे पहले बोल में टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, हरा धनिया, पनीर, सफेद तिल, अनार के दाने, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सेंधा जो नमक है उसे मिक्स करें और समा के जो चावल है उसे 3 घंटे तक भिगोकर मिक्सी में आप पीस लीजिए। इस घोल को अब आप इसमें दही डाल दीजिए और सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर आधे घंटे तक के लिए नॉनस्टिक पैन में आप घी लगाकर चावल का ये जो घोल है उसे फैला दीजिए। अब सब्जियों का जो मिश्रण है वो आप ऊपर डाल दीजिए और उत्पम के किनारे जो है उस पे घी डाल दीजिए, और जैसे आप घी लगाएंगे ताकि वो चिपके नहीं ऐसा करिए, और उसके बाद उसे ढककर धीमी आंच पर आपको 3 से 4 मिनट के लिए आपको सुनहरा होने तक आपका जो उत्पम है वो आपको रखना है ताकि वो अच्छे से अंदर तक पक जाए और आपकी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ आपको प्लेट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप ऊपर से डालने के लिए आपको मूंगफली की चटनी बना लीजिए, क्योंकि देखिए मूंगफली की जो चटनी होती है ना वो बड़ी टेस्टी होती है और मूंगफली की चटनी सर्दियों में तो मजा ही आने वाला है। तो मूंगफली की चटनी आप बना सकते हैं या फिर एक और उपाय है, इसमें आप नारियल की चटनी भी बना सकते हैं उसके साथ भी, क्योंकि हमारे साउथ इंडियन इसमें टच आ रहा है और वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा साउथ इंडियन और चाहिए तो आप इसमें कड़ी पत्ता जो है वो भी यूज कर सकते हैं, उसका फ्लेवर यूज कर सकते हैं, तो आप उसका कड़ी पत्ते का फ्लेवर यूज कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर वो कहते हैं ना कि आप सरसों का तड़का लगा सकते हैं, तो वो भी एक कमाल का आपके

0: लिए रहेगा, एक टेस्ट फ्लेवर रहेगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा साउथ इंडियन टच आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसे नॉर्मली भी ऐसे खाना चाहती हैं उत्पम, तो वो भी आप बना सकते हैं। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने अगर ये डिश ट्राई की है तो वो कैसी लगी है। नंबर हमारा बड़ा ही आसान है, 8010782107 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी ये जो डिश है बताई हुई ये कैसी लगी है, आपके परिवार वालों को कैसी लगी है। और इस किचन एक्सप्रेस में मैं बताई, मैंने आपको आज तीन रेसिपीज के बारे में, समा राइस उत्पम के बारे में मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया है भाई हमारे जो आलू पनीर की टिक्की है उसके बारे में, और शकरकंद पूड़ी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये जो रेसिपी है जरूर आप ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ अब टाइम हो गया है जब मैं आपको बताती हूँ कोई किचन हैक। जी हाँ, किचन हैक बताने का टाइम आ गया है, और कमाल का किचन हैक जो है वो लेके आई हूँ मैं। और वो ये है कि अगर आपके जो चावल होते हैं, देखिए अब आप स्टोर करेंगे क्योंकि बरसात के बाद बरसातों में थोड़े से कीड़े हो जाते हैं अपने आप ही, जो चावलों में थोड़ी सुरसुरी जैसी आ जाती है, काले काले जो कीड़े होते हैं वो हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो ना हो, और क्या होता है कि जो जितना पुराना चावल होता है ना उतना ज्यादा टेस्टी होता है, तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि वो जो चावल होते हैं ना वो उठा के रख देते हैं, ढेर सारा एक बारी में ले लेते हैं ताकि वो चावल पुराने हो जाए, और ऐसे करने से क्या होता है कीड़े लग जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, हल्दी की जो गांठी होती है ना वो ले लीजिए, और उसके बाद चावलों में पूरी अच्छी तरह से डाल दीजिए। पहले के टाइम में ये जरूर चलता था, और उसके बाद लोगों ने कई सारी चीजें अपनाई, बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स थोड़ी गोलियां आती है वो डाल देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है जो पुराने टाइम में चलता आ रहा था पहले से ही, कि आप हल्दी की गांठे डाल सकते हैं। और अगर इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना कि घर पे चींटियां आ रही है या फिर कीड़े लग रहे हैं या कहीं पर कीड़े आ रहे हैं, तो आप देखिए वहां पर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और आप देखिए कि कितना सही हो जाता है कि वहां पर एकदम साफ हो जाता है, कुछ ऐसे नई चीजें रहती हैं और वहां पर कुछ भी ऐसा कीड़ा या चींटे नहीं आएंगी। तो ये एक हैक है आपके लिए। साथ ही साथ एक और हैक, और वो ये कि अगर नमक कभी भी तेज हो जाता है सब्जी में, ये जरूर आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नमक कभी भी आप बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं तो नमक तेज हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, या तो आप आलू को एक आलू काट के डाल दीजिए सब्जी में, या फिर जो आलू होगा वो तो जो अपना नमक है वो अंदर सोख लेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आटा, गूंथा हुआ आटा जो होता है आप एक लोई लेके उसमें डाल दीजिए, अगर आपकी थोड़ी सूखी सब्जी है उसमें लोई डाल दीजिए, देखिए थोड़ी देर के अंदर अंदर जो नमक है वो एकदम कम हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो पुलाव में क्या होता है कि हम आलू उसमें डालते हैं, जिस वजह से आलू उसका थोड़ा सा जो नमक होता है वो सोख लेता है, जिस वजह से जो चावल होते हैं थोड़े से फीके फीके भी लगते हैं। तो अगर ऐसा भी लग रहा है आपको, थोड़ा सा नमक हल्का सा ज्यादा रखिएगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो ये हैक था आपके लिए आज का। और इस किचन एक्सप्रेस में आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे करी, बहुत सारी रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आई, और हेल्दी रेसिपीज भाई, ये जो मॉर्निंग है हमारी संडे की ये अच्छी होनी चाहिए, और जो संडे मॉर्निंग होती है ना इसको थोड़ा सा एनर्जी भरा होना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अच्छा ब्रेकफास्ट करें, जरूर करें। जी हाँ, कहीं ना कहीं काम में थोड़ा सा आप व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट कर देते हैं, लेकिन पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। जी हाँ, पहले आपको अपनी पेट पूजा करनी है, जरूर खाना खाना है, खाना खाने के बाद ही जब एनर्जी आए तब आपको काम करना है। और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी रेसिपीज मैं लेकर आती रहती हूँ, अगले संडे फिर से बहुत सारी कमाल की रेसिपी लेके आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है अब कि मैं आपको कहती हूँ बाय टाटा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.
1: हाय दोस्तों, मैं हूँ रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। Feel good, feel life.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा का ये खास प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार 11 से 1 बजे तक। जी हाँ, बहुत सारी होती हैं बातें और बातों के साथ आपको कहीं ना कहीं घुमाने लेकर के मैं चल पड़ती हूँ। और आज जिस जगह पर घूमने हम जाने वाले हैं उस जगह के भी बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगी, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या आइटनरी होनी चाहिए, साथ ही एक खाने पीने के लिए क्या क्या है और शॉपिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो मन तो ज़रूर करता है ना कोई कहीं भी जाए तो याद एक ज़रूर लेकर के वहाँ से वापस आए। तो वही यादों की बात करूँगी, कैसे आप बना सकते हैं और साथ ही क्या क्या लेकर के आ सकते हैं। आज बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास जगह की जो कि हमारे साउथ इंडिया की है। जी हाँ, साउथ इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह की मैं बात लेकर के आ गई हूँ। और आपको बता दूँ मैं कि जिस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो ऐसा कहते हैं, जो हिल स्टेशन है ऐसा कहते हैं कि इस हिल स्टेशन को द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। नीलगिरी माउंटेन्स की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन ब्रिटिश एरा का एक चार्मिंग गिफ्ट है। कौन से इस हिल स्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो बताऊंगी। और आज मैं बात कर रही हूँ ऊटी की, यानी उद्धागमंडलम। जी हाँ, उद्धागमंडलम ये जो है इस नॉर्मल आम भाषा में से कहा जाता है, लेकिन हम नॉर्मली से कहते हैं ऊटी। और ऊटी जहाँ हर सुबह की एक फॉगी पेंटिंग जैसी जो है वो लगती है, हर सुबह इतनी ड्रीमी लगती है, और जहाँ हर दूसरी चीज़ एक पोस्टकार्ड की याद दिलाती है। सड़कों पे खूब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वहीं चार्मिंग कॉटेजेस यहाँ पर हैं, टी गार्डन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और एक सूदिंग साइलेंस भी आपको यहाँ मिलेगा। सब कुछ वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जगह आपको ना सिर्फ सुकून देती है बल्कि एक टाइमलेस नॉस्टैल्जिया भी देती है। तो चलिए आज इसी वही सफ़र पर निकल के चलते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह के आज आपको बातें बताने वाली हूँ, एक बहुत ही कूल और काम शहर की सैर पे मैं आपको ले जाने वाली हूँ, जहाँ नेचर और नॉस्टैल्जिया एक साथ मिलते हैं। बात ऊटी की है, बैंगलोर से अप्रॉक्स 6 से 7 घंटे की ड्राइव और आप पहुंच जाएंगे ऊटी। लेकिन सबसे आइकॉनिक रूट है नीलगिरी माउंटेन्स रेलवेज के थ्रू। ये 46 किलोमीटर्स लंबा एक देखिए रेलवे ट्रैक है और ये जर्नी है मेट्टुपलायम से ऊटी तक। ये बहुत ही खूबसूरती से जो एक जर्नी है, रेलवे जो ट्रैक है 46 किलोमीटर्स लंबा ये ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत है। इसे मैं आपको बता दूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है। और ये जो ट्रॉय ट्रेन की एक पुरानी ब्रिटिश इंजन से भी यहाँ पर वही चलाई जाती है और बहुत ही कमाल की, और हर जो टनल है एक हर कर्व पर एक रोमांटिक ऑरा क्रिएट करती है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सीनरी जैसे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, स्मॉल ब्रिजेस, जंगल कर्व्ड और साथ ही स्लोप्स और साथ ही मिस्टी वैलीज़ आपको मिल जाएंगी। एक ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको मिलता है अगर आप ऊटी आते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो कपल्स हैं वो अपना हनीमून सेलिब्रेट करने हनीमून पर जाते हैं ऊटी। भाई पहले तो ये बहुत होता था, हम ऊटी का नाम बहुत सुनते थे और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी ऊटी में हुई है, बहुत सारी। ऊटी जो है पहुंचते ही एक ठंडी आपको जो है टपकी मिलती है वेदर की। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक ठंडी सी एक लहर है, एक थपकी जो है, ये आपको वेदर की मिलती है क्योंकि ये हिल स्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर, मिस्टी रोड्स और पाइन ट्रीज से भरा हुआ है। साथ ही ब्रिटिश कॉटेजेस यहाँ आपको मिल जाएंगे, वही आपका स्वागत करते हैं, आपको ये फील कराएंगे कि जैसे टाइम जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, टाइम चल ही नहीं रहा है, टाइम ने यानी कि वही समय ने अपनी रफ्तार जो है ये पकड़ी ही नहीं है, टाइम वहीं और आप बस उस जगह पर रुक गए हैं और सब कुछ बहुत सुकून आपको मिलेगा वहाँ। ऊटी का कॉलोनियल हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिशर्स ने ऊटी को अपनी समर रिट्रीट बनाया था
आज भी आपको यहाँ कॉलोनियल आर्किटेक्चर मिलता है और 1800 के जो उनके दशक के यानी कि जो 1800 के दशक के आपको कॉटेजेस, स्टोन के जो चर्च और साथ ही साथ कुछ ऐसे गार्डन्स और वुडन लाइब्रेरीज मिल जाएंगे जैसे देखकर आपको लगेगा कि हम शायद से ना इंडिया में है ही नहीं, हम तो बाहर किसी देश में है, बाहर किसी मतलब विदेश में है, किसी और कंट्री में है और वहाँ की जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर वो आपको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ तमिल, इंग्लिश और यहाँ का जो जो एक बदागा बोलते हैं लैंग्वेज है, बदागा एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है और उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, डांस है और साथ ही म्यूज़िक भी है जो कि ऊटी के सोल का एक हिस्सा है। और आप लोकल कल्चर को डीपली एक्सप्लोर अगर करना चाहते हैं तो किसी होम स्टे में रहिए या फिर आप किसी ऐसी फैमिली के साथ जो कि ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उनके साथ रह सकते हैं ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके। तो अगर आपको बिल्कुल बहुत ही कमाल का रियल एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर ऊटी आइए और यहाँ पर आप होम स्टेज में आके, आजकल हर जगह होम स्टेज जो है वो अवेलेबल हैं, आप आके रह सकते हैं ताकि आप लोगों के साथ रह के उनकी बातें समझ सके, उनके ट्रेडिशन को समझ सके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन की, द क्वीन ऑफ हिल्स जिसे कहा जाता है और वो है ऊटी। जी हाँ, यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, मतलब एक अलग ही रोमांटिक वाइब्स जो है ना वो देते हैं। ऊटी आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ जगहें हैं जो कि आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। जी हाँ, ऊटी लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है और फ्रॉम 1824 से, और यहाँ पर आप जो है वो पैडल बोट्स, रो बोट्स और साथ ही मोटर बोट्स का रेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप लेक साइड में यहाँ पर एक मिनी अम्यूजमेंट पार्क भी है और साथ ही फूड स्टॉल भी है जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आ जाता है बोटानिकल गार्डन जो कि 22 हेक्टर्स में फैला हुआ गार्डन है और मेंटेन करती है यहाँ की तमिलनाडु जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है। यहाँ के जो रेयर ट्रीज हैं, एग्जॉटिक प्लांट्स हैं और साथ ही एक 20 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ट्री ट्रंक भी आपको मिल जाएगा जो कि नेचर का एक प्यारा सा आपको हेवन जैसा लगेगा। मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह आपको हैरान कर देगी। इसी के साथ यहाँ पर जो है आप रोज़ गार्डन भी घूमने के लिए आ सकते हैं। तो ऊटी आ रहे हैं ना तो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी जगह आपको बताऊँगी कि आप भी कहेंगे कि साक्षी क्या बात है ना, क्या जगह बताई, हमें घूमने का मन कर गया। ऊटी की हम बात करें, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ आपको बता रही हूँ जगह जहाँ पर आप घूमेंगे और कहेंगे कि क्या बात है साक्षी, ये बताइए ना जगह, यहाँ पर आ रहा है मज़ा और आपको घूमने का मन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ रोज़ गार्डन की। 10 acres of hillside covered with over 3000 varieties of rose flowers. और ये जो गार्डन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज़ के अवार्ड भी इस गार्डन ने जीता हुआ है। और मैं बता दूँ यहाँ पर आप घूम सकते हैं नीलगिरी माउंटेन रेल म्यूज़ियम। जी हाँ, रेलवे जो म्यूज़ियम है वो आपको घूम सकते हैं, यहाँ पर रेलवे लवर्स के लिए एक डिलाइट है। और यहाँ पुराने इंजन्स, मॉडल और फोटोग्राफ्स जो हैं, फोटोग्राफ्स आपको मिल जाती हैं जो कि बड़ी खूबसूरत है, जो कि आपको पहले का वो जो टाइम है 1800 का जो टाइम है, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम है, उसकी याद आपको दिलाता है। और ऐसे इंजन ताकि बच्चे अगर जा रहे हैं ना तो बच्चे भी ना बड़े इन्वॉल्व होते हैं ऐसी चीज़ों में, तो ये आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर वेन लॉक टाउन्स भी घूम सकते हैं, ओपन मेडोज परफेक्ट फॉर लॉन्ग वॉक्स। जैसे भाई शाम के वक्त अगर आपको पसंद है ना कि आप अपने पार्टनर के साथ हो और आपने हाथ में हाथ डाल के थोड़ा घूमना है, या अपनी फैमिली के साथ भी हो और अगर आपको घूमना है तो घूम सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स के लिए परफेक्ट जगह है। हॉर्स राइडिंग और साथ ही रोमांटिक मोमेंट्स के लिए तो ये मशहूर है, यहाँ शूटिंग भी होती है। और साथ ही साथ बॉलीवुड की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे ऐसे सीन जो है मूवीज के आप हैरान जाएंगे। तो जब आप यहाँ जाएंगे ना आपको बिल्कुल सब एक सपने जैसा, बहुत ही ड्रीमी सा लगेगा कि सच में एक ऐसी दुनिया है जो इतनी खूबसूरत है, एक ऐसा शहर, एक ऐसा हिल स्टेशन जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आपने अभी तक नहीं फील किया है, नहीं गए हैं ना, तो ऊटी ज़रूर जाए क्योंकि ये तो मस्ट विजिट प्लेस है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर जाएँ। आपको लेकर के आ गई हूँ एक बड़ी प्यारी सी जगह जिसका नाम है डोडा बेटा
पीक। नीलगिरीज का हाईएस्ट पॉइंट जो कि 2637 मीटर्स पर है। और देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो फोटोज़ हैं या जो लोगों का एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि क्लाउड्स के बीच से सनरेज दिखने का जो मैजिकल मोमेंट है, यहाँ से इसी जगह से आपको दिख सकता है। तो ये इतनी प्यारी जगह है कि अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है ना ये जगह, तो मुझे लगता है कि अभी आप मार खा गए हैं जी। अभी तो आपको एक्सप्लोर करनी बाकी है, क्योंकि ये जगह ही कुछ इस कदर है, इस कमाल की है कि आपको बार बार मन करेगा कि आप ऐसी जगह विजिट ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से सुनना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो आपको बस अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है और हमारे इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और बस आप सुन सकते हैं ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट एडवाइस और जुड़ सकते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ कभी भी कहीं से भी, और आप हो सकते हैं एंटरटेन। अच्छा, ऊटी की मैं बात करूँ तो ऊटी जो है ये बड़ी खूबसूरत तो जगह है। अब होता ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि अच्छा यहाँ जा रहे हैं तो क्या खास जो है हमें मिल सकता है खाने के लिए। अच्छा अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ का वाजवान हो गया, बंगाल की बात करें तो वो फ़िश कटलेट्स हो गए या फिर झोल माछेर झोल हो गया। अब हम गुजरात की बात करें तो भाई ढोकला हो गया, राजस्थान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा हो गया, तो साउथ की बात करें तो हम ज़्यादातर डोसे के बारे में सुनते हैं कि डोसा जो है ये काफ़ी कमाल होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आपको बता दूं अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ का जो टी इस्टेट है ये काफ़ी फेमस है। नीलगिरी जो टी है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ की जो खुशबू है चाय की बड़ी कमाल होती है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेस्ट होता है चाय का। तो यहाँ पर आप जा रहे हैं तो चाय ज़रूर आप पिएगा। इसी के साथ साथ कई जो स्टेट है फैक्ट्रीज जो है आपको टूर ऑफर भी करते हैं, तो आप यहाँ पर जाके आपको खुद टी आप प्लग कर सकते हैं, अपने ले सकते हैं और उसके बाद आप पूरा प्रोसेस उनका देख सकते हैं किस तरह से टी गार्डन से टी ली जाती है। उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, प्लगिंग होती है, ड्राइंग होती है, उसके बाद फर्मेंटिंग होती है और उसके बाद पैकेजिंग। तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाता है, साथ ही टी टेस्टिंग सेशंस भी आपको जो है वो मिल जाएंगे, फ्रूटी फ्लोरल और साथ ही कुछ भाई काफ़ी मिंटी से फ्लेवर्स भी आपको इसके मिल जाएंगे वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो। टी के यानी कि चाय के अलग अलग फ्लेवर्स भी जो आपको मिल जाएंगे, जो कि मुझे लगता है ना कि वहाँ की जो चाय होती है ना वो अलग ही होती है। तो आप वहाँ की चाय ज़रूर लेकर के आइएगा ताकि जब आप घर पर चाय पिए तो आपको ये याद रहे हमेशा कि देखिए वहाँ की चाय। हम होता है ना कि घर पर कोई आता है तो हम बड़ी महंगी वाली चाय निकालते हैं और उनको पिलाने के लिए और कहते हैं अरे पता ही है ना अगर हम आसाम गए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे, पता ही जब हम वहाँ गए थे ना वहाँ से ये बड़ी फेमस चीज़ लेकर आए थे। तो ऐसे ही आप ये ज़रूर बताएं अपने गेस्ट को, फिर ये ऊटी की चाय है देखो क्या कमाल टेस्ट है, तो गेस्ट भी कहेंगे क्या बात है। चलिए आपको बता दूं मैं कि यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो ऊटी की कुजीन भी काफ़ी ज़्यादा रिच है, डाइवर्स है। तो यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ का कुजीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी बातें आपसे करी हैं, ऊटी की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा आप कुजीन की बात करें ऊटी के, तो साउथ इंडियन मील आपको यहाँ मिल जाएंगी, सांबर रसम कोकोनट चटनी डोसा ये आपको मिल जाएगा, साथ ही वर्के बिस्किट यहाँ मिल जाएंगे, क्रंची और पफ स्नैक्स जो एक यूनिक टच है ऊटी का वो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ आपको मिलेगी ट्राइबल डिशेस भी यानी कि लोकल मिलेट्स आपको मिल जाएंगे, बैम्बू शूट्स करीज आपको मिल जाएंगी। बैम्बू शूट करी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साथ ही भाई ग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ बेकरी जो है यहाँ का जो बेकरी कल्चर है, क्योंकि अब आप देखिए कि ओल्ड स्कूल टाइप आपको लगेगा, यहाँ पर सारे के सारे जो ओल्ड स्कूल बेकरीज हैं वो आपको मिल जाएगी, जहाँ आपको प्लम केक कैरेट केक फ्रेश क्रीम रोल्स यहाँ मिल जाएंगे और किंग स्टार बेकरी जो कि आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ऊटी जा रहे हैं ना तो मतलब क्योंकि आप देखिए कि बहुत ही ऐसा लगता है कि विदेशी एक टच आपको मिल गया है, एक कल्चर ऐसा दिखता है, एक आपको ट्रेडिशन ऐसा दिखता है, एक एस्थेटिक्स आपको ऐसे दिखते हैं। तो साथ ही आप जब भी वहाँ जाएँ तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में कुछ अच्छा खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या खाया और साथ ही साथ कैसी लगी आपको ऊटी की जगह जब आप घूमने जाएँ, तो थैंक यू ज़रूर बोलेगा। चलिए
तो ऊटी जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जो कि देखते ही बनता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो ज़रूर हम ये सोचते हैं कि मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, क्या हम ऐसा खाएं जो कि मज़ेदार हो। तो देखिए, आप खाने की तो बात मैंने आपको बताई है, कौन सा कज़ीन आपको टेस्ट करना है, टी आपको टी गार्डन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ शॉपिंग की। अब यहाँ की जो शॉपिंग होती है ना, ये बड़ी कमाल होती है। तो यहाँ से आप जो है होममेड चॉकलेट्स ला सकते हैं, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, मिंट चॉकलेट, फ्रूट एंड नट चॉकलेट, और साथ ही साथ ये सारी जो चीज़ें होती हैं सब हाथ से बनी होती है, बड़ी कमाल से अच्छे से उन्होंने बनाई होती है, हैंडमेड चॉकलेट्स हैं। इसी के साथ साथ नीलगिरी टी आप ले सकते हैं, यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ग्रीन टी, मसाला टी और लैवेंडर ब्लेंड सब कुछ बहुत कमाल लगेगा। और आते हैं यहाँ पर जो है वो एसेंशियल ऑयल जैसे यूकेलिप्टस, लेमन ग्रास, और साथ ही साथ ऑयल जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स कर दे, कुछ ऐसे ऑयल भी आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर वुलन्स की बात करें तो लोकली जो हैंड नीटेड जो स्वेटर्स होते हैं, शॉल्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, जो कि एक परफेक्ट जो है वो जाएंगे विंटर्स के साथ आपके, तो आप वो ले सकते हैं। ट्राइबल आर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है सिल्वर ज्वेलरीज हो गई या हैंड वोवन फैब्रिक्स हो गया, वो आपको मिल जाएंगे। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल है, तिब्बतन मार्केट है यहाँ पर, ऊपर बाज़ार है और साथ ही चारिंग क्रॉस है, और यहाँ आपको जो है अलग अलग चीज़ें जो है मिल जाएंगी, अलग अलग बहुत सारी जो मार्केट्स हैं यहाँ पर लगती हैं, तो आप यहाँ से ये ले सकते हैं, सामान बार्गेन खुद करिएगा। को लेकर के आए हूँ ऊटी की बात करें तो देखिए, ऊटी जो है हर सीज़न में कुछ ना कुछ यहाँ कोई ना कोई सेलिब्रेट कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बट यहाँ पर जो टॉप फेस्टिवल्स हैं उनकी बात करें तो समर फेस्टिवल होता है यहाँ पर मई में, बोटानिकल गार्डन्स में फ्लावर शो होता है, ऊटी लेक में बोट रेस होती है, और साथ ही म्यूजिक डांस प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरे हिल स्टेशन में होता है। टी और टूरिज्म फेस्टिवल की बात करें तो ये होता है जनवरी में, लोकल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है यहाँ पर आते हैं, और वो भी टी कल्चर का ग्रैंड सेलिब्रेशन देखने के लिए। और यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स होती है, कॉन्टेस्ट होते हैं, और साथ ही परफॉर्मेंस होती है चाय की, और उसके बाद आता है ट्राइबल सेलिब्रेशन। अब यहाँ का जो भाई तोड़ा और बगाड़ा जो यहाँ के कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर अपने अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एक ये जो रिचुअल है वो नेचर के साथ हार्मनी में होते हैं, तो ये बड़ा ही कमाल है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर जो है कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि फेस्टिवल नहीं है, जब आपको छुट्टी मिल रही है, आपको टाइम मिल रहा है, आप आना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर घूमने लायक कुछ है नहीं। घूमने लायक इतना कुछ है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन जगहें ख़त्म नहीं होगी। आइटनरी आपको चलिए बताती हूँ, बहुत सारी जगहें तो मैंने आपको बताई हैं घूमने की, और आपको आइटनरी बताती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऊटी ट्रिप प्लान तो करनी होगी, आइटनरी ज़रूर रेडी करनी होगी, नोटपैड तैयार कर लीजिए। डे वन की बात करें तो सबसे पहले टॉय ट्रेन राइड आपको लेनी है कुनूर और टू आपको ऊटी की, आपको ये पहले ही बुकिंग एडवांस में बुकिंग होती है, वो आप कर दीजिएगा। उसके बाद मिड डे की अगर बात करें तो बोटानिकल गार्डन और साथ ही यहाँ का जो आपको भाई लंच है वो करना है, और किसी हेरिटेज आपको जो है कुछ ऐसी जगह पर आपको करना है जिससे आपको वो फील जो है वो आए। इसी के साथ साथ आफ्टरनून में आपको क्या करना है, रोज़ गार्डन और सेंट स्टीफन चर्च जो है ये आपको ज़रूर जाना है, ताकि आप जो है वह उस जगह का आनंद ले सकें और साथ ही प्रे भी कर सकें। इसके बाद इवनिंग में ऊटी लेक बोटिंग और साथ ही साइकिलिंग कर सकते हैं आप, अराउंड दी जो लेक पाथ है वहाँ पर साइकिलिंग की जाती है, तो वहाँ पर साइकिल्स आपको मिल जाएंगी, तो आप वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नाइट में आप कर सकते हैं शॉपिंग, जी हाँ, तिब्बतन मार्केट से आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, और साथ ही फ़िल्टर कॉफ़ी आप साथ में लेना मत भूलिएगा। शॉपिंग करते करते ना इसका मज़ा ही कुछ और आता है कि आराम से आप वॉक करते जाएँ, कुछ कुछ खरीदते जाएँ अपने लिए, और साथ ही हाथ में हो आपके फ़िल्टर कॉफ़ी जिसका आप सब सब लेते हुए चल रहे हैं, तो वो कहते हैं ना जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है, तो इतना कमाल एक्सपीरियंस है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके बाद आ जाते हैं डे टू पे, तो डे टू वाले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जल्दी जल्दी से उठना है, और उसके बाद आपको डोडा बेटा जो पीक है यहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा सनराइज़, क्योंकि ये है सनराइज़ पॉइंट। यहाँ पर आप अच्छे से पहले जब आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करवा लीजिएगा, अच्छे से तैयार होके आइएगा ताकि फ़ोटोज़ अच्छी आएँ। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है होममेड बेकरी से, आप कोई भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी सी बेकरी हो वहाँ से आप कर लीजिए, और लोकल जो चाय जो स्टॉल्स होती हैं यहाँ पर आप चाय ले सकते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है, मिड मॉर्निंग में टी फैक्ट्री टूर आपको करना है और उसके बाद टेस्टिंग भी साथ में करते रहने हैं ताकि आप कोई भी एक जो भी आपको पसंद आए टी वो आप घर लेके जा सके। और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि 2 से 3 फ्लेवर्स आपको पसंद आ रहा है तो आई मस्ट टेल यू आप 3 फ्लेवर ले लीजिए, क्योंकि चाय का ना कभी कोई ऐसा अंदाज़ा लगा ही नहीं पाया है। आपको लगेगा कि एक फ्लेवर अच्छा है तो दूसरा आपको जो है आपको लगेगा बुरा लगेगा कि आपने उसे छोड़ दिया। अगर आप वो दूसरा उठाते हैं तो आपको लगेगा अरे यार ये फर्स्ट में तो इतना टेस्टी एक अलग ही फ्लेवर है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, और जो तीसरा फ्लेवर वो भी बड़ा कमाल का। तो आप 3 फ्लेवर जो है अगर आप ले रहे हैं, अगर आप कोई भी फ्लेवर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं ऊटी जाके, तो आप थोड़ी थोड़ी चाहे 3 चीज़ लीजिएगा। इसी के साथ बात करें, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आफ्टरनून में हेरिटेज वॉक करनी है और कॉलोनियल बिल्डिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, तो उसके आसपास इसके आगे आप वॉक जो है वो कर सकते हैं, जो कि एक कमाल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको ज़रूर देगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने day 3 पे। तो भाई day 3 पे आपको क्या करना है, सनसेट इन्जॉय करना है, वेन लकडाउंस पिकनिक आपको मनानी है, और यहाँ पर आप अपने पैक्ड स्नैक्स लेके ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ पर कम ही है कुछ मिलता है, तो इसलिए अपने अपने जो चीज़ें हैं अपने साथ लेके आइएगा। और लेट नाइट बॉनफायर के साथ आप हिल टॉप पर होम स्टे कोई ले सकते हैं जहाँ पर आपको इस ट्रिप का पूरा आनंद जो है वो आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऊटी आने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज ऊटी की मैं बात कर रही हूँ, ऊटी आने का सोच रहे हैं, तो पहले से पहले एडवांस में बुकिंग करते हुए ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम जो है वो है कूल समर्स, यानी कि March to June, और यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक रहती है। सेप्टेम्बर से नवंबर तक यहाँ का थोड़ा सा मिस्टी एक ऑटम जो है मिस्टी ऑटम रहता है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप अगर आ रहे हैं तो थोड़े से आप हल्के गर्म कपड़े लेकर के आइएगा, ठंड जो है वो कभी भी आ जा सकती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल करने के लिए टॉय ट्रेन यहाँ पर है और लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आप पहले से बुकिंग कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम स्टेज की बात करें तो आप विंटेज कॉटेजेस ही लीजिएगा, टी स्टेट जो है वो अगर आप जा रहे हैं, या फिर आप ट्राइवल होम स्टेज लीजिएगा तो आपको फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप होटल्स में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पहले बार तो रूम से निकलने का मन ना करे, अंदर ही रहने का मन करे, और इन्जॉय भी आप उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है वो ट्राइबल वाइब्स आपको तभी मिलेगी जब आप उनके घर जाके रुकेंगे, होम स्टेज पर रुकेंगे, तो आपको जो लोकल फ्लेवर है वो ज़रूर आएगा। इसी के साथ बात करें कि ट्राइबल एरियाज़ में फोटोग्राफी से पहले आप परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो भूलिएगा मत अपने आप से कुछ भी ऐसे फ़ोटो क्लिक करने से पहले। तो बस ये रहा ऊटी का प्यारा सा 2-3 दिन का जो रूट है, अगर आप चाहते हैं इसे 2 दिन में कर सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप ट्रेन के सफ़र पर हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, और धीरे धीरे जो है आप एक एक जगह जाते रहिए ताकि हर एक जगह आप अचीव कर सकें। आप कहेंगे क्या बात है, ये सारी जगह तो हमने घूम लिया, कोई भी आपसे पूछेगा ना तो आप कहेंगे सारी जगह तो हमने घूम ही लिया है, कुछ नया बताओ। तो ऐसे ही इसीलिए मैं अपना प्रोग्राम लेकर के आती रहती हूँ ताकि आप भाई घूमने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि मेंटली अगर आप फ्री होना चाहते हैं, अगर आप जो है कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, तो आपको फ्री जो है वो होना होगा, और ये फ्री होंगे जब आप ट्रैवल करेंगे, तो एक माइंडसेट जो है वो चेंज होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप चले जाते हैं, अगर आप जो है घूमने जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा असर जो है वो पड़ता है। वही साउथ की एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह ऊटी की आज मैं बात कर रही हूँ, और इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्वीन ऑफ हिल्स इसे कहा जाता है, और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे आपको सीनरी जैसी जगहें मिल जाएंगी, यहाँ पर इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, और स्पेशली यहाँ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर हनीमून कपल्स जो हैं घूमने के लिए आते हैं, जो कपल्स होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी एक परफेक्ट जगह है आपको हनीमून पे जाने के लिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ऊटी की मैं बात कर रही थी, ये ऊटी का सफ़र जो है ये एक शहर बिल्कुल बने, ये शहर जो हर मोड़ पर जो है, हर जगह पर, हर जहाँ से जो है आगे बढ़ता है, हर मौसम में परफेक्ट लगता है। ब्रिटिश चार्म, चाय की खुशबू और क्लाउड्स का प्यार, सब कुछ इसी शहर में आपको मिलता है। जी हाँ, तो चलिए इसी के साथ यहाँ आपको बता दूँ कि ऐसे ही प्यारे प्यारे सी जगह आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। ऊटी की आज बहुत सारी खास बातें मैंने आपको बताई हैं, चाहे फेस्टिवल्स की बात करें, चाहे शॉपिंग की बात करें, खाने की बात करें,
चाय की बात करें या फिर बात करें ढेर सारे क्लाउड्स की, तो देखिए अगर आप भी ऐसे ही जगह के बारे में जानते हैं, कोई और जगह जानते हैं, या ऊटी के बारे में भी अगर कुछ खास जानते हैं जहाँ एक्सप्लोर किया जा सकता है, ज़रूर बता सकते हैं। हमारा नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ आपको बता दूँ कि ऊटी की मैं बात कर रही हूँ, और आप भी ये प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी अगर आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं लाइफ से, भाई बहुत ज़्यादा मोनोटनस फील हो रहा है, या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ऊटी का प्लान ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऊटी एक ऐसी जगह है जो आपका मन जो है वो चुटकियों में ठीक कर देती है, क्योंकि ये जगह जो है आपको नेचर से जोड़ती है, और जब आप नेचर से जुड़ जाते हैं तब आप भाई बहुत सारी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि अब जो मुलाकात है वो होगी आपसे कल, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानवरचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें आपको अलग अलग जगहों पर कहीं घूमने लेकर के चलती हूँ। जी हाँ, अब देखिए आज इस प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी खूबसूरत जगह की जहाँ पर आप एक बार जाएं तो बार बार आपका मन करेगा जाने का। अलग अलग देखिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, अलग अलग खाने की डिशेस के बारे में, रेसिपीज के बारे में, कौन से फेस्टिवल है या क्या कुछ खास बात है इस जगह में, ये सारी जानकारी आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ। मैं जिस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है लोनावला। आज लोनावला की बात करूंगी और वैसे इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी और जानकारी दूं तो देखिए हर शनिवार को ना 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इस सफरनामा ये जो प्रोग्राम है

हमारे इस पे। हम चलते हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम में ना घूमने के लिए, और आज लोनावला आपको घूमने लेकर के आई हूँ, महाराष्ट्र के एक ऐसे हिल स्टेशन में जहाँ बारिश की ड्रॉप्स की एक अलग ही कहानी है, हर एक ड्रॉप की अलग कहानी है, जहाँ हर मोड़ पर आपको नेचर का एक नया रंग देखने को मिलता है, और जहाँ चिक्की फॉग और फोर्ड्स तीनों का एक परफेक्ट फ्यूजन आपको मिलता है। लोनावला जहाँ मौसम में हर हिल एक पेंटिंग सी लगती है, हर पथ पर जो है एक मिस्ट सा छाया हुआ है, और हर एक जगह ना मतलब वो बारिश की सुगंध वो डबल हो जाती है जब आप वहाँ से गुजर जाते हो। खुशबू जो है और ज़्यादा वो भीनी भीनी खुशबू आपको मदहोश करती रहती है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी चाय का कप आप अपने हाथ में ले लीजिए, और शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। हम बढ़ाते हैं आगे लेके चलती हूँ, और बड़ी प्यारी सी जगह है लोनावला, महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मुंबई और पुणे के बीच ऑलमोस्ट हाफ वे में ये लोकेटेड है। मुंबई से अप्रॉक्स कुछ 85 किलोमीटर्स पर ये जगह है, और अगर हम पुणे से बात करें तो 65 किलोमीटर्स, तो मतलब एक परफेक्ट वीकेंड एस्केप है। अगर आप चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं जो कि खूबसूरत भी हो, और आप चाहते हैं कि बिल्कुल वहाँ सुकून भी आपको मिले, तो लोनावला बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादातर लोग देखिए क्या करते हैं ना, बस देहरादून मसूरी या धनौल्टी हो गया, स्पीति हो गया, यहाँ जाते हैं, लेकिन ये सारी जगह तो हम अब एक्सप्लोर कर चुके हैं ना, यहाँ सारी जगह हम घूम चुके हैं ना, तो आप कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। और अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें हटके चीज़ें पसंद है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ धनौल्टी कसौल जाना पसंद नहीं बल्कि और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आ जाइए मेरे साथ इस सफ़र पर, यानी कि सफ़रनामा के सफ़र पर, क्योंकि मैं आज आपको लेकर के आई हूँ लोनावला। जी हाँ, आज इस जगह की कुछ खास बातें आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ट्रैवल कैसे करें, या एक्सप्रेस वे से ड्राइव करें, या अलग अलग यहाँ पर जो लश ग्रीनरी घाट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, टनल्स आपको मिल जाएंगी क्लाउड्स के साथ साथ ना, ये ड्रीमी जर्नी बन जाती है जब आप लोनावला आते हैं। जी हाँ, देखिए सेंट्रल रेलवेज का लोकल ट्रेन रूट हो, जिसमें कजरत के बाद जब आप हिल स्टेशन पर जब आप देखेंगे, जब आपकी नज़र जाएगी, जब आप चढ़ाई करेंगे, तब एक मोड़ पर पोस्ट कार्ड जो है वो जैसे मतलब एक फीलिंग आती है, जैसे बन जाता है कि इतनी खूबसूरत जगह है कि हर एक सीन आपको ऐसा लगेगा जैसे वो सीनरी वाला होता है ना, जो वो पेंटिंग में बनाते हैं ना, तो लगता है कितना खूबसूरत है, बस वैसे ही आपको फील होगा। एक फ्रेश मिस्टी ब्रीज आपको जो है वो फील होगी, हर तरफ आपको ग्रीनरी महसूस होगी, और हर एक पीसफुल साइलेंस में जो है वो आपको सिर्फ माउंटेन्स जो है वो आपको दिखाई देंगे, और वो ही पीस जो है ना वो आपको सिर्फ वही मिल सकता है, वो माउंटेन से ही आपको पीस मिल सकता है। ये शहर आपका स्ट्रेस बिल्कुल डिसॉल्व कर देगा, ये शहर आपको एक सुकून देगा, ये शहर आपको एक नई ऊर्जा देगा, ये शहर आपको मस्ती करने का मौका देगा। चलिए इसी के साथ अभी एक छोटा सा ब्रेक में लेती हूँ, जिसके बाद आपको बताऊँगी कि लोनावला आप जा रहे हैं अगर, या प्लान कर रहे हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं, तो क्या क्या जगहें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर कोई धनौल्टी मसूरी कभी मनाली कसौल चाहता रहता है, बट ये तो जगहें ऐसी है ना कि जो हम एक्सप्लोर वैसे कर चुके हैं, वही इन जगहों के बारे में भी आपको स्पेशल चीज़ें कभी और ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज ना आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ या बता रही हूँ जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लश ग्रीन तो मिलेगी ही मिलेगी, सुकून आपको मिलेगा, माउंटेन्स आपको मिलेंगे, और साथ ही वो मज़ा वो मस्ती हर कुछ आपको मिलेगा। और सब कुछ जब मिल जाता है ना, तो मतलब मुझे लगता है कि और जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए, कसौल धनौल्टी मसूरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको जो है और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे आगे चीज़ें जो है एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब एक वीकेंड का अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, तो वीकेंड का बहुत ही परफेक्ट सा एस्केप है लोनावला। जी हाँ, लोनावला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, और ये एक हेरिटेज साइट भी है जहाँ हिस्ट्री और लेजेंड्स जीवित हैं। अब यहाँ लोहागढ़ अगर मैं फोर्ट की बात करूँ, तो लो जो है का इसका मतलब है आयरन,
और ये फोर्ट जो है एक आयरन वॉल जैसा दिखाई देता है। साथ ही शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को स्ट्रैटेजिक बेस जिसका है वो बनाया था। रेनी सीजन में ट्रैकिंग करते वक्त क्लाउड्स आपके साथ चलते हैं, टॉप पर पहुंचते ही पूरा जो लेक है, पौना लेक है जो, और ये जो पौना लेक है यहाँ से आपको दिखाई देता है, वैली का नज़ारा जो है वो आपको दिखाई देता है। और जब आप ये चीज़ें देखेंगे ना वो अनबीटेबल लगेगी, वो इतनी कमाल लगेगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस जगह पे इतनी खूबसूरती कैसे, इतनी खूबसूरत ये जगह है ना, इतनी प्यारी ये जगह है। अब यहाँ मैं बात करूँ तो वीसापुर फोर्ट भी है, ये लोहागढ़ के जस्ट ऑपोजिट में है और थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा इसकी जो ट्रैकिंग है थोड़ी सी टफ है। वाटर स्ट्रीम्स ट्रेल के बीच में ये बहती हैं। एडवेंचरर जो अगर कोई भाई लवर है, कोई काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, तो उनके लिए तो ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है वीसापुर फोर्ट की अगर मैं बात करूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर आती है कारला केव्स और सेकेंड सेंचुरी बीसी की बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर। इंडिया का लार्जेस्ट चैत्य यानी कि प्रेयर हॉल है ये, और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि वुडन बीम्स अब भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉन्ग है शायद जैसे 2000 साल पहले थी, और 2000 साल बाद भी आज भी बिल्कुल स्टिल है, वैसे ही है। बारिश धूप कितने भी मौसम ख़राब हो जाए आज भी जो वुडन बीम्स है सेम है। एक जायंट स्टोन लायन स्कल्पचर भी गेट के पास है जो कि एक बहुत ही एस्थेटिक बहुत ही खूबसूरत वाइब्स देता है उस जगह को। तो अगर आप भी नहीं गए हैं अभी तक, लोनावला एक्सप्लोर नहीं गई हैं ये जगहें, तो ज़रूर जाइए। मैं इंसिस्ट करती हूँ आप ज़रूर जाएं क्योंकि ऐसी जगह पे जाना तो बॉस बनता है। इसी के साथ साथ अगली जगह की मैं बात करूँ तो भाजा केव्स की अगर हम बात करें तो कारला के पास लोकेटेड है एंशियंट मेडिटेशन स्पेस विद स्टूपा स्कल्पचर, और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल वाइब्स आपको मिलेगी, और साथ ही एक स्मॉल वाटरफॉल भी है यहाँ पर पास में ही जो कि आपको इतना सुकून देगा। मतलब आपने जो भाई बचपन में हम सुनते थे ना स्टोरीज, दादा दादी नाना नानी से जो हम स्टोरी सुना करते थे, ऐसी ही कुछ ऐसी कहानी बताया करते थे ना कि एक जंगल था, वहाँ पर अलग अलग जो है छोटे छोटे वाटरफॉल थे, वहाँ से जो है एक नन्ही सी गुड़िया निकलती है या एक छोटा सा बच्चा जो है वो जा रहा होता है। मतलब आप जब उस सीन को इमेजिन करेंगे ना तो आप ऐसा लगेगा आपको कि आप कहानियों में ना खो गए हैं, और आपको बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा क्योंकि कहानियाँ जो है वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, वो इमेजिनरी वो ड्रीमी प्लेस आपको मिल जाएगी और आपका उस जगह से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। तो आप ज़रूर लोनावला को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और लोनावला की अलग अलग बातें मैं कर रही हूँ। अच्छा मूवीज़ में तो हमने बड़ा नाम सुना है, बड़ा हमने ना ये चीज़ देखी है कि भाई खंडाला चलते हैं, लोनावला चलते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी जगहें हैं, बड़ी सीनरिक जगहें हैं जहाँ पर शूटिंग भी होती है, जहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए क्योंकि ये प्लेस ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है। लोनावला के मॉनसून सीन्स की बात करें तो ये एक फैंटेसी फिल्म से भी बिल्कुल भाई कम नहीं है, इतनी खूबसूरत है आपको लगेगा जैसे आप बॉलीवुड की एक दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर आप भी फ़ोटोज़ क्लिक कराएं ना तो बिल्कुल एक एक्ट्रेस जैसा महसूस करेंगे, एक एक्टर जैसा महसूस करेंगे क्योंकि आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप किसी मूवी में पिक्चराइज हो रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं बुशी, यहाँ पर बुशी डैम है, जब ओवरफ्लो होता है तो पानी जो है वो स्टेयर्स से बहता है, लोग बैठकर पानी के बीच में मस्ती करते हैं, क्राउडेड थोड़ा सा ये ज़रूर होता है पर फन जो है वो गारंटीड है क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी है। इसके साथ साथ यहाँ पर है एक टाइगर पॉइंट भी। अब ये टाइगर पॉइंट यहाँ क्या है, क्यों इसे टाइगर पॉइंट कहते हैं, चलिए बताऊँगी वो भी। महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्यारी सी सूदिंग सी जगह, जहाँ जाएंगे ना तो वापस आने का मन ही नहीं करेगा। आज लोनावला के बारे में आपको बता रही हूँ तो देखिए लोनावला के मॉनसून की अगर हम बात करें तो ये एक फैंटेसी फिल्म से कम नहीं लगता है, एक बड़ा ही कमाल के सीन यहाँ लगते हैं मॉनसून के दौरान। साथ ही यहाँ पर भूशी डैम है जो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा क्राउडेड सा रहता है। अच्छा मैं आपको बता रही थी टाइगर पॉइंट के बारे में, क्लाउड्स लिटरली आपको टच करते हैं यहाँ,
सनसेट और सनराइज दोनों ही बड़ा मैजिकल है। फॉग आपको यहाँ पर मिल जाएगा और फॉग में ऐसा लगेगा जैसे आप चल रहे हैं, और चाय के साथ या पकौड़े के साथ ही और ज़्यादा एक कमाल लगता है, एक ब्लिस लगता है। अब यहाँ टाइगर पॉइंट के साथ साथ ना पास ही में, टाइगर पॉइंट के पास ही है लायन पॉइंट, जी हाँ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ध्यान से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग यहाँ देखने को मिलती है और एक बड़ा थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको भाई जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें डर लगता है थोड़ा सा जब बारिश होती है या थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की मैं बात करूँ, अगर आपको डर लगता है तो ना जाएं। लेकिन हाँ, अगर कुछ एडवेंचरस आपको एक्सपीरियंस करना है, कुछ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करना है तो लायन पॉइंट ज़रूर जाइए। इसी के साथ क्यून फॉल्स की अगर मैं बात करूं, 200 मीटर्स टॉल यहाँ पर थ्री टायर्ड का एक फॉल है और एक फोटो स्पॉट के रूप में भी ये बड़ा फेमस है। ट्रैक करके आप यहाँ पर जाइए तो बहुत मज़ा आने वाला है। अवॉइड कीजिएगा कि आप जो है किसी की हेल्प के साथ, मतलब किसी टू व्हीलर या कैसे आप जाएं, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश भी ना करें क्योंकि अगर जब आप ट्रैवल करते हैं, आप जब खुद चल के जाएंगे ना, तो उस जगह की ना वैल्यू और ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाती है। उस जगह जब हम उस एम तक, उस गोल तक पहुँचते हैं ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए ज़रूर कहूँगी कि आप पैदल जाइए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर है नैन घाट, यानी कि यहाँ पर जो है रिवर्स वाटरफॉल की मैं बात करूँ, वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग यहाँ पर विंड्स, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। नेचर का ये अजीब सा मैजिक आपको हैरान कर देगा, नेचर का अजीब सा मैजिक आपको वही इस वही सोच में डाल देगा कि कैसे, मतलब पानी जो है वो रिवर्स वाटरफॉल, इसीलिए फेमस है क्योंकि पानी जब नीचे गिरता है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वो पानी को ऊपर की ओर धकेल देती हैं, तो ये इसीलिए कहा जाता है इसे रिवर्स वाटरफॉल, जो कि बड़ा ही कमाल है। चलिए कुछ और भी आपको चीज़ें बताऊंगी, यहाँ पर कुछ खाने पीने की हम बात करेंगे, क्या आप भाई खा सकते हैं, क्या फेमस है वो बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करें लोनावला की, और मैं आपको बता दूँ कि लोनावला जो है फूडीज़ के लिए हेवन है, और ये जो है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी हाँ, अब लोनावला चिक्की की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है काफ़ी कमाल है। आइकॉनिक ब्रांड्स वैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पीनट, सेसमे, पिस्ता, चॉकलेट्स, हर फ्लेवर का एक फ़ैन बेस है जो कि जो यहाँ की चिक्की है उसमें आपको मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी टेस्टी होती है, और अगर आपने नहीं खाई ना तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप फ़ैन हो जाएंगे इस चिक्की के और घर ज़रूर लेकर के जाएंगे। इसी के साथ साथ लोकल महाराष्ट्रियन कुजीन आपको मिल जाएगा, यानी कि पिथला भाकरी, मिसल पाव या फिर कांदा भाजी, ये आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड से लेकर ट्रेडिशनल थाली तक आपको यहाँ पर सब मिलने वाला है महाराष्ट्रियन स्टाइल में। इसी के साथ साथ भाई जब आप पहाड़ों में जाते हैं ना, जब बादल एकदम आपके पैरों को छू लेते हैं या आप फॉग में आप जा रहे हैं, तो एक चीज़ बड़ी काम की लगती है, वहाँ पर चाहिए होती है, हमें बहुत ही ज़रूरत होती है, और वो होती है चाय की। और चाय के साथ अगर वड़ा पाव हो जाए तो क्या बात है, और सोने पे सुहागा अगर आपको कटिंग चाय मिल जाए। देखिए, गरम गरम चाय, स्पाइसी वड़ा पाव और फुल मुंबई वाली फीलिंग जो है ये आ जाती है। हर नुक्कड़ पर आपको एक बेस्ट वड़ा पाव मिल जाता है, तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही हिल कैफ़ेज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर जर्मन बेकरीज़ हैं जहाँ पर आपको एक फ्यूजन मिल जाता है जो कि इंडियन और साथ ही जर्मन एक फ्यूजन जो है आपको मिलता है, बेकरी मिलती है जहाँ पर आपको बड़े कमाल के टेस्टी टेस्टी आपको रेसिपीज़, आपको कमाल के जो जो स्नैक्स है वो मिल जाएंगे, जो कमाल के डेज़र्ट है वो मिल जाएंगे, और साथ ही यहाँ से वैली का व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। जो जो कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे तो कैफ़ेज़ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। इसी के साथ डेज़र्ट की अगर बात करें तो फज केक, प्लम केक या ड्राई फ्रूट रोल्स की अगर मैं बात करूं, तो जो मीठा खाते हैं, जिन्हें मीठा पसंद है या जो स्वीट लवर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रीट है। तो यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बनी हुई मिल जाएंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
इसी के साथ शॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो लोनावला मार्केट का स्टाइल ही कुछ अलग है। चिक्की एंड फज जो पैक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे लॉन्ग शेल्फ लाइफ के साथ, और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट वर्दी हैं ये, तो आप पैक करवा सकते हैं। और साथ ही जो है वो यहाँ पर अरोमेटिक जो ऑयल्स हो गए जिनका अरोमा बहुत

बाजार है लोनावला का, वो आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑथेंटिक और देसी वाली जो फीलिंग है वो आनी गारंटेड है जब आप इस मार्केट में घूमने के लिए आएंगे। फिलहाल आज ना मैं बात कर रही हूँ लोनावला की। बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आज आपको लेकर के आई हूँ। जी हाँ, लोनावला के बारे में बात करें, यहाँ के आपको मैंने खाने पीने के बारे में भी आपको बताया कि क्या क्या जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और आप क्या क्या यहाँ से ख़रीद सकते हैं वो भी हमने बात करी। चलिए बात करते हैं आप कुछ एडवेंचर और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिन्हें पसंद है तो क्या क्या आपको मिल जाएगा। भाई थोड़ा सा थ्रिलिंग तो हो जाना चाहिए ना। चलिए आपको बता दूँ, आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं लोहागढ़ या फिर राजमची, तिकोना या ड्यूक्स नोज हो गया, ये सब ऐसी जगहें हैं जो कि मॉनसून स्पेशल है। और डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मॉडरेट से थोड़ी सी टफ है, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। डेला एडवेंचर पार्क, यहाँ पर ज़िपलाइनिंग, ATV, यहाँ पर राइड्स आप कर सकते हैं, वॉल क्लाइंबिंग, जॉबिंग, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि एडवेंचर पार्क है जो कि आपको ये सारे जो है फन एलिमेंट्स आपको देगा और ये सारी चीज़ें आपको देगा, ये आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है साइकिलिंग और जो बाइकिंग है ये भी होती हैं। तो एक साइड पर हिल्स हैं, दूसरी साइड पर वैलीज हैं, सनराइज राइड्स अनफॉरगेटेबल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए कि आप किसी बस से कार से ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ ट्रैवल करना जो आसपास जगहें हैं वहाँ आप साइकिल ले लीजिए, अपने पार्टनर के साथ साइकिल से जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साइकिल नहीं, तो आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं, बाइक आप रेंट कर सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर हम कैंपिंग की बात करें तो जो पौना लेक है ये बहुत ही खूबसूरत है, ये एक टॉप चॉइस होगी आपकी अगर आप लेते हैं। और यहाँ पर आप बॉनफायर, स्टार गेजिंग और पीसफुल एनवायरनमेंट जो है रहता है, एक सुकून आपको मिलता है। तो एडवेंचर ग्रुप से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कैंप्स भी आप बुक कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, जैसा भी आपकी जो पॉकेट है वो अलाउ करें, उस तरीके से आप अपना बजट रख के आप कैंपिंग प्लान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ की आइटनरी की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो परफेक्टली अगर आपको चाहिए दिन, तो दो दिन की मॉनसून की एक आइटनरी जो है वो होनी चाहिए आपकी, जहाँ पर आप आके एक सुकून प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आप आके आपको इतना कमाल लगेगा कि आपको घर जाने का दोबारा मन नहीं करेगा। चलिए तो इन दो दिनों में आपको क्या करना है, लोनावला की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर हमने देखा है कि बॉलीवुड जो मूवीज़ हैं वो शूटिंग की अगर हम बात करें, या फिर बड़े सारे लोग हैं जो अपने हनीमून के लिए भी लोनावला जाते हैं, कई सारे लोग हैं जो घूमने के लिए, एडवेंचर करने के लिए लोनावला जाते हैं। तो आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं, मतलब क्यों जाना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, क्या फिर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आपको कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स ट्राई करने के लिए जाना चाहते हैं, जल्दी से मैसेज करके मुझे बताइए। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं हमारे इंटरनेट रेडियो पर भी। जी हाँ, आप आसानी से इसे हमारे इंटरनेट रेडियो पर सुन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉयड या अपना iOS मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेनी है हमारी एप्लीकेशन, जहाँ से आप ढेर सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। ये खास प्रोग्राम भी सफ़रनामा आपको मिल जाएगा, पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएंगी वहाँ पर आरजे साक्षी, यानी कि मैं, और आप मेरे सेक्शन में जाके ढेर सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ढेर सारी बातें सुन सकते हैं, एक्सपर्ट एक्सपाई सुन सकते हैं, और साथ ही ये खास प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आइटनरी बताऊंगी। अब आइटनरी की अगर हम बात करें तो दो दिन एक परफेक्ट आइटनरी अगर आपको चाहिए दो दिन की, तो वो मेरे पास ज़रूर है। तो आपको सबसे पहले डे वन पर क्या करना है, मॉर्निंग ड्राइव करनी है आपको, आप मुंबई से पुणे आ जाइए, और साथ ही चाय का बीच में स्टॉप ज़रूर लीजिएगा, खंडाला घाट आप ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ साथ आपको विजिट करना है यहाँ पर जो कारला केव्स है या फिर भाजा केव्स है विथ अर्ली सनलाइट, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लंच करना है यहाँ पर, आपको ही किसी कैफ़े में आप लंच कीजिए जो काफ़ी कमाल लगेगा, और यहाँ से व्यू वैली का बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इवनिंग में आपको भुशी डैम, टाइगर पॉइंट, सनसेट के लिए जाना है,
और वड़ा पाव खाते हुए सनसेट आपको एंजॉय करना है, और रात में बॉनफायर, लाइव गिटार, वो भी आपको कैंपिंग साइट पे मिल जाएगी पौना लेक पे। तो ये

सारी चीजें आप डे वन पर, मतलब आप देखिए कितनी सारी चीजें ना जो हमने सिर्फ एक ही दिन में निपटा ली। तो आप ये जो है एक दिन में वही जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अलग अलग जगहें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग चीजें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एक जगह पर अगर आपको एक दिन में इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो सोचिए दूसरे दिन में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दूसरे दिन की भी आइटनरी आपको बताऊंगी। सफ़रनामा की हम बात करें तो आज जिस जगह पर आपको घूमने के लिए लेकर के आई हूँ वो है लोनावला। वैसे तो हर सैटरडे अलग अलग जगहों पर आपको लेकर के जाती हूँ, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी होती हैं हमारी बातें। फिलहाल आपको बता दूं डे वन आइटनरी की हमने बात करी है। डे टू की बात करें तो सबसे पहले सनराइज़ आपको देखना है और ट्रैक करनी है उसके लिए लोहागढ़ फोर्ट की। इसके बाद यहाँ से आप सनराइज़ ज़रूर देखें। ब्रेकफास्ट करना है आपको, लोकल होममेड जो पराठा हो जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, किसी फोर्ट बेस के आसपास मिल जाएंगे, तो स्ट्रीट फूड ट्राई कीजिएगा वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपको विज़िट करना है लायंस पॉइंट, आपको विज़िट करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, यहाँ पर आपको नज़ारे मिल जाएंगे और साथ ही रिवर्स वाटरफॉल। ये वैसे तो सीजनल होता है, अब डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हैं। इसके साथ साथ ड्यूक्स नोज ट्रैक आपको विज़िट करना है, जाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। और आफ्टरनून में आप शॉपिंग स्प्री मार्केट में जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, और इवनिंग में आप अपने भाई वापस अपनी जगहों पर, अपने जो होटल है वहाँ पर वापस आ सकते हैं अपने बैग फुल ऑफ चिकी फोटोज़ और पीस के साथ। आप जल्दी से झटपट से आ जाइए क्योंकि अब लोनावला जो है वो आपको प्यारा लगेगा लेकिन जाने नहीं देगा, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं ना कि भाई जाने दिया जाए, आपका ऑफिस का काम है, तो भाई जल्दी जल्दी आपको निकलना होगा। चलिए बस कुछ खास टिप्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, अब वो क्या है बताऊंगी। और आज ना इस जगह के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ, अगर आप इस जगह को जाना चाहते हैं और तो आप जो है मॉनसून टाइम आ सकते हैं, लास्ट मॉनसून, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है इस टाइम पर। तो आप जून से लेकर सितंबर तक जा सकते हैं। अगर आप ट्रैक फ्रेंडली हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर से फरवरी मंथ में आइए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ एसेंशियल आपको क्या क्या रखने हैं, रेनकोट आपको रखना है, रेनकोट के साथ साथ आपको हाइकिंग शूज़ रखने हैं, वाटरप्रूफ बैकपैक रखना है, अपने मोबाइल फ़ोन के लिए भी एक वाटरप्रूफ ट्रांसपेरेंट जो कवर होते हैं वो आप रख लीजिएगा, ताकि आपका मोबाइल फ़ोन आप बारिश में भी चला सकें, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें। अब अवॉइड भुशी डैम ऑन वीकेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्राउडेड होता है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी उठ के आइएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अपने साथ कैश कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोकल वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो कि थोड़ा सा टेक सेवी कम है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोकल जो कैश है वो आप लोकल वेंडर्स के लिए लेकर चलें। इसी के साथ अगर आप जो है आप ट्रेल पर निकल रहे हैं, तो आप वाटरफॉल ट्रेन पर अगर निकल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आसपास लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, उनके कल्चर की, हेरिटेज की। ऐसे ही आप कुछ भी ना करें, कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं तो अच्छे से जाएं, और बहुत ही ख़ास बात, गंदगी ना मचाएं। चलिए देखिए, हर कोई जाता है ना, मनाली जाता है और कसौल जाता है या हल्द्वानी जाता है, धनौल्टी जाता है, लेकिन इन जगहों को तो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, इन जगहों के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन और कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। लोनावला एक बहुत ही प्यारी सी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, कुछ अलग हटकर भी हो जाएगा, आप एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा। इसी के साथ बस कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है, कुछ आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम यहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक है। अगर आपको बारिशें पसंद है, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में जाइए, तो आपको एक अच्छा ट्रैक ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ साथ देखिए, ये था आपको मैं बता दूं हमारा लोनावला का सफ़र, जहां बारिश एक कहानी बन जाती है, हर मोड़ पर नेचर आपको सरप्राइज करता है और चिक्की का टेस्ट कभी नहीं आप भूल पाते हैं। तो आप बल्ली ज़रूर जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं, लोनावला जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ के जो कमाल के सीन हैं उनको भी शूट करके आइए, अलग से आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। आजकल कितना सब कुछ है ना, कि डिजिटल मीडिया पे आप कितना सब कुछ डाल सकते हैं अपना, आपके पास स्मार्टफोन है, रिकॉर्ड कीजिए, फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए अगर आप गए हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस जगह के बारे में, तो भाई और कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं, या फिर आपको कोई जानकारी और हमें आप बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं,
ज़रूर कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव कृष्णा और 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। बातें होती हैं सेहत के बारे में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन इस हेल्थ को बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, और कोशिश तब होगी जब आपको सही कोई एडवाइस देगा। सो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और आज हम ऐसे ही कुछ विषय पर बात करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए या फिर मोटापे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ नई दवाइयों के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र का। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा जी फॉर हैविंग मी हियर एट रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम।
0: जी, तो सबसे पहले सर आपसे सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कौन सी दवाइयाँ क्या यूज होंगी जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहला सवाल यही है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, जिसको आजकल डायबेसिटी कहा जाता है, क्या है ये, आपस में कैसे कनेक्शन है इन दोनों का?
1: जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल टर्म चल रहा है डायबिसिटी, जो कि कोई नया टर्म नहीं है, काफ़ी पुराना टर्म है। डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, और इट इज़ ए नॉट ए न्यू टर्म, इट इज़ ए ओल्ड टर्म, बट ये कह सकते हैं आप कि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के केसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ओबेसिटी भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारी कंट्री के लिए डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी बोथ। अब आप देखेंगे कि जिनको ओबेसिटी होती है उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनको हम बोलते हैं कि जो कि नॉन इन्फेक्शन के बिना होती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और जिनको ओबेसिटी होती है रिस्क ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल ओबेसिटी के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी रिसेंटली बहुत सारी हमारे देश में 3-4 दवाइयाँ आ गई हैं, और इस देखा होगा आपने काफ़ी हाइप भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। तो दे आर इंटरलिंक्ड सिंस लॉन्ग, बट ये कह सकते हैं कि अब इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न भी है और हमारी कंट्री के लिए भी कंसर्न है। तो हमको डायबिटीज़ को भी कम करना होगा और ओबेसिटी को कम करना होगा। तो अगर हम ओबेसिटी पे काबू पा सकते हैं तो 100% हम डायबिटीज़ के केसेस को भी कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी ओबेसिटी जिनको है उनको डायबिटीज़ का खतरा नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है, और ओबेसिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जन्म लेकर आती है, क्योंकि आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो कि टिक टिक कर रहा है और कभी भी आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। डॉक्टर साहब, डायबिसिटी की बात जब आप कर रहे हैं, ये शब्द जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग अब इसके बारे में बात करने लगे हैं, अब ओबेसिटी से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से आगे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ये हमें विस्तार से बताइए।
1: जैसे कि अगर किसी को एक बार आपने देखा होगा, एक तो जेनेटिक एंगल भी होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें रिस्क ऑफ वेट गेन का खतरा होता है, जिसमें जिनकी मदर्स को डायबिटीज़ होता है, तो आप देखेंगे उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बच्चों को भी ज़्यादा होता है और उनका वेट गेन की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली भी आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पिछले मैं बोलूं कि 25-30 साल में तो जो हमारी लाइफ अर्बन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले रूरल लाइफस्टाइल ज़्यादा थी, पहले लोग रूरल में ज़्यादा रहते थे, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि देखते हैं कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी, जिसको एक बार वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपका वेट गेन एक सीमा से बाहर चला गया है, आपका BMI बहुत ज़्यादा हो गया है, कि जो आपका देखें BMI 25 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का 30 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे देश में अभी ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी 25 करोड़ लोगों को हमारे देश में ओबेसिटी है, डाटा में देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जिसको एक बार जिसका वेट गेन हो जाता है तो उसको वापस वेट को लूज करना इतना आसान नहीं है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। तो आपको सारी बातें पता होती हैं, आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन उसको फॉलो करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है। दैट इज़ वाई वी ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। तो अगर आप अपने वेट को कम कर पाते हो तो आप इसको, जो हम बात करें बीमारियों की, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज आती है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू आता है, फिर फैटी लीवर आता है, फिर हाइपरटेंशन आता है, फिर किडनी के इश्यूज आते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन के इश्यूज भी आते हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप एक अपने वेट को कोई व्यक्ति कंट्रोल करने पर ज़्यादा ध्यान दे, फिजिकल एक्टिविटी करे, सीडेंट्री लाइफ को छोड़े और अवेयर भी रहे, और आप देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आपको पता भी चलता रहता है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डॉक्टर के पास जा पाएँ, लेकिन अगर आप अवेयर रहते हैं और आप आज की टेक्नोलॉजी को सही दिशा में यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने वेट के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि खुद आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, इससे पहले की जो सारी चीज़ें होती हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लेस अदर देन मेडिसिन, वो आप घर पर कर सकते हैं। तो अगर ये कोई करता है तो ये सारी बीमारी जो मैंने भी नाम लिया इनसे बच भी सकता है और उसकी लाइफ अच्छी रह सकती है।
0: बिल्कुल, यानी बीमारियाँ बहुत सारी हैं और खुद को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज ही ये जो आप चुटकियों में सामान मंगा लेते हैं और घर की सीढ़ियाँ उतरना नहीं चाहते हैं, रोड तक जाना नहीं चाहते हैं, पार्क में पहुँचना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखिए, थोड़ा वॉकिंग शुरू कीजिए, ताकि आपका ये जो बढ़ रहा वेट है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जो शर्ट का साइज़ है वो कब 40 से 42 और 44 पहुँच गया है, सिर्फ और सिर्फ आपके मोटापे की वजह से, वो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। ओबेसिटी क्या है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और बातें करेंगे आगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के माध्यम क्या हैं और डायबिटीज़ की दवाइयाँ और किन किन तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में जो बहुत बढ़ रहा है, ज़रा सा स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसके बारे में करेंगे चर्चा इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप ऑल इज़ वेल सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे इंटरनेट रेडियो की ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, और इस ऐप के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आप ये पूरा पॉडकास्ट कभी भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। और ऑल इज वेल में आज हम बात करें हैं डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के और यूजेस के बारे में। क्या क्या नया कुछ हो रहा है मेडिकल फील्ड में इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, इस पर भी बात करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन में, डायबिटोलॉजिस्ट हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत सारी बातें हम ओबेसिटी के बारे में आपसे कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि ओबेसिटी जो है वो अनगिनत बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन अब ओबेसिटी की बात जब हम करते हैं तो सपोज मेरा वेट 60 kgs है, मेरी हाइट के अनुसार, मेरी हाइट है 5'5" और अगर मैं 50 to 60 kgs के बीच में हूँ तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ओबीस कब बनूंगी या कब ओबीस की कैटेगरी में आ जाऊंगी, ये कैसे पता लगाया जा सके?
1: जैसा कि आपने कहा कि हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब कहते हैं कि ओबेसिटी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पता चले कि मेरा वेट मेरे हाइट से ज़्यादा या मेरे जो मेरा होना चाहिए अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके पास फ़ोन होता है और उस फ़ोन में सबके पास आजकल नेट होता है जो कि हर चीज़ में देखते हैं हम, और इसको हम अच्छे वे में अपनी हेल्थ पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो BMI होता है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो सबसे कॉमन बहुत ही बेसिक होता है, अगर किसी कोई अपना BMI देखता है तो BMI देखने का तरीका वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है, वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मली होता है BMI नॉर्मली 18 to 24 होता है नॉर्मल BMI। अगर किसी का BMI 24 से ज़्यादा हो जाए, कि सपोज उसकी हाइट और वेट को हम देखें और अगर उसका BMI जो है 24 से ज़्यादा हो जाता है, 25 के ऊपर चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ओबेसिटी में आ रहा है। लेकिन इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि कितना BMI ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा किसी का BMI अगर 27 से ज़्यादा हो जाता है तो वो सीवियर ओबेसिटी में होता है, अगर किसी का 30 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही मॉर्बिड कंडीशन हो जाती है और अपने आप में एक डिजीज़ है। तो आप देख रहे हो कि ये जो हम बातें करते हैं कि दवाई किसको लेनी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, तो जिनका BMI 27 से ज़्यादा और जिनका 30 से ज़्यादा हो, तो उन लोगों के लिए जो नई दवाइयाँ आई हैं वो लोग इन दवाइयों का उपयोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। मैं ये बात पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि कोई दवाई एकमात्र मैजिकल बैंड नहीं होता है कि आप दवाई लें और आप अपनी चुटकियों में सब ठीक हो जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ये जितनी भी दवाई आ रही हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं, खासतौर पे मेडिसिन वाले और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कि आप इन दवाइयों के साथ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट पे उतना ही ध्यान दें जितना आप पहले दे रहे थे। तो अगर कोई सोचता है कि मैं दवाई ले लूंगा और ये नहीं करूंगा तो कभी वेट कम नहीं होगा, तो ये बेसिकली मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है। तो अगर किसी का BMI 27 से ज़्यादा होता है तो, और उसको कोई एक ऐसी बीमारी होती है जो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, लिपिड का इशू हो, डिसलिपिडीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, या कोई और ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, वो लोग इस दवाई के लिए, दवाई लेने के लिए उनका इंडिकेशन होता है, वो ले सकते हैं, या जिसका BMI 30 से ज़्यादा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ द काउंटर वाली दवाई नहीं है कि आप जाएं और अपने से ले लें, ये दवाई आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पे, और डॉक्टर को भी ये सारे बैकग्राउंड को देखना होगा और ये भी देखना होगा कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं।
0: बिल्कुल। अब दवाइयों की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो बात छेड़ी है कि ये दवाई ऐसे नहीं लेनी चाहिए या बहुत अपने आप जाके नहीं लेनी चाहिए, मिलेंगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं कुछ दवाइयाँ, जिसमें आप मुंजारो की बात कर लीजिए, ओज़ेम्पिक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भारत में आ चुकी है और आ रही है और लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ बहुत पतले हुए हैं हाल ही में, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एकदम ड्रास्टिक चेंज उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई दिया है, लेकिन वो चेंज बहुत पॉजिटिव नहीं दिखा है। पतले हुए हैं नो डाउट, पर चेहरा जो है वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि स्किन और मसल्स पे इसका इफेक्ट शायद पॉजिटिव उतना नहीं पड़ा है जितना ओवरऑल वजन पे पड़ा है। तो ये दवाइयाँ जो हैं, ये इंजेक्शन्स हैं, दवाइयाँ हैं, क्या इनका इस्तेमाल है, क्या कॉस्ट है, ये मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी।
1: मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा मैम, जिससे कि लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ कि बेसिकली ये दवाई हैं क्या। जैसा आपने बोला कि ओज़ेम्पिक, विगोवी और मौनजारो, ये तीन दवाइयाँ काफ़ी न्यूज़ में हैं और रिसेंटली ओज़ेम्पिक भारत में लॉन्च भी हुई है, जिसको कि अब डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले हमारे देश में मौनजारो और विगोवी को ओबेसिटी के लिए और मौनजारो को डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सारी दवाइयाँ 2025 में रिसेंटली न्यूज़ में भी आई हैं और ये मोस्टली लॉन्च भी 2025 में ही हुई हैं। लेकिन ये 2017 से, मैं आपको बताऊँ, ओज़ेम्पिक का उपयोग 2017 से डायबिटीज़ में किया गया है, और पहले इसको डायबिटीज़ के लिए ही उपयोग किया गया था। जब इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दिया गया था, जिसका ट्रायल, स्टेप ट्रायल हुए थे, इसमें भारत के डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया था, तो स्टेप ट्रायल में ये पता चला कि ये दवाई शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ वेट को भी कम करती है, क्योंकि ये दवाई जिस तरह से काम करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेन के के हार्मोन्स पे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं GIP और DIP। ये दो हार्मोन है, ग्लूकोगोन दैट इज ग्लूकोगोन इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ब्रेन हार्मोन्स, ये हमारे एपिटाइट को सप्रेस करती है।
0: आपको भूख लगनी कम हो जाती है,
1: आपको भूख लगनी कम हो जाती है, बिल्कुल सरल भाषा में आपका पेट जल्दी भर जाता है। और ये आपके जो इंसुलिन के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं, या आप कह सकते हैं ग्लूकागोन जो होता है, जो कि शुगर को ज़्यादा रिलीज करने के लिए एक तरह से रिलीज ज़्यादा कराता है लीवर से, ये शुगर के रिलीज को रोकती हैं लीवर से, और मेन ये आपके ब्रेन में एपिटाइट को सप्रेस कर देती हैं, और अर्ली सेटाइटी या अर्ली फुलनेस हो जाता है। तो जब ये पता चला कि ये
0: थोड़ा सा खाना खा के आपका पेट भर जाता है,
1: तो ये दवाइयाँ आपकी अर्ली सेटाइटी करती है, तो आदमी कम खाता है, और उससे उसको ये, लेकिन ये नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स को मिमिक करती हैं, बेसिकली ये हार्मोन्स हैं ये तीनों दवाई, तो ये नेचुरल मिमिकर हैं जो आपकी बॉडी में, तो ये वैसे ही काम करती हैं जैसे ब्रेन के नॉर्मल सिग्नल्स काम करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि इसको करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसका डोज कैसे लेना है, कितना लेना है, जो कि हम बात कर रहे थे, ये बहुत जरूरी होता है, और ये डॉक्टर ये डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगी तो विगोबी और ओजेम्पिक दोनों एक ही कंपनी की, और एक ही दोनों के अंदर एक ही कंपोजिशन है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
0: जी,
1: विगोबी और ओजेम्पिक सेम कंपोनेंट है, ओजेम्पिक लो डोज है और विगोबी हाई डोज है उसी दवाई का। तो आप बात करें ओजेम्पिक जो है वो लो डोज में डायबिटीज के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को, और किडनी के पेशेंट को उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ट्रायल्स में पता चला कि जो मरीज को ओजेम्पिक इन बीमारियों के साथ दिया जाता है, उनको हार्ट का रिस्क, उनको किडनी का रिस्क कम हो जाता है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट कम हो जाता है, और उनको इन बीमारियों से भविष्य में खतरा कम रहता है, इसलिए ये दी जाती है ओजेम्पिक लो डोज में। और हाई डोज में जब इसको यूज करते हैं वो विगोबी में करते हैं, जो कि ओबेसिटी और वेट लॉस को कम करने में काम आती है। और आपने एक बात बोली कि ये ऑफ द रिकॉर्ड, तो एक दवाई में ऑफ द रिकॉर्ड मिलती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोनजारो ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है, और ओजेम्पिक और ऑन द प्रिस्क्रिप्शन है।
0: जी
1: और ये अलाउड है भारत में, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में आपको पता है कि लीकिंग होने की संभावना, देखो जब कोई दवाई आती है तो उसके बारे में हाइप होता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को मिल जाए और मेरा वेट कम हो जाए, तो वीगो मुंजारो जो है ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी मिलती है, तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट आप कभी नहीं समझ पाएंगे, ये डॉक्टर ही समझ सकता है कि कौन कौन से टेस्ट इन दवाइयों के लेने से पहले होने चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ हैं ओरली मेडिकेशन ले सकते हैं या ये इंजेक्शन है?
1: जी आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि आखिर ये दवाई लेनी कैसे है, इनका फॉर्मुलेशन कैसे है। तो अगर आप बात करें इनमें बेसिकली ओजेम्पिक जो है इसका अंदर का जो कंपोजिशन है वो सीमाग्लूटाइड है, जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ओरल फॉर्म में रिबिल्सस एक फेमस ब्रांड नेम भारत में है, जो कि ऑलरेडी ओरल फॉर्म में चल रहा है और पहले से उपलब्ध है, लेकिन अभी जो ये दवाइयों की जिनकी बात हो रही है हमारे देश में, जिनकी चर्चा हो रही है, वो सब इंजेक्टेबल फॉर्म में आई हैं, हम कहेंगे सबक्यूटेनियस फॉर्म, जैसे कि हम इंसुलिन को देते हैं मैम, वैसे ही आई हैं। तो ये अभी इनका उपयोग वंस इन ए वीक होता है, मैं थोड़ा अगर बताना चाहूँ तो वंस वीकली सबकट इनका उपयोग किया जाता है, और हर मंथली दवाई का डोज को बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल। तो इसमें हर पेशेंट की पर्सनल प्रोफाइल अलग होती है, उसको आपको एक प्रोफाइलिंग करना होता है, जैसे कि हर व्यक्ति की क्या बीमारीज हैं, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, और उसको और कौन सी बीमारियाँ बैकग्राउंड में, किसी को अगर किसी को हार्ट का इशू है, किसी को पेट का इशू है, किसी को आंखों का इशू है, तो ये सब चीज़ देख के ही दवाई लेनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो कि ये असेस कर पाए, उसको पता हो कि कौन कौन सी बीमारियों में इन दवाइयों को नहीं दिया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए तो ठीक है ये दवाइयाँ कि उनके लिए ही बनी है, तो उनको आराम पहुँचाएंगी, उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे, लेकिन जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, अब उनको डायबिटीज़ है या नहीं है ये नहीं पता, उनको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं पता, लेकिन वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है बीच में, अब ये कितना सत्य है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये कहा गया है कि ओजेम्पिक लेने से इन सब के वज़न जो है वो कंट्रोल हुए हैं, लेकिन क्या ये दवाई अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है आप ले सकते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं और आपकी भूख कम हो गई है, सो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आपकी भूख ही कम हो गई है, आप जितना 2000 कैलोरीज 2200 कैलोरीज जो हमें दिन की लेनी होती है, अगर आप उसकी जगह 1500 कैलोरीज ले रहे हैं, सो कैसे आप अपनी बॉडी को ठीक रख पाएंगे?
1: जैसे कि आपने कहा कि इन दवाइयों का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी मेडिसिन आपका वेट लॉस कैसे करती है, तो अगर हम बात करें इन दवाइयों की, ये वेट लॉस आपके, ये आपकी फैट को अगर लॉस, आपको अपनी फैट को अगर लॉस करना है और आपको फैट को कम करना है, तो ये ध्यान रखें कि ये मसल लॉस भी करती हैं साथ में। अगर आप इनको अनइंटेंशनली ले रहे हैं और आप कॉन्शियस नहीं है, तो आपका मसल लॉस भी साथ में होता है। अगर इन दवाइयों को लेते वक्त आपका मसल लॉस होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि मसल लॉस आपका नहीं होना चाहिए। तो जब आप वेट लॉस करते हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, इसमें आपको डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपकी प्रोटीन को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और रिकमेंडेड प्रोटीन इन दवाइयों के साथ नहीं लेते हैं, तो आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर आवर मसल्स, इट इज अ मस्ट। तो अगर आप एक डाइटिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके साथ साथ एक डॉक्टर, इन तीनों को मिला के अगर आप ये काम करते हैं और दवाई लेते हैं, तभी आपने जैसा कहा कि क्योंकि अगर आप इन दवाइयों को बंद करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये रिगेन, वेट रिगेन भी बहुत फास्ट होता है। जो आपने पूछा कि ये आपकी एपिटाइट को कम कर देती है,
0: बढ़ा देंगे
1: तो एपिटाइट कम कर देती है, तो आपका तो एपिटाइट कम हो गया, तो आपको तो पता चलता नहीं है कि आपको कितना क्या खाना है, आपको तो लगता है कि मेरा पेट तो भर चुका है। इसलिए इसमें जो आपने देखा कि ICMR ने लेटेस्ट बोला कि जो बैलेंस डाइट है उसको आपको फिर भी फॉलो करना है। जो आप, हम बोलते हैं कि हमारी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समान मात्रा में, जो एक प्रोपोर्शन होता है वो होना चाहिए। और ये 100% आपको डॉक्टर और डाइटिशियन कोऑर्डिनेशन के साथ, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि

0: को एक्चुअली जो जो कोच होता है, जो डाइट फिजियोथेरेपी है बोलेंगे कि आपकी एक्सरसाइज के लिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। तो मैं कहूँगा कि जो ये दवाई ले रहा है उसको एक कंसल्टेशन अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी लेना चाहिए, जिससे वो ये समझ पाएंगे कि दवाइयों का उपयोग आखिर कैसे करें। तो इन दवाइयों का उपयोग बहुत ही संतुलित और बहुत ही नियमित तरीके से और बहुत ही सतर्क होकर करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, यानी कोई भी दवाई जो बॉडी में जाती है उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। वो बुखार की दवाई भले ही क्यों ना हो, लेकिन आपका बुखार ठीक करने के अलावा वो बाकी बॉडी के पार्ट्स पर भी कुछ असर तो जरूर डालती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, अपने शरीर में लेते हैं, उसका इफेक्ट होता है। तो ऐसी दवाइयाँ जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कुछ कारणों से, रील्स देख देख के आप उनके बारे में जान गए हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ इनका इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज अधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइक।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक. रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. बातें चल रही है बहुत सारी उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं. पहला डायबिटीज, दूसरा ओबेसिटी और तीसरा हाइपरटेंशन. ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपकी पूरी बॉडी को खराब करने की ताकत रखती हैं अगर सही तरीके से मैनेज ना की जाए. बात करते हैं डायबिटीज की, और डायबिटीज के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. डॉक्टर साहब, ओज़ेम्पिक मोनजारो के बारे में तो आपने बात कर ली है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी एक तो इनकी कॉस्ट, वो बहुत जरूरी है लोगों को बताना, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि बहुत महंगी दवाइयां हैं, बहुत महंगी दवाइयां. दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो अभी तक नजर में आए, क्योंकि हाल ही में इतना चर्चा में रहा है कि लोगों ने कहा है कि ये मत लो, ये इससे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ जाती हैं. सो क्या ये वाकई सच है?
1: जैसे कि बात कर रहे हैं कॉस्ट की और साइड इफेक्ट्स की, तो पहले मैं बात करना चाहूँगा इनके साइड इफेक्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप किसी भी दवाई को लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, चाहे हम वो पैरासीटामोल ही ले लें. तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दवाइयों के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, अगर मैं इनको क्लब्ड कर दूँ एक साथ की कॉमन साइड इफेक्ट, तो सबसे कॉमन इनके GI साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब आपके पेट से रिलेटेड होते हैं. वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं हम, परसिस्टेंट एब्डोमेन पेन हो सकता है. तो जिनको खासतौर पर पेप्टिक अल्सर होता है या छाला होता है, अगर पेशेंट समझ पाएंगे इस चीज़ को, तो उनको इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. और दूसरा, इसके जो थोड़े डेडली साइड इफेक्ट या मैं कहूँगा थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, वो पैंक्रियाटाइटिस जिनको होता है, या जिनको गॉल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, और किसी किसी में जिनको आपका कैंसर, थायराइड का कैंसर भी कुछ दवाइयों के स्टडीज़ में पाया गया कि ये थायराइड कैंसर भी कर सकती हैं. तो इनको एक बार थायराइड के बारे में भी डॉक्टर को देखना चाहिए कि थायराइड उनका ठीक है, उनको थायराइड का कोई इशू नहीं है.
0: अब साथ साथ उसको भी मॉनिटर करते रहें,
1: क्योंकि कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट थायराइड कैंसर भी पाया गया था, इनका कोरिलेशन था आपस में. और एक आई जो है, आपकी आई एग्जामिनेशन बिफोर दीज मेडिसिन, यू शुड गेट इट डन. तो ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखे, और वो आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री, जो मैंने कहा मेडिकल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, दे शुड टेक इट. और आपने कहा कि कॉस्ट, तो मैं कहूंगा कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक दवाई इनमें किसी को भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास महीने का इनका होता है,
0: मंथली
1: या मंथली, और वंस इन ए वीक लेनी होती है. तो और इसका डोज जब आप बढ़ाते हो दवाई का, इंक्रीमेंटल डोज जब आप लंबे समय में लेते हो, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ भी सकता है.
0: पंद्रह से बीस हजार मान लें.
1: अच्छी बात यह है कि थोड़े समय के बाद इसमें से दो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो जाएंगे, तो हमारे देश में इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है कि कॉस्ट को कम किया जाए, क्योंकि आपको पता है ये इट्स लाइक ए गोल्ड माइन, ओबेसिटी इन इंडिया इज लाइक गोल्ड माइन. तो दो कंपनियों की दवाई है, वो भी इसमें बहुत कंपटीशन कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा मार्केट है भारत, इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए. तो दूसरा ये कि इसकी आप इसको शुरू कर देते हो तो आपको ये लंबे समय लेनी है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. आप इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेके अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं. मिनिमम जो स्टडीज हुई हैं, आपको 1.5 साल के आसपास लेते हो तो आपका 10 से 15 किलो वजन कम होता है, ये मैं स्टडीज के आधार पर बता रहा हूँ.
0: 1.5 साल के बाद
1: 15 किलो वजन कम होता है. एंड कंडीशन इज दैट यू शुड डेफिनेटली मेंटेन योर लाइफस्टाइल, एंड यू शुड बी डूइंग ऑल द अदर थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड विद दिस मेडिसिन.
0: यानी सिर्फ दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी होगी, डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा, और न्यूट्रिशन की बात जैसे हम कर रहे थे कि न्यूट्रिशन, जब आपकी भूख कम हो जाती है तो न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा, तो डाइटिशियन आपको बता सकता है कि कितना प्रोटीन और कितना आपको कार्बोहाइड्रेट
1: लेना चाहिए. और आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो, और एक बार जब ये दवाई आपके वेट को कम ले आती है, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करने के लायक हो जाते हो, क्योंकि जिसका ज्यादा सीवियर ओबेसिटी होती है वो रनिंग भी नहीं कर सकता, पार्क में जा भी नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दवाई जब आपका वजन कम करती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो.
0: बिल्कुल बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है, उन्हें ढूंढें और उनसे सलाह लें, खुद ही दवाइयां लेके खुद ही डाइट ना प्लान कर लें, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, उनसे सलाह नहीं लेंगे, इन दवाइयों का उल्टा असर आपकी बॉडी पर हो सकता है. डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई डायबिटीज की और ओबेसिटी की, तो डायबिसिटी की बात हमने इन शॉर्ट कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की. हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, लोगों के लाइफस्टाइल ख़राब हो चुके हैं, रात को देर तक जागते हैं, कई लोग तो काम ही रात को करते हैं. इसके अलावा खाना पीना जो है वो बाहर का बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें सॉल्ट बहुत आ गया है. इसके साथ साथ स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है. अब ये हाइपरटेंशन किस तरीके से बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए.
1: जैसे आपने कहा कि जो डायबिटीज और ओबेसिटी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ओबेसिटीज की वजह से हाइपरटेंशन की भी संभावना होती है, आपका बीपी भी ज़्यादा बढ़ सकता है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका बीपी, पेशेंट को लगता है कि मेरा बीपी बढ़ गया है तो मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, तो लेटेस्ट अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की लेटेस्ट गाइडलाइन आई है कि स्टेज वन हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें बीपी आपका 130/139 ऊपर का होता है और नीचे वाला बीपी आपका 90 से कम होता है लेकिन 80 से ज़्यादा होता है। मैं ये स्पेसिफिक इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पेशेंट अपना बीपी देखता है तो उसको पता होता है कितना आ रहा है। तो अगर आपका बीपी स्टेज वन हाइपरटेंशन है, और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सॉल्ट इनटेक, हमारी कंट्री में वैसे भी हिडन सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हमारे पिकल्स में, पापड़ में, और हमारे फास्ट फूड्स में, और बहुत सारी तली भुनी चीज़ें जो हमारे हमारे कल्चर में है, हमारी मम्मियाँ, हमारे दादियाँ जो बना के हमको खिलाती हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है हिडन सॉल्ट। तो इसमें भी ये गाइडलाइन है कि आप सॉल्ट इनटेक को भारत में लेस देन 2.5 ग्राम पर डे, या उसके भी नीचे अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो 1.3 ग्राम पर डे। तो आप कह सकते हैं कि एक स्पून का 1/4 या 1/3 आपको खाना है
0: पूरे दिन।
1: तो सॉल्ट इनटेक हिडन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को, जिनको सॉल्ट इनटेक की ज़्यादा आदत हो जाती है, वो खुद ही एक्स्ट्रा एड ऑन सॉल्ट इनटेक कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आपका बीपी, जैसे मैंने कहा कि 139 के नीचे है, और आप अगर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, सॉल्ट इनटेक को 6 महीने के लिए कर्टेल करते हैं, तो ये गाइडलाइंस कहती है कि आप अपनी पिल्स के बर्डन को अवॉइड कर सकते हैं और आप बीपी को बिना पिल्स के भी मैनेज कर सकते हैं और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपको बीपी की दवाई की जरूरत पड़े ही ना, क्योंकि आप अपने बीपी को ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में ला चुके होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने पूछा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका बीपी एक साइलेंट किलर होता है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपके बीपी के वार्निंग साइंस नहीं आते हैं। इसलिए बीपी को एनुअली, या मैं कहूंगा हर 6 महीने में एक बार चेक होना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल, यानी थोड़े थोड़े टाइम में ब्लड प्रेशर को जरूर चेक करते रहें। डॉक्टर साहब, वार्निंग सिचुएशन क्या होती है ब्लड प्रेशर के केस में? जैसे लोगों का बीपी कई बार 150 तक पहुंच जाता है, कई बार 140 पे ही लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो वार्निंग सिचुएशन क्या होती है?
1: इसको मैं एक तरह से ये कहना चाहूंगा कि ये बेसिकली एक डिजिटल नंबर है, या एक जो नंबरिंग को अगर आप

0: लोग ये देखना चाहते हैं कि बीपी के साथ अंगों को नुकसान तो नहीं हो गया है, जिसको हम ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। तो अगर किसी के ऑर्गन डैमेज हो गया है तो उसको तो बीपी की दवाई लेनी ही पड़ती है। लेकिन मैंने कहा कि वार्निंग साइंस बहुत कम आते हैं, जनरली पता चलता ही नहीं है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो ही पता चलता है। इसमें भी ये बात है मैम कि कई बार इसमें अलग अलग टर्म है कि एक होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपका बीपी बढ़ता है लेकिन घर पे नहीं बढ़ता है। एक होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉक्टर के वहाँ जाते हो तो नहीं बढ़ा हुआ होता है लेकिन घर होते हो तो बढ़ा हुआ होता है।
1: ऐसा क्यों होता है?
0: ये पेशेंट आके बोलते हैं, आपने सुना कि वाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क्ड हाइपरटेंशन। अब इनको पता लगाने के लिए अलग अलग बीपी, जो बीपी भी एक तरह से आपके साथ गेम खेलता है हाइड एंड सीक का, तो इसको पता लगाने के लिए और आप इसके आपके अंगों को कभी नुकसान ना हो और बीपी 100% है कि नहीं ये जानने के लिए हमारे पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ABPM। तो अगर कोई भी पेशेंट 48 घंटे के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या ABPM घर पे करता है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि इनका ब्लड प्रेशर रात को जंप तो नहीं कर रहा है घर पे, जो कि डॉक्टर के पास नहीं कर रहा है मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो आप इसमें अलग अलग तरह के जो बीपी होते हैं उनको भी पता लगा सकते हो और वो पेशेंट लॉन्ग टर्म तक अपनी जो डैमेज करता है बीपी उसको रोका जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको डॉक्टर एडवाइस करें एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उनको करना चाहिए। जी आपने पूछा भी, और बार बार घर पर ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करना चाहिए, दो बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो एंजाइटी घबराहट से भी बीपी बढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे शुगर होती है तो चेक करते हैं या बीपी होता है तो बार बार चेक करते हैं, तो उससे स्ट्रेस से भी मुझे लगता है इन चीजों पे काफी वाइटल्स पे।
0: जैसे मैं फाइट फियर एंड फ्लाइट, ये तीनों चीजें हमारा वो वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कि आपकी घबराहट में एक्टिवेट होना है। तो अगर आप घर पे दो बार से ज्यादा ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो और आपका बीपी बढ़ता है तो उसका हम बोलते हैं होम कफ हाइपरटेंशन। तो आपको बीपी दो बार ही चेक करना है, और मुझे लगता है आपको बीपी जब आप कंफर्टेबल 10 मिनट रिलैक्स होके बिना सोचे हुए बैठे हुए हैं तब आपको करना चाहिए। कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी बिल्कुल, तो बीपी को बार बार चेक ना करें, डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें, और अगर कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो प्लीज उसको अवॉइड ना करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन सबके बारे में आपने विस्तार से बताया। उम्मीद है कि जो फेस्टिवल सीजन है, बाकी जो हमारे पूरे देश में साल भर अलग अलग त्यौहार रहते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें बनती हैं वो तो लोग खाएं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज को ना छोड़ें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं तीनों जो आपने बीमारियाँ बताई हैं ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज की कैटेगरी में आती हैं और लाइफ स्टाइल को ठीक रखना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। सो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। ऑल इज वेल में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और सुनते रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।
2: रात अकेली है।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज मैं लेकर आई हूं जिनको वो कहलाते हैं ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली, और साथ के साथ ये फाउंडर है अर्थ वॉरियर के, जी हाँ, आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं पंकज कुमार जी से। सो आज मानवता की राह पर हम चलेंगे पंकज कुमार जी के साथ, जो कि ना सिर्फ हमारी दिल्ली की यमुना को साफ कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थ वॉरियर है, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि ये ना सिर्फ पोल्यूशन को कम कर सके लेकिन दिल्ली जैसे शहरों को जीने और रहने के लायक बना सके। सो आज हम उनसे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू
0: पंकज जी। पहला सवाल, आपकी अर्थ वॉरियर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब मैं जब कभी भी किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ जिसने किसी भी प्रकार के कंसर्न को अपनाया हो, तो उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है, तो आपकी क्या कहानी है?
1: देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पीछे कोई कहानी नहीं है ऐसी।
0: जी।
1: मैं कहूँ तो इन्फॉर्मेशन की वजह से इसकी स्टार्ट हुई।
0: जी।
1: मैं जब दिल्ली, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं जब दिल्ली आया तो यहाँ पे एक था कि नवंबर दिसंबर के मंथ में स्कूल बंद हो जाते क्योंकि एयर पोल्यूशन तभी हाई होते थे।
0: जी।
1: तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके खिलाफ हमें, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उस समय मेरी जितनी समझ थी उसके हिसाब से मैंने स्टेप लिया, और आपने देखा होगा एक वायरल होती थी वीडियो जो ऑक्सीजन मास्क और पीछे पीठ पे वो पौधा लगा के, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि लोगों को मैं इन्वायरमेंट के लिए अवेयर करूँ। इसी अवेयरनेस के दौरान मैं एक दिन यमुना पे पहुंच गया, तो फिर जो है, क्योंकि मैंने यमुना जी के बारे में पढ़ा था कि कृष्ण की यमुना, दिमाग में एक अलग पिक्चर था यूटोपियन वाली की, बहुत खूबसूरत होगी, देखा तो झाग बह रही है।
0: जी।
1: तो लगा कि बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ और मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, तो वहाँ से हमारी जो है ये टीम की शुरुआत हुई और फिर हम लोग यमुना और अदर रिवर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किए।
0: तो देखिए भाई, अगर आप कई बार यमुना के किनारे जाते हैं, आप कौन से एरिया से जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी भी आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कोने कोनों में ही बहुत सारा कचरा है। अब वो कचरा यमुना से बहकर भी बाहर आ जाता है और साथ के साथ लोग फेंक भी देते हैं। अब इस सारे कचरे को कौन साफ करे? आइडियली आप ये कहेंगे तो सरकार का काम है, एमसीडी का काम है, कि अगर यमुना है या उसके आसपास कचरा जो है उसे कोई साफ क्यों करे, ये तो उनका सरकार का काम है। लेकिन सरकार के पास भी ढेर सारे काम हैं, और परेशानी ये है कि इंसान की मानसिकता को तो हम बदल नहीं पाए हैं, लेकिन बिना बदले हम बहुत सारी परेशानियाँ अपने लिए ही खड़ी कर देते हैं, और ऐसी एक परेशानी है ढेर सारी गंदगी। तो इसे साफ करना हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन कोई है जिसने इसका बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने अपनी जिंदगी को, क्या कहना चाहिए, 360 डिग्री कन्वर्ट कर लिया है। सो कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज कहलाते हैं अर्थ वॉरियर के फाउंडर और साथ के साथ ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली। पंकज जी, मुझे बताइए कि कितने लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं? सो आइडियली जो होता है कि हम सब अपने जीवन में, जो आप तो युवा हैं, सबसे पहले जो हमारा कंसर्न होता है पढ़ाई खत्म होने के बाद हम अपने लिए एक सिक्योर्ड जॉब ढूंढ लेते हैं या फिर हम अपने किसी बिजनेस में लग जाते हैं, लेकिन आप 24/7 अर्थ वॉरियर में कब आए, कैसे आए, और साथ के साथ ये पूरी शुरुआत कैसे हुई?
1: देखिए, ये जो मैंने शुरुआत करी 2017 के आसपास करी थी, और एक आपने बात कहा कि हम जब पढ़ाई खत्म करते थे हमारा एक ही वो होता है कि हम जॉब करें, मैंने जॉब भी करी।
0: जी।
1: और बट दिमाग वहाँ पे रह ही नहीं रहा था।
0: जी।
1: दिमाग कह रहा था ये इसके लिए मैं आया हूँ ही नहीं धरती पे। तो कहीं ना कहीं जो एक इंटरनली कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए करना है।
0: जी।
1: इसकी शुरुआत होती, मैं जब छोटा था तो मेरे पापा मुझे स्टोरीज बताया करते थे भगत सिंह के बारे में, गांधी के बारे में, बुद्ध के बारे में। तो वो एक था कि वो बीज उस समय डाल दिया कि मेरे लिए सोसाइटी जो है सबसे ऊपर है।
0: जी।
1: तो मैं जब जॉब कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि मेरा ड्रीम है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, तो मैं यहाँ पे पैसे, मतलब जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, बट मैं कर क्या रहा हूँ, समाज को मैं क्या दे पा रहा हूँ? तो वहाँ पे कि मैं समाज के लिए क्या कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें हमेशा मुझे, जब मैं ऑफिस में रहता था तो खड़ोसती थी, मतलब मैं पैसे कमा रहा हूँ, सब कुछ है, बट मेंटल पीस नहीं था, फ्रस्ट्रेट रहता था। तो वहाँ से मैंने शिफ्ट होना स्टार्ट किया और पूरी तरीके से जो है 2022 में मैंने जॉब छोड़ के कम्प्लीटली जो है अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। जी।
0: इमेजिन करिए, मतलब जब मैं ये कहानियाँ सुनती हूँ ना, सो अंदर से इंस्पायर तो हम होते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते हैं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम सबको जो जीवन मिला है वो सिर्फ 9 to 5 की जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिला है।

0: तो भगवान ने ये नहीं कहा था कि आप जाइए बहुत सारी पढ़ाई करिए और उसके बाद एक जॉब से अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं? अगर हम बाकी लोगों की तकलीफों को महसूस कर सकते हैं या हम ये महसूस कर पाते हैं कि ये जो हो रहा है समाज में ये ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सजग जिम्मेदार नागरिक हैं। वरना हम सिर्फ भीड़ की तरह, पॉपुलेशन की तरह इस पूरे शहर में या फिर कहना चाहिए देश में या पूरे धरती पर बोझ की तरह आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। सो हम एक सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे बढ़कर मानवता की राह पर चल रहे हैं। पंकज जी, आप फाउंडर हैं अर्थ वॉरियर के, ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली भी कहलाते हैं। मुझे बताइए अर्थ वॉरियर पर किस किस प्रकार के काम आप करते हैं और आपकी जो पूरी टीम है काम करती कैसे है?
1: देखिए, एक तो होता है कि हमारा वीकली क्लीनिंग ड्राइव होता है जो संडे को होता है
0: जी।
1: कि वहाँ पे क्या होता है कि जो कालंदी कुंज घाट है वहाँ से हम लोग सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं
0: जी।
1: और उसको फिर हम लोग नगर निगम को सौंपते हैं
0: जी।
1: होता यह है कि देखिए, लोग कहते हैं कि ये सरकार का काम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार का काम है, पर हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि मैन पावर नहीं है इतना
0: जी।
1: कि घाट पे जाके, पहले तो ये अलाउ नहीं किया घाट पे आप कचरा डंप करें, बट आप कचरा डंप कर रहे हैं तो सरकार के पास इतनी मैन पावर नहीं कि वो घाट से कचरा कलेक्ट करे। और फिर हम लोग वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करके वो नगर निगम को सौंपते हैं, फिर नगर निगम आगे उसकी प्रोसेसिंग करती है। एक हमारा ये काम है, उनके साथ साथ दूसरा हमारा काम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, कि जो भी दिल्ली में या अपने देश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके जो वाटर क्वालिटी है उनको एनालाइज करते हैं, डेटा उनकी रिव्यू करते हैं और उनके बारे में पब्लिक को अवेयर करते हैं और गवर्नमेंट से भी सवाल करते हैं कि अगर आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों काम नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि आप अगर चाहे आपके आसपास जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है आप भी अगर जानना चाहते हैं कि वो सही काम कर रही है कि नहीं, तो एक सिंपल सा जो है CPCB गाइडलाइंस बनाई है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर शुड नॉट हैव एनी ऑडियोर और कलर। अगर कोई भी आप जो है सीवेज का ट्रीटेड वाटर है उनमें अगर रंग और गंध नहीं है तो आप समझिएगा वो पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर उनमें रंग और गंध है तो समझ जाइएगा कि वो पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो अगर ऐसा है कि अगर आपने देखा कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड वेस्ट वाटर गंदा है, उससे बदबू आ रही है, तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये तो ट्रीटेड है नहीं, पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ये एक मोटा मोटी जानकारी है। वैसे BOD और जो है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया और टोटल कॉलिफॉर्म, ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कि अभी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो है कि BOD ट्रीटेड वेस्ट वाटर में सीवेज का जो है 10 mg/L और फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 230 mg/100 ml होना चाहिए अगर पानी इस स्टैंडर्ड पे ट्रीट होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ भावना जी, कि अगर दिल्ली में अभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और 764 mg/L उसकी कैपेसिटी है, तो जो पॉलिसी है स्टैंडर्ड है कि सीवेज के ट्रीटेड वेस्ट वाटर का जो BOD है वो 10 होना चाहिए और फीकल कॉलिफॉर्म 230 mg/100 ml होना चाहिए। फरवरी 2025 की अगर आप दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो यमुना जी में जो दिल्ली का लास्ट स्ट्रेच है असगरपुर, वहाँ पे फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 1,60,00,000 mg/100 ml था। और ये फीकल कॉलिफॉर्म क्या होता है? फीकल कॉलिफॉर्म होता है इंसान और जानवरों के मल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, ये फैक्ट्री से नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है जो यमुना जी में जो आप पानी देख रहे हैं वो पानी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान और पशुओं का मल है और कुछ नहीं बह रहा है, रिपोर्ट के हिसाब से ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए अगर वो प्रॉपर काम करते तो ये सिचुएशन तो नहीं होती। तो रिपोर्ट खुद सरकार की बोल रही है कि मैं जो है सरकार ने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस तरीके का सिचुएशन आ रहा है कि जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और BOD जो है 72 हो जाता है। नहाने वाले पानी के लिए है कि जो NGT की गाइडलाइंस है कि कोई भी नदी अगर उसका BOD 3 mg/L या उससे कम या फीकल कॉलिफॉर्म 500 mg/L या उससे कम है तो वो नदी जो है स्वस्थ नदी मानी जाएगी, बट उससे ज़्यादा है 3 mg/L से BOD ज़्यादा और 500 mg/100 ml से ज़्यादा अगर फीकल कॉलिफॉर्म है तो वो नदी स्वस्थ नहीं मानी जाएगी। यमुना जी का 1.5 करोड़ mg/100 ml है, सोच लीजिए लाखों गुना ज़्यादा है
0: जी
1: फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया और उसके बाद BOD 72 है, वो मतलब वो पानी किसी योग्य नहीं, ह्यूमन एनिमल किसी भी पर्पज़ के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर वो पानी गलती से आपने पी लिया तो वो आपको डायरिया कोलरा हो जाएगा। और वही पानी जो है दिल्ली से बह के आगे मथुरा वृंदावन जाती है, उसी में लोग नहा रहे हैं, बहुत सारे लोग आचमन भी कर रहे हैं। और ये देखिए कि एक हेल्थ क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं अगर हमने अपनी नदियों को स्वच्छ नहीं किया, हमने अपने वेस्ट वाटर नदी को, देखिए एक पहली बात है कि हमें नदी को स्वच्छ नहीं करनी है, हमें स्वच्छ करना है हमारे वेस्ट वाटर को। नदी तो स्वच्छ ही है, यमुनोत्री में यमुना जी अभी भी साफ है, डाक पत्थर आ जाइए साफ है, हथनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम पे भी साफ है, बट उसके बाद गंदी क्यों ना क्यों? हमने अपने वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, आपने अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को नदी में मिला दिया। जो नदी आपको पानी देती है उससे आपने फ्रेश वाटर लिया, अपने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसी को गंदा करके उसी नदी में डाल रहे, ये कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और नदी सिर्फ इंसानों के लिए थोड़ी है, वो पशुओं के लिए भी है, वनस्पतियों के लिए भी है, बट आप उसको इतना गंदा कर दिए, जो पशु जो है, कल मैं यमुना घाट पे था तो एक गाय जो है नदी में गई, यमुना जी में पानी, वो पानी गई पीने के लिए बट नदी को देख रही पानी ही नहीं पी रही, क्योंकि झाग बह रहा वो पिए कैसे, उसको भी दिख रहा है कि गंदगी है, ये पीने के लायक पानी नहीं है, हमने कैसा बना दिया है। वो नदियों को माता कहते हैं, गायों को भी माता कहते हैं, वो देश जो प्रकृति की पूजा करते हैं वहाँ पे पशुओं के साथ, पशुओं के लिए पीने के लिए पानी ही नहीं छोड़ा, आपने मोटर आरो लगा दिया, वो कहाँ से मोटर आरो लगा।
0: यस, सो दोस्तों कहीं ना कहीं वाकई ये सोचने वाली चीजें हैं और विचार करने वाली चीजें हैं कि ये जो हमारी खूबसूरत कलकल बहती नदियां हैं, क्या हमने इन नदियों को स्वच्छ छोड़ा है, या कहीं ना कहीं पॉलिसी के कारण, या कहना चाहिए मैन पावर की कमी होने के कारण, या प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण हम इन्हें फिर से पोल्यूटेड कर रहे हैं। पंकज जी मुझे बताइए कि हमारे जो रिवर्स हैं, खास तौर पर अगर हम अपने दिल्ली की बात करें या हमारे हरियाणा की हम बात करें, सो अगर हम हमारी गंगा यमुना को ही देखें तो हमारी ये गंगा यमुना बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है, सो आप इन रिवर्स के पोल्यूशन पर कैसे काम करते हैं?
1: देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सोर्स पे जा रहे हैं कि रिवर में पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है।
0: जी,
1: रिवर में जो पोल्यूशन आ रहा है उसका कारण है कि हम अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या हाउस होल्ड हो, हम डाल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अब आपने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए तो वो कैसा ट्रीट कर रहा है इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कानपुर में हमने बहुत से एक्सपोज किए, जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फाइन लगाए, कुछ अच्छे काम करने लगे। पहले मैं जो बिगवान में एक एचटीपी है 210 ml की, उनका जो फीकल क्वालिफॉर्म बैक्टीरिया था वो 30 lakh MPN हुआ करता था, बट हम लोगों ने जब एक्सपोज किया तो अभी 35,000 पे आ गया है वो। उनके साथ साथ देहरादून की बहुत सारी एचटीपीज है जो हमने कवर किया, वो बेहतर हुई। दिल्ली की एचटीपीज है रिठाला फेज 1, फेज 2, रोहिणी, हमने उनको एक्सपोज किया तो वो अब बेहतर काम करने लगे। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है, उनके साथ साथ नोएडा में 8 HTP है, नोएडा की एचटीपी पूरे देश में सबसे बेहतर काम करती है, नोएडा में मैं भी रहता हूँ, बहुत एक्सपोज करता हूँ, तो अब उनको जो है, और नोएडा को जो है वॉरियर, मतलब वाटर वॉरियर का अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि नोएडा की जो एचटीपी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर हम सोर्स पे हिट करेंगे, पहला तो है कि हम लोग और कुछ नहीं मांग कर रहे हैं सरकार से, हम कह रहे हैं आपकी जो पॉलिसी है आप ग्राउंड पे लागू कर दीजिए।
0: जी,
1: आपका पॉलिसी है कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर आप नदियों में नहीं डालेंगे तो उसको पहले रोकिए, और जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उनको आप गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीट कीजिए। आप ट्रीट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर मुझे दिखेगा कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जा रहा है, या आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या CETP कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मैं एक्सपोज करूँगा।
0: जी,
1: तो वही है कि अब है कि पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट में केसेस तो बहुत चल रहे हैं, कोर्ट के केसेस कागजों में क्या होता है कि कागजों में है, लोगों को नहीं पता कि रियलिटी क्या है,
0: क्या है
1: BOD, क्या है CODE, क्या है फीकल क्वालिफॉर्म, क्या है। न्यूज चैनल्स वाले बहुत सारे मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियोस देख के हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं कि अभी खबरें कर रहे हैं कि यहाँ पे फीकल क्वालिफॉर्म बढ़ गया या यहाँ पे BOD इतनी ज्यादा है, तो एक अवेयरनेस पब्लिक में भी जा रही है। और आप अभी देखेंगे यमुना बहुत ज्यादा वायरल है, उसका कारण यह है कि पोल्यूशन का जो जर है वो लोगों को समझ में आ गया, पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो आप बात कर रहे हैं लोग कि हाँ ये है। यमुना छठ के अलावा कभी वायरल नहीं होती, बट आज देखिए छठ से लेके अभी तक यमुना ही यमुना चल रही है, हर दिन यमुना चलता है, हर कोई रिपोर्ट कर रहा है। कारण ये है कि अब वो चीजें बाहर आ चुकी है, प्रॉब्लम क्या है सोल्यूशन भी पता है, अब अगर हम उस पर काम करें ईमानदारी के साथ तो गवर्नमेंट का भी दिख रहा है, बट थोड़ा और अगर हम अच्छे से काम करें, और एक है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर करें, क्योंकि हो क्या रहा है अभी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो रिपोर्ट आ रही है वो अंदर से आ रही है, तो हम लोगों ने जो है कि गवर्नमेंट में कोर्ट्स में भी अप्लाई किया है कि जो जो वेस्ट वाटर का जो क्वालिटी मॉनिटर हो रहा है वो सेंसर आप बाहर लगा दीजिए, एचटीपी से जब पानी बाहर निकलती है वहाँ पे सेंसर लगाइए, और वो जो वाटर क्वालिटी होगी वही मान्य होगी, अंदर से आप बाल्टी में पानी भर के रिपोर्ट बना सकते हैं। और मैंने वीडियो भेजी है, हमें एक लड़के ने अंदर से रिपोर्ट बनाया जा रहा था बाल्टी में पानी भर के एचटीपी में, वो भेज दिया वीडियो बना के, और हमने भेजा कोर्ट को कि ये ऐसे बन रहा है, तो उन्होंने भी आदेश दिया है, और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको दिल्ली में और देश के अलग हिस्सों में आपको देखने के लिए मिलेगा, सेंसर बाहर लगेगा, आपको रियल वाटर क्वालिटी पता लगेगी, और होपफुल है हम सभी मिलकर जरूर बेहतर करेंगे इसको।
0: सर भाई, हमारे जितनी भी नदियां हैं इनके पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी इस प्रकार की जानकारी लें। तो होता क्या है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। और हम भी, मतलब जब मैं पंकज जी से पहली बार मिली तो मेरा भी सवाल यही था कि हमारी यमुना में झाग क्यों बहती है। जब कभी भी हम यमुना में झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें झाग ही झाग नजर आता है, गंदगी गंदगी नजर आती है, ऐसा क्यों? सो अगर ये नदी है और ये कलकल बहती रहती है तो हमारे पास हमेशा फ्रेश वाटर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पानी को पोल्यूट किया जा रहा है, इसीलिए इसका पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और रिजल्ट ये है कि हमारा पानी अब स्वच्छ नहीं है। सो कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं, हमें आवाज उठाने की भी जरूरत है और अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। पंकज जी, अब आपसे एक ऐसा सवाल जो मुझे पता है बहुत लंबा जवाब मिलेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। जब कभी भी आप इस प्रकार का काम करने जाते हैं, रिवर्स के पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें या इन्हें साफ करने की कोशिश करें, सो आपने जैसे कहा कि आप कालिंदी घाट पर थे तो आप लोग क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें जिस प्रकार से आप अर्थ वॉरियर को चला रहे हैं एक वॉरियर बनकर, तो किस प्रकार की चैलेंजेस आते हैं, किस प्रकार की अगर देखा जाए तो चुनौतियां आती हैं आपके जीवन में?
1: नहीं, कोई किसी भी प्रकार की चैलेंजेस नहीं है, चुनौतियां नहीं है। और मुझे तो लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है मेरे साथ
0: जी।
1: और वो होता है रेड कारपेट बिछा हुआ, मैं चल रहा हूँ, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन, मतलब एक है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो ऑब्स्टेकल पहले था वो भी खत्म हो गया
0: जी।
1: तो मुझे कोई चैलेंज नहीं आया अभी तक जीवन में। और
0: तो जब पहले दिन आपने सोचा कि चलिए यमुना को साफ किया जाए, तो क्या आपको बहुत सारे हाथ तैयार मिले कि हाँ चलिए हम भी साथ हैं, या उन्हें ढूंढने में मुश्किल लगी?
1: ढूंढने में मुश्किल नहीं लगी, शुरुआत तो मैंने खुद से अकेले से की, बट लोग आते गए
0: जी।
1: और हमारे टीम का ये है कि मैं 25-30 बंदों से ज्यादा बुलाता नहीं हूँ कभी, कि हमारा होता है कि हम लोगों का लिमिटेड होता है, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। कारण ये है कि लोग आ जाएं और उनको हमें मेंटेन भी करना पड़ता है, हर कुछ है, उनके लिए ग्लव्स चाहिए
0: जी।
1: और वाटर का मैनेजमेंट है, रिफ्रेशमेंट का मैनेजमेंट, तो उसके हिसाब से है। बट बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और इवन मैं एसटीपीज को एक्सपोज करता हूँ पूरे देश में, और आप जान के हैरान होंगे जिनको, जिन एसटीपीज को मैं एक्सपोज करता हूँ उनके ओनर्स हमसे बात करते हैं, ये प्रॉब्लम है, हम लोग कोशिश करेंगे, मिलके साफ करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा आज तक कि आप मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं
0: जी।
1: वो बात करते हैं और हम लोग हमेशा कम्युनिकेशन के लिए ओपन है, सरकार के साथ भी, सरकार के खिलाफ भी करते हैं और सरकार से बात भी करते हैं। अभी हमारी कुछ बातें चल रही थी कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हमने कहा हम जरूर आप जो भी कहेंगे हम हेल्प करेंगे, पर अगर आप गलती करेंगे तो आपके अगेंस्ट भी बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। तो वो है, और एक बात यह है कि हर कोई बदलाव चाह रहा है।
0: यस,
1: सरकार भी बदलाव चाह रहा है, जो है एसटीपी वाला भी बदलाव चाह रहा, सब कोई बदलाव चाह रहा। आप आप एक ईमानदार एफर्ट लगाइए, सब कोई आपके साथ आ जाएंगे। तो यही बात है, बदलाव सबको चाहिए, हर कोई चाहता है नदी स्वच्छ हो, बट आगे बढ़िए आप, ईमानदारी से बदलाव आएगी।
0: पंकज जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो टीम है वो कितनी बड़ी है और आप किस प्रकार से फंक्शन करते हैं? मतलब मान लीजिए चाहे आप क्लीनलेस ड्राइव में जाएं या फिर आप असेसमेंट करने जाएं एसटीपीज का, तो किस प्रकार से ये सब कुछ करते हैं आप?
1: देखिए, हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है, रेगुलर करें तो 30 बच्चे हैं हमारे पास
0: जी।
1: उनके साथ साथ जो है बहुत से वॉलंटियर न्यूली आते हैं, हर वीक आते हैं, तो 30 मेंबर जो है वो रेगुलर है
0: जी।
1: और वो सारे बच्चे जो हैं बहुत दिल से काम करते हैं कि वो क्लीनिंग ड्राइव भी करेंगे, और एसटीपीज पे हम जब जाते हैं, क्योंकि एसटीपीज पे जब हम जाते हैं तो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक तो होता है लोकेशंस जो है बहुत, मतलब आपको एक तो ह्यूमन थ्रेट भी है और नेचुरल थ्रेट भी है, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हैं, वो पानी गिर रहा है, उसको आप जाके दिखाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बहुत लिमिटेड लोग जो होता है, जो हैं 2-3-4 लोग, यही हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उसको कवर करके फिर लाते हैं। तो टीम का ये है कि एक है कि हमारा गोल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन की कमी है लोगों में, अवेयरनेस की कमी है कि गंदी क्यों हो रही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे अभी कि क्या ये एंडलेस इनिशिएटिव बन के रह जाएगा। देखिए, इसके पीछे का बहुत सारे इनिशिएटिव एंडलेस बन के रह चुके हैं समाज में, और कारण यह है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं दे पाए। देखिए, एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में, कि जो पूजा की सामग्री उसकी वजह से नदी गंदी
0: जी।
1: पूजा की सामग्री की वजह से प्रॉब्लम है, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना हम जो है उसको बना के बैठे हुए हैं कि पूजा की सामग्री, नदी यमुना इतनी पोल्यूटेड है क्योंकि पूजा की सामग्री। वो बहुत ही 2-1% आप मान लीजिए, क्योंकि वो सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट हम भी हाथ से निकाल लेंगे, और हर बैराज के पास जो है जाला लगा होता है और वो निकाल लिया जाता है, ट्रैश बूम भी है, वो निकाल लिया जाता है। तो एक अब हमारी हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको घाट तक आने से क्यों रोके
0: जी।
1: क्या हमने, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक देश है, हमें पता है कि धार्मिक वस्तुएं आएगी, तो हमने क्या ऑल्टरनेटिव दिया है क्या उन लोगों को? हम देने में फेल्ड है, सरकार देने में फेल्ड है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों को वो ऑल्टरनेटिव दिया जाए, ताकि हम जो जो धार्मिक जो वस्तुएं आ रही है, हम उनको घाट पे आने से रोके और जो है उनको बाहर ही प्रोसेस करके उनको रिसाइकलिंग, रीयूज जो भी हो सके कर सके। तो उन पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, कुछ जगहों पे जो है अभी घाट पे जो है पीतल का गमला इंस्टॉल हुआ है, जहाँ पे अगर वो जो धार्मिक वाली आपकी वस्तुएं आप वहाँ पे डाल सकते हैं
0: जी।
1: और जो है नदी में आप कुछ ना डालें, तो और बोर्ड्स भी लगे हैं, तो इस ओर गवर्नमेंट की भी है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ आए जी।
0: भाई बड़ी अच्छी बात है, देखिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दे कि भाई मुझे इन रिवर्स को साफ़ करना है या पोल्यूशन को कम करना है या दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को, जो हर बार हम यही कहते हैं अब मास्क लगा लीजिए, अब ऑड इवन हो जाएगा, अब गाड़ी एंटर नहीं कर सकती है, हम इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, क्या हम उन चीज़ों को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। और एक ऐसे ही अर्थ वॉरियर के साथ हम बैठे हैं, यानी पंकज कुमार जी के साथ आज हम बात कर रहे हैं। पंकज जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत सारे लोग आपको रेडियो मानव रचना के जरिए सुन रहे हैं, आपकी ये कहानी सुन रहे हैं, साथ के साथ मोटिवेट हो रहे हैं, और अगर वो आपके साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, आपके इनिशिएटिव्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, सो वो किस प्रकार से इसी चीज को या तो वो रेप्लिकेट करें या तो वो आपके साथ जुड़े, तो ये कैसे पॉसिबल है?
1: देखिए एक सिंपल सा है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी संडे मॉर्निंग 7 बजे क्लीनिंग ड्राइव होती है कालंदी कुंज घाट पे, ये कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, तो आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ साथ देखिए, अगर आप हमारे साथ नहीं भी आ सकते तो आप घर बैठे जो है नदी को स्वच्छ कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग कहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप अपना पानी का जो यूज़ है, यूसेज है, अगर उसको कम करते, तो होता यह है कि आपने जो नदी से आपको पानी आ रही है, ग्राउंड वाटर या तालाब से जो पानी आ रही है, वो तो पानी उसमें रहता ही है, उनके साथ साथ होता यह है कि जो आप पानी गंदा कर रहे हैं वो भी आप कम करते हैं। अब सपोज करिए कि आपने जो है एक लोकेशन है, सरकार ने जो है सोचा कि एक लोकेशन है वहाँ पे पॉपुलेशन 1000 है, सरकार ने सोचा कि ये 1000 लोग है, ये एक बंदा एक दिन में 100 लीटर पानी यूज़ करेगा, तो उसने सोचा कि यहाँ पे इसके इस 1000 लोगों के लिए हमने 1,00,000 लीटर का जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया और सरकार ने वो इंस्टॉल कर दिया आपके एरिया के पास। अब यह है कि अगर आप वाटर कॉन्शियस नहीं होंगे, तो सरकार ने सोचा था 100 लीटर पानी आप इस्तेमाल करेंगे, बट आप 150 लीटर पानी इस्तेमाल करें, तो होगा क्या कि आपने 150 पानी इस्तेमाल भी किया और 150 लीटर पानी गंदा भी किया, तो वो 150 लीटर पानी जब गंदा होकर आपके घर से निकलेगा, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 1,00,000 लीटर की है, जो सरकार ने सोचा था आप 100 लीटर यूज़ करेंगे, आप 150 यूज़ करें, तो उसके पास 1,50,000 लीटर पानी जाएगा। आप सोचिए कि अगर किसी एचटीपी पे जितनी उसकी कैपेसिटी है उनसे अगर ज़्यादा पानी जाएगा, तो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगी, अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगी तो होगा ये कि वो पार्शली ट्रीटेड अनट्रीटेड पानी जो है आपके नाले में जाएगी, फिर आपकी नदी में जाएगी और आपकी नदी गंदी होगी। अगर आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं, आप मानिए आप वाटर कॉन्शियस इतने हैं कि सरकार ने 100 लीटर सोचा पर आप 80 लीटर में ही काम चला लेते हैं, तो वहाँ जो 1,00,000 लीटर का वो जो बना हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पे 80,000 लीटर जाएगा, वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा और पानी बहुत स्वच्छता के साथ नाले में, नाले से नदी में जाएगी, तो आपकी नदी भी बचेगी। तो आपका पानी का इस्तेमाल कितना आप करते हैं, ये आपके नदी के हेल्थ पे डिपेंड करता है। आप जितना कम पानी इस्तेमाल करेंगे, आपकी नदी, आपका नाला, आपके घर के तालाब, आसपास के तालाब, वो सारे बचेंगे और आपका देश भी बचेगा। तो वाटर कॉन्शियस बने और जितनी ज़रूरत है उतना पानी का इस्तेमाल कीजिए, ऐसा नहीं कि पानी मिल रहा है तो बहाएं, अगर आप जितना पानी बहाएंगे उतना ही पोल्यूशन नदी में बहेगा, तो जितना कम बहाएंगे उतना कम बहेगा।
0: इमेजिन करिए ना कि हमें लगता है कि पानी है तो हम उस पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जो पानी अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि कल आपको यही पानी अवेलेबल मिले और पीने का जो पोर्टेबल वाटर है वो मिले, और ये आता है हमारी नदियों से। और इमेजिन करिए जिस तरीके से हर बार हम ये कहने लग जाते हैं कि नदियों के स्तर गिर रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बाहर देशों की तरह एक दिन इस परेशानी से जूझ रहे हों कि हमारे आसपास पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और हम इसके ऊपर कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम इस पर्यावरण को या फिर इस नेचर को देख ही नहीं रहे हैं, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सो जरूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। अगर आप पानी को कम

0: इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा एंड डेफिनेटली उसे ट्रीट कम करना पड़ेगा। और जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम उतनी ही इस्तेमाल करें तो भी जरूरी है। अब आज के जमाने में तो आप खुद ही जानते हैं कि कितनी जगह इंक्रोचमेंट है और कितनी इलीगल कॉलोनीज आ चुकी हैं, और ये एक्चुअली नगर निगम के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इवैल्यूएट कर पाए समय समय पर, हालांकि सेंसस होते हैं, कि और कितने नए लोग आ चुके हैं और ये जो जरूरत है ये कितनी बढ़ चुकी है। सो इन सारी चीजों को, इन सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। पंकज जी, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। इनफैक्ट यमुना जी के बारे में शायद इतनी बातें लोगों को नहीं पता थी जितनी आज हमने अर्थ वॉरियर के थ्रू जानने की कोशिश की, ऑक्सीजन मैन ऑफ डेली ने आज हमें बताया। तो जाते जाते क्या खास मैसेज आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे?
1: देखिए, हम सभी लोग जो है यमुना जी में झाग देखते हैं।
0: yes.
1: और हमारे दिमाग में चलता होगा इंडस्ट्री से आ रहा होगा। देखिए, ये झाग आ कहाँ से रहा है? हम सभी लोग जो है अपने घर में कपड़े धोते हैं
0: जी.
1: आप पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, उनको घोलते हैं, कपड़े डालते हैं, झाग बनता है, हमने कपड़े तो धो लिए। बट जब वो झाग वाला पानी हमारे घर से निकलता है, घर से नाले में जाता है, अगर बिना ट्रीट हुए फिर वो नदी में जाएगा तो ये झाग बनेगा। तो देखिए, हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिटर्जेंट यूज़ ना करें, शैम्पू यूज ना करें, साबुन यूज़ ना करें, बट हमें ये है कि हमें देखना होगा कि कम करें उसको। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है मतलब साबुन लगाए जा रहे हैं, शैम्पू लगाए जा रहे हैं, तो एक तो है कि वो आपके स्किन के लिए भी खराब है
0: जी.
1: क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आप जो है कोशिश करें नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने की। नेचुरल नहीं कर पाते अगर यही कर रहे हैं तो कम इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपको भी नुकसान कम हो और नदियों को भी नुकसान कम हो।
0: कितनी खूबसूरत सा संदेश दिया है पंकज जी। वाकई इस बात के लिए कंसर्न है कि हमारी नदियां जो हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह पाएं। नदियों का जो कॉन्सेप्ट है कि वो साफ सुथरी कलकल बहती हुई हो, लेकिन ये एक जमाने में हम पिक्चर्स में देख पाते थे, अब हमने नदियों को साफ नहीं देखा है। अब सिर्फ अगर आप देखें तो हम एक ही बात करते हैं, गंगा की सफाई की जाए, यमुना की सफाई की जाए, हमारी सारी नदियां जो सूख रही हैं उन्हें हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। सो कहीं ऐसा ना हो कि हम इन नदियों को ही गवा दें। तो ज़रूरी ये है कि जब कभी भी आप चीज़ों का इस्तेमाल करें, कॉन्शियसली ये ध्यान रखें कि इसका जो आउटकम है वो कहाँ जा रहा है और वो किस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए कि आपके आसपास का जितना भी इस्तेमाल का पानी है अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो वो झाग बनकर यमुना में जा रहा है, और इसी प्रकार वो न सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है लेकिन हमारी यमुना जी को गंदा भी कर रहा है। सो न सिर्फ हमारी इमोशनल वैल्यू है इन नदियों के साथ, लेकिन साथ के साथ ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स है। सो जरूरी ये है कि हम भी थोड़ा सा सजग हो जाएं, कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने और रिस्पॉन्सिबल कदम उठाएं। तहे दिल से धन्यवाद पंकज जी एक बार फिर से, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम साथी। आप सभी को पता है साथी खास कार्यक्रम, जिसमें मैं आप ही की मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करती हूं। लेकिन हर हफ्ते एक नई प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करती हूं और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए मेरे साथ होती हैं मेरी साथी। आज की जो मेरी एक्सपर्ट और साथी हैं वो है डॉक्टर दिव्या धवन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। एक्सपर्ट के बारे में बता दिया है, तो चलिए भाई टॉपिक के बारे में भी बता देती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ उस कॉमन सिनेरियो के बारे में जिसको लेकर हम सब काफी कंसर्न है। आज के जमाने में हम सब देखते हैं कि हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और खास तौर पर आज का यूथ सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हो गए। सो एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, अपनी चिंता करते हैं और उनके अंदर ना कहीं थोड़ा सा कंपैशन कम हो गया है। ये जरूर है कि हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज का यूथ पेशेंट नहीं है, आज का यूथ दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं या सेल्फिश हो गए हैं। कारण क्या है, किस प्रकार से मेंटल हेल्थ और सोसाइटी पर ये इम्पैक्ट डालता है, इस पर करेंगे ढेर सारी बात। लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्वागत करूंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या धवन का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: डॉक्टर दिव्या, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सब यही कहते हैं आजकल के यूथ में, खास तौर पर अगर हम जिन्हें जेन जी या जेन अल्फा कहने लग गए हैं, हमें ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, इन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं। फॉर इंस्टेंस, सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी जो होती है वो हमारी पेरेंट्स पर होती है और हम उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर वो कुछ कह दें या फिर उनके लिए तो हम जान भी दे देंगे। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आप देखेंगे कि इंसान अपने पेरेंट्स से भी पहले अपने बारे में सोच रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ सेंटर्ड वाली चीज है, या सेल्फिश मुझे कहना चाहिए, ये जो अप्रोच है, क्या ये अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है या आने वाले टाइम के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये घातक हो सकती है?
2: जी बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच का रूट कॉज अगर हम जाने तो स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म का बढ़ जाना,
1: yes.
2: या बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखना, कम्युनिटी वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बातें ना करना, उसमें डिक्लाइन होना, ये सब मॉडर्न सोसाइटी में असली कारण हैं जिसकी वजह से आज का यूथ सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है। जैसे आपने बोला कि लोग पहले तो अपने पेरेंट्स के लिए जान भी देने को तैयार थे और आज पूछते भी नहीं हैं उनको। दिस कुड बी बिकॉज those parents did not expose their children to a joint family system. तो हमारा जो traditional social structure है वो बहुत reduce हो गया है। बच्चों को joint family में रहना नहीं आता, concept नहीं पता, तो जो values हैं, respect है, sharing, cooperation, collaboration, ये इतनी integral values होती हैं जो कि आजकल के बच्चों को ठीक से इनकलकेट नहीं करवाई जा रही हैं। और भी कारण हैं, जैसे जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ता जा रहा है, लाइक्स, फॉलोइंग, शेयर, ऑल ऑफ दिस हैज़ बिकम अ वे थ्रू विच द यूथ इज़ मेजरिंग देयर सेल्फ वर्थ। तो सेल्फ वर्थ पता किससे चलती है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं। आजकल रील्स बहुत चलने लग गई हैं, तो हाईलाइट रील इफेक्ट जो है उससे लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं। तो अब यूथ का जो फोकस है वो अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट दिखाने में चले गया है, जिससे कि सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ जाती है, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है, सिर्फ एक रूम में बैठ के पूरा दिन मोबाइल पे आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक फेक जिंदगी दिखाने पे फोकस कर रहे हैं। और इसी फेकनेस में होता क्या है कि हमारा सारा फोकस इस पे चले जाते हैं कि व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू आई ओन, रादर देन व्हाट कैन आई गिव बैक टू पीपल, व्हाट डू आई हैव फॉर द सोसाइटी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा यूथ पेशेंट नहीं है, वेट करना नहीं आता उनको, क्योंकि उनको एकदम क्विक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, 10 मिनट्स में डिलीवरी है। पहले ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो की थी, अब अमेजोन और मिंत्रा भी वही मॉडल पे आने लगे हैं, विद इन अ डे दे आर डिलीवरिंग, विद इन हाफ एन आवर दे बी डिलीवरिंग। तो यूथ में कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर थिंग्स टू वर्क इन योर फेवर। अगर आप पेरेंट्स का भी अप्रोच देखें तो आजकल की पेरेंटिंग अप्रोच ये है कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो आपने अपने बच्चे को कोई एडवर्सिटी या डिफिकल्ट पाथ दिखाया ही नहीं, तो फोकस सारा बच्चे का आया कि मैं ही खुश होना चाहिए
1: जी।
2: वहां से भी सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ती है।
1: सो देखिए, कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि आज के युग की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को मुझे लगता है एक या दो जनरेशन पीछे जाकर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी भी चीज को, किसी भी परेशानी को जब उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो हम बड़ी क्लियरली देख पाते हैं। चीजें जब बहुत करीब होती हैं तो हम उन्हें क्लियरली नहीं देख पाते हैं। शायद सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड आज के यूथ का कहीं ना कहीं उन्हीं के अभिभावक या उन्हीं के पेरेंट्स या उन्हीं के परिवार से उपज किया गया है। एक टाइम होता था जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारी लग्जरी नहीं दे पाते थे। कारण ये था कि परिवार में एक ही सदस्य कमा रहा होता था और तब सैलरीज या कमाई बहुत कम होती थी और कमाने के जरिए बहुत कम होते थे। आजकल अगर परिवार में 5 लोग हैं तो वो 5ों लोग कमा रहे हैं और कमाने के जरिए भी 10 हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि सबका रुझान सिर्फ इस चीज पर है कि हम पैसा कितना कमा रहे हैं। हम इस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम परिवार को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज से ले क्या रहे हैं और क्या उसके लिए हम थैंकफुल हैं। सिर्फ ये माना जाता है कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो उसका एक एक एक पैरामीटर है सिर्फ और सिर्फ पैसा। सो शायद ये हमें और सेल्फ सेंटर्ड बना रहा है कि अगर मेरे पास पैसा है तो ये दुनिया मेरे पास आएगी और हमें ये दुनिया को झुकाना बहुत आसान हो।

0: कर सकते हैं। 14 साल तो एक बहुत लंबा समय है अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करने के लिए कह दें, और ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। आज के जमाने का जो यंगस्टर है या यूथ है या बच्चा है वो ये कहता है, अगर आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने मुझे पैदा किया और आप ही मुझे नहीं पालेंगे तो क्या, मतलब ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपने कुछ अलग नहीं किया है मेरे लिए। सो ये एक बड़ा थैंकलेस सा एटीट्यूड है, और ऐसे में उनका फोकस ये होता है मुझे नई गाड़ी, मुझे नई बाइक, मुझे नया मोबाइल फोन। और ऐसे हम एक्स नंबर ऑफ केसेस देखते हैं जहां वो ये भूल जाते हैं, मतलब ऐसे शायद हमारे पास अनगिनत उदाहरण है दिव्या जी, जहां पर मैं ये बता सकती हूँ कि यंगस्टर्स ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स की सैलरी कितनी है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे आसपास के जितने भी पीयर ग्रुप हैं उनके पास मोबाइल फोन कौन सा है, उनके पास बाइक कौन सी है या उनके पास गाड़ी कौन सी है, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उन पर एक अलग किस्म का सोशल प्रेशर बना देता हूँ, इमोशनल प्रेशर बना देता हूँ। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं भाई, किसी ना किसी तरह से उनकी जिद पूरी करनी है। सो मुझे बताइए कि ये जो सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करना है, ये क्या खुद उन बच्चों के लिए बुरा नहीं है?
1: ये उन बच्चों के लिए काफ़ी बुरा है, बट हम कुछ भी इसको ठीक करने के लिए कर पाएं उसमें हमें बच्चों से पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स ने, जैसे आपने बोला कि पहले जनरेशन में हार्डशिप्स के थ्रू आप निकलते थे, कम मीडियम थे पैसे कमाने के, आप बड़ी मेहनत करके वो पैसे कमाते थे, उसका दर्द पेरेंट्स ने महसूस किया है, अब वो दर्द अपने बच्चों को नहीं महसूस करने देना चाहते हैं। पेरेंट्स आर डूइंग मोर than what they can do in order to provide to their children.
0: Yes.
1: अब initially तो ये चल जाता है, जैसे कि अच्छा pencil box देना, अच्छा bag देना, अच्छे कपड़े देना, अच्छे खिलौने देना, आप अपने standards से ऊपर उठ के ये सब अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्होंने gratitude नहीं सीखा है,
0: exactly.
1: या उन्हें नहीं पता कि parents ने कितनी मेहनत करके पैसे कमा के ये हमें दिया है, तो अब बच्चों को ये लग रहा है कि हम तो जो मांगेंगे हमें मिलेगा और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें देना, तो वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को मैनेज करने में। बट अगर हम हर चीज़ का कारण समझ के वहाँ से ठीक करने लगें, हम बच्चों को क्यों उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं जिसके लिए हमने उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं, सिखाया
0: yes.
1: ही नहीं, अगर हम स्कूल में भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग, कंपैशन एक्टिविटीज़, काइंडनेस एक्टिविटीज़ या स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों में किसी भी तरीके से ये इनकलकेट कर पाएं, तो आई थिंक इसमें काफ़ी चेंज आएगा।
0: ये बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट यू नो किसी भी स्टेज पर, चाहे फिर हमारी एकेडमिक वर्ल्ड में देख लीजिए या पर्सनल वर्ल्ड में देख लीजिए, हम थैंक यू कहना नहीं सिखा रहे हैं। हम थैंक यू कब कहते हैं? जब हमें हमारी मनपसंद चीज़ मिल रही होती है। ये एक्चुअली दे डिजर्व इट, वो ये सोचते ही नहीं है कि हमें किसी की कड़ी मेहनत से या किसी के बहुत सारे सैक्रिफाइस से मिल रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि एक जनरेशन अपने आप को बिल्कुल अपनी सारी खुशियों को कुचल के दूसरी जनरेशन को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी जनरेशन शायद ये समझ ही नहीं पाती है, एंड थ्रू एंड थ्रू आने वाली जनरेशन को लगता है ये इजी मनी है और हमें तो यूं ही मिल गया है। सो उसके लिए मेहनत करना या फिर उसके लिए थैंकफुल होना या ग्रैटिट्यूड रखना कहीं आता नहीं है। और यही अगर आप देखेंगे तो अब समाज में हो रहा है। आज के ज़माने में हम अगर देखें तो जो करंट जनरेशन है उसने अपने आप को एक कंज्यूमर बना लिया है। हम इंसान नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं बिकाऊ हैं। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं तो वो बिक रहा है, अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो वो बिक रहा है, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो वो बिक रहा है, अगर आप नौकरियां दे पा रहे हैं तो वो आप बेच सकते हैं, समाज में अगर आपका एक बड़ा रुतबा है तो आप बेच पा रहे हैं, लंबी गाड़ियां या फिर बहुत ऐशो आराम आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप उस समाज में रहने लायक भी नहीं है और आप कहीं पूछे भी नहीं जाएंगे। ये एक गलत धारणा आ गई है जिसे हम कहते हैं कि हमारे समाज को खराब कर रही है, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हैम्पर यहाँ हो रहा है। हम क्या बन रहे हैं? कमर्शियल कंज्यूमर बन गए हैं, या फिर कहना चाहिए हम एक प्रोडक्ट बनकर रह गए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, मान लीजिए कि आपने कहा अपने पेरेंट्स को मुझे एंड्रॉयड फोन दिला दीजिए और वो आईफोन ला देंगे, तो आप गले लगकर थैंक यू कहेंगे, हग भी करेंगे, क्योंकि आपने जो चाहा उससे ज्यादा मिला। लेकिन अगर आपने जो चाहा उससे कम मिला तो आप थैंक यू भी नहीं कहेंगे, आप नाराज होकर उन पर एक प्रेशर डाल देंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो आदत है, ये आदत आपकी लाइफ में भी आ जाती है। सो ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ जो बिल्कुल थैंकलेस हैं फॉर व्हाट गुड लाइफ दे आर लीडिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जिंदगी है ये तो बाय डिफॉल्ट वो लेकर आए हैं, जन्मसिद्ध अधिकार है उनका, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें जन्म दिया है, वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, और अगर वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या अच्छे कॉलेज में या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वो जा पा रहे हैं, सो ये

0: एक्चुअली दे डिजर्व इट. वो ये सोचते ही नहीं है कि हमें किसी की कड़ी मेहनत से या किसी के बहुत सारे सैक्रिफाइस से मिल रहा है. और ये बिल्कुल सही है कि एक जनरेशन अपने आप को बिल्कुल अपनी सारी खुशियों को कुचल के दूसरे जनरेशन को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी जनरेशन शायद ये समझ ही नहीं पाती है. अब बात करते हैं समाज की, क्योंकि देखिए समाज का जो फैब्रिक है ना, वही हमारे पूरी दुनिया के फैब्रिक को बना रहा है. सो धीरे धीरे समाज राज्य बनाता है, साथ के साथ हमारे आसपास की दुनिया को बनाता है. अब अगर हम ये देखें तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज पे आ रहा है. ये शुरुआत घरों से हुई और घरों से समाज में हुई, और आज के टाइम पर जीने का जो पैरामीटर है वो शायद पैसा बनकर रह गया है. जिसके कारण हो क्या रहा है कि हम बेसिकली पहले कहते थे ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जब हमें लगता है कि अब उनका यूज खत्म हो गया है, अब वो किसी ऐसी पोजिशन पर नहीं है जहां वो हमें कुछ दे सकें, हम उनकी वैल्यू जीरो करते जा रहे हैं. इनफैक्ट वो घरों से भी बाहर होते जा रहे हैं. उनकी जो कहना चाहिए प्रॉपर्टी है, एक बार वो मिल जाए तो उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं. और ये समाज घर घर की कहानी हो गई है. इतने सारे ओल्ड एज होम मुझे लगता है शायद इसी की उपज है. अब ऐसा ही अगर हम देखें तो इसी प्रकार का एक कंज्यूमर इफेक्ट वाला इम्पैक्ट डल रहा है हमारे पूरे समाज पर. So, किस प्रकार से खराब हो रहा है हमारा समाज?
1: इसका हमारे समाज के ऊपर इस तरीके से ही इम्पैक्ट आ रहा है. जैसे एक एग्जांपल एल्डरली लोगों का आपने लिया कि उनको बहुत निग्लेक्टेड फील हो रहा है अपनी फैमिली में. आजकल के बच्चे अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को और सक्सेस पे सारा फोकस है, तो फैमिली वैल्यूज और फैमिली के कंसर्न्स पीछे हो जाते हैं. आजकल के बच्चे फैमिली ओरिएंटेड इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाहर घूमने जाना है, सैटरडे संडे पार्टी करनी है, वीकडे में ऑफिस जाना है, तो फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है
0: जी.
1: तो दैट इज़ वन रीज़न. और हमारा समाज में आप देखिए आज इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंसर्न है जितने पहले कभी नहीं हुआ करते थे. एक तरीके से मेंटल हेल्थ का अपना पैंडेमिक स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, वेयर एवरी अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं और हम में कंपैशन की इतनी कमी हो गई है कि हम किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. हम लोगों से कनेक्शंस फॉर्म करने में डरते हैं, हमें डर लगता है कि लोग अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस में आने के लिए हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमें बिट्रे कर सकते हैं. उन लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो दैट इज़ इम्पैक्टिंग आर सोसाइटी. क्योंकि अगर मैं अपने समाज पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, अपने लोगों के आसपास कनेक्शंस नहीं बना पाऊंगी, तो आई विल फील डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड मी, और वो डिस्कनेक्ट मुझे और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ लेके जाएगा. सो दैट इज़ वन वे. और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको हमारी ज़िंदगी के हर एरिया में इम्पैक्ट दिखेगा, बी इट क्लाइमेट चेंज. हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही हो, मैं लूँगी, मैं क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचूंगी क्योंकि मेरा कनेक्ट ही नहीं है दुनिया से. या चाहे वो करप्शन हो वर्क प्लेस में, चाहे मेरे को किसी को डिसीव करके, किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, एक्सप्लॉइट करके अगर आगे पहुँचना हो, तो वो भी होगा क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज लाइक इंटरलिंक्ड. एंड आई थिंक अगर हम रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे तो एक विशियस साइकिल बन जाएगी जिसमें हम खुद ही फंस जाएंगे. अगर हम इससे निकलना भी चाहते होंगे ना तो नहीं निकल पाएंगे. तो आई थिंक रूट कॉज को जो एड्रेस करना है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें हर जनरेशन की ट्रेनिंग लगेगी, जो हमसे हम हैं, हमसे पहले और हमसे आगे वाले. व्हेन वी ऑल कलेक्टिवली सिट एंड वर्क टुगेदर, वी डिस्कस अबाउट द इश्यूज, और हम में इतना करेज हो कि हम एज अ फैमिली एक यूनिट वो चेंज लाने के लिए रेडी हैं, देन आई थिंक इट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट. बच्चे अपने क्लासमेट्स को बताएंगे, क्लासमेट्स अपने घरों में बताएंगे, और वो पूरा चेंज वहाँ से सर्कुलेट होगा.
0: सो भाई देखने में ऐसा लगता है कि ये सपने जैसा है जिसे पूरा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक साथ सबकी सोच बदलने की ज़रूरत है. अब हमने ना समाज की सोच को बना दिया है, और जहाँ लोगों को आसानी से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम पूरे विश्व के सबसे करप्ट कंट्रीज में से हैं, बट देन वी टेक प्राइड इन लिविंग लाइक दिस. ऐसा नहीं है कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है. हम अगर आउट ऑफ द वे हमें कोई भी किसी चीज़ का फेवर दे रहा है तो हम उसे बड़े गर्व से लेते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि एज लॉन्ग एज अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. सो हमने एक एटीट्यूड अपना लिया है कि बस हमें अपने बारे में सोचना है. एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच हमारी हो गई है, और ऐसा नहीं है, इस सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से कभी कभी हम खुद भी मात खाते हैं, कभी कभी इस सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में हम भी इसके पिसने में आते हैं, लेकिन तब हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, और जब हमें फेवर मिल रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है. तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हमें कॉन्शियसली इसे बैलेंस कर। जब जो सफर करने पर आता है तो उसे वो अन्याय लगता है, लेकिन जब तक वो उसके फेवर में होता है तो हमें लगता है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो मुझे बताइए कि अगर हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करें तो इसे कैसे किया जा सकता है?
1: बैलेंस करने के लिए तो ये है कि पर्सनल सक्सेस और सेल्फ सेंटर्डनेस कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। इट इज ओनली रॉन्ग व्हेन इट इज यूज्ड इन एक्सट्रीम फॉर्म। तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल ग्रोथ के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आप ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स ये हैं कि अगर ये ज्यादा एक्सट्रीम में बढ़ जाए तो आप का फोकस सिर्फ अपने ऊपर रहता है, आप सेल्फ कंज्यूम्ड हैं और आपका कंसर्न और लोगों के लिए कम हो जाता है। और अगर आप इतने ज़्यादा खुद में कंज्यूम्ड हैं तो आप बड़े सेंसिटिव हैं अपनी हर एक थॉट और इमोशन को लेके, जिससे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो इसके दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। बैलेंस करने के लिए हमें फोकस ग्रोथ पे करना है, इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करिए, लेकिन साथ में सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करिए। सक्सेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ बिट्रेइंग एनीबडी। अपनी सक्सेस को अपने हाथों से खुद बनाइए, खुद मेहनत करके अचीव करिए, किसी और को धोखा देके आगे जाने के प्रयास ना अगर हम करें। और बड़े ओपन रहें हम कनेक्शंस को लेके और लोगों से इंटरैक्शंस में, अगर हम ओपन माइंड से डिस्कस करें, अपने आप को थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेके रखें, तो हम दुनिया को बहुत बेहतर और बड़े व्यू पॉइंट से समझ पाएंगे और हमारी बहुत आंखें खुलेंगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है दुनिया में। फोकस अपने पे करिए, औरों से कंपेयर मत करिए, अपनी मेहनत करिए, अपनी ग्रोथ अचीव करिए, लेकिन गिव बैक टू द सोसाइटी सो दैट यू ऑल्सो मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ही इसका यही है, फैमिली निग्लेक्ट होना और अपनी मेंटल हेल्थ सफर करना। तो इस तरीके से फोकस करते हैं ग्रोथ पे कि अपने आप को भी ठीक रखें और दूसरों को भी ठीक रखें।
0: भाई देखिए, जब कभी भी हम सक्सेस की लैडर पर चढ़ते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो परेशानी होती है कि जो सफलता की सीढ़ी है ना, ऊपर जाने के बाद आप बहुत अकेला महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपने अपनों को तो छोड़ ही दिया है, मानकर चलिए। और जब आप अपनों को छोड़कर चल रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो भी छूटेंगे। क्योंकि जब हमारा फोकस सिर्फ हम या मैं है तो हम बाकी सबको कहीं नहीं देखेंगे अपनी ग्रोथ में, और वो हमें हमेशा हमारे कहीं ना कहीं पूरे रास्ते का रोड़ा नजर आएंगे। तो आप उन्हें साफ करते हुए चलेंगे कि ये रोड़ा मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए, मेरी ग्रोथ यानी मेरी ग्रोथ। और एक दिन ऐसा होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और जब आप अकेले हो जाएंगे ना, तो शायद आपके पास ढेर सारा पैसा हो लेकिन मेंटल हेल्थ, पीस, खुशी, ये सब आपके पास नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो आप सोचिए ना कि एक ही जीवन मिला है जिसे बड़ी खुशहाल तरीके से जिया जा सकता है। और मैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखवाने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि क्यों नहीं याद रखते हैं कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं। जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सनल सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, और हमारे लिए जो सक्सेस का पैरामीटर है वो है पैसा, इस पैसे को आप कभी भी लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम उसके साथ आने वाली खुशियों को अगर सोच रहे हैं, ये सारी खुशियां जो हैं यही सही सुख है, तो इस पर भी सोचना जरूरी है कि क्या ये आपको सुख दे पा रहा है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप तो डेफिनेटली वो आपको सुख नहीं देगा। अगर आप पैसा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ तो आपको वो सुख नहीं देगा। अगर आप पैसा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पीस, परेशान है आप लोगों से धोखा कर रहे हैं, करप्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी रात को नींद तो चैन से नहीं आएगी। तो आप सोचिए ना कि आपने कमाया क्या, आपने धन तो कमा लिया, उस धन को आपने मान लीजिए कि बड़ी गाड़ियों में, घरों में, हॉलीडेज में, वेकेशंस में उड़ाया, लेकिन आंतरिक सुख तो नहीं पाया ना। कहीं आपको ऐसा लगा कि वैलिडिटी तो नहीं है ना इसकी, डर लगा रहता है कि कहीं ये पैसा पकड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसे जिस ढंग से कमाया है हम जानते हैं। सो डेफिनेटली बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हम इस समाज से जो लेने आए हैं उसे ले पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सेल्फ सेंटर्ड होना, आपका सेल्फिश होना, या फिर सारी दुनिया के साथ आप कट के सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ये बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है। अब हर इंसान के लिए, वैसे देखिए टारगेट में यूथ को कर रही हूँ क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा कम है कंपैशन, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी डॉक्टर दिव्या कि यंगर जनरेशन से खासतौर पर देखा जाए तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम कंपैशन कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये हम अपनी आदत कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हम अपनी ग्रोथ की तरफ काम करें, लेकिन हम ये भूले नहीं कि हमें औरों के लिए भी काम करना है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें इसे अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने डिस्कस किया ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, तो अगर घर में पेरेंट्स बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाएं और स्कूल में टीचर्स सिखाएं, और ग्रैटिट्यूड का असली मतलब सिर्फ कुछ मिलने पे थैंक यू बोलना नहीं है, जो आपके पास है और आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उसके लिए एक्चुअली थैंक यू फील करना है। आपके घर के ऊपर एक छत है, आपके पास, आप सिक्योर हो, आप सेफ हो, आपकी डेली नीड्स सारी मीट हो रही हैं, इसका ग्रैटिट्यूड होना ही बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है। और हमारी बहुत सारी नीड्स वहीं पर सेटिस्फाई हो जाती हैं जब हम इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। करेक्ट रोल मॉडल्स होना, तो अगर पेरेंट्स और टीचर्स थोड़ा सा मॉनिटर कर पाएं कि बच्चे किस तरीके के लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम बच्चों को बहुत क्रिएटिव वे में कुछ मूवीज़ दिखा के, कुछ ऐसे गाने सुना के, कुछ ऐसे पोएम सुना के, या थ्रू लिटरेचर जहाँ पे ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ कंपैशनेट हैं लोग, जहाँ काइंडनेस है, वैसी चीज़ें बच्चों को दिखाएं, उनके साथ डिस्कस करें और उन्हीं एक्ट्स को उनके डेली करिकुलम में इन्वॉल्व करें। जैसे रोज़ उनको हम एक लेक्चर दें जहां हम 20 मिनट सिर्फ उनको एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में इंडल्ज करने के लिए बोलें, कि वो कैंपस में जाएं, स्कूल में जाएं और जहां दिखे किसी की हेल्प करें। कहीं हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी की, तो कहीं कूड़ा कुछ गिरा है वही उठा दें। तो आप, काइंडनेस इज़ नॉट जस्ट फॉर अदर पीपल, इट इज़ ऑल्सो फॉर आर सोसाइटी, इट इज़ फॉर आर कम्युनिटी, फॉर द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। तो ऐसे बड़े सारे तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को डेली लाइफ में काइंडनेस और कंपैशनेट होना सिखा सकते हैं।
2: और इन सब की पहली सीढ़ी है कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें, क्योंकि जब उस स्क्रीन से हमारी नज़रें हटेंगी तो हमें दुनिया की बाकी सारी चीज़ें नजर आएंगी। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया की लाइफ थोड़ा सा कम जी के रियल लाइफ जीने में विश्वास रखें। डॉक्टर दिव्या, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है इसका डिबेट तो हर रोज़ हर एकेडमिक सेशंस में होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, घरों में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आने की ज़रूरत है, ना सिर्फ यंगस्टर्स में लेकिन मुझे लगता है एल्डर्स में भी, कि हम दे क्या रहे हैं, समाज से ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार का फैब्रिक हम समाज का बनाते हैं उसी में हम रहने लग जाते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। सो ज़रूरी है कि क्या हम बदलाव की तरफ आ रहे हैं या हम और सबको सेल्फ सेंटर्ड होने में धकेल रहे हैं। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को कैसे खास मैसेज के साथ आप बाय कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल भी देखिए डिसहार्टन या सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने ऊपर फोकस करने से सबका नुकसान ही हो रहा है। बस थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि कहीं आप अपने ऊपर इतना फोकस तो नहीं है कि आपके सामने कोई दुख में है, दर्द में है, कोई आपसे थोड़ी हेल्प चाह रहा है और आप अपने ऊपर इतना फोकस्ड हैं या अपनी सक्सेस में इतना खो गए हैं कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे या आपको उसकी बात सुनाई ही ना दे रही हो। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके आसपास के लोग भी आपके साथ हों जब आप सक्सेसफुल हों, तो वो भी आपकी खुशी में खुश हो पाएँ, आप उनकी खुशी में खुश हो पाएँ या एक दूसरे के साथ अपना दुख बांट पाएं। तो बस इतना ही चेक करने की जरूरत है।
2: ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि आंसर है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं तो क्या आपके लोग आपके आसपास हैं, और जब आपके आसपास के लोग सक्सेसफुल हैं तो क्या आप उनकी सक्सेस का हिस्सा बन पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं खुशी नहीं है। और अगर खुशी नहीं है तो आप बताइए जीवन का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है ही कहाँ। अगर आप खुशी नहीं है तो ये पूरा जीवन आप सिर्फ पैसे के साथ या फिर अपने ही शौक के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ कैसे जिएंगे? कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी पड़ाव में तो आपको महसूस होगा कि जहां से मैंने अपने इस सफर की शुरुआत की थी वो लोग मेरे साथ नहीं हैं। सो ध्यान रखिए कि आज भी दुनिया में कंपैशन की बहुत ज़रूरत है। वो छोटे छोटे कंपैशन के एक्ट्स आप कर सकते हैं। शुरुआत से लेके अंत तक मैं यही कहूँगी कि अगर हम अपने नेचर को इस प्रकार बनाएं कि हम अपने आसपास के लोगों को ये महसूस करा पाएं कि हम जी रहे हैं, रोबोट्स नहीं हैं और हार्टलेस तो बिल्कुल भी नहीं है, हम मशीन नहीं हैं, तो शायद हम सही और खूबसूरत जिंदगी जी पाएंगे। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर दिव्या, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच।
2: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते प्रोग्राम साथी में। टिल देन फील गुड फील लाइट।
3: ये हुई ना बात।

0: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण न सिर्फ मेरे दिल के करीब, लेकिन आप सब चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, लेकिन परेशानी ये है कि महिला सशक्तिकरण को करने के लिए खुद महिलाओं को आगे आने की जरूरत है और इस कार्यक्रम का ध्येय भी यही है। पिछले 15 सालों से अगर ये खूबसूरत सा कार्यक्रम रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आपको सुनाई दे रहा है तो उसका एकमात्र कारण है कि महिला सशक्तिकरण हर महिला तक पहुंच जाए। और जब सभी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो हमारे कार्यक्रम का जो पर्पज है यानी वी महिलाएं एक साथ आ जाएंगी। सो वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट आज का खूबसूरत सा एपिसोड मैं लेकर आ गई हूं। और आज की हमारी जो खास गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज्योति राणा, जो कि रजिस्ट्रार हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ ये एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं, लीडरशिप मेंटोर भी हैं, लेकिन अपने आप में एक सशक्त और डायनेमिक महिला हैं। करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: डॉक्टर ज्योति, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं हर महिला से पूछती हूँ, कार्यक्रम का नाम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग मायने रखती है।

0: सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण की क्या डेफिनेशन हो, या आप किसे सशक्त महिला कहेंगी, सो क्या कहेंगी आप?
1: भावना, मेरे मायने में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ये है कि हर महिला अपनी तरह से अपनी सोच के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने में सक्षम होनी चाहिए। यानी कि अगर वो एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहती है तो जो कुछ वो एजुकेशन में पाना चाहती है, जो कुछ वो पढ़ना चाहती है वो पढ़ सके
0: जी।
1: जो करियर वो चूज़ करना चाहती है, जिसकी भी उसको इच्छा है, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, और चाहे वो टीचिंग के क्षेत्र में या शूटिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाना चाहती है, कॉरपोरेट लाइफ में जाना चाहती है
0: जी,
1: तो वो उस क्षेत्र में जा सके। या फिर अगर वो अपनी सोच से कुछ नया करना चाहती है, कोई काम करना चाहती है, किसी क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, तो उसको उतनी स्वतंत्रता हो कि वो जाकर अपने उस क्षेत्र में काम कर सके
0: जी।
1: इसके अलावा अगर अपने आसपास भी कोई काम करने का मन है, या अपना जो जीवन है जो शादी के बाद चुनना चाहती है
0: जी,
1: अपनी पसंद से अगर वो चुनना चाहती है, और अगर अपनी सोच के अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करती है और कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, देश में करना चाहती है, विदेश में करना चाहती है, तो वो बड़ी स्वतंत्रता से अगर उसको चूज करना चाहती है और वो चूज कर सकती है, मेरे लिए वो वीमेन एम्पावरमेंट है।
0: अब ज्योति जी, सबसे अहम सवाल, महिलाएं और चैलेंज कम टुगेदर, मतलब सरनेम में महिलाओं के साथ चैलेंज, और शायद ही किसी भी आज तक की सक्सेसफुल महिला से हम बात करें तो वो ये कभी भी नहीं कहेगी कि उसकी जर्नी केक वॉक रही है, हमेशा से परेशानियों से भरा हुआ जीवन होता ही है
1: जी।
0: सो अगर आज के सिनेरियो की मैं बात करूं, क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज फेस कर रही हैं आज की महिलाएं?
1: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, और मुझे लगता है ये प्रश्न हर किसी महिला के सामने किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है
0: जी।
1: और चैलेंजेस, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चैलेंजेस हर किसी ह्यूमन बीइंग के सामने हैं
0: जी,
1: लेकिन महिलाओं के सामने थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं
0: जी,
1: क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर हमेशा जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं
0: जी,
1: उनका जो करियर सोचा जाता है वो ये सोचा जाता है कि एक हद तक पढ़ लिख कर और उनको अपना लाइफ में सेटल होना है।
0: Yes.
1: सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है परसेप्शन है।
0: बिल्कुल,
1: महिलाओं के प्रति परसेप्शन, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे है और चाहे वो फैमिली में है
0: जी।
1: फैमिली की अगर हम बात करें तो उनके साथ परसेप्शन ये जुड़ा हुआ है कि महिला को ही घर का हर कार्य करना है।
0: Yes.
1: जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर महिलाएं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो घर में उनको समझा जाना चाहिए और उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए फैमिली मेंबर्स को आगे आना चाहिए
0: जी।
1: जेंडर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए।
0: Yes.
1: कार्य कोई भी कर सकता है, जिसके पास भी समय हो, चाहे वो मेल और चाहे वो फीमेल, दोनों ही मिलके अगर काम करेंगे तो फैमिली बहुत अच्छी आगे चलेगी
0: जी।
1: और फैमिली बहुत अच्छी आगे चलेगी तो आगे जो बच्चे हैं
0: जी,
1: वो प्रसीव करते हैं, वो एक्शन से देखते हैं कि महिलाओं का क्या रोल है उनकी फैमिली में, और वही प्रसीव करके आगे वो चलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह से अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो महिलाओं के साथ एक परसेप्शन जुड़ जाता है अक्सर कि महिला है, क्या ये काम कर पाएगी
0: जी,
1: क्या ये इस महिला के बस की बात है इस काम को करना। स्पेशली अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं
0: Yes.
1: तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये परसेप्शन बड़ी जुड़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: कि जैसे ही किसी महिला एडमिनिस्ट्रेटर को देखा जाता है तो ये सोचा जाता है, ये प्रसीव किया जाता है कि शायद ये महिला उतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकती।
0: Yes.
1: पर भावना, मैं आपको ये बता दूं कि जो महिलाएं हैं उनके पास एक एम्पथी का एलिमेंट ऐसा होता है जो उनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है।
0: Exactly.
1: जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज सोच सकती हैं कि जहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके एंगल से वो बहुत अच्छे तरीके से सोच सकती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेके बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो एक परसेप्शन का चैलेंज है
0: जी।
1: दूसरा चैलेंज ये है कि उनकी डिपेंडेंस
0: Yes.
1: जो फैमिली में भी और कहीं ना कहीं उनकी वर्क प्लेस पे भी।
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जैसे जैसे महिला एक अपर पोजीशन पर जाती है तो वहाँ पर उसको उतना फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है
0: जी।
1: एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं काबिल हैं, जो महिलाएं काम कर सकती हैं उनकी फैमिलीज को आगे आना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया जाना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए जिस बातचीत के जरिए ये समझा जाना चाहिए कि उस महिला का कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है और वो कहाँ पर कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकती है, क्योंकि कहीं बाहर पर भी जाकर अगर वो कंट्रीब्यूट करती है अल्टीमेटली फैमिली तक आता है, क्योंकि फैमिली भी उस समाज का हिस्सा है। तो जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है, या महिलाओं के लिए कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की जाती है और मेल्स के लिए कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए सोचा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो मुझे लगती है, एजुकेशन। हम अर्बन सिटीज में यहाँ पर रहकर शायद ये सोच पाते हैं कि हमारे लिए सारी फैसिलिटीज इक्वल हैं। अगर हम थोड़ा आगे जाएं और अगर रूरल एरियाज़ में जाएं, आज भी वहाँ पर ये स्थिति है कि महिलाओं को, लड़कियों को एजुकेशन के लिए शहरों में नहीं भेजा जाता
0: जी।
1: या उनको एजुकेशन के लिए सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की तरफ देखा जाता है जो कि घर के बिल्कुल आसपास हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे आसपास के गाँव से बच्चियाँ आती हैं, अक्सर उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये ग्रीवेंस होती है कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि दूर की बच्चियां भी वहां पर आ सकें
0: जी।
1: तो ये एक चैलेंज है, जबकि एक किसी भी लड़की को इस वजह से नहीं रोका जाना चाहिए कि वो उस संस्था में जाना चाहती है, वो संस्था दूर है। इस सोच को बदलना होगा, इस परिपेक्ष को बदलना होगा, इस परसेप्शन को बदलना होगा। ये थोड़े चैलेंजेस मुझे लगता है कि फीमेल्स के सामने, महिलाओं के सामने हैं, अभी भी हैं।
0: ज्योति जी, अब जो सवाल है वो आपके सशक्तिकरण का है। सो शुरुआत अगर मैं देखूं, हम जब कभी भी जीवन की शुरुआत करते हैं, डेफिनेटली हम एंड को कभी इमेजिन भी नहीं करते हैं। सो क्या आपने तब सोचा था कि आपकी जो सशक्तिकरण की जर्नी होगी वो इस प्रकार होगी? बहुत सारे चैलेंजेस पर्सनल और साथ के साथ प्रोफेशनल फेस करने पड़ते हैं, कई बार कुछ ऐसे चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं जो शायद आपको लगता है कि जीवन में अनकॉल्ड फॉर थी, लेकिन इसलिए क्योंकि वो एक चैलेंज था, और उसके बाद जो आपका स्ट्रगल है, आपको लगता है कि जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं तो वर्थ इट लगता है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर उस जर्नी को देखें तो ऐसा लगता है कि ये आसान सफर नहीं था। सो अगर मैं आपके पर्सनल चैलेंजेस की बात करूँ, आपके एम्पावरमेंट की जर्नी की बात करूँ, तो कैसी रही?
1: भावना, मेरा पसंदीदा सवाल आपने पूछा
0: जी।
1: अक्सर मन करता है कि अपनी कहानी ज़रूर शेयर की जाए, और उससे अगर खुद को भी इंस्पिरेशन मिलती है और लगता है कि अपना अनुभव अगर किसी और के काम भी आए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। चैलेंजेस रहे, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं आपसे बात कर रही थी कि एक माइंडसेट का है। हालांकि मेरा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा है, हाईली एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन एक समाज की सोच उस समय ये थी कि लड़कियों को हायर एजुकेशन में बहुत आगे नहीं जाना चाहिए
0: जी।
1: और स्पेशली पता नहीं क्यों, मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा था कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम उस समय नहीं सोची जाती थी
0: जी।
1: और मेरा परिवार ये सोचता था कि मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाऊं, और अगर मैं कॉमर्स फील्ड में जाती हूं या मैं मैनेजमेंट फील्ड में जाती हूं तो वो कॉरपोरेट लाइफ है, और कॉरपोरेट लाइफ लड़कियों के लिए ठीक नहीं है
0: जी।
1: इस सोच के साथ मैं उस परिवार की बात कर रही हूं जो हाईली एजुकेटेड फैमिली है। तो उस समय उस समाज के उन लोगों की क्या सोच होगी जहाँ पर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे बड़ा फाइट मेरा उस समय था, और मुझे ये था कि मुझे कॉमर्स साइड से जाना है, मुझे मैनेजमेंट साइड से जाना है, एंड मैंने बहुत कन्विंस करके मैंने उस लाइन को चूज़ किया
0: जी।
1: और जब मैंने उस लाइन को चूज़ किया तो मेरे सामने एक ये मकसद था कि मुझे उस लाइन में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। वहाँ से ये शुरुआत हुई, और एक छोटे से कस्बे से शुरुआत हुई, रादौर से शुरुआत हुई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मैं नहीं कहूँगी, और हर फैसिलिटी के लिए हमें जाना होता था, बाहर जाना होता था, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट थी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना हुआ, यूनिवर्सिटी के बाद IIM अहमदाबाद जाना हुआ, फिर केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी जाना हुआ। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी, पढ़ाई के समय जो भी आपके पास चैलेंजेस थे और जो भी आप करना चाहते हैं, एक सबसे बात महत्वपूर्ण जिसने मुझे बहुत बेनिफिट किया कि आप अपने आप को अगर लिमिटेड कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे
0: जी।
1: जब आप अपनी सोच को बहुत बड़ा रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं हर काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप यकीनन उस काम को कर पाते हैं
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी सोच को लिमिट नहीं करना है, आपको बांधना नहीं है किस चीज से। तो जितने भी चैलेंजेस आए, चाहे मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक पढ़ाई का स्ट्रीम लेने का चैलेंज आया, और फिर उसके बाद ये होता है कि एक समय के बाद परिवार शुरू कर देता है कि हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, मैरिज कर लें। वहाँ पर भी चैलेंज ये आया कि मैंने अपने परिवार को कहा कि सबसे पहले मैं कहीं जॉब करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ। उसके बाद उसके लिए भी थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा और चैलेंज आया। ऐसे ही इसी तरीके से आगे जॉब में भी तरह तरीके की असाइनमेंट्स जो ली, उन असाइनमेंट्स पे ये परसेप्शन था कि शायद फीमेल है और फीमेल उतना अच्छे तरीके से उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। मैं भावना बताना चाहूँगी आपको, जब मैंने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके पास मेजर 4 असाइनमेंट्स आई डीनशिप की
0: जी।
1: और एक व्यक्ति के लिए 4 डीनशिप्स को संभालना एट ए टाइम अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था
0: जी।
1: बट मुझे लगा कि इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, और उसी प्रिंसिपल ने काम किया कि कोई भी काम मुश्किल है पर असंभव नहीं है, और उसकी वजह से मैं वो काम को कर पाई। और आज अगर मैं देखती हूँ अपने आप को, तो मैं अपने आप को बिल्कुल उस बच्चे की तरह पाती हूँ जैसे वो बच्चा किसी खेल के मैदान में खेल रहा होता है और वो गोल करने जाता है। जब कोई भी बच्चा, कोई भी प्लेयर गोल करता है, तो उसको अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करना पड़ता है।
0: Yes.
1: वो आसानी से गोल नहीं कर सकता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो उस गोल को तभी कर पाता है। लेकिन जब एक बार वो गोल कर लेता है तो वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।
0: Yes.
1: उसके साथ ये जुड़ जाता है कि उसने एक गोल कर दिया, अब वो नेक्स्ट गोल की तरफ बड़े आसानी से बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चैलेंजेस की वजह से, उन अपॉर्चुनिटीज की वजह से बहुत सारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है।
0: वाकई, और सशक्तिकरण के लिए तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, हर महिला अपने उतार चढ़ाव से निकलती है, लेकिन वो बहुत सारी महिलाओं के लिए ना रास्ता बना देती है। आपकी जो डगर थी वो बहुत मुश्किल भरी थी, लेकिन जिन कदमों से आप निकले हैं उन कदमों ने एक पक्का रास्ता बना दिया, और अब बहुत सारी महिलाएं उसे फॉलो कर सकती हैं, रेप्लिकेट कर सकती हैं। क्योंकि जब एक पहली कोई भी, मुझे लगता है कि लड़की घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली होगी, तो उसने बहुत सारी लड़कियों को वो हिम्मत दे दी होगी कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि वो भी घर से बाहर निकली और वो पढ़ पाए। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी विमेन लीडर्स रही हैं, और शायद यही कारण है कि आज हम महिलाओं को हमेशा एक ही बात कहते हैं, इफ वी कुड डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। और इसी वचन के साथ मैं ये मान सकती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो आज भी सपने देख रही हैं, पूरे कर नहीं पा रही हैं, उन्हें ये संबल मिले कि वो भी अपने सपनों को पूरा जरूर करें, क्योंकि ये जीवन हम सभी के लिए एक ही बार मिला है और इन पलों की गारंटी किसी के पास भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, वन लाइफ, इस जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं उसे कर जरूर लीजिए, सिर्फ एक जेंडर के कारण अपने सपनों को यूं ही खत्म मत करिए। और अब एक ऐसा सवाल जो बहुत जरूरी है, ज्योति जी, इस बात पर आप इत्तफाक रखेंगे मेरे साथ कि महिलाओं को स्किल फिर भी सिखाई जाती थी, और शुरुआत से ही माना यह जाता है कि वी आर गुड एट स्किल्स
1: जी।
0: सो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहाँ महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं। किसी भी अगर राज्य का डेटा उठा लूँ तो आज भी वो एक पैरिटी तो नहीं है, और चाहे हम बहुत सारी सरकारी स्कीम की बात करें या फिर हम पर्सनली भी देखें कि आज लोगों के माइंडसेट बदल गए हैं, बट इस इक्वालिटी को हम ला नहीं पाए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्किल अगर हमारे पास है लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो हम उस स्किल को एनहांस करके अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। सो मुझे बताइए, महिलाओं के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है?
1: देखिए, महिलाओं के लिए एजुकेशन 2 कारणों से जरूरी है
0: जी।
1: एक तो ये कि अगर कोई भी महिला एजुकेटेड होती है, एजुकेशन का मतलब है कि उसको गलत और सही में फर्क समझ में आना
0: जी।
1: और कोई भी महिला अगर एजुकेटेड होती है तो वो अपने पूरे परिवार को एजुकेटेड करती है।
0: बिल्कुल।
1: और अपने परिवार को राइट और रॉन्ग में एक डिफरेंस करना सिखाती है
0: जी।
1: जो चीजें, जो लिमिटेशंस उसकी रही हैं, उन लिमिटेशंस से किस तरीके से आगे की जनरेशन बाहर आ सकती है वो सिखाती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है कि उनको एजुकेटेड क्यों होना चाहिए, देखिए आज एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि टेक्नोलॉजी एक्सपोजर बहुत है। आज हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं और स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसका एजुकेशन से, एजुकेटेड होने से कोई लेना देना नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: आज आपने देखा होगा कि एक बच्चा भी स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से चला लेता है
0: जी।
1: महिलाओं को एजुकेटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनके पास अब टेक्नोलॉजी है।
0: यस।
1: और उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी लोगों से जुड़ सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: पहले ये होता था कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी मेंटोरिंग की ज़रूरत है, तो हमें लगता था किसके पास जाएं। आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारे पास एक डिवाइस है, स्मार्टफोन है, जिसमें नेट कनेक्शन है।
0: yes.
1: और उसके ज़रिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेश से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं
0: जी।
1: एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किल के साथ अगर उसको अटैच कर दिया जाए तो महिला ना केवल देश के लेवल पर बल्कि विदेश में भी, बल्कि विश्व स्तर पर अपना नाम कमा सकती है। कितने ही नाम हैं जो आप ले सकते हैं, जो कि एक गांव से उठकर अपनी स्किल और एजुकेशन दोनों को जिन्होंने कंबाइन किया और कहां कहां पर पहुंचे
0: जी।
1: और ना केवल देश में नाम कमाया बल्कि विदेश में भी अपना सिक्का जमाया। आप किसी भी क्षेत्र का नाम तो ले लीजिए, चाहे आप पैरालंपिक्स की बात हो, चाहे आप शूटिंग की जो मैं बात कर रही थी। बड़ी हैरानी की बात होगी, आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि वेल्डिंग जैसे क्षेत्र में
0: yes.
1: मेरे पास स्टूडेंट्स आती हैं और ना केवल स्टूडेंट्स सीख रही हैं बल्कि नेशनल लेवल स्किल कॉम्पिटिशन्स में विन कर रही हैं
0: जी।
1: और वो साथ साथ एजुकेशन को के साथ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहती हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए समझना और उसको समझकर इंप्लीमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनका स्किल के साथ एजुकेशन और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है।
0: ज्योति जी, आज के इस परिवेश में हम चाहिए कहें कि सरकार महिलाओं को इक्वल आंकती है, लेकिन फिर भी आज हमारा रेशियो बराबर नहीं है। अगर मैं पे पैरिटी की बात करूं तो हमारे बॉलीवुड से लेकर और एक बहुत ही छोटे से महकमे तक मैं देखूं तो पे पैरिटी भी इक्वल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो महिलाओं के लिए नहीं है। मतलब इस बात के लिए तो सुधा कृष्णमूर्ति जी से लेकर इंदिरा नुई जी ये कहती हैं कि अपॉर्चुनिटी थी नहीं, हमने क्रिएट की। सो हम ये देखते हैं कि जब कभी भी दो जेंडर्स की बात होती है, इंसान तो हम सभी हैं, विजडम भी उतना ही है, इंटेलिजेंस भी उतनी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं होती। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये खास तौर पर बढ़ती जाती है। लेकिन आज के परिवेश में अगर मैं देखूं, सो हमने एक चीज महसूस की है, जैसे जैसे आप लैडर से ऊपर जाती हैं, सक्सेस की तरफ जाती हैं, सो महिलाओं के लिए वो जो सक्सेस का लैडर है वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर के रास्ते ही बंद है, वहां बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। क्या लगता है, क्या कारण है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है?
1: भावना, आपने काफी हद तक एक बड़ा रैशनल, जिसको कहते हैं, क्वेश्चन मेरे सामने रखा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊपर जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे महिलाओं की संख्या कम होती जाती है। उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक कारण तो ये है कि महिलाएं खुद भी उस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं
0: जी।
1: जहाँ पर टॉप लीडरशिप को लेने की बात आती है, कई बार महिलाएं बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास सोचकर पीछे हट जाती हैं
0: जी।
1: और उस सिचुएशन को और उस पोजीशन को स्वीकार नहीं करती हैं, चाहे वो उनका कंसर्न अपनी फैमिली के लिए होता है, चाहे अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए होता है, चाहे उनको लगता है कि मैं अंदर एक कोई फेयर है, ये सोचकर भी वो टॉप पोजीशंस को लेने में पीछे हटती हैं और उसको नहीं स्वीकार पाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम टॉप पोजीशन पर आते हैं तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने वाली बात होती है और हम बहुत आसानी से उस सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि टॉप पोजीशन पर आपको कहीं सपोर्ट नहीं होगा या फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी या आप फैमिली को नहीं देख सकते हैं।
0: yes.
1: अक्सर जो टॉप पोजीशन पर फीमेल्स होती हैं, जो विमेन होती हैं, उनके साथ ये जुड़ जाता है कि वो शायद अपनी फैमिली को नहीं देखती होंगी या केयर नहीं करती होंगी या अगर बच्चा कोई बीमार है तो शायद उसको नहीं देखती होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का डेवलप किया जा सकता है जिससे कि फैमिली को भी बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और आप अपनी वर्किंग प्लेस पर भी

0: कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता ये है कि फैमिली में जो लोग हैं या आपके एक्सटेंडेड हैंड्स हैं उनको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है। तो एक कारण तो ये है कि महिलाएं पीछे रह जाती हैं और वो पोजीशंस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर महिलाओं को वो पोजीशंस ऑफर ही नहीं की जाती हैं। तो मेरा ऐसा कहना होगा उन महिलाओं के लिए कि अगर वो अपने आसपास इस तरीके की सिचुएशंस को देखती हैं तो उसके लिए आवाज़ वो ज़रूर उठाएं, जिससे कि वो पोजीशंस फीमेल्स को भी ऑफर की जा सके।
1: आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन बातें बताई। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर ज्योति। लेकिन साथ के साथ जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
0: थैंक यू भावना, पहले तो मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। और मैं तो अपने अनुभव से बस यही बताना चाहूंगी कि हर किसी महिला के अंदर एक आग जिंदा है
1: जी।
0: महसूस करके देखो, हर किसी महिला के अंदर एक आग जिंदा है, उसके हौसलों को उड़ान दो, हर किसी में उड़ने वाला परिंदा है।
1: वाकई,
0: तो हर महिला कुछ ना कुछ कर सकती है, बस उसको भी अपनी सोच को बदलना है और उसके चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी अपनी सोच को बदलना है। यहाँ पर महिला और पुरुष की बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की बात होनी चाहिए। और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी है, उसको महसूस करके उसको थोड़ा सा हाथ देना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने पंखों को उड़ान दे सके और अपने आसमान पे अपनी कहानी लिख सके।
1: खूबसूरत सा संदेश, तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। वाकई बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अगर महिलाओं को महिला और पुरुषों को पुरुष ना समझे लेकिन उन्हें इंसान समझे तो ये हमारी कहानियाँ बदल जाएंगी और हम ये समझ पाएंगे कि दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनके जीने का अंदाज अलग हो सकता है, उनके सोच का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो प्रभु बैठे हैं ना, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत खूबसूरत है। जहाँ वो दो शक्लों को हूबहू एक जैसा नहीं मिलाते हैं, तो हम इमेजिन करके देखिए प्रभु की सृष्टि पर इतने सारे ह्यूमंस हैं जो हर किसी के पास अलग क्वालिटी लेकर आते हैं। सो डेफिनेटली हम अपनी क्वालिटी को पहचाने, हम अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो हमें भी समझ में आएगा कि हम इस जीवन में जिस कारण से आए हैं उस कारण को पूरा कर पाएंगे, और हाफ हार्टेड इस जीवन से विदा नहीं लेंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि समाज की बंदिशें या फिर लोगों की सोच ने हमें कुछ करने नहीं दिया, जो बहुत सारी महिलाएं अक्सर जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर ये कहती हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने जीवन जिया ही नहीं। आज इस प्लेटफॉर्म से आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसा जीवन मत जिए जहां आपको लग रहा है कि आप हर पल कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। ऐसा जीवन जिए जहां हर पल चैलेंज हो, और चैलेंज को जब आप मीट कर पाती हैं उसे सक्सेस में बदल पाती हैं तो आपको एक अलग खुशी मिलती है, बस उस खुशी को एंजॉय करिए। तहे दिल से धन्यवाद ज्योति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को आज इतनी बेहतरीन बातें बताई।
0: धन्यवाद भावना, मैंने भी बहुत एंजॉय किया और ये कन्वर्सेशन बहुत ही मुझे पसंद आई। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं आपसे मिलूंगी प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट में अगले हफ्ते। टिल देन फील गुड फील लाइफ।

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।
2: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
3: सच?
2: प्यार हो गया, क्या करें?
3: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है एक एक्सपर्ट। वहीं सारी बातें करने से पहले आपको मैं एक नंबर देना जरूर चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिसको हम साझा करना चाहते हैं। अब वो साझा करने के लिए भाई हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है, वो कई बार हमें नहीं पता होता जिस वजह से, या फिर नंबर अगर रेडियो जॉकी वो देता भी है तो हम भूल जाते हैं। उससे क्या होता है, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो हम नहीं पूछ पाते और हमारे सवाल सवाल ही बन के रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आए तो ज़रूर हमसे साझा कीजिए। नंबर है हमारा 8010781078। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ कई जिंदगियों को रोशन किया बल्कि ओवरसीज एजुकेशन के क्षेत्र में एक मिसाल बनाई है। मैं बात कर रही हूँ मिस शीनू कथोरिया की। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रियंका
0: जी,
1: और मैं खुद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आज हम इस डिस्कशन का पार्ट है
0: जी।
1: सो थैंक यू
0: जी। जी मिस शीनू कथोरिया एक ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड IELTS मास्टर ट्रेनर हैं, साथ ही एक ग्लोबल सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हैं। और एक ख़ास बात यह है कि ये एक कह सकते हैं कि वीज़ा अधिकारी भी रह चुकी हैं और 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव बैंकिंग से लेकर के इमिग्रेशन और ट्रेनिंग तक, मतलब हर क्षेत्र में इनका योगदान जो है वो लाजवाब रहा है
1: जी।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप स्टूडियो में हैं, इतने सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे?
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपका शुक्रिया करना चाहूँगी फिर से कि इस माध्यम के थ्रू हम इतने सारे लोगों को रीच आउट करके कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड एज अ करियर काउंसलर मेरा इनिशिएटिव और मेरी इच्छा हमेशा से ये रही है। पता है प्रियंका, ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना इनिशिएटिव, मैंने अपने बेटे को ध्यान में रख के किया था।
0: वाओ।
1: सो ये मेरे लिए सिर्फ एक मेरा काम नहीं है, करियर काउंसलिंग हुआ, ओवरसीज एजुकेशन जो मैं कर रही हूँ अभी, ये एक थॉट है कि जो हर बच्चा डिजर्व करता है और साथ में हर पेरेंट डिजर्व करते हैं। सो जो करियर गाइडेंस है ना, ये थॉट पिछले कुछ 6-7 साल पहले से मेरे को माइंड में था जब वीजा ऑफिसर भी थी, कि जब हम एप्लीकेशंस देखते थे और तो मुझे लगता था कि अगर मुझे अपने बेटे कबीर को करेक्ट गाइडेंस, या करेक्ट नहीं, सही उसके हिसाब से गाइडेंस करनी है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो उससे फिर ये आइडिया आया, उससे इसका इस इनिशिएटिव का जन्म हुआ। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपने माध्यम से, अपने तरीके से और अपनी मेहनत से आई हैव बीन एबल टू चेंज फ्यू लाइव्स। तो बस अब मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एंड सबके साथ, एंड आई एम रियली होपफुल कि मेरे इस डिस्कशन से आज काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस मिले।
0: बिल्कुल, काम के साथ जब इमोशंस जुड़ जाते हैं ना तो वो काम काम नहीं लगता है,
1: फिर वो एक इमोशन ही है,
0: वो एक इमोशन है, फिर मज़ा भी आता है वो काम करने में। और बहुत बढ़िया आपने कहा कि आपका जो बेटा है कबीर, उसको ध्यान में रख के आप काम
1: जी।
0: तो एक होता है ना कि जब हम कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली आते ही हैं लाइफ में। तो आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा चैलेंज रहा, कोई भी अच्छी खट्टी मीठी बातें जो आप शेयर करना चाहें हमसे।
1: एब्सोल्युटली, और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो चैलेंजेस इस जर्नी का पार्ट है।
0: यस।
1: तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी कामयाब इंसान को, या जो भी कामयाबी के रास्ते में है, हम सभी अपने अपने स्ट्रगल्स में हैं, उनकी जर्नी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
0: right.
1: तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। 2019 में मैंने अपनी एम्बेसी से रेजिग्नेशन दिया था, तब ये शुरुआत करना चाहती थी मैं एज अ करियर काउंसलर। एंड अक्टूबर में मैंने रेजिग्नेशन दिया, बहुत बढ़िया मेरा ऑफिस था, बहुत अच्छा रेजिग्नेशन, लेकिन थॉट यही था कि अब ये करना है, कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। एंड अभी हम 4-5 महीने कुछ आगे निकाल कर सेटअप तैयार कर ही रहे थे, कोविड आ गया। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एज वी से. तो मैंने क्या करा कि जब सब कुछ क्लोज ही हो गया था, थॉट तो नहीं क्लोज हुआ क्योंकि इंटेंशन ही वो थी कि भाई ये तो करना है.
0: कितनी बड़ी बात बोली आपने. कितने लोग होते हैं जो हार कर बैठ जाते हैं कि अरे अब तो ये हो गया अब क्या करें.
1: मैंने वो थॉट को खत्म करने का, नहीं थॉट आया ही नहीं वो थॉट खत्म करने का. सो हमने क्या करा ना, तब सब कुछ जब दुनिया पूरी जूम पर ही आ गई थी तो मैंने भी सोचा कि मैं जूम पे ही शुरू करती हूँ. सो हमने उस चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी करके मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए आईएलएस की ट्रेनिंग जूम पे शुरू करी. पता नहीं था कि क्या होगा, बस शुरू कर दिया. एक स्टूडेंट से शुरू किया था तो ऐसा हुआ ना प्रियंका,

0: ऑस्ट्रेलिया का. सो ऐसे बस एक ये बाधा आगे बढ़ी. उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ. हमने अपना फिजिकल सेटअप के लिए तैयारी शुरू करी. तो वो चैलेंजिंग टाइम था. फिर सेकेंड चैलेंजिंग टाइम, अगर मैं आपसे आप चैलेंजिंग टाइम नहीं बोलूंगी, एक मेरे मन में ये थॉट था कि मुझे जब अपना ये इनिशिएटिव शुरू करना है, मेरे को फंडिंग कहीं से नहीं लेनी. सो ये मेरा सेकेंड थॉट था. क्योंकि जब एक वो था ना, जब भावना ये थी कि बच्चे को नर्चर करना है, तो मैं लायबिलिटी नहीं शुरू करना चाहती थी. ये मेरा पर्सनल वो था. तो जो भी मेरी थोड़ी सेविंग्स थी, मैंने जीरो कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू किया. और आज तक हमने कोई फंडिंग नहीं ली एक्सटर्नली. सो एज आई स्टार्टेड अपने घर में, मैंने अपने घर में अपना इनिशिएटिव शुरू किया अकेले. और आज हम, मेरे साथ 6 मेरे टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं. और हमने अभी तक कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं ली है. जितना आई मीन, सो वी आर ट्राइंग, जैसे हम एक घर चलाते हैं ना, मैं उस इस इनिशिएटिव को एक घर की तरह से चलाने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन उस घर में दिल भी है. सो जब हम पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है ट्रस्ट. एंड मैं आपको जरूर ये चीज शेयर करना चाहूंगी कि ये सारे चैलेंजेस आए, लेकिन एक मुझे भगवान से और एक हर पेरेंट और हर स्टूडेंट से इतना सपोर्ट और ट्रस्ट मिला है कि उससे मेरी मोटिवेशन हर रोज 10 बार बढ़ती है. 10 times इट ग्रोज. सो आई हैव ट्राइड कि मेरा हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो. तो आए चैलेंजेस, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है ना, न्यू डे न्यू चैलेंज न्यू अपॉर्चुनिटी.
1: बिल्कुल. तो जिंदगी में ना बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनसे वाइब मैच होती है, जिनसे हम बातें शेयर कर पाते हैं. और जब बातें शेयर करते हैं ना, तो अच्छा लगता है. फिर ऐसा लगता है कि यार दिल खोल के बात करनी चाहिए. इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे आपसे ऐसी ही वाइब आ रही है.
0: थैंक यू.
1: तो ये एक हम कह सकते हैं, आप जो कह रहे थे ना कि जूम मीटिंग में एक स्टूडेंट से मैंने शुरू किया और उसके बाद ये कारवां बढ़ता ही चला गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके बात करने का तरीका और चीज़ों को समझने का और अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो वो भी काम आया. और कितना मुश्किल होता है, जहाँ कोरोना की बात हम कर रहे हैं, ऑफिस से जूम पर आना एक चैलेंज था हमारे लिए, बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि आज से पहले हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ. किसी को पता ही नहीं था कि जूम पर भी हम काम कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं, एक ऑफिस हो सकता है वो हमारा. लेकिन आपने कहा कि मेरी जो शुरुआत है वो हुई ही वहीं से है. तो जूम पर बच्चों से कनेक्ट होना और धीरे धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाते जाना सच में चैलेंजिंग होगा. लेकिन हाँ, जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि जब इमोशंस जुड़ जाते हैं ना काम में, तो काम करने में मजा आता है. बहुत बढ़िया, आपसे अच्छा लग रहा है बात करके.
0: छोटी सी चीज इसमें ऐड करूंगी, सॉरी. प्रेरणा मेरे को ना कबीर की टीचर्स से भी मिली. जब हम सब ऑनलाइन ही थे ना, स्कूल की टीचर्स ने उस टाइम सबसे ज्यादा मेहनत करी है और सबसे ज्यादा चैलेंज. तो यहाँ पे आई वुड रियली वांट टू थैंक सारी टीचर्स. क्योंकि मैंने एक चीज और जो मुझे जिसने मोटिवेट करा, मैंने जूम पे जो शुरू करा, जब मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना, और मैं देखती थी टीचर्स स्ट्रगल कर रही है, बोर्ड का विजन, कनेक्टिविटी, तो हमेशा मेरे को यही थॉट आता था कि जब ये कर सकते हैं सब तो मैं तो कर सकती हूँ.
1: बिल्कुल.
0: तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था. तो रियली ग्रेटफुल टू ऑल द एजुकेटर्स जिन्होंने उस टाइम को इतने स्मूथ तरीके से और बच्चों के साथ कनेक्ट बना के रखा, इमोशनल कनेक्ट भी. मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए रोज सुबह टाइम से उठ रहा था, हर रोज, कि मैम ने बोला है हम कनेक्ट करेंगे. एम आई ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल, उस सब फेज को पार करके बच्चों ने वो टाइम जो निकाला, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी. तो वो जब किया, तो फिर हम भी तो कर सकते हैं.
1: बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए, अगर सोच है और पक्की है,
0: बस
1: तो आप हर चीज कर सकते हैं. लेकिन अगर सोच में दम नहीं, तो फिर आप चाहे जितने सपने देख लो, वो कभी पूरे ही नहीं हो सकते. बहुत बढ़िया मैम, अब थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ भी आ जाते हैं. बिकॉज ये जो टाइम है ना, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास में, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसमें से एक चीज को ग्रैब करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आज के समय में अगर हम बात करें, तो कैसे पेरेंट्स डिसाइड करें बच्चे के लिए ओवरसीज एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं तो सही है या नहीं, वो आप बताइए.
0: बिल्कुल. सबसे पहले तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन शेयर किया. हम काउंसलिंग में एंड आज के डेट में, जब मीडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बच्चों के लिए अवेलेबल है, बच्चे एक्सेस भी करते हैं, पेरेंट्स का कंफ्यूज्ड होना बिल्कुल जायज है.
1: बिल्कुल.
0: हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, मैं अपना एक आपको बताऊंगी कि मैंने एक थॉट प्रोसेस क्या रखा है, और उसको मैंने कैसे स्ट्रीम

0: लाइन करा, हम जब स्टूडेंट से काउंसलिंग करते हैं, पहले मैं स्टूडेंट से काउंसलिंग करती हूँ, फिर मैं पेरेंट से बात करना चाहती हूँ एज अ पेरेंट. क्योंकि क्या होता है, कहीं कई बार पेरेंट्स को थोड़ा सा ना हमें अनलर्न भी कराना होता है. क्या एज अ मदर मेरा मन करेगा कि मेरा बेटा पायलट बने. मेरा मन था मैं यूनिफॉर्म वाले किसी पोजीशन में जाऊं, तो अब मैंने वो नहीं किया तो मेरा मन करेगा कि मेरे बेटे को ना वो बनना चाहिए.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: बेटा बनना चाहता है रेसर, बेटे का मन है कि मेरे को गिटार चलाना है. अब या तो मैं बेटे को बोलूं बेटा वो कोई करियर है नहीं, आप ये बनो, यू नो, यूनिफॉर्म वाली पोजीशंस में जाइए या आप इंजीनियरिंग में जाइए. सो सबसे पहले ये बैलेंस क्रिएट करना, संतुलन क्रिएट करना बहुत जरूरी है. तो उस और ऑफ कोर्स एज आपके सबसे पहले वेल विशर्स पेरेंट्स ही हैं, सबसे पहले, बिकॉज आप उनका अंश हैं, यू नो. तो वो जो चाहेंगे वो गलत तो हो ही नहीं सकता. बट जैसे हमें गाइडेंस चाहिए एज काउंसलर्स, आज के पेरेंट्स को बहुत गाइडेंस चाहिए. हम भी तो अपडेटेड रहते हैं ना. सो जब मेरा पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होता है, हमेशा हर वार्तालाप में एक कॉमन गोल ये निकला है कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या होगा. सो हम एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं कि आपकी बेटी या बेटे के लिए क्या बेस्ट है. उसमें नाउ अगर मैं टेक्निकल चीजों की बात करूं, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है, चाहे वो इंडिया में पढ़ाई करे या ओवरसीज, आई विल कम टू ओवरसीज, सबसे पहले बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट,
1: right.
0: जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो. अब अगर मेरे किसी स्टूडेंट के पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी, तो वो बच्ची या बच्चा नर्सिंग में नहीं जा सकते. सो एंड वो मेरी ड्यूटी है एक्सप्लेन करना, यू नो. अब जैसे कोई कॉमर्स है और मैथ नहीं है, आप पायलट कोर्सेज में नहीं जा सकते. सो एंड हमें नहीं पता, यू नो, एज अ पेरेंट मुझे नहीं पता होगा, मुझे गाइडेंस चाहिए, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी ये बने या मेरा बेटा ये बने. तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट से नहीं नहीं वो नहीं ऐसे बन सकती. हमें रीजनिंग देनी है, यू नो, प्रॉपरली, सो दैट दे नो कि उनकी ये अच्छा इस वजह से नहीं, लेकिन एवेन्यूज क्या क्या है जो सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरे बच्चे के लिए अवेलेबल है. सबसे पहले अवेयरनेस वो बनाना. सेकेंड, आज की डेट में चाहे इंडिया हो या बाहर, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बच्चों ने और क्या क्या किया है वो बहुत मैटर करता है. सुप्रियंका, हम इसमें क्या करते हैं, व्हाट आई डू, करियर काउंसलिंग इज नॉट जस्ट कि ये पांच सब्जेक्ट है आप इसमें से अप्लाई कर दो. नहीं, करियर काउंसलिंग इज कि आपके बच्चे की प्रोफाइल ये है, इसको हम और बिल्ड कैसे करें और अच्छा कैसे बनाए, वो शुरू होती है क्लास 7 से. हम क्लास 7 से छोटे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर बच्चे को उस लेवल तक कोशिश करते हैं, तो वो हम पेरेंट्स के साथ पूरा गाइड शेयर करते हैं कि गाइड इन द सेंस मैंने एक सिंपल सा बड़ा अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है, उनको समझ में भी आता है कि ठीक है आपने कहीं कोई सस्टेनेबिलिटी का असाइनमेंट कर लिया, कहीं आपने किसी एनजीओ में कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया, जिस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन ग्रेड 11 में जब हम अप्लाई करते हैं वो निकल के आता है ना, आपको मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो सी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पेरेंट के ड्रीम के साथ कनेक्ट कर पाऊँ. सो वो ड्रीम यही है कि उनका बच्चा जहाँ पर भी हो सुरक्षित हो, सक्सेसफुल हो, और जो वो करना चाहे. आपको पता है शुरू में पेरेंट्स यही बोलेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये बने, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन खत्म होता है ना, तो बात होती है कि बच्चा खुश रहे, बच्चा सुरक्षित रहे और बच्चा सक्सेसफुल रहे, जो भी वो करे. मन वही है पेरेंट्स का आज भी, बट हम इतना सब सोचते देखते हैं ना, तो हमें लगता है वो भी आगे रहे, आगे रहेंगे, बट इन सब चीजों के साथ. तो वी ट्राई कि पेरेंट्स अनलर्न करें, बैलेंस हम बनाएं, और फिर हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एकेडेमिक, नॉन एकेडेमिक, एंड बाहर खाली पढ़ाई और ना पढ़ाई, दोनों चीजें नोनो नहीं है. आपको दोनों पे बैलेंस करना. सो द करियर गाइडेंस दैट वी गिव इज टू पेरेंट्स आल्सो एंड टू किड्स आल्सो, दोनों के साथ हम कंबाइन करके एक सिनर्जी बनाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं.
1: अच्छा, बच्चों के तो सपने होते ही हैं, उन्हें बाहर जाना है, कुछ करना है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो ना बच्चों को कुछ बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना वो एक रहता है कि मेरा बच्चा सेफ तो रहेगा,
0: समेट
1: या समेट, वो सारी चीज़ों को ना कलेक्ट करके वो समेट के रखना चाहते हैं. अब ऐसे में ना बड़ा चैलेंज होता है, और ये एक चीज़ जैसे आपने कहा कि मुझे सिर्फ उनको बताना नहीं है, मुझे उनको अच्छे से समझाना है कि देखिए ये क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको हम करा सकते हैं. ये कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, और दोबारा कहूँगी कि अपनी जॉब से जब प्यार होता है, अपने काम से जब प्यार होता है, तो वो चीजें ना बहुत अच्छे से निखर के आती हैं, जो कि आपकी बातों से वो लग भी फील हो रहा है कि आप कितने अच्छे से पेरेंट्स को समझाते होंगे। अभी जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपका कोई सवाल है तो आप हमें जल्दी से मैसेज कर दीजिए। नंबर है हमारा 8010781078। अभी इन सारी बातों के बीच एक किस्सा मुझे याद आया, मेरे किसी नोन का है, जहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं, वो एयरफोर्स में हैं और उनके दो बेटे हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों बेटे एयरफोर्स में जाएं, बट जो पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, वो स्पोर्ट्स में है, बहुत अच्छा वो फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है, और साथ के साथ फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और उसकी आप पिक्चर्स देखोगे तो मतलब आप खुद बोलोगे कि अरे वाह, मतलब आपको तो फोटोग्राफी में जाना चाहिए। पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ नहीं मानते हैं बिल्कुल। छोटा बेटा है, वो भी कुछ कुछ करना चाहता है, बट उनका ये कहना है कि आप दोनों को ही एयरफोर्स में जाना है। अब इससे घर में टेंशन, वो चीजें जो है वो ज्यादा होती हैं। यहाँ आप क्या कहना चाहोगे, बिकॉज ये ज्यादातर घरों की कहानियां हैं कि जब पेरेंट्स जो हैं, या तो दो कंडीशन में चीजें होती हैं, या अगर पिताजी कुछ हैं और बच्चों को भी वो वही बनाना चाहिए, एक तब, और एक जब एक सपना देखा वो पूरा नहीं कर पाए, पर अब वो सपना अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये दो कंडीशंस आती हैं ज्यादातर घरों का। यह आप क्या कहना चाहेंगे?
0: थैंक यू, ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, अगर अगर मैं आपको ये बोल सकती तो। सबसे पहले आजकल के जो बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स ना, हम आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस के उसमें उनको एक डाउट भी रहता है, क्योंकि वो बाहर की जो पेरिफेरीज है ना, वो बड़ी अनसर्टन है, और घर के बाहर का दुनिया। चार साल पहले का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चार साढ़े चार साल पहले एक फैमिली आई मेरे पास, फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, मदर हाउसवाइफ, होममेकर
1: जी,
0: एंड 12th का बच्चा था हमारे पास आया था, ब्रिलियंट लुकिंग स्टूडेंट एंड एवरीथिंग वाज फाइन। अब जब वो तीनों मेरे सामने बैठे ना, तो फादर मुझसे बात कर रहे थे, मदर वाज साइलेंट बिल्कुल, और बेटा ना खिड़की के बाहर देख रहा था, टोटली जीरो इंटरेस्ट इन डिस्कशन। पापा ने उसके बोला मुझे कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं अपने बेटे को बीबीए कराना चाहता हूँ यूके से, ये जाएगा और बीबीए कंप्लीट करके वापस आके ये घर का बिजनेस, फैमिली बिजनेस टेक ओवर, ये मेरा मन है, और वेरी अथॉरिटेटिव, जैसे यू नो वेरी सॉर्टेड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फादर होते हैं, तो उनका वो डिमीनर था। अब मैंने उनके पेरेंट्स की बात सुनी, मदर वॉज लाइक न्यूट्रल, तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी आपको बेस्ट लगे। यहाँ पे ना एक काउंसलर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रियंका। मेरा फर्स्ट, अगर आप मेरे को एज अ यू नो समझे कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेस में, एक काम कर सकती थी, उनको बीबीए के कोर्सेज देती कि ये यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे के स्कोर देखकर और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं कभी भी नहीं करती है, क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट का प्रोफाइल अपने पास लेती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मेरी फाइल बन जाती है, वो मेरी जिम्मेदारी। तो एज आई सेड कि मेरे लिए हर बच्चा कबीर हो जाता है। सी दैट्स
1: वन बड़ी बात बोली
0: नहीं है, और ये मैं आज आप मुझसे बात करेंगी, हम 5 साल बाद मिले, 10 साल, वो क्योंकि मेरी नर्व ही वही थी शुरू करने की इसको। अब मैंने उस बच्चे से बात की
1: तो वो ज्यादा अच्छे से कनेक्शन फील कर पाते हैं,
0: और वही रीजन है कि टच वुड टिल डेट हर पेरेंट के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ है, हर पेरेंट के साथ। बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, जे सबके, टच वुड, आई एम स्टिल इन टच विद ऑल द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, उन सबके साथ। तो आते हैं उस बच्चे पे, तो मैंने देखा वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उस बच्चे ने एक भी वर्ड नहीं बोला, एक वर्ड नहीं बोला। मैंने पेरेंट्स के साथ एक रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके बेटे से अलग से एक बार मिलना चाहती हूँ। अगले दिन आया, बच्चा आया मेरे पास, वो अपने साथ ना एक फाइल लेकर आया
1: जी।
0: उस फाइल में ना 8 levels ऑफ गिटार के उसके सर्टिफिकेट्स थे बच्चे के, पिछले 7 साल के। और उस बच्चे ने मुझे बोला, मैम ऐसे जस्ट जनरली कि मेरा बैचलर्स ये बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वही जैसे आपने अभी बोला कि मेरा अपने फादर के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट हो चुका है, मदर मेरी मतलब ज्यादा वो ओपिनियन नहीं देती, उनके लिए मेरी खुशी भी है और पापा के लिए भी जरूरी है, तो मैं तो छोड़ दूंगा अगर आप मेरे को कोर्स करवा भी दोगे, तो मैं करूंगा नहीं कंप्लीट। मतलब वो बच्चा, सी आजकल के बच्चे हैं, आप उनके ऊपर ना सिर्फ इम्पोज नहीं कर सकते, आपको डिस्कशन करना है बच्चों के साथ एज एन इंडिविजुअल। तो वो वही मैं पेरेंट्स के साथ कोशिश करती हूँ, एंड दे अंडरस्टैंड, बिकॉज सी एज वी सेड कॉमन गोल क्या है, बच्चों की खुशी, करियर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे का समझा, फिर मैंने, अच्छा एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, उस बच्चे के पास जो सब्जेक्ट्स थे स्कूल में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। सो अब आप समझिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल में उसका इंटरेस्ट है, एट लेवल्स ट्रिनिटी के उसने सारे कंप्लीट करे हुए थे गिटार के. फादर चाहते हैं कि वो बीबीए करे क्योंकि वो वापस आके वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में उनको ज्वाइन करे. बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं पेरेंट्स को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और बच्चे के लिए भी अच्छा चाहती हूँ. मैंने 3 दिन मांगे फैमिली से, मैंने अपना रिसर्च किया जो कि बहुत जरूरी है. दिस इज फॉर अ कंसल्टेंट, एज जैसे आपने बोला कि क्यों कैसे कंसल्टेंट चूज करें, एवरी डे रिसर्च बहुत जरूरी है. एक आप एक सिंपल डिक्शनरी ऑफ प्रोग्राम्स नहीं बना सकते, उसको हर रोज अपडेट करना है. खैर मैंने 3 दिन लिए, 3 दिन के बाद मैंने पूरी फैमिली को बुलाया, वे बच्चे को भी बुलाया और पेरेंट्स को भी बुलाया
1: जी.
0: मैंने उनको एक प्रोग्राम ऑफर करा यूके में ही, 2 यूनिवर्सिटीज में, साउंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का. साउंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन प्रोग्राम्स अभी इंडिया में कम है. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत पिकअप कर रही हैं विद डायनामिक्स. मानव रचना ने बहुत कॉम्बिनेशन शुरू करे हैं, कुछ और इंडिया में है, इंडिया में अभी लेकिन पिकअप हो रहे हैं. सो टू वेरी गुड यूनिवर्सिटीज और मैंने उनको सजेस्ट करे वो प्रोग्राम. और मैंने फादर को बोला सर देखिए ये प्रोग्राम का रीजन है, उसके पास सब्जेक्ट साइंस के हैं, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है. आपका थॉट प्रोसेस मैं समझती हूँ कि ये आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम करियर नहीं है, लेकिन साथ में मैंने मैनेजमेंट का कोर्स भी उसको दे दिया है बैचलर्स के बच्चे के लिए. तो 3 साल में वो सब्जेक्ट भी सीखेगा और वो स्किल भी सीखेगा. तो वर्स्ट कम वर्स्ट अगर वो इंजीनियरिंग और साउंड में अच्छा नहीं करता तो वो मैनेजमेंट स्किल सीख कर आ जाएगा. आपका बिजनेस वो तब भी टेक ओवर कर लेगा.
1: राइट,
0: ठीक है. बच्चा खुश था क्योंकि उसमें उसने मॉड्यूल्स देखे, उसमें म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट के मॉड्यूल्स थे. पेरेंट्स मान गए, बच्चा वॉज हैप्पी, ही वेंट. दिस वॉज इन 2021. उस बच्चे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा. 2023 में मेरा फादर के साथ एक रिकनेक्ट हुआ कि सर यू नो हाउ इज योर सन अभी कैसे. उस बच्चे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा. 2023 में मेरा फादर के साथ एक रिकनेक्ट हुआ कि सर यू नो हाउ इज योर सन अभी कैसे है, वो वापस आ रहा है. यू नो अभी मेरे को ये बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं. तो फादर ने बोला मैम वो तो वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सर्ट्स कर रहा है एंड मैं नहीं चाहता वो वापस आए. ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत बढ़िया वो सेलिब्रिटी टाइप्स वो वहाँ पे प्ले शोज कर रहा है कॉन्सर्ट्स एंड गिटार एंड इंस्ट्रूमेंट के. जब आना होगा देख लेगा, बिजनेस तो चल ही रहा है. दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू डू. एंड जैसे हर घर में ये डिस्कशन है. अब क्या है, उस बच्चे ने एक नया ड्रीम बना दिया अपने पेरेंट्स के लिए कि हम बैरियर्स को ब्रेक करके भी एक करियर को हम आगे कर सकते हैं. तो उस बच्चे ने स्किल सीख लिया और वापस आके वो गाइड भी कर सकता है अपने ऑफिस के स्टाफ को, अपने फादर के ऑफिस के स्टाफ को, उन अपने फादर को सपोर्ट भी कर सकता है और साथ साथ वो अपना करियर भी परस्यू अपने दिल से कर रहा है. सो इसके लिए ना रिसर्च बहुत चाहिए होती है एंड आई ट्राई टू डू दैट. तो हमने क्या करा ना, 3 चीजों को एड्रेस करके, बच्चा, पेरेंट एंड उसके लिए क्या अच्छा है, हमने ब्रिज करके वो सोल्यूशन दिया एंड दे आर वेरी हैप्पी. सो ये हम हर स्टूडेंट के साथ करते हैं और हर पेरेंट के साथ. सो क्या है ना, पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है, बच्चे के ड्रीम को समझना बहुत जरूरी है. हाँ ये जरूरी है कि बच्चों को रियालिटी चेक भी देना है. हम सब कुछ हंकी डोरी रोजी पिक्चर नहीं कर सकते. अब अगर उस बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं होते प्रियंका, तो शायद मेरे को कुछ और देखना पड़ता है ना. क्योंकि उस बच्चे के पास वो अचीवमेंट्स और क्रेडेंशियल्स थी जो वो करना चाहता था. उससे मेरे को हिम्मत मिली एंड उससे मेरे को रिसर्च करने का मौका मिला कि मैं उसको क्या दूं. अब कोई बच्चा ज्यादा जैसे एकेडमिक अच्छा है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं है बट बोले मेरे को ये बनना है, वो फिर यू नो देन वी हैव टू बी रियलिस्टिक. फिर हमें उस हिसाब से आगे अप्रोच करना होता है उस. लेकिन ये जो डिस्कशंस हैं हर घर के, आई एम ट्राइंग कि एक घर एट अ टाइम एंड आई कैन कंट्रीब्यूट बाय वे ऑफ माय हार्ट एंड एक्सपीरियंस.
1: कितने बच्चों के सपने बच जाते हैं, कितने पेरेंट्स की उम्मीदें बच जाती हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बोलूंगी कि एक सही काउंसलर की भी जरूरत जो है वो होती. अच्छा मैं अपने टाइम की बात करूं तो थैंक गॉड कि हम उस वक्त में थे जब हमारी काउंसलिंग अच्छे से हुई, पेरेंट्स की हुई. बट जब हम अपने मम्मी पापा के उसमें देखते हैं तो आज मुझे समझ में आता है कि यार मेरे पापा तो ये बनना चाहते थे, मेरी मम्मा तो डॉक्टर बनना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं सपने पूरे नहीं हो पाए क्योंकि पेरेंट्स शायद कहूँ कि ध्यान नहीं दे पाए या वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए या शायद उन्हें पता ही नहीं था कि काउंसलर जैसी भी कोई चीज़ होती है, कुछ होता है जिनके पास जाके एक सही समझ हमें मिल सकती है. बहुत सारे रीजंस जो शायद उसके जवाब नहीं मिल पाएंगे, बट थैंक गॉड, थैंक यू बोलूँगी कि हम इस टाइम पर हैं जब एक सही काउंसलिंग के साथ में हमारे लिए क्या सही है वो हमें पता चलता है। अच्छा, अक्सर जो पेरेंट्स है ना, उनको वीजा प्रोसेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से डर लगता है, आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि मस्ट है, कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है?
0: इस क्वेश्चन को मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी कि जब हम बाहर भेजने की बात करते हैं ना, स्टडी अब्रॉड, पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना है कि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि बाहर जाने का मतलब है एकदम से इतना खर्चा, ऐसा नहीं होता।

0: सो यहाँ पे भी अवेयरनेस, हम फाइनेंशियल लिटरेसी की भी वर्कशॉप करते हैं हर पेरेंट के साथ. लेकिन उसमें मैं करती क्या हूँ, मैं आपको ये बताऊंगी. सबसे पहली चीज ना, हमें वो थॉट को इजी करना है हर पेरेंट के लिए कि अगर आपका बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है, सो तीनों सालों की पढ़ाई का खर्चा आपको आज नहीं करना, पहली चीज. दूसरा, लिविंग एक्सपेंसेस, जो वहां पे रहने खाने का खर्चा है, वो भी आपको तीनों सालों का एक साथ नहीं करना. कई बार माइंड में ये आता है, अरे मैं अपने बच्चे या डॉटर या बेटे को बाहर भेजना है तो 70 लाख से 1 करोड़ का तो हो ही जाएगा, बट वो आपको आज नहीं देना. तो क्या होता है, जो लेवरेजिंग वाला पार्ट है ना, एंड पेरेंट्स फिर समझते हैं, बिकॉज मैंने उनका एक्सप्रेशन देखा है कि सर या मैम हमें अभी जो चाहिए ना, वो हमें फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस दिखाना है, फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी, फर्स्ट ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस. तो वो ब्रेक हो गया और फिर हमारे पास 3 साल का टाइम भी हो गया. एक तो वो चीज, तो दे उनको थोड़ा इजी लगता है, अच्छा ये 1 करोड़ एक साथ नहीं करना मुझे, है ना, वो ब्रेक हो गया 30 लाख 1 या 3 या 4 में डिपेंड. दूसरी चीज, एजुकेशन लोन. सो इवन इफ पेरेंट्स, और मैं हमेशा ये एडवोकेट करती हूँ, उसकी दो वजह है, अगर पेरेंट्स की कैपेसिटी है भी कि भाई हम कोई कैपिंग नहीं है एंड हम लोग आराम से एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद भी आई एडवोकेट कि आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए. एक तो आपका जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है, कुछ आपने सेविंग से दे दिया अपने अर्निंग से, कुछ आप बैंक से लेवरेज कीजिए. क्योंकि एजुकेशन लोन का जो पेमेंट है ना प्रियंका, वो डे वन से नहीं शुरू होता. एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट टाइम होता है वो बच्चे की पढ़ाई खत्म होने के बाद होता है. तो आपको वो 3 या 4 ईयर्स की विंडो मिल गई अपने बच्चे के लिए.
1: जी, जी.
0: दूसरा, एक बच्चे के माइंड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जरूरी है. जब हम सब कुछ कहते हैं ना कि ठीक है, इधर मैं ड्रीम्स की भी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम सब कुछ प्लेटर पे कई बार सर्व कर देते हैं ना, तो हमें अहमियत नहीं पता चलती.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहूंगी कि पेरेंट्स, जब हम एजुकेशन लोन के लिए जब मैं बोलती हूँ, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है पूरी लाइफ. और दूसरा, एक उन्होंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर ली है लोन की, मेरी पढ़ाई के लिए. तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना पूरा 100% से भी ज्यादा उस पढ़ाई को दूं. एंड पेरेंट्स आपसे इनकम नहीं मांगेंगे, वो क्या चाहेंगे, आपकी सुरक्षा, आपकी आपका करियर, आपकी खुशी. तो उसको आप पे बैक कीजिए बाय कंप्लीटिंग इट प्रॉपरली. इसलिए नहीं कि बस मैं अब्रॉड जाऊं और मैं एक ब्रांड दिखाऊं, नहीं, वो करिए, लिव योर लाइफ. वो आपको खुश रहना देखना चाहते हैं, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी ऐड हो जाती है. सो मैं एडवोकेट करती हूँ कि, और ये पेरेंट्स को मैं थोड़ा सा इजी करती हूँ कि सर मैम ये आपका खर्चा आज नहीं हो रहा, हमें अभी इतना देना है या इतना दिखाना है. एक्चुअली देना भी नहीं होता पूरा, वो फिर कंट्री कंट्री कभी हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे. कुछ कंट्री में फीस देनी होती है, लिविंग एक्सपेंसेस देने ही नहीं होते कहीं पर भी, वो हमें अपने ही अकाउंट में दिखाने होते हैं. तो हमें ये सब चीजें कौन बताएगा एज अ पेरेंट. वहां पे अ गुड काउंसलर, अ गुड नॉलेजेबल काउंसलर. तो मैं अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस और वीजा ऑफिसर का एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज करती हूँ, उनको मैं एजुकेट करती हूँ. आई एजुकेट द पेरेंट्स कि ये जो ब्रेक, ये अमाउंट है, हम इसको ब्रेकअप करेंगे और आपको अभी सिर्फ इतना देना है. एंड ऑनेस्टली वो बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होती है प्रियंका, और उसमें उनके बड़े सारे नोशंस ब्रेक हो जाते हैं कि हमें तो लगा था कि अगर अगले साल भेजना है तो मुझे एकदम से इतना, नहीं ऐसा नहीं है. एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू फैसिलिटेट easily for these.
1: और कहीं ना कहीं यही एक प्रेशर होता है कि कितने पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को कुछ कराना,
0: बट
1: वो नहीं भेज पाते क्योंकि उनको लगता है इतना खर्चा आएगा.
0: बिल्कुल.
1: बच्चे भी ना कहीं ऐसे कि हमें अब्रॉड जाना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ वो वहाँ जाकर वो तो भूल जाते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं. पेरेंट्स के बारे में बात हुई, लेकिन जब बच्चों की बात आती है, उनको आप कैसे काउंसिल करते हैं, किस तरीके से उनको बताती हैं कि क्या सही है और वहाँ जाके क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको?
0: मेरे पूरे काउंसलिंग में मेरा स्टूडेंट सेंटर में है, न्यूक्लियस है. सो अब कई बार बच्चे आएंगे कि मेरा फ्रेंड वहाँ जा रहा है, मेरी दोस्त वहाँ जा रही है, तो मुझे वहीं जाना है.
1: और ये
0: तो
1: ज्यादातर देखने में
0: 90% एक्चुअली मैं आपको मैं बताऊँ, अभी तो खैर थोड़ा कनाडा में थोड़ा सा चल रहा है अनरेस्ट. कई बार क्वेरीज ऐसी आती हैं कि स्टडी अब्रॉड इज इक्वल टू कनाडा. तो हमें स्टूडेंट्स को ये बताना पड़ता है कि हमारे वर्ल्ड में ना बहुत कंट्रीज हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है इसमें आप कनाडा नहीं, आप यूके भी, यूएस भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लिमिट नहीं करती सबसे पहले। तो हम अपने स्टूडेंट की जो शॉर्टकमिंग्स हैं थॉट प्रोसेस की, प्रोफाइल की नहीं, पहले उनको एड्रेस करते हैं कि भाई अच्छा आपने सपोज अगर आपने यूके जाना है तो आपने यूके क्यों जाना है, तो मैं रीजन आउट करती हूँ। क्योंकि देखिए 12वीं क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा, कई बार सी हम कहते हैं कि कई बच्चों को बहुत क्लैरिटी होती है, लेकिन 70% बच्चों को आज भी क्लैरिटी नहीं है इवन आफ्टर द रीच 12th। लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो आर दे रॉन्ग? एब्सोल्यूटली नॉट। क्यों? हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी है, हम इतनी बातें करते हैं, तो क्या करें, कितना करें? तो उन बच्चों को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे पहले। नहीं पता क्या करना है, एब्सोल्यूटली फाइन, हमें भी नहीं पता था, है ना? लेकिन क्या कर सकते हैं अब, उस पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि देखो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने एनवायरमेंट के लिए ये करा है, आपने ब्लड डोनेशन किया है, इसको कंबाइन करके मैं आपके लिए ये प्रोग्राम्स निकालती हूँ। तो हम अगेन, मैं एक जब शॉर्टलिस्टिंग करती हूँ कोर्सेज की, करीब करीब हम 10-12 प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्री में। उन बच्चों को मैं होमवर्क देती हूँ, उन प्रोग्राम्स की जब मैं लिस्ट देती हूँ, खाली नेम्स नहीं देती, प्रोग्राम का लिंक, उसकी एलिजिबिलिटी, आई आस्क देम टू डू अ होमवर्क, आप इन लिंक्स पे जाओगे, मुझे हफ्ते के बाद बताओगे आपको कौन सा पसंद आया प्रोग्राम, एंड ये वर्क करता है। सबसे पहले उन बच्चों को ना एक डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा अपने प्रोग्राम्स जो मेरे, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं यहाँ जा सकता हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। सो वो एक पहला डायरेक्शन हमारा हुआ। उसके बाद फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि इसको कम्प्लीट करने के बाद आप इन करियर्स में जा सकते हैं, यू नो। सो उससे उनका हम क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। फिर हम नेगोशिएट करते हैं बच्चों के साथ, अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है, फिर मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ उनके साथ। और तो एंड वी हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शंस। फिर मैं उन बच्चों को एंगेज करती हूँ कि आप अपना माइसेल्फ का एसे लिख के दीजिए मुझे, जैसे हम सेकंड में लिखते थे ना प्रियंका। सो वो मैं उनसे अब लिखवाती हूँ, चाहे 12th के स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएशन के, कि अपना माइसेल्फ का एसे लिखिए और मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आपको और समझ पाऊँ। अब वो लेकिन माइसेल्फ का एसे थोड़ा मैच्योर होता है, मेरे लाइक्स, मेरे इंटरेस्ट, अगर मुझे बाहर जाना है तो क्यों, इसलिए नहीं कि मेरे पड़ोसी के बच्चे गए हैं या मेरी फ्रेंड वहां जा रही, आप क्यों जाना चाहते हो, आपको ये प्रोग्राम ने क्या इंस्पिरेशन दी है आपने। फिर उससे बच्चे डीप जाते हैं। तो हम ना उनको बेबी स्टेप्स में गाइडेंस देते हैं, एंड आई इन्वॉल्व देम। मैं स्पून फीड में कभी बिलीव नहीं करती, हम टीम वर्क के साथ एंगेज करते हैं और फिर उनको डायरेक्शन ऐसे देती हूँ मैं। और फिर धीरे धीरे, फिर ये जो शुरू का जो प्रोसेस है ना, सबसे टफ प्रोसेस ये होता है। उसके बाद तो मुझे मालूम है, स्टूडेंट्स को पता है, बच्चों को, पेरेंट्स को पता है, हमने ये अप्लाई करना है, हमने ये प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और फिर तो स्टेप बाय स्टेप है
1: वो थॉट्स क्लियर
0: रहता है। बस पहला जो 2-3 इंटरेक्शंस होते हैं ना, और स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग हम करते रहते हैं, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें हम शेप कर रहे हैं उनका फ्यूचर। और बाद में तो स्टेप्स हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड वी ट्रेनिंग करती हूँ, आईएलटीएस की ट्रेनिंग, उनको स्किल, हम स्किल ट्रेनिंग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स, उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर इंडस्ट्री बेसिकली। बस थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन हाँ ये जरूर करते हैं हम, एंड आई लव दिस मेहनत।
1: मेहनत आप लोगों की, और फिर उसके बाद जो वो बच्चा भविष्य में करता है उसकी खुशी भी आप लोगों को ही सबसे ज्यादा।
0: मैं तो ब्लेसिंग्स पे ही जीती हूँ।
1: यस,
0: सो पेरेंट्स और बच्चों की विशेस।
1: अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी, अब ये तो कोर्सेज जो काफी अच्छे लग रहे हैं सुनने में, बातें जो हैं, बट वो बच्चे जो कोर्स करने बाहर गए हैं लेकिन वापस वो इंडिया में आके कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि
0: कई स्टूडेंट्स आजकल, एक अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज इनिशिएट करी हैं G20 के अंडर एंड अदरवाइज ऑल्सो। लुक एट मानव रचना, यू नो आई मस्ट से कि आपकी यूनिवर्सिटी लीडर्स क्रिएट कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स क्रिएट कर रही है। सो जो एक बाहर की पढ़ाई है वो एक एनहांसमेंट है कि वापस आके आप कॉन्ट्रीब्यूट करें और लर्न भी करें कि आप देखिए ना, स्टार्टअप्स, लुक एट स्टार्टअप्स, यू नो द वे। लेकिन क्या होता है कई बार, अगर स्टार्टअप्स एक पर्टिकुलर नॉलेज को डिप्राइव हो के में ना हो या एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस में नहीं हुआ, तो फिर वो ओपन एंड शट हो जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स बाहर जाके एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं एक पर्टिकुलर उसमें, एंड वो वापस आके किसी असाइनमेंट को ज्वाइन करें या कोई बिग फोर को ज्वाइन करें या कुछ स्टार्टअप करें, उसका जो लॉन्गेविटी होती है या उस रोल का जो यू नो टाइम वो होगा ना, वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होगा. बिकॉज आपने वो टेक्निक सीख लिया, आपने वो डिटेल सीख लिया और आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, तो जब आप आएंगे वापस तो आपको उसका रिटर्न डेफिनेटली आएगा इन टर्म्स ऑफ गुड रोल्स, गुड प्रोजेक्ट्स. तो वो हम वापस, अब कई बार हमारे पास एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी, पेरेंट्स पूछते हैं कि यहाँ की डिग्रीज इंडिया में एक्सेप्ट होंगी.
1: ये एक Absolutely.
0: Yes. जितनी इन कंट्रीज की डिग्रीज हैं, दे विल बी एक्सेप्टेड, इम्प्लीमेंटेड एंड वेल रिकग्नाइज्ड इन इंडिया. तो उनकी रिकग्निशन है इंडिया में, बट अगेन अवेयरनेस हमें बताना है. ये मेरी ड्यूटी है. एंड जैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई वापस आके अगर बच्चों को कुछ करना है तो ये डिग्री रिकग्नाइज्ड है. जहां नहीं होती वो हम बताते हैं. सपोज अगर कोई यूरोपियन कंट्री है, हर कंट्री की नहीं है रिकग्नाइज, तो फिर हम उनको ऑल्टरनेट्स देते हैं कि अगर आपके बच्चे का प्लान है कि वो वापस इंडिया आए, फिर हम रेकमेंड ये करेंगे. अगर उनको कैरी ऑन करना है इन दैट कंट्री, इट्स एक्सीलेंट. फिर आप, लेकिन वापस आने का अगर ड्रीम है या प्लान है, तो यू शुड लुक एट थोड़े बड़ी कंट्रीज, बिगर इकोनॉमीज जिनकी डिग्रीज रिकग्नाइज्ड. सो ये गाइडेंस हम देते हैं स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी कि आप वापस आके ये कर सकते हैं.
1: जी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली हमें, बहुत अच्छा लगा बात करके. चलने का भी वक्त हो गया है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं शो को ख़त्म करूं और मैं आपसे, ऐसा मन कर रहा है कि बस आपसे बातें करती जाऊं. सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कई सारे सवाल लिसनर्स के भी मन में हैं. हम आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है इस वक्त आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. नंबर है 8010781078. मैम चलने का वक्त हो गया, चलते चलते आप सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: ड्रीम करते रहिए, कोई भी पॉसिबिलिटी छोटी नहीं है. और कीप स्माइलिंग. थैंक यू.
1: और मेरा तो स्लोगन पता ही है आपको कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM. चलिए मुझे दीजिए इजाजत और थैंक यू सो मच मैम.
0: थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर दिस.
1: और इसी के साथ जरूर हमें मैसेज कीजिएगा. एक बार फिर से नंबर बताती हूँ, 8010781078. चलिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय.

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manavrachna 107.8 FM.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 ऑफ अम्बर। मैं हूं प्राका, आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में भाई बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी देर में हमारे साथ में एक गेस्ट जुड़ने वाली है। कौन है, क्या करती है, चलिए अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि ये कौन है, क्या करती है, और आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। तो नाम है इनका नीनू शेरावत, और साथ ही इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर हैं। और बात करें इंस्टाग्राम की तो 106K इनके पास उस वक्त इनके चैनल पे, इनके पेज पे, और आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं और सारी बातें हम इनसे करेंगे। साथ ही साथ ट्रैवल वीडियोज होती हैं और बहुत कुछ इनके चैनल पे होता है। तो चलिए इनसे बात हम कर रहे हैं, फिलहाल इस वक्त स्टूडियो में है। हेलो,
3: हाय प्रियंका।
1: नीनू कैसी हैं आप?
3: आई एम वेरी गुड एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एट रेडियो मानव रचना 107.8।
1: जी, तो स्वागत करती हूँ आपका प्रोग्राम के मेरी लाइफ में, और इस वक्त काफी लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी सभी जो लिसनर्स हैं, बिकॉज यूथ जो है वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है इस रेडियो से, तो आप सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: ओके, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर इसी फील्ड की बात करूं तो आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया। हमें नहीं मालूम उसको कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना, क्योंकि पूरा दिन उस पर इंफॉर्मेशन आती है। तो वो ये कि आप उसके बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है। बट आई जस्ट फील दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप राइट लोगों को फॉलो करें, राइट पेजेस फॉलो करें, जो आपके मतलब का है उसको फॉलो करें, जो नहीं है उसको हटा दें, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगी इससे। जैसे मैं अपने पेज पे मैं सिर्फ डांस रील्स डालती हूँ, प्रॉपर प्रिपेयर किया हुआ कोरियोग्राफ डांस डालती हूँ, एक्टिंग के बारे में एक्टिंग की रील्स डालती हूँ कभी। देन आई पुट ट्रैवल, आई ट्रैवल अ लॉट, सो आई पुट ऑल माई ट्रैवल पिक्चर्स एंड वीडियोज। एंड मैं रेस्टोरेंट्स को बहुत प्रमोट करती हूँ, तो उनके बारे में डालती हूँ, तो जिसको वो कंटेंट जो है वो रेलेवेंट लगता है, उनके पसंद का है, उनके इंटरेस्ट का है, उन लोगों को मुझे फॉलो करना चाहिए। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा फैशन में या मेकअप में, तो उस हिसाब से आप अगर अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कितने 50 लोग 100 लोगों को हम फॉलो करें, तो शायद उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। नहीं तो पूरा टाइम अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। देयर इज सो मच प्रोडक्टिव यू कैन डू फॉर योर ओन डेवलपमेंट एंड you know for your surroundings. So I feel that you know go ahead and do that.
1: Yes, yeah, बहुत सही बात बोली आपने, इस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप स्टूडियो में हो, आपको सब जानना चाहते हैं कैसी रही आपकी जर्नी। इसी के साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या करते हैं, तो जैसा कि नीनू ने भी बताया कि ट्रैवल वीडियोस होती हैं और ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट को प्रमोट करती हैं, और एक्टिंग की बात करें तो मैंने इनका पेज पर्सनली देखा, आप एक्टिंग सीख रही हैं, बट आपकी वीडियोज़ देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि आप सीख रही हैं, ऐसा लगता है कि आप मंझी हुई कलाकार हैं और सालों से एक्टिंग कर रही हैं। तो कैसे ये पैशन आया, क्योंकि सबकी ना अपनी एक जर्नी होती है, हम कुछ कुछ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर एक सडन एक पॉइंट आता है कि नहीं, कुछ कुछ नया करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तो जब हम यहाँ नीनू की बात करते हैं, आपकी जर्नी, आपका ये सफर इंस्टाग्राम का कैसा रहा और इसकी शुरुआत कैसे?
3: तो प्रियंका, इंस्टाग्राम मेरा कोविड से बस कुछ एक दो साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, और तब भी मैं वीडियोस डालती थी अपना डांस की, बट वो ग्रुप डांस होता था उसकी डलती थी या थोड़ी बहुत आपने ट्रैवल किया घूमा फिरा. लेकिन जब कोविड आया तब आप बिल्कुल ही खाली हो गए और तब जो मेरी डांस क्लासेस है वो जूम पे होने लगी और उस पे आप वन ऑन वन सीख रहे हो. तो जो जूम पे हम लोग डांस सीखते थे तो उस टाइम पे हमारे कोरियोग्राफर बोलते थे कि अब आप सिंगल अपनी वीडियो बना के भेजो. तो तब ज्यादा समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है एक क्लियर वीडियो बनाना और मेहनत करके कि आप कि वो देखने लायक हो. कि अगर आप सिंगल भी डांस कर रहे हो तो फिर मैंने वो डांस वीडियोस बनाने शुरू किए और उसके बाद वो टिकटॉक भी मुझे तभी पता चला टिकटॉक है. और एक्टिंग का शौक तो शुरू से था बट पता नहीं, तो उसमें दो रियल एक्टिंग इज टोटली आई मीन उसका कोई लेना देना नहीं है टिकटॉक और रील से. बट उस पर मैंने जब वो कुछ एक्टिंग वीडियोज बनानी शुरू की तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि इट्स सो गुड यू आर सो गुड. तो फिर ऐसे कर करके मैंने वो वीडियोस बने और फिर कोविड टाइम पे अगेन इन्फ्लुएंसिंग को और ज्यादा वो मिला बिकॉज एड्स करने का एक वही तरीका था. रेस्टोरेंट्स खाली जा रहे थे, सैलॉन्स खाली जा रहे थे. तो उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर का वो पूरा वो जो फील्ड प्रमोट हुआ उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने वो सब किया और रेस्टोरेंट्स को सैलॉन्स को प्रमोट करना, वेलनेस सेंटर्स थे, ज्वेलरी आउटलेट्स हैं, द रिटेल आउटलेट्स हु सेल द मटेरियल, जो क्लॉथ मटेरियल सेल करते हैं, देन अगेन डिजाइनर्स, एवरीबडी नीडेड इन्फ्लुएंसर. एंड आई स्टिल थिंक दैट इट्स क्वाइट रेलेवेंट. इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग अ गुड जॉब बाय प्रमोटिंग सो मेनी थिंग्स. तो हाँ, मेरा इस तरह से शुरू हुआ. बट देन उसके बाद जब खुद को वीडियोस पे देखा और फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा वो किया, एक्टिंग का शौक मुझे शुरू से था बट मुझे मालूम नहीं था उसमें घुसते कैसे. तो फिर मैंने धीरे धीरे पता करके आई स्टार्टेड अ कोर्स विद श्रीराम सेंटर मंडी हाउस दिल्ली. और उसके बाद एक एक करके आई स्टार्टेड गोइंग टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड टेकिंग एक्टिंग वर्कशॉप्स. तो अभी भी इन वन और टू मंथ्स आई गो टू मुंबई, आई टेक अ गुड एक्टिंग वर्कशॉप एंड आई कनेक्ट विद द कास्टिंग डायरेक्टर्स, आई गिव ऑडिशंस. एंड नाउ इट्स नॉट दैट आपको बॉम्बे में रहने की ज़रूरत है, दिल्ली में बैठ के भी आपके पास ऑनलाइन आ जाते हैं, आप अपना ऑडिशन ऑनलाइन बनाकर भेजो तो उससे भी चल जाता है. बट येस, आई लव टेकिंग वर्कशॉप्स, क्योंकि आज तक कभी कोई फॉर्मल एक्टिंग में मैंने कुछ कोर्स नहीं किया था, कुछ ट्रेनिंग नहीं थी. तो इन वर्कशॉप्स के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और जो 1.5 साल में मेरी डेवलपमेंट हुई है एज एन एक्टर, वो मैं तो फील कर ही सकती हूँ, बट देन इट्स देयर फॉर ऑल टू सी. जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी वीडियोज जिनके साथ मैं वो शेयर करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. एंड यस, आई एम ऑन माय वे एंड यू विल सी मी सून देयर.
4: बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि कुछ लोग जब तारीफ करते हैं ना, और वहाँ से फिर वो एक और मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें अब कुछ करना है लाइफ में. बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जब फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, कभी एक वक्त आया होगा जब 100 से 200, फिर धीरे धीरे एक काफिला बढ़ता गया, क्या कभी ऐसा आया कि नहीं यार कुछ ऐसा ना खास हो नहीं रहा है और अपना यहाँ से चलना चाहिए और कुछ और नया ट्राई करना, कभी ऐसा आया इंस्टाग्राम को लेकर के?
3: एक्चुअली नहीं आया प्रियंका, क्योंकि आप जब ऑनेस्टली कुछ डालते हो ना, आप पूरी अपनी ऑनेस्टी से काम करते हो, फिर जो कनेक्ट कर पाता है आपकी ऑनेस्टी से वो आपके साथ जुड़ता जाता है. तो मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है. नहीं, मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी से डालती हूँ जो भी डालती हूँ. कभी उस जगह को प्रमोट करने के लिए, कभी अपनी डांस कोरियोग्राफी को प्रमोट करने के लिए जो मुझे लगा कि मैंने बहुत मेहनत से की है. तो बस मुझे एक्चुअली हाँ, इस चीज़ से मुझे कोई डर नहीं रहता क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टी और अपनी मेहनत से डालती हूँ, मैं जो भी डालती हूँ. ऐसे नहीं है कि रैंडमली आप कुछ भी वो कर रहे हो. रैंडम भी डालती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हो वो भी डालती हूँ, बट ठीक है, जिसको वो पसंद आएगा वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं आएगा तो एज एन ऑडियंस
4: बिल्कुल
3: आई रिस्पेक्ट दैट.
4: बिल्कुल बिल्कुल सही. और जब हम लाइफ में कुछ करते हैं और जब हमने ये ठाना होता है कि हम ये कर रहे हैं और मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या अपना ओपिनियन रख रहा है, कौन क्या चाहता है मुझसे, बस अगर मेरा मन है और वो चीज़ मुझे करनी है तो आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. नीनू, जब पहली बार कोलैब किया था कैसा लगा था? बिकॉज आप ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं राइट, तो जब पहला ब्रांड का वो आया ऑफर, क्या फील थी? मतलब मैं समझ सकती हूँ कि वो किस तरह की एक्साइटमेंट रही होगी, बट उस चीज को शब्दों में बयां करना ना एक अलग ही मजा आता है. तो आप पहले कोलैब के बारे में बताइए हमें.
3: तो हाँ, पहले तो आसपास के फ्रेंड्स से ही आना शुरू हुआ कि ये स्किन केयर प्रमोट कर दो, ये आउटफिट्स प्रमोट कर दो. तो हाँ, मतलब बहुत खुशी हुई दैट दे ट्रस्ट मी, दे ट्रस्ट दैट इफ आई एम पुटिंग समथिंग, अगर मैं उनका प्रोडक्ट यूज करके उसको डालूंगी तो दे विल गेन प्रॉफिट थ्रू दिस, दे विल हैव यू नो व्यूअरशिप एंड उनके प्रोडक्ट को एड मिलेगी. तो हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे थ्रू प्रमोट करवाना चाहते हैं अपना ब्रांड. हाँ, अभी भी होती है, और मतलब अभी भी अगर कोई मुझे कुछ करने को बोलता है कि ये इसका आप कुछ वीडियो बना के डाल दो, तो मुझे अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि मतलब हाँ, बिकॉज समवेयर दे ट्रस्ट मी, दे लाइक माय पेज एंड दे थिंक दैट आई विल प्रमोटिंग फ्रॉम थ्रू मी विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देम.
4: आज जब आप अपने आप को देखते हैं, पर एक वक्त आता है जब हम ना आईने से हम कभी झूठ नहीं बोल पाते हैं, और जब खुद को देखते हैं ना तो कभी बड़ा प्राउड आता है कि यार हमने जो भी चीज़ अचीव की है वो अपने दम पर की है और बहुत अच्छा लग रहा है. तो जब आप कभी अपने आप को देखते हैं और पीछे जर्नी को देखते हैं, कैसा महसूस होता है?
3: हाँ, मतलब आप हर दिन डेवलप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और मैं भी ऐसे ही बहुत मेहनत करती हूँ, राइट फ्रॉम माय वर्कआउट्स टू माय डांस और माय एक्टिंग, मैं हर एक चीज़ पर काम करती हूँ. मेडिटेशन भी करने की कोशिश करती हूँ, जो भी आपके लिए सही है. ठीक खाना खाने की भी कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाएं और गलत खाना नहीं खाएं. तो हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए, और वो दिखता है एवरी डे, वो दिखता है. एंड एज यू सेड कि हाँ, मैं जब मिरर में देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि मैंने जो अपनी बॉडी पे वर्क किया, जो मैंने अपनी डांस पे वर्क किया, जो मैंने अपने खाने पे वर्क किया, वो मेरी स्किन में दिख रहा है. और एंड अगेन बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग अ ट्रूली गुड ऑनेस्ट काइंड पर्सन ऑल्सो शोज, एंड आई फील कि जो भी मैं काइंडनेस करती हूँ एवरी डे, दैट इज वॉट you know is showing on my body, on my face, and I'm really grateful for each and every day the way I'm growing.
4: Oh, khushi bhi aati hai वैसे, right? अच्छा, आप सीखने सिखाने की उम्र नहीं होती, ना सीखने की और ना आप सिखा रहे हो उसकी, लेकिन आज भी ना लोगों के मन में कि अब तो क्या, अरे अब तो हो गया सब कुछ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करना है सीख कर, या अब क्या करना है आगे बढ़कर, है ना, अब जो भी है अपना परिवार है, बच्चे हैं, ऐसी सोच को आप क्या कहना चाहेंगे?
3: ऐसी सोच सबसे पहले तो घर से ही आती है. सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स से ही आई. एक्टिंग अभी, मतलब अभी बच्चे कुछ करेंगे या तुम्हें करना है?
4: ओके, मतलब आप भी गुजर चुके हैं इससे.
3: तो वो सबसे पहले अपने घर से आती है. तो उनको लगता है कि ये सब अपना घर इग्नोर करके ये बाहर जा रहे हैं अब काम करने, जो पहले नहीं किया. बट इसके साथ में ना आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत

0: मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि हर किसी का जवाब नहीं होता, हर सवाल का अगर आप जवाब देने बैठोगे तो जवाब फीके पड़ जाएंगे, इसलिए जवाब मत दीजिए, करके दिखाइए। और बहुत सही एग्जांपल आज हमारे साथ स्टूडियो में है नीनू सहरावत। अच्छा, एक जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि इन्फ्लुएंसर होना कई बार इजी होता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं, यहाँ फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आप इसे कैसे टैकल करते हैं, इस चीज को कैसे आप लोगों तक लाती हैं ताकि आपका जो मैसेज है वो भी स्प्रेड हो लोगों में और साथ के साथ आपको भी सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते एक सही चीज परोसी है लोगों को।
1: हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो प्रियंका, मतलब आई फील नॉट ओनली एज एन इन्फ्लुएंसर बट अदरवाइज ऑल्सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको किस तरह की वीडियोस डालनी चाहिए, किस तरह की नहीं डालनी चाहिए, किस तरह की पिक्चर्स डालनी चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए है। बट यस, एज एन इन्फ्लुएंसर और ज्यादा है कि यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर पुटिंग और कि ये कनेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो हाँ, मतलब सोच समझ के आपको करना पड़ता है। बट आई फील ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो एज एन इन्फ्लुएंसर सम थिंग्स दैट आई डोंट प्रमोट इज आई डोंट प्रमोट स्किन केयर ब्रांड्स क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है क्या नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो मैं यूज करती हूँ मैं वो यूज करती हूँ बट उसके अलावा जो मेरे पास आते हैं मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं बता सकती कि उसमें क्या सही है क्या नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू प्रमोट एनीथिंग रिलेटेड टू स्मोकिंग और वेप और एनीथिंग। और देन अगेन आई वुड एज अ fitness enthusiast I would not like to promote any packaged stuff. तो ठीक है, जंक फूड इज फाइन कि बर्गर्स हैं पिज्जाज हैं वो रेस्टोरेंट से आ रहे हैं आई कैन, वो तो हम मंथ से ना वाइल खाते हैं, बट देन अगर कोई पैकेज स्टफ आता है तो वो जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं वो मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहूंगी और ना ही मैं करती हूँ। तो या दीज फ्यू थिंग्स एज अ पर्सन आई टेक केयर ऑफ कि जो मैं खुद अपनी लाइफ में नहीं करती वो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँ।
0: अच्छा, आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ जैसे कि आप भी इतना सब कर रही हैं तो यहाँ थोड़ा सा मैं आना चाहूँगी महिलाओं की स्थिति के ऊपर क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर भी संभालना और वर्किंग है तो बाहर भी चीज़ों को देखना। आप उन सब के साथ साथ आप अपना जो पेज है वो रन कर रही हैं जिसमें आप तरह तरह की वीडियोस डाल रही हैं तो जाहिर सी बात है समय तो जाता ही है और सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। आप उसको आप कैसे मैनेज करती हैं जहाँ आप खुद को भी जी रही हैं अपने परिवार को भी संभाल रही हैं हर चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही हैं तो क्या चैलेंज आता है?
1: हाँ, ये सही कहा आपने प्रियंका, चैलेंज तो बहुत आता है कि आपको अपना घर भी मेंटेन रखना है और बाकी सबका ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखना है, अपनी पर्सनली भी अपनी फिटनेस और अपने खाने हर चीज का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको बाकी के काम भी करने हैं। तो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आपको चूज करना है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्रायोरिटाइज करना है। तो यू नो आई थिंक ऑल ऑफ अस नॉट ओनली वेमेन एवरी वन बट देन अभी मैं इफ आई टॉक अबाउट वेमेन येस ऑल ऑफ अस आर जगलिंग विद ग्लास एंड रबर बॉल्स फॉर एग्जाम्पल। तो रबर बॉल गिर गई नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आप कांच की बॉल को नीचे गिरने नहीं दे सकते। तो जब आप जगल कर रहे हो ना आपको ये ध्यान रखना है कि चलो रबर बॉल कभी हाथ से छूट भी गई तो छूट जाएगी लेकिन मेरी कांच की बॉल नीचे नहीं गिर सकती। तो और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, कौन सी जगह जाना इम्पोर्टेंट है, कौन सी पार्टी में कौन सी गैदरिंग में कौन से इवेंट पे जाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी या आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके लिए वो वर्क करेगा या आपका समय बर्बाद करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह आपको अपना दिन प्लान करना पड़ेगा और अपनी प्रायोरिटीज को ऊपर रखना पड़ेगा और अपनी कांच की बॉल को नीचे नहीं गिरने देना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जितने भी लोग और खासतौर पर जितनी भी लड़कियां महिलाएं सुन रही है ना उनको बहुत ज्यादा आपसे मोटिवेशन मिल रहा होगा आपकी बात से। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं फन की तरफ आना चाहूंगी। कभी कोई ऐसा डीएम जिसे देखकर आपको लगा हो कि अरे ये क्या है, कभी कभी ऐसा कुछ तो ना हंसी आ जाती है, स्माइल चेहरे पर आ जाती है, कभी अटपटी सी चीजें, तो कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ में?
1: वैसे तो जो डीएम्स आते हैं जो आपके फ्रेंड्स के नहीं होते उसका एक

0: अलग से होता है तो उसमें जाके आप डिलीट ऑल करके पूरा डिलीट कर सकते हो. बट वंस इन अ वाइल कभी मैंने एक आध बार खोला है तो मुझे दो तीन बार ही मैरिज प्रपोजल्स बहुत आए. तो हाँ, आई एम हैप्पी दैट आई हैव यू नो गुड डिसेंट पीपल कि जो मुझे फॉलो करते हैं. तो हाँ, बस मैंने वो देखे प्रॉपर मैरिज प्रपोजल विद अ बिग पैराग्राफ दैट दिस इज व्हाट आई हैव एंड यू नो लाइक दैट. सो हाँ, दैट्स इट. उससे ज़्यादा वियर्ड कुछ नहीं है. आई थिंक बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कभी. मतलब देर आर नॉट मेनी पीपल आई नो हु आर ट्रोलिंग मी और समथिंग. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव वेरी गुड फॉलोअर्स.
1: अच्छा, आप जिस तरह का कंटेंट देती हैं वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम के पे किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, किस तरह की चीज़ें आप देखना पसंद करती हैं?
0: जैसे कि मैंने आपको बताया, आई ट्रैवल एक्सटेंसिवली, तो मैं वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ. ट्रैवल पेजेस मैं बहुत फॉलो करती हूँ. और हाँ, अगेन फैशन से रिलेटेड आउटफिट्स आई लाइक टू सी कि कहाँ क्या अच्छा है, किसने क्या पहना है. और हाँ, मतलब मुझे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है और ट्रैवल का बहुत शौक है. तो हाँ, बस मैं वो चीज़ें ज़्यादा फॉलो. एंड अगेन फूड, लॉट ऑफ फूड रेसिपीज. आई एम अ बिग टाइम फूडी और मुझे फूड रेसिपी
1: सबका फेवरेट.
0: और अगेन हेल्दी, जितना हेल्दी हो सके. और बट हेल्दी भी नहीं हो, कुछ डिफरेंट आप बना सको घर में जो इंटरेस्टिंग रहे, जिससे आपको बाहर जाने का कभी मन ना करे, बाहर से ऑर्डर करने का मन ना करे. तो आई ऑलवेज लाइक टू मेक वेरी डिफरेंट वेराइटीज एट होम.
1: तो बस आपके इंस्टा पेज पे आप एक फॉलोअर और बढ़ने वाला है और वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी फूड बहुत पसंद है और चीज़ें अच्छा लगता है और खाने पीने की चीज़ें हो तो ज़्यादा मज़ा आता है. अच्छा, आज जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की, हम ना आज के यूथ की अगर बात करें तो इनको ना क्विक सक्सेस चाहिए, है ना, एकदम हर चीज़ क्विकली होनी चाहिए उनके लाइफ में. लेकिन अगर नहीं होता तो उतनी ही जल्दी वो हार भी मान जाते हैं. तो क्या ज़िंदगी ऐसी ही है आज की बात करें, या फिर थोड़ी सी चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ना चाहिए ताकि एक अच्छी जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हम देख सकें? तो आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप?
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की प्रियंका, कि पेशेंस नाम की चीज़ आजकल किसी में नहीं है. सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन पेशेंस जो है वो दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव. तो हाँ, और यूथ को लेके, बच्चों को लेके, हाँ, उनको हर चीज़, क्योंकि सब कुछ इतना इंस्टेंट हो गया है ना. ठीक है, मतलब दिस इज़ द जनरेशन, यू नो हैव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दैट आई अंडरस्टैंड. बट हाँ, लेकिन ये बातें सबको अपने घर में डिस्कस करनी चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: अपने बच्चों के साथ आपको डिस्कस करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत चेंज आया. वो लोग भी फ़ोन पर ही पाए जाते हैं. तो आई थिंक सबको सेंसिबल होके दीज आर द टॉक्स वी शुड हैव एट द डिनर टाइम, कि कितना इम्पॉर्टेंट है मेहनत करके आगे बढ़ना, क्योंकि शॉर्टकट्स तो हैं ही नहीं. यू नो, देर आर नो शॉर्टकट्स. और इंस्टेंटली आपको कुछ भी नहीं मिल सकता. अगर आपको सब कुछ अच्छा चाहिए तो आपको मेहनत करके ही अचीव करना पड़ेगा.
1: बिल्कुल, मेहनत बहुत ज़रूरी है. आप मेहनत करोगे और सही दिशा में करोगे तो एक सही दिशा आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन, एक जो खुशी है वो आपको मिलेगी. अच्छा, एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर एक दिन के लिए आपका फ़ोन मैं ले लूँ, आपका पूरा दिन कैसा रहेगा? क्योंकि आप आज के टाइम पे, मतलब अगर आधे घंटे भी हाथ में फोन नहीं है तो ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया हमारी लाइफ के साथ, ऐसा लगता है सब कुछ मिसिंग है. तो अगर एक दिन के लिए फोन आपके पास नहीं है तो कैसा दिन बीतेगा आपका? मतलब क्या क्या चीजें आप करने वाली हैं फिर?
0: जाहिर है कि परेशानी तो बहुत होगी, क्योंकि बार बार फोन की तरफ आ जाता है, अब इसको फोन करना है, अब उसको करना है, इसका फोन आना था. तो बट हाँ, मुझे लगता है कि अपने घर वालों के नंबर्स मुझे याद हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मैं कहीं से भी एटलीस्ट कॉल करके चेक कर सकती हूँ कि वो ठीक है कि नहीं है. और उसके अलावा फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो बात आज होनी थी वो दो दिन बाद हो जाएगी, इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ, वो जो एक आदत है आपका बार बार, अरे ये क्या हो गया, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. आई विल ट्राई इट वन डे.
1: जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ आपसे पूछा, जानने को मिला. चलने का वक्त हो गया है. आपका क्या मैसेज होगा सभी के लिए?
0: आज हमने ज़्यादातर बातें सोशल मीडिया को लेकर की हैं, तो मैं फिर से टू समिट अप आई विल से द सेम थिंग दैट डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन योर फोन. यूज़ इट करेक्टिवली कि आप उसको अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, उसको मिसयूज़ मत कीजिए.
1: राइट.
0: ओनली जब आपको ज़रूरत है, जब आपको लग रहा है कि हाँ आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस पर आइए. नहीं तो जो हम जिस तरह से पहले रहते थे कि दो चार लोगों से फ़ोन पर बात होती थी, उनसे मतलब है. सबसे दुनिया भर से कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है. अगर मैं फूडी हूँ तो मुझे 1000 फूड चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है. तो जिसकी ज़रूरत है बस उसको अपने पास रखिए और आपकी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट और सिंपल हो जाएगी.
1: जी, एक बहुत ही प्यारे छोटे से और खूबसूरत मैसेज के साथ में चले, मेरे भी चलने का वक्त हो गया है. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक बहुत छोटा सा मंत्र है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, मुस्कुराएं और सुनते रहें रेडियो मना विष्णा 107.8 FM. और नीनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू प्रियंका
1: जी. तो चलिए, मेरे भी चलने का वक्त हो गया है, तो आज का सफर यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा मैसेज करके ज़रूर बताना. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. बाय.

पुरस्रार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: मशहूर हो जाए।
1: जब रात के इस सुकून भरे पल में जब चांद भी चुपके से मुस्कुराए, तब दिल के कोने से कुछ यादें जैसे पुरानी कहानियां बन जाएं, जहां खुलते हैं पन्ने एक डायरी के कुछ पुरानी यादों के साथ, क्योंकि हर लफ्ज के पीछे होती है दिल से दिल की बात, दिल की बात। तो सुनिए हर शनिवार और रविवार रात 7 से 8 सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आरजे प्रियंका के साथ प्रोग्राम यादों की डायरी।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है मैं, तुम और हम, जिसे लिखा है दीप्ति मित्तल ने।

0: आज सुबह कुछ अलग थी, क्या अलग था पता नहीं, पर कुछ तो था। शायद ये कि मेरे बेडरूम की खिड़की पर झूलती नीलगिरी की डाली के ऊपर बड़े दिनों बाद एक कोयल आकर बैठी थी, जो पिछले कुछ मिनटों से कुकू कर रही थी। या ये कि सामने बन रही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क जो सुबह सुबह शुरू हो जाता था आज रुका हुआ था। तुषार उठो, 8 बज रहे हैं, ऑफिस को लेट हो जाएगा, तुमने रात को अलार्म नहीं लगाया था?
1: वर्क फ्रॉम होम है यार।
0: आराम से उठूंगा, तुम भी सो जाओ। नींद में ही बड़बड़ाकर वो फिर पलट कर सो गया। वर्क फ्रॉम होम, उफ बिल्कुल भूल गई थी, आज तो काम वाली कुक कोई भी नहीं आएगा। अब नींद कहाँ आने वाली थी मुझे, घर पर इतने सारे काम जो सामने खड़े दिख रहे थे, आज ऑफिस में भी टाइम बेहद शेड्यूल था। तुषार को यूं बेखबर बेपरवाह सोता देख मन किया उसे छकझोड़ दूं और कहूं चलो उठो, कितना काम पड़ा है घर में, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी निपटेगा, मगर नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों उस पर कभी वो हक महसूस ही नहीं कर पाई जो एक पत्नी करती है अपने पति पर, हक जिद करने का, वो भी ना सुने तो बहस करने का, रोटने का और मनाने पर मान जाने का। हम दोनों के बीच तो शुरू से ही एक परायापन पसरा था, एक ऐसी अदृश्य दीवार खींची थी जिसे हम कभी भेद ही नहीं पाए। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, अरेंज मैरिज थी, एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से पापा ने मेरे लिए परफेक्ट मैच खोजा था। परफेक्ट यानी हम दोनों हम उम्र आईटी इंजीनियर थे, एक शहर में जॉब करते थे और एक सा कमाते थे, उनके लिए परफेक्ट मैच शायद यही परिभाषा थी। हमारी शादी का पहला साल डिस्टेंस रिलेशनशिप में गुजरा। शादी होते ही उसे साल भर के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मैंने बहुत हाथ पैर मारे मगर मुझे अपनी कंपनी से अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं मिला। तुषार के घर वालों ने कितना फोर्स किया था मुझे कि मैं अपना जॉब छोड़कर स्पाउस वीजा पर उसके पास चली जाऊं, मगर मैं क्यों अपनी जॉब अपना करियर का त्याग करती, क्या वो यहां प्रोजेक्ट ट्राई नहीं कर सकता था? कारण चाहे जो भी रहा हो मगर हमारे रिश्ते में कभी वो गर्माहट वो एहसास पनप ही नहीं पाया जो एक के दूर होने पर दूसरे को बेचैन कर डालते हैं, सूनी आंखों को इंतजार से भर देते हैं और वो राह तकती रहती है उस पल का जब उसका साथी लौट कर आएगा और उसके पास उसकी बाहों में। हम दोनों तो जैसे तैसे अपने अपने दायरों में सिमटे, अपने अपने काम में उलझे, अपनी अपनी जिंदगी जीने के आदि हो चले थे। मैंने उठकर अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर बाहर टेरेस पर आकर बैठ गई। आज मौसम कुछ घिरा हुआ सा लग रहा था, मौसम में भी हल्की सी ठंडक थी। चाय पीते हुए मोबाइल पर मैसेज चेक करने लगी, 10 बजे टीम के साथ वीडियो कॉल, 12 बजे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और लॉकडाउन पर बने कुछ बेहद फालतू जोक्स। लोग भी ना अपनी सारी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर ही निकालते हैं। मैंने झल्लाते हुए चैट को क्लियर किया। गुड मॉर्निंग। कुछ देर बाद तुषार अलसाते हुए मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी नजरें इधर उधर कुछ खोजने लगी। आज नहीं आया? जानती थी वो अखबार ढूंढ रहा है। चाय पीते हुए अखबार पढ़ना, देश दुनिया की एक एक बात जानना उसके रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा था और शायद मेरा भी। हम इंफॉर्मेशन का भंडार थे, मुझे तो ऑफिस में गूगल कहा करते थे सब, बस एक दूसरे को ही नहीं जान पाए हम। आंखों को पढ़ना, मन को सुनना, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, पता ही नहीं था हमें। वो मोबाइल में आंखें गड़ाए अखबार की कमी न्यूज ऐप से पूरी करने लगा तो मैंने उसे टोक दिया, आज तो डिलीवर नहीं हुआ है तो खुद जाकर लाना पड़ेगा। उसने अनसुना किया तो मैं आगे बोली, तुमको क्या, मुझे? उसने आंखें मिचमिचाई, मैं कहां से लाऊं? सोसाइटी के बाहर जो शॉप है वहीं मिलेगा, और अगर वहां नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, तरसोगे पूरा दिन चाय और कॉफी के लिए, मैंने तलखी से कहा। तो वो झल्ला कर दूध लेने चला गया। पानी में उबलती अदरक इलायची मिली, चाय पत्ती की महक पूरे घर को महका रही थी। तुषार दूध ब्रेड बटर के साथ खूब सारे नूडल्स के पैकेट भी ले आया था। इतने नूडल्स में 3 दिन तो निकल जाएंगे ना, उसकी बात से लगा शायद उसे बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि मैं खाना भी बना सकती हूँ। होता भी कैसे, कभी खाया ही कहाँ था उसने मेरे हाथ का खाना। शादी के बाद हमेशा से हमारे पास कुक रही थी, कभी वो छुट्टी पर होती तो बाहर से ऑर्डर कर लेते। मेरी 9:30 बजे एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट कॉल है, अगर उससे पहले नाश्ता मिल जाता तो। तुषार की आवाज में रिक्वेस्ट थी। ओह, मुझे भी तो टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, याद आते ही मेरे हाथों में तेजी आ गई। मैंने दोनों के लिए फटाफट टोस्ट बनाए और उसे जैसे तैसे खाकर हम अलग अलग कमरों में अपने अपने ऑफिस खोल कर बैठ गए। मुंबई की पॉश सोसाइटी की 3री मंजिल पर स्थित 3 BHK फ्लैट में इस वक्त 2 आभासी दुनिया बनी हुई थी, जिसमें ना जाने कितने लोग कितनी बातों का कितनी जानकारियों का लेन देन कर रहे थे। ज्यादातर काम कंप्यूटर से ही निपट रहे थे और रहे सहे फोन पर। किस कलीग की सुबह कैसी गुजरी, किसने क्या परेशानियां झेली, क्या नाश्ता किया, बीच बीच में यह भी डिस्कशन चल रहा था। सब आपस में कितने जुड़े हुए थे, कितने कनेक्टेड थे, सिवाय 2 लोगों के, तुषार और मेरे।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है मैं, तुम और हम, जिसे लिखा है दीप्ति मित्तल ने।

0: एक छत एक रिश्ता साझा करते हुए भी शायद हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, बेहद अलग, अपनी अपनी दुनिया के बाशिंदे जो बस आते जाते टकरा जाते और जरूरत पड़ने पर काम भर की बातें कर लिया करते थे। दिन धीमे धीमे सरकता हुआ शाम की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। इसका मुझे जरा भी अंदाजा ना होता अगर आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट और ताबड़ तोड़ पड़ते ओले मेरी खिड़की पर शोर ना करते। मैं डरकर कमरे से बाहर आई, पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। बाहर प्रकृति का भयंकर रौद्र रूप चल रहा था, मगर तुषार इन सबसे बेखबर कानों पर हेडफोन लगाए लैपटॉप स्क्रीन में आंखें गड़ाए अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके कमरे का दरवाजा धीमे से बंद कर मैं रसोई में चाय बनाने आ गई। कुछ ही पलों बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर आया, मानसी, अरे ये नेट को क्या हुआ यार, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल चल रही थी मेरी। उसके आते ही मैंने चाय का पानी बढ़ा दिया। जानती थी किस तूफानी मौसम में उड़ने वाला नेटवर्क अब जल्दी नहीं आएगा। तुषार अब पूरे घर में नेटवर्क एजेंसी और मौसम को कोसता हुआ घूमेगा। वैसे उसकी भी गलती नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम करते हुए इंटरनेट का उड़ना हाथ पैर कटनी जैसा लगता है, मगर हम दोनों के ही काम बीच में लटक गए। सुबह टोस्ट, दोपहर में नूडल्स और शाम की चाय के साथ खाली बिस्किट, ये इतना भी बुरा नहीं लगता अगर सामने वाले फ्लैट की रसोई से उड़ती हुई प्याज भजिया के पकौड़े की महक हम दोनों तक ना पहुंच रही होती। तो ये बड़ी ज्यादती है यार, ऐसे समय जब राशन पानी की किल्लत है, कुक नहीं आ रही है, लोग भजिया खा रहे हैं, वो बड़बड़ाया। मैं साफ देख पा रही थी उसकी आंखों में उठती चाहत को। तुम्हें आते हैं बनाने प्याज की भजिया, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कभी बनाई तो नहीं, बट हाँ मॉम को बनाते हुए देखा था। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्याज काटो, बेसन और मसालों को मिलाओ और बस तल दो। मैंने अपना थियोरेटिकल ज्ञान बखारा। तो फिर, उसकी आवाज में फरमाइश छिपी थी, देखो मैं प्याज नहीं काटूंगी, बहुत आंखें जलती है मेरी। मैंने पहले ही हाथ खड़े कर लिए, अगर मैं काट दूं तो? उसकी आंखों में मनोहार झलकने लगा, तो मैं मना ही नहीं कर पाई। हवा में घुली भजिया की महक से बौराए हम दोनों कुछ ही पलों बाद रसोई में खड़े थे। राशन के डिब्बे टटोलते, आलू प्याज की बास्केट में झांकते, थोड़ी ही देर में आंसू बहाते हुए उसने आड़ी तिरछी प्याज की फांके काट दी। अरे तुम्हें तो आता है सब्जी काटना, वाह। हाँ, शादी से पहले 3 साल अकेले रहा हूं ना, और 1 साल तो बाद में भी। जब कुक नहीं आती थी तो हम दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ बना लेते थे। वो जैसे पुरानी यादों में खो गया। चलो अब तुम्हारी बारी है। मैंने कढ़ाई में तेल डाला और कटे प्याज सामने रख अंदाजा लगाने लगी कि कितना बेसन कितना नमक डालूं। मुझे ये उलझन में देख बोला, मम्मी को फोन कर पूछ ले क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। जानती थी मॉम से पूछने का मतलब था पहले आधे घंटे का लेक्चर सुनना। मैंने प्याज में अंदाजे से मसाले और बेसन मिलाए और भजिया तलने छोड़ दी। वो गरम तेल में लहराते हुए ऊपर उठाए तो हम दोनों की आंखें चमक उठी। लगा जैसे उम्मीद से परे कोई बड़ा कारनामा कर गुजरे हो। भजिया बनकर तैयार थी, मैं 2 प्लेटों में सर्व करने लगी तो तुषार ने 1 प्लेट हटा दी। साथ ही खा लेंगे, इससे बर्तन कम गंदे होंगे। मैं कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही। वहां एक फिक्र सी बैठी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी मैंने। आज वो आंखें किसी अपनी सी लग रही थी, जानी पहचानी सी। वो शाम शायद पहली ऐसी शाम थी जब हमने किसी बहाने से ही सही साथ बैठकर 1 प्लेट शेयर कर कुछ खाया था। इधर उधर की बातें बनाते, कभी हंसते तो कभी झल्लाते। कुछ देर ही सही हम अपनी अपनी दुनिया से निकल हमारी दुनिया में चले आए थे। तूफान से गुजर सुबह और सुहानी हो चली थी। खिड़की का पर्दा थोड़ा खिसका था, वहीं से पैठ बनाकर सूरज की चंद किरणें मेरे तकिए पर उतर आई थी। मैंने गहरी सांस भरकर कंबल वापस मुंह तक खींच लिया। बाकी दिनों में कैसे इस समय तक मेड आधे सारे काम निपटा दिया करती थी और मैं और तुषार भी भाग भाग कर तैयार हो रहे होते, मगर आज जैसे वक्त ने अपने कदम थाम लिए हैं। कुछ देर बाद मेरे कानों में तुषार की तेज आवाजें आने लगी। टेरेस की तरफ से आ रही थी, शायद फोन पर किसी से उलझ रहा था। मैं दबे पांव उसके पास जाकर सुनने लगी। आप लोग पैसे तो पूरे रखवा लेते हो लेकिन सर्विस देने के नाम पर जीरो हो। आज मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और आपका नेट नहीं चल रहा है। दो चार और सुनाकर उसने फोन रख दिया। वो एक हाथ रेलिंग पर और दूसरा कमर पर रख अजीब से झुककर खड़ा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हो, एनी प्रॉब्लम? नहीं कुछ खास नहीं, शायद फिर से कमर दर्द बढ़ गया है यार। उसके माथे की सिलवटों में दर्द की लकीरें छिपी थी। फिर से यानी? हाँ, वो दो तीन महीने से बार बार हो रहा है। बैक सपोर्ट बेल्ट खरीदी थी मगर लास्ट डे ऑफिस में ही रह गई। पेन किलर से आराम मिल जाता है मगर आज तो उसने भी साथ नहीं दिया। सुनकर मुझे थक्का लगा। दो लोग हर रोज एक कमरा एक छत शेयर करते हैं, फिर भी इतनी दूरी है कि एक की तकलीफ एक का दर्द दूसरे तक नहीं पहुंचता। यार दोस्तों से हर बात शेयर करने वाले हम क्यों एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा जाते हैं? इतना भी रिश्ता नहीं बना पाए हम कि अपनी खुशियां बांट ले, दुख साझा कर ले। किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा ले। लॉकडाउन है मैडम, सारे ओपीडी बंद है और वैसे भी इतना भी इमरजेंसी केस तो नहीं है। वैसे दिखाया था मैंने, कोई घबराने वाली बात नहीं है, रेस्ट से ठीक हो जाएगा। अच्छा वैसे मैंने दूध लाकर फ्रिज में रख दिया है, देख लेना। मैं रसोई में चली आई और चाय चढ़ा दी। मन तुषार के दर्द में ही अटका था। चाय पीकर तुषार फिर लेट गए। मुझे याद आया कि माँ ने दर्द मोच की पर्ची लगाकर एक तेल दिया था, उसे ढूंढकर तुषार के पास गई और उसे पलटकर लेटने को कहा। अरे रहने दो, इसकी क्या जरूरत है, उसने ना नुकुर की तो मैंने उसे जबरन पलट दिया और उसकी पीठ पर तेल की मालिश करने लगी। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह ऐसी आंखें मूंद ली जैसे आराम मिल रहा हो। फिर उसके हाथों पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने लगी जो पापा से सीखे थे। उन पलों में मैंने महसूस किया कि ये हाथ जो मैंने थाम रखा है ये मेरा अपना ही तो है। फिर क्यों इन्हें थामने में हमेशा हिचक सी लगती है। आराम मिलने पर उसकी आंखें लग गई थी। मैंने उसके पास बैठे हुए उसके बेसुध चेहरे को देखते हुए पापा की कही एक बात सोचने लगी।
1: वो क्या है बेटा, किस्मत को जब एक नया दरवाजा खोलना होता है ना, तो वो पहले सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि ताकि जिद्दी इंसान के सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे।
0: शायद इस समय किस्मत ने हमारे वो सारे दरवाजे इसीलिए बंद कर दिए जो हमें अलग अलग दुनिया में ले जाते थे। ऑफिस जाना बंद, दोस्तों से मिलना जुलना बंद और सबसे बड़ा इंटरनेट जो हमें पल भर में एक दूसरे से मीलों दूर पटक देता था, आज तो वो भी बंद था। ऐसे में एक दरवाजा हौली हौली से खुल रहा था हमें पुकारते हुए, हमारी अपनी दुनिया का दरवाजा। अच्छा लग रहा था आज पहली बार पास होकर यूं साथ जीना। कुछ देर बाद मैं रसोई में आ गई। पहली बार मन किया कि आज नाश्ते में अपने लिए नहीं तुषार के लिए कुछ बनाऊं, कुछ अच्छा सा जिसे वो पसंद करे। और तारीफ करते हुए बोले, क्या कमाल बना है मानसी। अभी सोच ही रही थी कि वो भी उठकर किचन में आ गया। यू नो मानसी, मुझे बैक पेन में कितना आराम है। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ इंजीनियर के साथ डॉक्टर भी है। काश मैं तुम्हें पहले ही बता देता। वो आगे कुछ कहते हुए रुक गया। वैसे कैसे बताता, आज से पहले हम एक दूसरे को देखते ही कहां थे। अपने सुखों अपने दुखों की गठरी उठाए दो मुसाफिरों की तरह एक छत के नीचे रात बसर कर फिर अपनी अपनी राह चल पड़ते। वैसे गलती मेरी भी थी, अपनी इस बड़ी बालकनी वाले 3 BHK फ्लैट को घर कहां बना पाई मैं। टेरेस पर लगे अपने पसंदीदा पौधों को नियम से पानी देती रही, मगर हमारे रिश्ते को कहां सींचा था कभी। मैं इधर पोहे बना रही थी और वो उधर बर्तन साफ करने लगा, तो मैंने उसे रोका। कमर दर्द है ना तुमको, रहने दो। कहा ना अभी ठीक है, साथ काम करेंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा। वो कुछ गुनगुनाते हुए हाथ चलाने लगा। मैंने पोहे एक प्लेट में रख लिए 2 चम्मच के साथ। वो पीछे से नींबू और हरी मिर्च लेकर आ गया। इसके साथ खाती हो ना तुम? ये सुनकर मैं चौंक गई। ये कब जाना उसने? हमेशा उसे मोबाइल में आंखें गड़ाए नाश्ता करते हुए देखा था। अच्छा तुम्हें पता है, और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत कुछ, जैसे घर छोड़ने से कम 4 बार गैस, कमरे के लाइट पंखे और मेन गेट का लॉक चेक करते हो तुम। मैं झेप गई। सही तो कह रहा था वो, शायद उतनी अनजान भी नहीं थे हम जितना मैं सोचे बैठी थी। वैसे मुझे भी तो बहुत कुछ पता था उसके बारे में। हर दूसरे दिन अपना वेट चेक करता था और फिर डिसाइड करता था नाश्ता करेगा या नहीं। हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश करता था मगर हो नहीं पाता था। फ्राइड फूड कमजोरी है उसकी। सोशल मीडिया पर हर वक्त ऑनलाइन रहता है, चश्मा सर पर चढ़ाए भूल जाता है और फिर खोजता रहता है। मैं ये सब सोचकर हंस पड़ी। टेरेस पर बैठे साथ चाय पीते, लॉकडाउन की हालत की चर्चा करते,

गमलों में खिले ताजा फूलों को देखते हम थोड़ा और करीब आ रहे थे। लग रहा था वो खोल जो हमने अपने अपने ऊपर जबरन ओढ़े थे सरकने लगे हैं। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे। दो दिन बाद आज शाम को नेटवर्क आ गया था। हम दोनों ही अपने अपने पेंडिंग वर्क निपटाने अपने अपने लैपटॉप की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद तुषार हाथों में लैपटॉप उठाए मेरे कमरे में आया। मैं भी यहां काम कर लूं? उसने पूछा तो मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर उसके लिए जगह बना दी और अपनी दुनिया में भी। अब हम अलग अलग दुनिया के नहीं बल्कि एक ही दुनिया के बाशिंदे थे, जो मैं या तुम नहीं बल्कि हम बनकर जीना सीख रहे थे।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल की लिखी कहानी मैं तुम और हम प्रियंका के साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बात हो रही है लेखिका महाश्वेता देवी के बारे में। महाश्वेता देवी के बारे में आपसे मैंने बहुत सारी बातें की थी पिछले एपिसोड में। उन्होंने हर तरह के लेखकों की लेखनी को पढ़ा था। उनके जो पति देव थे, जिनका नाम था विजन भट्टाचार्य, जब वो अपने जिंदगी के थोड़े से कठिन समय में थीं, यानी जब संघर्ष के दिन थे, उसी समय उनके पति विजन भट्टाचार्य को एक हिंदी फिल्म की कहानी के लिए मुंबई बुलाया गया था और फिर वो मुंबई गए भी, लेकिन साथ में लेखिका महाश्वेता देवी भी गई थी। अब मुंबई जाकर के इनकी लाइफ में क्या होता है आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि महाश्वेता देवी के पति देव जब मुंबई जाते हैं एक किसी फिल्म की कहानी लिखने के सिलसिले में, तो साथ में महाश्वेता देवी भी चली जाती हैं। मुंबई में महाश्वेता के बड़े मामा, जिनका नाम था सचिन चौधरी, मामा के यहाँ ही महाश्वेता ने पढ़ा V.D. सावरकर 1857। इससे इतनी प्रभावित हुई कि उनके मन में भी इसी तरह का कुछ लिखने का विचार आया। तय कर लिया कि झांसी रानी यानी झांसी की रानी पर किताब लिखूंगी। उन पर जितनी किताबें थीं सब जुटा करके पढ़ने लगी। मुंबई से आने के बाद ट्यूशन वगैरह से तो काम चल ही रहा था, लेखन को भी जीविका का साधन बनाने का विचार उनके अंदर आया और वो विचार दृढ़ और मजबूत होता चला गया। इसके बाद की कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि लेखिका महाश्वेता देवी ने झांसी की रानी पर अपनी एक किताब लिखने का विचार किया। महाश्वेता ने प्रतुल गुप्त को अपने मन की बात बताई कि वो झांसी की रानी पर लिखना चाहती हैं। महाश्वेता ने झांसी की रानी के भतीजे यानी गोविंद चिंतामणि से पत्र व्यवहार शुरू किया। सामग्री जुटाने और पढ़ने के साथ साथ उत्साहित होकर महाश्वेता ने लिखना भी शुरू कर दिया। फटाफट 400 पेज लिख डाले, पर इतना लिखने के बाद उनके मन ने कहा, अरे भाई, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उसे फाड़कर फेंक दिया। झांसी की रानी के बारे में और जानना पड़ेगा, ये विचार उनके अंदर आने लगा कि जितना मैंने जाना है झांसी की रानी के बारे में, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मुझे और भी जानकारियां चाहिए, और भी सामग्री चाहिए झांसी की रानी के लिए। तो इसके लिए 6 साल के अपने बेटे यानी नवारुण भट्टाचार्य और पति को कलकत्ता में छोड़कर आखिरकार झांसी की रानी की जानकारी हासिल करने के लिए झांसी ही चली गई। अब झांसी जाने के बाद क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है लेखिका महाश्वेता देवी के बारे में, और उनके जहन में ख्याल आया कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगी जिसका नाम होगा झांसी की रानी। अब किताब लिखने के लिए जानकारियों का होना बहुत जरूरी है। जितनी जानकारियां वो जुटा पाई, उन जानकारियों से संतुष्ट नहीं थी, और आखिरकार अपने बेटे, अपने पति, अपने शहर को छोड़कर झांसी ही चली गई, जिससे झांसी की रानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सामग्री हासिल कर सके। और दोस्तों, जब लेखिका महाश्वेता देवी झांसी चली गई, तब उनके पति के पास किसी भी तरह की कोई नौकरी भी नहीं थी। जैसे तैसे शुभ चिंतकों से पैसे लेकर वो 1954 में झांसी की यात्रा पर निकल गईं। अकेले उन्होंने बुंदेलखंड के चप्पे चप्पे को अपने कदमों से नाप डाला, वहां के लोकगीतों को कलमबद्ध किया। तब झांसी की रानी की जीवनी लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा झांसी में ही रहते थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। उनके परामर्श के मुताबिक झांसी की रानी से जुड़े कई स्थानों का दौरा किया, और जितने भी स्थानों का दौरा किया, हर स्थान से उनको एक नई और दिलचस्प जानकारी मिली। इन जानकारियों को जुटाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो एक ऐसी किताब लिखना चाहती थी जिसमें झांसी की रानी के बारे में जो भी बातें हों वो बातें सत्य हों, और किसी भी तरह का उस लेखनी में कोई झोल ना हो। ये उनका प्रयास था, यानी कि महाश्वेता देवी का। पर बात अभी अधूरी है। बात को पूरा करने के लिए आपको बताऊंगा बुंदेलखंड से लौटकर महाश्वेता देवी ने क्या किया। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही है महाश्वेता देवी के बारे में और उनकी उस यात्रा के बारे में जो यात्रा उन्होंने अपनी किताब जिसका शीर्षक रखना चाहती थी झांसी की रानी। झांसी की रानी किताब को लिखने के लिए वो झांसी चली गई, वहाँ पर लोगों से मिली, बहुत सारे स्थानों पे गईं और इस तरह से बहुत सारी जानकारियों को हासिल किया। लेकिन दोस्तों, बुंदेलखंड से लौटकर महाश्वेता ने नए सिरे से झांसी की रानी लिखी और देश में ये रचना धारावाहिक छपने लगी। न्यू एज ने इसे पुस्तक के रूप में छापने के लिए महाश्वेता को उस समय 500 रुपए दिए थे। इस तरह महाश्वेता की पहली किताब 1956 में आई झांसी की रानी। 1956 के बाद महाश्वेता की दूसरी पुस्तक नटी, जो कि 1957 में आई थी, उसी कड़ी में जली थी अग्निशिखा आई थी। ये तीनों किताबें 1857 के महासंग्राम पर केंद्रित हैं। ह्यूरोज ने ही कहा है कि समय और युग की सभी रूढ़ियों को तोड़कर लक्ष्मीबाई ने अपने को एक योग्य और सक्षम सेनानायक सिद्ध किया था। ह्यूरोज के इस कथन को महाश्वेता ने जली थी अग्निशिखा में भी अद्भुत तरीके से पेश किया है। इतना संघर्ष करने के बाद दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया कि उनको अपने पति से संबंध विच्छेद करने पड़े। अब इस बात को पूरी तरह से आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आपने फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है महाश्वेता देवी के बारे में, लेकिन अगर 60 के दशक की बात करें तो 60 का दशक महाश्वेता के जीवन के लिए बड़ा उथल पुथल वाला रहा। 1962 में विजन भट्टाचार्य यानी उनके पति से विवाह विच्छेद हो गया। असीत गुप्त से दूसरा विवाह हुआ, लेकिन 1975 में उनसे भी अलग हो गई। उसके बाद उन्होंने लेखन और आदिवासियों के बीच कार्य करके हमेशा सृजनात्मक कार्यों में अपने को व्यस्त रखा। ये भी गौर करने वाली बात है दोस्तों कि महाश्वेता कभी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। घर में बेटी, दीदी, पत्नी, माँ और दादी माँ की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई। महाश्वेता शुरुआत से ही अलग किस्म की महिला रही हैं, इसलिए दो दो बार शादी हुई और टूटी, उसके बावजूद उनके सम्मान पर कोई आंच नहीं आई। वो वही महाश्वेता रही। महाश्वेता का उनके पति भी बहुत सम्मान करते थे, इसलिए दोनों अलग अलग होने के बाद भी विजन या दूसरे पति असीत ने महाश्वेता के विरुद्ध या महाश्वेता ने उन दोनों के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा। विजन की मृत्यु के बाद महाश्वेता दिन भर वहां रही। वहां महाश्वेता की उपस्थिति को बहुत सम्मान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, इनका एक और उपन्यास है जिसका नाम है अरण्यर अधिकार। इस उपन्यास के बारे में आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है महाश्वेता देवी के बारे में। मैंने आपसे जिक्र किया था इनके उपन्यास अरण्यर अधिकार का। अपने उपन्यास अरण्यर अधिकार यानी जंगल के दावेदार में महाश्वेता देवी समाज में व्याप्त मानवीय शोषण और उसके विरुद्ध उबलते विद्रोह को उम्दा तरीके से बताती हैं। अरण्यर अधिकार में उस बिरसा मुंडा की कथा है जिसने सदी के मोड़ पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह का बिगुल बजाया। मुंडा जनजाति में समानता, न्याय और आजादी के आंदोलन का सूत्रपात बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। अरण्यर अधिकार आदिवासियों के सशक्त विद्रोह की महागाथा है जो मानवीय मूल्यों से सराबोर है। महाश्वेता ने मुख्य मुद्दे पर उंगली रखी है, मसलन बिरसा का विद्रोह सिर्फ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं था बल्कि समकालीन सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी था। बिरसा मुंडा के इन पक्षों को सहेजकर साहित्य और इतिहास में प्रकाशित करने का श्रेय महाश्वेता देवी को ही जाता है। लेकिन दोस्तों, इस उपन्यास यानी कि अरण्यर अधिकार के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें थीं जो मैं आपको बता सकता था, पर समय इजाजत नहीं देता। इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में यानी लेखिका महाश्वेता देवी के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल आज्ञा चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्कार।

जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर अन्नदाता। देखिए दोस्तों, हर सब्जी का अपना एक मौसम होता है, ठीक उसी तरह से फलों का भी अपना मौसम होता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फलों को उगाया जाता है, लेकिन एक ऐसा फल जो कि फलों का राजा कहलाता है और वो है आम। और देश में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन के नजरिए से आंध्र प्रदेश कहीं आगे है। रंग, सुगंध और स्वाद के मामले में आम देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक जाना पहचाना जाता है। इसमें विटामिन ए और बी बहुत अच्छी तादाद में मिलता है। विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए फायदेमंद है, और विटामिन बी जो कि हमें शक्ति देता है। और आम की अगर बात करें तो आम से कोई चटनी बनाता है, कोई अचार बनाता है, कोई मुरब्बा बनाता है, कोई सिरप बनाता है, तरह तरह के पेय पदार्थ में भी आम का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज बात होगी फलों के राजा आम के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, कोई भी खेती हो, जब भी हम उसकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि वो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जो हमारी फसल के लिए फायदेमंद हो, और पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, आम की बागवानी की अगर हम बात करें तो आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन भूगर्भीय जल जिन जिन इलाकों में नहीं पाया जाता है वहां इससे अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए 2 से 2.5 मीटर मिट्टी की जरूरत होती है, और आम के बाग 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले इलाकों में अच्छे होते हैं, लेकिन 23.8 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को इसके लिए अच्छा तापमान माना जाता है। यानी ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में इससे आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो ये तो रही मिट्टी पानी की बात। इसके बाद आती है किस्मों की बात कि आम की जो अच्छी किस्में हैं वो कौन सी होनी चाहिए, तो किस्मों का भी आपसे जिक्र होगा। देखिए दोस्तों, आम की बात हो रही है तो अब बात कर लेते हैं उसकी किस्मों की। आम की एक से बढ़कर एक किस्म तैयार हो चुकी है, और कई किस्मों की मांग देश नहीं विदेशों तक होने लगी है। जी हाँ, दशहरी किस्म की अगर हम बात करें सबसे लोकप्रिय है, इसे 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बनावट, स्वाद, सुगंध और रंग के नजरिए से ये बेहद ही खूबसूरत लगता है दशहरी आम। दशहरी किस्म के अलावा एक और किस्म है जो जानी जाती है मुंबई हरा के नाम से, और किसान भाइयों ये अगेती किस्म है, इसे मालदा और सरोली भी कहते हैं। पकने के बाद भी ये अपने आप को हरा हरा रखता है, इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, थोड़ा सा नाजुक मिजाज होता है। एक कहलाता है जो बड़ा मशहूर है, लंगड़ा आम। दोस्तों लंगड़ा भी दशहरे की तरह मध्य मौसम में पकने वाली किस्म है, इसे दरभंगा रू अफजा और हर दिल अजीज भी कहते हैं। 4 दिन की भंडारण क्षमता वाला ये आम बेहद ही मीठा होता है। इसके अलावा होती है एक रटोल किस्म। रटोल किस्म को भी अगेती माना जाता है। इसका फल छोटे आकार का अंडाकार और सुगंधित और मीठा होता है। एक कहलाता है चौसा आम।
चौसा पछेती किस्म है। इसे काजरी और खाजरी के नाम से भी जाना जाता है। 5 दिन की भंडारण क्षमता वाला ये आम आकार में बड़ा होता है। ये तो रही आम की किस्मों की बात, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। आम में बहुत सारी किस्में हैं, उन किस्मों का भी जिक्र आपसे करूंगा। दोस्तों, बात चल रही थी आम की किस्मों के बारे में, 2-4 किस्में आपको और बताना चाहता हूँ, जिसमें पहली है फजरी किस्म। फजरी किस्म का आम पछेती होता है, यानी कि बाजार में इसके फल देर से आते हैं। इसे फजली भी कहते हैं। धारण क्षमता कम होती है और इसके अलावा होता है एक राम

केला। राम अकेला भी देर से पकने वाली किस्म है। इसका फल पकने के बाद भी खट्टापन लिए रहता है और इसे अचार के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आम्रपाली किस्म दशहरी और नीलम किस्मों के सहयोग से विकसित की गई है और ये मध्य मौसम की बोनी और नियति फलत वाली किस्म है। इसका एक हेक्टेयर में बाग लगाने के लिए 2.5 मीटर पर पौधा लगाने पर 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें मल्लिका किस्म की, तो किसान भाइयों मल्लिका किस्म नीलम और दशहरी के सहयोग से विकसित होती है। ये मध्यम मौसम की फसल है। ये नियमित रूप से चलने वाली मध्य मौसम की किस्में हैं। भंडारण क्षमता ज्यादा है लेकिन फल कम लगते हैं। निर्यात के लिए इसके फलों को अच्छा माना जाता है। एक किस्म और है सौरभ किस्म। सौरभ किस्म का आम दशहरी और फजरी जाफरानी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये मध्य मौसम की किस्म है। गौरव किस्म। गौरव किस्म के आम को दशहरी और तोता परी आम हैदराबादी किस्मों के क्रॉस से तैयार किया गया है। एक किस्म और है जिसका नाम ही अपने आप में बड़ा सुंदर है, राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण के आम को दशहरे और रोमानी किस्मों के सहयोग से तैयार किया जाता है। ये जुलाई के तीसरे सप्ताह में जाकर के पकती है और फल मध्यम आकार के होते हैं। तो ये तो रही किस्मों की बात, लेकिन अब सवाल है कि आम का जो बाग है उसको हम कैसे लगाएं? इस सवाल का जवाब भी दूंगा। जैसा कि पीछे मैंने आपको मिट्टी पानी और इसकी जो किस्में होती हैं उसकी जानकारी दी, अब बात करते हैं कि आम के बाग को हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले बाग लगाने के लिए मई से लेकर जून के महीने तक किस्म के मुताबिक 11 से 13 मीटर की दूरी पर 1 वर्ग मीटर आकार के गड्ढे खोदने चाहिए और कुछ दिन गड्ढों की मिट्टी को धूप में सूखने देना चाहिए ताकि मिट्टी में मौजूद कीट और अंडे समाप्त हो जाएं। गड्ढा खोदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि ऊपरी 1.5 फीट मिट्टी बाईं तरफ और नीचे की 1.5 फीट मिट्टी दाईं तरफ डालनी चाहिए और हफ्ते या 10 दिन मिट्टी को धूप लगने के बाद उसमें पर्याप्त सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर आधी मिट्टी गड्ढे में भर देनी चाहिए। और ध्यान रहे कि गड्ढे में खुदाई के समय बाईं तरफ डाली गई ऊपरी 1.5 फीट मिट्टी ही डालनी चाहिए। ऊपरी मिट्टी को ही उपजाऊ माना जाता है और उसके बाद या तो 1-2 बरसात होने का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा गड्ढे में 1-2 बार पानी भरने के बाद पौधे लगा देने चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग अपने घरों में भी फलों के पेड़ लगाते हैं लेकिन उनका पालन पोषण फसल की तरह से नहीं करते। ना तो पौधों में पर्याप्त कंपोस्ट डालते हैं और ना ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण डालते हैं। हमें बागवानी के लिए समुचित रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी कोई भी फसल हो वो बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन फसल आपकी तभी बेहतर हो सकती है जब आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी फसल में किसी भी तरह का कोई कीट या फिर किसी भी तरह का कोई रोग ना होने पाए। मैं आपको बताऊंगा कि आम को किस तरह से कीटों से बचाया जा सकता है, किस तरह से रोगों से बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी फसल हो अगर उसमें किसी भी तरह का कोई कीट लग जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई रोग उसमें लग जाता है तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। बात आम की चल रही है तो आम को भुनगा कीट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उसके शरीर का आकार तिकोना होता है। इस कीट के कंट्रोल के लिए कीटनाशक छिड़काव करें और ये काम 3 इंच लंबा होने पर ही कर देना चाहिए। इसके 15 से 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। इसके कीटों को मारने के लिए किसी भी प्रभावशाली कीटनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए, जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करें, क्यूनोलफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के छिड़काव से आप आम में लगने वाले भुनके नाम के कीट को रोक सकते हैं। दूसरा एक कीट और होता है जो कहलाता है मैंगो मिली बग।
यानी कि ये कीट भी हमारे आम की जो फसल है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सफेद रंग का ये कीट शाखाओं का जो रस होता है ना, उस रस को चूस लेता है। इसके साथ ही एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है जिस पर काली फफूंद उग जाती है। बचाव के लिए दिसंबर के महीने में पौधों के छालों की बुराई करते समय मिथाइल पैराथियन डस्ट 2% 150 से 200 ग्राम प्रति छाले मिला देनी चाहिए, जिससे कि आपकी आम की बागवानी बेहतर से बेहतर हो सके। इसके अलावा एक कीट और है जिसका नाम है सिल्क कीट। सिल्क कीट मुलायम टहनियों और पत्तियों की निचली सतह पर सैकड़ों की संख्या में चिपके रहते हैं, पौधे और फल दोनों को प्रभावित करते हैं। इसके बचाव के लिए भी जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव जरूरी है। और दोस्तों, आम को तना भेदक कीट से बचाने के लिए आपको गिटार के जरिए तने में बनाए गए क्षेत्र में मोनोक्रोटोफॉस या DDVP का घोल छिड़क कर तने के छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, जिससे आम का जो तना है जिसको ये कीट भेद देता है और उसको नष्ट कर देता है, इस तरीके को अपनाने से आपकी आम की बागवानी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, आम के बारे में आज आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन इन बातों को जब तक आप अमली तौर पर नहीं लाएंगे आपकी कोई भी फसल हो बेहतर नहीं हो सकती है। आम की बात चल रही थी तो कौन सा आम, कौन सी किस्म, किस मौसम में और कौन से पानी, कौन सी मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है, वो सारी बातें आपके साथ मैंने साझा की हैं। इसके अलावा जो रोग हमारे आम की बागवानी में लग जाते हैं, बल्कि पूरे पूरे बागों को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे कीट थे जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। उन कीटों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उनको कंट्रोल करके अपने आम की बागवानी को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी बातें आपके साथ मैंने साझा कर ली हैं। लेकिन अब वक्त मेरे जाने का है, इसलिए आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना और सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम। सलाम।

तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है। मैंने अपने किसी भी जन्म में जितनी चीज़ें जानी हैं उन सब में ये रिश्ता सबसे अद्भुत रिश्ता है, ये शाश्वत है। मेरी हैस्कल का प्रॉफिट खलील जिब्रान दुनिया से जा चुका है और वो उसके एक एक शब्द में से गुजर रही है। उसके नाम लिखे हुए खलील जिब्रान के इस प्रेम पत्र में से कई पत्र निकल निकल कर तितलियों की तरह उसकी आंखों के आगे उड़ रहे हैं। जब हम इन जिस्मों में नहीं थे तब से मैं तुमसे मोहब्बत करता आ रहा हूँ। ये मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही जान लिया था, ये नियत था। हम इस तरह से एक हैं कि कुछ भी हमें जुदा नहीं कर सकता। वो अपने महान महबूब की एक एक याद को नए सिरे से अपने आंसुओं से धोती और संजोती जा रही है। आइए जानते हैं ऐसे ही मोहब्बत के महबूब मसीहा की जिंदगी की कहानी, यानी खलील जिब्रान की कहानी। आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम। देखिए दोस्तों, खलील जिब्रान का जन्म 6 जनवरी 1883 को वर्तमान उत्तरी लेबनान के बसरी गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम कमीला और पिता का नाम खलील साद यूसुफ जिब्रान था। दोस्तों, बसरी इलाका देवदारों से भरी एक सुंदर पर्वतीय कदीसा घाटी से जुड़ा हुआ है। उन दिनों लेबनान ओटोमन राजशाही के अधीन सीरिया का हिस्सा था। आज बसरी लेबनान का एक अहम शहर हो गया है। खलील जिब्रान नाम के वत्स को पाकर बसरी इतना मशहूर हुआ कि उसके कई उच्चारण हो गए, जैसे बसरी, बशारी, बुशरी, बुसारी, बचरी, बशरी। और बचपन में जब जिब्रान देखता कि कदीसा घाटी में तूफान आया है तो उसके जहन में कैसे कैसे सवाल आते थे, क्या क्या सोचता था, इन सारी बातों का दौर चलेगा। देखिए दोस्तों, बात हो रही है आज एक ऐसे लेखक की जिनको जाना जाता है खलील जिब्रान के नाम से और बहुत बड़ा नाम है लेखन क्षेत्र में। बचपन में जब जिब्रान देखता कि कदीसा घाटी में तूफान आया है तो वो उस तरफ नाचता हुआ दौड़ पड़ता। उसे कुदरत से बहुत प्रेम था और अक्सर उसे सौंदर्य के लिए दीवाना होते देखा जाता। सहसा वो पेंसिल लेकर कुदरत की तस्वीरें बनाने लगता था। उसकी माँ यानी कमीला रूहानी चीजों और कुदरत के करिश्मों में दिलचस्पी लेने वाली शांत स्वभाव की स्त्री थी। वो जान गई थी कि उसका ये बेटा गैर मामूली है और दुनिया को कुछ देने आया है। वो उसे कुदरती नज़ारों में खोया देखकर खुश हुआ करती थी और अपने बड़े बेटे और दोनों छोटी बेटियों से कहती थी कि उसे अकेला छोड़ दो। दोस्तों, जिब्रान के

एक किसी और मुलाजिम का बंधुआ सेवक हो गया था। खर्चे चलाने के लिए उसने अखरोट के कुछ पेड़ तो खरीदे थे, पर उनकी देख रेख नहीं करता था। 30 वर्षीय कमीला एक धर्माधिकारी की बेटी थी। यूसुफ जिब्रान से शादी करने से पहले भी 2 बार उसकी शादी हुई थी और बच्चों की परवरिश की खातिर उसने चुपचाप बहुत तकलीफें सही थीं। पिछली शादी से उसे एक बेटा यानी बतरस, जिसको पीटर के नाम से भी जाना जाता है, और जो पीटर था, पीटर जिब्रान से 6 साल बड़ा था। जिब्रान के बाद उसकी 2 बहनें मारियाना और सुल्ताना जन्मी थीं। पिता के जुएबाज और शराबखोर और कर्जदार होने के कारण बच्चों को पढ़ाई लिखाई मयसर नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, खलील जिब्रान की जिंदगी की कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर। दोस्तों, आज बात चल रही है खलील जिब्रान के बारे में, और खलील जिब्रान के पिता की बात हो रही थी, माँ की भी बात हो रही थी, और माँ के घोर अकेलेपन, खामोशी और रूहानी मिजाज का जिब्रान पर गहरा असर पड़ा। लोगों में उसके अनोखे स्वभाव के चर्चे होने लगे। एक स्थानीय पुरोहित ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया और बाइबल के साथ ही उसे अरबी और सीरियाई भाषाएं पढ़ाने घर आने लगा। दोस्तों, पुरोहित ने पाया कि खलील के पास अनोखी पैदाइशी प्रतिभा और हुनरमंदी है। उसने उसे धार्मिक और शास्त्रीय शिक्षा देनी शुरू कर दी। इसी अनौपचारिक शिक्षा के दौरान जिब्रान ने विज्ञान, भाषा शास्त्र और इतिहास में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लेकिन आगे क्या हुआ, वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। बात है 1891 की। 1891 में अधिकारियों ने जिब्रान के पिता को टैक्स में हेरा फेरी करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और परिवार बेघर हो गया। कुछ समय रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने के बाद 1895 में ये लोग काम की तलाश में अमेरिका जा पहुंचे। साल भर पहले जेल से छूटे जिब्रान के पिता ने लेबनान में ही रहने का फैसला किया, और अरबी होने के कारण अमेरिका में कमीला और बच्चों को दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रहना पड़ रहा था। कमीला बहुत मेहनत करते हुए बोस्टन की गलियों में पीठ पर सामान लादे घर घर चीजें बेचकर बच्चों को पालने लगी, उनकी परवरिश करने लगी। रिवाजों और आर्थिक कठिनाई के कारण जिब्रान की दोनों बहनें पढ़ाई से महरूम रह गईं, जबकि एक चैरिटेबल संस्था की मदद से जिब्रान स्कूल जाने लगा। यहीं अंग्रेजी के अध्यापक के सुझाव पर उसके नाम के हिज्जे में कुछ बदलाव हुआ और उसका नाम खलील की बजाय कहलील जैसा लगने लगा। हालांकि दोस्तों, अरबी उच्चारण में ये उतना नहीं अखरता। कमीला की मेहनत रंग लाई और उसने अपने बड़े बेटे पीटर के लिए हार्डवेयर स्टोर खुलवा दिया, जिसमें मारियाना और सुल्ताना भी काम करने लगी। अब देखिए दोस्तों, जिब्रान के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि बहुत सारे एपिसोड बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है खलील जिब्रान के नाम से। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस सफर में उन लोगों को याद किया जाता है कि जिन्होंने अपनी कला से लोगों को अपना बना लिया। आज मैं बात करूंगा खलील जिब्रान के बारे में, और खलील जिब्रान अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है, जो लोग इनके बारे में जानते हैं उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इनको नहीं जाना, मैं उनको आज बताऊंगा कि खलील जिब्रान कौन थे और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने तय किया और किस तरह से पूरी दुनिया में उनका नाम है। देखिए दोस्तों, जिब्रान की अगर हम बात करें ना, तो जिब्रान अंतर्मुखी था और अपना ज़्यादा समय अकेलेपन में बिताता था। तो भी उसने बोस्टन की कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो ओपेरा, थिएटर और आर्ट दीर्घाओं में जाने लगा। इससे वहां के नामी कलाकारों ने जल्दी ही 13 साल के जिब्रान

की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे मशहूर कलाकार फ्रेड हॉलैंड डे से मिलवाया। डे ने जिब्रान के लिए कला, साहित्य, दर्शन, पुराण, लेखन और छायाकारी के अध्ययन के लिए नए द्वार खोलकर उसमें छिपी संभावनाओं को खुला आकाश दे दिया। जिब्रान अनोखी गति से इस आकाश में उड़ने लगा। लेकिन जिब्रान की ये उड़ान उसे कहां तक ले गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 1898 में जिब्रान किताबों के मुख पृष्ठ डिजाइन करके सबको चकित करने लगा, लेकिन उम्र से पहले इस उड़ान के खतरे भांप कर उसकी माँ यानी कमीला ने उसे शिक्षा पूरी करने के लिए वापस लेबनान भेजना ठीक समझा। लेबनान लौटकर वो बेरूत के एक बड़े स्कूल यानी अल हिकमा में दाखिल हो गया, जहां उसे अरबी भाषा और साहित्य में माहिर होना था। लेकिन जिब्रान का ज्यादा झुकाव चित्रकला में ही बना रहा। एक कला प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात कवि लेखिका जोसेफिन पी बॉडी से हुई, जिसे उसने एक तस्वीर समर्पित करके अपना मुरीद बना लिया। दोनों में अंतरंगता बढ़ती चली गई, चिट्ठियों के सिलसिले शुरू हो गए, वो उसे लिटिल प्रॉफिट कहने लगी। बाद में यही नाम जिब्रान की विश्व विख्यात किताब यानी द प्रॉफिट का नाम बना। देखिए दोस्तों, 1902 की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। 1902 में जिब्रान कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करके बोस्टन लौटा तो माँ और भाई बहनों की हालत ठीक नहीं थी। माँ को कैंसर था और भाई यक्ष्मा रोग की चपेट में आ गया था। यक्ष्मा रोग यानी कि टीबी का रोग। तभी सुल्ताना, जो कि उसकी बहन थी, टीबी के शिकंजे में आकर 14 साल की उम्र में मर गई। भाई दुकान छोड़कर क्यूबा चला गया तो जिब्रान को दुकान संभालनी पड़ी। परिवार के लिए मेहनत करते हुए उसने अपनी रुचियों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि 1903 के शुरू में कमीला का ऑपरेशन करके कैंसर का ट्यूमर निकाला गया। भाई पीटर क्यूबा से लौटा, लेकिन अपनी बीमारी के हाथों वो भी उन्हीं दिनों मारा गया। 2-2.5 महीने में माँ भी जिस्म में फैल चुके कैंसर से चल बसी। दोस्तों, इन तीनों मौतों से स्तब्ध जिब्रान ने स्टोर बेच दिया। मारियाना पोशाक बनाने वाली एक दुकान पर काम करते हुए जिब्रान की पढ़ाई में मदद करने लगी। ऐसे वक्त में जोसेफिन ने उनकी मदद की, लेकिन किसी बात पर जिब्रान ने जोसेफिन को कुछ ऐसा कह दिया कि वो नाराज हो गई। इसी के साथ दोनों के रिश्तों में ठंडापन आ गया। जिब्रान ने अरबी और अंग्रेजी की अपनी अगली पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसके लिए बेचैन हो रहे डे और उससे नाराज रहने वाली जोसेफिन ने 3 मई 1904 को उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, जिसने व्यापक रूप से कला प्रेमियों का ध्यान खींचा। लेकिन दोस्तों, जिब्रान से ताल्लुक रखने वाली और भी बहुत सारी बातें हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर। बात हो रही है खलील जिब्रान के बारे में, और जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक एग्जीबिशन लगाई गई थी जो कि खलील जिब्रान के हाथ की बनाई पेंटिंग्स थी, और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, उसी प्रदर्शनी में जिब्रान की मुलाकात अपनी सबसे बड़ी प्रशंसक यानी प्रेयसी और आजीवन सहयोगिनी मैरी एलिजाबेथ हैस्कल से हुई, जो उन दिनों बोस्टन में लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाया करती थी। जिब्रान उस समय 20 साल का था और वो 30 साल की थी। जिब्रान उसे देखते ही जैसे सम्मोहित हो गया। मैरी खलील जिब्रान की अनोखी प्रतिभा पर विस्मित और न्यौछावर थी। दोनों एक अटूट गिरफ्त में आ गए। जिब्रान को नए पंख देने के लिए मैरी ने आसमान से उतरी एक करुणामयी परी जैसी भूमिका निभाई। उसी ने उसे अरबी के बाद अंग्रेजी में लिखने को उकसाया, वरना वो अरबी में ही लिखता था।
जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद होता था। मैरी ने आखिर तक जिब्रान को आर्थिक मदद तो दी ही, उसे अपना पति बनने से रोककर आजीवन मित्र बने रहने के लिए भी मना लिया। वो बहुत संवेदनशील थी और दूरदर्शी भी थी, जिसने एक साथ जिब्रान को प्रेयसी और मां होने की भूमिका निभाई। वो आजीवन उसकी परम मित्र और प्रेयसी बनी रही। दोस्तों, जिब्रान की समूची प्रतिभा को विश्व व्यापक बनाने के लिए वो हमेशा बेचैन और सक्रिय रहती थी। उन दोनों को निकट से जानने वाले चकित थे, हैरान थे कि इतनी अंतरंगता के बावजूद उनमें जिस्मानी रिश्ते क्यों नहीं बने। लेकिन दोस्तों, 1904 की सर्दियों में डे के स्टूडियो में आग लगने से जिब्रान के सारे कागजात जलकर राख हो गए। अब कागजात जल गए तो आगे क्या हुआ, देखिए दोस्तों। 1904 की सर्दियों में डे के स्टूडियो में आग लग गई। अब जब आग लगी तो जिब्रान के सारे कागजात जलकर राख हो गए। एक संपादक ने उसे काम देकर उसकी मदद की। मैरी से पहली मुलाकात के बाद जिब्रान की पहली रचना विजन अरबी के समाचार पत्र अल मुहाजिर में प्रकाशित हुई। इस पत्र में वो लगातार लिखने लगा और इसी में उसका टीयर्स एंड लाफ्टर नाम का स्तंभ भी छपने लगा, जो बाद में टीयर्स एंड स्माइल नाम से पुस्तक रूप में सामने आया। दोस्तों, उसकी पहली किताब फन अल मुसीका, जो कि अरबी में छपी, दूसरी किताब आराइश अल मुरूज, जो कि 1906 में आई थी। लेकिन दोस्तों, इसी साल यानी कि 1906 में जोसेफिन की शादी होते ही जिब्रान से उसके रिश्ते समाप्त हो गए। तब जिब्रान ने पेंटर जी वेरी से गोपनीय संबंध बनाया। इन्हीं दिनों मैरी हैस्कल ने एक फ्रेंच अभिनेत्री एमिली मिशेल से उसका परिचय कराया। उस समय मिशेल मैरी के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया करती थी। जिब्रान और मिशेल में संबंध बन गए और 1908 में मिशेल गर्भवती भी हो गई। लेकिन उसे भयंकर दर्द उठा और गर्भपात कराना पड़ा। इसी वजह से दोनों का संबंध फीका पड़ते पड़ते खुदा हाफिज हो गया। और 1908 में जिब्रान की तीसरी किताब भी अरबी में ही आई, जो मुहाजिर पत्र के उनके कॉलमों में से निकली थी। इसमें स्त्रियों की दशा, सामाजिक और प्रशासनिक अन्याय की ओर ध्यान खींचा गया था। दोस्तों, इस किताब से हुक्मरान काफी नाराज हो गए। किताब को सेंसर भी किया गया, लेकिन जिब्रान हुक्मरानों और जाहिलों को कुछ करने नहीं बल्कि झिंझोड़ने और मरोड़ने आए थे। खलील जिब्रान अपने आप में एक बहुत ही मशहूर नाम है। लेखक हैं, पेंटर भी हैं, कवि भी हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 1906 में जोसेफन की शादी होते ही जिब्रान से उसके जो रिश्ते थे वो ख़त्म हो गए। तब जिब्रान ने पेंटर जी बेरी से गोपनीय ताल्लुकात बनाए। इन्हीं दिनों मैरी हैस्कल ने एक फ्रेंच अभिनेत्री यानी एमिली मिशेल से उसका परिचय कराया। लेकिन खलील जिब्रान के मिशेल से भी संबंध ज़्यादा दिन नहीं चले और ख़त्म हो गए। और इसीलिए गुमसुम हुए जिब्रान को उसी साल मैरी ने पैसे देकर कला के लिए 2 साल की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा, जहां जिब्रान को यूजेन कैरी की प्रतीकवादी पेंटिंग ने प्रभावित किया। उसने विलियम ब्लैक की पेंटिंग्स और उसकी कविताएं भी ढूंढ निकाली। दोस्तों, जिब्रान की एक पेंटिंग जिसका नाम पतझड़ को एक विशेष प्रदर्शनी में रखने के लिए चुना गया। जिब्रान ऑगस्ट रोडिन की कला से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। पेरिस में ही उसे जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से के काम का परिचय मिला, जिसका असर बाद में जिब्रान की रचनाओं में देखा गया। उसने राजनीतिक देश निकाला सह रहे सीरियाई लोगों से मुलाकात की और लेबनानी अमेरिकन लेखक अमीन रेहानी से मिलकर
लंबी दोस्ती की बुनियाद रखी। देखिए दोस्तों, पेरिस में अकादमी के अनिवार्य औपचारिक पाठ्यक्रम से अरुचि होने पर जिब्रान अमीन रेहानी के साथ लंदन यात्रा पर निकल पड़ा और उसके बाद अपनी स्वाभाविक चित्र शैली का विकास करने में पूरी तरह से जुट गया। इसी साल जून में उसे अपने पिता के देहांत की खबर मिली। मरने से पहले पिता ने उसके लिए अपना आशीर्वाद जाहिर किया था। जिब्रान को इससे राहत मिली। यूरोप की यात्रा के बाद जिब्रान 1910 के आखिर में पैसे खत्म होने पर अमेरिका लौटा और मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। कुछ तो उम्र में काफी फर्क होने के कारण और कुछ मैरी की असहमति के कारण ये संभव नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यूरोप के देशों के दौरे के बाद खलील जिब्रान को अब एक ज्यादा अनुभवी और ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। इनकी पहचान बन गई। अरब अमेरिकन लेखकों और बुद्धिजीवियों के संगठन द गोल्डन लिंक्स सोसाइटी से जुड़े और उन्हीं दिनों उनकी कविताओं की किताब बियॉन्ड द इमेजिनेशन प्रकाशित हुई। उन्होंने अल मुहाजिर में लिखना बंद कर दिया और मिरात अल गर्ब को रचनाएं देनी शुरू कर दी, जो अगले 11 साल तक उसमें आती रहीं। लेकिन दोस्तों, जिब्रान को बोस्टन में ऊब होने लगी। जब ऊब होने लगी तो 1911 में वो अपने दोस्त अमीन रेहानी के सुझाव पर न्यूयॉर्क चले गए। मैरी ने इस बार भी उन्हें आने जाने के लिए पर्याप्त पैसे दिए। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तब क्या होता है, वो सारी बातें फहीम आपके साथ साझा करेगा। दोस्तों, बात चल रही थी कि खलील जिब्रान अपने दोस्त से मशवरा करते हैं और न्यूयॉर्क चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो अपने प्रशंसकों से घिर जाते हैं। इस बार स्विस मनोचिकित्सक और मनोविद लेखक कार्ल गुस्ताव जुंग उनसे मिले। रेहानी वहीं थे। यहीं आयरिश कवि और नाटककार विलियम बटलर ईट से भी मुलाकात हुई और इसी बीच जिब्रान ने अपनी अगली किताब ब्रोकन विंग्स शुरू की। ये अरबी में उनका एकमात्र उपन्यास है जिसे वो आध्यात्मिक जीवनी कहते हैं। दोस्तों, लोगों के बीच जिब्रान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे। 16 मई 1911 के एक लम्हे में जब वो मैरी के ख्यालों में डूबे तो उसे पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि जब मैं एक बड़े शहर में अजनबी होता हूं तो मुख्तलिफ कमरों में सोना, मुख्तलिफ जगहों पर खाना पसंद करना, अज्ञात गलियों में घूमता हूं और पास से गुजरते अजनबी लोगों को देखता हूं। मैं एकाकी मुसाफिर होना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, अनासक्ति से सहसा वो आसक्ति पर उतर आते। देखिए दोस्तों, खलील जिब्रान के बारे में बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि खलील जिब्रान न्यूयॉर्क पहुंच गए थे और जब वो न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने उन्हीं दिनों अरबी लेखन और साहित्य को विश्व व्यापक बनाने के लिए अरबिता अल कलामिया संगठन बनाया। इसका अहम मकसद कला की वाजिब आजादी और लेखकों की मौलिक शैली का विकास था। अरबी साहित्य को नए आयाम देने के लिए जिब्रान ने जीवन भर बहुत सी संस्थाओं और पत्रिकाओं से खुद को जोड़ना जारी रखा और 1912 में जिब्रान को न्यूयॉर्क में भारी समर्थन और स्नेह मिला। इसके पीछे मैरी की संपर्क निपुणता और आर्थिक मदद का कमाल था। दोस्तों, जिब्रान अंग्रेजी भाषा और यूरोप के सांस्कृतिक लहजों में महारत हासिल करते जा रहे थे। लेकिन खलील जिब्रान की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, कुछ बातें अभी बाकी हैं। बताऊंगा, सब बताऊंगा। आइए दोस्तों, एक बार फिर आपको लेकर के चलता हूं उसी लेखक के पास जिसका नाम है खलील जिब्रान। 7 जून 1912 को जिब्रान ने मैरी को लिखा, इस समय मेरे भीतर जितनी भी जिंदगी है मैं उसके हर लम्हे को
समूचा जानने के लिए उसके प्रति पूरी तरह से जीवंत होना चाहता हूँ। दोस्तों, लंबी जुदाइयों और जानलेवा तन्हाइयों में जिब्रान को लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैरी के प्रति उसकी तड़प किसी डर पर खड़ी हो। 12 जून 1912 को उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि तुम्हें लेकर मेरी सारी तकलीफ मेरे किसी छोटेपन या भय से आती है। बड़ी तकलीफ ये भी थी कि अगर मैरी का साथ ना होता तो ये ठाट ना होता और किसी प्रेसी का निष्कंटक संग साथ भी ना होता जो इन दिनों भी उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जिब्रान को नयापन चाहिए था। और दोस्तों, इसी साल जिब्रान और फिलिस्तीनी मिस्री लेखिका में ज्यादे के बीच प्रेम परवान चढ़ा। बातें और भी थी लेकिन वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसलिए अब आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शब्बा खैर।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: वेल हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजी सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM, और हम आपसे एक ही बात बोलते हैं, फील गुड, फील लाइव। वॉइस ऑफ यूथ हमारे शो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हर बार हमारे साथ यहाँ पर एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं हर हफ्ते, जिनसे हम काफ़ी सारी बातें करते हैं और काफ़ी कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ स्किल्स मिल सकें। तो ऐसा ही हमारा आज का एपिसोड होने वाला है। आज हमारे साथ हैं इशिता शर्मा। इशिता एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर आमतौर पर काफ़ी सारे कंटेंट को हम बोल देते हैं यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, उसके बावजूद हम देखते हैं एंड वी ऑल नो कि उसका कोई मीनिंग होता नहीं है। बट कुछ ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं लाइक इशिता, जो सच में कुछ मीनिंगफुल चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ टैलेंट, जो हमारे लिए काफ़ी खास हो जाता है बिकॉज इन दिस एरा ऑफ यू नो मेंटल हेल्थ इशूज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ प्यारी चीजों की, कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में ठहराव लेकर आ सकती हैं। इशिता स्पिरिचुअलिटी में कंटेंट क्रिएशन करती हैं और काफी सारी चीजें आज हम इनसे जान रहे होंगे। तो बिंदास बैठी हमारे साथ, आखिर तक जरूर सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे इशिता का। हाय इशिता, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे, आप बताइए।
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ एंड अभी और काफी अच्छे हम होने वाले हैं क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो शुरुआत इशिता, मैं इंट्रोडक्शन से आपके करना चाहूंगा, प्लीज अपने शब्दों में बताइए आप क्या करते हैं, क्या पर्टिकुलर चीज है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों तक उसके बारे में।
2: तो यूजुअली जर्नी जो थी वो शुरू हुई इकोनॉमिक्स फाइनेंस, जो हर किसी की होती है वैसी ही। KPMG में मैंने काम किया, बट हमेशा से बचपन से एक आर्टिस्ट था अंदर, जो कि कहता रहता था कि डेल्व अ लिटिल डीपर, अंदर जाके ढूंढो आंसर्स ढूंढो। एंड आई वॉज बोर्न इन मथुरा, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस था ही था। तो मैं बहुत सारे पुराणों को रिसर्च करती रहती थी अपनी आर्ट के लिए। एंड 2023 वाज़ द फाइनल टाइम कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, पर इस तरीके से बनाऊंगी कि जो कथाएं हम आज तक सुनते आ रहे हैं, लोगों को उनके पीछे का एक्चुअल मतलब मिले, ताकि वो अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करके बहुत ईजिली अपनी लाइफ को जी सकें। तो हम भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, हमारे आइडल्स हैं वो, पर उनसे सीखने को मिल क्या रहा है हमको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम में। तो हम सूत जी बोले के थ्रू, सूत जी वॉज अ डिसाइपल ऑफ वेद व्यास। सूत जी, जैसा कि नाम है, सूत इज अ थ्रेड जो कि हमको आध्यात्म के ज्ञान तक जोड़ती है। तो सूत जी सारे पुराणों का श्रवण करते थे, सभी ऋषि मुनियों को सारी कथाएं सुनाते थे और उसका श्रवण आगे होता गया और हम तक पुराण आए। तो हमने सूत जी बोले इनिशिएटिव शुरू किया था, जहां पर हम सारी कथाओं के पीछे का जो तात्विक ज्ञान है वो देने का प्रयास करते हैं।
1: ठीक है, कंटेंट के थ्रू भी आप करती हैं एंड आई गेस ऑफलाइन मोड में भी आप अपडेट करती
2: हैं। जी, मैं कहीं ना कहीं ये गैप जो फील हुआ वो ये था कि हम भी छोटे थे, स्कूल में ऐसा सच हमें पढ़ाने को नहीं मिला, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू बन गया है, और एक्चुअल में एक इशू है कि हमारी बुक्स में हमें अपने भारत, अपने इतिहास, हमारे राष्ट्र के बारे में या फिर हमारे अध्यात्म के बारे में, जो कि हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है सनातन, उसके बारे में कुछ जानने को मिलता नहीं है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर किड्स, तो मैं स्कूल में जाकर जो लोग अलाइंड होते हैं मेरे थॉट प्रोसेस से, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करती हूँ, ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, और साथ ही में साधक जो कि ऐसा फील करते हैं कि उनके पास अभी गुरु आए नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा मिसलेड फील करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, थोड़े से घबराए हुए होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह करते हैं।
1: ठीक है, एक सवाल मेरा इशिता यहाँ पर रहेगा, सोशल मीडिया के ज़माने में आमतौर पर जो दिखाई देता है, खासतौर पर बात अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की करूँ या माइथोलॉजी की करूँ, दो चीज़ें मुझे काफ़ी पेनफुल लगती हैं इसमें। एक है डर, लोगों को डर बेचा जा रहा है, और सीधे तौर पर YouTube के ऊपर एड्स चलाई जाती हैं कि आपकी इतनी उम्र है, आपका मनचाहा विवाह नहीं हो रहा है, ऑल दिस दैट दैट दैट, हमें व्हाट्सएप करिए, हमें पैसे दीजिए, हम वो ठीक कर देंगे। एक मेरी ये प्रॉब्लम है कि यूथ को हम डर दे रहे हैं और हमारा पैसा उस पर बन रहा है, इट्स अ डर्टी गेम।
2: बिल्कुल।
1: सेकेंड,
0: इसमें मुझे लगता है कि एक और चीज है कि जैसे आपने कहा सनातन, तो श्री राम क्या है, लोगों को ये नहीं पता है,
2: नहीं पता
0: क्या है श्री राम, लोगों को नहीं पता है क्या है हनुमान, बस वो अग्रेसिव फोटो बना देंगे एआई का इस्तेमाल करके, उसके पीछे अग्रेसिव म्यूजिक, बंदूकों के साउंड लगा देंगे और उनको लगता है दिस इज समथिंग मेकिंग देम प्राउड। ये मुझे लगता है कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है जो हम अपने भगवान के साथ कर रहे हैं। तो आप अपने शब्दों में मुझे बताइए, ये जो दो चीजें चल रही है, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट, एंड आपका क्या ओपिनियन है इन दो चीजों के ऊपर?
2: देखिए, सनातन जो है वो इतना वास्ट है और इतना ब्यूटीफुल वो इसलिए है क्योंकि वो हर किसी को एक रास्ता देता है। अगर वो कहता है कि यज्ञ के थ्रू भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो वो कहता है कि राम का नाम लेकर या किसी भी भगवान का बस नाम लेकर भी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, भजन गा के भी कर सकते हैं, फास्टिंग करके भी कर सकते हैं, हर रास्ता आपके पास अवेलेबल है। बट हर किसी शास्त्र के कोर में आपको एक बात मिलती है जो कि मुझे रामचरितमानस की सबसे सुंदर तरीके से लिखी हुई बात लगती है, दैट इज कुमति सुमति सबके ओर रही, कि अच्छी बुद्धि और कुमति जो कि गलत बुद्धि है वो सबके अंदर रहती है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चूज कि आप क्या करते हो। आप फ्योर की बात कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो कि एआई से लोग बना रहे हैं, तो वो उनका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो करना चाहते हैं। अगर कोई अपनी आंख बंद करके रखना चाहता है और आप उस पर चीख रहे हो कि अपनी आंख खोलो, तो वो उसका पर्सनल डिसीजन है। आफ्टर अ वाइल यू हैव टू लीव इट एंड दैट पर्सन हैज टू डिसाइड कि उसको क्या करना है। तो कुमति सुमति सबके पास रहती है, बट हमें एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करना है कि विभीषण जो कि थे रामायण में, उन्होंने ऑल्दो रावण उनका खुद का भाई था, खुद का खून था, बट उन्होंने डिसाइड क्या किया कि उनको उसकी साइड में नहीं रहना क्योंकि वो गलत कर रहा था, उनको श्री राम के पास जाना है। तो यू हैव टू डिसाइड कि विभीषण बन के रहना है या फिर अंधा होके गांधारी धृतराष्ट्र ये सब बन के थोड़ा सा अपने राष्ट्र को खराब करना है और खुद को तो खराब करना ही करना है।
0: ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खासतौर पर बच्चों को लेकर मैं ज्यादा चिंतित होता हूँ कि मेरी एज के और आपकी एज के लोग फिर भी उस चीज को समझ सकते हैं। हमारा एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम बन चुका है जहाँ पर हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बच्चे जो अभी नए नए इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, देखते हैं, कॉन्टेंट कंज्यूमर बन रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज गलत तरीके से अगर पोर्ट्रेट की गई तो ये पूरे के पूरे नेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कि अगर गुमराह उन्हें कर दिया गया तो।
2: बिल्कुल,
0: सो दैट्स हाउ आई टेक इट। एनीवेज, एक और चीज यहाँ पर मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप इतना स्पिरिचुअली अलाइंड है, मतलब कि आप अपने शब्दों को इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकती हो कि सामने वाले को समझ आए, आपकी परिभाषा में मैं जानना चाहूंगा भगवान का अर्थ क्या है।
2: भगवान का अर्थ, जैसे मैंने कहा कि सनातन के अनंत रास्ते हैं, तो आप अनंत तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल काम हो, कंपोज्ड हो, तो आप अंधेरे को भी काली समझ के अपना ईष्ट मान सकते हो, उस अंधेरे को आप कृष्ण समझ के अपना ईष्ट मान सकते हो। तो भगवान का कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि जो पांच शक्तियों के थ्रू, पांच तत्वों के थ्रू, तन्मात्राओं के थ्रू, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के थ्रू इस पूरे जगत को संचालित करते हैं, वो भगवान है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये रियलाइज करना कि आप खुद भी भगवान के अंश हो, ठीक है। आपको बस कॉन्शियस होना है उन्हीं पांच तत्वों से जो आपके सामने गंगा माँ की तरह बहते हुए दिखाई देते हैं या फिर यज्ञ की अग्नि के रूप में दिखते हैं, वही सब कुछ आपके अंदर है। बस आपको उसे जागृत करके उस भगवान के अंश को अपने अंदर जागृत करना है और समझना है कि एक्चुअल में भगवान क्या होते हैं। क्योंकि हम कितनी भी लीला पढ़ लें, हम कितने भी तंत्र में चले जाएं, हम कितना भी अध्यात्म में चले जाएं, हर कोई चीज आपको आपके अंदर देखने को ही विवश करेगी। तो आप भगवान हो, बस बशर्ते ये कि आपको वो पुरुष से लेकर पुरुषोत्तम की जो जर्नी है वो कवर करनी है।
0: ओके, सो वंडरफुल। एक और सवाल यहां पर इश्ता, अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस एरा में जी रहे हैं जहां पर हमारी मेंटल हेल्थ जो है काफी बैड स्टेट में है। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं हर रोज अपने दिमाग को तैयार करने के लिए कि मैं दुनिया में जाऊं और मेरे को उस चीज से फर्क ना पड़े, प्रभावित ना हो, हावी ना हो मेरे ऊपर वो विचार, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ हमारे वेदों में ऐसा है?
2: एक्चुअली हर जगह ही ऐसा है और बस आपको थोड़ा सा समर्पण दिखाना होता है। एक्चुअली बैड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक समर्पण लैग हो रहा होता है, चाहे हम उसे प्रोकेस्टिनेशन के रूप में देखें, क्योंकि इंसान प्रोकेस्टिनेट करता रहेगा, किसी एक दिन उठेगा वो और रियलाइज करेगा कि समय बीत चुका है, तब फिर उसका उसके ऊपर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वो सारी चीज़ें हावी होने लगेंगी। तो एक्चुअल में बात यही है कि आपको अपने आप को अलाइन तो करना ही करना पड़ेगा, समर्पण दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, और उसके बीच में आप बस एक नाम भी छोड़ो, अगर आप का उच्चारण करो, अगर आप किसी राग को सुनो, राग भैरवी, राग भैरव इतने सुंदर तरीके से डिवाइस करे गए हैं कि आपके दिमाग को वो खोल सकते हैं, आपको उस बाधाओं से बाहर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको आंख बंद करके वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे गामा पाधा नीसा बस ये नॉर्मल वो नहीं है, आप इसको म्यूजिक को भी बीच में लाओगे ना तो आप रियलाइज करोगे म्यूजिक से भी बड़ा कोई योग होता नहीं है। इतना बड़ा योग है कि उसको इतने सुंदर तरीके से पिरोया गया है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे वो बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। बट आंख बंद करके सुनना तो पड़ेगा, पहला स्टेप आपको खुद के अंदर ही लेना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंसी डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि दो तीन राग हैं, शिवरंजनी है, भैरवी है, भैरव है, जिसको आप सुन सकते हो, और बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए गए हैं, गाने भी गाए गए हैं इसमें, और दिन के स्पेसिफिक पार्ट में सुन सकते हो, सुबह उठ के सुन सकते हो, बीच में उठ सुन सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं आपके जो अंदर कियोस है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे रास्ता जब अपने आप ही सामने दिखता रहे तो ओपन रहो, डोंट कंस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैंने जो आज तक पढ़ा था उसमें काला तो ये होता है, सफ़ेद ये होता है, पर मैंने ग्रे का कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि सब कुछ ग्रे है, दो कलर से नहीं बना ये जीवन, आपको उसके बीच का स्पेक्ट्रम समझने के लिए ओपन रहना पड़ेगा।
1: ओके तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पर है कि संगीत आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, और अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसी एक यू नो स्टेज से गुजर रहे हैं, मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट कि कोई इंस्टेंट फिक्स आपको मिल जाए, जो इशिता ने भी बताया वो एक खूबसूरत सा मार्ग आपके लिए हो सकता है, उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट, इट माइट बी एबल टू हेल्प यू। एक सवाल और उठता है यहाँ पर, मेरा पर्सनल वो मानना है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं शिव तांडव स्तोत्र बोलने लगता हूँ, मेरे को याद है। सो डू यू बिलीव कि ये जो मंत्र हैं इनके साउंड फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है हमारी कि वो हमें एक्चुअली हेल्प करते हैं?
2: बिल्कुल, देखो ईश्वर को अक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका कोई शरण नहीं होता, उनकी कोई लिमिट नहीं है, और शब्द को शक्ति कहा गया है क्योंकि हम में और पशु में बस इस शब्द का ही फर्क है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, उनका शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जितना हमारा बना हुआ है, बट डिफरेंस बस इस शब्द का है, इसी शब्द को ईश्वर माना गया है। अगर आप तंत्र के लिटरेचर में जाते हो, वेदों में जाते हो, तो आप भगवानों को शब्दों के थ्रू पूजते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हो, मातृकाएं होती हैं, आठ प्रकार की देवियां होती हैं, वो कुछ नहीं होती है, आपकी अ ई उ ए क ख ग ये होती हैं देवियां, वही आपके शरीर के अंदर होती हैं, वही आपके चक्रों के अंदर बताई जाती हैं, और जब आप उन मंत्रों को कॉन्टिन्यूसली चांट करते रहते हो तो आपके शरीर के वो स्पेसिफिक पार्ट शुरू हो जाते हैं वाइब्रेट करने के लिए। तो आप जब आगे जाते हो तो चाहे वो मेंटल हेल्थ का इशू हो, चाहे आपको इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा हो, सब चीज़ों को सशक्त करने के लिए एक एक शब्द, एक एक अक्षर बनाया गया है, तो डेफिनेटली हेल्प करता ही करता है। और यहीं से संगीत भी आगे जाता है, अगर आप संगीत को संगीत का सबसे सुंदर की संगीत इतना बड़ा योग है, उसका एग्जाम्पल आता है देवी भागवत पुराण से, कि उसमें ये बताया गया है कि नारद मुनि ने 27 चतुर्युग वेट किया था कृष्ण भगवान से संगीत सीखने के लिए, तब जाकर कृष्ण भगवान ने उनको, अब जैसे कृष्ण भगवान की आठ पत्नियां बताई जाती हैं, आठ पत्नियां और कोई नहीं, सारे गामा पाधा नीसा उनको सिखाती हैं नारद मुनि को ये सारी चीज़ें कि सात स्वर होते हैं, एक ऑक्टेव होता है बड़ा ऊंचा सा और नीचा सा, और उसके बाद कृष्ण भगवान आकर उसमें रस डालते हैं, नौवा जो रस होते हैं नौ रस, वो कृष्ण भगवान समझाते हैं, तब जाके नारद मुनि एक गान योगी बनते हैं। तो सारा म्यूजिक, सारा अक्षर, हर मार्ग, जब मैं आपको कह रही हूँ कि सनातन में हर मार्ग बताया गया है, तो सनातन में हर मार्ग बताया गया है, एवरी थिंग इज राइट देयर, एंड नोबडी इज फोर्सिंग यू टू से कि राम ही बोलो आप, पर आप बोलो तो सही, आप उस पर अपना चित्त जब लगाओगे तो अपने आप ही सब कुछ योग बन जाएगा। कितने ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर ऐसे भी ऋषि मुनि रहे हैं जो बोल नहीं सकते थे, जिन्होंने बस ए करके कि ही couldn't speak, so he saw a pig was running in front of him, और उसके पीछे एक शिकारी लगा हुआ था, तो जैसे ही वो उस शिकारी ने एक एरो उस पिग को मारा होता है, तो वो इतना चीखता हुआ भाग रहा होता है, और एक ऋषि थे जो कि बोल नहीं सकते थे, उनको देखकर इतना कष्ट होता है कि वो ए ए करते हैं कि कोई उसको हेल्प करे उस पिग को, पर जैसे ही वो ए बोलते हैं तो ए इज सपोज टू बी सरस्वती का बीज मंत्र, वो इतनी करुणा, इतने भाव से उसको देख कर ए बार बार बोलते हैं कि उनकी सरस्वती सिद्ध हो जाती है, ऐसी भी कथाएं हैं। तो शब्द ही शक्ति है, इसी वजह से बोलते हैं कि सोच समझ के बोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस फ्रिक्वेंसी को इस दुनिया ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो और वो तुम पे क्या इम्पैक्ट करेगा।
1: ओके हालांकि मैंने सोचा था इशिता कि इस शो को हम एज अ स्किल कंटेंट क्रिएशन में लेके जाएंगे, बट यहाँ पर अभी इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू शुरू हो गई है तो आई एम सॉरी, बट ये थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, बट मैं इसमें थोड़ा डीप डाइव और करना चाहूंगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है फिर यहाँ पर कि आज के इस एरा में, आज के जमाने में 2025 में कथाओं का रेलिवेंस क्या है, क्यों हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में।
2: कथाओं का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हम एक बहुत ही साकार जगत में रह रहे हैं, ठीक है। हम जहाँ से, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, हर कोई योगी मुनि तो पैदा हो नहीं सकता, हर उस कॉन्शियसनेस के साथ भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जाता है। हमें दिखता है हमारे एक माता है, एक पिता है, पिता जो है वो पुरुष दिखते हैं, माता जो है वो स्त्री दिखती है, क्योंकि साकार जगत में आए हैं तो हमें हर चीज़ है ना साकार रूप से समझ में आती है। कि जब हम ये बात करेंगे कि पाँच तत्वों से बनाए, पाँच तत्वों में हम जल को ऐसे नहीं बताएंगे कि एक जल देवता है वो ऐसे ऐसे दिखते हैं, वरुण है, हम कि ये गंगा माता जो तुम बहती हुई देख रहे हो ये जल तत्व हैं, जैसे ये आसपास की जमीन का पोषण कर रही है वैसे आपके अंदर जल तत्व पोषण करता है। तो हर चीज सिंबॉलिक होना जरूरी है क्योंकि हम ऐसे जगत में जी रहे हैं, ऐसी जीवन को जी रहे हैं जहां पे हर चीज एक फॉर्म के थ्रू हो रही है। कि आपके सामने ये माइक है ये भी एक फॉर्म लिया हुआ है, वरना किसी को भी माइक की जरूरत तो है नहीं बोलने के लिए, बट क्योंकि हमें दूसरों तक पहुंचना है इसलिए हमें फॉर्म की जरूरत है। वैसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है जिससे हम पुरुष से पुरुषोत्तम बन सके या फिर एक हायर कॉन्शियसनेस पे जा सके, उसके लिए जो एक मीडियम चाहिए वो कथा होती है। चाहे वो रामायण की कथा हो, चाहे किसी की भी कथा हो, हर कथा आपको एक छोटा सा हैबिट सिखाएगी, एक छोटा सा ट्रेट सिखाएगी, एक कैरेक्टर सिखाएगी, कैरेक्टरिस्टिक सिखाएगी कि आपको उसे धारण करना चाहिए ताकि आप ऐसे बन सको जिसको आप पूजते हो। एवरी कथा टेक्स यू देयर।
1: ओके, सेम चीज काफी हमारे लीडर्स ने भी कही है, जैसे महात्मा गांधी को मैं काफी एडमायर करता हूँ, उन्होंने भी सेम चीज बोली है, बी द चेंज यू वांट टू सी, और ऐसी काफी सारी चीजें हैं। बहरहाल अगर कोई बिगिनर इस टाइम हमें सुन रहा है और उसको इन कथाओं का, शास्त्रों का ज्ञान लेना है, उसको सनातन को समझना है, तो कौन से वो वेद हैं, कौन सी वो किताबें हैं जो आप रेकमेंड करना चाहोगे बिल्कुल बिगिनर को?
2: देखिए, वेद बिगनर को तो नहीं रेकमेंड करेंगे क्योंकि वेद से पहले वेदांग होते हैं। वेदांग क्या होता है, संस्कृत भाषा जो है वो वेदांग में है, व्याकरण में आती है, छंद होते हैं वो वेदांग में होते हैं, एस्ट्रोलॉजी होती है वो वेदांगों का पार्ट होती है, नॉट दी एस्ट्रोलॉजी यू सी ऑन सोशल मीडिया बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट गिव्स यू अ पॉइंट कि किस पर्टिकुलर नक्षत्र में ऐसा क्या फेवरेबल काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी, अब जैसे देखिए अगर एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र बना हुआ है उसी टाइम पे जो योग करण मौसम चल रहा है वो ऐसा है कि बारिश आने वाली है या फिर पूर्णिमा का दिन है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा उफान पे है और हवा हवा चल रही है, आप उसके बीच में एक स्पेसिफिक टाइप का यज्ञ नहीं कर पाओगे क्योंकि हवा चल रही है तो यज्ञ की अग्नि तो बुझने वाली होगी, तो आप कैसे करोगे? तो उस चीजों के लिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोलॉजी को वेदांग का एक पार्ट बताया जाता है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में होगा, एनवायरमेंट में कैसा चेंज हो रहा होगा, तब हम जाके क्या कर सकते हैं जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल हो। तो वेद इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, वेदांग इज द फर्स्ट स्टेप। पहले कहूंगी कि अगर आप एक्चुअल में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो तो पुराणों से शुरू करो क्योंकि वो आपको आपके भगवान के थ्रू लेकर जाते हैं कि कृष्ण भगवान ने अगर मुख खोला, मुख के अंदर जब वो मिट्टी खा रहे थे और यशोदा माता कहती हैं कि लाला अपना मुंह खोल के दिखा कि तू मिट्टी खा रहा है ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, नहीं नहीं तू खोल के दिखा तू खा रहा है, जैसे ही वो अपना मुख खोलते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है, अनंत ब्रह्मांडों की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी सब कुछ माँ यशोदा उनके मुख में दिखती है। वो कुछ नहीं है, वो वेदों का सिद्धांत है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी पूरे शरीर के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है जो आप अपनी आंखों से बाहर देखते हो। वो लिटरली मतलब कृष्ण वगैरह अपना मुख खोल के दिखाते हैं कि मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। तो अगर हम उसे रस में देखें तो ऐसा लगता है कि मम्मी और छोटे से बच्चे की कथा है, पर वो एक बहुत बड़ा योगिक रीजन है। जब कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी वाली स्टोरी तो सबने सुनी है कि वो कारागार में बंद थे, जेल में बंद थे, वो सब रास्ते क्यों खुले? क्योंकि कृष्ण भगवान जो डिफरेंट डिफरेंट योग का प्रतीक है, कहीं पर वो मुरली के थ्रू ज्ञान योग समझा रहे हैं, कभी वो युद्ध स्थली में खड़े होकर कर्म योग समझा रहे हैं, राजयोग समझा रहे हैं, ज्ञान योग समझा रहे हैं, वो सारे योग आपके सारे बंद दरवाजों को खोल देते हैं। दैट वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जन्माष्टमी, कि जैसे ही वो पैदा हुए सारे दरवाजे क्यों खुल गए? क्योंकि जिस दिन आप योग का मार्ग लोगे आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। योग का मार्ग बींग एनी थिंग, किसी शास्त्रों का अध्ययन करो,

0: गाना चूज करो और गाने को अपने आप को समर्पित कर दो. जिस भी चीज को आप अपने आप को समर्पित कर दोगे एक पॉजिटिव सेंस में, वो आपका योग बन जाता है. पर फॉर बिगिनर्स दे कैन प्रॉब्ली स्टार्ट विद जो भी उनके ईस्ट हो, जिनको वो सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो. कुछ जैसे आपने कहा शिव तांडव स्तोत्र, तो आप शिव जी से कर रहे हो तो शिव पुराण का एक बहुत ही ईजी ट्रांसलेशन मिल जाता है. थोड़ी सी कथाएं सुनो, वो अपने आप ही आपको आगे गाइड कर देता है.
1: ओके ठीक है. अब यहाँ पर हम क्योंकि जब कृष्ण भगवान की स्टोरी तक पहुँच गए हैं, तो एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा क्योंकि मैं इतने ज्यादा मैंने पुराण और वेद तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ एक आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से मैं चीजों को देखता हूँ दूसरे पर्सपेक्टिव से. तो एक नाटक है अंधा योग, आपने पढ़ा है?
0: नहीं अभी तक तो.
1: ठीक है, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है. वो अंधा योग जो नाटक है वो है कौरवों की माँ के पर्सपेक्टिव से.
0: ओके
1: ठीक है, कि जिसके 100 बेटे मर गए युद्ध भूमि में, वो कैसे कह देगी कृष्ण भगवान है. ठीक है, ये उनका पर्सपेक्टिव था कि तुम चाहते कृष्णा तो इस युद्ध को रोक सकते थे पर तुमने नहीं रोका. दूसरा पर्सपेक्टिव उसमें ये आता है महाभारत में कि जब द्रौपदी की शादी की गई, पहली चीज तो ये कि 5 लड़कों से क्यों की गई. ठीक है, बिना उनसे पूछे. सेकंड उस पे हम आएंगे जब वो जुआ खेला जा रहा था वहां पे, तो उस टाइम पर एक स्त्री को दाव पे लगाना बिना उससे पूछे, ये थोड़ा मेरे समझ के बाहर है चीजें. तो अगर आप चाहें तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं.
0: इसका आंसर है ना, एक्चुअली मैं दूसरे तरीके से देना चाहूंगी कि जब आप गीता पढ़ते हो ना, उसमें पहला श्लोक जो आता है वो धृतराष्ट्र पूछता है, आखिरी श्लोक जो होता है वो कृष्ण भगवान बोलते हैं. ठीक है, तो गीता जहाँ पर कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है, उसमें धृतराष्ट्र क्या कर रहा है? तो धृतराष्ट्र यहाँ पे अज्ञान का रिप्रेजेंटेशन होता है कि अज्ञान संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सामने जो तुमको ये कुरुक्षेत्र दिख रहा है जो कि एक धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर पांडवों के पांडु के बेटे और मेरे बेटे जो 100 कौरव है वो क्या कर रहे हैं इस समय. दिस इज द फर्स्ट श्लोक. काफी लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र पे धर्म मतलब धर्म जो ये युद्ध हो रहा था इस वजह से उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है. बट जब हम पूरी गीता को पढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि आपका शरीर ही एक क्षेत्र बताया गया है, और जिस दिन आप इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे योग के थ्रू, आसन के थ्रू, आहार के थ्रू, व्यवहार के थ्रू, अलग अलग चीजों से, तो आप क्षेत्रज्ञ बन जाते हो, आप इस शरीर से पार पा लेते हो. तो जब धृतराष्ट्र जो कि अज्ञान का रिप्रेजेंटेशन है वो पूछता है कि ये शरीर जो है ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों है, तो इसमें कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि हम ये कहते हैं कि कृष्ण रोक सकते थे, बट ये सारी कथाएं रिप्रेजेंट तो यही करती है कृष्ण यहाँ पे हायर कॉन्शियसनेस है जो उस मार्ग को चूज करेगा, कृष्ण उसका ही तो उद्धार कर पाएंगे. आज के टाइम में भी मैं तो कह रही हूँ सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें, सभी लोग अपना उद्धार कर दें, बट शिशुपाल का होना जरूरी भी तो है ना कृष्ण को ये समझाने के लिए कि गलती क्या होती है और सही चीज क्या होती है. मैं ये नहीं कह रही सब कुछ लीला है, उन लोगों ने चूज किया. ऐसा नहीं कि जब आप कह रहे हो कि गांधारी ने इस पूरे जो ये ड्रामा है इसमें ये कहा गया कि जिसके 100 बेटे मरे गए हों उस वो कृष्ण को भगवान कैसे समझे, बट गांधारी के पास बार बार चॉइस थी कि वो अपने बच्चों को भी समझा सकती थी कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको अपनी कुलवधु को निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए, तुमको अपने छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, तुमको अपने बड़े भाई को भी खीर देके नहीं मारना चाहिए, ना उन्हें लाक्षाग्रह में भेज कर वहां पे आग लगा देनी चाहिए. उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे अपने बच्चों को रोकने के लिए. बट द थिंग इज कि यहाँ पे हर कोई एक डिफरेंट इनसिक्योरिटी और एक मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं. आज के टाइम में भी रामायण चल रही है, आज भी बारह चल रही है, आज भी रक्त बीज है, आज भी काली है, सब कुछ यहीं पर है, बस आपको आंखें खोल के देखनी है. जस्ट बिकॉज इट्स इन द पास्ट डजंट मीन कि वो पास्ट में ही रह जाएगा, आज भी है. 100 कौरवों जैसी मानसिकता वाले लोग आज भी जी रहे हैं हमारे बीच में. बस ये बात है कि हम थोड़े से फियर में है, डर में है कि हम मंदिर में जाके वेट कर रहे हैं कि मूर्ति में से कृष्ण प्रकट होंगे, पर अपने अंदर से कृष्ण प्रकट नहीं कर पा रहे हम.
1: ओके, सो इट्स ऑलवेज द चॉइस.
0: इट्स ऑलवेज द चॉइस कि आपके आप अगर क्षेत्र हो तो आपके क्षेत्र के अंदर एक धर्म क्षेत्र है जहाँ पे पांडु के पुत्र लड़ रहे हैं, एक कुरुक्षेत्र है जहाँ पे कौरवों के पुत्र लड़ रहे हैं. अब डिपेंड करता है कि वो धर्म क्षेत्र जीतेगा या फिर कुरुक्षेत्र जीतेगा. आपके अंदर की अच्छाई जीतेगी, कुमति सुमति आपके अंदर की अच्छाई जीतेगी या बुराई जीतेगी.
1: ओके, इसको काफी मुझे लगता है काफी सारे स्क्रिप्चर्स में और काफी सारी बुक्स में भी इसको रिप्रेजेंट किया है कि टू शेडोज ऑफ यू, टू साइड्स ऑफ यू, जो आपस में कांस्टेंट फाइट चल रही होती है, जो दिल और दिमाग की लड़ाई भी बोला जाता है इसको. काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं यहाँ पर, कथाओं के बारे में भी बात करी है, वैल्यूज के बारे में भी बात करी है, और देखिए इन सारी बातों का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आप एक सुकून भरा जीवन, एक शांत मन कैसे कर सकते हैं. इन सारी कहानियों का, कथाओं का, स्क्रिप्चर्स का, वेदों का, पुराणों का इतना ही पर्पस है, और इसको दूसरे वे में आप देखें तो आप थेरेपी के लिए जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहां पर जाकर भी वही चीज हमें मिल रही है। सो इट्स ऑल अबाउट कि कौन सा रास्ता आप चूज कर रहे हैं, क्या वे आप देख रहे हैं, कैसे आपका चित्त शांत होगा, कैसे आपका मन शांत होगा। अब इसी के साथ बात करेंगे। इसी तरह कॉन्टेंट क्रिएशन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा।
0: जी।
1: एक तो मुझे ये बताइए कि आपने कॉन्टेंट क्रिएशन में स्पिरिचुअलिटी क्यों चूज किया, आपको क्यों लगा कि ये मुझे बनाना है और ये कन्वे करना है।
0: नहीं, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चूज किया और मैं चाहती थी कि दूसरे लोग, क्योंकि माई जर्नी स्टार्टेड विद नो गुरु, आई हैड टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स जो कि एक डायरेक्शनलेस और मिसगाइडेड इंसान को झेलना पड़ता है। तो मेरा पूरा जर्नी ऐसे रहा था, जब मैंने अपनी साधना शुरू करी, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग शुरू किया, काफ़ी चीज़ों में अटकी रहती थी, दिनों दिनों अटकी रहती थी, कोई खता समझ में नहीं आती थी तो पीछे पड़ जाती थी कि भगवान एक बार बता दो प्लीज़, बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से बंधी रहती हूँ, मुझे जानना होता है कि हर चीज़ के पीछे का क्यों क्यों है, क्योंकि उसके पीछे क्यों है, एवरी थिंग हैज़ एन आंसर। तो जब मैंने ये सारे चीज़ें अध्ययन करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे और भी लोग होंगे जिनको अभी उनके गुरु नहीं मिले हैं, जो कि मिसगाइडेड फील करते हैं, जो कि ऐसा फील करते हैं कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, शायद से वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसी वजह से मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में उतरी थी, ताकि मैं उन लोगों को रीच आउट कर सकूँ जो कि मेरे जैसा फील करते हैं, जो कि जानना चाहते हैं, क्योंकि पुराणों में भी अगर आप देखोगे जितनी भी कथाएं हैं उनको ओवर टाइम, क्योंकि संस्कृत से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो उस ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं उसके पीछे का तत्व गायब हो गया। उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया क्योंकि जो ट्रांसलेट कर रहा था उसका भी थोड़ा सा विचार उसमें आया ही आया जब वो ट्रांसलेट कर रहा था। कुछ चीज़ें ऐसे प्रेजेंट करी गई कि भगवान का चरित्र ही एक बड़े अजीब से वे में दिखता है, क्वेश्चनेबल वे में दिखता है, पर उसके पीछे क्वेश्चन नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बस वो शब्दों को ऐसे लिखा गया इसलिए हमें लगता है कि वो गलत है। तो मैं उसके पीछे का तत्व, उसके पीछे की साफ जो इमेज है वो लोगों तक लाना चाहती थी। मेरे को आनंद आता था बहुत ज़्यादा कथा पढ़ने में, तो मैं बस उन 4-5 लोगों से वो शेयर करना चाहती थी जिनको मेरे जैसा आनंद आता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।
1: नाउ फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कॉन्टेंट क्रिएशन करना है, मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्योंकि अभी मोर देन 1 लाख पीपल आर एसोसिएटेड विद यू इन योर कम्युनिटी ऑफ इंस्टाग्राम, आप अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि हम एक एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर अपनी जर्नी सक्सेसफुल बना सकते हैं।
0: सबसे पहले आज के टाइम में जब आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, AI है, सब कुछ है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत बहुत ईजीली कंप्यूटर को ये फीड कर सकते हो कि मुझे 5 रील बना के दे दो जो कि सनातन के वैदिक ज्ञान पे मतलब खरी उतरती हैं, बट एक्चुअल में कंटेंट तभी चलता है जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हो। AI कभी भी आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा, AI आपको असिस्ट कर सकता है आपके काम में। तो पहली बात तो कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड का हो, क्रिएटिव फील्ड का हो, कुछ भी हो, उसमें आप ही वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि आप खुद में एक क्रिएटर हो। आप जब एक Be it a man, be it a woman, when you are made, not made, but आपकी संरचना कुछ ऐसी है कि आप किसी को जीवन दे सकते हो, तो आप भी एक क्रिएटर ही कहलाओगे और उस क्रिएशन को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, एक इंसान के रूप में कर सकते हो, एक गाने के रूप में कर सकते हो, किसी आर्ट के थ्रू कर सकते हो, कुछ भी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। तो क्रिएटर कहलाने के लिए आपको बस AI को फीड नहीं करना होता, आपको अपने अंदर से कुछ पैदा करना पड़ता है। तो जब तक आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तब तक आप कुछ अपना पैदा कर पा रहे हो, तब तक वो चलेगा ही चलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप देखो ना, हर दूसरा बंदा कुछ भी कर रहा है उठ के, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द सैडेस्ट थिंग इज कि पीपल पिक अप देयर फोन टू सर्च समथिंग, बट दे फॉरगेट कि हम सर्च कर क्या रहे थे। दे रैंडमली सर्च फॉर थिंग, मतलब जो उनको सर्च करना था वो तो वो भूल ही जाते हैं, रैंडमली देखने लगते हैं। इंटरनेट कब ऐसा बन गया कि हमें जो जानना है उसको छोड़कर, हमें जो नहीं जानना चाहिए हम बस माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते, हम कुछ भी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या हमारे काम का है? नहीं, एंटरटेनमेंट प्रोबेबली, बट देर आर अदर मीन्स टू बी एंटरटेन्ड और एटलीस्ट ट्राई। तो ये है कि अपने अंदर से जब तक कुछ पैदा नहीं करोगे तब तक वो कभी नहीं चलने वाला। 10 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, उसके बाद वो ठप होगा ही होगा।
1: ओके, तो इशिता आप कह रही हैं यहाँ पर कि बी ऑथेंटिक, जो आपके अंदर से आ रहा है वो निकालिए।
0: बी द क्रिएटर यू वर मेंट टू बी।
1: जो आपको देखना है, इसका बहुत सिंपल सा जवाब ये भी हो सकता है कि जो आप देखना चाहते हो वो आप बनाना शुरू कर दीजिए, जो आपको पसंद है, और बी ऑथेंटिक, जैसा इशिता ने बताया, और ये खुद बहुत ऑथेंटिक हैं, मतलब इनका आप कंटेंट देखेंगे तो यही बातें जो यहाँ पर ये कर रही हैं वैसी ही रियल लाइफ में है और वैसी ही अपने रियल लाइफ में भी है। ऑलराइट, अब इसके साथ इशिता एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारी ऐसी वॉइसेज हैं जो उठती हैं इंस्टाग्राम पर, कंटेंट बनाते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपको उसको स्क्रूटिनाइज करना हो तो आप क्या वहां पर देखती हो कि क्या प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ कि क्यों ये गायब हो गए अचानक से?
0: देखिए, कंसिस्टेंसी हर जगह चाहिए ही चाहिए होती है, बट द थिंग इज कि आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन चाहे किसी भी फील्ड का हो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो मोटिवेशन नहीं मिलता, जैसे भगवान कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो वो फल की चिंता के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई वुड से कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो ऐसा मत समझो कि यही आपका एक सोर्स बनेगा, आप स्टार्टिंग करो अपने किसी काम के साथ उसको करने की, धीरे धीरे वो ग्रो करे तब उसको एक मेन इनकम का सोर्स मान के अपने जो ऑलरेडी प्राइमरी इनकम का सोर्स था उसको तब बंद करो। बट हम क्या करते हैं कि उसका चल रहा है, उसने ये चार क्वेश्चन पूछे हैं, उससे बेहतर तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम अपना पॉडकास्ट खोलेंगे, फिर वो चलता नहीं है, फिर वो डिस्पोंडेंट हो जाते हैं, फिर इतना ज्यादा मेंटल इशू हो जाता है कि मतलब पूछे मत। तो आई वुड से कि स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़िए। अगर आप क्रिएटर हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पर 24 घंटे कभी कभार फील होते हैं कि कम होते हैं, बट सही है, काम हो जाता है। आप अपने काम के साथ उसको बैलेंस करते हुए धीरे धीरे उसमें उतरिए, वैल्यू प्रोवाइड करिए, आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे
1: जी। सो कुल मिलाकर बात अगेन वही घूम फिर के आती है, बी ऑथेंटिक फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग हारिए मत, ठीक है, बेबी स्टेप्स लीजिए, बड़ी छलांग मत लगाइए, बड़ा जंप मत करिए, सिर्फ अगले कदम का सोचेंगे तो शायद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर सोच लेंगे भैया 1 किलोमीटर बाद क्या होगा तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर शायद आप अगला कदम भी ना रख पाए। इसी तरह मेरा अगला सवाल रहेगा, चक्रास होते हैं हमारे शरीर में, थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे काम करते हैं चक्रास, और अगर इनका डिसबैलेंस अगर ये हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? एंड मेरे लिए बहुत नई है ये दुनिया कि शरीर के अंदर इस ढांचे के अंदर क्या है मुझे नहीं पता है, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो हाउ डज इट वर्क, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है चक्रास के बारे में।
0: चक्र बेसिकली एक एनर्जी का समूह समझो अपने अंदर, एनर्जी जैसे कि कभी खत्म नहीं करी जा सकती, हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है, तो वो एक एनर्जी है आपके अंदर जो कि अलग अलग रूप से आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में विहार करती है। एक एनर्जी जो है वो अगर अच्छी तरीके से चल नहीं रही है तो आपको हर दूसरी चीज़ पे एंशियसनेस होती है, थोड़ा सा फियर लगा रहता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, थोड़ा सा मूलाधार रिलेटेड होता है। सबसे पहला चक्र नीचे से शुरू करते हैं हम, क्योंकि पहला चक्र भेद कर ही ऊपर जाया जा सकता है, जैसे कि अग्नि होती है, अग्नि स्वतः ही नीचे से ऊपर जाती है, लाइक ग्रेविटेशन को डिफाई करती हुई नीचे से ऊपर जाती है ना, वो हमें एक सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं, ऑब्वियसली देयर इज साइंस बिहाइंड इट, बट जैसे वो सब चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही है, बट अग्नि जो है वो नीचे से ऊपर आ रही है, वैसी एनर्जी जो है हमारे अंदर वो नीचे से ऊपर जाती है। तो हम जब भी चक्रों की बात करते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सबसे नीचे सेटल्ड एनर्जी है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, हमारे अंदर की शक्ति, वो ऊपर उठती हुई अपने शिव से मिले। शिव मतलब हमारे सर के ऊपर शिव बताए जाते हैं, एक शिवमय लोक बताया जाता है जहाँ पे वो शक्ति अपने शिव से जाके मिल जाती है और एक हो जाती है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट उसको छोटे में ऐसे समझाया जा सकता है कि आपके अंदर एक ताले होते हैं, 7 ताले समझिए, उनकी की को धीरे धीरे करके पाना होता है, और जब जब वो ताले खुलते चले जाते हैं तो आप पुरुषोत्तम बनते जाते हो, जो आपको कृष्ण समझा रहे हैं ना कि अर्जुन युद्ध करो, मेरे पास आओ, मेरे पास ऑलरेडी ये सारा जो लोग हैं आसपास तुम्हें दिख रहे हैं ये सब मेरे मुख में जा रहे हैं, तुम युद्ध करो या ना करो ये सब मेरे मुख में जाएंगे, मेरे उदर में जाएंगे, मेरे पेट में जाएंगे, पर तुम्हें कर्म करना इम्पॉर्टेंट है, राइट? वैसे ही ये 7 चक्र जो होते हैं वो आपको एक नई कॉन्शियसनेस की, आपके कॉन्शियसनेस में एक फ्लेवर सा ऐड करते चले जाते हैं, जैसे कि आप क्या हो। आप अगर जैसे एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी किसी के पॉडकास्ट पे कि ही सेड कि अगर आप क्रिएटर बनने के लिए पैदा हुए हो, बट अगर आप कुछ क्रिएट नहीं करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में उस चीज़ को निकालने लगते हो, और वो सिर्फ सेक्सुअल सेंस में नहीं होती। नहीं नहीं, देयर वाज एन एस्ट्रोलॉजर,
1: नहीं, ओशो ने ये बात बोली थी। अच्छा, कि अगर आप कुछ क्रिएशन में नहीं हो, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्रिएशन,
0: हो सकता है कि ही वाज कोटिंग हिम,
1: सेक्सुअली एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव,
0: तो वो भी एक टाइप का डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि आप सारे पाथ जो होते हैं आपको एक अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ले जाने चाहिए, बट अगर आपको पाथ ही बाइंड कर रहा है तो पाथ किस काम का हुआ, क्योंकि वो तो बाइंड करके बैठा हुआ है आपको, एंड द अल्टीमेट थिंग इज टू बी बाउंडलेस, कोई सीमा होनी ही नहीं चाहिए आपके लिए, तो वो जो चाबी है वो लगती चली जाती है, ताले खुलते चले जाते हैं और आपकी को जो कॉन्शियसनेस है उसमें एक फ्लेवर ऐड होता जाता है, सबसे पहला फियर का। तो जैसे ही वो चाबी लगेगी आपको भय होना बंद हो जाए।

0: सेक्सुअल परस्यूट्स क्या हैं, सब चीज़ें क्या हैं, उस चीज़ को अलाइन करता है स्वादिष्टान, और वहाँ पर आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली कौन हो, तब जाकर आपका सेल्फ सशक्त होता है ताकि वो कुंडलिनी राइज कर सके। बहुत सारे वो हैं, जैसे विशुद्ध है, विशुद्ध इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपके थ्रोट में होता है, जब तक आप यहाँ पे जो फील कर रहे हो, विशुद्ध के नीचे अनाहत आता है, अनाहत आपका हार्ट चक्र होता है, आपको जब भी थोड़ी सी एंजाइटी होती है यहाँ पे घबराहट होती है ना छाती में, दैट इज अनाहत बींग ब्लॉक्ड, अनाहत खुलेगा तो वो जो एंशियसनेस है वो थोड़ी सी क्लियर आउट होनी शुरू होगी, और इसी वजह से जब अनाहत खुलता है उसके बाद जब विशुद्ध खुलेगा तो आपकी इमोशंस आपके थ्रोट के थ्रू एक्चुअल में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा फील करोगे ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको फील होगा आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके सबसे पहले गले में दर्द होने लग जाता है।
1: एक सेकंड, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को प्रोसेस करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अनाहत आपने एक चक्र बोला है जो हमें एंजाइटी होती है, बट इशिता ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की,
0: तो तभी तो आपको जो देखो
1: तो आप कह रही हो अनाहत इज कॉमनली गेटिंग ब्लॉक्ड,
0: सब चीजें बंद है इस समय, हम चूज करते हैं ना जब कॉन्शियसली कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, तब हम धीरे धीरे एक्सेल करते हैं, जैसे कि हमने कोई स्किल, इसको एक स्किल की तरह देखते हैं, हमें कोई स्किल एक्वायर करनी है तो हम एक दिन में तो नहीं कर लेंगे, दो दिन में नहीं कर लेंगे, सालों लगते हैं हमें स्किल एक्वायर करने में, धीरे धीरे कुछ कुछ कुछ कुछ सीखते चले जाते हैं, वैसे ही सब चीज़ें ब्लॉक्ड हैं यहाँ पे, किसी का अनाहत पैदा होते ही खुला हुआ नहीं है, किसी का मूलाधार खुला नहीं है, इट्स अ जर्नी, तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो वो जो इमोशंस है, एंजाइटी क्या है, आपके इमोशंस जो है वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, जब आप उसको एक्सप्रेशन करना सीखोगे, जब अंदर करुणा मिलेगी, जब एम्पैथी इतनी जागृत हो जाएगी कि वो आपको भी संभाल सके और सामने वाले को भी संभाल सके, अनाहत अपने आप शुरू हो जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अनाहत, उसके साथ भी बहुत सारे वो होते हैं, त्रिदोष होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट अभी हम चक्रों तक सीमित रहते हैं। तो अनाहत के लिए बीज मंत्र बताए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक राग बताए जाते हैं जो कि आपको उस तरीके से काम डाउन करते हैं कि आपको जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील होती है जिसकी वजह से एंशियसनेस हो रही है आपको, वो थोड़ी सी काम डाउन होनी शुरू हो, और जब आपको वो थोड़ी सी स्थिर होती हुई नज़र आती है तब आप इजीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, इसलिए नेक्स्ट चक्र जो होता है वो एक्सप्रेशन का होता है। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं आँखों के ऊपर, जहाँ पर भगवान की तीसरी आँख दिखाई जाती है, वो थर्ड आई का चक्र होता है, दैट इज़ बेसिकली इनलाइटनमेंट का जो नॉलेज होता है, जो कि हर चीज़ का डिफरेंस मिटा देता है। देखो, दो आँखों के ऊपर एक आँख है, तो जैसे दो आँखों से दुनिया जो है वो द्वैत में बटी हुई है, उसको एक कर देता है थर्ड आई, तो इट्स बेसिकली यू इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन बींग। चक्र कोई जादू नहीं है, इट्स एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन, एक पुरुष जो कि पुरुषोत्तम बन सकता है।
1: ओके okay.
0: और वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लिटरली एक कॉन्वर्जेशन में इसको बाइंड करना बहुत गलत होगा इस टॉपिक के लिए।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे को एक ओवरव्यू चाहिए था फ्रॉम यू स्पेशली, क्योंकि काफी कम ऐसे लोग हैं जिनके जिनसे हम मिलते हैं और जो इस तरीके के संवाद हमारे साथ कर सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया चक्रास का कॉन्सेप्ट। बहरहाल दोस्तों, एक और सवाल यहाँ पर उठता है, क्या ये सच है जिस तरीके से बताया जाता है कि कुत्ते को चावल खिला दो या आटा खिला दो या भैंस को ये डाल दो उसको वो डाल दो, क्या काम करता है, या बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे को पीला कपड़ा पहन लो, डज इट रियली वर्क, लाइक हाउ इज इट गोइंग ऑन, आज के एरा में भी चल रहा है? आप
0: देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना, कुमति सुमति सबके ओर रही, एक मनुष्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, एक मनुष्य एक देवता भी बन सकता है और एक असुर भी बन सकता है, सिर्फ उसके मन की वजह से। अगर वो मन पे अंकुश धारण कर लेता है, जैसे हमारी 11 इंद्रियां बताई जाती हैं, 10 तो आपको दिखता है, हाथ है, पैर है, हर चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 सेंसेस एंड द 5 तन्मात्राएं जिसके साथ वो लगता है, 11 इंद्रियां, तो उसके ऊपर एक 11वीं इंद्रिय होती है जो आपका मन होता है। जिस दिन आप मन पे अंकुश कर लोगे उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो असुर की श्रेणी में चले जाते रहोगे क्योंकि भोग करते रहोगे, कभी आपकी शांति नहीं मिलेगी आपको, कंज्यूम करते रहोगे, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहोगे, चाहे वो कोई गलत आदत हो, चाहे वो अहंकार हो, ईगो हो, कुछ भी हो, आप कंज्यूम करते रहोगे क्योंकि मन पे काबू नहीं है। आपको मन करेगा कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक सिगरेट पीनी है तो पीनी है, चलती रही है, सबको पता है कि वो आपके लिए गलत है, पर क्या आप अपने मन के ऊपर अंकुश रख पा रहे हो कि आपको नहीं पीनी, दैट इज द पॉइंट, समझ गए? तो
1: चॉइस अगेन,
0: एग्जैक्टली। तो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया, उनको बहुत अच्छे से पता था कि एक मनुष्य अगर अपने मन पे अंकुश नहीं रखेगा तो क्या हो सकता है?

0: पॉसिबली, तो उसको एक मर्यादा में, एक दायरे में बांधने के लिए हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट किया गया कि अगर तुम नवग्रह देखो, ऊपर देखो वो तारा टिमटिमा रहा है, वो है ना जुपिटर है, वो मून है, मून तो सबको दिख ही रहा है, तो मून को एसोसिएट कर दो एक रैंडम चीज़ के साथ, और इस दिन जो कि सोमवार है, सोम का दिन, मून का दिन है, अगर उस चीज़ को सोमवार के दिन आप ये दोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। इट्स जस्ट यू बींग टाइड अप इन अ मैकेनिज्म ताकि आप अपने मन के ऊपर अंकुश रख सको, पर वो इसी वजह से, क्योंकि जब तक आप इस प्रकृति को खुश नहीं रखोगे आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ये प्रकृति आपकी सबसे बड़ी गुरु होती है। विष्णु भगवान ने एक रूप रखा था दत्तात्रेय भगवान का, जहां पे वो प्रकृति के 24 पदार्थों को अपना गुरु बनाते हैं। उनका कोई एक्चुअल गुरु नहीं था, उन्होंने कबूतर को, सांप को, पेड़ को, इन सबको अपना गुरु बनाया था, क्योंकि यही प्रकृति, जब आप जनरली, आई थिंक आई सॉ योर डीपी, यू वर विद अ डॉग राइट, एक कुत्ते को हेल्प करके, स्पेशली अगर उसका एक्सीडेंट हुआ हो, जब आप उसे उठाकर उसको एक जीवन देने का प्रयास करते हो, तो आपके अंदर वो जो सर्ज आता है ना, वही वो शक्ति है। उसी शक्ति को कभी कभार वो शक्ति इतना ओवरवेल्म कर देती है कि आप खुद ही बिखर जाते हो। वो डॉग तो बेचारा अपने आप को संभाल रहा होता है उस ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे, पर आप भी बिखर जाते हो वहाँ पे, क्योंकि वो शक्ति थोड़ी सी अलाइन नहीं है। पर अगर आप उसको और अच्छे से चैनलाइज करोगे तो आप उसकी नहीं 100 और कुत्तों की हेल्प कर पाओगे राइट तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है। जब आप एक डॉग के साथ रहते हो, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न अपनाते हो, कैट के साथ अलग, बिकॉज आई हैव बीन विद अ कैट एंड अ डॉग, आई हैव अ डॉग, तो मुझे पता है कि वो आपके अंदर की इंस्टिंक्ट्स को कैसे जागृत करते हैं। पेड़ों को पानी देकर, ये तो साइंटिफिक रिसर्च है कि पेड़ को जब आप उगता हुआ देखते हो तो आपके अंदर की डोपामिन और सेरोटोनिन कितने बढ़िया तरीके से राइज करते हैं। तो वो प्रकृति एक जीवन का फॉर्म है, आप खुद जीवन हो, आप तो अंदर से बंद पड़े हो, आप अपने अंदर तो देख ही नहीं रहे, इससे अच्छा बाहरी प्रकृति को देख लो, जीवन को देख लो। तो इस वजह से हर चीज़ को इस तरीके से बांधा गया ताकि मन को समझाया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। पर वो मन भी, अब मन तो मन है, कहीं सीमाओं से ना बन के रहना पड़े तो उसको ही अंधविश्वास बना लिया, अब वो पता नहीं क्या ही बन चुका है, और एक अजीब ही असुर बन चुका है वो अंधविश्वास।
1: हाँ, एक नई मार्केट आ गई है जहाँ पर डर, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों को इनकैश किया जा रहा है। कोई आपकी कुंडली बता दे रहा है, सिर्फ एक फोन कॉल करो और आपको बता दिया जाएगा कि आप आज रात को एक काम करिए, पीपल के पेड़ पे आप जाकर कलावा बांध के आ जाइए, एंड सो ऑन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहरहाल, कुत्ते की अगर बात करें तो मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जो मेरे घर में डॉग है, वो, मैं रात को जिम से आ रहा था वर्कआउट करके, और वो सड़क पर बैठा हुआ था, ठीक है, बहुत छोटा सा बेबी था, शायद वो 15-20 दिन का रहा होगा, एकदम कुपोषित, रात को 12 बजे का टाइम, हाईवे पर, रोड पर भटक गया है, व्हीकल्स जा रहे हैं, मैं नहीं छोड़ सकता हूं ऐसे। मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं उसको इग्नोर करके चला जाऊं। मैं उसको गोद में उठाया, मैं बैठा, मैं पहले बहुत ढूंढा उसकी माँ दिख जाए या कोई दिख जाए, बट रोड पे नहीं छोड़ के जा सकता, तो मैं उसको लेके बैठा रहा। मेरे घर में मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे अगर मैं उसको घर ले गया तो। अब मैं एक, आप कह सकते हो, धर्म संकट में फंस गया कि मैं क्या करूं इस बच्चे का, मैं उसको घर लेकर के जाऊं या इसको यहाँ छोड़ कर जाऊं, या तो नहीं छोड़ूंगा ये मर जाएगा, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। Somehow I took that risk, मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा रात रात भर रख लेते हैं, सुबह देख लेंगे, कुछ होगा तो छोड़ेंगे। बट उसको मैं अपने घर में लाया, फिर उसने घर को गंदा करना शुरू किया। पहले 4-5 दिन तो घर वालों ने बहुत गालियां दी मुझे, क्या कर रहा है ये, गंद मचा रखा है इसमें, सारी चीजें काट देता है, कहीं भी कुछ भी कर देता है, एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर मैंने जादू देखा अपने घर में, जो मेरे पिता का वात्सल्य रस मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे पिता का पहली बार मैंने वात्सल्य रस देखा कि एक बच्चा उनकी जिम्मेदारी बन गया है। उसके रेबीज के इंजेक्शन लगवाना, उसको बाहर लेकर जाना, उसको रेगुलर रिनो टेक केयर करना, मेरी मम्मी का बेस्ट फ्रेंड बन गया वो, ठीक है। उनको पता है मुझे जाना है, मुझे सोना है, क्योंकि कब्बू वेट कर रहा होगा, ठीक है, वो सोता नहीं है, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरी माँ की ओवरथिंकिंग बिल्कुल खत्म हो गई। तो एक जीव बेसिकली हुआ क्या वहां पर, वो ट्रिगर पॉइंट था, वो प्यार, वो वात्सल्य मेरे पिताजी के अंदर ही था, बस उसने ट्रिगर कर दिया, जागृत कर दिया, एंड दैट्स द होल स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस। तो ये एक चीज मैंने देखी, जादू देखा मैंने, तो ये प्रकृति जादुई है, हकीकत में है। और इसके बहुत सारे और एग्जांपल मैंने देखे, जैसे एक बार एक मधुमक्खी थी, छत्ता था, तो वो किसी जगह पर बिस्तर था, मैंने हाथ मारा वो उड़ गई। फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे जस्ट टू सी कि वो वापस आते हैं नहीं आते, वो वापस आए वहीं पर, वहीं पर आकर सेटल डाउन हो गए। फिर हमने वहां से खा डटा दी, फिर वो आए, हमें खाया नहीं, क्योंकि हमने कोई एक्शन नहीं लिया. सो दैट वाज द मैजिक. ये मदर नेचर बहुत मैजिकल है, बहुत जादू है, सही मायने में.
0: यही प्रकृति जो आप बाहर दिखते हो, यही यथावर्ण्य तथा ब्रह्मांड में आपके अंदर होती है. यही सूर्य चंद्रमा आपके अंदर भी काम कर रहे होते हैं. आप भी उसी पौधे की तरह बड़े हो रहे हो जिस पौधे को आप अपने सामने देखते हो. बस यही है कि जब वो चीज जागृत होगी तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि मैं और ये पौधा या फिर इस कुत्ते में या बिल्ली में कोई अंतर नहीं है. और जिस दिन रियलाइज कर लोगे उस दिन भगवान को करुणामयी कहा जाता है. जब आप अपने अंदर ही एम्पैथी इतनी जागृत कर लोगे कि आप सबको अपने समान ने देख रहे हो तो फिर क्या बचे, भगवान बन जाओगे जो आपका दूसरा क्वेश्चन था.
1: बिल्कुल. बहुत बहुत बहुत धन्यवाद इशिता. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर. दोस्तों यहाँ पर अपने शो को हमें कंक्लूड करना होगा. हालांकि मेरा मन नहीं भरा है अभी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको. मैं इस शो को कई घंटों तक कर सकता हूँ बट क्योंकि समय की एक सीमा है तो मैं कोशिश करूँगा फिर एक बार हम यहाँ पर इशिता को बुलाएं. कोई भी ऐसी चीज़ इशिता जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप अपने मन में लेकर आई हूँ या आप कहना चाहती हूँ, प्लीज़ फील फ्री.
0: नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ एक ये चीज़ है कि हम सबको अपने वीडियोस के एंड में एक बात बोलते हैं कि मे द शक्ति बी विद यू. हम कभी कभार ये बात रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम ईश्वर का अंश हैं, हमारे अंदर भी वो शक्ति है, पर वो हमने कभी ध्यान नहीं दिया. हम खुद सोए हुए हैं तो उस शक्ति को तो क्या ही जागृत करेंगे या फिर देख क्या पाएंगे. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कोई भी मार्ग पकड़ो, संगीत का मार्ग पकड़ो, कला का मार्ग लो, योग का मार्ग लो, कुछ भी लो, बस ट्राई टू चैनलाइज दैट एनर्जी दैट रिसाइड्स इन यू. तो फिर आपको ब्रह्मा बनने में या राम बनने में या कृष्ण बनने से कोई रोक नहीं सकता.
1: बी अ पार्ट ऑफ क्रिएशन.
0: या तो उस प्रकृति से एक हो जाओ. अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं हो तो कुत्तों की सेवा करो, बिल्लियों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, इतने सारे जीव जंतु हैं उन सब की सेवा करो. कुछ ना कुछ कोई ना कोई सिखा देगा और कुछ ना कुछ जागृत हो ही जाएगा.
1: सो वंडरफुल. काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है आज दोस्तों. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कंटेंट क्रिएशन की जो बात हुई है वो तो हुई है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखी हैं. स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी बात हुई है, वेद वेदांग इन सब की बात हुई है. बस इतना कहूंगा कि अपने मन में ठहराव लेकर आइए, बहुत जरूरी है आज के इस एरा में. अब इसी नोट पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. उम्मीद कर रहा हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों को दे पाए. हालांकि जो हम सोच कर बैठे थे, हम बहुत सारे टॉपिक से भटके, हम इधर उधर गए, बट वो जरूरी थे. मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ उस तरफ जा रही थी, प्रवाह उस तरफ जा रहा था, तो हम उस तरफ लेकर गए. आप बताइए आपका क्या टेक है इसके ऊपर 8010781078 पर. फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, खुशहाल हैं। और मैं अपना बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हमारा मुसाफिर हूँ यारो, ये बहुत ही खास है बहुत सारे लोगों के लिए। और इस बात का पता हमें चलता है जब आप लोगों के फीडबैक हमारे पास आते हैं, आपके मैसेजेस हमारे पास आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं। तो अगर आप नए लिसनर हैं या फिर आपको कुछ कहना है या कोई फीडबैक हम तक पहुंचाना है, सो 8010781078 इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम है मुसाफिर हूँ यारो, ये पूरा पूरा ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दुनिया बोर हो चुकी है और दुनिया को जरूरत है ट्रैवलिंग की। अब देखिए, हर इंसान ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उस जगह को महसूस तो कर सकता है ना, उस जगह के बारे में जान तो सकता है, इतना भी काफी होता है। तो यही बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को जाना होता है, जो लोग ट्रैवलिंग करने के लिए निकलने वाले होते हैं या फिर प्लान कर रहे होते हैं, उनको भी काफी हेल्प मिल जाती है। तो चलेंगे दोस्तों, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपने एक लिसनर का मैं फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका नाम है मिस्टर अजय देशवाल, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं और ये अभी लास्ट टू लास्ट वीक मसूरी गए थे घूमने, और वहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इन्हें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी और ये काफी परेशान हुए। इनके साथ जो लोग थे वो भी परेशान हुए। दरअसल ये जा रहे थे और इनकी गाड़ी के सडनली दोनों टायर पंचर हो गए आगे वाले। अब गाड़ी में स्टेपनी तो एक ही होती है और वो जो जगह थी वो पूरी जंगल थी, वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने स्टेपनी निकालकर एक टायर तो चेंज कर लिया, लेकिन दूसरे टायर का क्या करें? अगर गाड़ी ऐसे चलाएं पंचर हालत में तो उसके बाद तो आपका जो गाड़ी का रिम या अलॉय होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन्हें इंतजार ही करना पड़ा। इन्होंने बहुत सारे लोगों का वेट किया, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, पूरा सुनसान रास्ता था वो। हालांकि लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब भी किसी से हेल्प मांगी तो लोग वहाँ से इन्हें इग्नोर करके निकल गए। हाँ, देख तो सब रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन रुका कोई नहीं। ये एक बात थोड़ी सी गलती है यार, क्योंकि देखिए, आप ट्रैवलिंग करें कुछ भी करें, बात ये है कि इंसान इंसान के काम आता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इसमें मैं कोई पाप या पुण्य वाला एंगल नहीं डाल रहा हूँ, बट सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सब ऐसे हो जाएंगे, सपोज आपको किसी की हेल्प की जरूरत है और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, या फिर मुझे कभी किसी की हेल्प की जरूरत है या फिर कोई वहाँ पर पहुँच जाए, तो आप सोचकर देखिए ना, रिश्ते कितने प्यारे बन जाएंगे दुनिया में और कितना प्यारा एक दुनिया का माहौल बन जाएगा, कितना पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए यार, जब भी आप कहीं पर भी जाएं, अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा दिखाई देता है जिसको हेल्प की जरूरत है या फिर कोई खड़ा है आपको लग रहा है कि परेशान है, तो एक बार आप रुक कर पूछ लीजिए। हो सकता है यार आपका इतना पूछना भरी उसके लिए बहुत हो जाए। तो ये एक बात है जो ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जब भी किसी को जरूरत पड़े, अगर आप वहां पर पहुंच सके तो प्लीज पहुंच जाइए, या फिर आप निकल रहे हैं और कोई इंसान आपको लग रहा है कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो रुक कर आप उसका हाल भी पूछ लेंगे ना। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो वो भी काफी है, बट प्लीज ये इनिशिएटिव्स हमें खुद लेने पड़ेंगे। क्योंकि किसी बहुत महान राइटर का एक कोट है कि आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव अपने अंदर ले आइए, अगर वो बदलाव आपके अंदर आ जाएगा तो दुनिया वैसी बन जाएगी। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया एक पीसफुल जगह बने, दुनिया एक पॉजिटिव जगह बने जहाँ किसी को शिकायत ना हो लोगों से, और वहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले हो, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना होगा और हमें खुद लोगों की हेल्प करनी होगी। तो अभी इसी एक रिक्वेस्ट के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि इंसानियत को हम बढ़ावा देंगे अभी, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने सफर की, और आपको बताते हैं कि आज हम कहां पर जाने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं आपके साथ क्विज खेलता हूं, कई बार मैं आपको ये मौका देता हूं गेस करने का, लेकिन जगहें इतनी प्यारी प्यारी हैं, पर अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इन जगहों के बारे में सुना ही नहीं। तो इसके लिए हम कोई क्विज नहीं खेलने वाले हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं, आज हम चलने वाले हैं थेनवाला। थेनवाला का बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, अगर सुना भी होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने विजिट किया होगा, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। लेकिन ट्रस्ट मी यार, जगह वर्थ है, आपको लगेगा कि यार किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं आप, इतनी कमाल की जगह है। तो थेनवाला मौजूद है केरला में और वाकई में ये एक प्राइड डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंडिया की। ये कोल्लम सिटी से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर बहुत कमाल कमाल की चीजें आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको यहाँ पर 3-3 हिल रेंजेस देखने को मिलती है, त्रिवंद्रम, कोल्लम और पथनमथिट्टा। एंड वाकई में जब आप यहाँ पहुंचेंगे और पहली बार आप केरला जाएंगे, तो सच में आपको ऐसा लगने वाला है कि आप किसी कहानियों की दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ आपको नेचर, शांति, साफ सुथरे रोड, मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहता है यार वहाँ पहुँचने के बाद। तो ब्यूटी तो उसकी एक तरफ है ही, इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिया का जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का टिम्बर मिलता है वो यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी के टिम्बर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं और यहीं से सप्लाई भी किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की हनी यानी शहद भी मिल जाएगा। और थेन वालों को अगर आप वाकई में ट्रांसलेट करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज में तो आपको पता चलेगा हनी हिल नाम से ये फेमस है। और देखिए किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता है जी, क्योंकि जो लोग भाई एडवेंचर से प्यार करते हैं, जो थ्रिल सीकर्स हैं, उनको भी काफी मजा आने वाला है। क्योंकि एक तो फॉरेस्ट एरिया है, ऊपर से यहाँ पर ऊंची ऊंची माउंटेन की पीक्स है जो आपको वाकई में फैसिनेट करने वाली है। तो देखिए एक बहुत कमाल का पैकेज मिल रहा है आपको, बहुत सही जगह है जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग। दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि आज हम थेन माला चलने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि थेन माला पहुंचा कैसे जाए। तो देखिए अगर आप बाय रोड जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये वेल कनेक्टेड है लगभग सारी जो मेजर सिटीज है वहां पर उनसे। आप अगर कोल्लम, त्रिवेंद्रम, पनालूर और भी किसी फेमस डेस्टिनेशन से ट्रेवल कर रहे हैं तो या तो आप वहां के रेगुलर एक स्ट्रेट रन जो प्राइवेट बसेस मिलती है या फिर गवर्नमेंट बसेज भी मिलती है वो आपको मिल सकती है वहां रोड पर। इसके अलावा लोकल कैब्स और टैक्सीज का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और यहां से अगर आप अपनी गाड़ी पर जाते हैं तो वहां से भी आप पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। इसके लिए आपको कोल्लम जाना होगा, कोल्लम से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह मौजूद है। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन आपके लिए है वो है ट्रेन का। तो देखिए जी थेन माला पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा कोल्लम शेनकोट्टा ट्रेन रूट का। और यहाँ पर उतरने के बाद आप वहाँ पर कैब ले सकते हैं, वहाँ की लोकल बसेज का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए आपको कोल्लम स्टेशन पर उतर कर वहाँ से आपको कोई कैब करनी होगी। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है आपके लिए वो है बाय एयर, यानी आप फ्लाइट से अगर जाना पसंद करते हैं तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप उतर सकते हैं जो कि वहां से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही सबसे जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो मिलेगा आपको थेनमाला में। हालांकि बहुत सारे लोग आते हैं जो इंडिया से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और वो सभी लोग यहीं पर आकर जो है उनकी फ्लाइट लैंड करती है, वो यहां से फिर कैब कर सकते हैं, आप बस पकड़ सकते हैं या फिर कोई भी आपको कन्वीनियंट जो चीज लगती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ ऑप्शंस काफी सारे हैं आपके लिए। और फिर इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से गए हैं, आजकल तो यार मैप हर किसी के पास मौजूद है, आप मैप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी जो मैंने आपको बताई तीन चीजें जैसे आप थेन माला पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइम के ऊपर, क्योंकि ये बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आपको कि किस टाइम पर जाना चाहिए, क्या सही सीजन है आपके लिए। तो देखिए अगर आप दिसंबर टू फरवरी जाते हैं तो आपकी जो मॉर्निंग ड्यूज है, जो मौसम में आपको क्रिस्पीनेस मिलने वाली है और जो बाहर का ओवरऑल आपको मिस्टी आउटलुक मिलने वाला है वो विंटर से मिलने वाला है, और वो बहुत कमाल रहने वाला है। और सही बताऊं वो इतना कमाल रहने वाला है कि वो आपको वाकई में इस जगह से प्यार करवा देगा। इसके अलावा अगर आप इन महीनों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर गॉर्जियस इको टूरिज्म डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर काफी नीचे गिर चुका होता है। और ऐसा कहा जाता है जो लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ जाते रहते हैं या फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खुद यही सलाह देते हैं कि विंटर्स आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है जब आप यहाँ पर विजिट करना चाहिए। इसके अलावा बात अगर समर की जाए मार्च टू मई, तो देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है, 39 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है समर्स में। तो ये भी आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन तभी जब आप हाई टेम्परेचर झेल पाए, जब आपको आदत हो इतना हाई टेम्परेचर झेलने की और टेम्परेचर का राइज जो है आप इग्नोर कर सकें।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर अन्नदाता। तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। मैंने अपने किसी भी जन्म में जितनी चीजें जानी हैं, उन सब में ये रिश्ता सबसे अद्भुत रिश्ता है। ये शाश्वत है। मेरी हैजकल का प्रॉफिट खलील जिब्रान दुनिया से जा चुका है और वो उसके एक एक शब्द में से गुजर रही है। उसके नाम लिखे हुए खलील जिब्रान के इस प्रेम पत्र में से कई पत्र निकल निकल कर तितलियों की तरह उसकी आंखों के आगे उड़ रहे हैं। जब हम इन जिस्मों में नहीं थे, तब से मैं तुमसे मोहब्बत करता आ रहा हूं। ये मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही जान लिया था। ये नियत था। हम इस तरह से एक हैं कि कुछ भी हमें जुदा नहीं कर सकता। वो अपने महान महबूब की एक एक याद को नए सिरे से अपने आंसुओं से धोती और संजोती जा रही है। आइए जानते हैं ऐसे ही मोहब्बत के महबूब मसीहा की जिंदगी की कहानी, यानी खलील जिब्रान की कहानी। आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम। देखिए दोस्तों, खलील जिब्रान का जन्म 6 जनवरी 1883 को वर्तमान उत्तरी लेबनान के बसरी गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम कमीला और पिता का नाम खलील साद यूसुफ जिब्रान था। दोस्तों, बसरी इलाका देवदारों से भरी एक सुंदर पर्वतीय कदीसा घाटी से जुड़ा हुआ है। उन दिनों लेबनान ओटोमन राजशाही के अधीन सीरिया का हिस्सा था। आज बसरी लेबनान का एक अहम शहर हो गया है। खलील जिब्रान नाम के वत्स को पाकर बसरी इतना मशहूर हुआ कि उसके कई उच्चारण हो गए, जैसे बसरी, बशारी, बुशरी, बुसारी, बचरी, बशरी। और बचपन में जब जिब्रान देखता कि कदीसा घाटी में तूफान आया है, तो उसके जहन में कैसे कैसे सवाल आते थे, क्या क्या सोचता था, इन सारी बातों का दौर चलेगा। देखिए दोस्तों, बात हो रही है आज एक ऐसे लेखक की जिनको जाना जाता है खलील जिब्रान के नाम से, और बहुत बड़ा नाम है लेखन क्षेत्र में। बचपन में जब जिब्रान देखता कि कदीसा घाटी में तूफान आया है, तो वो उस तरफ नाचता हुआ दौड़ पड़ता। उसे कुदरत से बहुत प्रेम था और अक्सर उसे सौंदर्य के लिए दीवाना होते देखा जाता। सहसा वो पेंसिल लेकर कुदरत की तस्वीरें बनाने लगता था। उसकी माँ यानी कमीला रूहानी चीजों और कुदरत के करिश्मों में दिलचस्पी लेने वाली शांत स्वभाव की स्त्री थी। वो जान गई थी कि उसका ये बेटा गैर मामूली है और दुनिया को कुछ देने आया है। वो उसे कुदरती नजारों में खोया देखकर खुश हुआ करती थी और अपने बड़े बेटे और दोनों छोटी बेटियों से कहती थी कि उसे अकेला छोड़ दो। दोस्तों, जिब्रान के बचपन की अनुभूतियां बाद में इस तरह सामने आई, मेरी आत्मा को इन रंगों में नहाने दो, नहाने दो, मुझे इस सूर्यास्त को निगल लेने दो, इस इंद्रधनुष को पी लेने दो। देखिए दोस्तों, परंपरा के मुताबिक खलील जिब्रान का नाम उसके पिता के नाम यानी खलील साद यूसुफ जिब्रान में से लिया गया। और खलील जिब्रान के जो पिता थे टैक्स अफसर थे, यानी टैक्स अफसर यूसुफ जिब्रान को जुएबाजी और शराबखोरी की लत थी, और इस वजह से वो कर्ज से दबकर एक किसी और मुलाजिम का बंधुआ सेवक हो गया था। खर्चे चलाने के लिए उसने अखरोट के कुछ पेड़ तो खरीदे थे, पर उनकी देखरेख नहीं करता था। 30 वर्षीय कमीला एक धर्माधिकारी की बेटी थी। यूसुफ जिब्रान से शादी करने से पहले भी 2 बार उसकी शादी हुई थी, और बच्चों की परवरिश की खातिर उसने चुपचाप बहुत तकलीफें सही थी। पिछली शादी से उसे एक बेटा यानी बतरस, जिसको पीटर के नाम से भी जाना जाता है, और जो पीटर था, पीटर जिब्रान से 6 साल बड़ा था। जिब्रान के बाद उसकी 2 बहनें
मारियाना और सुल्ताना जन्मी थी। पिता के जुएबाज और शराबखोर और कर्जदार होने के कारण बच्चों को पढ़ाई लिखाई मयसर नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, खलील जिब्रान की जिंदगी की कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर। दोस्तों, आज बात चल रही है खलील जिब्रान के बारे में, और खलील जिब्रान के पिता की बात हो रही थी, माँ की भी बात हो रही थी, और माँ के घोर अकेलेपन, खामोशी और रूहानी मिजाज का जिब्रान पर गहरा असर पड़ा। लोगों में उसके अनोखे स्वभाव के चर्चे होने लगे। एक स्थानीय पुरोहित ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया और बाइबल के साथ ही उसे अरबी और सीरियाई भाषाएं पढ़ाने घर आने लगा। दोस्तों, पुरोहित ने पाया कि खलील के पास अनोखी पैदाइशी प्रतिभा और हुनरमंदी है। उसने उसे धार्मिक और शास्त्रीय शिक्षा देनी शुरू कर दी। इसी अनौपचारिक शिक्षा के दौरान जिब्रान ने विज्ञान, भाषा शास्त्र और इतिहास में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लेकिन आगे क्या हुआ, वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। बात है 1891 की। 1891 में अधिकारियों ने जिब्रान के पिता को टैक्स में हेरा फेरी करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और परिवार बेघर हो गया। कुछ समय रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने के बाद 1895 में ये लोग काम की तलाश में अमेरिका जा पहुंचे। साल भर पहले जेल से छूटे जिब्रान के पिता ने लेबनान में ही रहने का फैसला किया, और अरबी होने के कारण अमेरिका में कमीला और बच्चों को दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रहना पड़ रहा था। कमीला बहुत मेहनत करते हुए बोस्टन की गलियों में पीठ पर सामान लादे घर घर चीजें बेचकर बच्चों को पालने लगी, उनकी परवरिश करने लगी। रिवाजों और आर्थिक कठिनाई के कारण जिब्रान की दोनों बहनें पढ़ाई से महरूम रह गईं, जबकि एक चैरिटेबल संस्था की मदद से जिब्रान स्कूल जाने लगा। यहीं अंग्रेजी के अध्यापक के सुझाव पर उसके नाम के हिज्जे में कुछ बदलाव हुआ और उसका नाम खलील की बजाय कहलील जैसा लगने लगा। हालांकि दोस्तों, अरबी उच्चारण में ये उतना नहीं अखरता। कमीला की मेहनत रंग लाई और उसने अपने बड़े बेटे पीटर के लिए हार्डवेयर स्टोर खुलवा दिया, जिसमें मारियाना और सुल्ताना भी काम करने लगी। अब देखिए दोस्तों, जिब्रान के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि बहुत सारे एपिसोड बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है खलील जिब्रान के नाम से। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस सफर में उन लोगों को याद किया जाता है कि जिन्होंने अपनी कला से लोगों को अपना बना लिया। आज मैं बात करूंगा खलील जिब्रान के बारे में, और खलील जिब्रान अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है, जो लोग इनके बारे में जानते हैं उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने इनको नहीं जाना, मैं उनको आज बताऊंगा कि खलील जिब्रान कौन थे और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का सफ़र उन्होंने तय किया और किस तरह से पूरी दुनिया में उनका नाम है। देखिए दोस्तों, जिब्रान की अगर हम बात करें ना, तो जिब्रान अंतर्मुखी था और अपना ज़्यादा समय अकेलेपन में बिताता था। तो भी उसने बोस्टन की कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो ओपेरा, थिएटर और आर्ट दीर्घाओं में जाने लगा। इससे वहां के नामी कलाकारों ने जल्दी ही 13 साल के जिब्रान की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे मशहूर कलाकार फ्रेड हॉलैंड डे से मिलवाया। डे ने जिब्रान के लिए कला, साहित्य, दर्शन, पुराण, लेखन और छायाकारी के अध्ययन के लिए नए द्वार खोलकर उसमें छिपी संभावनाओं को खुला आकाश दे दिया। जिब्रान अनोखी गति से इस आकाश में उड़ने लगा। लेकिन जिब्रान की ये उड़ान उसे कहां तक ले गई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 1898 में जिब्रान किताबों के मुख पृष्ठ डिजाइन करके सबको चकित करने लगा।
लेकिन उम्र से पहले इस उड़ान के खतरे भांप कर उसकी माँ यानी कमीला ने उसे शिक्षा पूरी करने के लिए वापस लेबनान भेजना ठीक समझा। लेबनान लौटकर वो बेरूत के एक बड़े स्कूल यानी अल हिकमा में दाखिल हो गया, जहां उसे अरबी भाषा और साहित्य में माहिर होना था। लेकिन जिब्रान का ज्यादा झुकाव चित्रकला में ही बना रहा। एक कला प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात कवि लेखिका जोसेफिन पी बॉडी से हुई, जिसे उसने एक तस्वीर समर्पित करके अपना मुरीद बना लिया। दोनों में अंतरंगता बढ़ती चली गई, चिट्ठियों के सिलसिले शुरू हो गए। वो उसे लिटिल प्रॉफिट कहने लगी। बाद में यही नाम जिब्रान की विश्व विख्यात किताब यानी द प्रॉफिट का नाम बना। देखिए दोस्तों, 1902 की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। 1902 में जिब्रान कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करके बोस्टन लौटा तो माँ और भाई बहनों की हालत ठीक नहीं थी। माँ को कैंसर था और भाई यक्ष्मा रोग की चपेट में आ गया था। यक्ष्मा रोग यानी कि टीबी का रोग। तभी सुल्ताना जो कि उसकी बहन थी टीबी के शिकंजे में आकर 14 साल की उम्र में मर गई। भाई दुकान छोड़कर क्यूबा चला गया तो जिब्रान को दुकान संभालनी पड़ी। परिवार के लिए मेहनत करते हुए उसने अपनी रुचियों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि 1903 के शुरू में कमीला का ऑपरेशन करके कैंसर का ट्यूमर निकाला गया। भाई पीटर क्यूबा से लौटा, लेकिन अपनी बीमारी के हाथों वो भी उन्हीं दिनों मारा गया। 2-2.5 महीने में माँ भी जिसमें फैल चुके कैंसर से चल बसी। दोस्तों, इन तीनों मौतों से स्तब्ध जिब्रान ने स्टोर बेच दिया। मारियाना पोशाक बनाने वाली एक दुकान पर काम करते हुए जिब्रान की पढ़ाई में मदद करने लगी। ऐसे वक्त में जोसेफिन ने उनकी मदद की, लेकिन किसी बात पर जिब्रान ने जोसेफिन को कुछ ऐसा कह दिया कि वो नाराज हो गई। इसी के साथ दोनों के रिश्तों में ठंडापन आ गया। जिब्रान ने अरबी और अंग्रेजी की अपनी अगली पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसके लिए बेचैन हो रहे डे और उससे नाराज रहने वाली जोसेफिन ने 3 मई 1904 को उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, जिसने व्यापक रूप से कला प्रेमियों का ध्यान खींचा। लेकिन दोस्तों, जिब्रान से ताल्लुक रखने वाली और भी बहुत सारी बातें हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर। बात हो रही है खलील जिब्रान के बारे में, और जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि एक एग्जीबिशन लगाई गई थी जो कि खलील जिब्रान के हाथ की बनाई पेंटिंग्स थी, और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, उसी प्रदर्शनी में जिब्रान की मुलाकात अपनी सबसे बड़ी प्रशंसक यानी प्रेयसी और आजीवन सहयोगिनी मैरी एलिजाबेथ हैस्कल से हुई, जो उन दिनों बोस्टन में लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाया करती थी। जिब्रान उस समय 20 साल का था और वो 30 साल की थी। जिब्रान उसे देखते ही जैसे सम्मोहित हो गया। मैरी खलील जिब्रान की अनोखी प्रतिभा पर विस्मित और न्यौछावर थी। दोनों एक अटूट गिरफ्त में आ गए। जिब्रान को नए पंख देने के लिए मैरी ने आसमान से उतरी एक करुणामयी परी जैसी भूमिका निभाई। उसी ने उसे अरबी के बाद अंग्रेजी में लिखने को उकसाया, वरना वो अरबी में ही लिखता था, जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद होता था। मैरी ने आखिर तक जिब्रान को आर्थिक मदद तो दी ही, उसे अपना

व्यक्ति बनने से रोककर आजीवन मित्र बने रहने के लिए भी मना लिया। वो बहुत संवेदनशील थी और दूरदर्शी भी थी, जिसने एक साथ जिब्रान को प्रेयसी और मां होने की भूमिका निभाई। वो आजीवन उसकी परम मित्र और प्रेयसी बनी रही। दोस्तों, जिब्रान की समूची प्रतिभा को विश्वव्यापक बनाने के लिए वो हमेशा बेचैन और सक्रिय रहती थी। उन दोनों को निकट से जानने वाले चकित थे, हैरान थे कि इतनी अंतरंगता के बावजूद उनमें जिस्मानी रिश्ते क्यों नहीं बने। लेकिन दोस्तों, 1904 की सर्दियों में डे के स्टूडियो में आग लगने से जिब्रान के सारे कागजात जलकर राख हो गए। अब कागजात जल गए तो आगे क्या हुआ, देखिए दोस्तों। 1904 की सर्दियों में डे के स्टूडियो में आग लग गई। अब जब आग लगी तो जिब्रान के सारे कागजात जलकर राख हो गए। एक संपादक ने उसे काम देकर उसकी मदद की। मैरी से पहली मुलाकात के बाद जिब्रान की पहली रचना विजन अरबी के समाचार पत्र अल मुहाजिर में प्रकाशित हुई। इस पत्र में वो लगातार लिखने लगा और इसी में उसका टीयर्स एंड लाफ्टर नाम का स्तंभ भी छपने लगा, जो बाद में टीयर्स एंड स्माइल नाम से पुस्तक रूप में सामने आया। दोस्तों, उसकी पहली किताब फन अल मुसीका, जो कि अरबी में छपी, दूसरी किताब आराइश अल मुरूज, जो कि 1906 में आई थी। लेकिन दोस्तों, इसी साल यानी कि 1906 में जोसेफिन की शादी होते ही जिब्रान से उसके रिश्ते समाप्त हो गए। तब जिब्रान ने पेंटर जी वेरी से गोपनीय संबंध बनाया। इन्हीं दिनों मैरी हैस्कल ने एक फ्रेंच अभिनेत्री एमिली मिशेल से उसका परिचय कराया। उस समय मिशेल मैरी के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया करती थी। जिब्रान और मिशेल में संबंध बन गए और 1908 में मिशेल गर्भवती भी हो गई। लेकिन उसे भयंकर दर्द उठा और गर्भपात कराना पड़ा। इसी वजह से दोनों का संबंध फीका पड़ते पड़ते खुदा हाफिज हो गया। और 1908 में जिब्रान की तीसरी किताब भी अरबी में ही आई, जो मुहाजिर पत्र के उनके कॉलमों में से निकली थी। इसमें स्त्रियों की दशा, सामाजिक और प्रशासनिक अन्याय की ओर ध्यान खींचा गया था। दोस्तों, इस किताब से हुक्मरान काफी नाराज हो गए। किताब को सेंसर भी किया गया। लेकिन जिब्रान हुक्मरानों और जाहिलों को कुछ करने नहीं बल्कि झिंझोड़ने और मरोड़ने आए थे। खलील जिब्रान अपने आप में एक बहुत ही मशहूर नाम है। लेखक हैं, पेंटर भी हैं, कवि भी हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 1906 में जोसेफन की शादी होते ही जिब्रान से उसके जो रिश्ते थे वो ख़त्म हो गए। तब जिब्रान ने पेंटर जी बेरी से गोपनीय ताल्लुकात बनाए। इन्हीं दिनों मैरी हैस्कल ने एक फ्रेंच अभिनेत्री यानी एमिली मिशेल से उसका परिचय कराया। लेकिन खलील जिब्रान के मिशेल से भी संबंध ज़्यादा दिन नहीं चले और ख़त्म हो गए। और इसीलिए गुमसुम हुए जिब्रान को उसी साल मैरी ने पैसे देकर कला के लिए 2 साल की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा, जहां जिब्रान को यूजेन कैरी की प्रतीकवादी पेंटिंग ने प्रभावित किया। उसने विलियम ब्लैक की पेंटिंग्स और उसकी कविताएं भी ढूंढ निकाली। दोस्तों, जिब्रान की एक पेंटिंग जिसका नाम पतझड़ को एक विशेष प्रदर्शनी में रखने के लिए चुना गया। जिब्रान ऑगस्ट रोडिन की कला से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। पेरिस में ही उसे जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्से के काम का परिचय मिला, जिसका असर बाद में जिब्रान की रचनाओं में देखा गया। उसने राजनीतिक देश निकाला सह रहे सीरियाई लोगों से मुलाकात की और लेबनानी अमेरिकन लेखक अमीन रेहानी से मिलकर लंबी दोस्ती की बुनियाद रखी। देखिए दोस्तों, पेरिस में अकादमी के अनिवार्य औपचारिक पाठ्यक्रम से अरुचि होने पर जिब्रान अमीन रेहानी के साथ
लंदन यात्रा पर निकल पड़ा और उसके बाद अपनी स्वाभाविक चित्र शैली का विकास करने में पूरी तरह से जुट गया। इसी साल जून में उसे अपने पिता के देहांत की खबर मिली। मरने से पहले पिता ने उसके लिए अपना आशीर्वाद जाहिर किया था। जिब्रान को इससे राहत मिली। यूरोप की यात्रा के बाद जिब्रान 1910 के आखिर में पैसे खत्म होने पर अमेरिका लौटा और मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। कुछ तो उम्र में काफी फर्क होने के कारण और कुछ मैरी की असहमति के कारण ये संभव नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यूरोप के देशों के दौरे के बाद खलील जिब्रान को अब एक ज्यादा अनुभवी और ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। इनकी पहचान बन गई। अरब अमेरिकन लेखकों और बुद्धिजीवियों के संगठन द गोल्डन लिंक्स सोसाइटी से जुड़े और उन्हीं दिनों उनकी कविताओं की किताब बियॉन्ड द इमेजिनेशन प्रकाशित हुई। उन्होंने अल मुहाजिर में लिखना बंद कर दिया और मिरात अल गर्ब को रचनाएं देनी शुरू कर दी, जो अगले 11 साल तक उसमें आती रही। लेकिन दोस्तों, जिब्रान को बोस्टन में ऊब होने लगी। जब ऊब होने लगी तो 1911 में वो अपने दोस्त अमीन रियानी के सुझाव पर न्यूयॉर्क चले गए। मैरी ने इस बार भी उन्हें आने जाने के लिए पर्याप्त पैसे दिए। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तब क्या होता है, वो सारी बातें फहीम आपके साथ साझा करेगा। दोस्तों, बात चल रही थी कि खलील जिब्रान अपने दोस्त से मशवरा करते हैं और न्यूयॉर्क चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो अपने प्रशंसकों से घिर जाते हैं। इस बार स्विस मनोचिकित्सक और मनोविद लेखक कार्ल गुस्ताव जुंग उनसे मिले। रिहानी वहीं थे। यहीं आयरिश कवि और नाटककार विलियम बटलर ईट से भी मुलाकात हुई और इसी बीच जिब्रान ने अपनी अगली किताब ब्रोकन विंग्स शुरू की। ये अरबी में उनका एकमात्र उपन्यास है जिसे वो आध्यात्मिक जीवनी कहते हैं। दोस्तों, लोगों के बीच जिब्रान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे। 16 मई 1911 के एक लम्हे में जब वो मैरी के ख्यालों में डूबे तो उसे पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि जब मैं एक बड़े शहर में अजनबी होता हूं तो मुख्तलिफ कमरों में सोना, मुख्तलिफ जगहों पर खाना पसंद करना, अज्ञात गलियों में घूमता हूं और पास से गुजरते अजनबी लोगों को देखता हूं। मैं एकाकी मुसाफिर होना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों, अनासक्ति से सहसा वो आसक्ति पर उतर आते। देखिए दोस्तों, खलील जिब्रान के बारे में बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि खलील जिब्रान न्यूयॉर्क पहुंच गए थे और जब वो न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने उन्हीं दिनों अरबी लेखन और साहित्य को विश्वव्यापक बनाने के लिए अरबिता अल कलामिया संगठन बनाया। इसका अहम मकसद कला की वाजिब आजादी और लेखकों की मौलिक शैली का विकास था। अरबी साहित्य को नए आयाम देने के लिए जिब्रान ने जीवन भर बहुत सी संस्थाओं और पत्रिकाओं से खुद को जोड़ना जारी रखा और 1912 में जिब्रान को न्यूयॉर्क में भारी समर्थन और स्नेह मिला। इसके पीछे मैरी की संपर्क निपुणता और आर्थिक मदद का कमाल था। दोस्तों, जिब्रान अंग्रेजी भाषा और यूरोप के सांस्कृतिक लहजों में महारत हासिल करते जा रहे थे, लेकिन खलील जिब्रान की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कुछ बातें अभी बाकी हैं, बताऊंगा, सब बताऊंगा। आइए दोस्तों, एक बार फिर आपको लेकर के चलता हूं उसी लेखक के पास जिसका नाम है खलील जिब्रान। 7 जून 1912 को जिब्रान ने मैरी को लिखा, इस समय मेरे भीतर जितनी भी जिंदगी है मैं उसके हर लम्हे को समूचा जानने के लिए उसके प्रति पूरी तरह से जीवंत होना चाहता हूं। दोस्तों, लंबी जुदाइयों और जानलेवा तन्हाइयों में जिब्रान को लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैरी के प्रति उसकी तड़प किसी डर पर खड़ी हो। 12 जून 1912 को उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि तुम्हें लेकर मेरी सारी तकलीफ मेरे किसी छोटेपन या भय से आती है। बड़ी तकलीफ ये भी थी कि अगर मैरी का साथ ना होता तो ये ठाट ना होता और किसी प्रेसी का निष्कंटक संग साथ भी ना होता, जो इन दिनों भी उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, जिब्रान को नयापन चाहिए था। और दोस्तों, इसी साल जिब्रान और फिलिस्तीनी मिस्री लेखिका में ज्यादे के बीच प्रेम परवान चढ़ा। बातें और भी थी लेकिन वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता, इसलिए अब आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शब्बा खैर।

0: वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: वेल हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजी सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM, और हम आपसे एक ही बात बोलते हैं, फील गुड, फील लाइव। वॉइस ऑफ यूथ हमारा शो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि हर बार हमारे साथ यहाँ पर एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं हर हफ्ते, जिनसे हम काफ़ी सारी बातें करते हैं और काफ़ी कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आपको कुछ स्किल्स मिल सकें। तो ऐसा ही हमारा आज का एपिसोड होने वाला है। आज हमारे साथ हैं इशिता शर्मा। इशिता एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर आमतौर पर काफ़ी सारे कंटेंट को हम बोल देते हैं यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, उसके बावजूद हम देखते हैं एंड वी ऑल नो कि उसका कोई मीनिंग होता नहीं है। बट कुछ ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं लाइक इशिता, जो सच में कुछ मीनिंगफुल चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ टैलेंट, जो हमारे लिए काफ़ी खास हो जाता है बिकॉज इन दिस एरा ऑफ यू नो मेंटल हेल्थ इशूज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ प्यारी चीजों की, कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में ठहराव लेकर आ सकती हैं। इशिता स्पिरिचुअलिटी में कंटेंट क्रिएशन करती हैं और काफी सारी चीजें आज हम इनसे जान रहे होंगे। तो बिंदास बैठी है हमारे साथ, आखिर तक जरूर सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे इशिता का। हाय इशिता, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे, आप बताइए।
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ एंड अभी और काफी अच्छे हम होने वाले हैं क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो शुरुआत इशिता मैं इंट्रोडक्शन से आपके करना चाहूंगा, प्लीज अपने शब्दों में बताइए आप क्या करते हैं, क्या पर्टिकुलर चीज है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों तक उसके बारे में।
2: ओके, तो यूजुअली जर्नी जो थी वो शुरू हुई इकोनॉमिक्स फाइनेंस, जो हर किसी की होती है वैसी ही। KPMG में मैंने काम किया, बट हमेशा से बचपन से एक आर्टिस्ट था अंदर जो कि कहता रहता था कि डेल्व अ लिटिल डीपर, अंदर जाके ढूंढो, आंसर्स ढूंढो। एंड आई वॉज बॉर्न इन मथुरा, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस था ही था। तो मैं बहुत सारे पुराणों को रिसर्च करती रहती थी अपनी आर्ट के लिए, एंड 2023 वाज द फाइनल टाइम कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, पर इस तरीके से बनाऊंगी कि जो कथाएं हम आज तक सुनते आ रहे हैं लोगों को उनके पीछे का एक्चुअल मतलब मिले, ताकि वो अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करके बहुत ईजिली अपनी लाइफ को जी सकें। तो हम भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, हमारे आइडल्स हैं वो, पर उनसे सीखने को मिल क्या रहा है हमको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली आज के टाइम में। तो हम सूत जी बोले के थ्रू, सूत जी वॉज अ डिसाइपल ऑफ वेद व्यास। सूत जी, जैसा कि नाम है, सूत इज अ थ्रेड जो कि हमको आध्यात्म के ज्ञान तक जोड़ती है। तो सूत जी सारे पुराणों का श्रवण करते थे, सभी ऋषि मुनियों को सारी कथाएं सुनाते थे और उसका श्रवण आगे होता गया और हम तक पुराण आए। तो हमने सूत जी बोले इनिशिएटिव शुरू किया था, जहां पर हम सारी कथाओं के पीछे का जो तात्विक ज्ञान है वो देने का प्रयास करते हैं।
1: ठीक है, कंटेंट के थ्रू भी आप करती हैं एंड आई गेस ऑफलाइन मोड में भी आप अपडेट करती
2: हैं। जी, मैं कहीं ना कहीं ये गैप जो फील हुआ वो ये था कि हम भी छोटे थे, स्कूल में ऐसा हमें पढ़ाने को नहीं मिला, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू बन गया है, और एक्चुअल में एक इशू है कि हमारी बुक्स में हमें अपने भारत, अपने इतिहास, हमारे राष्ट्र के बारे में या फिर हमारे अध्यात्म के बारे में, जो कि हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है सनातन, उसके बारे में कुछ जानने को मिलता नहीं है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर किड्स, तो मैं स्कूल में जाकर जो लोग अलाइंड होते हैं मेरे थॉट प्रोसेस से, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का प्रयास करती हूँ, ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, और साथ ही में साधक जो कि ऐसा फील करते हैं कि उनके पास अभी गुरु आए नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा मिसलेड फील करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, थोड़े से घबराए हुए होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह करते हैं।
1: ठीक है, एक सवाल मेरा इशिता यहाँ पर रहेगा, सोशल मीडिया के ज़माने में आमतौर पर जो दिखाई देता है, खासतौर पर बात अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की करूँ या माइथोलॉजी की करूँ, दो चीज़ें मुझे काफ़ी पेनफुल लगती हैं इसमें। एक है डर, लोगों को डर बेचा जा रहा है, और सीधे तौर पर YouTube के ऊपर एड्स चलाई जाती हैं कि आपकी इतनी उम्र है, आपका मनचाहा विवाह नहीं हो रहा है, ऑल दिस दैट दैट दैट, हमें व्हाट्सएप करिए, हमें पैसे दीजिए, हम वो ठीक कर देंगे। एक मेरी ये प्रॉब्लम है कि यूथ को हम डर दे रहे हैं और हमारा पैसा उस पर बन रहा है, इट्स अ डर्टी गेम। सेकेंड, इसमें मुझे लगता है कि एक और चीज है कि जैसे आपने कहा सनातन, तो श्री राम क्या है, लोगों को ये नहीं पता है क्या है श्री राम, लोगों को नहीं पता है क्या है हनुमान, बस वो अग्रेसिव फोटो बना

0: देंगे एआई का इस्तेमाल करके, उसके पीछे अग्रेसिव म्यूजिक, बंदूकों के साउंड लगा देंगे और उनको लगता है दिस इज समथिंग मेकिंग देम प्राउड। ये मुझे लगता है कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है जो हम अपने भगवान के साथ कर रहे हैं। तो आप अपने शब्दों में मुझे बताइए, ये जो दो चीजें चल रही हैं, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट, एंड आपका क्या ओपिनियन है इन दो चीजों के ऊपर?
1: देखिए, सनातन जो है वो इतना वास्ट है और इतना ब्यूटीफुल वो इसलिए है क्योंकि वो हर किसी को एक रास्ता देता है। अगर वो कहता है कि यज्ञ के थ्रू भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो वो कहता है कि राम का नाम लेकर या किसी भी भगवान का बस नाम लेकर भी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। भजन गा के भी कर सकते हैं, फास्टिंग करके भी कर सकते हैं, हर रास्ता आपके पास अवेलेबल है। बट हर किसी शास्त्र के कोर में आपको एक बात मिलती है जो कि मुझे रामचरितमानस की सबसे सुंदर तरीके से लिखी हुई बात लगती है, दैट इज कुमति सुमति सबके ओर रही, कि अच्छी बुद्धि और कुमति जो कि गलत बुद्धि है वो सबके अंदर रहती है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चूज कि आप क्या करते हो। आप फ्योर की बात कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो कि एआई से लोग बना रहे हैं, तो वो उनका एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो करना चाहते हैं। अगर कोई अपनी आंख बंद करके रखना चाहता है और आप उस पर चीख रहे हो कि अपनी आंख खोलो, तो वो उसका पर्सनल डिसीजन है। आफ्टर अ वाइल यू हैव टू लीव इट एंड दैट पर्सन हैज टू डिसाइड कि उसको क्या करना है। तो कुमति सुमति सबके पास रहती है, बट हमें एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करना है कि विभीषण जो कि थे रामायण में, उन्होंने ऑल्दो रावण उनका खुद का भाई था, खुद का खून था, बट उन्होंने डिसाइड क्या किया कि उनको उसकी साइड में नहीं रहना क्योंकि वो गलत कर रहा था, उनको श्री राम के पास जाना है। तो यू हैव टू डिसाइड कि विभीषण बन के रहना है या फिर अंधा होके गांधारी धृतराष्ट्र ये सब बन के थोड़ा सा अपने राष्ट्र को खराब करना है और खुद को तो खराब करना ही करना है।
0: ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खासतौर पर बच्चों को लेकर मैं ज्यादा चिंतित होता हूँ कि मेरी एज के और आपकी एज के लोग फिर भी उस चीज को समझ सकते हैं। हमारा एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम बन चुका है जहाँ पर हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बच्चे जो अभी नए नए इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं या यूट्यूब पर आ रहे हैं, देखते हैं, कॉन्टेंट कंज्यूमर बन रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज गलत तरीके से अगर पोर्ट्रे की गई तो ये पूरे के पूरे नेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है कि अगर गुमराह उन्हें कर दिया गया तो।
1: बिल्कुल,
0: सो दैट्स हाउ आई टेक इट। एनीवेज, एक और चीज यहाँ पर मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप इतना स्पिरिचुअली अलाइंड है, मतलब कि आप अपने शब्दों को इस तरीके से पोर्ट्रे कर सकती हो कि सामने वाले को समझ आए, आपकी परिभाषा में मैं जानना चाहूंगा भगवान का अर्थ क्या है।
1: भगवान का अर्थ, जैसे मैंने कहा कि सनातन के अनंत रास्ते हैं, तो आप अनंत तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल काम हो, कंपोज्ड हो, तो आप अंधेरे को भी काली समझ के अपना ईष्ट मान सकते हो, उस अंधेरे को आप कृष्ण समझ के अपना ईष्ट मान सकते हो। तो भगवान का कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि जो पांच शक्तियों के थ्रू, पांच तत्वों के थ्रू, तन्मात्राओं के थ्रू, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री के थ्रू इस पूरे जगत को संचालित करते हैं, वो भगवान है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये रियलाइज करना कि आप खुद भी भगवान के अंश हो, ठीक है। आपको बस कॉन्शियस होना है उन्हीं पांच तत्वों से जो आपके सामने गंगा माँ की तरह बहते हुए दिखाई देते हैं या फिर यज्ञ की अग्नि के रूप में दिखते हैं, वही सब कुछ आपके अंदर है। बस आपको उसे जागृत करके उस भगवान के अंश को अपने अंदर जागृत करना है और समझना है कि एक्चुअल में भगवान क्या होते हैं। क्योंकि हम कितनी भी लीला पढ़ लें, हम कितने भी तंत्र में चले जाएं, हम कितना भी अध्यात्म में चले जाएं, हर कोई चीज आपको आपके अंदर देखने को ही विवश करेगी। तो आप भगवान हो, बस बशर्ते ये कि आपको वो पुरुष से लेकर पुरुषोत्तम की जो जर्नी है वो कवर करनी है।
0: ओके, सो वंडरफुल। एक और सवाल यहाँ पर इश्ता, अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस एरा में जी रहे हैं जहां पर हमारी मेंटल हेल्थ जो है काफी बैड स्टेट में है। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ हर रोज अपने दिमाग को तैयार करने के लिए कि मैं दुनिया में जाऊं और मेरे को उस चीज से फर्क ना पड़े, प्रभावित ना हो, हावी ना हो मेरे ऊपर वो विचार? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? कुछ हमारे वेदों में ऐसा है?
1: एक्चुअली हर जगह ही ऐसा है और बस आपको थोड़ा सा समर्पण दिखाना होता है। एक्चुअली बैड मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक समर्पण लैग हो रहा होता है, चाहे हम उसे प्रोकेस्टिनेशन के रूप में देखें, क्योंकि इंसान प्रोकेस्टिनेट करता रहेगा, किसी एक दिन उठेगा वो और रियलाइज करेगा कि समय बीत चुका है, तब फिर उसका उसके ऊपर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वो सारी चीज़ें हावी होने लगेंगी। तो एक्चुअल में बात यही है कि आपको अपने आप को अलाइन तो करना ही करना पड़ेगा, समर्पण दिखाना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, और उसके बीच में आप बस एक नाम भी छोड़ो, अगर आप का उच्चारण करो, अगर आप किसी राग को सुनो, राग भैरवी, राग भैरव इतने सुंदर तरीके से डिवाइस करे गए हैं कि आपके दिमाग को वो खोल सकते हैं, आपको उस बाधाओं से बाहर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको आंख बंद करके वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे गामा पाधा नीसा बस ये नॉर्मल वो नहीं है, आप इसको म्यूजिक को भी बीच में लाओगे ना तो आप रियलाइज करोगे म्यूजिक से भी बड़ा कोई योग होता नहीं। इतना बड़ा योग है कि उसको इतने सुंदर तरीके से पिरोया गया है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे वो बहुत ही पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। बट आंख बंद करके सुनना तो पड़ेगा, पहला स्टेप आपको खुद के अंदर ही लेना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंसी डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से कि दो तीन राग हैं, शिवरंजनी है, भैरवी है, भैरव है, जिसको आप सुन सकते हो, और बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाए गए हैं, गाने भी गाए गए हैं इसमें, और दिन के स्पेसिफिक पार्ट में सुन सकते हो, सुबह उठ के सुन सकते हो, बीच में उठ सुन सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं आपके जो अंदर कियोस है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे रास्ता जब अपने आप ही सामने दिखता रहे तो ओपन रहो, डोंट कंस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैंने जो आज तक पढ़ा था उसमें काला तो ये होता है, सफ़ेद ये होता है, पर मैंने ग्रे का कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि सब कुछ ग्रे है, दो कलर से नहीं बना ये जीवन, आपको उसके बीच का स्पेक्ट्रम समझने के लिए ओपन रहना पड़ेगा।
0: ओके, तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पर है कि संगीत आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, और अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसी एक यू नो स्टेज से गुजर रहे हैं, मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट कि कोई इंस्टेंट फिक्स आपको मिल जाए, जो इशिता ने भी बताया वो एक खूबसूरत सा मार्ग आपके लिए हो सकता है, उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट, इट माइट बी एबल टू हेल्प यू। एक सवाल और उठता है यहाँ पर, मेरा पर्सनल वो मानना है कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं शिव तांडव स्तोत्र बोलने लगता हूँ, मेरे को याद है। सो डू यू बिलीव कि ये जो मंत्र हैं इनके साउंड फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है हमारी कि वो हमें एक्चुअली हेल्प करते हैं?
1: बिल्कुल, देखो ईश्वर को अक्षर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका कोई शरण नहीं होता, उनकी कोई लिमिट नहीं है, और शब्द को शक्ति कहा गया है क्योंकि हम में और पशु में बस इस शब्द का ही फर्क है, वो बोल नहीं पा रहे हम बोल पा रहे हैं, उनका शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जितना हमारा बना हुआ है, बट डिफरेंस बस इस शब्द का है, इसी शब्द को ईश्वर माना गया है। अगर आप तंत्र के लिटरेचर में जाते हो, वेदों में जाते हो, तो आप भगवानों को शब्दों के थ्रू पूजते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हो, मातृकाएं होती हैं, आठ प्रकार की देवियां होती हैं, वो कुछ नहीं होती आपकी अ ई ई उ ए क ख ग, ये होती हैं देवियां, वही आपके शरीर के अंदर होती हैं, वही आपके चक्रों के अंदर बताई जाती हैं, और जब आप उन मंत्रों को कॉन्टिन्यूसली चांट करते रहते हो तो आपके शरीर के वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्ट शुरू हो जाते हैं वाइब्रेट करने के लिए। तो आप जब आगे जाते हो तो चाहे वो मेंटल हेल्थ का इशू हो, चाहे आपको इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा हो, सब चीज़ों को सशक्त करने के लिए एक एक शब्द, एक एक अक्षर बनाया गया है, तो डेफिनेटली हेल्प करता ही करता है। और यहीं से संगीत भी आगे जाता है, अगर आप संगीत को संगीत का सबसे सुंदर की संगीत इतना बड़ा योग है, उसका एग्जाम्पल आता है देवी भागवत पुराण से, कि उसमें ये बताया गया है कि नारद मुनि ने 27 चतुर्युग वेट किया था कृष्ण भगवान से संगीत सीखने के लिए, तब जाकर कृष्ण भगवान ने उनको, अब जैसे कृष्ण भगवान की आठ पत्नियां बताई जाती हैं, आठ पत्नी और कोई नहीं, सारे गामा पाधा नीसा उनको सिखाती हैं नारद मुनि को ये सारी चीज़ें, कि सात स्वर होते हैं, एक ऑक्टेव होता है बड़ा ऊंचा सा और नीचा सा, और उसके बाद कृष्ण भगवान आकर उसमें रस डालते हैं, नौवा जो रस होते हैं, नौ रस वो कृष्ण भगवान समझाते हैं, तब जाके नारद मुनि एक गान योगी बनते हैं। तो सारा म्यूजिक, सारा अक्षर, हर मार्ग, जब मैं आपको कह रही हूँ कि सनातन में हर मार्ग बताया गया है, तो सनातन में हर मार्ग बताया गया है, एवरी थिंग इज राइट देयर, एंड नोबडी इज फोर्सिंग यू टू से कि राम ही बोलो आप, पर आप बोलो तो सही, आप उस पर अपना चित्त जब लगाओगे तो अपने आप ही सब कुछ योग बन जाएगा। कितने ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जहां पर ऐसे भी ऋषि मुनि रहे हैं जो बोल नहीं सकते थे, जिन्होंने बस ऐ करके, कि ही couldn't speak so he saw a pig was running in front of him, और उसके पीछे एक शिकारी लगा हुआ था, तो जैसे ही वो उस शिकारी ने एक एरो उस पिग को मारा होता है तो वो इतना चीखता हुआ भाग रहा होता है, और एक ऋषि थे जो कि बोल नहीं सकते थे, उनको देखकर इतना कष्ट होता है कि वो ऐ ऐ करते हैं कि कोई उसको हेल्प करे उस पिग को, पर जैसे ही वो ऐ ऐ ऐ बोलते हैं तो ऐ इज सपोज टू बी सरस्वती का बीज मंत्र, वो इतनी करुणा इतने भाव से उसको देख कर ऐ ऐ ऐ ऐ बार बार बोलते हैं कि उनकी सरस्वती सिद्ध हो जाती है, ऐसी भी कथाएं हैं। तो शब्द ही शक्ति है, इसी वजह से बोलते हैं कि सोच समझ के बोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस फ्रिक्वेंसी को इस दुनिया ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो और वो तुम पे क्या इम्पैक्ट करेगा।
0: ओके, हालांकि मैंने सोचा था इशिता कि इस शो को हम एज अ स्किल कंटेंट क्रिएशन में लेके जाएंगे, बट यहाँ पर अभी इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू शुरू हो गई है तो आई एम सॉरी बट ये थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, बट मैं इसमें थोड़ा डीप डाइव और करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है फिर यहाँ पर कि आज के इस एरा में, आज के जमाने में 2025 में कथाओं का रेलिवेंस क्या है, क्यों हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में।
1: कथाओं का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हम एक बहुत ही साकार जगत में रह रहे हैं, ठीक है। हम जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, हर कोई योगी मुनि तो पैदा हो नहीं सकता, हर उस कॉन्शियसनेस के साथ भी पैदा नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जाता है। हमें दिखता है हमारे एक माता है, एक पिता है, पिता जो है वो पुरुष दिखते हैं, माता जो है वो स्त्री दिखती है। क्योंकि साकार जगत में आए हैं तो हमें हर चीज़ है ना साकार रूप से समझ में आती है। कि जब हम ये बात करेंगे कि पाँच तत्वों से बनाए, पाँच तत्वों में हम जल को ऐसे नहीं बताएंगे कि एक जल देवता है वो ऐसे ऐसे दिखते हैं वरुण है, हम कि गंगा माता जो तुम बहती हुई देख रहे हो ये जल तत्व है। जैसे ये आसपास की जमीन का पोषण कर रही है वैसे आपके अंदर जल तत्व पोषण करता है। तो हर चीज सिंबॉलिक होना जरूरी है क्योंकि हम ऐसे जगत में जी रहे हैं, ऐसी जीवन को जी रहे हैं जहां पे हर चीज एक फॉर्म के थ्रू हो रही है। कि आपके सामने ये माइक है ये भी एक फॉर्म लिया हुआ है, वरना किसी को भी माइक की जरूरत तो है नहीं बोलने के लिए, बट क्योंकि हमें दूसरों तक पहुंचना है इसलिए हमें फॉर्म की जरूरत है। वैसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है जिससे हम पुरुष से पुरुष बन सके या फिर एक हायर कॉन्शियसनेस पे जा सके, उसके लिए जो एक मीडियम चाहिए वो कथा होती है। चाहे वो रामायण की कथा हो चाहे किसी की भी कथा हो, हर कथा आपको एक छोटा सा हैबिट सिखाएगी, एक छोटा सा ट्रेट सिखाएगी, एक कैरेक्टर सिखाएगी, कैरेक्टरिस्टिक सिखाएगी कि आपको उसे धारण करना चाहिए ताकि आप ऐसे बन सको जिसको आप पूजते हो। एवरी कथा टेक्स यू देयर।
0: ओके, सेम चीज़ काफ़ी हमारे लीडर्स ने भी कही है, जैसे महात्मा गांधी को मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली है, बी द चेंज यू वांट टू सी, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अगर कोई बिगिनर इस टाइम हमें सुन रहा है और उसको इन कथाओं का, शास्त्रों का ज्ञान लेना है, उसको सनातन को समझना है, तो कौन से वो वेद हैं, कौन सी वो किताबें हैं जो आप रेकमेंड करना चाहोगे बिल्कुल बिगिनर को?
1: देखिए, वेद बिगनर को तो नहीं रेकमेंड करेंगे क्योंकि वेद से पहले वेदांग होते हैं। वेदांग क्या होता है, संस्कृत भाषा जो है वो वेदांग में है, व्याकरण में आती है, छंद होते हैं वो वेदांग में होते हैं, एस्ट्रोलॉजी होती है वो वेदांगों का पार्ट होती है, नॉट दी एस्ट्रोलॉजी यू सी ऑन सोशल मीडिया बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट गिव्स यू अ पॉइंट कि किस पर्टिकुलर नक्षत्र में ऐसा क्या फेवरेबल काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी, अब जैसे देखिए अगर एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र बना हुआ है उसी टाइम पे जो योग करण मौसम चल रहा है वो ऐसा है कि बारिश आने वाली है या फिर पूर्णिमा का दिन है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा उफान पे है और हवा चल रही है, आप उसके बीच में एक स्पेसिफिक टाइप का यज्ञ नहीं कर पाओगे क्योंकि हवा चल रही है तो यज्ञ की अग्नि तो बुझने वाली होगी, तो आप कैसे करोगे? तो उस चीजों के लिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोलॉजी को वेदांग का एक पार्ट बताया जाता है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में होगा, एनवायरमेंट में कैसा चेंज हो रहा होगा, तब हम जाके क्या कर सकते हैं जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल हो। तो वेद इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, वेदांग इज द फर्स्ट स्टेप। पहले कहूंगी कि अगर आप एक्चुअल में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो तो पुराणों से शुरू करो क्योंकि वो आपको आपके भगवान के थ्रू लेकर जाते हैं। कि कृष्ण भगवान ने अगर मुख खोला, मुख के अंदर जब वो मिट्टी खा रहे थे और यशोदा माता कहती हैं कि लाला अपना मुंह खोल के दिखा कि तू मिट्टी खा रहा है ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, नहीं नहीं तू खोल के दिखा तू खा रहा है। जैसे ही वो अपना मुख खोलते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड होता है, अनंत ब्रह्मांडों की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी सब कुछ माँ यशोदा उनके मुख में दिखती है। वो कुछ नहीं है, वो वेदों का सिद्धांत है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी पूरे शरीर के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है जो आप अपनी आंखों से बाहर देखते हो। वो लिटरली मतलब कृष्ण भगवान अपना मुख खोल के दिखाते हैं कि मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। तो अगर हम उसे रस में देखें तो ऐसा लगता है कि मम्मी और छोटे से बच्चे की कथा है, पर वो एक बहुत बड़ा योगिक रीजन है। जब कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी वाली स्टोरी तो सबने सुनी है कि वो कारागार में बंद थे, जेल में बंद थे, वो सब रास्ते क्यों खुले? क्योंकि कृष्ण भगवान जो डिफरेंट डिफरेंट योग का प्रतीक है, कहीं पर वो मुरली के थ्रू ज्ञान योग समझा रहे हैं, कभी वो युद्ध स्थली में खड़े होकर कर्म योग समझा रहे हैं, राजयोग समझा रहे हैं, ज्ञान योग समझा रहे हैं, वो सारे योग आपके सारे बंद दरवाजों को खोल देते हैं। दैट वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जन्माष्टमी, कि जैसे ही वो पैदा हुए सारे दरवाजे क्यों खुल गए? क्योंकि जिस दिन आप योग का मार्ग लोगे आपके सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। योग का मार्ग बींग एनी थिंग, किसी शास्त्रों का अध्ययन करो, गाना चूज करो और गाने को अपने आप को समर्पित कर दो, जिस भी चीज़ को आप अपने आप को समर्पित कर दोगे एक पॉजिटिव सेंस में वो आपका योग बन जाता है। पर फॉर बिगिनर्स दे कैन प्रॉब्ली स्टार्ट विद जो भी उनके ईस्ट हो जिनको वो सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो, कुछ जैसे आपने कहा शिव तांडव स्तोत्र, तो आप शिव जी से कर रहे हो तो शिव पुराण का एक बहुत ही ईजी ट्रांसलेशन मिल जाता है, थोड़ी सी कथाएं सुनो, वो अपने आप ही आपको आगे गाइड कर देता है।
0: ओके ठीक है, अब यहाँ पर हम क्योंकि जब कृष्ण भगवान की स्टोरी तक पहुँच गए हैं तो एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा क्योंकि मैं इतने ज्यादा मैंने पुराण और वेद तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ एक आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से मैं चीजों को देखता हूँ दूसरे पर्सपेक्टिव से। तो एक नाटक है अंधा योग, आपने पढ़ा है?
1: नहीं अभी तक तो।
0: ठीक है, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। वो अंधा योग जो नाटक है वो है कौरवों की माँ के पर्सपेक्टिव से।
1: ओके
0: ठीक है, कि जिसके 100 बेटे मर गए युद्ध भूमि में, वो कैसे कहते हैं कृष्ण भगवान है। ठीक है, ये उनका पर्सपेक्टिव था कि तुम चाहते कृष्णा तो इस युद्ध को रोक सकते थे पर तुमने नहीं रोका। दूसरा पर्सपेक्टिव उसमें ये आता है महाभारत में कि जब द्रौपदी की शादी की गई, पहली चीज तो ये कि 5 लड़कों से क्यों की गई, ठीक है, बिना उनसे पूछे। सेकंड उस पे हम आएंगे जब वो जुआ खेला जा रहा था वहां पे, तो उस टाइम पर एक स्त्री को दाव पे लगाना बिना उससे पूछे, ये थोड़ा मेरे समझ के बाहर है चीजें, तो अगर आप चाहें तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं।
1: इसका आंसर है ना एक्चुअली मैं दूसरे तरीके से देना चाहूंगी कि जब आप गीता पढ़ते हो ना उसमें पहला श्लोक जो आता है वो धृतराष्ट्र पूछता है, आखिरी श्लोक जो होता है वो कृष्ण भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो गीता जहाँ पर कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है उसमें धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, तो धृतराष्ट्र यहाँ पे अज्ञान का रिप्रेजेंटेशन होता है कि अज्ञान संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सामने जो तुमको ये कुरुक्षेत्र दिख रहा है जो कि एक धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर पांडवों के पांडु के बेटे और मेरे बेटे जो 100 कौरव हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। दिस इज द फर्स्ट श्लोक। काफी लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र पे धर्म मतलब धर्म जो ये युद्ध हो रहा था इस वजह से उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है, बट जब हम पूरी गीता को पढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि आपका शरीर ही एक क्षेत्र बताया गया है, और जिस दिन आप इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे योग के थ्रू, आसन के थ्रू, आहार के थ्रू, व्यवहार के थ्रू, अलग अलग चीजों से, तो आप क्षेत्रज्ञ बन जाते हो, आप इस शरीर से पार पा लेते हो। तो जब धृतराष्ट्र जो कि अज्ञान का रिप्रेजेंटेशन है वो पूछता है कि ये शरीर जो है ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों है, तो इसमें कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि हम ये कहते हैं कि कृष्ण रोक सकते थे, बट ये सारी कथाएं रिप्रेजेंट तो यही करती है कृष्ण यहाँ पे हायर कॉन्शियसनेस है जो उस मार्ग को चूज करेगा, कृष्ण उसका ही तो उद्धार कर पाएंगे। आज के टाइम में भी मैं तो कह रही हूँ सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें, सभी लोग अपना उद्धार कर दें, बट शिशुपाल का होना जरूरी भी तो है ना कृष्ण को ये समझाने के लिए कि गलती क्या होती है और सही चीज क्या होती है। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ लीला है, उन लोगों ने चूज किया, ऐसा नहीं कि जब आप कह रहे हो कि गांधारी ने इस पूरे जो ये ड्रामा है इसमें ये कहा गया कि जिसके 100 बेटे मरे गए हों उस वो कृष्ण को भगवान कैसे समझे, बट गांधारी के पास बार बार चॉइस थी कि वो अपने बच्चों को भी समझा सकती थी कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको अपनी कुलवधू को निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए, तुमको अपने छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, तुमको अपने बड़े भाई को भी खीर देके नहीं मारना चाहिए, ना उन्हें लाक्षाग्रह में भेज कर वहां पे आग लगा देनी चाहिए। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे अपने बच्चों को रोकने के लिए, बट द थिंग इज कि यहाँ पे हर कोई एक डिफरेंट इनसिक्योरिटी और एक मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं। आज के टाइम में भी रामायण चल रही है, आज भी बारह चल रही है, आज भी रक्त बीज है, आज भी काली है, सब कुछ यहीं पर है, बस आपको आंखें खोल के देखनी है। जस्ट बिकॉज इट्स इन द पास्ट डजंट मीन कि वो पास्ट में ही रह जाएगा, आज भी है। 100 कौरवों जैसी मानसिकता वाले लोग आज भी जी रहे हैं हमारे बीच में, बस ये बात है कि हम थोड़े से फियर में है, डर में है कि हम मंदिर में जाके वेट कर रहे हैं कि मूर्ति में से कृष्ण प्रकट होंगे पर अपने अंदर से कृष्ण प्रकट नहीं कर पा रहे हम।
0: ओके, सो इट्स ऑलवेज द चॉइस,
1: इट्स ऑलवेज द चॉइस कि आपके आप अगर क्षेत्र हो तो आपके क्षेत्र के अंदर एक धर्म क्षेत्र है जहाँ पे पांडु के पुत्र लड़ रहे हैं, एक कुरुक्षेत्र है जहाँ पे कौरवों के पुत्र लड़ रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि वो धर्म क्षेत्र जीतेगा या फिर कुरुक्षेत्र जीतेगा। आपके अंदर की अच्छाई जीतेगी, कुमति सुमति आपके अंदर की अच्छाई जीतेगी या बुराई जीतेगी।
0: ओके, इसको काफी मुझे लगता है काफी सारे स्क्रिप्चर्स में और काफी सारी बुक्स में भी इसको रिप्रेजेंट किया है कि टू शैडोज ऑफ यू, टू साइड्स ऑफ यू, जो आपस में कांस्टेंट फाइट चल रही होती है, जो दिल और दिमाग की लड़ाई भी बोला जाता है इसको। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं यहाँ पर, कथाओं के बारे में भी बात करी है, वैल्यूज के बारे में भी बात करी है, और देखिए इन सारी बातों का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आप एक सुकून भरा जीवन, एक शांत मन कैसे कर सकते हैं। इन सारी कहानियों का, कथाओं का, स्क्रिप्चर्स का, वेदों का, पुराणों का इतना ही पर्पस है, और इसको दूसरे वे में आप देखें तो आप थेरेपी के लिए जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहां पर जाकर भी वही चीज हमें मिल रही है। सो इट्स ऑल अबाउट कि कौन सा रास्ता आप चूज कर रहे हैं, क्या वे आप देख रहे हैं, कैसे आपका चित्त शांत होगा, कैसे आपका मन शांत होगा। अब इसी के साथ बात करेंगे। इसी तरह कॉन्टेंट क्रिएशन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा।
1: जी,
0: एक तो मुझे ये बताइए कि आपने कॉन्टेंट क्रिएशन में स्पिरिचुअलिटी क्यों चूज किया, आपको क्यों लगा कि ये मुझे बनाना है और ये कन्वे करना है?
1: नहीं, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चूज किया और मैं चाहती थी कि दूसरे लोग, क्योंकि माय जर्नी स्टार्टेड विद नो गुरु, आई हैड टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स जो कि एक डायरेक्शनलेस और मिसगाइडेड इंसान को झेलना पड़ता है। तो मेरा पूरा जर्नी ऐसे रहा था, जब मैंने अपनी साधना शुरू करी, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग शुरू किया, काफ़ी चीज़ों में अटकी रहती थी, दिनों दिनों अटकी रहती थी, कोई खता समझ में नहीं आती थी तो पीछे पड़ जाती थी कि भगवान एक बार बता दो प्लीज़, बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से बंधी रहती हूँ, मुझे जानना होता है कि हर चीज़ के पीछे का क्यों क्यों है, क्योंकि उसके पीछे क्यों है, एवरीथिंग हैज़ एन आंसर। तो जब मैंने ये सारे चीज़ें अध्ययन करना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे और भी लोग होंगे जिनको अभी उनके गुरु नहीं मिले हैं, जो कि मिसगाइडेड फील करते हैं, जो कि ऐसा फील करते हैं कि उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, शायद से वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो इसी वजह से मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में उतरी थी ताकि मैं उन लोगों को रीच आउट कर सकूं जो कि मेरे जैसा फील करते हैं, जो कि जानना चाहते हैं, क्योंकि पुराणों में भी अगर आप देखोगे जितनी भी कथाएं हैं उनको ओवर टाइम, क्योंकि संस्कृत से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो उस ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं उसके पीछे का तत्व गायब हो गया। उसको ऐसे प्रेजेंट किया गया क्योंकि जो ट्रांसलेट कर रहा था उसका भी थोड़ा सा विचार उसमें आया ही आया जब वो ट्रांसलेट कर रहा था। कुछ चीज़ें ऐसे प्रेजेंट करी गई कि भगवान का चरित्र ही एक बड़े अजीब से वे में दिखता है, क्वेश्चनेबल वे में दिखता है, पर उसके पीछे क्वेश्चन नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बस वो शब्दों को ऐसे लिखा गया इसलिए हमें लगता है कि वो गलत है। तो मैं उसके पीछे का तत्व, उसके पीछे की साफ जो इमेज है वो लोगों तक लाना चाहती थी। मेरे को आनंद आता था बहुत ज़्यादा कथा पढ़ने में, तो मैं बस उन चार पांच लोगों से वो शेयर करना चाहती थी जिनको मेरे जैसा आनंद आता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड।
0: नाउ फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कॉन्टेंट क्रिएशन करना है, मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्योंकि अभी मोर देन 1 लाख पीपल आर एसोसिएटेड विद यू इन योर कम्युनिटी ऑफ इंस्टाग्राम, आप अच्छी तरीके से गाइड कर सकती हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि हम एक एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर अपनी जर्नी सक्सेसफुल बना सकते हैं।
1: सबसे पहले आज के टाइम में जब आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, AI है, सब कुछ है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत बहुत ईजीली कंप्यूटर को ये फीड कर सकते हो कि मुझे 5 रील बना के दे दो जो कि सनातन के वैदिक ज्ञान पे मतलब खरी उतरती हैं, बट एक्चुअल में कंटेंट तभी चलता है जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हो। AI कभी भी आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा, AI आपको असिस्ट कर सकता है आपके काम में। तो पहली बात तो कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड का हो, क्रिएटिव फील्ड का हो, कुछ भी हो, उसमें आप ही वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि आप खुद में एक क्रिएटर हो। आप जब एक be it a man, be it a woman, when you are made, not made, but आपकी संरचना कुछ ऐसी है कि आप किसी को जीवन दे सकते हो, तो आप भी एक क्रिएटर ही कहलाओगे और उस क्रिएशन को आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, एक इंसान के रूप में कर सकते हो, एक गाने के रूप में कर सकते हो, किसी आर्ट के थ्रू कर सकते हो, कुछ भी, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। तो क्रिएटर कहलाने के लिए आपको बस AI को फीड नहीं करना होता, आपको अपने अंदर से कुछ पैदा करना पड़ता है। तो जब तक आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तब तक आप कुछ अपना पैदा कर पा रहे हो, तब तक वो चलेगा ही चलेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप देखो ना, हर दूसरा बंदा कुछ भी कर रहा है उठ के, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द सैडेस्ट थिंग इज कि पीपल पिक अप देयर फोन टू सर्च समथिंग बट दे फॉरगेट कि हम सर्च कर क्या रहे थे। दे रैंडमली सर्च फॉर थिंग, मतलब जो उनको सर्च करना था वो तो वो भूल ही जाते हैं, रैंडमली देखने लगते हैं। इंटरनेट कब ऐसा बन गया कि हमें जो जानना है उसको छोड़कर, हमें जो नहीं जानना चाहिए हम बस माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहते, हम कुछ भी देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या हमारे काम का है? नहीं, एंटरटेनमेंट प्रोबेबली, बट देर आर अदर मीन्स टू बी एंटरटेन्ड और एटलीस्ट ट्राई। तो ये है कि अपने अंदर से जब तक कुछ पैदा नहीं करोगे तब तक वो कभी नहीं चलने वाला। 10 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, उसके बाद वो ठप होगा ही होगा।
0: ओके, तो इशिता कह रही है यहाँ पर कि बी ऑथेंटिक, जो आपके अंदर से आ रहा है वो निकालिए।
1: बी द क्रिएटर यू वर मेंट टू बी।
0: जो आपको देखना है, इसका बहुत सिंपल सा जवाब ये भी हो सकता है कि जो आप देखना चाहते हो वो आप बनाना शुरू कर दीजिए, जो आपको पसंद है, और बी ऑथेंटिक, जैसा इशिता ने बताया, और ये खुद बहुत ऑथेंटिक हैं, मतलब इनका आप कंटेंट देखेंगे तो यही बातें जो यहाँ पर ये कर रही हैं वैसी ही रियल लाइफ में है और वैसी ही अपने रियल लाइफ में भी है। ऑलराइट, अब इसके साथ इशिता एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारी वॉइसेज हैं जो उठती हैं इंस्टाग्राम पर, कॉन्टेंट बनाते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आपको उसको स्क्रूटिनाइज करना हो तो आप क्या वहां पर देखती हो कि क्या प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ, कि क्यों ये गायब हो गए अचानक से?
1: देखिए, कंसिस्टेंसी हर जगह चाहिए ही चाहिए होती है, बट द थिंग इज कि आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन चाहे किसी भी फील्ड का हो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसे भगवान कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो वो फल की चिंता के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आई वुड से कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो ऐसा मत समझो कि यही आपका एक सोर्स बनेगा, आप स्टार्टिंग करो अपने किसी काम के साथ उसको करने की, धीरे धीरे वो ग्रो करे तब उसको एक मेन इनकम का सोर्स मान के अपने जो ऑलरेडी प्राइमरी इनकम का सोर्स था उसको तब बंद करो। बट हम क्या करते हैं कि उसका चल रहा है, उसने ये चार क्वेश्चन पूछे हैं, उससे बेहतर तो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम अपना पॉडकास्ट खोलेंगे, फिर वो चलता नहीं है, फिर वो डिस्पोंडेंट हो जाते हैं, फिर इतना ज्यादा मेंटल इशू हो जाता है कि मतलब पूछे मत। तो आई वुड से कि स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़िए। अगर आप क्रिएटर हो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पर 24 घंटे कभी कभार फील होते हैं कि कम होते हैं, बट सही है, काम हो जाता है। आप अपने काम के साथ उसको बैलेंस करते हुए धीरे धीरे उसमें उतरिए, वैल्यू प्रोवाइड करिए, आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे।
0: जी, सो कुल मिलाकर बात अगेन वही घूम फिर के आती है, बी ऑथेंटिक फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग हारिए मत, ठीक है, बेबी स्टेप्स लीजिए, बड़ी छलांग मत लगाइए, बड़ा जंप मत करिए, सिर्फ अगले कदम का सोचेंगे तो शायद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर सोच लेंगे भैया 1 किलोमीटर बाद क्या होगा तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर शायद आप अगला कदम भी ना रख पाए। इसी तरह मेरा अगला सवाल रहेगा, चक्रास होते हैं हमारे शरीर में, थोड़ा सा बताइए कैसे कैसे काम करते हैं चक्रास, और अगर इनका डिसबैलेंस अगर ये हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। एंड मेरे लिए बहुत नई है ये दुनिया कि शरीर के अंदर इस ढांचे के अंदर क्या है मुझे नहीं पता है, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो हाउ डज इट वर्क, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है चक्रास के बारे में।
1: चक्र बेसिकली एक एनर्जी का समूह समझो अपने अंदर, एनर्जी जैसे कि कभी खत्म नहीं करी जा सकती, हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है, तो वो एक एनर्जी है आपके अंदर जो कि अलग अलग रूप से आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में विहार करती है। एक एनर्जी जो है वो अगर अच्छी तरीके से चल नहीं रही है तो आपको हर दूसरी चीज़ पे एंशियसनेस होती है, थोड़ा सा फियर लगा रहता है, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, थोड़ा सा मूलाधार रिलेटेड होता है। सबसे पहला चक्र नीचे से शुरू करते हैं हम, क्योंकि पहला चक्र भेद कर ही ऊपर जाया जा सकता है, जैसे कि अग्नि होती है, अग्नि स्वतः ही नीचे से ऊपर जाती है, लाइक ग्रेविटेशन को डिफाई करती हुई नीचे से ऊपर जाती है ना, वो हमें एक सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं, ऑब्वियसली देयर इज साइंस बिहाइंड इट, बट जैसे वो सब चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही है, बट अग्नि जो है वो नीचे से ऊपर आ रही है, वैसी एनर्जी जो है हमारे अंदर वो नीचे से ऊपर जाती है। तो हम जब भी चक्रों की बात करते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सबसे नीचे सेटल्ड एनर्जी है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, हमारे अंदर की शक्ति, वो ऊपर उठती हुई अपने शिव से मिले। शिव मतलब हमारे सर के ऊपर शिव बताए जाते हैं, एक शिवमय लोक बताया जाता है जहाँ पे वो शक्ति अपने शिव से जाके मिल जाती है और एक हो जाती है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट उसको छोटे में ऐसे समझाया जा सकता है कि आपके अंदर एक ताले होते हैं, 7 ताले समझिए, उनकी की को धीरे धीरे करके पाना होता है, और जब जब वो ताले खुलते चले जाते हैं तो आप पुरुषोत्तम बनते जाते हो, जो आपको कृष्ण समझा रहे हैं ना कि अर्जुन युद्ध करो, मेरे पास आओ, मेरे पास ऑलरेडी ये सारा जो लोग हैं आसपास तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब मेरे मुख में जा रहे हैं, तुम युद्ध करो या ना करो, ये सब मेरे मुख में जाएंगे, मेरे उदर में जाएंगे, मेरे पेट में जाएंगे, पर तुम्हें कर्म करना इम्पॉर्टेंट है, राइट? वैसे ही ये 7 चक्र जो होते हैं वो आपको एक नई कॉन्शियसनेस की, आपके कॉन्शियसनेस में एक फ्लेवर सा ऐड करते चले जाते हैं, जैसे कि आप क्या हो। आप अगर जैसे एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी किसी के पॉडकास्ट पे कि ही सेड कि अगर आप क्रिएटर बनने के लिए पैदा हुए हो, बट अगर आप कुछ क्रिएट नहीं करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में उस चीज़ को निकालने लगते हो, और वो सिर्फ सेक्सुअल सेंस में नहीं होती। नहीं नहीं, देयर वाज एन एस्ट्रोलॉजर,
0: नहीं, ओशो ने ये बात बोली थी।
1: अच्छा,
0: कि अगर
1: okay.
0: आप कुछ क्रिएशन में नहीं हो, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी क्रिएशन,
1: हो सकता है कि ही वाज कोटिंग हिम,
0: सेक्सुअली एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव,
1: तो वो भी एक टाइप का डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि आप सारे पाथ जो होते हैं आपको एक अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ले जाने चाहिए, बट अगर आपको पाथ ही बाइंड कर रहा है तो वो पाथ किस काम का हुआ, क्योंकि वो तो बाइंड करके बैठा हुआ है आपको, एंड द अल्टीमेट थिंग इज टू बी बाउंडलेस। कोई सीमा होनी ही नहीं चाहिए आपके लिए, तो वो जो चाबी है वो लगती चली जाती है, ताले खुलते चले जाते हैं और आपकी को जो कॉन्शियसनेस है उसमें एक फ्लेवर ऐड होता जाता है, सबसे पहला फियर का। तो जैसे ही वो चाबी लगेगी आपको भय होना बंद हो जाएगा। जब आप आंखें बंद करते हो तो जब कोई साधना में बैठा होता है, जब स्टार्टिंग होती है ना किसी की बहुत एमेच्योर लेवल पे, वो कहते हैं जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो आसपास कोई दिखता है, एंड मजाक की बात नहीं है, इट्स जस्ट कि आपके अंदर का भय है क्योंकि आपने कभी उस अंधकार के साथ दोस्ती नहीं करी है। जब आप उसके साथ दोस्ती करते हो वो भय मिट जाता है कि कोई साइड में हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें यहाँ पर फोकस करना है। तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ आपका मूलाधार जो सबसे पहला चक्र होता है। उसके बाद स्वाधिष्ठान होता है, स्वाधिष्ठान इज वेर यू रिसाइड, स्व का जहाँ पे आसन होता है वही स्वाधिष्ठान होता है। स्व कि आप क्या हो, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपके सेक्सुअल परस्यूट्स क्या हैं, सब चीज़ें क्या हैं, उस चीज़ को अलाइन करता है स्वाधिष्ठान, और वहाँ पर आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली कौन हो, तब जाकर आपका सेल्फ सशक्त होता है ताकि वो कुंडलिनी राइज कर सके। बहुत सारे वो हैं, जैसे विशुद्ध है, विशुद्ध इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपके थ्रोट में होता है, जब तक आप यहाँ पर जो फील कर रहे हो। विशुद्ध के नीचे अनाहत आता है, अनाहत आपका हार्ट चक्र होता है, आपको जब भी थोड़ी सी एंजाइटी होती है यहाँ पे घबराहट होती है ना छाती में, दैट इज अनाहत बीइंग ब्लॉक्ड। अनाहत खुलेगा तो वो जो एंशियसनेस है वो थोड़ी सी क्लियर आउट होनी शुरू होगी, और इसी वजह से जब अनाहत खुलता है उसके बाद जब विशुद्ध खुलेगा तो आपके इमोशंस आपके थ्रोट के थ्रू एक्चुअल में बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा फील करोगे ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको फील होगा आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके सबसे पहले गले में दर्द होने लग जाता है।
0: एक सेकंड, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को प्रोसेस करना है पहली चीज। दूसरी चीज, अनाहत आपने एक चक्र बोला है जो हमें एंजाइटी होती है, बट इशिता ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की,
1: तो तभी तो आपको जो देखो
0: तो अगर... आप कह रही हूँ अनाहत इज कॉमनली गेटिंग ब्लॉक्ड,
1: सब चीजें बंद है इस समय, हम चूज करते हैं ना जब कॉन्शियसली कि हम इस पे काम करना चाहते हैं, तब हम धीरे धीरे एक्सेल करते हैं। जैसे कि हमने कोई स्किल, इसको एक स्किल की तरह देखते हैं, हमें कोई स्किल एक्वायर करनी है तो हम एक दिन में तो नहीं कर लेंगे, दो दिन में नहीं कर लेंगे, सालों लगते हैं हमें स्किल एक्वायर करने में, धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते चले जाते हैं। वैसे ही सब चीज़ें ब्लॉक्ड हैं यहाँ पे, किसी का अनाहत पैदा होते ही खुला हुआ नहीं है, किसी का मूलाधार खुला नहीं है, इट्स अ जर्नी। तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो वो जो इमोशंस है, एंजाइटी क्या है, आपके इमोशंस जो है वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। जब आप उसको एक्सप्रेशन करना सीखोगे, जब अंदर करुणा मिलेगी, जब एम्पैथी इतनी जागृत हो जाएगी कि वो आपको भी संभाल सके और सामने वाले को भी संभाल सके, अनाहत अपने आप शुरू हो जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अनाहत, उसके साथ भी बहुत सारे वो होते हैं, त्रिदोष होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट अभी हम चक्रों तक सीमित रहते हैं। तो अनाहत के लिए बीज मंत्र बताए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक राग बताए जाते हैं जो कि आपको उस तरीके से काम डाउन करते हैं कि आपको जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील होती है जिसकी वजह से एंशियसनेस हो रही है आपको, वो थोड़ी सी काम डाउन होनी शुरू हो, और जब आपको वो थोड़ी सी स्थिर होती हुई नज़र आती है तब आप इजिली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। इसलिए नेक्स्ट चक्र जो होता है वो एक्सप्रेशन का होता है। उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं आँखों के ऊपर जहाँ पर भगवान की तीसरी आँख दिखाई जाती है, वो थर्ड आई का चक्र होता है। That is basically enlightenment का जो नॉलेज होता है जो कि हर चीज़ का डिफरेंस मिटा देता है। देखो दो आँखों के ऊपर एक आँख है, तो जैसे दो आँखों से दुनिया जो है वो द्वैत में बटी हुई है, उसको एक कर देता है थर्ड आई। तो इट्स बेसिकली यू इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन बींग। चक्र कोई जादू नहीं है, इट्स एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन, एक पुरुष जो कि पुरुषोत्तम बन सकता है। और वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक लिटरली एक कॉन्वर्जेशन में इसको बाइंड करना बहुत गलत होगा इस टॉपिक के लिए।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे को एक ओवरव्यू चाहिए था फ्रॉम यू स्पेशली, क्योंकि काफी कम ऐसे लोग हैं जिनके जिनसे हम मिलते हैं और जो इस तरीके के संवाद हमारे साथ कर सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया चक्रास का कॉन्सेप्ट। बहरहाल दोस्तों, एक और सवाल यहाँ पर उठता है, क्या ये सच है जिस तरीके से बताया जाता है कि कुत्ते को चावल खिला दो या आटा खिला दो या भैंस को ये डाल दो उसको वो डाल दो, क्या ये काम करता है, या बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे को पीला कपड़ा पहन लो, डज इट रियली वर्क, लाइक हाउ इज इट गोइंग ऑन, आज के एरा में भी चल रहा है? आप
1: देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला ना, कुमति सुमति सबके ओर रही। एक मनुष्य बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है। एक मनुष्य एक देवता भी बन सकता है और एक असुर भी बन सकता है, सिर्फ उसके मन की वजह से। अगर वो मन पे अंकुश धारण कर लेता है, जैसे हमारी 11 इंद्रियां बताई जाती हैं, 10 तो आपको दिखता है, हाथ है, पैर है, हर चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 सेंसेस एंड द 5 तन्मात्राएं जिसके साथ वो लगता है, ज्ञान इंद्रिया। तो उसके ऊपर एक 11वीं इंद्रिय होती है जो आपका मन होता है। जिस दिन आप मन पे अंकुश कर लोगे उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो असुर की श्रेणी में चले जाते रहोगे, जाते रहोगे, क्योंकि भोग करते रहोगे, कभी आपकी शांति नहीं मिलेगी आपको।
0: कंज्यूम
1: करते रहोगे, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहोगे, चाहे वो कोई गलत आदत हो, चाहे वो अहंकार हो, ईगो हो, कुछ भी हो, आप कंज्यूम करते रहोगे क्योंकि मन पे काबू नहीं है। आपको मन करेगा कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल एक सिगरेट पीनी है तो पीनी है, चलती रही है। सबको पता है कि वो आपके लिए गलत है, पर क्या आप अपने मन के ऊपर अंकुश रख पा रहे हो कि आपको नहीं पीनी, दैट इज द पॉइंट, समझ गए? तो
0: चॉइस अगेन,
1: एग्जैक्टली। तो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया, उनको बहुत अच्छे से पता था कि एक मनुष्य अगर अपने मन पे अंकुश नहीं रखेगा तो क्या हो सकता है पॉसिबली। तो उसको एक मर्यादा में, एक दायरे में बांधने के लिए हर चीज को किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएट किया गया कि अगर तुम नवग्रह देखो, ऊपर देखो, वो तारा टिमटिमा रहा है, वो है ना जुपिटर है, वो मून है, मून तो सबको दिख ही रहा है, तो मून को एसोसिएट कर दो एक रैंडम चीज के साथ, और इस दिन जो कि सोमवार है, सोम का दिन, मून का दिन है, अगर उस चीज को सोमवार के दिन आप ये दोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। इट्स जस्ट यू बीइंग टाइड अप इन अ मैकेनिज्म ताकि आप अपने मन के ऊपर अंकुश रख सको। पर वो इसी वजह से, क्योंकि जब तक आप इस प्रकृति को खुश नहीं रखोगे आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ये प्रकृति आपकी सबसे बड़ी गुरु होती है। विष्णु भगवान ने एक रूप रखा था दत्तात्रेय भगवान का, जहां पे वो प्रकृति के 24 पदार्थों को अपना गुरु बनाते हैं। उनका कोई एक्चुअल गुरु नहीं था, उन्होंने कबूतर को, सांप को, पेड़ को, इन सबको अपना गुरु बनाया था, क्योंकि यही प्रकृति, जब आप जनरली, आई थिंक आई सॉ योर डीपी, यू वर विद अ डॉग, राइट? एक कुत्ते को हेल्प करके, स्पेशली अगर उसका एक्सीडेंट हुआ हो, जब आप उसे उठाकर उसको एक जीवन देने का प्रयास करते हो, तो आपके अंदर वो जो सर्ज आता है ना, वही वो शक्ति है। उसी शक्ति को कभी कभार वो शक्ति इतना ओवरवेल्म कर देती है कि आप खुद ही बिखर जाते हो। वो डॉग तो बेचारा अपने आप को संभाल रहा होता है उस ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे, पर आप भी बिखर जाते हो वहाँ पे, क्योंकि वो शक्ति थोड़ी सी अलाइन नहीं है। पर अगर आप उसको और अच्छे से चैनलाइज करोगे तो आप उसकी नहीं 100 और कुत्तों की हेल्प कर पाओगे, राइट? तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है। जब आप एक डॉग के साथ रहते हो, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न अपनाते हो, कैट के साथ अलग, बिकॉज आई हैव बीन विद अ कैट एंड अ डॉग, आई हैव अ डॉग, तो मुझे पता है कि वो आपके अंदर की इंस्टिंक्ट्स को कैसे जागृत करते हैं। पेड़ों को पानी देकर, ये तो साइंटिफिक रिसर्च है कि पेड़ को जब आप उगता हुआ देखते हो तो आपके अंदर की डोपामिन और सेरोटोनिन कितने बढ़िया तरीके से राइज करते हैं। तो वो प्रकृति एक जीवन का फॉर्म है, आप खुद जीवन हो, आप तो अंदर से बंद पड़े हो, आप अपने अंदर तो देख ही नहीं रहे, इससे अच्छा बाहरी प्रकृति को देख लो, जीवन को देख लो। तो इस वजह से हर चीज को इस तरीके से बांधा गया ताकि मन को समझाया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। पर वो मन भी, अब मन तो मन है, कहीं सीमाओं से ना बन के रहना पड़े तो उसको ही अंधविश्वास बना लिया, अब वो पता नहीं क्या ही बन चुका है और एक अजीब ही असुर बन चुका है वो अंधविश्वास।
0: हाँ, एक नई मार्केट आ गई है जहाँ पर डर, अंधविश्वास, इन सब चीजों को इनकैश किया जा रहा है। कोई आपकी कुंडली बता दे रहा है, सिर्फ एक फोन कॉल करो और आपको बता दिया जाएगा कि आप आज रात को एक काम करिए, पीपल के पेड़ पे आप जाकर कलावा बांध के आ जाइए, एंड सो ऑन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहरहाल, कुत्ते की अगर बात करें तो मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जो मेरे घर में डॉग है, वो मैं रात को जिम से आ रहा था वर्कआउट करके, और वो सड़क पर बैठा हुआ था, ठीक है, बहुत छोटा सा बेबी था, शायद वो 15-20 दिन का रहा होगा, एकदम कुपोषित, रात को 12 बजे का टाइम, हाईवे पर, रोड पर भटक गया है, व्हीकल्स जा रहे हैं, मैं नहीं छोड़ सकता हूं ऐसे। मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं उसको इग्नोर करके चला जाऊं। मैं उसको गोद में उठाया, मैं बैठा, मैं पहले बहुत ढूंढा उसकी माँ दिख जाए या कोई और दिख जाए, बट रोड पे नहीं छोड़ के जा सकता, तो मैं उसको लेके बैठा रहा। मेरे घर में मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि मेरे घर वाले गुस्सा करेंगे अगर मैं उसको घर ले गया तो। अब मैं एक, आप कह सकते हो, धर्म संकट में फंस गया कि मैं क्या करूं इस बच्चे का, मैं उसको घर लेकर के जाऊं या इसको यहां छोड़ कर जाऊं, या तो नहीं छोड़ूंगा, ये मर जाएगा, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। Somehow I took that risk, मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा रात भर रख लेते हैं, सुबह देख लेंगे, कुछ होगा तो छोड़ेंगे। बट उसको मैं अपने घर में लाया, फिर उसने घर को गंदा करना शुरू किया। पहले 4-5 दिन तो घर वालों ने बहुत गालियां दी मुझे, क्या कर रहा है ये, गंद मचा रखा है इसमें, सारी चीजें काट देता है, कहीं भी कुछ भी कर देता है, एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर मैंने जादू देखा अपने घर में, जो मेरे पिता का वात्सल्य रस मैंने कभी नहीं देखा था.
1: राइट.
0: मेरे पिता का पहली बार मैंने वात्सल्य रस देखा. कि एक बच्चा उनकी जिम्मेदारी बन गया है. उसके रेबीज के इंजेक्शन लगवाना, उसको बाहर लेकर जाना, उसको रेगुलर यू नो टेक केयर करना. मेरी मम्मी का बेस्ट फ्रेंड बन गया वो. ठीक है, उनको पता है मुझे जाना है, मुझे सोना है, क्योंकि कब्बू वेट कर रहा होगा. ठीक है, वो सोता नहीं है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है. और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरी माँ की ओवर थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो गई.
1: बिल्कुल.
0: तो एक जीव बेसिकली हुआ क्या वहां पर, वो ट्रिगर पॉइंट था. वो प्यार, वो वात्सल्य मेरे पिताजी के अंदर ही था. बस उसने ट्रिगर कर दिया, जागृत कर दिया.
1: एग्जैक्टली.
0: एंड देयर्स अ होल स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस. तो ये एक चीज मैंने देखी, जादू देखा मैंने. तो ये प्रकृति जादुई है, हकीकत में है. और इसके बहुत सारे और एग्जांपल मैंने देखे. जैसे एक बार एक मधुमक्खी थी, छत्ता था, तो वो किसी जगह पर बिस्तर था, मैंने हाथ मारा, वो उड़ गई. फिर थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, जस्ट टू सी कि वो वापस आते हैं नहीं आते. वो वापस आए वहीं पर, वहीं पर आकर सेटल डाउन हो गए. फिर हमने वहां से खाट हटा दी. फिर वो आए, हमें खाया नहीं क्योंकि हमने कोई एक्शन नहीं लिया. सो दैट वाज द मैजिक. ये मदर नेचर बहुत मैजिकल है, बहुत जादू है. सही मायने
1: यही प्रकृति जो आप बाहर दिखते हो, यही यथापिंड तथा ब्रह्मांड में आपके अंदर होती है. यही सूर्य चंद्रमा आपके अंदर भी काम कर रहे होते हैं. आप भी उसी पौधे की तरह बड़े हो रहे हो जिस पौधे को आप अपने सामने देखते हो.

0: बस यही है कि जब वो चीज जागृत होगी तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि मैं और ये पौधा या फिर इस कुत्ते में या बिल्ली में कोई अंतर नहीं है। और जिस दिन रियलाइज कर लोगे उस दिन भगवान को करुणामयी कहा जाता है। जब आप अपने अंदर ही एम्पैथी इतनी जागृत कर लोगे कि आप सबको अपने सामान्य देख रहे हो तो फिर क्या बचे, भगवान बन जाओगे, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद इशिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। दोस्तों यहाँ पर अपने शो को हमें कंक्लूड करना होगा, हालांकि मेरा मन नहीं भरा है अभी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैं इस शो को कई घंटों तक कर सकता हूँ बट क्योंकि समय की एक सीमा है तो मैं कोशिश करूँगा फिर एक बार हम यहाँ पर इशिता को बुलाएं। कोई भी ऐसी चीज़ इशिता जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप अपने मन में लेकर आई हूँ या आप कहना चाहती हूँ, प्लीज़ फील फ्री।
0: नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ एक ये चीज़ है कि हम सबको अपने वीडियोस के एंड में एक बात बोलते हैं कि मे द शक्ति बी विद यू। हम कभी कभार ये बात रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम ईश्वर का अंश हैं, हमारे अंदर भी वो शक्ति है, पर वो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम खुद सोए हुए हैं तो उस शक्ति को तो क्या ही जागृत करेंगे या फिर देख क्या पाएंगे। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कोई भी मार्ग पकड़ो, संगीत का मार्ग पकड़ो, कला का मार्ग लो, योग का मार्ग लो, कुछ भी लो, बस ट्राई टू चैनलाइज दैट एनर्जी दैट रिसाइड्स इन यू, तो फिर आपको ब्रह्मा बनने में या राम बनने में या कृष्ण बनने से कोई रोक नहीं सकता।
1: बी अ पार्ट ऑफ क्रिएशन,
0: या तो उस प्रकृति से एक हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं हो तो कुत्तों की सेवा करो, बिल्लियों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, इतने सारे जीव जंतु हैं उन सबकी सेवा करो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सिखा देगा और कुछ ना कुछ जागृत हो ही जाएगा।
1: सो वंडरफुल, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है आज दोस्तों, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब कंटेंट क्रिएशन की जो बात हुई है वो तो हुई है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखी हैं। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी बात हुई है, वेद वेदांग इन सब की बात हुई है। बस इतना कहूँगा कि अपने मन में ठहराव लेकर आइए, बहुत ज़रूरी है आज के इस एरा में। अब इसी नोट पर इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। उम्मीद कर रहा हूँ आज के शो से कुछ मूल्य आप लोगों को दे पाए, हालांकि जो हम सोच कर बैठे थे हम बहुत सारे टॉपिक से भटके, हम इधर उधर गए, बट वो ज़रूरी थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ उस तरफ जा रही थी, प्रवाह उस तरफ जा रहा था तो हम उस तरफ लेकर गए। आप बताइए आपका क्या ठीक है इसके ऊपर 8010078107 पर। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, खुशहाल हैं। और मैं अपना बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हमारा मुसाफिर हूँ यारो, ये बहुत ही खास है बहुत सारे लोगों के लिए। और इस बात का पता हमें चलता है जब आप लोगों के फीडबैक हमारे पास आते हैं, आपके मैसेजेस हमारे पास आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं। तो अगर आप नए लिसनर हैं या फिर आपको कुछ कहना है या कोई फीडबैक हम तक पहुंचाना है, तो 8010781078 इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम है मुसाफिर हूँ यारो, ये पूरा ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दुनिया बोर हो चुकी है और दुनिया को जरूरत है ट्रैवलिंग की। अब देखिए, हर इंसान ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उस जगह को महसूस तो कर सकता है ना, उस जगह के बारे में जान तो सकता है, इतना भी काफी होता है। तो यही बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को जाना होता है, जो लोग ट्रैवलिंग करने के लिए निकलने वाले होते हैं या फिर प्लान कर रहे होते हैं, उनको भी काफी हेल्प मिल जाती है। तो चलेंगे दोस्तों, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपने एक लिसनर का मैं फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका नाम है मिस्टर अजय देशवाल, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं और ये अभी लास्ट टू लास्ट वीक मसूरी गए थे घूमने, और वहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इन्हें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी और ये काफी परेशान हुए। इनके साथ जो लोग थे वो भी परेशान हुए। दरअसल ये जा रहे थे और इनकी गाड़ी के सडनली दोनों टायर पंचर हो गए आगे वाले। अब गाड़ी में स्टेपनी तो एक ही होती है, और वो जो जगह थी वो पूरी जंगल थी, वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने स्टेपनी निकालकर एक टायर तो चेंज कर लिया, लेकिन दूसरे टायर का क्या करें? अगर गाड़ी ऐसे चलाएं पंचर हालत में, तो उसके बाद तो आपका जो गाड़ी का रिम या अलॉय होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन्हें इंतजार ही करना पड़ा। इन्होंने बहुत सारे लोगों का वेट किया, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, पूरा सुनसान रास्ता था वो। हालांकि लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब भी किसी से हेल्प मांगी तो लोग वहाँ से इन्हें इग्नोर करके निकल गए। हाँ, देख तो सब रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन रुका कोई नहीं। ये एक बात थोड़ी सी गलती है यार, क्योंकि देखिए, आप ट्रैवलिंग करें कुछ भी करें, बात ये है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इसमें मैं कोई पाप या पुण्य वाला एंगल नहीं डाल रहा हूँ, बट सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सब ऐसे हो जाएंगे, सपोज आपको किसी की हेल्प की जरूरत है और मैं वहां पर पहुंच जाऊं, या फिर मुझे कभी किसी की हेल्प की जरूरत है, या फिर कोई वहां पर पहुंच जाए, तो आप सोचकर देखिए ना, रिश्ते कितने प्यारे बन जाएंगे दुनिया में, और कितना प्यारा एक दुनिया का माहौल बन जाएगा, कितना पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए यार, जब भी आप कहीं पर भी जाएं, अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा दिखाई देता है जिसको हेल्प की जरूरत है, या फिर कोई खड़ा है आपको लग रहा है कि परेशान है, तो एक बार आप रुक कर पूछ लीजिए। हो सकता है यार आपका इतना पूछना भरी उसके लिए बहुत हो जाए। तो ये एक बात है जो ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जब भी किसी को जरूरत पड़े, अगर आप वहां पर पहुंच सके तो प्लीज पहुंच जाइए, या फिर आप निकल रहे हैं और कोई इंसान आपको लग रहा है कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो रुककर आप उसका हाल भी पूछ लेंगे ना। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो वो भी काफी है, बट प्लीज ये इनिशिएटिव्स हमें खुद लेने पड़ेंगे। क्योंकि किसी बहुत महान राइटर का एक कोट है कि आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव अपने अंदर ले आइए, अगर वो बदलाव आपके अंदर आ जाएगा तो दुनिया वैसी बन जाएगी। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया एक पीसफुल जगह बने, दुनिया एक पॉजिटिव जगह बने, जहाँ किसी को शिकायत ना हो लोगों से, और वहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले हो, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना होगा और हमें खुद लोगों की हेल्प करनी होगी। तो अभी इसी एक रिक्वेस्ट के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि इंसानियत को हम बढ़ावा देंगे अभी, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने सफर की, और आपको बताते हैं कि आज हम कहां पर जाने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं आपके साथ क्विज खेलता हूँ, कई बार मैं आपको ये मौका देता हूँ गेस करने का, लेकिन जगहें इतनी प्यारी प्यारी हैं, पर अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इन जगहों के बारे में सुना ही नहीं। तो इसके लिए हम कोई क्विज नहीं खेलने वाले हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ। आज हम चलने वाले हैं थेनवाला। थेनवाला का बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, और सुना भी होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने विजिट किया होगा, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। लेकिन ट्रस्ट मी यार, जगह वर्थ है, आपको लगेगा कि यार किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं आप, इतनी कमाल की जगह है। तो थेनवाला मौजूद है केरला में, और वाकई में ये एक प्राइड डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंडिया की। ये कोल्लम सिटी से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बहुत कमाल कमाल की चीजें आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको यहाँ पर तीन तीन हिल रेंजेस देखने को मिलती है, त्रिवंद्रम, कोल्लम और पथनमथिट्टा। एंड वाकई में जब आप यहाँ पहुंचेंगे और पहली बार आप केरला जाएंगे, तो सच में आपको ऐसा लगने वाला है कि आप किसी कहानियों की दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ आपको नेचर, शांति, साफ सुथरे रोड, मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहता है यार वहां पहुंचने के बाद। तो ब्यूटी तो उसकी एक तरफ है ही, इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिया का जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का टिम्बर मिलता है वो यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी के टिम्बर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं और यहीं से सप्लाई भी किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की हनी यानी शहद भी मिल जाएगा। और थेन वालों को अगर आप वाकई में ट्रांसलेट करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज में तो आपको पता चलेगा हनी हिल नाम से ये फेमस है। और देखिए किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता है जी, क्योंकि जो लोग भाई एडवेंचर से प्यार करते हैं, जो थ्रिल सीकर्स हैं, उनको भी काफी मजा आने वाला है। क्योंकि एक तो फॉरेस्ट एरिया है, ऊपर से यहाँ पर ऊंची ऊंची माउंटेन की पीक्स है जो आपको वाकई में फैसिनेट करने वाली है। तो देखिए एक बहुत कमाल का पैकेज मिल रहा है आपको, बहुत सही जगह है जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि आज हम थेन माला चलने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि थेन माला पहुंचा कैसे जाए। तो देखिए अगर आप बाय रोड जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये वेल कनेक्टेड है लगभग सारी जो मेजर सिटीज है वहां पर उनसे। आप अगर कोल्लम, त्रिवेंद्रम, पनलूर और भी किसी फेमस डेस्टिनेशन से ट्रेवल कर रहे हैं तो या तो आप वहां के रेगुलर एक स्टेट रन जो प्राइवेट बसेस मिलती है या फिर गवर्नमेंट बसेस भी मिलती है वो आपको मिल सकती है वहां रोड पर। इसके अलावा लोकल कैब्स और टैक्सीज का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और यहां से अगर आप अपनी गाड़ी पर जाते हैं तो वहां से भी आप पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। इसके लिए आपको कोल्लम जाना होगा, कोल्लम से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह मौजूद है। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन आपके लिए है वो है ट्रेन का। तो देखिए जी थेनमाला पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा कोल्लम शनकोट्टा ट्रेन रूट का। और यहाँ पर उतरने के बाद आप वहाँ पर कैब ले सकते हैं, वहाँ की लोकल बसेस का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए आपको कोल्लम स्टेशन पर उतर कर वहाँ से आपको कोई कैब करनी होगी। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है आपके लिए वो है बाय एयर, यानी आप फ्लाइट से अगर जाना पसंद करते हैं तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप उतर सकते हैं जो

0: किस टाइम पर जाना चाहिए, क्या सही सीजन है आपके लिए?
1: तो देखिए, अगर आप दिसंबर टू फरवरी जाते हैं तो आपकी जो मॉर्निंग ड्यूज है, जो मौसम में आपको क्रिस्पीनेस मिलने वाली है और जो बाहर का ओवरऑल आपको मिस्टी आउटलुक मिलने वाला है, वो विंटर्स में मिलने वाला है और वो बहुत कमाल रहने वाला है। और सही बताऊं, वो इतना कमाल रहने वाला है कि वो आपको वाकई में इस जगह से प्यार करवा देगा। इसके अलावा अगर आप इन महीनों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर गॉर्जियस इको टूरिज्म डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर काफी नीचे गिर चुका होता है। और ऐसा कहा जाता है, जो लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ जाते रहते हैं या फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो खुद यही सलाह देते हैं कि विंटर्स आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है जब आप यहाँ पर विजिट करना चाहिए। इसके अलावा बात अगर समर की जाए, मार्च टू मई, तो देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। 39 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है समर्स में, तो ये भी आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन तभी जब आप हाई टेम्परेचर झेल पाए, जब आपको आदत हो इतना हाई टेम्परेचर झेलने की और टेम्परेचर का राइज जो है आप इग्नोर कर सकें, तो प्लीज तभी आप समर्स का प्लान बनाइएगा। इसके अलावा गर्मियों में आपके यहाँ पर मौसम बहुत खुला हुआ और बहुत साफ दिखाई देगा, ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है साइट सीइंग के लिए। तो अगर आपको आदत है हाई टेम्परेचर में आप सर्वाइव कर सकते हैं तो आप जाइए, क्योंकि गर्मियां भी आपके लिए सही साबित होने वाली है। और नेचर के बीच में यार आप कभी भी चले जाओ, आपको अच्छा ही महसूस होगा। और तीसरा जी, बात करते हैं मॉनसून की, जून टू सितंबर, इसका भी मैं कहूंगा कि गुड है। लेकिन हाँ, तभी जब आप इग्नोर कर पाए वो हैवी रेनफॉल्स और चारों तरफ आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे, तो अगर आप वो इग्नोर कर सकते हैं तभी आप मॉनसून में वहां जाइए। बट मॉनसून का यार अपना अलग ही मजा है, यहाँ पर आपको एक काफी फ्रेश लुक मिल जाता है हर तरफ देखने को, आपको नेचर का बेस्ट वर्जन मिलता है, क्योंकि काफी धुला हुआ और काफी साफ आपको नेचर दिखाई देगा, काफी साफ सुथरी रोड्स आपको दिखाई देंगी, आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने रीपेंट कर दिया है। लेकिन हाँ, हर मौसम की अपनी एक कमी है, अपनी एक खूबी है, तो ये आप डिसाइड करिएगा आपके लिए कब सुटेबल होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको विंटर्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबली बेस्ट टाइम हो सकता है आपके लिए। पहली जो जगह मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है पलारुवी फॉल्स। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो है स्ट्रीम ऑफ मिल्क। अब आप समझ गए होंगे, दूध की धारा। तो ये वाकई में एक वंडरफुल वाटरफॉल है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कंट्री में यानी पूरे इंडिया में ये 32nd नंबर पर आता है अपनी हाइट की वजह से। हाईएस्ट वाटरफॉल 32nd नंबर का आप इंडिया में पलारुवी फॉल्स को पाएंगे। लगभग 300 फीट की हाइट पर ये मौजूद है और लगभग 18 किलोमीटर जो है आपको दूर पड़ेगा इको टूरिज्म टाउन से। लेकिन जगह बहुत कमाल की है, बहुत सारा पीस आपको मिलने वाला है यहाँ पर। अब दूसरी जो जगह है इसको मैं नाम दूंगा एडवेंचर जोन। ये उन लोगों के लिए मक्का के बराबर है जो एडवेंचर सीकर्स होते हैं, जिनको थेनमाला में जाकर एडवेंचरस एक्टिविटीज करना पसंद है, जिनको थ्रिल्स पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी पंपिंग एक्टिविटीज मिल जाती हैं जो आपको वाकई में मोटिवेट करती हैं अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, जैसे कि एलिवेटेड वॉकवेज, जैसे कि रैपलिंग, और भी ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगर आप थ्रिल लवर हैं, अगर आप एडवेंचर लवर हैं, तो आपको कतई ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए। तो एडवेंचर जोन आपको जरूर जाना चाहिए। और तीसरी जो जगह है वो उन लोगों के लिए है जिनको मदर नेचर से कनेक्ट करने में बहुत मजा आता है, यानी कि थोड़े स्पिरिचुअल लोग, और ये जगह है लेजर जोन। ये स्पेशली है ही उन लोगों के लिए जिनको मदर नेचर से रिकनेक्ट करने में मजा आता है, क्योंकि ये जगह है जो आपको काफी काम करती है, आपको काफी शांत करती है, काफी ठहराव देती है। खासतौर पर कुछ लोग होंगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे या जिनको थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ जीनी पसंद होगी, तो वो यहाँ पर जरूर जाए, क्योंकि यहाँ पर जाकर सच में आपको बहुत सारा सुकून मिलने वाला है। देखिए, सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता है, सफर में आगे और भी बहुत कुछ है। जैसे कि हमारी अगली जगह, इसका नाम है म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन। हालांकि ये आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगा, कई शहरों में देखने को मिल जाता है, लेकिन यार जब आप गए हैं और आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं तो यहाँ पर नेचर के बीच में इस जगह को एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक मजा है। आप यहाँ पर जाएंगे शाम को और शाम को आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे कलर्स और म्यूजिक होगा और वो फाउंटेन आपको अलग अलग करतब दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपको ओपन एयर डांसिंग फाउंटेन दिखाई देगा और वाकई में म्यूजिक के और लाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, उसके बाद जो फील आता है वो तो यार अलग ही लेवल है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके साथ छोटे बच्चे गए हैं तो उनके लिए है अगली जगह, उसका नाम है चिल्ड्रंस पार्क। अब भाई बच्चों के लिए बनी है तो बच्चों को तो बहुत अट्रैक्ट करने वाली है, और ये पूरी पूरी जगह जो है बच्चों को ही डेडिकेट की गई है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर बच्चे अपना दिन बिता सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं और अपने जैसे बहुत सारे नटखट बच्चों के साथ वहाँ पर दोस्ती कर सकते हैं। क्योंकि यार हम जाते हैं, हम अपने पसंद के हिसाब से अपनी चीजें चूज तो कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह तो चुन लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या, उनको भी फन चाहिए ना।

पर बहुत सारा फन उनको मिलने वाला है। यहाँ पर उनको बहुत सारे स्विंग, जिगजैग राइड्स, बहुत सारे स्लाइड्स और भी बहुत सी चीजें मिलने वाली है। तो जो भी जूनियर चैंपियन आपके साथ जाने वाला है वो डेफिनेटली बहुत मजे करने वाला है, क्योंकि सच में ये जगह बहुत प्यारी है। और इसी के साथ जो अगली जगह है उसका नाम है नक्षत्र वनम। दोस्तों ये जो गार्डन है बहुत खास है उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 27 बर्थ स्टार्स होते हैं उनके 27 ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और वो 27 ट्रीज जो है आपके उन सारे बर्थ स्टार्स को सिम्बलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं यार उन 27 पेड़ों को, मतलब बहुत खास, बहुत अमेजिंग होते हैं। एंड आप यहाँ पर जाएंगे ना तो आप देखेंगे लोग उन पेड़ों की पूजा भी करते हैं। तो देखिए बात तो ये है कि वो पेड़ चाहे हमारे बर्थ से जुड़े हो या ना हो, या फिर उनका कोई और लाभ हो या ना हो, पर इतना तो पक्का है ना कि वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो पेड़ों को तो यार वैसे भी हमें पूजनीय ही मानना चाहिए हमेशा हर जगह, लेकिन पता नहीं लोग क्यों उन्हें काटने पर लग जाते हैं। खैर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, यही हमारा फ्यूचर है। तो अगली जो जगह है इसका नाम है कुलाथुपुज़ा। ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है तेनमारा से, लेकिन एक अपने आप में एक अलग ही छोटा सा पैकेज आपको मिलने वाला है। एक तो यहाँ पर आपको बहुत प्यारे से नजारे मिलने वाले हैं नेचर के, और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मंदिर भी मौजूद है जिसका नाम है सास्ता टेम्पल। यहाँ पर लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, और अगर आप यहाँ गए हैं अप्रैल टू मई के बीच में तो आप वाकई में मजा करने वाले हैं, क्योंकि इस टेम्पल में एक फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको विष्णु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली वो कल्चर, वो रिचुअल्स, वो सब एक्सपीरियंस करने वाले हैं जिनके लिए हम सब लोग बाहर जाते हैं। यस तो याद रखिएगा कुलाथुपुज़ा। इसके अलावा जो अगली जगह है इसका नाम है अय्यप्पा टेम्पल, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है वहाँ का जो केरला में मौजूद है अय्यप्पा टेम्पल। इसको श्री धर्मा सस्ता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और लॉर्ड अय्यप्पा टेम्पल के नाम से भी। ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो भगवान है जिनकी पूजा की जाती है उनका नाम है तिरु, आपने शायद पहली बार सुना होगा। तो ये जो है एक टीनेजर के उम्र के लगभग भगवान बनाए हुए, और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी जाता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाती है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफर तेनमाला का। अभी वक्त हुआ है सफर को यहाँ खत्म करने का, लेकिन जब भी आप कहीं पर भी जाएं प्लीज देख कर जाएं कि वहाँ पर जो भी गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो कर रहे हैं, इतना इंश्योर करके जाएं और अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक नया सफर। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम है सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो, और इस टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमशना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे शो में, जो बेस है ट्रैवलिंग के ऊपर, जहाँ पर बात होती है घूमने फिरने की, जिसका अक्सर हमें मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका दोस्त आपको पूरी आजादी देता है कि आप सभी मुसाफिर बन जाए। तो चलिए साथ मिलकर मुसाफिर बनते हैं और थोड़ी सी आवारगी कर लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारे देश में क्या कुछ है जो हमें और एक्सप्लोर करना है, यानी कि हिडन जेम्स। ऐसी बहुत सी जगहें हैं, ये मैं कई बार प्रूव कर चुका हूं, और आज भी मैं ऐसी एक जगह के सफर पर आपको लेकर जाने वाला हूं जो बहुत अमेजिंग है, बहुत लाजवाब है, और जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूं आज हम कहां पर चलने वाले हैं। देखिए, जगह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा हम चलने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश। अब जब भी बात हिल स्टेशंस की होती है, बात नेचर के बीच में जाने की होती है, बात उस सन्नाटे को महसूस करने की होती है, तो हम अक्सर हिमालयस की तरफ भागते हैं या फिर हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसका हमने नाम सुना है। बट अरुणाचल प्रदेश हमारी लिस्ट में बहुत कम आ पाता है, और जो लोग वाकई में वांडरलस्ट हैं वो उस जगह को जानते हैं और वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, जाते हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में। तो मैं आपको अरुणाचल प्रदेश की एक बात बताऊं, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, एंड इसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा खासा टाइम और स्पेस मिलता है अपने साथ बिताने का। तो अरुणाचल प्रदेश वाकई में बहुत ही लाजवाब एक स्टेट है। आज तो मैं एक ही डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा, बट उसके बाद बहुत सी जगह है, पूरा का पूरा स्टेट है आपके पास जिसको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत से रीजंस हैं, लाइक लिटरली आपको लगेगा कि धरती में जन्नत है जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही अमेजिंग आपको हरियाली मिलती है और बहुत ही लाजवाब बर्फीले पहाड़ मिलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज जब आपको लेने हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस तो जरूर सुना होगा आपने स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस। उसका मतलब होता है जब पिन भी एक गिरती है तो वो आवाज करे, वो हमें सुनाई दे। वो आपने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? नहीं। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वाकई में आप इस जगह के दीवाने हो जाएंगे जब आप यहाँ पर जाएंगे। रीजन मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन कम है, लोग बहुत कम है, क्राउड बहुत कम पहुंच पाता है, बट एरिया बहुत बड़ा है। इसके अलावा लोग इतने फ्रेंडली हैं, क्योंकि उसका वही लॉजिक आने वाला है कि पॉपुलेशन कम है, लोग कम पहुंच पाते हैं, तो जितने भी लोग उनके पास पहुंचते हैं उनसे उन्हें प्यार हो जाता है। और डेफिनेटली आप वहां पर जाएंगे और वहां से वापस आएंगे तो उन सभी लोगों को, उन तमाम लोगों को आप मिस करने वाले हैं यहां पर आकर। देन आपका एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपका बदलने वाला है। लाइक हिमालयस को आपने कई बार देख लिया होगा शायद, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जाने के बाद जो हिमालयस के व्यूज आपको मिलने वाले हैं ना, उसके बाद आप वापस आएंगे और दोबारा आप हिमालय जाएंगे या हिमाचल प्रदेश में या फिर कहीं पर भी, तो आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा का पूरा बदल चुका होगा। ये मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बात करी हमने अरुणाचल प्रदेश की, मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ है, मतलब जगह ही नहीं बताई, बट ये बताया कि आपका ओवरऑल फील कैसा रहने वाला है उस स्टेट में जाकर। लाइक होता है ना, पंजाब जाएंगे तो ये फील रहेगा, हरियाणा जाएंगे तो ये रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां पर ढेर सारा पीस और सुकून आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जगह कौन सी है जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं जीरो। इसको जायरो के नाम से भी लोग जानते हैं, जीरो के नाम से भी लोग जानते हैं। ये मैं कहूंगा उन लोगों के लिए जन्नत साबित हो सकती है जिनको वाकई में पीस चाहिए, और बिल्कुल वो पिन ड्रॉप साइलेंस वो अगर चाहिए तो डेफिनेटली ये जगह आपको कंसीडर करनी चाहिए। ये एक ओल्ड टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जाकर आपको हिस्टोरिक चीजें देखने को मिलने वाली है, यानी कि अगर आपको जानना है पुराने जमाने का अरुणाचल प्रदेश कैसा था, अलग अलग स्टेट्स का जो हम टेस्ट जायका जो हम लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको एक बहुत ही पुराना ट्राइब है अपाटाणी, उस ट्राइब को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ये उन सभी का, ये उस ट्राइब का गढ़ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं, और हो सकता है कि आप जो चावल खा रहे हैं माइट बी वो चावल अरुणाचल प्रदेश के जीरो से आया हो। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस जीरो या जायरो के खेतों की तरफ। क्लाइमेट की अगर बात करें तो पूरे साल ये जो है थोड़ा माइल्ड रहता है, मतलब ये कंफर्टेबल है आपके लिए, आप पूरा साल में कभी भी जाएंगे आप इजीली इसको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब टाइम आप जो है स्पेंड करके आने वाले हैं। एंड ये जगह सबसे ज्यादा उन लोगों को भाने वाली है जो लोग कहते हैं ना कि हाँ हमें ट्रू इंडिया देखना है, हमें देखना है कि वाकई में एक्सप्लोर करने के बाद क्या कुछ निकल के आता है, मतलब क्या वाकई में वो गहराई है जो विदेशों से लोग आते हैं वीजा लगवा कर और जो पूरा का पूरा साल यहाँ पर इंडिया को एक्सप्लोर करने में गुजारते हैं, क्या वर्थ इट है? डेफिनेटली वर्थ इट है। बट उसके लिए आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लाइक हर बार हमें हिल स्टेशन के नाम पर हिमाचल प्रदेश नहीं जाना है, हमें कहीं और भी चले जाना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये जगह जिसका नाम है जीरो। तो आज हम निकले हैं जीरो या फिर जायरो के सफर पे, और पहली जगह जो मैं इसमें आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है किले पाखो। किले यहाँ पर खेतों को बोलते हैं और एग्जैक्टली वहां भी कुछ ऐसा ही मीनिंग होगा इसका, बट ये जगह जो है ये इसी एक टर्म को जो है डिफाइन करती है। किले यानी कि खुली खुली जगह है, खुले खुले फील्ड्स, वो आपको वहां पर जाकर विटनेस करने को मिलने वाले हैं। और यहाँ की अमेजिंग बात पता है क्या है, लाइक आप यहाँ पर कहीं किसी गांव में जाएंगे, खेतों के बीच में हरियाली जो आप देखकर इम्प्रेस होने वाले हैं, वहां पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको खेत ही नजर आएंगे। लेकिन बात अगर किले पाखो की करूं तो यहाँ पर एक तरफ आपको खेत नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको बर्फीले पहाड़ नजर आएंगे, ऐसा कुछ यहाँ का व्यू रहने वाला है। प्रॉपर यहाँ पर चावलों की जो है खेती की जाती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको देखकर आपके साथ फोटो खिंचवाने आ जाएंगे, मतलब यू विल फील लाइक अ सेलिब्रिटी। डेफिनेटली ये होने वाला है क्योंकि आप निकले हैं अरुणाचल प्रदेश में जीरो के सफर पर, जहां पर बहुत कम टूरिस्ट पहुंच पाते हैं। सो अगेन वही कंडीशन है, अगर आप वांडरलस्ट हैं और आपको नेचर को एक्सप्लोर करना है तो आपको इस जगह को कंसीडर करना चाहिए। ये जगह वैसे बता दूं आपको अटमोस्ट पीस आपको मिलने वाला है, अगर आपको डेफिनेटली वो कल्चर एक्सप्लोर करना है प्लस आपको पीस चाहिए प्लस आपको नेचर चाहिए तो आपको ये जगह कंसीडर करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है बहुत से जानवर जो रेयर स्पीशीज है उनको आप यहां पर स्पॉट कर ले, क्योंकि देखिए खुला एरिया है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इवन यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खुला एरिया है, आसपास जंगल है, आसपास पहाड़ है, तो हो सकता है ऐसे कुछ आपके पास आ जाए। बट डेफिनेटली कुछ कुछ नहीं, बहुत से ऐसे मूवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं जिनको आप कैप्चर करके अपने साथ लाना पसंद करेंगे। तो जाइएगा जीरो। जीरो में पहली जगह जो मैंने आपको बताई वो है किले पाखो, याद रखिएगा। अगली जगह जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो है टेली वैली। सॉरी मजाक कर रहा हूं, टेली वैली ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम इसका टेली है और एक अच्छे खासे एरिया में फैली हुई है, लाइक 337 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैली हुई है और बहुत बड़ी एक सेंचुरी है जहां पर आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलने वाले हैं। लाइक आपको चाहे वनस्पति देखनी है, पेड़ पौधे देखने हैं या फिर आपको जानवर देखने हैं, एनिमल्स देखने हैं, आपको जो भी देखना है, जो भी आपको रेयर स्पीशीज देखना है जो वहां के हैं, मतलब हर एरिया वाइज होते हैं, लाइक कुछ स्पीशीज आपको बर्फ में मिलेंगे, कुछ स्पीशीज आपको बिल्कुल रेगिस्तान में मिलेंगे, सो यहां पर आपको अलग तरह के स्पीशीज जो है देखने को मिलने वाले हैं, जो अगेन मैं कहूंगा रेयर है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एरिया वाइज होते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं क्लाउडेड लियोपर्ड्स, जो सबसे ज्यादा स्पॉट करने को हमें यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा वनस्पति की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे पेड़ हैं जैसे कि सिल्वर फायर ट्री है, जैसे कि फर्न्स है, ऑर्किड्स है, बैम्बू है, तो ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके के पेड़ भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जो रेयर है एंड फोटोज उनकी बहुत लाजवाब आती है। ये मैंने आपको एक प्रो टिप दिया था कि जाकर आप उन्हें कैप्चर कर ले, तो जाइए और जाकर कैप्चर करिए टैली वैली। एंड एक चीज आपके साथ बाय डिफॉल्ट चल रही है, हर जगह पर चल रही है, वो है पीस, क्योंकि आप नेचर के बीच में हैं और नेचर का वो वर्जन जहां पर क्राउड नहीं है, बहुत लिमिटेड क्राउड है और वहां के लोकल लोग हैं जो वो आपको सेलिब्रिटी वाला फील देने वाले हैं। तो मुसाफिर हुई यार, जहां पर हम जीरो के सफर पर आज निकले हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ और बहुत कुछ हम अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है टेरेन फिश फार्म। ये एक पैडी कल्टीवेशन अगर आपको देखना है तो ये वहां का मैं ये भी बता दूं कि मेजर ऑक्यूपेशन है। लाइक आपको देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है वहां के वो यही सब करते हैं एंड वो काफी खुश है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको जाकर लगेगा शायद कि यहां तो यार इतनी टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है, मॉल्स बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, मतलब लोगों के पास ना वो अप टू डेट रहने का, ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो करने का, बट यहां पर यही जो सब चीजें लोग करते हैं उनसे वो काफी सेटिस्फाइड है, काफी खुश है। पैडी फील्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया चावल यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में उगाया जाता है और चावल को यहाँ पर दो तरीके से उगाया जाता है, यानी कि अब दो वैरायटीज हैं जिनसे चावल को उगाया जाता है और दो तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक एक होता है कि मछली पानी में होती है, समथिंग लाइक दिस, एंड सेकेंड आपको जाकर खुद एक्सपीरियंस करना होगा। बट यहाँ पर सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि यहाँ पर कॉफी प्लांटेशन भी किया जाता है, चावल उग रहे हैं उसके पास ही कॉफी प्लांटेशन, तो मेजरली आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहने वाला है वो रहने वाला है कि यहाँ नेचर के बीच में बहुत सारा आपको फार्मिंग वाला पार्ट जो है देखने को मिलेगा। आप जाकर देखेंगे नई तरीके से फार्मिंग कैसे की जाती है और वहां के लोग हैं जो कैसे सर्वाइवल करते हैं एंड वो खुश हैं। ठीक है उनके घर में नहीं पहुंच पाएंगे शायद मंचूरियन, ठीक है उनके घर में शायद डेली नहीं पहुंच पाएंगे मैकडी के बर्गर्स, ठीक है शायद उनके घर में डेली नहीं पहुंच पाएंगे पिज्जा वाले, बट वो खुश है जो भी वो बना रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक हमें जो हम कहीं बाहर जाते हैं किसी कल्चर को देखते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वहां के लोगों के पास जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो क्या है। एंड ये भी आप पाएंगे कि वहां के लोग जो है कम बीमार होते हैं, उसका रीजन अगेन ये है कि वो लोग सेटिस्फाइड है काफी। सो इस एक फैक्टर को याद रखिए। और दोस्तों देखिए बहुत हो गई नेचर की बातें, बहुत सी शांत जगहें मैंने आपको बताई, अभी थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं। तो चलेंगे आपको जीरो में ही एक एडवेंचरस चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर बेसिकली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और जहां पर आप ट्रैकिंग करेंगे वो है डोलोमेंडो, वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है जीरो का। जो लोग जाते हैं, लोग तो क्या वही लोग जाते हैं जो जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट उनके लिए बहुत अमेजिंग अट्रैक्शन है ये जगह। इसका नाम है डोलोमेंडो। यहां पर हमें ट्रैकिंग करने का ऑप्शन मिलता है एंड ट्रैकिंग प्रॉपर ट्रैकिंग है वहां पर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रो लेवल के लोगों के लिए ही है, बट हाँ अच्छा खासा एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रॉपर ट्रैक करने का। एंड जब आप वहां पर हिलॉक पर पहुंचेंगे, जब उस हिल टॉप पर आप पहुंचेंगे तो आपको एक तो हपोली टाउन देखने को मिलेगा, एक आपको ओल्ड जीरो वहां पर देखने को मिलेगा। मतलब जीरो एक तो खुद एक पुराना टाउन है, उसके अलावा वहां पर भी पुराने टाउन में एक और पुराना टाउन है, तो वो आपको वहां पर जाकर देखने को मिलेगा। ये वेस्टर्न साइड ऑफ जीरो पर मौजूद है और ये आपको मिलने वाला है एक्सेस करने को डेपोरिजो रोड पर। इसके अलावा जब आप यहां पर खड़े होंगे तो आप बर्ड आई व्यू से जो नजारा ले रहे होंगे ना, जो आपकी आंखों के रास्ते होते हुए सुकून आपके दिल तक पहुंचेगा और आपके दिल से आपकी जो हैप्पीनेस है, चेहरे पर स्माइल जो आने वाली है, मतलब मुझे तो अभी से मजा आ रहा है। तो जाइएगा और आकर मुझे भी आप बता सकते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जैसा कि हिंट मिल चुका है, बहुत पुरानी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, तो चलिए उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। और अगर वहां पर आपको लेकर चले तो जगह का नाम है मेघना केव टेम्पल। देखिए एक मंदिर है, एक आम सा मंदिर है, लेकिन आम मंदिर की खास बात यह है कि ये 5000 साल पुराना है और 3000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। तो दो USPs हैं जो इस जगह पर जाने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं। ये मंदिर जो है भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। ऑल्दो 10 मिनट का आपका रास्ता लगने वाला है, 10 मिनट के आपके एफर्ट्स लगने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली इंक्लाइंड वे में आप चढ़ रहे होंगे स्टेयर्स को, बट वो 10 मिनट के बाद जो आप 5000 साल पुराना स्ट्रक्चर वहां पर देखेंगे वो आपके लिए चेरी ऑन द टॉप होने वाला है। वो आपके 10 मिनट वाले एफर्ट्स को वसूलने वाला है। सो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक केव है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए और याद रखिएगा 5000 साल पुरानी आप एक इमारत जो है वो देख रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिल ही रहा है। मतलब जो मैंने बता दिया 5000 साल पुराना, तो वो सब चीजें आज भी यहाँ पर हैं। यहाँ के त्रिशूल आपको काफी अलग देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि यूजुअली अब ऐसे नहीं होते हैं, बट आप 5000 साल पहले की अगर बात हो रही है तो हम कन्विंस हो जाएंगे। इसके अलावा पाइन ग्रोव एक और जगह है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, जीरो में ही मौजूद है, एक मजेदार पिकनिक स्पॉट। यानी कि फैमिली के साथ गए हैं, बच्चों के साथ गए हैं, नेचर के बीच में बैठना है, सो ये जगह आप कंसीडर कर सकते हैं। इस जगह को नाम दिया गया है पाइन ग्रोव। और यही सब वो चीजें थी जो जीरो में मुझे आपको बतानी थी या एक्सप्लोर करवानी थी। और अब मेरा वक्त हो चला है शो को यहां पर खत्म करने का। दोस्तों मुझे उम्मीद है शो आपको पसंद आया एंड मैं हर बार यही कोशिश करता हूं कि वो सभी अंडररेटेड जगहें आपके लिए लेकर आऊं जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। सो प्लीज जाइए, इंडिया को एक्सप्लोर करिए, इंडिया को जरूरत है आपके दर्शन की। तो जाइए, जाकर एक्सप्लोर करिए और मुझे भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूं दोस्तों, आप मजा लेते रहिए ऐसी मजेदार शोज का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर एक नया शो। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: खैनी, गुटका, जर्दा, पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
3: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
5: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, लेकर आ चुका हूं प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। दोस्तों, हमारा शो जो बहुत ही स्पेशल बन जाता है कई पैमानों में अगर देखा जाए तो, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगता है कि भारत को जो हम बोलते हैं, अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं अपने देश को, और हम ये बोलते हैं वी आर सेल्फ रिलायंट नाउ। तो हम हुए कैसे हैं सेल्फ रिलायंट, किन किन लोगों का योगदान रहा है, कौन कौन सी वो चीजें रही है जो हमें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता है, इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट होता है जो पूरे देश ने अपने अपने एंड पर हर एक इंसान ने दिया है। अब इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में यहां पर हम डिस्कस करते हैं। दूसरा फैक्टर जो आपको कंसीडर करना चाहिए, दैट इज की प्रोसेस। अब देखिए, जब भी आप कोई चीज अगर करना चाहते हैं या कुछ आपको बड़ा अचीव करना है, तो ऐसे में आपके दिमाग में ख्याल तो बहुत सारे होते हैं, सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो जो प्रोसेस होता है वो मिसिंग होता है। ऐसे में प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाए, प्रोसेस के बारे में अगर आप जान पाते हैं, तो आप और बेहतर तरीके से चल सकते हैं उस एक रास्ते पर, और अच्छे से अपने सपने को आप अचीव कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपको उन लोगों के बारे में पता लगता है जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी या कुछ प्रोडक्ट्स बनाए या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में सोचा, अपनी लाइफ पूरी जो है डेडिकेट करी उन सब चीजों को। सो दैट्स हाउ ये शो बहुत ही खास बन जाता है कई पैमानों में, और इसी उद्देश्य के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा आपको हम एजुकेट करेंगे। ये एक एजुकेशनल सीरीज के तौर पे काम करता है हमारे लिए। नाउ विद दिस नोट, फिलहाल आप मेरा सलाम कबूल करिए, इत्मीनान से बैठिए, फिर एक बार लेकर आया हूं एक और केस स्टडी, अच्छे से समझेंगे क्या इश्यूज हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी है, कौन है फाउंडर्स, बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीजें आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। आज की इंडस्ट्री, अगेन हम बात करने वाले हैं एग्रीटेक की। एग्रीटेक यानी कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इनको मिलाकर एक टर्म निकल के आती है, दैट इज एग्रीटेक। लेकिन आज की जो कंपनी है वो एग्रीटेक में भी थोड़ी सी अलग है, और वो है इनका पर्पस जो इनको थोड़ा सा अलग बनाता है, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन फूड वेस्टेज इश्यू। ये कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उस एक चीज को हम मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, और फूड वेस्टेज अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे सामने, लिटरली आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आज हम सबसे पहले ना इंडस्ट्री की बात करेंगे ना कंपनी की बात करेंगे, हम बात करेंगे इस एक पर्टिकुलर इश्यू की जो लिटरली मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है पूरे भारत में। आपने देखा होगा बहुत जगह पर खाना वेस्ट होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि खाना खराब हो जाता है, फसलें खराब हो जाती है, सप्लाई चेन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको फिक्स करना एक टास्क होता है। सेकंड टास्क होता है जो खाना ऑलरेडी बन चुका है वो जो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है ना जो बिना खाए सो रहे हैं, उन तक अगर उस खाने को पहुंचा दिया जाए, दैट्स अनदर थिंग। बट आज की जो कंपनी है हमारी, उसमें हम इस एक मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू एग्रीटेक, बट हाँ ये कंसर्न है। तो अगर एग्जैक्टली बात करें कि फूड वेस्टेज इंडिया में क्यों एक इतना बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, दैट्स बिकॉज इन एफिशियंट सप्लाई चेन सिस्टम। इसको समझना बहुत जरूरी है, कुछ की फैक्ट्स हाईलाइट हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप फूड वेस्टेज को समझ पाएंगे और उसका इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर क्या पड़ रहा है उसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज, हाई परसेंटेज ऑफ वेस्टेज। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की माने तो लगभग 40% खाना जो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है वो वेस्ट होता है। 40%, और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि हम पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ये एक वर्ग बन जाता है कि कितनी सारी फार्मिंग यहाँ पर की जाती है, कितने सारे लोग हैं जो आज भी फार्मिंग करते हैं, उसमें से 40% खाना बर्बाद हो रहा है। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। पूरे इंडिया को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर। सो बहुत बड़ा इशू है 40% खाने का बर्बाद होना, क्योंकि अगर समहाउ इस एक प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाए या इस खाने को बर्बाद होने से बचा लिया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना मिल जाएगा और वो भूखे नहीं सोएंगे। सेकंड जो आपको की फैक्ट पता होना चाहिए फूड वेस्टेज के बारे में, दैट इज इकोनॉमिक लॉस। देखिए एक तरफ है खाना बर्बाद हो रहा है, दैट्स वन थिंग, उसकी वजह से ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं और अगर उस खाने को उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो वो लोग भूखे नहीं सोएंगे, उनका पेट भर जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस लगभग 92,000 करोड़ रुपए का जो है लॉस हमें झेलना पड़ता है फूड वेस्टेज की वजह से। 92,000 करोड़ एनुअली, इतना पैसा मतलब मॉनेटरी टर्म में आप देखेंगे तो इतना नुकसान हमारा हो रहा है। और ये पूरा का पूरा जो नुकसान है ये इफेक्ट करता है फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को एंड ओवरऑल इकोनॉमी को। दिस इज अनदर ग्लिच। देन उसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सब हो पा रहा है, दैट सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम इस तरह के सेंसिटिव चीजों को यहां पर एड्रेस कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है एक तो लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। बहुत जगह पर कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। कोल्ड स्टोरेज यानी कि अगर फसल कहीं पर गई है तो वो खराब ना हो इसके पहले उसको स्टोर कर दिया जाए, उस एक स्टोरेज सिस्टम को कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है। देन उसके बाद आता है इन एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन, जो आप कह सकते हो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है टू फूड वेस्टेज, जिसकी वजह से लगभग 30% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन की वजह से अफेक्ट होते हैं, इसलिए वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई चेन को फिक्स करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज इश्यू, जिसके बारे में अभी हमने बात करी लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से समझे तो हाँ, शॉर्टफॉल है कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी की। मतलब कंट्री की रिक्वायरमेंट है अबाउट 61 मिलियन टन्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज, बट हमारे पास जो करंट कैपेसिटी है वो है जस्ट 32 मिलियन टन्स। सोचिए ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए तब जाकर इस एक इश्यू को फिक्स कर सकते हैं। और इस गैप की वजह से जो है बहुत सारा खाना कंज्यूमर तक पहुंचने के पहले ही खराब हो जाता है, दैट्स अनदर पार्ट। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस, जो बहुत बड़ा अपने आप में एक रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं और वो जब पुअर कंडीशन के एक रोड पर चलते हैं या समहाउ कुछ अनबैलेंस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते सही टाइम पर सही जगह पर, जिसकी वजह से खाना स्पॉइल हो जाता है या फिर आप कह सकते हैं क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अब खाना खराब हो गया दैट्स वन थिंग, अगर क्वालिटी डिग्रेड हो गई दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी। यहां पर हम आज जो कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को एड्रेस करने के पहले हम यहां पर समझ रहे हैं मेजर इश्यू को, क्योंकि कंपनी अपना एम लेकर चल रही है कि इन्हें फूड वेस्टेज को रिड्यूस करना है, बिल्कुल मिनिमाइज करना है। तो इट्स अ गुड साइन कि कुछ लोग सोच पा रहे हैं उस एक इश्यू के बारे में, कुछ लोग काम कर पा रहे हैं उस दिशा में। बट अगेन द फैक्ट इज फैक्ट कि खाना तो बर्बाद हो रहा है। अभी तक हमने आपको बताया हाई परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, 40% खाना बर्बाद होता है, इकोनॉमिक लॉस जिसकी वजह से 92,000 करोड़ रुपए एनुअली हम जो है इतना नुकसान उठाते हैं। उसके बाद सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, स्टोरेज इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट है, क्योंकि इम्प्रॉपर हैंडलिंग या पैकेजिंग या किसी भी तरीके से अगर खाना बर्बाद हो रहा है, अगेन इट्स एन इश्यू, क्योंकि इवेंचुअली जो हो रहा है वहां पर वो खाना ही बर्बाद हो रहा है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए या रिसोर्सेज को सही से ऑर्गेनाइज किया जाए या फार्मर्स को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, सो इस एक पॉइंट को वहां पर फिक्स किया जा सकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये थ्रेड कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच पा रहा है, मतलब हर एक जगह पर हमें एक वहां पर जो फ्लॉ है वो नजर आ रहा है जिसकी वजह से खाना बर्बाद हो रहा है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, अगेन क्योंकि खाना बर्बाद हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है तो फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, साथ साथ जो अंदर एक मोटिवेशन होता है वो भी काफी कम होता है अगर फसल बर्बाद होती है तो, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट होती है जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको मीटअप नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स हाउ ये चीजें अफेक्ट करती हैं ओवरऑल इकोनॉमी पे, ओवरऑल कंट्री के ऊपर, उनकी पूरी पूरी लाइवलीहुड के ऊपर जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो कर्ज लेते हैं या गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और पॉइंट यहां पर आता है, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब जाहिर सी बात है यार, जितनी ज्यादा हम फसल उगाएंगे और उसमें से अगर लगभग आधी फसल बर्बाद हो गई, आधा खाना पहुंच ही नहीं पाया कंज्यूमर तक, तो इसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमें जो है एनवायरमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप उस वेस्ट फूड को डीकम्पोज करते हो तो वो प्रोड्यूस करता है मैथेन, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, इवेंचुअली क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन वो देता है, वो एक सेपरेट चीज है, उसके ऊपर फिर कभी हम बात कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक पूरा शो उसके ऊपर हो सकता है, लाइक हाउ टू कोप अप विद दिस थिंग। देन इसके बाद बहुत सारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि पानी और बहुत सारी एनर्जी हम जो है वेस्ट करते हैं वहां पर जब हम फसल को उगाते हैं और उसमें से 40% खाने की पूर्ति नहीं कर पाई, तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट का नुकसान भी हुआ और जो सोचा था या जो उससे एक्सपेक्टेड था वो मोटिव भी फुलफिल नहीं हो पाया। उसके बाद सरकार के इनिशिएटिव, सरकार ने भी बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं फूड वेस्टेज को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसका जो एम है वो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे फूड प्रोसेसिंग का जो है प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, थोड़ा सा जल्दी हो जाए और जो वेस्टेज है वो काफी कम हो जाए। इसके अलावा और एफर्ट्स की जरूरत है डेफिनेटली, जिसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अपने एंड पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट की फैक्टर है, दैट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आप निकालते हैं, टेक्नोलॉजी से अगर आप किसी एक चीज को फिक्स करते हैं, जाहिर सी बात है तो चीजें बेहतर होती हैं, इंप्रूव होती हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटली हम लोग एक्सेस करते हैं। अब ऐसे में जो आज की कंपनियां हमारी, इसके बारे में बात करेंगे, ये भी सेम चीज कर रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इस एक इश्यू को एड्रेस कर रही है। इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकता है, स्टोरेज फैसिलिटीज को काफी इंप्रूव किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है काफी एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो भी हमने यहां पर डिस्कस करी हैं, उनके साथ कोप अप करने में काफी हेल्प कर सकती है टेक्नोलॉजी, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो, जिससे फार्मर्स का भी फायदा होगा, रिटेलर्स का भी फायदा होगा, कंज्यूमर्स का भी फायदा होगा। सप्लाई और जो डिमांड है दोनों अगर मीट कर पाएंगे, जाहिर सी बात है काफी सारी चीजें हमें बदलती हुई नजर आएंगी। सो दिस इज फूड वेस्टेज एंटायर कॉन्सेप्ट। हालांकि इसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर एक शो हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं है, ये अपने आप में अच्छा खासा एक शो हो सकता है या फिर मल्टीपल शोज हो सकते हैं, बट फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम मूव ऑन करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक हमने फूड वेस्टेज को यहां पर हाईलाइट किया, उसमें हमने बात करी बहुत सारी चीजों की, कुछ की फैक्ट्स हमने यहां पर आपको बताए, लाइक हाई परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, इकोनॉमिक लॉसेज, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, स्टोरेज इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, इंपैक्ट ऑन फार्मर्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। देन इसके बाद हमने बात करी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से इस इश्यू को फिक्स किया जा सकता है। अब इसी के साथ फूड वेस्टेज की ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब आते हैं सीधा हम इंडस्ट्री के ऊपर। तो आज की जो हमारी कंपनी है वो डील करती है इन एग्रीटेक इंडस्ट्री। ये तो अभी तक खैर क्लियर हो गया है कि एग्रीटेक की हम बात कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो मेजर हाईलाइट है। तो एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म भी हुई है। मतलब एक कॉम्बिनेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है, अभी करंट स्टेज पर अगर हम देखें, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड

उसके साथ अगर हमने टेक्नोलॉजी मर्ज की है तो कुछ नया निकल कर आया है जो अभी तक इस सेक्टर को हम देख पा रहे हैं, जिससे यहाँ पर हमने देखा है कि फार्मिंग की कंडीशन काफी इम्प्रूव हो गई है। लाइक अब जो फार्मर्स हैं वो सॉइल को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फसल कितनी होके आने वाली है, वो डायरेक्ट रिटेलर से डील कर सकते हैं, होलसेलर से डील कर सकते हैं, उनका कदम जो है डायरेक्ट मार्केट की तरफ चल सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई नॉर्थ इंडिया का फार्मर है, उसे साउथ इंडिया में डील करना है, ही कैन डू इट। सो दैट्स हाउ चीजें अभी जो है काफी बेहतर हुई हैं। ये सब कुछ हो पाया है इंडस्ट्री की जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से, और उस एडवांसमेंट का नाम अगर हम दूसरे टर्म में देखें तो टेक्नोलॉजी है। इसके बाद अब समझते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स को जो कि इंडियन एग्रीटेक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। सबसे पहला है डाइवर्स लैंडस्केप। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, जहां पर बहुत सारा आपको डाइवर्स क्लाइमेट्स और सॉइल जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी रेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक वाइड रेंजेस ऑफ क्रॉप्स। अगर आप साउथ इंडिया जाते हैं, आप नॉर्थ इंडिया जाते हैं, आप किसी और इलाके में जाते हैं, आपको ये डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कश्मीर की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर केसर को उगाया जाता है, सेबों को उगाया जाता है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं तो केसर को उगा पाना राजस्थान में इम्पॉसिबल है, तो वहां पर कुछ और चीज है। सो दैट्स हाउ चीजें अलग हैं और काफी जो है डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। हालांकि एग्रीटेक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एग्रीटेक इंडस्ट्री जो है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ जो है वो डील कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहां पर हम लेकर आए हैं, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज एंड मार्केट एक्सेस, जो हमने कहा कि फार्मर्स डायरेक्ट मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। इन तमाम जो इश्यूज हैं इनके साथ जो है डील कर रही है ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की वजह से। इसमें बहुत बड़ा जो की एस्पेक्ट है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट का। सरकार की तरफ से बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं, लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको हम PMKSY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, जिसमें फसल को आप जो है इंश्योर कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं उसका। देन इसके बाद आता है ENAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो इंट्रोड्यूस की गई थी, जिससे फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। सरकार खुद प्रमोट कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एंड स्टार्टअप्स को, जिससे जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो की एस्पेक्ट है एग्रीटेक इंडस्ट्री में, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप्स। अब जाहिर सी बात है, हम हर बार यहां पर एक नई केस स्टडी आपके लिए लेकर आते हैं, एक नई कंपनी लेकर आते हैं, तो ये तमाम कंपनीज है क्या, ये स्टार्टअप्स हैं जो एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ लेकर आते हैं और एग्जिस्टिंग कुछ चीजों में जो गैप होता है उनको फिल करने का काम करते हैं। सो दैट्स हाउ सारी चीजें काम कर रही हैं। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको भी हमें जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अपना पैसा निवेश करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाया जा सके, इकोनॉमी को बिल्डअप किया जा सके और जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो ये है दोस्तों एग्रीटेक इंडस्ट्री और उसके की एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक उम्मीद कर रहा हूँ काफी कुछ आपको पता चल चुका है एग्रीटेक के बारे में और फूड वेस्टेज के बारे में। मेजर चीजें हमने यहाँ पर अभी हाईलाइट करी, अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीटेक में क्या क्या चीजें हैं जो एडवांस हुई हैं, या फिर एडवांसमेंट्स क्या क्या है करंट इंडियन मार्केट में। तो सबसे पहली चीज है प्रिसीजन फार्मिंग। ये बहुत बड़ा टर्म है, मतलब जब भी हम बात एग्रीटेक की करते हैं, हम बात किसी भी ऐसे स्टार्टअप की करते हैं जो एग्रीकल्चर में समहाउ डील कर रहा है, तो हम इस टर्म को यूज करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। यूज ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उनके जो सेंसर्स हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं जिससे क्रॉप को मॉनिटर किया जा सकता है, उसके हेल्थ को देखा जा सकता है। मतलब जब से आप जो फसल है उसको उगाना शुरू कर रहे हैं, जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है, वहां से लेकर जब तक आप उसको काटते हैं, तब तक का पूरा जो प्रोसेस है वो आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। सॉइल की कंडीशन, वेदर का पैटर्न कैसा है, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है और फार्मर की काफी हेल्प होती है डिसाइड करने में, फसल उगानी है नहीं उगानी, कितनी उगानी है, कहां पर उगानी है, तमाम चीजें हो जाती है, जिससे आप जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी जो है काफी कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांसमेंट जो यहां पर हम बोलेंगे, दैट इज एग्री इनपुट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशन हो रहा है क्रॉप्स में, उसमें काफी हमने डेवलपमेंट देखी है। बायो फर्टिलाइजर्स हमने देखे हैं जिससे प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जा सके और जो पेस्ट है, यानी कि जो दीमक लग जाती है फसलों में, या समहाउ किसी भी तरीके से कोई ऐसे कीड़े या बीमारियां लग जाती हैं, उनको रेजिस्ट किया जा सकता है।
जिससे सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को। मतलब आप सीड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, या लेमैन में समझा जाए तो उनके जेनेटिक्स को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फार्म मैकेनाइजेशन। अब देखिए, अब मशीनरी भी काफी एडवांस हो गई है, इक्विपमेंट्स भी काफी एडवांस हो गए हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ऑटोमेटेड हार्वेस्टर्स आ गए हैं, सीडर्स आ गए हैं, जिससे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा रहा है। साथ साथ रेंटल सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे लेवल पर जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए रेंटल सर्विसेज होती हैं, वो भी काफी अफोर्डेबल है। सो दैट्स अनदर एडवांसमेंट जो आप कह सकते हैं कि करंट अगर इनसाइट्स को देखा जाए, या करंट जो भी हमारे पास डेटा है उसको देखा जाए, तो जो एग्रीटेक इंडस्ट्री में हुई है एडवांसमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्री फिनटेक सॉल्यूशंस। देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी कोई किसान कुछ उगाता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बीच में भी पैसे की जरूरत होती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्हें एक अश्योरेंस चाहिए होता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, क्रेडिट की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉरकास्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा वर्टिकल है, हम यहाँ पर मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर के तौर पर समझ रहे हैं उसको। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीटेक इंडस्ट्री की, अभी तक हम इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, एडवांसमेंट को समझ चुके हैं, थोड़ा समझते हैं क्या क्या इनसाइट्स हमारे पास हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं या क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न केवल भारत सरकार बल्कि ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक कलेक्टिव एफर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में चीजों को सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो इसलिए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज को जो है रोका जा सके। इसी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एंड एग्रो फॉरेस्ट्री को भी प्रमोट किया जा रहा है। ये सब कुछ सस्टेनेबिलिटी में आप जो है समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल बनाने के लिए किस तरीके की प्रैक्टिसेस की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। अब देखिए, एआई और मशीन लर्निंग ये टर्म्स हमारे लिए नई नहीं है, और अब तो आप इतने भी वाकिफ हो गए होंगे कि एग्रीकल्चर में भी ये आ गए हैं। जैसे हमने कहा कि प्रिसीजन फार्मिंग होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप मैन्युअली मॉनिटर कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश होने वाली है या किस तरह की फसल ठीक रहेगी, कब ठीक रहेगी। तो ये सब कुछ एआई और मशीन लर्निंग की वजह से हो पा रहा है। पेस्ट डिटेक्शन, क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं जो भी एनालिटिक्स है वहां पर। इसी के साथ एआई पावर्ड आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी मिल जाती हैं, जो आपको रियल टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करती है। सो देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल जो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एक मैनुअल स्ट्रक्चर आपको बना के देते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि एक पूरी डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है कि कई तरह की फसल उगाई जाती है, कई तरह का यहाँ पर आपको जो है वो सॉइल देखने को मिलेगा, कई तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। सो सब कुछ वेरी करता है कि आप कौन से एरिया से आते हैं और किस तरह का सॉइल है, कितनी वहां पर बरसात होती है और क्या वहां पर किया जा सकता है। सो दैट्स हाउ ये सब चीजें जो है चीजों को काफी एडवांस बना देती है, और यही सब वो इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इफ यू आर डीलिंग इन एग्रीटेक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स। ये बहुत ही गजब की चीज मुझे लगी, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फसलों को उगाने के लिए, जिसमें से बहुत सारा पानी जो है वेस्ट भी होता है। तो ऐसे में ये एक सिस्टम है जिसको आप समझ सकते हैं, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इसको मोटे मोटे तौर पर समझे, आपने देखा होगा कई बार पार्क्स में कि कुछ ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसके ऊपर एक क्लिप होती है जो ऐसे मूव कर रही होती है। बेसिकली पानी आ रहा है, लेकिन कम पानी को ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शंस में जितना हो सकता है उतना दूर पहुंचाने का काम वो जो मशीन है या फिर वो क्लिप है वो कर रही है। तो ये सब कुछ आप इसी एक सिस्टम के अंडर जो है उसको समझ सकते हैं। इससे आपका सॉइल के मॉइस्चर लेवल को भी चेक किया जा सकता है, उसके हिसाब से फिर जो है डिसाइड किया जा सकता है कि कितने पानी की जरूरत होगी। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द यूजेज ऑफ वाटर। देन उसके बाद आता है फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए, ताकि वो जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको अच्छे से समझ पाए। देन उसके बाद लास्ट है ई कॉमर्स एंड मार्केट प्लेसेस। सो अगेन हम लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आज एक ऐसी प्रॉब्लम से जिसमें खाना बहुत सारा बर्बाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई सॉल्यूशन अगर लेकर आ रहा है तो हमें इन
कैटेगरीज में उनको फॉल कराना पड़ेगा, बिकॉज ई कॉमर्स या फिर मार्केट प्लेसेस जो है उनके थ्रू ही इन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी लोकलाइज्ड मार्केट प्लेसेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम एफपीओ के नाम से जानते हैं, जिनमें काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है लोकल लेवल पर। तो ये सब वो चीजें हैं, ये सब वो इनसाइट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्रीटेक इंडस्ट्री। फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। नेम ऑफ दिस कंपनी इज क्रोफार्म। 2016 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। इसको स्टार्ट किया था प्रशांत जैन एंड वरुण खुराना। कंपनी का जो मिशन है वो है जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ताकि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली रिटेलर्स से जो है डील कर सके, कनेक्ट कर सके। इसी के साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है मिनिमाइज कर रहे हैं फूड वेस्टेज को, कॉस्ट को भी काफी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्राइस जो है वो फेयर मिले फार्मर्स को। इनकी वेबसाइट पर मैं गया, वहां पर मैंने देखा, तो वहां पर जो मुझे चीजें मिली वो भी काफी अमेजिंग थी। इन्होंने अपने बारे में जो लिखा है वो ये लिखा है कि एक ऐसा एग्रीटेक स्टार्टअप जो फोकस करता है फार्मर्स की कम्युनिटी को बिल्ड करने में, एंड जो फ्रेश फूड है उसको सर्व करना चाहता है, जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको सर्व करना चाहता है टू कंज्यूमर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। अगेन एज पर देयर वेबसाइट दे हैव द टीम ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड एग्री एंथुजियास्ट। बेसिकली जिनको मजा आता है खेतीबाड़ी में, जिनको मजा आता है फसलों के ऊपर रिसर्च करने में या फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में या उनको अपलिफ्ट करने में, दैट्स सो नाइस थिंग। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए इन सब चीजों के साथ डील करना, और इनके लिए कुछ नए हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। सो एज पर देयर वेबसाइट दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस वेस्टेज, जिससे क्या कर रहे हैं बेसिकली ये बिल्ड कर रहे हैं एक फास्ट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन, जिससे फार्मर्स को भी हेल्प होने वाली है, कंज्यूमर को भी हेल्प होने वाली है, रिटेलर्स को भी हेल्प होने वाली है, हमें ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अब खाने को मिल सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर यार जितना हो सकता है उतना तेजी से अगर हम खाने को जो है डिलीवर करते हैं, अगर उतना तेजी से खाना कंज्यूमर तक पहुंच जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर हल हो सकती है, दैट्स वन थिंग। इनका जो पर्पस है या फिर आप कह सकते हैं जो इनकी वैल्यू है, जो मिशन ही लेकर चल रहे हैं, वो है इज टू ब्रिंग फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स टुगेदर ऑन अ फेयर प्लेटफॉर्म, जहां पर कंज्यूमर के पास एक्सेस होगा फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड का एक अफोर्डेबल प्राइस पर, और वहीं पर फार्मर के पास भी एक्सेस होगा एक कंज्यूमर से डील करने का, साथ साथ एक फेयर प्राइस जो है वो लेने का। सो इट्स अ टू वे थिंग, इट्स अ टू वे प्लेटफॉर्म, जहां पर दो लोगों का फायदा है, फार्मर का भी कंज्यूमर का। तो ऐसा एक मिशन लेकर ये कंपनी चल रही है क्रोफार्म। अब इसके बाद बात करने की जरूरत है फाउंडर्स के बारे में। कौन है फाउंडर्स? तो नाम तो हम आपको पहले बता चुके हैं, मिस्टर प्रशांत जैन एंड मिस्टर वरुण खुराना। अब समझते हैं थोड़ा सा इनके एजुकेशन और एक्सपीरियंस को। तो प्रशांत जी की अगर बात करें तो प्रशांत के पास एक एमबीए की डिग्री है जो इन्होंने अचीव करी थी फ्रॉम आईएसबी, यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो की है हैदराबाद। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्रो फार्म स्टार्ट करने के पहले इन्होंने एक और स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किया था, दैट वाज ग्रैब हाउस, एक रियल एस्टेट स्टार्टअप था वो, जहां पर ये एज अ को फाउंडर काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने काम किया था एक कंपनी के साथ, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जेबांग, एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि इनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, लेकिन उसके अलावा एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है, लाइक एक कंपनी में काम कर चुके हैं, जॉब कर चुके हैं और एक और स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं। सो दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। आपका विजन जब क्लियर होता है, जब आप काम ज्यादा करते हो और आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन करते हो। उसके बाद अगला नाम आता है मिस्टर वरुण खुराना का। वरुण की अगर बात करें सो ही होल्ड्स अ बीटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। इसके बाद अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव की बात की जाए, तो क्रो फार्म स्टार्ट करने के पहले ही वॉज द सीटीओ ऑफ ग्रोफर्स, एक लीडिंग ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस इंडिया में बहुत फेमस हुआ करती थी, अभी उसका नाम चेंज हो गया। देन उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम है माई ग्रीन बॉक्स, एक हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस, जिसको बाद में ग्रोफर्स ने एक्वायर कर लिया था। बट लेट्स नॉट गो देयर। सिंपली पॉइंट ये है कि जब आप मल्टीपल चीजें एक्सपीरियंस करते हो, आप मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करते हो, तो आपका विजन ज्यादा शार्प हो जाता है, ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो उससे आप जो है और बेहतर तरीके से देख पाते हो क्या इश्यूज हैं और आपको क्या एड्रेस करना है, एग्जैक्टली आपका पॉइंट क्या है जो आप प्रूव करना चाहते हो। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जितना भी हमने आपको बताया अच्छे से आपको समझ आया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर क्रोफार्म, जो कि आज की हमारी केस स्टडी है, उसकी यूएसपीज की, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन।
देखिए, अगर आप इसकी यूएसपी की बात करते हैं तो वो जाहिर सी बात है इनका एफिशिएंट

इश्यूज को एड्रेस करना पड़ा होगा, लाइक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन जो है, उसके लिए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया है। लोकल लेवल पर बहुत सारे वेंडर्स के साथ टाई अप किया है, जिससे जो खाना है, जो फसल है, उसको टाइमली डिलीवर किया जा सके। देन उसके बाद आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। अब जितने ज्यादा यार मीडिएटर होंगे, जाहिर सी बात है, उतना ही ज्यादा कमीशन वहां पर इन्वॉल्व होगा, उससे कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, जिसका प्रभाव कंज्यूमर के ऊपर भी देखने को मिलता है, फार्मर के ऊपर भी देखने को मिलता है। सो इट हैज बिकम अ मार्केट प्लेस जहां पर कंज्यूमर का भी फायदा है और फार्मर का भी फायदा है, जिसमें जो मीडिएटर है उनको इन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। देन उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी। क्रो फार्म का जो मॉडल है वो हेल्प कर रहा है इन रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज एंड सपोर्ट कर रहा है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। सो दैट्स हाउ ये कंपनी ग्रो कर रही है, दैट्स हाउ ये कंपनी इतना बड़ा नाम बना पाई है एग्रीटेक इंडस्ट्री में। और उम्मीद कर रहा हूं कि आज की केस स्टडी आपको अच्छी लगी। अगर सच में आपको अच्छी लगी तो 8010781078 पर हम तक पहुंचा दीजिए। नाउ विद दिस नोट दोस्तों शो को खत्म करेंगे यहीं पर, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और एपिसोड। लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर आपका शो सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते में हर बार कोई ना कोई नया मेहमान होता है और बात होती है जागरूकता की। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि समाज के लिए ज़रूरी होते हैं। वही सारी बातें लेकर के आपके लिए हमारे बहुत सारे मेहमान आते हैं और आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आज की मेहमान स्टूडियो में आ चुकी हैं सुनीता शर्मा, सेक्टर 16A फरीदाबाद से हैं। और आज जिस टॉपिक पर बात होने वाली है वो बहुत ज़रूरी भी है। टॉपिक है सड़क सुरक्षा में शिक्षा का योगदान। अब शिक्षा का योगदान कैसे हो सकता है भाई, इसके बारे में तो आज की हमारी मेहमान ही बताएंगी। चलिए, सबसे पहले मेहमान जब घर पे आता है तो स्वागत तो बनता है ना। सुनीता शर्मा जी, सबसे पहले मैं अपने रेडियो की पूरी टीम की ओर से और जितने भी सुनने वाले हमारे लिसनर्स हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत करता हूँ।
1: नमस्कार सर, सबसे पहले मैं फहीम सर का नमस्कार करती हूं और धन्यवाद देती हूं, उन्होंने मुझे यहां स्टूडियो में आमंत्रित किया। साथ ही साथ मानव रचना की टीम का भी नमस्कार और सुनने वाले सभी को मेरी नमस्ते। आज का हमारा जो विषय है सड़क सुरक्षा में शिक्षा का योगदान, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा कैसे हम दे सकते हैं, बच्चों के माध्यम से, तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सर, आपने यहाँ आमंत्रित किया इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए।
0: जी, तो सुनीता जी देखिए, मैं बहुत सारे सवाल आज आपसे करने वाला हूँ। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले अपने दोस्तों को पहले एक गाना सुना देते हैं।
1: ज़रूर,
0: तो चलिए सुनते हैं पहले गाना और फिर करेंगे आज की मेहमान सुनीता शर्मा से बहुत सारी बातें। आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते सलाम।

0: खबर।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते में आज की हमारी मेहमान है सुनीता शर्मा, सेक्टर 16 ए फरीदाबाद से आई हैं और साथ में अपने लेकर के आई हैं एक ऐसा विषय जिसको आप कह सकते हैं सड़क सुरक्षा में शिक्षा का योगदान। अब शिक्षा का योगदान कैसे हो सकता है, इसी से संबंधित मैं आज का पहला सवाल सुनीता जी आपसे पूछता हूँ। सड़क सुरक्षा को कैसे शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है?
2: जी सर, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, शिक्षा जो है सबसे उत्तम माध्यम है किसी भी चीज़ से हम जागरूक होने के लिए, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई भी अन्य विषय हो।
1: जी,
2: अब जैसे कि आज हमारा टॉपिक सड़क सुरक्षा है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम हर चीज़ के लिए ये ना सोचें कि अगर हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल आए, जैसे कि स्कूल में सिलेबस होता है, जब हम हर चीज़ हर सब्जेक्ट फॉलो करते हैं, ऐसे ही हमें सड़क सुरक्षा का भी एक विषय अपने कोर्स में पहले से ही जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही आगे चल के सड़क पे उतरेंगे, जब ड्राइव करेंगे तो उन्हें उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज जब वो सीखेंगे तभी वो कल का एक सुनहरा भविष्य का निर्माण करेंगे, सुरक्षित सड़क पे उतरेंगे। जैसे कि क्लास 6 से हम स्टार्ट कर सकते हैं सिलेबस में, चाहे हफ्ते में हम एक ही दिन उसका पीरियड रखें जिसमें बच्चों को छोटी छोटी जानकारियां दी जाएं। सिर्फ रेड लाइट ग्रीन लाइट के बारे में जानकारी होना आवश्यक नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए, रोड को कैसे क्रॉस करना है, दाएँ बाएँ कहाँ देखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को जाननी है और जो उनकी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा हमारे कोर्स में ऐड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई हमें कहे तब हम स्टार्ट करें इस चीज़ को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सुनीता जी, और शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक किया जा सकता है, ऐसा कहना है आज की मेहमान सुनीता शर्मा का। लेकिन सुनीता जी, बातें और भी हैं जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
2: हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, बच्चों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए आप 6 महीने में या कुछ टाइम बाद जैसे इसमें एग्ज़ाम्स रखिए छोटे मोटे, जिससे बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ भी उनको पुरस्कार दे दिया, जिससे बच्चे भी इसके लिए उत्साहित हों, ये बहुत ज़रूरी है। कई स्कूल करते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता, पर अभी इसके लिए जागरूकता और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी जगह अभी नहीं फैली ये बातें हर स्कूल में होनी चाहिए।
1: चलिए, अब आप आए हैं और आपका ये जो प्रयास है वाकई में बहुत सुंदर है, और इस प्रयास के साथ हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। सवाल करता रहूँगा मैं आपसे, लेकिन सवाल को करने से पहले अभी एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट करके आते हैं अपने दोस्तों के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं सत्यमेव जयते। बात चल रही है दोस्तों आज हमारी मेहमान सुनीता शर्मा से, जो कि सेक्टर 16 ए फरीदाबाद से हैं, और आज बात कर रही हैं सड़क सुरक्षा के बारे में। अब देखिए, सड़क सुरक्षा की बात तो अक्सर आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के कैसे बच्चों को जागरूक किया जा सकता है, इस तरह का ये टॉपिक आज आपके साथ साझा कर रही हैं सुनीता शर्मा। अगला सवाल है सुनीता जी, सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल, क्लब और संस्थाएं किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकती हैं?
1: इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे पिछले काफ़ी वर्षों से हम लोग, जो मेरी पूरी संस्था है, हम सब मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम या जागरूक अभियान करते हैं, जिसमें हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑटो यूनियन, ट्रक, सब जगह जाते हैं। लेकिन स्कूल में मुझे एक ख़ास बात यह लगी, जो काफ़ी स्कूल्स हैं जिन्होंने रोड सेफ्टी क्लब बनाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत वो जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं इस तरह की गतिविधियों में, उन्हें एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को भी उभारने का और लोगों को जागरूक करने का अपने अभिनय या नाटक के थ्रू। जैसा कि हमने देखा, कुछ स्कूल नुक्कड़ नाटक करते हैं, रैलियां निकालते हैं, जिससे और लोगों को भी बढ़ावा मिलता है, इस बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से हम सड़क पर सुरक्षित उतर सकते हैं, कैसे सड़क के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी। हम कई बार गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, हमने देखा गवर्नमेंट ऐसे स्कूलों को पुरस्कृत भी करती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रोत्साहन सभी को चाहिए। और जब इस तरह के प्रोत्साहन सरकार देती है, तो मुझे लगता है सभी स्कूलों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी प्रतिस्पर्धा है। तो हम सभी को इस तरह की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने एक विद्यालय में, जब हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, वहाँ पे उन बच्चों ने एक गाना भी गाया था, इसी सड़क सुरक्षा से जो प्रेरित था, जो बहुत ही, जिसके

0: अंदर आप अगर आप सुनेंगे तो सारे ही सड़क सुरक्षा के रूल्स बताए गए हैं, नियमों का पालन किस तरह से करना है, और इतना सुंदर वो गीत है। मुझे लगता है इस तरह के गीत को हमें अपने प्रार्थना जो होती है हमारी मॉर्निंग या उस तरह से चाहे हफ्ते में एक बार ही सही होनी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं सुनीता जी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का असर बहुत अच्छा हो सकता है जैसा आप बता रही हैं। तो दोस्तों, सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल, क्लब और संस्थाएं किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती हैं, वो सारी बातें बताई हैं आज की मेहमान सुनीता शर्मा ने। और भी सवाल हैं जो मैं करूँगा, फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और लौट करके आते हैं आज की मेहमान सुनीता शर्मा के साथ, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और शो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की आज की मेहमान है सुनीता शर्मा। बात चल रही है सड़क सुरक्षा में शिक्षा का योगदान क्या हो सकता है, इसी से संबंधित बहुत सारे सवाल मैंने उनसे किए हैं। अगला सवाल है सुनीता जी, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है और दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को प्यार करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है सुनीता जी, कभी कभी हम बच्चों को गलत डायरेक्शन में प्यार करते हैं, बच्चों को जो चीज़ उस समय नहीं दी जानी चाहिए वो हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो वालिक तो नहीं है लेकिन हम उनको मोटरसाइकिल दे देते हैं और इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है, एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, यहाँ तक कि लोगों की जान भी चली जाती है, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, बालिग होने से पहले अपने बच्चों को वाहन देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सर बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि आजकल जो अभिभावक हैं उनका जो प्यार दर्शाने का तरीका है वो है महंगे गिफ्ट्स बच्चों को देना, उन्हें क्योंकि आजकल समय सब किसी के पास नहीं है, अभिभावक चाहते हैं कि बस बच्चों को महंगे तोहफे दे दिए, उससे उनका जो कमी है समय ना देने की वो पूरी हो जाएगी, और इसी चक्कर में वो कई बार उनको महंगी तोहफों में जैसे बाइक दे दी या कोई महंगी कार दे दी
0: जी।
1: ऐसे गिफ्ट देना या ऐसे पुरस्कार देने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसे पुरस्कार देने से पहले बच्चे को उसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको बाइक दे रहे हैं उससे पहले उसको पूरी रोड की जानकारी होनी चाहिए, सुरक्षा की, उसको हेलमेट की जानकारी, रोड पे कैसे चलानी है बाइक, ये नहीं कि आप सीधा रोड पे फुल स्पीड पे आपने चला दी। आप मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे कोई उदाहरण देने की ज़रूरत है, हम सभी के आसपास ही आपको इतने उदाहरण मिल जाएंगे रोड एक्सीडेंट्स के जो हमारे अपनों में ही हुए होंगे, हमारे जानकारी में ही हुए होंगे, तो ये ऐसा विषय है कि इसके बारे में मुझे लगता नहीं कोई भी उदाहरण पर्याप्त रहेगा। बच्चों को अच्छे महंगे गिफ्ट देने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर दीजिए, आप ऐसी किताबें दीजिए कम से कम बच्चा पहले उन किताबों को पढ़े, कम से कम अगर वो गाड़ी चला रहा है तो पहले उसके लिए तैयार तो हो, उसके नियम क्या है, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है, तो ये सब चीज़ें बहुत कई बार अभिभावक महंगे गिफ्ट के चक्कर में, उपहारों के चक्कर में अपने बच्चों के लिए मौत का सामान खरीद लेते हैं जो बहुत ही दर्दनाक है, किस तरह उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं सुनीता जी। देखिए दोस्तों ऐसा होता है और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को समय से पहले वो चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं जो उनको नहीं करानी चाहिए। अब उनसे कोई कुछ कहता है तो कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं, भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमारा जो दिल करेगा वो करेंगे। बिल्कुल आपके बच्चे हैं, आपकी ज़िंदगी है, जो आप चाहें कीजिए, लेकिन कोई काम ऐसा मत कीजिए कि जिसका कारण आपके बच्चों की या कोई बड़ा हादसा हो जाए। जब ऐसा होता है तो आपको ही तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ से आप दूर रहें, हमारा यही मकसद है और सुनीता शर्मा का भी यही कहना है कि इस समय जो भी माता पिता सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सड़क सुरक्षा के बारे में बताएं, जो नियम होते हैं उनके बारे में सिखाएं, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। करेंगे कुछ और भी बातें, आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ सत्यमेव जयते।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ सत्यमेव जयते। आज की मेहमान है सुनीता शर्मा। बात हो रही है सड़क सुरक्षा में शिक्षा का योगदान। देखिए दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं और हमारे घर में जो हमारे बड़े होते हैं अक्सर उनको देखकर भी बच्चे वही करने लगते हैं जो बड़े करते हैं। लेकिन मैं आज जो हमारी मेहमान है सुनीता शर्मा जी से सवालों का सिलसिला जारी है। सुनीता शर्मा जी हर सवाल का जवाब दे रही हैं, लेकिन एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो सवाल ये है कि ट्रैफिक ट्रेनिंग बच्चों को कैसे दी जा सकती है।
1: सर, इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर इस तरीके से देना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी, मुझे याद है हमारे इस विद्यालय के पास ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क होता था, पंजाबी बाग में था मेरा विद्यालय, और हमें वहाँ ले जाते थे जहाँ पे हमें सारे ट्रैफिक रूल्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पे कारें, इवन हेलीकॉप्टर, बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी होती थी जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, और वहाँ पे जो होते थे वहाँ पे पुलिस वाले, कह लीजिए ट्रैफिक पुलिस, वो हमें गाइड करते थे, बताते थे कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, रेड लाइट पे कैसे हमें देखना है गाड़ी को रुकती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कैसे रोड क्रॉस करनी है। छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी जब हम छोटे थे, बट अभी मुझे लगता नहीं कि बाकी सभी स्कूल ये इस तरह के कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पर ये रूल्स नहीं, मैं कहूँगी एक प्रार्थना कह लीजिए, विनती कह लीजिए कि सभी स्कूलों को अपने जो जैसे ये ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कहीं प्लान कर रहे हैं, तो एक उसमें ट्रिप जो है रोड सेफ्टी का भी होना चाहिए, जिसमें आप बच्चों को ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क लेके जाइए जहाँ पे उनको पूरी जानकारी मिले, और वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे जानकारी दी जाती है कि बच्चे खेल खेल में ही इतने अच्छे तरीके से ये सब विषय के बारे में समझ पाते हैं जो आगे चल के उनके बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह के ट्रिप जरूर स्कूल्स को अपने बाकी ट्रिप्स के साथ इंक्लूड करने चाहिए, और मुझे लगता है कक्षा छठी से ही ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सके। एक छोटा सा मैं एग्जांपल और देना चाहूँगी। आजकल सबसे ज़्यादा अभिभावकों की शिकायत यही रहती है कि हमारा बच्चा फ़ोन पे लगा रहता है, उसको कुछ भी बोलो नहीं सुनते फ़ोन पे। मुझे ये बस प्रश्न करना है कि उस बच्चे के पास फ़ोन कहाँ से आया, हमने ही तो उसको खरीद के दिया है, वो अपने आप तो लाएगा नहीं, तो पहली गलती तो हमारी है, और बच्चा जो देखता है वही तो सीखता है। अगर वो हमें फ़ोन पे काम करते हुए, चाहे हम ज़रूरी काम कर रहे हों, लेकिन अगर उसने देखा कि हाँ हमारे माता पिता फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे को पता है कि हाँ मुझे भी फ़ोन पे ही करना है काम।
0: यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने, तो यही बात मैं कहना चाहूंगी, और ये बिल्कुल सत्य है। अगर हम सोचें कि हम जो कह रहे हैं बच्चा वो करे, नहीं वो नहीं करेगा, उसको समझाने से पहले हमें वो चीज फॉलो करनी है। और सेम चीज जो है सड़क सुरक्षा पर भी है, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए दोस्तों, आप अक्सर अपनी कार में बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, रेड लाइट होती है तो आप कहते हैं कि यार चलो जल्दी चलना है, कौन देखे रेड लाइट, अभी कोई नहीं आ रहा है, निकाल लेते हैं। अब आपके साथ आपके बच्चे भी बैठे होते हैं, वो आपकी एक एक बात को सुन रहे होते हैं, और वो सुनने के बाद वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती है, और फिर वो भी यही काम करने लगते हैं जो आप कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपसे ही शुरुआत होनी है। आप किस तरह से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे रहते हैं, वही आपके बच्चे आपसे सीखते हैं। चलिए और भी करेंगे बातें आज की मेहमान सुनीता शर्मा से, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और शो है सत्यमेव जयते। आज की मेहमान है सुनीता शर्मा। बात हो रही है सड़क सुरक्षा में शिक्षा का योगदान। देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल मैंने कर लिए हैं और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ जो कि एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश में उसको लेकर के है। और हमारे देश में पूरे साल में लाखों लोग एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है, बच्चों के एक्सीडेंट का कारण क्या है?
1: सर, बच्चों के एक्सीडेंट का कारण मेन यही है, जागरूकता। उनमें हमने जागरूकता नहीं डाली हुई
0: जी।
1: आज से करीब 10 साल पहले मैं स्कूल जा रही थी गाड़ी चला के, और मैं स्कूल के बिल्कुल सामने ही बस पहुंची थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मेरी गाड़ी को आगे से मारी, जिससे मेरा सर विंडशील्ड से जाके टकरा गया। उसमें मेरी गलती भी थी, मेरी ये गलती थी कि मैंने स्कूल सामने था, उसी वक्त मैंने सीट बेल्ट खोल दी थी, पर उस बच्चे की गलती ये थी कि वो इतनी स्पीड से आ रहा था कि उसने मोड़ पे गाड़ी स्लो भी नहीं करी, सीधा मेरी गाड़ी में लाके मार दी। उसके बाद जब उसके पिता से पूछा, उसके पिता ने खुद आके, क्योंकि मेरा उस टाइम सर फट गया था और मुझे सबसे पहले अपनी बिटिया का चेहरा दिखाई दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो, मतलब एक हादसा जो था जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलता, ऐसी सिचुएशन थी। उस बच्चे के पिता ने मुझे बताया कि वो बच्चा कॉलेज जाने के लिए देर हो रहा था, इस वजह से वो बहुत जल्दी में स्पीड से चला रहा था। इस संदर्भ में सर देखा जाए तो गलती मेरी इतनी नहीं थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली, वो बच्चा जल्दी में था जिस वजह से उसने मेरी गाड़ी को हिट किया और मेरा सर फटा, और जबकि उसके पिता ने खुद माना कि हाँ मेरा बच्चा जल्दी में था जिस वजह से उसने चलाया, उस पिता की गलती ये थी कि उसने अपने बच्चे को जागरूक नहीं किया कि बेटा समय सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें समय का पालन, अगर वो जल्दी में था तो उसके पिता को या पेरेंट या माता जो भी हैं उनको पहले ही उसको रेडी करना चाहिए था कि बेटा आप कॉलेज के लिए देर हो रही हो, ताकि टाइम से निकलो। और ऐसी भी सर मुझे नहीं लगता कोई जल्दी होनी चाहिए कि जो आपकी जानलेवा साबित हो जाए आपके लिए। अब उस वजह से मुझे एक ड्राइविंग का फोबिया हो गया। अब मैं उस दिन के बाद से मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, मेरे दिमाग में वो ऐसा बैठ गया इंसिडेंस, तो मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के भी साथ हो। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसमें हमारी गलती नहीं होती है, तब भी हमें उसकी सज़ा भुगतनी होती है, पर चलिए भगवान की कृपा से मैं तो बच गई, मेरी जिंदगी बच गई। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान भी गंवा देते हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स में।
0: सही बात है।
1: तो इस तरह से बच्चों के लिए भी, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हम अपने मेन टॉपिक पे यही मैं कहना चाहूँगी, हम सोचें कि हम बच्चों को तो सिखाएं हाँ ट्रैफिक रूल ऐसे ऐसे फॉलो करो, उसके बाद हम खुद ही बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को ओवर स्पीड चला रहे हैं, तो कैसे बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे? पहले हमें भी तो फॉलो करना होगा ना, अगर हम चाहते हैं दुनिया बदले, शुरुआत तो घर से ही करनी होगी हमें। तो बस सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, पहले हम खुद से शुरुआत करें, हम खुद बदलें, बच्चा अपने आप वो चीज़ सीख जाएगा, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई और विषय हो
0: जी। तो बच्चों के एक्सीडेंट का कारण क्या है हमारे देश भारत में, इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन इस सवाल का ही नहीं, जितने भी मैंने सवाल किए, हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सरल भाषा में दिया है, समझा के दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुनीता शर्मा जी। अब वक्त जाने का हो चला है, तो मैं ये भी चाहूँगा कि जाते जाते हमारे जितने भी श्रोता हैं उन सबको आपकी तरफ से पैगाम क्या है?
1: सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण पैगाम यही है सर कि एक तो जो दुर्घटनाएं होती हैं रोड्स पे, वो कभी प्लान नहीं होती। जब हम घर से निकलते हैं हम ये सोच के नहीं निकलते कि हमारा आज एक्सीडेंट होने वाला है। जितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं वो ये सोच के नहीं निकलते कि आज हमारा एक्सीडेंट होगा, तो ये कभी भी हो सकता है। लेकिन इसकी वजह क्या है? हमारी थोड़ी सी लापरवाही या हमारा जागरूक ना होना। तो इसके लिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि सबसे पहले एक जागरूक नागरिक बनिए, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो या कोई अन्य विषय हो, जागरूक बनिए। और दुनिया के लिए चाहे आप एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं, अपनों के लिए सुरक्षित रहना है। और अंत में यही कहूँगी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार सर।
0: सुनीता शर्मा जी, आप रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में आई, लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए रेडियो की पूरी टीम और सभी हमारे श्रोता आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का भी मुझे सुनने के लिए।
0: जी तो चलिए दोस्तों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते जाएं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना, नमस्ते, खुदा हाफिज।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM Feel Good Feel Life।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम का टाइम हुआ है जिसका नाम है ऑल इज वेल, जहाँ हर सैटरडे हम आपको कराते हैं एक खास एक्सपर्ट से बातचीत का मौका देते हैं, आपकी जान पहचान कराते हैं और आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताते हैं। और इसी कड़ी में आज हम इस प्रोग्राम ऑल इज वेल में बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रीति चौधरी से, जो कि MBBS MS हैं, सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी में SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और इस प्रोग्राम ऑल इज वेल को भी आप तक लाने का श्रेय जाता है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को। तो आइए चलते हैं हमारी एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। डॉक्टर प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में आने के लिए।
2: धन्यवाद दीक्षा एंड थैंक यू फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन, थैंक यू।
1: तो डॉक्टर प्रीति, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन टॉपिक है और अक्सर मैंने यंग गर्ल्स को ना ये प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए और इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं PCOD के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है कि आप हर दूसरे तीसरी लड़की से अगर बात करेंगे, यंग गर्ल से बात करेंगे, लेडीज से बात करेंगे, तो उनको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल से शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी PCOD है क्या।
2: आपने PCOD के बारे में काफी सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं।
1: जी,
2: टू बी वेरी ट्रू, PCOD जो है इट्स एक्चुअली अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आजकल जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सीडेंट्री टाइप का लाइफस्टाइल है, जिसमें लोगों को बहुत जंक फूड वगैरह खाने की आदत है और फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। उसी की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि हर एज ग्रुप की महिला को अफेक्ट करते हैं।
1: जी, यानी हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है कि हम ज़्यादा भागते दौड़ते नहीं हैं, कोई घर के काम भी नहीं करें जैसे कपड़े धोना या झुक के सफाई करना, वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। ऑफिस में हम 6-7 घंटे बैठते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को बढ़ाती हैं।
2: बिल्कुल, ये जो लाइफस्टाइल है ना, जस्ट एक बटन की दूरी पे जो है हमारे पास खाना आ जाता है और फिजिकल वर्क, हम किसी भी लेवल पे उस टाइप का फिजिकल वर्क नहीं करते जितना हमारा इनटेक है खाने का, और इनटेक भी हमारा बहुत हेल्दी खाना नहीं खाते हम।
1: जी,
2: उसमें भी हमारा मोस्टली जो है मैदा बेस्ड खाना ज्यादा होता है। वी डोंट टेक हाई प्रोटीन डाइट या हाई फाइबर डाइट, ऐसी चीजें हम नहीं लेते। और फिजिकल वर्क, चाहे आप एक छोटे बच्चे को लेंगे, अगर 12-13 साल की एक लड़की को भी आप लेते हैं या किसी महिला को भी लेते हैं, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उसको फिजिकल वर्क उतना ज्यादा करने की आदत नहीं है जितना कि उनका फूड का इनटेक है या क्वालिटी ऑफ खाना जो वो खा रहे हैं। और सेकेंडरी स्ट्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है।
1: बिल्कुल, और स्ट्रेस तो मुझे लगता है कि ये वर्ड हमने आज से 20 साल पहले ढंग से सुना भी नहीं था।
2: बिल्कुल,
1: और अब ये छोटे छोटे बच्चों को भी आप जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हमें स्ट्रेस हो गया है, हमारे एग्जाम है। तो ये बहुत कॉमन हो गया है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर में, जिनमें से कि PCOD एक है। अब ये PCOD क्या है और इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, ये सारी बातें हम विस्तार से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। डॉक्टर प्रीति चौधरी हमारे बीच हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी में, और इनसे हम बहुत सी बातें करने वाले हैं इसी विषय में। अगर PCOD से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में भी है और आप उसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए मैसेज के जरिए 8010781078 पर। और ये प्रोग्राम आप अगर बार बार सुनना चाहते हैं या अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसे आप हमारी ऐप के जरिए सुन सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए और वहां पर पॉडकास्ट सेक्शन में आपको इंटरव्यू मिल जाएगा जिसको आप शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सभी के साथ इसे साझा कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रीति, आज PCOD के बारे में बात चल रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर प्रीति ने बताया था कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसको लाइफस्टाइल को ही ठीक करके शायद सुधारा जा सकता है। तो डॉक्टर प्रीति, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये प्रॉब्लम है क्या, मतलब इसको थोड़ा सा आप अगर नॉर्मल भाषा में समझा सकें कि शरीर की हिस्से में जो ओवरीज होती हैं उनमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है?
2: एक्चुअली पीसीओडी के अंदर एक स्टेज में जब एक बच्चे के पीरियड शुरू होते हैं उस एज ग्रुप के अंदर जिसे हम एडोलिसेंस बोलते हैं उस एज ग्रुप में अगर बच्चे का लाइफस्टाइल आपका अच्छा नहीं है तो ओवरीज के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ओवरीज में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। उन गांठों की वजह से जब महिला का हर महीने एग रिलीज होता है या अंडा छूटना जिसे बोलते हैं तो वो प्रॉपर नहीं होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं जो कि जिसकी वजह से बच्चे का या किसी भी महिला का वजन बढ़ने लग जाता है, फेस के ऊपर बाल आने लगते हैं और दाने जिसे हम एक्ने बोलते हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं।
1: यानी एक जो एडोलेसेंस में ही आप कहें कि 13-14 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा कि ये छोटी छोटी गांठें जो होती हैं ओवरीज में और ये एग रिलीज के टाइम पे होती हैं इससे कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकती हैं इस एज में खासतौर पर से एडोलेसेंस की अगर मैं बात करूं?
2: एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो मेन प्रॉब्लम पीसीओडी की वजह से होती है वो मेनली पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है और वेट गेन होने लग जाता है और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से फेस पे आपको मेल टाइप का हेयर पैटर्न दिखने लगेगा, एक्ने दिखने लगेंगे, बच्चा वेट गेन करने लगता है और पीरियड्स उसके लेट लेट आएंगे, कई बार बिना दवाइयों के पीरियड्स भी नहीं आते, तो साइकोलॉजिकली भी बच्चे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसकी अपीयरेंस जो है वो बहुत चेंज हो जाती है। इसीलिए हर बच्चे को स्पेशली एडोलिसेंट एज ग्रुप में वन शुड लर्न हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और ये बहुत कुछ जो है पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको हमें कम करना पड़ेगा, बच्चे को हेल्दी खाना खिलाने की हमें शुरू से ही आदत डालनी पड़ेगी, जंक फूड को कम से कम जो है बच्चों को देना चाहिए, होममेड हाई फाइबर खाना अगर आप देते हैं और एक घंटा बच्चे को अगर आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी उस एज ग्रुप में रखते हैं जो कि बच्चे के इंटरेस्ट की होगी तो उससे बच्चे के हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे हेल्दी चेंजेस होंगे और साथ में बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कम होगा और साइकोलॉजिकली भी बच्चा बहुत बेटर फील करेगा और हैप्पी फील करेगा।
1: बिल्कुल। यानी कि ये जो सबसे बड़ी समस्या है फोन्स हैं या टेलीविजन्स हैं और इंटरनेट से जुड़ाव जो है वो अगर इस एज में हम बच्चों का कंट्रोल कर दें जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, अगर उसको कम करके हम फिजिकल एग्जर्शन की तरफ उसका ध्यान देंगे तो ये परेशानियाँ थोड़ी कम
2: होंगी। बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब मैंने अपने जब हम बड़े हो रहे थे तो अपने सर्कल में बहुत सी ऐसी एडोलेसेंट गर्ल्स को देखा था जिनका वेट अचानक से बढ़ रहा था, लेकिन उस दौर में या फिर मैं कहूँ कि 15-20 साल पहले इतनी ज़्यादा खुल के ये बातें नहीं होती थी तो डॉक्टर से मुलाकात नहीं होती थी। आज की तारीख में आपके पास कैसे पेशेंट्स आते हैं जो इस तरीके की परेशानी लेकर आते हैं और क्या खुल के बात कर पाते हैं पेरेंट्स या बच्चे?
2: बिल्कुल। अगर मैं अपनी डेली ओपीडी की बात करूं तो मेरे पास डेली कम से कम 3-4 एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं विद दिस प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम को लेके। अवेयरनेस तो है लेकिन बच्चों में उस चीज़ का उपचार या सॉल्यूशन ढूंढने की आदत नहीं है। दे नो, बच्चे जो हैं आजकल स्कूल में ही काफ़ी अवेयरनेस हो जाती है, दे आर अवेयर अबाउट पीसीओडी लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना है ये उन्हें नहीं पता। लेकिन वो मोस्टली जो ओपीडी में आते हैं ज़्यादातर जब फेस पे एक्ने होने लगते हैं या पीरियड्स इररेगुलर, जब तक उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं होते तो वो तब पहुंचते हैं, लेकिन उस वो चीज अपीयर ही ना हो उस चीज की नॉलेज अभी नहीं है इस चीज के लिए।
1: यानी पहले से तैयारी जो है वो ठीक नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप मदर्स को क्या कहना चाहेंगे अभी फिलहाल?
2: मदर्स को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल बच्चों को हेल्दी खाना दीजिए, जंक फूड कम से कम रखिए और फिजिकल एक्टिविटी एक घंटा कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम को कम रखिए, आप बच्चे के इंटरेस्ट की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करा सकते हैं,
1: चाहे वो स्विमिंग करे, चाहे बैडमिंटन खेले या वैसे ही रनिंग करे, पर एटलीस्ट इतना फिजिकली रहे कि उसका ओवरवेट ना हो
2: और वेट गेन जो है वो अवॉइड होना चाहिए बेसिकली।
1: तो वेट गेन को अवॉइड करना है और ये शुरुआत आपको बच्चों के बचपने से ही करनी पड़ेगी, यानी 8-9 साल की उम्र से ही आपको ये सब शुरू कर देना चाहिए, फिजिकल एक्सर्शन, बच्चों की लाइफस्टाइल जो खराब होता जा रहा है और अभी से ही बच्चों को कोविड की वजह से फोन और इंटरनेट के एक्सेस बहुत आसानी से उनको समझ आ गए हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल बच्चों की सेहत का है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट के तौर पर हर रोज बहुत सारे केसेस आते हैं PCOD के, लेकिन उन केसेस का क्या सोल्यूशन होता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों की जो एज है 8-9 साल की, जहाँ से हम कहते हैं कि उनकी एडोलेसेंस शुरू हो रही है, वो बड़ी हो रही हैं खासतौर पर से बेटियाँ, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जिसमें एक PCOD भी है, जिसके लक्षण आपको समझने चाहिए। बढ़ता हुआ वजन, फेस पे आ रहे थोड़े थोड़े बाल और साथ ही इररेगुलर पीरियड्स या फिर हैवी पीरियड्स, इस टाइप की चीज़ें कुछ PCOD से जुड़ी होती हैं जिनको पेरेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऐसी कुछ बातें हम कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति चौधरी से। तो डॉक्टर साहब, अब ये तो बात हो गई एडोलेसेंस की, कि एक उम्र जो 13-14 साल तक की होती है, जब नई नई बच्चियां जो हैं वो बड़ी होती हैं, लाइफ में पहली एक स्ट्रेस जैसी चीज़ होती है कि पीरियड्स शुरू हो गए हैं, उसका अपना स्ट्रेस होता है, फिर हार्मोनल चेंजेस में बहुत सारे और चेंजेस आते हैं, बॉडी में बदलाव, तो ओवरऑल मिला के सब कुछ और इनमें एक PCOD, तो ये सारी चीज़ें बच्चों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ ले आती हैं। और ये शायद हमें भी अपने दौर में हुई होंगी, पर अब चीजें देखा जाए तो अब ज्यादा आसान है,
2: बिल्कुल,
1: और ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन बातचीत भी ज्यादा होने लग गई है। पर डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं 18+ या 17+ की, यानी ये उम्र जो होती है जब आप यंग हो जाते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं, आप करियर वाइज आगे बढ़ रहे होते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, मैरिज की एज आ जाती है लड़कियों की, लेकिन तब भी PCOD जो है वो बहुत लड़कियों को परेशान करता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स को या फिर अपने कोलीग्स को देखा है जिनको PCOD की बहुत समस्या रही है, फेस पे अक्सर कहीं ना कहीं से इतने ज़्यादा पिंपल्स कभी कभी निकल आते थे कि वो बहुत परेशान हो जाते थे, खासतौर पर से जब कहीं जाना हो,
2: बिल्कुल,
1: तो बहुत स्ट्रेस हो जाता था। अननेसेसरी डाइट कम है लेकिन वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये कुछ समस्याएं बहुत कॉमनली देखी जाती है, कॉलेज गर्ल्स में बहुत देखी जाती हैं,
2: बिल्कुल।
1: सो डॉक्टर साहब, इससे ये जो PCOD जो इस एज की अगर हम बात करें 18-20 साल की उम्र और उसके बाद जब शादी हो जाती है, तो मुझे आप एज वाइज थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ला सकती है।
2: ये जो एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इसे हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं, कि जिस टाइम पीरियड में अ वुमेन कैन हैव बेबीज, तो इस टाइम पीरियड में जो हमने कॉस्मेटिक अपीयरेंस की आपसे बात की, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, वेट गेन भी है और इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स, हैवी पीरियड्स आना, पेनफुल पीरियड्स आना, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही है, लेकिन PCOD आजकल एक बहुत कॉमन कॉज है कंसीव ना करने का। PCOD के साथ जो है कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
1: बिल्कुल।
2: तो वो अगेन, दिस ऑल इज़ ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोनल चेंजेस PCOD की वजह से हो रहे हैं, उसकी वजह से एग रिलीज नहीं होता है। अब अगर एग रिलीज ही नहीं होगा तो कंसीव करने में भी काफ़ी मुश्किल आ सकती है। और अगर हम इस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं या हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाके इट कैन कॉज डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स,
1: मतलब ये भी इससे जुड़ी होती
2: है। यस यस यस, बिल्कुल। इन्हें हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं। तो लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन, डायबिटीज होना, और अगर इस प्रॉब्लम को अनट्रीटेड हम छोड़ देते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट कैन कॉज, जैसे यूट्रस का कैंसर भी कर सकता है ये
1: जी।
2: तो इस चीज को सीरियसली लेना जरूरी है।
1: यानी PCOD जो समस्या है ये सिर्फ एक नाम की समस्या नहीं है, ये आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले सकती है, जैसे कि आपने कहा कि कैंसर तक हो सकता है, और डायबिटीज और जैसे ब्लड प्रेशर, तो मतलब ये तो हम कैपिटल हैं इसमें इंडिया, तो वैसे ही, तो अगर बच्चियों को फ्यूचर अच्छा देना है तो मुझे लगता है कि उनकी ये छोटी छोटी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, जैसे गाँव में या फिर छोटे कस्बों में बेटियों को इतनी समझ नहीं होती है और थोड़ी सी अभी भी झिझक है काफी ये सब बातें करने में, तो आप, मैं चाहूंगी कि हमें जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि रेडियो मानव रचना एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और कम्युनिटी की आवाज जो है वो बहुत दूर दूर तक जाती है, गांव कस्बों में जाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके, वो कैसे इस परेशानी को समझें और किससे बात करें।
2: देखिए, गांवों में भी ये प्रॉब्लम अगर हम अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली कम है ये PCOD की प्रॉब्लम जो है अगर हम विलेज एरियाज में जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी लोग फिजिकल वर्क करते हैं, उतना इजीली जंक फूड अवेलेबल नहीं है, तो कंपैरेटिवली ये प्रॉब्लम कम है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका जो है टाइमली जो है आप डॉक्टर को अप्रोच करिए और टाइमली हर चीज का ट्रीटमेंट इज द आंसर टू एनी प्रॉब्लम। तो आपको जो है टाइमली इलाज कराना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस जरूर करिए अपने पेरेंट्स के साथ ताकि वो उसका सॉल्यूशन निकालें।
1: यानी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको शरीर में ऐसे बदलाव दिख रहे हैं, वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, पीरियड्स जो हैं उनकी तारीखें बदलती जा रही हैं, तो अपनी मदर से बात करें, आसपास जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर जाएं, लेडी डॉक्टर से बात करें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको अनदेखा नहीं करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रीति ने कहा है कि आगे जाकर डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और साथ ही कैंसर तक को बढ़ावा दे सकता है।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई एक युवावस्था की, अब बात करते हैं शादी के बाद आने वाली समस्याओं को लेकर। प्रेगनेंसी की आपने बात करी, कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है, तो किस तरीके की दिक्कतें आती है और इसका क्या सोल्यूशन है, ये भी मैं जानना चाहूंगी।
2: देखिए, प्रेगनेंसी में दिक्कत आने के दो कारण हैं। एक तो शुरू से ही लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस मोस्टली लेडीज को आजकल होते हैं। दूसरा एक चीज ये है कि जो नाउअडेज शादी की जो एज है वो थोड़ा एज ग्रुप जो है वो आगे तक चला गया। 30 के नियरिंग एज में लोग जो है आजकल शादी करते हैं और फिर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो उस टाइम तक जो है पीसीओडी की वजह से भी और एज की वजह से भी कई बार जो है जो ओवरीज होती है उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, तो उससे एग रिलीज होने में प्रॉब्लम होती है और कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। यही एक मेन कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस अगेन।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितने समय तक लेना पड़ेगा? जो दवाइयां उसे ही होता होगा या फिर कोई सर्जिकल कोई तरीका होता
2: है? देखिए, जो पीसीओडी है, पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट अगर आप कहें तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज ही है।
1: यानी सिर्फ
2: लाइफ, अगर एक बार किसी को पीसीओडी हो जाता है तो उस महिला को जो है अपना वेट, एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना ही पड़ेगा। जब भी कभी उसका वेट बढ़ता है तो पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दोबारा बढ़ जाएंगी। और जहां तक कंसीव करने का आपने सवाल किया, उसमें यही होता है कि उसमें हमें फिर उसको कुछ मेडिसिनल दवाइयों की ज़रूरत होती है, जिसमें हम एग रिलीज करने की मेडिसिन्स देते हैं और वेट लूज करने के लिए बोलते हैं। अगर उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ शुगर के लेवल्स या इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट साथ में दिया जाता है। तो कंसीव करना उतना ईजी नहीं होता, बट येस, दवाइयों के साथ कंसीव हो जाता है। तो इसमें यही है कि आप शुरू से ही अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। अगर पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं, और अगर फेस पे कुछ बाल हैं या एक्ने हैं तो उसके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। जो कि हम हार्मोनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ ही कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे लेजर वगैरह होता है तो वो जो है रिकमेंडेड होते हैं। इसमें दे हैव गुड रिजल्ट्स, लेकिन उसके साथ में आपको लाइफस्टाइल वैसा ही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ओनली अ ट्रीटमेंट। अगर आपका फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ वेट गेन होने की वजह से, तो ये जो है आपकी प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी दोबारा। इसीलिए यही बोलते हैं कि पीसीओडी का इलाज सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज ही है।
1: सो डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें आपने बताई हैं और विस्तार से बताई हैं, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं, बहुत सारी लेडीज जो होती हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनको ये प्रॉब्लम हो गई है। जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, जो कि अक्सर लेडीज की आदत होती है कि सबसे एंड में खुद को प्रायोरिटी देते
2: हैं, बिल्कुल,
1: तो तब तक क्या ये चीज जो है वो सोल्यूशन उसका पकड़ा जा सकता है? जैसे सपोज अगर किसी लड़की को या किसी लेडी को इररेगुलर पीरियड्स हैं, वेट पुट ऑन हो रहा है, तो उनको लगता है कि डाइट कंट्रोल कर ले, जैसे घरेलू इलाज।
2: बिल्कुल, डाइट कंट्रोल एक अच्छा, डेफिनेटली एक तरीका है इसको प्रिवेंट करने का।
1: लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, जिसमें डाइट कंट्रोल करते हैं पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको समझ नहीं आता। फिर जब तक वो आप तक पहुंचते हैं तब तक काफी समय निकल जाता है, 6-7 महीने हो जाते हैं, तब तक कहानी काफी

0: कर चुकी होती है उसको संभाला जा सकता है।
1: दो तीन चीजें हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट, एक्सरसाइज, और इसमें जो है हम हार्मोनल टेस्ट करा के देखते हैं कि पेशेंट के अंदर किस टाइप के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम उसमें होती है उसमें हार्मोन्स देके उसको ट्रीट किया जाता है। और बॉडी के अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, ऐसे केसेस में थायराइड और प्रोलैक्टिन कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो अगर वैसा कुछ हार्मोनल चेंज ब्लड टेस्ट में हमें दिखता है तो उसको हम साथ साथ ही ट्रीट करते हैं
0: जी।
1: ये तो हो गया ट्रीटमेंट का पार्ट, जो कि कई ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, स्टिल उनको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, PCOD उनकी रिपोर्ट्स में आता है, तो उसमें जो भी हार्मोनल चेंजेस या जो भी हार्मोन्स की गड़बड़ रिपोर्ट्स में आती है उसको हम साथ साथ ही ट्रीट कर देते हैं
0: जी।
1: अब आई डाइट की बात, सेकंड चीज है डाइट। डाइट में जो आजकल पैकेज्ड फूड है, जो बच्चे इतना जंक फूड खाते हैं, और जो भी जंक फूड भी नहीं खाते तो जो पैक्ड फूड होता है, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, या पैक्ड चिकन मटन होता है, या पैक्ड वेजिटेबल्स भी आजकल होते हैं
2: लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स।
1: तो कोई भी खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं बहुत सारे, वो अवॉइड करना चाहिए। जो हम सालों साल से हमारी दादी नानी के टाइम का खाना खाते हैं, जो हमारा इंडियन मील है, वो बेस्ट मील है। तो मैं हर बच्चे को या हर महिला को ये बोलूँगी कि जो हमारा इंडियन फूड है वो, उसमें हमें मैदा बेस्ड खाना जो है वो बेसिकली अवॉइड करना है, बहुत फैटी खाना अवॉइड करना है,
2: तेल घी थोड़ा कम करें।
1: यस बिल्कुल, और शुगरी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, जिसको PCOD। आई एम नॉट सेइंग कि 13-14 साल के बच्चे का आप सब कुछ बंद कर दो, वो ठीक नहीं होगा। तो हमें सिर्फ उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ बंद नहीं करना। आपको जस्ट एक नजर रखनी है कि बच्चा क्या खा रहा है ना? तो अगर वो मोमोज ये ऐसी चीजें ज्यादा खाता है तो उसे कम करिए। इंस्टेड आप उसको घर की बनी हुई रोटी सब्जी दो, दूध दो, सब कुछ दो, बट खाना जो है आपका उसके अंदर काफी सारे प्रोटीन्स होने चाहिए, फाइबर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो जो हम सालों साल से नानी दादी के जमाने से खाना खा रहे हैं वो बेस्ट फूड है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि बच्चे की एक्टिविटी कितनी है। अगर एक्टिविटी बहुत कम है और खाना ज्यादा खा रहा है तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप से आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो PCOD में इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क एक तो हो गया फिजिकल, एक हो गया मेंटल। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉज होता है।
2: बिल्कुल।
1: तो फिजिकल के लिए आप योगा कर सकते हैं, है ना? योगा अच्छा है, यू कैन जस्ट गो फॉर वॉक, है ना? वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स, डांस, स्विमिंग, जो भी जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपके घर के आसपास इजीली अवेलेबल है
2: जी।
1: ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर देना है कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट शुड बी अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। जिस चीज में भी, जिस टाइप के भी फिजिकल वर्क में आपको इंटरेस्ट है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और कोई जो आजकल एक ऐसा डाइट का पैटर्न चल रहा है कि 2 महीने में मुझे 20 किलो वेट कम करना है, उन चीजों में नहीं पड़ना है।
2: बिल्कुल, कीटो डाइट टाइप,
1: कीटो डाइट टाइप चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उनसे दोबारा वेट गेन हो जाता है।
2: तो जैसे आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे, वो
1: आपका जो वेट लॉस है वो स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज स्लो एंड स्टेडीली होती है वही आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है, तभी वो आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए आप टारगेट रखिए, अगर आप ओवरवेट हैं, कि महीने में मुझे 1 या 2 kg वेट लूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट रखा कि 2 महीने में मुझे 20 किलो वेट लूज करना है। अगर 1 या 2 kg भी वेट लूज होता है तो 6 महीने में आपका 10-12 kg वेट लूज हो जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है। PCOD ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे आप बहुत घबरा जाएं, है ना? आपको बिना स्ट्रेस के आराम से यू हैव टू अप्रोच योर डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम है। PCOD की वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसी को साथ साथ ही ट्रीट कर देते हैं अलोंग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन
2: जी। यानी ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है कि घबराहट शुरू हो जाए कि PCOD हो गया, और बहुत कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना है अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का, स्ट्रेस को दूर रखना है, और थोड़ी सी फिजिकल एक्सर्शन डेली बेसिस पर करनी है ताकि आप एकदम ठीक रह सकें। क्योंकि अगर पुराने ज़माने की बात करें तो चक्की में मसाले या आटा पीसना, या फिर बैठ कर ज़मीन पर कपड़े धोना, या बर्तन साफ़ करना, या सफाई करना, ये सारे कुछ ऐसे काम काम होते थे जिनकी वजह से फिजिकल एग्जर्शन होती थी। और अगर हम योगा के कुछ पॉस्चर्स को देखें, कुछ आसनों को देखें, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ऐसे कुछ आसन होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम ठीक रखने में मदद करते हैं। तभी पुराने ज़माने में शायद ही किसी को पीसीओडी हुआ करता
1: था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आप चक्की पीसना शुरू करो, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगी एंड यू कैन कंटिन्यू इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, सुबह सुबह यू कैन गो फॉर वॉक इन द पार्क, है ना। तो जो भी आपको पसंद हो, जस्ट मेक इट अ हैबिट कि पूरे दिन में 45 मिनट्स या एक घंटा आपको उस चीज को करना है, सो दैट यू एंजॉय। अगर आप एंजॉय करोगे तभी वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ होगा।
2: जी जी। और मुझे तो लगता है कि कोविड ने हम लोगों को इतना कुछ सिखा दिया कि अगर आप घर पे बैठ के एक मैट लेके इंटरनेट से सीख के योगा कर लेंगे, हाँ, तो शायद वो भी
1: इंटरनेट का ये एक फायदा उठाया जा सकता है कि ऑनलाइन आप काफी सारी चीजें सीख जाते हैं।
2: लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा एक अच्छे इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है जो लेडीज, जो लड़कियां आपको सुन रही होंगी, यंग एज की और थोड़ी मिडिल एज की भी, उनको भी आपकी बातों से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और डेफिनेटली अपनी हेल्थ का वो आपसे ज्यादा ध्यान रखेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू सो मच।
2: तो आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर प्रीति चौधरी आए, सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और इन्होंने बातचीत करी PCOD के बारे में, यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में। एक ऐसी समस्या जो कि पूरी तरीके से लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से हमारे शरीर में आती है, लेडीज को बहुत परेशान करती है, लेकिन इसको ठीक भी लाइफस्टाइल को ठीक करके किया जा सकता है, कम दवाइयां या फिर बिना दवाइयों के। तो ये सारी बात आज डॉक्टर प्रीति ने हमें बताई। और इस प्रोग्राम ऑल इज वेल में आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आए SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और अगर आप ये प्रोग्राम दोबारा सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो मानव रचना 107.8 इंटरनेट रेडियो की। इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। आप पॉडकास्ट के सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, आपको वहां पर ये सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे जो SSB हॉस्पिटल आप तक लेकर आता है। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते अगले शनिवार फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ प्रोग्राम ऑल इज वेल में। तो अभी मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।

0: अरे हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज मैं लेकर आई हूँ जिनको वो कहलाते हैं ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली, और साथ के साथ ये फाउंडर है अर्थ वॉरियर के। जी हाँ, आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं पंकज कुमार जी से। सो आज मानवता की राह पर हम चलेंगे पंकज कुमार जी के साथ, जो कि न सिर्फ हमारे दिल्ली की यमुना को साफ कर रहे हैं, लेकिन ये अर्थ वॉरियर है। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि ये न सिर्फ पोल्यूशन को कम कर सके, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों को जीने और रहने के लायक बना सके। सो आज हम उनसे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: थैंक यू
3: पंकज जी। पहला सवाल, आपकी अर्थ वॉरियर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब मैं जब कभी भी किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ जिसने किसी भी प्रकार के कंसर्न को अपनाया हो, तो उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है, तो आपकी क्या कहानी है?
4: देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पीछे कोई कहानी नहीं है ऐसी।
3: जी।
4: मैं कहूँ तो इन्फॉर्मेशन की वजह से इसकी स्टार्ट हुई है।
3: जी।
4: मैं जब दिल्ली, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं जब दिल्ली आया तो यहाँ पे एक था कि नवंबर दिसंबर के मंथ में स्कूल बंद हो जाती क्योंकि एयर पोल्यूशन तभी हाई होते थे।
3: जी।
4: तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके खिलाफ हमें, जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उस समय मेरी जितनी समझ थी उसके हिसाब से मैंने स्टेप लिया, और आपने देखा होगा एक वायरल होती थी वीडियो जो ऑक्सीजन मास्क और पीछे पीठ पे वो पौधा लगा के, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि लोगों को मैं इन्वायरमेंट के लिए अवेयर करूँ। इसी अवेयरनेस के दौरान मैं एक दिन यमुना पे पहुंच गया, तो फिर जो है, क्योंकि मैंने यमुना जी के बारे में पढ़ा था कि कृष्ण की यमुना, दिमाग में एक अलग पिक्चर था यूटोपियन वाली की, बहुत खूबसूरत होगी, देखा तो झाग बह रही है।
3: जी।
4: तो लगा कि बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ और मुझे लगा कि कुछ तो

0: करना चाहिए। तो वहाँ से हमारी जो है ये टीम की शुरुआत हुई और फिर हम लोग यमुना और अदर रिवर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किए।
1: तो देखिए भाई, अगर आप कई बार यमुना के किनारे जाते हैं, आप कौन से एरिया से जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी भी आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कि कोने कोनों में ही बहुत सारा कचरा है। अब वो कचरा यमुना से बहकर भी बाहर आ जाता है और साथ के साथ लोग फेंक भी देते हैं। अब इस सारे कचरे को कौन साफ करे? आइडियली आप ये कहेंगे तो सरकार का काम है, एमसीडी का काम है कि अगर यमुना है या उसके आसपास कचरा जो है उसे कोई साफ क्यों करे, ये तो उनका सरकार का काम है। लेकिन सरकार के पास भी ढेर सारे काम हैं और परेशानी ये है कि इंसान की मानसिकता को तो हम बदल नहीं पाए हैं, लेकिन बिना बदले हम बहुत सारी परेशानियां अपने लिए ही खड़ी कर देते हैं और ऐसी एक परेशानी है ढेर सारी गंदगी। तो इसे साफ करना हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन कोई है जिसने इसका बीड़ा उठा लिया है और उन्होंने अपनी जिंदगी को क्या कहना चाहिए 360 डिग्री कन्वर्ट कर लिया है। सो कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज कहलाते हैं अर्थ वॉरियर के फाउंडर और साथ के साथ ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली। पंकज जी मुझे बताइए कि कितने लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं। सो आइडली जो होता है कि हम सब अपने जीवन में, जो आप तो युवा हैं, सबसे पहले जो हमारा कंसर्न होता है पढ़ाई खत्म होने के बाद हम अपने लिए एक सिक्योर्ड जॉब ढूंढ लेते हैं या फिर हम अपने किसी बिजनेस में लग जाते हैं। लेकिन आप 24/7 अर्थ वॉरियर में कब आए, कैसे आए और साथ के साथ ये पूरी शुरुआत कैसे हुई?
0: देखिए, ये जो मैंने शुरुआत करी 2017 के आसपास करी थी, और एक आपने बात कहा कि हम जब पढ़ाई ख़त्म करते थे हमारा एक ही वो होता है कि हम जॉब करें, मैंने जॉब भी करी
1: जी,
0: और बट दिमाग वहाँ पे रह ही नहीं रहा था
1: जी,
0: दिमाग कह रहा था ये इसके लिए मैं आया हूँ ही नहीं धरती पे। तो कहीं ना कहीं जो एक इंटरनली कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे सोसाइटी के लिए करना है
1: जी।
0: इसकी शुरुआत होती, मैं जब छोटा था तो मेरे पापा मुझे स्टोरीज बताया करते थे भगत सिंह के बारे में, गांधी के बारे में, बुद्ध के बारे में। तो वो एक था कि वो बीज उस समय डाल दिया कि मेरे लिए सोसाइटी जो है सबसे ऊपर है
1: जी।
0: तो मैं जब जॉब कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि मेरा तो मेरा ड्रीम है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, तो मैं यहाँ पे पैसे मतलब जॉब कर रहा हूँ पैसे कमा रहा हूँ, बट मैं कर क्या रहा हूँ, समाज को मैं क्या दे पा रहा हूँ। तो वहाँ पे कि मैं समाज के लिए क्या कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें हमेशा मुझे जब मैं ऑफिस में रहता था तो खड़ोसती थी, मतलब मैं पैसे कमा रहा हूँ सब कुछ है पर मेंटल पीस नहीं था, फ्रस्ट्रेट रहता था। तो वहाँ से मैंने शिफ्ट होना स्टार्ट किया और पूरी तरीके से जो है 2022 में मैंने जॉब छोड़ के कम्प्लीटली जो है अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं जी।
1: इमेजिन करिए, मतलब जब मैं ये कहानियाँ सुनती हूँ ना, सो अंदर से इंस्पायर तो हम होते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते हैं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम सबको जो जीवन मिला है वो सिर्फ 9 to 5 की जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। सो भगवान ने ये नहीं कहा था कि आप जाइए बहुत सारी पढ़ाई करिए और उसके बाद एक जॉब से अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं? अगर हम बाकी लोगों की तकलीफों को महसूस कर सकते हैं या हम ये महसूस कर पाते हैं कि ये जो हो रहा है समाज में ये ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सजग जिम्मेदार नागरिक हैं। वरना हम सिर्फ भीड़ की तरह, पॉपुलेशन की तरह इस पूरे शहर में या फिर कहना चाहिए देश में या पूरे धरती पर बोझ की तरह आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। सो हम एक सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे बढ़कर मानवता की राह पर चल रहे हैं। पंकज जी, आप फाउंडर हैं अर्थ वॉरियर के, ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली भी कहलाते हैं। मुझे बताइए अर्थ वॉरियर पर किस किस प्रकार के काम आप करते हैं और आपकी जो पूरी टीम है काम करती कैसे है?
0: देखिए, एक तो होता है कि हमारा वीकली क्लीनिंग ड्राइव होता है जो संडे को होता है
1: जी।
0: कि वहाँ पे क्या होता है कि जो कालंदी कुंज घाट है वहाँ से हम लोग सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं
1: जी।
0: और उसको फिर हम लोग नगर निगम को सौंपते हैं
1: जी।
0: होता यह है कि देखिए, लोग कहते हैं कि ये एक सरकार का काम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सरकार का काम है, पर हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि मैन पावर नहीं है इतना
1: जी।
0: कि घाट पे जाके, पहले तो ये अलाउ नहीं किया घाट पे आप कचरा डंप करें, बट आप कचरा डंप कर रहे हैं तो सरकार के पास इतनी मैन पावर नहीं कि वो घाट से कचरा कलेक्ट करे। और फिर हम लोग वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करके वो नगर निगम को सौंपते हैं, फिर नगर निगम आगे उसकी प्रोसेसिंग करती है। एक हमारा ये काम है, उनके साथ साथ दूसरा हमारा काम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, कि जो भी दिल्ली में या अपने देश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके जो वाटर क्वालिटी उनको एनालाइज करते हैं, डेटा उनकी रिव्यू करते हैं और उनके बारे में पब्लिक को अवेयर करते हैं और गवर्नमेंट से भी सवाल करते हैं कि अगर आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों काम नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि आप अगर चाहे आपके आसपास जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है आप भी अगर जानना चाहते हैं कि वो सही काम कर रही है कि नहीं, तो एक सिंपल सा जो है CPCB गाइडलाइंस बनाई है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर शुड नॉट हैव एनी ऑडियोर और कलर। अगर कोई भी आप जो है सीवेज का ट्रीटेड वाटर है उनमें अगर रंग और गंध नहीं है तो आप समझिएगा वो पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर उनमें रंग और गंध है तो समझ जाइएगा कि वो पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो अगर ऐसा है कि अगर आपने देखा कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड वेस्ट वाटर गंदा है, उससे बदबू आ रही है, तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये तो ट्रीटेड है नहीं, पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ये एक मोटा मोटी जानकारी है। वैसे BOD और जो है फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया और टोटल कॉलिफॉर्म ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अभी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो है कि BOD ट्रीटेड वेस्ट वाटर में सीवेज का जो है 10 mg/L और फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 230 mg/100 ml होना चाहिए अगर पानी इस स्टैंडर्ड पे ट्रीट होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ भावना जी कि अगर दिल्ली में अभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और 764 mg/L उसकी कैपेसिटी है, तो जो पॉलिसी है स्टैंडर्ड है कि सीवेज के ट्रीटेड वेस्ट वाटर का जो BOD है वो 10 होना चाहिए और फीकल कॉलिफॉर्म 230 mg/100 ml होना चाहिए। फरवरी 2025 की अगर आप दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो यमुना जी में जो दिल्ली का लास्ट स्ट्रेच है असगरपुर, वहाँ पे फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 1,60,00,000 mg/100 ml था। और ये फीकल कॉलिफॉर्म क्या होता है? फीकल कॉलिफॉर्म होता है इंसान और जानवरों के मल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, ये फैक्ट्री से नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है जो यमुना जी में जो आप पानी देख रहे हैं वो पानी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान और पशुओं का मल है और कुछ नहीं बह रहा है, रिपोर्ट के हिसाब से ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए अगर वो प्रॉपर काम करते तो ये सिचुएशन तो नहीं होती। तो रिपोर्ट खुद सरकार की बोल रही है कि मैं जो है सरकार ने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस तरीके का सिचुएशन आ रहा है कि जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और BOD जो है 72 हो जाता है। नहाने वाले पानी के लिए है कि जो NGT की गाइडलाइंस है कि कोई भी नदी अगर उसका BOD 3 mg/L या उससे कम या फीकल कॉलिफॉर्म 500 mg/L या उससे कम है तो वो नदी जो है स्वस्थ नदी मानी जाएगी। बट उससे ज़्यादा है 3 mg/L से BOD ज़्यादा और 500 mg/100 ml से ज़्यादा अगर फीकल कॉलिफॉर्म है तो वो नदी स्वस्थ नहीं मानी जाएगी। यमुना जी का 1.5 करोड़ mg/100 ml है, सोच लीजिए लाखों गुना ज़्यादा है
1: जी
0: फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया और उसके बाद BOD 72 है, वो मतलब वो पानी किसी योग्य नहीं, ह्यूमन एनिमल किसी भी पर्पस के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर वो पानी गलती से आपने पी लिया तो वो आपको डायरिया कोलरा हो जाएगा और वही पानी जो है दिल्ली से बह के आगे मथुरा वृंदावन जाती है, उसी में लोग नहा रहे हैं, बहुत सारे लोग आचमन भी कर रहे हैं। और ये देखिए कि एक हेल्थ क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमने अपनी नदियों को स्वच्छ नहीं किया, हमने अपने वेस्ट वाटर नदी को, देखिए एक पहली बात है कि हमें नदी को स्वच्छ नहीं करनी है, हमें स्वच्छ करना है हमारे वेस्ट वाटर को। नदी तो स्वच्छ ही है, यमुनोत्री में यमुना जी अभी भी साफ है, डाक पत्थर आ जाइए साफ है, हथनीकुंड बैराज के अपस्ट्रीम पे भी साफ है, बट उसके बाद गंदी क्यों ना क्यों? हमने अपने वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, आपने अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को नदी में मिला दिया। जो नदी आपको पानी देती है उससे आपने फ्रेश वाटर लिया, अपने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसी को गंदा करके उसी नदी में डाल रहे हैं, ये कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और नदी सिर्फ इंसानों के लिए थोड़ी है, वो पशुओं के लिए भी है, वनस्पतियों के लिए भी है, बट आप उसको इतना गंदा कर दिए जो पशु जो है, कल मैं यमुना घाट पे था तो एक गाय जो है नदी में गई, यमुना जी में पानी, वो पानी गई पीने के लिए बट नदी को देख रही पानी ही नहीं पी रही क्योंकि झाग बह रहा, वो पिए कैसे? उसको भी दिख रहा है कि गंदगी है, ये पीने के लायक पानी नहीं है, हमने कैसा बना दिया है। वो नदियों को माता कहते हैं, गायों को भी माता कहते हैं, वो देश जो प्रकृति की पूजा करते हैं वहाँ पे पशुओं के साथ, पशुओं के लिए पीने के लिए पानी ही नहीं छोड़ा, आपने मोटर आरो लगा दिया, वो कहाँ से मोटर आरो लगा?
1: Yes. So, दोस्तों कहीं ना कहीं वाकई ये सोचने वाली चीजें हैं और विचार करने वाली चीजें हैं कि ये जो हमारी खूबसूरत कलकल बहती नदियां हैं, क्या हमने इन नदियों को स्वच्छ छोड़ा है या कहीं ना कहीं पॉलिसी के कारण या कहना चाहिए मैन पावर की कमी होने के कारण या प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण हम इन्हें फिर से पोल्यूटेड कर रहे हैं। पंकज जी मुझे बताइए कि हमारे जो रिवर्स हैं, खास तौर पर अगर हम अपने दिल्ली की बात करें या हमारे हरियाणा की हम बात करें, सो अगर हम हमारी गंगा यमुना को ही देखें तो हमारी ये गंगा यमुना बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। सो आप इन रिवर्स के पोल्यूशन पर कैसे काम करते हैं?
0: देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सोर्स पे जा रहे हैं कि रिवर में पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है।
1: जी,
0: रिवर में जो पोल्यूशन आ रहा है उसका कारण है कि हम अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या हाउस होल्ड हो, हम डाल रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अब आपने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए तो वो कैसा ट्रीट कर रहा है इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कानपुर में हमने बहुत से एक्सपोज किए, जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फाइन लगाए, कुछ अच्छे काम करने लगे। पहले मैं जो बिगवान में एक एसटीपी है 210 ml की, उनका जो फीकल क्वालिफॉर्म बैक्टीरिया था वो 30 lakh MPN हुआ करता था, बट हम लोगों ने जब एक्सपोज किया तो अभी 35,000 पे आ गया है वो। उनके साथ साथ देहरादून की बहुत सारी एसटीपीज है जो हमने कवर किया, वो बेहतर हुई। दिल्ली की एसटीपीज है रिठाला फेज 1, फेज 2, रोहिणी, हमने उनको एक्सपोज किया तो वो अब बेहतर काम करने लगे। तो यहाँ पे ये आती है, उनके साथ साथ नोएडा में 8 SDP है, नोएडा की एसटीपी पूरे देश में सबसे बेहतर काम करती है। नोएडा में मैं भी रहता हूँ, बहुत एक्सपोज करता हूँ, तो अब उनको जो है, और नोएडा को जो है वॉरियर, मतलब वाटर वॉरियर का अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि नोएडा की जो एसटीपी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर हम सोर्स पे हिट करेंगे, पहला तो है कि हम लोग और कुछ नहीं मांग कर रहे हैं सरकार से, हम कह रहे हैं आपकी जो पॉलिसी है आप ग्राउंड पे लागू कर दीजिए।
1: जी,
0: आपका पॉलिसी है कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर आप नदियों में नहीं डालेंगे तो उसको पहले रोकिए, और जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उनको आप गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीट कीजिए। आप ट्रीट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर मुझे दिखेगा कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जा रहा है या आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या CETP कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो मैं एक्सपोज करूँगा।
1: जी,
0: तो वही है कि अब है कि पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट में केसेस तो बहुत चल रहे हैं, कोर्ट के केसेस कागजों में क्या होता है कि कागजों में है, लोगों को नहीं पता कि रियलिटी क्या है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, फीकल क्वालिफॉर्म क्या है। न्यूज चैनल्स वाले बहुत सारे मुझे कहते हैं कि आपकी वीडियोस देख के हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं कि अभी खबरें कर रहे हैं कि यहाँ पे फीकल क्वालिफॉर्म बढ़ गया या यहाँ पे बीओडी इतनी ज़्यादा है। तो एक अवेयरनेस पब्लिक में भी जा रही है, और आप अभी देखेंगे यमुना बहुत ज़्यादा वायरल है, उसका कारण ये है कि पोल्यूशन का जो जर है वो लोगों को समझ में आ गया, पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। तो आप बात कर रहे हैं लोग कि हाँ ये है, यमुना छठ के अलावा कभी वायरल नहीं होती, बट आज देखिए छठ से लेके अभी तक यमुना ही यमुना चल रही है, हर दिन यमुना चलता है, हर कोई रिपोर्ट कर रहा है। कारण ये है कि अब वो चीज़ें बाहर आ चुकी है, प्रॉब्लम क्या है सोल्यूशन भी पता है। अब अगर हम उस पर काम करें ईमानदारी के साथ, तो गवर्नमेंट का भी दिख रहा है, बट थोड़ा और अगर हम अच्छे से काम करें, और एक है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर करें, क्योंकि हो क्या रहा है अभी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो रिपोर्ट आ रही है वो अंदर से आ रही है, तो हम लोगों ने जो है कि गवर्नमेंट में कोर्ट्स में भी अप्लाई किया है कि जो वेस्ट वाटर का जो क्वालिटी मॉनिटर हो रहा है वो सेंसर आप बाहर लगा दीजिए, एसटीपी से जब पानी बाहर निकलती है वहाँ पे सेंसर लगाइए, और वो जो वाटर क्वालिटी होगी वही मान्य होगी, अंदर से आप बाल्टी में पानी भर के रिपोर्ट बना सकते हैं। और मैंने वीडियो भेजी है, हमें एक लड़के ने अंदर से रिपोर्ट बनाया जा रहा था बाल्टी में पानी भर के एसटीपी में, वो भेज दिया वीडियो बना के, और हमने भेजा कोर्ट को कि ये ऐसे बन रहा है, तो उन्होंने भी आदेश दिया है, और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको दिल्ली में और देश के अलग हिस्सों में आपको देखने के लिए मिले कि सेंसर बाहर लगेगा, आपको रियल वाटर क्वालिटी पता लगेगी। और होपफुल है हम सभी मिलकर जरूर बेहतर करेंगे इसको।
1: सो भाई, हमारे जितनी भी नदियां हैं इनके पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी इस प्रकार की जानकारी लें। सो होता क्या है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। और हम भी, मतलब जब मैं पंकज जी से पहली बार मिली तो मेरा भी सवाल यही था कि हमारी यमुना में झाग क्यों बहती है, जब कभी भी हम यमुना में झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें झाग ही झाग नजर आता है, गंदगी नजर आती है, ऐसा क्यों। सो अगर ये नदी है और ये कलकल बहती रहती है तो हमारे पास हमेशा फ्रेश वाटर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पानी को पोल्यूट किया जा रहा है, इसीलिए इसका पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और रिजल्ट ये है कि हमारा पानी अब स्वच्छ नहीं है। सो कहीं ना कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं, हमें आवाज उठाने की भी जरूरत है और अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। पंकज जी, अब आपसे एक ऐसा सवाल जो मुझे पता है बहुत लंबा जवाब मिलेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ, जब कभी भी आप इस प्रकार का काम करने जाते हैं, रिवर्स के पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें या इन्हें साफ करने की कोशिश करें, सो आपने जैसे कहा कि आप कालिंदी घाट पर थे तो आप लोग क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें जिस प्रकार से आप अर्थ वॉरियर को चला रहे हैं एक वॉरियर बनकर, तो किस प्रकार की चैलेंजेस आते हैं, किस प्रकार की अगर देखा जाए तो चुनौतियां आती हैं आपके जीवन में?
0: नहीं, कोई किसी भी प्रकार की चैलेंजेस नहीं है, चुनौतियां नहीं है, और मुझे तो लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है मेरे साथ।
1: जी,
0: और वो होता है रेड कारपेट बिछा हुआ मैं चल रहा हूँ मतलब सिर्फ सॉल्यूशन, मतलब एक है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो ऑब्स्टेकल पहले था वो भी खत्म हो गया।
1: जी,
0: तो मुझे कोई चैलेंज नहीं आया अभी तक जीवन में। और
1: तो जब पहले दिन आपने सोचा कि चलिए यमुना को साफ किया जाए, तो क्या आपको बहुत सारे हाथ तैयार मिले कि हाँ चलिए हम भी साथ हैं, या उन्हें ढूंढने में मुश्किल लगी?
0: ढूंढने में मुश्किल नहीं लगी। शुरुआत तो मैंने खुद से अकेले से की, बट लोग आते गए
1: जी।
0: और हमारे टीम का यह है कि मैं 25-30 बंदों से ज्यादा बुलाता नहीं हूँ कभी, क्योंकि हमारा होता है कि हम लोगों का लिमिटेड होता है, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। कारण ये है कि लोग आ जाएं और उनको हमें मेंटेन भी करना पड़ता है, हर कुछ है उनके लिए, ग्लव्स चाहिए
1: जी।
0: और वाटर का मैनेजमेंट है, रिफ्रेशमेंट का मैनेजमेंट, तो उसके हिसाब से है। बट बहुत

0: अगेंस्ट भी बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, तो वो है। और एक बात यह है कि हर कोई बदलाव चाह रहा है,
1: yes.
0: सरकार भी बदलाव चाह रहा है, जो है एसटीपी वाला भी बदलाव चाह रहा है, सब कोई बदलाव चाह रहा है। आप एक ईमानदार एफर्ट लगाइए, सब कोई आपके साथ आ जाएंगे। तो यही बात है, बदलाव सबको चाहिए, हर कोई चाहता है नदी स्वच्छ हो, बट आगे बढ़िए आप, ईमानदारी से बदलाव आएगी।
1: पंकज जी, आप मुझे बताइए कि आपकी जो टीम है वो कितनी बड़ी है और आप किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। मतलब मान लीजिए चाहे आप क्लीनलेस ड्राइव में जाएं या फिर आप असेसमेंट करने जाएं एसटीपीस का, तो किस प्रकार से ये सब कुछ करते हैं आप?
0: देखिए, हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है, रेगुलर करें तो 30 बच्चे हैं हमारे पास
1: जी।
0: उनके साथ साथ जो है बहुत से वॉलंटियर न्यूली आते हैं, हर वीक आते हैं, तो 30 मेंबर जो है वो रेगुलर है
1: जी।
0: और वो सारे बच्चे जो हैं बहुत दिल से काम करते हैं कि वो क्लीनिंग ड्राइव भी करेंगे और एसटीपीज पे हम जब जाते हैं, क्योंकि एसटीपीज पे जब हम जाते हैं तो थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक तो होता है लोकेशंस जो है बहुत, मतलब आपको एक तो ह्यूमन थ्रेट भी है और नेचुरल थ्रेट भी है, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हैं, वो पानी गिर रहा है, उसको आप जाके दिखाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बहुत लिमिटेड लोग जो होता है, जो हैं 2-3-4 लोग, यही हम लोग जाते हैं वहाँ पे, उसको कवर करके फिर लाते हैं। तो टीम का ये है कि एक है कि हमारा गोल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन की कमी है लोगों में, अवेयरनेस की कमी है कि गंदगी क्यों हो रही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे अभी कि क्या ये एंडलेस इनिशिएटिव बन के रह जाएगा। देखिए, इसके पीछे का बहुत सारे इनिशिएटिव एंडलेस बन के रह चुके हैं समाज में, और कारण यह है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं दे पाए। देखिए, एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में कि जो पूजा की सामग्री, उसकी वजह से नदी गंदी
1: जी।
0: पूजा की सामग्री की वजह से प्रॉब्लम है, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना हम जो है उसको बना के बैठे हुए हैं कि पूजा की सामग्री, नदी यमुना इतनी पोल्यूटेड है क्योंकि पूजा की सामग्री। वो बहुत ही 2-1% आप मान लीजिए, क्योंकि वो सॉलिड वेस्ट होते हैं
1: जी।
0: सॉलिड वेस्ट हम भी हाथ से निकाल लेंगे, और हर बैराज के पास जो है जाला लगा होता है और वो निकाल लिया जाता है, ट्रैश बूम भी है, वो निकाल लिया जाता है। तो एक अब हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको घाट तक आने से क्यों रोके
1: जी।
0: क्या हमने, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक देश है, हमें पता है कि धार्मिक वस्तुएं आएगी, तो हमने क्या ऑल्टरनेटिव दिया है क्या उन लोगों को? हम देने में फेल्ड है, सरकार देने में फेल्ड है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों को वो ऑल्टरनेटिव दिया जाए, ताकि हम जो धार्मिक जो वस्तुएं आ रही है, हम उनको घाट पे आने से रोके और जो है उनको बाहर ही प्रोसेस करके उनको रिसाइकलिंग, रीयूज जो भी हो सके कर सके। तो उन पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, कुछ जगहों पे जो है अभी घाट पे जो है पीतल का गमला इंस्टॉल हुआ है, जहाँ पे अगर वो जो धार्मिक वाली आपकी वस्तुएं, आप वहाँ पे डाल सकते हैं
1: जी।
0: और जो है नदी में आप कुछ ना डालें, तो और बोर्ड्स भी लगे हैं, तो इस ओर गवर्नमेंट की भी है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं
1: जी।
0: कि ये चीज़ आए जी।
1: भाई, बड़ी अच्छी बात है, देखिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दे कि भाई मुझे इन रिवर्स को साफ करना है या पोल्यूशन को कम करना है या दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को, जो हर बार हम यही कहते हैं अब मास्क लगा लीजिए, अब ऑड इवन हो जाएगा, अब गाड़ी एंटर नहीं कर सकती है, हम इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, क्या हम उन चीज़ों को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और एक ऐसे ही अर्थ वॉरियर के साथ हम बैठे हैं, यानी पंकज कुमार जी के साथ आज हम बात कर रहे हैं। पंकज जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, बहुत सारे लोग आपको रेडियो मानव रचना के जरिए सुन रहे हैं, आपकी ये कहानी सुन रहे हैं, साथ के साथ मोटिवेट हो रहे हैं, और अगर वो आपके साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं, आपके इनिशिएटिव्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, सो वो किस प्रकार से इसी चीज़ को या तो वो रेप्लीकेट करें या तो वो आपके साथ जुड़े, तो ये कैसे पॉसिबल है?
0: देखिए, एक सिंपल सा है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी संडे मॉर्निंग 7 बजे क्लीनिंग ड्राइव होती है कालंदी कुंज घाट पे, ये कालंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, तो आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ साथ देखिए, अगर आप हमारे साथ नहीं भी आ सकते तो आप घर बैठे जो है नदी को स्वच्छ कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग कहते हैं सेव वाटर, सेव वाटर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप अपना पानी का जो यूज़ है, यूसेज है, अगर उसको कम करते, तो होता यह है कि आपने जो नदी से आपको पानी आ रही है, ग्राउंड वाटर या तालाब से जो पानी आ रही है, वो तो पानी उसमें रहता ही है, उनके साथ साथ होता यह है कि जो आप पानी गंदा कर रहे हैं वो भी आप कम करते हैं। अब सपोज करिए कि आपने जो है एक लोकेशन है, सरकार ने जो है सोचा कि एक लोकेशन है वहाँ पे पॉपुलेशन 1000 है, सरकार ने सोचा कि ये 1000 लोग है, ये एक बंदा एक दिन में 100 लीटर पानी यूज करेगा, तो उसने सोचा कि यहाँ पे इसके इस 1000 लोगों के लिए

0: हमने 1 लाख लीटर का जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लिया और सरकार ने वो इंस्टॉल कर दिया आपके एरिया के पास। अब यह है कि अगर आप वाटर कॉन्शियस नहीं होंगे तो सरकार ने सोचा था 100 लीटर पानी आप इस्तेमाल करेंगे, बट आप 150 लीटर पानी इस्तेमाल करें तो होगा क्या कि आपने 150 पानी इस्तेमाल भी किया और 150 लीटर पानी गंदा भी किया। तो वो 150 लीटर पानी जब गंदा होकर आपके घर से निकलेगा तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 1 लाख लीटर की है, जो सरकार ने सोचा था आप 100 लीटर यूज करेंगे, आप 150 यूज करें तो उसके पास 1.5 लाख लीटर पानी जाएगा। आप सोचिए कि अगर किसी एचटीपी पे जितनी उसकी कैपेसिटी है उनसे अगर ज़्यादा पानी जाएगा तो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगी। अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगी तो होगा ये कि वो पार्शली ट्रीटेड अनट्रीटेड पानी जो है आपके नाले में जाएगी, फिर आपकी नदी में जाएगी और आपकी नदी गंदी होगी। अगर आप पानी कम इस्तेमाल करते हैं, आप मानिए आप वाटर कॉन्शियस इतने हैं कि सरकार ने 100 लीटर सोचा पर आप 80 लीटर में ही काम चला लेते हैं, तो वहाँ जो 1 लाख लीटर का वो जो बना हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे 80,000 लीटर जाएगा, वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा और पानी बहुत स्वच्छता के साथ नाले से नदी में जाएगी, तो आपकी नदी भी बचेगी। तो आपका पानी का इस्तेमाल कितना आप करते हैं ये आपके नदी के हेल्थ पे डिपेंड करता है। आप जितना कम पानी इस्तेमाल करेंगे आपकी नदी, आपका नाला, आपके घर के तालाब, आसपास के तालाब, वो सारे बचेंगे और आपका देश भी बचेगा। तो वाटर कॉन्शियस बने और जितनी ज़रूरत है उतना पानी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि पानी मिल रहा है तो बहाएं, अगर आप जितना पानी बहाएंगे उतना ही पोल्यूशन नदी में बहेगा, तो जितना कम बहाएंगे उतना कम बहेगा।
1: इमेजिन करिए ना कि हमें लगता है कि पानी है तो हम उस पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आज जो पानी अवेलेबल है जरूरी नहीं है कि कल आपको यही पानी अवेलेबल मिले और पीने का जो पोर्टेबल वाटर है वो मिले। और ये आता है हमारी नदियों से। और इमेजिन करिए जिस तरीके से हर बार हम ये कहने लग जाते हैं कि नदियों के स्तर गिर रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बाहर देशों की तरह एक दिन इस परेशानी से जूझ रहे हों कि हमारे आसपास पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं और हम इसके ऊपर कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम इस पर्यावरण को या फिर इस नेचर को देख ही नहीं रहे हैं, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सो ज़रूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। अगर आप पानी को कम इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा एंड डेफिनेटली उसे ट्रीट कम करना पड़ेगा। और जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम उतनी ही इस्तेमाल करें तो भी ज़रूरी है। अब आज के ज़माने में तो आप खुद ही जानते हैं कि कितनी जगह इंक्रोचमेंट है और कितनी इलीगल कॉलोनीज आ चुकी हैं और ये एक्चुअली नगर निगम के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इवैल्यूएट कर पाए समय समय पर, हालांकि सेंसेस होते हैं कि और कितने नए लोग आ चुके हैं और ये जो ज़रूरत है ये कितनी बढ़ चुकी है। सो इन सारी चीज़ों को, इन सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। पंकज जी, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। इनफैक्ट यमुना जी के बारे में शायद इतनी बातें लोगों को नहीं पता थी जितनी आज हमने अर्थ वॉरियर के थ्रू जानने की कोशिश की, ऑक्सीजन मैन ऑफ डेली ने आज हमें बताया। तो जाते जाते क्या खास मैसेज आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे?
0: देखिए, हम सभी लोग जो है यमुना जी में झाग देखते हैं।
1: yes.
0: और हमारे दिमाग में चलता होगा इंडस्ट्री से आ रहा होगा। देखिए, ये झाग आ कहाँ से रहा है? हम सभी लोग जो है अपने घर में कपड़े धोते हैं
1: जी.
0: आप पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, उनको घोलते हैं, कपड़े डालते हैं, झाग बनता है, हमने कपड़े तो धो लिए। बट जब वो झाग वाला पानी हमारे घर से निकलता है, घर से नाले में जाता है, अगर बिना ट्रीट हुए फिर वो नदी में जाएगा तो ये झाग बनेगा। तो देखिए, हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिटर्जेंट यूज़ ना करें, शैम्पू यूज़ ना करें, साबुन यूज़ ना करें, बट हमें ये है कि हमें देखना होगा कि कम करें उसको। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है मतलब साबुन लगाए जा रहे हैं, शैम्पू
1: yes.
0: लगाए जा रहे हैं, तो एक तो है कि वो आपके स्किन के लिए भी ख़राब है
1: जी.
0: क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो आप जो है कोशिश करें नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने की, नेचुरल नहीं कर पाते अगर यही कर रहे हैं तो कम इस्तेमाल करें ताकि जो है आपको भी नुकसान कम हो और नदियों को भी नुकसान कम हो।
1: कितनी खूबसूरत सा संदेश दिया है पंकज जी। वाकई इस बात के लिए कंसर्न है कि हमारी नदियाँ जो हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह पाएं। नदियों का जो कॉन्सेप्ट है कि वो साफ सुथरी कलकल बहती हुई हो, लेकिन ये एक ज़माने में हम पिक्चर्स में देख पाते थे, अब हमने नदियों को साफ नहीं देखा है। अब सिर्फ अगर आप देखें तो हम एक ही बात करते हैं, गंगा की सफाई की जाए, यमुना की सफाई की जाए, हमारी सारी नदियां जो सूख रही हैं उन्हें हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। सो कहीं ऐसा ना हो कि हम इन नदियों को ही गवा दें। तो ज़रूरी ये है कि जब कभी भी आप चीज़ों का इस्तेमाल करें कॉन्शियसली ये ध्यान रखें कि इसका जो आउटकम है वो कहाँ जा रहा है और वो किस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए कि आपके आसपास का जितना भी इस्तेमाल का पानी है अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा है तो वो झाग बनकर यमुना में जा रहा है, और इसी प्रकार वो न सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है लेकिन हमारी यमुना जी को गंदा भी कर रहा है। सो न सिर्फ हमारी इमोशनल वैल्यू है इन नदियों के साथ, लेकिन साथ के साथ ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स है। सो जरूरी ये है कि हम भी थोड़ा सा सजग हो जाएं, कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने और रिस्पॉन्सिबल कदम उठाएं। तहे दिल से धन्यवाद पंकज जी एक बार फिर से, आज आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
2: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है क्या?
1: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
3: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
4: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम साथी। आप सभी को पता है साथी खास कार्यक्रम, जिसमें मैं आप ही की मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करती हूं। लेकिन हर हफ्ते एक नई प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करती हूं और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए मेरे साथ होती हैं मेरी साथी। आज की जो मेरी एक्सपर्ट और साथी हैं वो है डॉक्टर दिव्या धवन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। एक्सपर्ट के बारे में बता दिया है, तो चलिए भाई टॉपिक के बारे में भी बता देती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ उस कॉमन सिनेरियो के बारे में जिसको लेकर हम सब काफी कंसर्न है। आज के जमाने में हम सब देखते हैं कि हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और खास तौर पर आज का यूथ सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड हो गए। सो एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, अपनी चिंता करते हैं और उनके अंदर ना कहीं थोड़ा सा कंपैशन कम हो गया है। ये जरूर है कि हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज का यूथ पेशेंट नहीं है, आज का यूथ दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं या सेल्फिश हो गए हैं। कारण क्या है, किस प्रकार से मेंटल हेल्थ और सोसाइटी पर ये इम्पैक्ट डालता है, इस पर करेंगे ढेर सारी बात। लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्वागत करूंगी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या धवन का रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
5: नमस्कार, थैंक यू।
4: डॉक्टर दिव्या, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सब यही कहते हैं आजकल के यूथ में, खास तौर पर अगर हम जिन्हें जेन जी या जेन अल्फा कहने लग गए हैं, हमें ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, इन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं। फॉर इंस्टेंस, सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी जो होती है वो हमारी पेरेंट्स पर होती है और हम उनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अगर वो कुछ कह दें या फिर उनके लिए तो हम जान भी दे देंगे। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आप देखेंगे कि इंसान अपने पेरेंट्स से भी पहले अपने बारे में सोच रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ सेंटर्ड वाली चीज है, या सेल्फिश मुझे कहना चाहिए, ये जो अप्रोच है, क्या ये अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है या आने वाले टाइम के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये घातक हो सकती है?
5: जी बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच का रूट कॉज अगर हम जाने तो स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म का बढ़ जाना,
4: yes.
5: या बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखना, कम्युनिटी वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बातें ना करना, उसमें डिक्लाइन होना, ये सब मॉडर्न सोसाइटी में असली कारण हैं जिसकी वजह से आज का यूथ सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है। जैसे आपने बोला कि लोग पहले तो अपने पेरेंट्स के लिए जान भी देने को तैयार थे और आज पूछते भी नहीं हैं उनको। दिस कुड बी बिकॉज दोज पेरेंट्स डिड नॉट एक्सपोज देयर चिल्ड्रन टू अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो हमारा जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। बच्चों को जॉइंट फैमिली में रहना नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो जो वैल्यूज हैं, रिस्पेक्ट है, शेयरिंग, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ये इतनी इंटेग्रल वैल्यूज होती हैं जो कि आजकल के बच्चों को ठीक से इनकलकेट नहीं करवाई जा रही हैं। और भी कारण हैं, जैसे जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ता जा रहा है, लाइक्स, फॉलोइंग, शेयर, ऑल ऑफ दिस हैज़ बिकम अ वे थ्रू विच द यूथ इज़ मेजरिंग देयर सेल्फ वर्थ। तो सेल्फ वर्थ पता किससे चलती है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं। आजकल रील्स बहुत चलने लग गई हैं, तो हाईलाइट रील इफेक्ट जो है उससे लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं। तो अब यूथ का जो फोकस है वो अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट दिखाने में चले गया है, जिससे कि सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ जाती है, सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है, सिर्फ एक रूम में बैठ के पूरा दिन मोबाइल पे आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक फेक जिंदगी दिखाने पे फोकस कर रहे हैं। और इसी फेकनेस में होता क्या है कि हमारा सारा फोकस इस पे चले जाते हैं कि व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू आई ओन, रादर देन व्हाट कैन आई गिव बैक टू पीपल, व्हाट डू आई हैव फॉर द सोसाइटी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा यूथ पेशेंट नहीं है, वेट करना नहीं आता उनको, क्योंकि उनको एकदम क्विक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, 10 मिनट्स में डिलीवरी है। पहले ब्लिंकिट जोमैटो जेप्टो की थी, अब अमेजोन और मिंत्रा भी वही मॉडल पे आने लगे हैं, विद इन अ डे दे आर डिलीवरिंग, विद इन हाफ एन आवर दे बी डिलीवरिंग। तो यूथ में कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट फॉर थिंग्स टू वर्क इन योर फेवर। अगर आप पेरेंट्स का भी अप्रोच देखें तो आजकल की पेरेंटिंग अप्रोच ये है कि मैं अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो आपने अपने बच्चे को कोई एडवर्सिटी या डिफिकल्ट पाथ दिखाया ही नहीं, तो फोकस सारा बच्चे का आया कि मैं ही खुश होना चाहिए
4: जी,
5: वहां से भी सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ती है।
4: सो देखिए, कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि आज के युग की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को मुझे लगता है एक या दो जनरेशन पीछे जाकर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे हम किसी भी चीज को, किसी भी परेशानी को जब उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो हम बड़ी क्लियरली देख पाते हैं, चीजें जब बहुत करीब होती हैं तो हम उन्हें क्लियरली नहीं देख पाते हैं। शायद सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड आज के यूथ का कहीं ना कहीं उन्हीं के अभिभावक या उन्हीं के पेरेंट्स या उन्हीं के परिवार से उपज किया गया है। एक टाइम होता था जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारी लग्जरी नहीं दे पाते थे। कारण ये था कि परिवार में एक ही सदस्य कमा रहा होता था और तब सैलरीज या कमाई बहुत कम होती थी और कमाने के जरिए बहुत कम होते थे। आजकल अगर परिवार में 5 लोग हैं तो वो 5ों लोग कमा रहे हैं और कमाने के जरिए भी 10 हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि सबका रुझान सिर्फ इस चीज पर है कि हम पैसा कितना कमा रहे हैं। हम इस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम परिवार को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज से ले क्या रहे हैं और क्या उसके लिए हम थैंकफुल हैं। सिर्फ ये माना जाता है कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो उसका एक एक एक पैरामीटर है सिर्फ और सिर्फ पैसा। सो शायद ये हमें और सेल्फ सेंटर्ड बना रहा है कि अगर मेरे पास पैसा है तो ये दुनिया मेरे पास आएगी और हमें ये दुनिया को झुकाना बहुत आसान हो जाएगा। शायद रिश्तों के मायने हमने बदल दिए हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कहीं ना कहीं इन वैल्यूज़ को घर से ही इनकलकेट करने की। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। अगर आप देखें तो आज के ज़माने में हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। मतलब शायद एक टाइम था जब हम खुद इस चीज़ का, हमारी माइथोलॉजी कहती है कि अपने जीवन का त्याग करके, या फिर कहना चाहिए अपने पर्सनल सारे गोल्स या अपने सारे प्रेफरेंसेस छोड़ के श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए क्योंकि उन्हें अपने पिता के एक वचन को निभाना था, या कहना चाहिए कि एक वादे को निभाना था। लेकिन आज के टाइम में आप 14 मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। 14 साल तो एक बहुत लंबा समय है अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करने के लिए कह दें। और ये बहुत कॉमन सिनेरियो है। आज के ज़माने का जो यंगस्टर है या यूथ है या बच्चा है, वो ये कहता है अगर आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने मुझे पैदा किया और आप ही मुझे नहीं पालेंगे तो क्या, मतलब ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपने कुछ अलग नहीं किया है मेरे लिए। सो ये एक बड़ा थैंकलेस सा एटीट्यूड है और ऐसे में उनका फोकस ये होता है मुझे नई गाड़ी, मुझे नई बाइक, मुझे नया मोबाइल फोन। और ऐसे हम एक्स नंबर ऑफ केसेस देखते हैं जहां वो ये भूल जाते हैं। मतलब ऐसे शायद हमारे पास अनगिनत उदाहरण है दिव्या जी, जहां पर मैं ये बता सकती हूँ कि यंगस्टर्स ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स की सैलरी कितनी है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे आसपास के जितने भी पीयर ग्रुप हैं उनके पास मोबाइल फोन कौन सा है, उनके पास बाइक कौन सी है या उनके पास गाड़ी कौन सी है, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उन पर एक अलग किस्म का सोशल प्रेशर बना देता हूँ, इमोशनल प्रेशर बना देता हूँ। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं भाई, किसी ना किसी तरह से उनकी जिद पूरी करनी है। सो मुझे बताइए कि ये जो सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करना है, ये क्या खुद उन बच्चों के लिए बुरा नहीं है?
5: ये उन बच्चों के लिए काफी बुरा है, बट हम कुछ भी इसको ठीक करने के लिए कर पाए उसमें हमें बच्चों से पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि पेरेंट्स ने, जैसे आपने बोला कि पहले जनरेशन में हार्डशिप्स के थ्रू आप निकलते थे, कम मीडियम थे पैसे कमाने के, आप बड़ी मेहनत करके वो पैसे कमाते थे, उसका दर्द पेरेंट्स ने महसूस किया है। अब वो दर्द अपने बच्चों को नहीं महसूस करने देना चाहते हैं। पेरेंट्स आर डूइंग मोर देन व्हाट दे कैन डू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टू देयर चिल्ड्रन।
4: यस,
5: अब इनिशियली तो ये

0: चल जाता है, जैसे कि अच्छा पेंसिल बॉक्स देना, अच्छा बैग देना, अच्छे कपड़े देना, अच्छे खिलौने देना। आप अपने स्टैंडर्ड से ऊपर उठ के ये सब अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं सीखा है exactly. या उन्हें नहीं पता कि पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके पैसे कमा के ये हमें दिया है, तो अब बच्चों को ये लग रहा है कि हम तो जो मांगेंगे हमें मिलेगा और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें देना। तो वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को मैनेज करने में। बट अगर हम हर चीज़ का कारण समझ के वहाँ से ठीक करने लगें, हम बच्चों को क्यों उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं जिसके लिए हमने उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं, सिखाया yes. ही नहीं। अगर हम स्कूल में भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग, कंपैशन एक्टिविटीज़, काइंडनेस एक्टिविटीज़ या स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों में किसी भी तरीके से ये इनकलकेट कर पाएँ, तो आई थिंक इसमें काफ़ी चेंज आएगा।
1: ये बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट यू नो किसी भी स्टेज पर, चाहे फिर हमारी एकेडमिक वर्ल्ड में देख लीजिए या पर्सनल वर्ल्ड में देख लीजिए, हम थैंक यू कहना नहीं सिखा रहे हैं। हम थैंक यू कब कहते हैं? जब हमें हमारी मनपसंद चीज़ मिल रही होती है। ये एक्चुअली दे डिजर्व इट, वो ये सोचते ही नहीं है कि हमें किसी की कड़ी मेहनत से या किसी के बहुत सारे सैक्रिफाइस से मिल रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि एक जनरेशन अपने आप को बिल्कुल अपनी सारी खुशियों को कुचल के दूसरी जनरेशन को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी जनरेशन शायद ये समझ ही नहीं पाती है। एंड थ्रू एंड थ्रू आने वाली जनरेशन को लगता है ये इजी मनी है और हमें तो यूं ही मिल गया है। सो उसके लिए मेहनत करना या फिर उसके लिए थैंकफुल होना या ग्रैटिट्यूड रखना कहीं आता नहीं है। और यही अगर आप देखेंगे तो अब समाज में हो रहा है। आज के ज़माने में हम अगर देखें तो जो करंट जनरेशन है उसने अपने आप को एक कंज्यूमर बना लिया है। हम इंसान नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं बिकाऊ हैं। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं तो वो बिक रहा है, अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं तो वो बिक रहा है, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो वो बिक रहा है, अगर आप नौकरियां दे पा रहे हैं तो वो आप बेच सकते हैं, समाज में अगर आपका एक बड़ा रुतबा है तो आप बेच पा रहे हैं, लंबी गाड़ियां या फिर बहुत ऐशो आराम आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई चीज नहीं है तो आप उस समाज में रहने लायक भी नहीं है और आप कहीं पूछे भी नहीं जाएंगे। ये एक गलत धारणा आ गई है जिसे हम कहते हैं कि हमारे समाज को खराब कर रही है, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हैम्पर यहाँ हो रहा है। हम क्या बन रहे हैं? कमर्शियल कंज्यूमर बन गए हैं, या फिर कहना चाहिए हम एक प्रोडक्ट बनकर रह गए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, मान लीजिए कि आपने कहा अपने पेरेंट्स को मुझे एंड्रॉयड फोन दिला दीजिए और वो आईफोन ला देंगे, तो आप गले लगकर थैंक यू कहेंगे, हग भी करेंगे, क्योंकि आपने जो चाहा उससे ज्यादा मिला। लेकिन अगर आपने जो चाहा उससे कम मिला तो आप थैंक यू भी नहीं कहेंगे, आप नाराज होकर उन पर एक प्रेशर डाल देंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो आदत है, ये आदत आपकी लाइफ में भी आ जाती है। सो ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ जो बिल्कुल थैंकलेस हैं फॉर व्हाट गुड लाइफ दे आर लीडिंग। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो जिंदगी है ये तो बाय डिफॉल्ट वो लेकर आए हैं, जन्मसिद्ध अधिकार है उनका, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें जन्म दिया है, वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, और अगर वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या अच्छे कॉलेज में या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में वो जा पा रहे हैं, सो ये एक्चुअली दे डिज़र्व इट। वो ये सोचते ही नहीं है कि हमें किसी की कड़ी मेहनत से या किसी के बहुत सारे सैक्रिफाइस से मिल रहा है। और ये बिल्कुल सही है कि एक जनरेशन अपने आप को बिल्कुल अपनी सारी खुशियों को कुचल के दूसरी जनरेशन को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी जनरेशन शायद ये समझ ही नहीं पाती है। अब बात करते हैं समाज की, क्योंकि देखिए समाज का जो फैब्रिक है ना वही हमारे पूरी दुनिया के फैब्रिक को बना रहा है। सो धीरे धीरे समाज राज्य बनाता है, साथ के साथ हमारे आसपास की दुनिया को बनाता है। अब अगर हम ये देखें तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज पर आ रहा है। ये शुरुआत घरों से हुई और घरों से समाज में हुई, और आज के टाइम पर जीने का जो पैरामीटर है वो शायद पैसा बनकर रह गया है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि हम बेसिकली पहले कहते थे ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जब हमें लगता है कि अब उनका यूज़ ख़त्म हो गया है, अब वो किसी ऐसी पोजीशन पर नहीं है जहां वो हमें कुछ दे सकें, हम उनकी वैल्यू ज़ीरो करते जा रहे हैं। इनफैक्ट वो घरों से भी बाहर होते जा रहे हैं, उनकी जो कहना चाहिए प्रॉपर्टी है एक बार वो मिल जाए तो उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं। और ये समाज घर घर की कहानी हो गई है, इतने सारे ओल्ड एज होम मुझे लगता है शायद इसी की उपज है। अब ऐसा ही अगर हम देखें तो इसी प्रकार का एक कंज्यूमर इफेक्ट वाला इम्पैक्ट डल रहा है हमारे पूरे समाज पर। तो किस प्रकार से खराब हो रहा है हमारा समाज?
0: इसका हमारे समाज के ऊपर इस तरीके से ही इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल एल्डरली लोगों का आपने लिया कि उनको बहुत निग्लेक्टेड फील हो रहा है अपनी फैमिली में। आजकल के बच्चे अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को और सक्सेस पे सारा फोकस है, तो फैमिली वैल्यूज और फैमिली के कंसर्न्स पीछे हो जाते हैं। आजकल के बच्चे फैमिली ओरिएंटेड इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाहर घूमने जाना है, सैटरडे संडे पार्टी करनी है, वीकडे में ऑफिस जाना है, तो फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है
1: जी।
0: तो दैट इज वन रीजन। और हमारा समाज में आप देखिए आज इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ कंसर्न है जितने पहले कभी नहीं हुआ करते थे। एक तरीके से मेंटल हेल्थ का अपना पैंडेमिक स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, वेयर एवरी अदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं और हम में कंपैशन की इतनी कमी हो गई है कि हम किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों से कनेक्शंस फॉर्म करने में डरते हैं, हमें डर लगता है कि लोग अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस में आने के लिए हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमें बिट्रे कर सकते हैं। उन लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो दैट इज़ इम्पैक्टिंग आर सोसाइटी। क्योंकि अगर मैं अपने समाज पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, अपने लोगों के आसपास कनेक्शंस नहीं बना पाऊंगी, तो आई विल फील डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड मी, और वो डिस्कनेक्ट मुझे और ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ लेके जाएगा। सो दैट इज़ वन वे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको हमारी ज़िंदगी के हर एरिया में इम्पैक्ट दिखेगा, बी इट क्लाइमेट चेंज। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही हो, मैं लूँगी, मैं क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचूंगी क्योंकि मेरा कनेक्ट ही नहीं है दुनिया से। या चाहे वो करप्शन हो वर्क प्लेस में, चाहे मेरे को किसी को डिसीव करके, किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, एक्सप्लॉइट करके अगर आगे पहुँचना हो, तो वो भी होगा क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज लाइक इंटरलिंक्ड। एंड आई थिंक अगर हम रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे तो एक विशियस साइकिल बन जाएगी जिसमें हम खुद ही फंस जाएंगे। अगर हम इससे निकलना भी चाहते होंगे ना तो नहीं निकल पाएंगे। तो आई थिंक रूट कॉज को जो एड्रेस करना है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें हर जनरेशन की ट्रेनिंग लगेगी, जो हमसे हम हैं, हमसे पहले और हमसे आगे वाले। व्हेन वी ऑल कलेक्टिवली सिट एंड वर्क टुगेदर, वी डिस्कस अबाउट द इश्यूज, और हम में इतना करेज हो कि हम एज अ फैमिली एक यूनिट वो चेंज लाने के लिए रेडी हैं, देन आई थिंक इट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। बच्चे अपने क्लासमेट्स को बताएंगे, क्लासमेट्स अपने घरों में बताएंगे, और वो पूरा चेंज वहाँ से सर्कुलेट होगा।
1: सो भाई देखने में ऐसा लगता है कि ये सपने जैसा है जिसे पूरा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक साथ सबकी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब हमने ना समाज की सोच को बना दिया है, और जहाँ लोगों को आसानी से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम पूरे विश्व के सबसे करप्ट कंट्रीज में से हैं, बट देन वी टेक प्राइड इन लिविंग लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है। हम अगर आउट ऑफ द वे हमें कोई भी किसी चीज़ का फेवर दे रहा है तो हम उसे बड़े गर्व से लेते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि एज लॉन्ग एज अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सो हमने एक एटीट्यूड अपना लिया है कि बस हमें अपने बारे में सोचना है, एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच हमारी हो गई है। और ऐसा नहीं है, इस सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से कभी कभी हम खुद भी मात खाते हैं, कभी कभी इस सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच में हम भी इसके पिसने में आते हैं, लेकिन तब हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, और जब हमें फेवर मिल रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हमें कॉन्शियसली इसे बैलेंस कर। जब जो सफ़र करने पर आता है तो उसे वो अन्याय लगता है, लेकिन जब तक वो उसके फेवर में होता है तो हमें लगता है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो मुझे बताइए कि अगर हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करें तो इसे कैसे किया जा सकता है?
0: बैलेंस करने के लिए तो ये है कि पर्सनल सक्सेस और सेल्फ सेंटर्डनेस कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ओनली रॉन्ग व्हेन इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रीम फॉर्म। तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल ग्रोथ के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स ये हैं कि अगर ये ज़्यादा एक्सट्रीम में बढ़ जाए तो आप का फोकस सिर्फ अपने ऊपर रहता है, आप सेल्फ कंज्यूम्ड हैं और आपका कंसर्न और लोगों के लिए कम हो जाता है। और अगर आप इतने ज़्यादा खुद में कंज्यूम्ड हैं तो आप बड़े सेंसिटिव हैं अपनी हर एक थॉट और इमोशन को लेके, जिससे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो इसके दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। बैलेंस करने के लिए हमें फोकस ग्रोथ पे करना है, इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करिए, लेकिन साथ में सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करिए। सक्सेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ बिट्रेइंग एनीबडी। अपनी सक्सेस को अपने हाथों से खुद बनाइए, खुद मेहनत करके अचीव करिए, किसी और को धोखा देके आगे जाने के प्रयास ना अगर हम करें। और बड़े ओपन रहें हम कनेक्शंस को लेके, और लोगों से इंटरैक्शंस में अगर हम ओपन माइंड से डिस्कस करें, अपने आप को थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेके रखें, तो हम दुनिया को बहुत बेहतर और बड़े व्यू पॉइंट से समझ पाएंगे और हमारी बहुत आंखें खुलेंगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है दुनिया में। फोकस अपने पे करिए, औरों से कंपेयर मत करिए, अपनी मेहनत करिए, अपनी ग्रोथ अचीव करिए, लेकिन गिव बैक टू द सोसाइटी सो दैट यू ऑल्सो मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ही इसका यही है, फैमिली निग्लेक्ट होना और अपनी मेंटल हेल्थ सफर करना। तो इस तरीके से फोकस करते हैं ग्रोथ पे कि अपने आप को भी ठीक रखें और दूसरों को भी ठीक रखें।
1: भाई देखिए, जब कभी भी हम सक्सेस की लैडर पर चढ़ते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, तो परेशानी होती है कि जो सफलता की सीढ़ी है ना, ऊपर जाने के बाद आप बहुत अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपने अपनों को तो छोड़ ही दिया है, मानकर चलिए। और जब आप अपनों को छोड़कर चल रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो भी छूटेंगे, क्योंकि जब हमारा फोकस सिर्फ हम या मैं है, तो हम बाकी सबको कहीं नहीं देखेंगे अपनी ग्रोथ में, और वो हमें हमेशा हमारे कहीं ना कहीं पूरे रास्ते का रोड़ा नजर आएंगे। तो आप उन्हें साफ करते हुए चलेंगे कि ये रोड़ा मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए, मेरी ग्रोथ यानी मेरी ग्रोथ। और एक दिन ऐसा होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और जब आप अकेले हो जाएंगे ना, तो शायद आपके पास ढेर सारा पैसा हो, लेकिन मेंटल हेल्थ, पीस, खुशी, ये सब आपके पास नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो आप सोचिए ना कि एक ही जीवन मिला है जिसे बड़ी खुशहाल तरीके से जिया जा सकता है। और मैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखवाने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि क्यों नहीं याद रखते हैं कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं। जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सनल सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, और हमारे लिए जो सक्सेस का पैरामीटर है वो है पैसा, इस पैसे को आप कभी भी लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम उसके साथ आने वाली खुशियों को अगर सोच रहे हैं, ये सारी खुशियां जो हैं यही सही सुख है, तो इस पर भी सोचना जरूरी है कि क्या ये आपको सुख दे पा रहा है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली वो आपको सुख नहीं देगा। अगर आप पैसा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, तो आपको वो सुख नहीं देगा। अगर आप पैसा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पीस, परेशान है आप लोग, लोगों से धोखा कर रहे हैं, करप्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी रात को नींद तो चैन से नहीं आएगी। तो आप सोचिए ना कि आपने कमाया क्या, आपने धन तो कमा लिया, उस धन को आपने मान लीजिए कि बड़ी गाड़ियों में, घरों में, हॉलीडेज में, वेकेशंस में उड़ाया, लेकिन आंतरिक सुख तो नहीं पाया ना। कहीं आपको ऐसा लगा कि वैलिडिटी तो नहीं है ना इसकी, डर लगा रहता है कि कहीं ये पैसा पकड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसे जिस ढंग से कमाया है हम जानते हैं। सो डेफिनेटली बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हम इस समाज से जो लेने आए हैं उसे ले पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सेल्फ सेंटर्ड होना, आपका सेल्फिश होना, या फिर सारी दुनिया के साथ आप कट के सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ये बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है। अब हर इंसान के लिए, वैसे देखिए टारगेट में यूथ को कर रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा कम है कंपैशन, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी डॉक्टर दिव्या कि यंगर जनरेशन से खास तौर पर देखा जाए, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम कंपैशन कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये हम अपनी आदत कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक तरफ हम अपनी ग्रोथ की तरफ काम करें, लेकिन हम ये भूले नहीं कि हमें औरों के लिए भी काम करना है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें इसे अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। तो जैसे हमने डिस्कस किया ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, तो अगर घर में पेरेंट्स बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाएं, और स्कूल में टीचर्स सिखाएं, और ग्रैटिट्यूड का असली मतलब सिर्फ कुछ मिलने पे थैंक यू बोलना नहीं है, जो आपके पास है और आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसके लिए एक्चुअली थैंक यू फील करना है। आपके घर के ऊपर एक छत है, आपके पास, आप सिक्योर हो, आप सेफ हो, आपकी डेली नीड्स सारी मीट हो रही हैं, इसका ग्रैटिट्यूड होना ही बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है। और हमारी बहुत सारी नीड्स वहीं पे सेटिस्फाई हो जाती हैं जब हम इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। करेक्ट रोल मॉडल्स होना, तो अगर पेरेंट्स और टीचर्स थोड़ा सा मॉनिटर कर पाएं कि बच्चे किस तरीके के लोगों को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम बच्चों को बहुत क्रिएटिव वे में कुछ मूवीज़ दिखा के, कुछ ऐसे गाने सुना के, कुछ ऐसे पोएम सुना के, या थ्रू लिटरेचर जहाँ पे ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ कंपैशनेट हैं लोग, जहाँ काइंडनेस है, वैसी चीज़ें बच्चों को दिखाएं, उनके साथ डिस्कस करें, और उन्हीं एक्ट्स को उनके डेली करिकुलम में इन्वॉल्व करें। जैसे रोज़ उनको हम एक लेक्चर दें जहाँ हम 20 मिनट सिर्फ उनको एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में इंडल्ज करने के लिए बोलें, कि वो कैंपस में जाएं, स्कूल में जाएं, और जहाँ दिखे किसी की हेल्प करें। कहीं हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी की, तो कहीं कूड़ा कुछ गिरा है वही उठा दें। तो आप kindness is not just for other people, it is also for our society, it is for our community, for the world that we live in. तो ऐसे बड़े सारे तरीके हैं जिनसे हम बच्चों को डेली लाइफ में काइंडनेस और कंपैशनेट होना सिखा सकते हैं।
1: और इन सब की पहली सीढ़ी है कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर ले, क्योंकि जब उस स्क्रीन से हमारी नजरें हटेंगी तो हमें दुनिया की बाकी सारी चीजें नजर आएंगी। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज के जमाने में हम सोशल मीडिया की लाइफ थोड़ा सा कम जी के रियल लाइफ जीने में विश्वास रखें। डॉक्टर दिव्या, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है इसका डिबेट तो हर रोज हर एकेडमिक सेशंस में होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, घरों में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आने की ज़रूरत है, ना सिर्फ यंगस्टर्स में लेकिन मुझे लगता है एल्डर्स में भी, कि हम दे क्या रहे हैं, समाज से ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार का फैब्रिक हम समाज का बनाते हैं उसी में हम रहने लग जाते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। सो ज़रूरी है कि क्या हम बदलाव की तरफ आ रहे हैं या हम और सबको सेल्फ सेंटर्ड होने में धकेल रहे हैं। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को कैसे खास मैसेज के साथ आप बाय कहना चाहेंगी?
0: बिल्कुल भी देखिए डिसहार्टन या सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने ऊपर फोकस करने से सबका नुकसान ही हो रहा है। बस थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि कहीं आप अपने ऊपर इतना फोकस तो नहीं है कि आपके सामने कोई दुख में है, दर्द में है, कोई आपसे थोड़ी हेल्प चाह रहा है और आप अपने ऊपर इतना फोकस्ड हैं या अपनी सक्सेस में इतना खो गए हैं कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे या आपको उसकी बात सुनाई ही ना दे रही हो। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके आसपास के लोग भी आपके साथ हों जब आप सक्सेसफुल हों, तो वो भी आपकी खुशी में खुश हो पाएं, आप उनकी खुशी में खुश हो पाएं या एक दूसरे के साथ अपना दुख बांट पाएं। तो बस इतना ही चेक करने की जरूरत है।
1: ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि आंसर है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं तो क्या आपके लोग आपके आसपास हैं, और जब आपके आसपास के लोग सक्सेसफुल हैं तो क्या आप उनकी सक्सेस का हिस्सा बन पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो कहीं ना कहीं खुशी नहीं है, और अगर खुशी नहीं है तो आप बताइए जीवन का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है ही कहाँ। अगर आप खुशी नहीं है तो ये पूरा जीवन आप सिर्फ पैसे के साथ या फिर अपने ही शौक के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ कैसे जिएंगे? कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी पड़ाव में तो आपको महसूस होगा कि जहां से मैंने अपने इस सफर की शुरुआत की थी वो लोग मेरे साथ नहीं है। सो ध्यान रखिए कि आज भी दुनिया में कंपैशन की बहुत जरूरत है। वो छोटे छोटे कंपैशन के एक्ट्स आप कर सकते हैं। शुरुआत से लेके अंत तक मैं यही कहूंगी कि अगर हम अपने नेचर को इस प्रकार बनाएं कि हम अपने आसपास के लोगों को ये महसूस करा पाएं कि हम जी रहे हैं, रोबोट्स नहीं है और हार्टलेस तो बिल्कुल भी नहीं है, हम मशीन नहीं है, तो शायद हम सही और खूबसूरत जिंदगी जी पाएंगे। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर दिव्या, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
0: थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते प्रोग्राम साथी में। टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण न सिर्फ मेरे दिल के करीब, लेकिन आप सब चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, लेकिन परेशानी ये है कि महिला सशक्तिकरण को करने के लिए खुद महिलाओं को आगे आने की जरूरत है और इस कार्यक्रम का ध्येय भी यही है। पिछले 15 सालों से अगर ये खूबसूरत सा कार्यक्रम रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आपको सुनाई दे रहा है तो उसका एकमात्र कारण है कि महिला सशक्तिकरण हर महिला तक पहुंच जाए। और जब सभी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो हमारे कार्यक्रम का जो पर्पज है यानी वी महिलाएं एक साथ आ जाएंगी। सो वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट आज का खूबसूरत सा एपिसोड मैं लेकर आ गई हूं। और आज की हमारी जो खास गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज्योति राणा, जो कि रजिस्ट्रार हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। इसी के साथ साथ ये एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं, ऑथर भी हैं, लीडरशिप मेंटोर भी हैं, लेकिन अपने आप में एक सशक्त और डायनेमिक महिला हैं। करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
1: डॉक्टर ज्योति, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं हर महिला से पूछती हूँ, कार्यक्रम का नाम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, और वेमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग मायने रखती है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण की क्या डेफिनेशन हो, या आप किसे सशक्त महिला कहेंगी, सो क्या कहेंगी आप?
2: भावना, मेरे मायने में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ये है कि हर महिला अपनी तरह से अपनी सोच के अनुसार अपनी जिंदगी जीने में सक्षम होनी चाहिए। यानी कि अगर वो एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहती है तो जो कुछ वो एजुकेशन में पाना चाहती है, जो कुछ वो पढ़ना चाहती है वो पढ़ सके
1: जी।
2: जो करियर वो चूज करना चाहती है, जिसकी भी उसको इच्छा है, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में, और चाहे वो टीचिंग के क्षेत्र में या शूटिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाना चाहती है, कॉरपोरेट लाइफ में जाना चाहती है
1: जी,
2: तो वो उस क्षेत्र में जा सके। या फिर अगर वो अपनी सोच से कुछ नया करना चाहती है, कोई काम करना चाहती है, किसी क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती है, तो उसको उतनी स्वतंत्रता हो कि वो जाकर अपने उस क्षेत्र में काम कर सके
1: जी।
2: इसके अलावा अगर अपने आसपास भी कोई काम करने का मन है, या अपना जो जीवन है जो शादी के बाद चुनना चाहती है, अपनी पसंद से अगर वो चुनना चाहती है, और अगर अपनी सोच के अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करती है और कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, देश में करना चाहती है, विदेश में करना चाहती है, तो वो बड़ी स्वतंत्रता से अगर उसको चूज करना चाहती है और वो चूज कर सकती है, मेरे लिए वो वीमेन एम्पावरमेंट है।
1: अब ज्योति जी, सबसे अहम सवाल, महिलाएं और चैलेंज कम टुगेदर, मतलब सर नहीं में महिलाओं के साथ चैलेंज, और शायद ही किसी भी आज तक की सक्सेसफुल महिला से हम बात करें तो वो ये कभी भी नहीं कहेगी कि उसकी जर्नी केक वॉक रही है, हमेशा से परेशानियों से भरा हुआ जीवन होता ही है
2: जी।
1: सो अगर आज के सिनेरियो की मैं बात करूं, क्या लगता है किस प्रकार का चैलेंज फेस कर रही है आज की महिलाएं?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, और मुझे लगता है ये प्रश्न हर किसी महिला के सामने किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर आता है
1: जी।
2: और चैलेंजेस, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चैलेंजेस हर किसी ह्यूमन बीइंग के सामने हैं
1: जी,
2: लेकिन महिलाओं के सामने थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं
1: जी।
2: क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर हमेशा जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं
1: जी,
2: उनका जो करियर सोचा जाता है वो ये सोचा जाता है कि एक हद तक पढ़ लिख कर और उनको अपना लाइफ में सेटल होना है।
1: yes.
2: सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है प्रसेप्शन है।
1: बिल्कुल,
2: महिलाओं के प्रति प्रसेप्शन, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे है और चाहे वो फैमिली में है
1: जी।
2: फैमिली की अगर हम बात करें तो उनके साथ प्रसेप्शन ये जुड़ा हुआ है कि महिला को ही घर का हर कार्य करना है।
1: yes.
2: जबकि आज के परिपेक्ष में जहाँ पर महिलाएं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो घर में उनको समझा जाना चाहिए और उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए फैमिली मेंबर्स को आगे आना चाहिए। जेंडर बेस्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए।
1: yes.
2: कार्य कोई भी कर सकता है, जिसके पास भी समय हो, चाहे वो मेल और चाहे वो फीमेल, दोनों ही मिलके अगर काम करेंगे तो फैमिली बहुत अच्छी आगे चलेगी।
1: जी.
2: और फैमिली बहुत अच्छी आगे चलेगी तो आगे जो बच्चे हैं वो प्रसीव करते हैं, वो एक्शन से देखते हैं कि महिलाओं का क्या रोल है उनकी फैमिली में, और वही प्रसीव करके आगे वो चलते हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसी तरह से अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो महिलाओं के साथ एक परसेप्शन जुड़ जाता है अक्सर कि महिला है, क्या ये काम कर पाएगी
1: जी?
2: क्या ये इस महिला के बस की बात है इस काम को करना? स्पेशली अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं,
1: yes.
2: तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये परसेप्शन बड़ी जुड़ जाती है।
1: बिल्कुल।
2: कि जैसे ही किसी महिला एडमिनिस्ट्रेटर को देखा जाता है तो ये सोचा जाता है, ये प्रसीव किया जाता है कि शायद ये महिला उतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकती।
1: yes.
2: पर भावना मैं आपको ये बता दूं कि जो महिलाएं हैं उनके पास एक एम्पथी का एलिमेंट ऐसा होता है जो उनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है।
1: exactly.
2: जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज सोच सकती हैं कि जहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके एंगल से वो बहुत अच्छे तरीके से सोच सकती हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेके बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो एक परसेप्शन का चैलेंज है
1: जी।
2: दूसरा चैलेंज ये है कि उनकी डिपेंडेंस,
1: Yes.
2: जो फैमिली में भी और कहीं ना कहीं उनकी वर्क प्लेस पे भी।
1: बिल्कुल।
2: नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जैसे जैसे महिला एक अपर पोजीशन पर जाती है तो वहाँ पर उसको उतना फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है।
1: जी।
2: एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं काबिल हैं, जो महिलाएं काम कर सकती हैं, उनकी फैमिलीज को आगे आना चाहिए।
1: जी.
2: एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया जाना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए, जिस बातचीत के जरिए ये समझा जाना चाहिए कि उस महिला का कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है।
1: yes.
2: और वो कहाँ पर कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकती है।
1: बिल्कुल।
2: क्योंकि कहीं बाहर पर भी जाकर अगर वो कंट्रीब्यूट करती है, अल्टीमेटली फैमिली तक आता है, क्योंकि फैमिली भी उस समाज का हिस्सा है।
1: जी।
2: तो जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है, या महिलाओं के लिए कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस की बात की जाती है और मेल्स के लिए कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए सोचा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो मुझे लगती है, एजुकेशन।
1: yes.
2: हम अर्बन सिटीज में यहाँ पर रहकर शायद ये सोच पाते हैं कि हमारे लिए सारी फैसिलिटीज इक्वल हैं। अगर हम थोड़ा आगे जाएं और अगर रूरल एरियाज में जाएं, आज भी वहाँ पर ये स्थिति है कि महिलाओं को, लड़कियों को एजुकेशन के लिए शहरों में नहीं भेजा जाता।
1: जी।
2: या उनको एजुकेशन के लिए सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की तरफ देखा जाता है जो कि घर के बिल्कुल आसपास हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे आसपास के गाँव से बच्चियाँ आती हैं, अक्सर उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये ग्रीवेंस होती है कि ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि दूर की बच्चियां भी वहां पर आ सकें।
1: जी।
2: तो ये एक चैलेंज है, जबकि एक किसी भी लड़की को इस वजह से नहीं रोका जाना चाहिए कि वो उस संस्था में जाना चाहती है, वो संस्था दूर है। इस सोच को बदलना होगा, इस परिपेक्ष को बदलना होगा, इस परसेप्शन को बदलना होगा। ये थोड़े चैलेंजेस मुझे लगता है कि फीमेल्स के सामने, महिलाओं के सामने हैं, अभी भी हैं।
1: ज्योति जी, अब जो सवाल है वो आपके सशक्तिकरण का है। सो शुरुआत अगर मैं देखूं, हम जब कभी भी जीवन की शुरुआत करते हैं, डेफिनेटली हम एंड को कभी इमेजिन भी नहीं करते हैं। सो क्या आपने तब सोचा था कि आपकी जो सशक्तिकरण की जर्नी होगी वो इस प्रकार होगी? बहुत सारे चैलेंजेस पर्सनल और साथ के साथ प्रोफेशनल फेस करने पड़ते हैं। कई बार कुछ ऐसे चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, क्रिएट करनी पड़ती हैं, जो शायद आपको लगता है कि जीवन में अनकॉल्ड फॉर थी, लेकिन इसलिए क्योंकि वो एक चैलेंज था। और उसके बाद जो आपका स्ट्रगल है, आपको लगता है कि जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं तो वर्थ इट लगता है, लेकिन अगर पीछे मुड़कर उस जर्नी को देखें तो ऐसा लगता है कि ये आसान सफर नहीं था। सो अगर मैं आपके पर्सनल चैलेंजेस की बात करूँ, आपके एम्पावरमेंट की जर्नी की बात करूँ, तो कैसी रही?
2: भावना, मेरा पसंदीदा सवाल आपने पूछा।
1: जी।
2: अक्सर मन करता है कि अपनी कहानी ज़रूर शेयर की जाए और उससे अगर खुद को भी इंस्पिरेशन मिलती है और लगता है कि अपना अनुभव अगर किसी और के काम भी आए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। चैलेंजेस रहे। सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं आपसे बात कर रही थी कि एक माइंडसेट का है, हालांकि मेरा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा है, हाईली एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ
1: जी,
2: लेकिन एक समाज की सोच उस समय ये थी कि लड़कियों को हायर एजुकेशन में बहुत आगे नहीं जाना चाहिए
1: जी।
2: और स्पेशली पता नहीं क्यों, मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा था कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम उस समय नहीं सोची जाती थी
1: जी।
2: और मेरा परिवार ये सोचता था कि मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाऊं, और अगर मैं कॉमर्स फील्ड में जाती हूं या मैं मैनेजमेंट फील्ड में जाती हूं तो वो कॉरपोरेट लाइफ है और कॉरपोरेट लाइफ लड़कियों के लिए ठीक नहीं है
1: जी।
2: इस सोच के साथ मैं उस परिवार की बात कर रही हूं जो हाईली एजुकेटेड फैमिली है, तो उस समय उस समाज के उन लोगों की क्या सोच होगी जहाँ पर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे बड़ा फाइट मेरा उस समय था, और मुझे ये था कि मुझे कॉमर्स साइड से जाना है, मुझे मैनेजमेंट साइड से जाना है, एंड मैंने बहुत कन्विंस करके मैंने उस लाइन को चूज़ किया
1: जी।
2: और जब मैंने उस लाइन को चूज़ किया तो मेरे सामने एक ये मकसद था कि मुझे उस लाइन में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है
1: जी।
2: वहाँ से ये शुरुआत हुई, और एक छोटे से कस्बे से शुरुआत हुई, रादौर से शुरुआत हुई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मैं नहीं कहूँगी, और हर फैसिलिटी के लिए हमें जाना होता था, बाहर जाना होता था, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की सपोर्ट थी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना हुआ, यूनिवर्सिटी के बाद IIM अहमदाबाद जाना हुआ, फिर केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी जाना हुआ। यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी, पढ़ाई के समय जो भी आपके पास चैलेंजेस थे और जो भी आप करना चाहते हैं, एक सबसे बात महत्वपूर्ण जिसने मुझे बहुत बेनिफिट किया कि आप अपने आप को अगर लिमिटेड कर लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे
1: जी।
2: जब आप अपनी सोच को बहुत बड़ा रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं हर काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप यकीनन उस काम को कर पाते हैं
1: जी।
2: तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी सोच को लिमिट नहीं करना है, आपको बांधना नहीं है किस चीज़ से। तो जितने भी चैलेंजेस आए, चाहे मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक पढ़ाई का स्ट्रीम लेने का चैलेंज आया, और फिर उसके बाद ये होता है कि एक समय के बाद परिवार शुरू कर देता है कि हम अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, मैरिज कर लें, वहाँ पर भी चैलेंज ये आया कि मैंने अपने परिवार को कहा कि सबसे पहले मैं कहीं जॉब करना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, उसके बाद उसके लिए भी थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा और चैलेंज आया। ऐसे ही इसी तरीके से आगे जॉब में भी तरह तरीके की असाइनमेंट्स जो ली, उन असाइनमेंट्स पे ये परसेप्शन था कि शायद फीमेल हैं और फीमेल उतना अच्छे तरीके से उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगी। मैं भावना बताना चाहूँगी आपको, जब मैंने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसके पास

0: करता है तो उसको अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करना पड़ता है.
1: Yes.
0: वो आसानी से गोल नहीं कर सकता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो उस गोल को तभी कर पाता है. लेकिन जब एक बार वो गोल कर लेता है तो वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है.
1: Yes.
0: उसके साथ ये जुड़ जाता है कि उसने एक गोल कर दिया, अब वो नेक्स्ट गोल की तरफ बड़े आसानी से बढ़ सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चैलेंजेस की वजह से, उन अपॉर्चुनिटीज की वजह से बहुत सारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है.
1: वाकई. और सशक्तिकरण के लिए तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, हर महिला अपने उतार चढ़ाव से निकलती है, लेकिन वो बहुत सारी महिलाओं के लिए ना रास्ता बना देती है. आपकी जो डगर थी वो बहुत मुश्किल भरी थी, लेकिन जिन कदमों से आप निकले हैं उन कदमों ने एक पक्का रास्ता बना दिया और अब बहुत सारी महिलाएं उसे फॉलो कर सकती हैं, रेप्लिकेट कर सकती हैं. क्योंकि जब एक पहली कोई भी, मुझे लगता है कि लड़की घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली होगी तो उसने बहुत सारी लड़कियों को वो हिम्मत दे दी होगी कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि वो भी घर से बाहर निकली और वो पढ़ पाए. तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी विमेन लीडर्स रही हैं और शायद यही कारण है कि आज हम महिलाओं को हमेशा एक ही बात कहते हैं, इफ वी कुड डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट. और इसी वचन के साथ मैं ये मान सकती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो आज भी सपने देख रही हैं पूरे कर नहीं पा रही हैं, उन्हें ये संबल मिले कि वो भी अपने सपनों को पूरा जरूर करें. क्योंकि ये जीवन हम सभी के लिए एक ही बार मिला है और इन पलों की गारंटी किसी के पास भी नहीं है. मैं हमेशा कहती हूँ वन लाइफ. इस जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं उसे कर जरूर लीजिए, सिर्फ एक जेंडर के कारण अपने सपनों को यूं ही खत्म मत करिए. और अब एक ऐसा सवाल जो बहुत जरूरी है, ज्योति जी ये इस बात पर आप इत्तफाक रखेंगे मेरे साथ कि महिलाओं को स्किल फिर भी सिखाई जाती थी और शुरुआत से ही माना यह जाता है कि वी आर गुड एट स्किल्स.
0: जी.
1: सो सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहाँ महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं. किसी भी अगर राज्य का डेटा उठा लूँ तो आज भी वो एक पैरिटी तो नहीं है. और चाहे हम बहुत सारी सरकारी स्कीम की बात करें या फिर हम पर्सनली भी देखें कि आज लोगों के माइंडसेट बदल गए हैं, बट इस इक्वालिटी को हम ला नहीं पाए हैं. अब मुझे ऐसा लगता है कि स्किल अगर हमारे पास है लेकिन एजुकेशन नहीं है तो हम उस स्किल को एनहांस करके अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते. सो मुझे बताइए महिलाओं के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है.
0: देखिए, महिलाओं के लिए एजुकेशन दो कारणों से जरूरी है.
1: जी.
0: एक तो ये कि अगर कोई भी महिला एजुकेटेड होती है, एजुकेशन का मतलब है कि उसको गलत और सही में फर्क समझ में आना.
1: जी.
0: और कोई भी महिला अगर एजुकेटेड होती है तो वो अपने पूरे परिवार को एजुकेटेड करती है.
1: बिल्कुल.
0: और अपने परिवार को राइट और रॉन्ग में एक डिफरेंस करना सिखाती है.
1: जी.
0: जो चीज़ें, जो लिमिटेशंस उसकी रही हैं, उन लिमिटेशंस से किस तरीके से आगे की जनरेशन बाहर आ सकती है वो सिखाती है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है कि उनको एजुकेटेड क्यों होना चाहिए.
1: जी.
0: देखिए, आज एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि टेक्नोलॉजी एक्सपोजर बहुत है. आज हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं.
1: yes.
0: और स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसका एजुकेशन से, एजुकेटेड होने से कोई लेना देना नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: आज आपने देखा होगा कि एक बच्चा भी स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से चला लेता है.
1: जी.
0: महिलाओं को एजुकेटेड इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनके पास अब टेक्नोलॉजी है.
1: yes.
0: और उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी लोगों से जुड़ सकती हैं.
1: बिल्कुल.
0: पहले ये होता था कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी गाइड की जरूरत है, किसी मेंटोरिंग की जरूरत है, तो हमें लगता था किसके पास जाएं. आज वो स्थिति नहीं है. आज हमारे पास एक डिवाइस है, स्मार्टफोन है जिसमें नेट कनेक्शन है.
1: yes.
0: और उसके जरिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेश से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं.
1: जी.
0: एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किल के साथ अगर उसको अटैच कर दिया जाए तो महिला ना केवल देश के लेवल पर बल्कि विदेश में भी, बल्कि विश्व स्तर पर अपना नाम कमा सकती है. कितने ही नाम हैं जो आप ले सकते हैं जो कि एक गांव से उठकर अपने स्किल और एजुकेशन दोनों को जिन्होंने कंबाइन किया और कहां कहां पर पहुंचे.
1: जी.
0: और ना केवल देश में नाम कमाया बल्कि विदेश में भी अपना सिक्का जमाया. आप किसी भी क्षेत्र का नाम तो ले लीजिए, चाहे आप पैरालंपिक्स की बात हो, चाहे आप शूटिंग की जो मैं बात कर रही थी. बड़ी हैरानी की बात होगी, आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि वेल्डिंग जैसे क्षेत्र में.
1: yes.
0: मेरे पास स्टूडेंट्स आती हैं और ना केवल स्टूडेंट्स सीख रही हैं बल्कि नेशनल लेवल स्किल कॉम्पिटिशन्स में विन कर रही हैं।

0: जी। और वो साथ साथ एजुकेशन को के साथ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहती हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उसके लिए समझना और उसको समझकर इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनका स्किल के साथ एजुकेशन और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है।
1: ज्योति जी, आज के इस परिवेश में हम चाहिए कहें कि सरकार महिलाओं को इक्वल आंकती है, लेकिन फिर भी आज हमारा रेशियो बराबर नहीं है। अगर मैं पे पैरिटी की बात करूं तो हमारे बॉलीवुड से लेकर और एक बहुत ही छोटे से महकमे तक मैं देखूं तो पे पैरिटी भी इक्वल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो महिलाओं के लिए नहीं है। मतलब इस बात के लिए तो सुधा कृष्णमूर्ति जी से लेकर इंदिरा नुई जी ये कहती हैं कि अपॉर्चुनिटी थी नहीं, हमने क्रिएट की। सो हम ये देखते हैं कि जब कभी भी दो जेंडर्स की बात होती है, इंसान तो हम सभी हैं, विजडम भी उतना ही है, इंटेलिजेंस भी उतनी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं होती। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये खास तौर पर बढ़ती जाती है। लेकिन आज के परिवेश में अगर मैं देखूं, सो हमने एक चीज महसूस की है, जैसे जैसे आप लैडर से ऊपर जाते हैं, सक्सेस की तरफ जाती हैं, सो महिलाओं के लिए वो जो सक्सेस का लैडर है वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर के रास्ते ही बंद है, वहां बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। क्या लगता है, क्या कारण है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है?
0: भावना, आपने काफी हद तक एक बड़ा रैशनल, जिसको कहते हैं, क्वेश्चन मेरे सामने रखा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊपर जैसे जैसे ऊपर पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे महिलाओं की संख्या कम होती जाती है। उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक कारण तो ये है कि महिलाएं खुद भी उस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। जहाँ पर टॉप लीडरशिप को लेने की बात आती है, कई बार महिलाएं बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास सोचकर पीछे हट जाती हैं और उस सिचुएशन को और उस पोजीशन को स्वीकार नहीं करती हैं, चाहे वो उनका कंसर्न अपनी फैमिली के लिए होता है, चाहे अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए होता है, चाहे उनको लगता है कि मैं अंदर एक कोई फेयर है, ये सोचकर भी वो टॉप पोजीशंस को लेने में पीछे हटती हैं और उसको नहीं स्वीकार पाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम टॉप पोजीशन पर आते हैं तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने वाली बात होती है और हम बहुत आसानी से उस सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि टॉप पोजीशन पर आपको कहीं सपोर्ट नहीं होगा या फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी या आप फैमिली को नहीं देख सकते हैं। अक्सर जो टॉप पोजीशन पर फीमेल्स होती हैं, जो विमेन होती हैं, उनके साथ ये जुड़ जाता है कि वो शायद अपनी फैमिली को नहीं देखती होंगी या केयर नहीं करती होंगी, या अगर बच्चा कोई बीमार है तो शायद उसको नहीं देखती होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना सपोर्ट सिस्टम इस तरीके का डेवलप किया जा सकता है जिससे कि फैमिली को भी बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और आप अपनी वर्किंग प्लेस पर भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। सिर्फ आवश्यकता ये है कि फैमिली में जो लोग हैं या आपके एक्सटेंडेड हैंड्स हैं उनको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है। तो एक कारण तो ये है कि महिलाएं पीछे रह जाती हैं और वो पोजीशंस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जहां पर महिलाओं को वो पोजीशंस ऑफर ही नहीं की जाती हैं। तो मेरा ऐसा कहना होगा उन महिलाओं के लिए कि अगर वो अपने आसपास इस तरीके की सिचुएशंस को देखती हैं तो उसके लिए आवाज़ वो ज़रूर उठाएं जिससे कि वो पोजीशंस फीमेल्स को भी ऑफर की जा सके।
1: आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन बातें बताई। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर ज्योति। लेकिन साथ के साथ जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
0: थैंक यू भावना, पहले तो मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, और मैं तो अपने अनुभव से बस यही बताना चाहूंगी कि हर किसी महिला के अंदर एक आग जिंदा है
1: जी।
0: महसूस करके देखो, हर किसी महिला के अंदर एक आग जिंदा है, उसके हौसलों को उड़ान दो, हर किसी में उड़ने वाला परिंदा है।
1: वाकई,
0: तो हर महिला कुछ ना कुछ कर सकती है, बस उसको भी अपनी सोच को बदलना है और उसके चारों तरफ जो लोग हैं उनको भी अपनी सोच को बदलना है। यहाँ पर महिला और पुरुष की बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की बात होनी चाहिए और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी है उसको महसूस करके उसको थोड़ा सा हाथ देना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने पंखों को उड़ान दे सके और अपने आसमान पे अपनी कहानी लिख सके।
1: खूबसूरत सा संदेश, तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर ज्योति। वाकई बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अगर महिलाओं को महिला और पुरुषों को पुरुष ना समझे लेकिन उन्हें इंसान समझे तो ये हमारी कहानियाँ बदल जाएंगी और हम ये समझ पाएंगे कि दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनके जीने का अंदाज अलग हो सकता है, उनके सोच का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो प्रभु बैठे हैं ना, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत खूबसूरत है। जहां वो दो शक्लों को हुबहू एक जैसा नहीं मिलाते हैं, तो हम इमेजिन करके देखिए प्रभु की सृष्टि पर इतने सारे ह्यूमंस हैं जो हर किसी के पास अलग क्वालिटी लेकर आते हैं। सो डेफिनेटली हम अपनी क्वालिटी को पहचाने, हम अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने और फिर उसके बाद आगे बढ़े, तो हमें भी समझ में आएगा कि हम इस जीवन में जिस कारण से आए हैं उस कारण को पूरा कर पाएंगे, और हाफ हार्टेड इस जीवन से विदा नहीं लेंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि समाज की बंदिशें या फिर लोगों की सोच ने हमें कुछ करने नहीं दिया, जो बहुत सारी महिलाएं अक्सर जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर ये कहती हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने जीवन जिया ही नहीं। आज इस प्लेटफॉर्म से आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसा जीवन मत जिए जहां आपको लग रहा है कि आप हर पल कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। ऐसा जीवन जिए जहां हर पल चैलेंज हो, और चैलेंज को जब आप मीट कर पाती हैं उसे सक्सेस में बदल पाती हैं तो आपको एक अलग खुशी मिलती है, बस उस खुशी को एंजॉय करिए। तहे दिल से धन्यवाद ज्योति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को आज इतनी बेहतरीन बातें बताई।
0: धन्यवाद भावना, मैंने भी बहुत एंजॉय किया और ये कन्वर्सेशन बहुत ही मुझे पसंद आई। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं आपसे मिलूंगी प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट में अगले हफ्ते। टिल देन फील गुड फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपका अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। बिल्कुल हर बार की तरह हम लेकर आए हैं आपसे, हमसे, हम सबसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा, एक चर्चा का विषय, जिस पर हम एक नई सोच के साथ तलाशेंगे नई दिशाएं। दोस्तों, आमतौर पर जब कभी भी छुट्टियां होती हैं, वीकेंड्स होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, तो एक ख्याल कमोबेश हम सभी के मन में आता है कि कहीं घूमने चला जाए। जी हाँ, बिल्कुल इच्छा रहती है एक अच्छे सफ़र पे जाने की, साधन जो भी हो, लेकिन आनंद इस बात का रहता है कि हमें कहीं घूमने जाना है। हम जाएँ, हम एक्सप्लोर करें नई नई जगहें, और जहाँ पर जैसे साधन सुलभ हैं, जैसी हमारी अपनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से हम चयन करते हैं उसी पर्टिकुलर साधन का घूमने जाने के लिए। तो आज की चर्चा में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो बनाएंगी हमारे सफ़र को सुहाना और हमारी छुट्टियों को, हमारे हॉलीडेज को बनाएंगी एंटरटेनिंग। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की रहती है कि जब कभी भी हम घर से बाहर जाने का प्लान करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं कि जिनकी हम कहीं ना कहीं अनदेखी कर जाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा जागरूक करने की, ताकि जो भी थॉट के साथ, जिस सोच के साथ, जिस भाव के साथ आप जाना चाहते हैं सुहाने सफ़र पे, वो कहीं भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और आप एंजॉय करें अपने हॉलीडेज़ को, अपने सफ़र को और अपनी डेस्टिनेशन को। सफ़र किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, चाहे वो आप अपनी गाड़ी से जाएं, चाहे आप बस के द्वारा जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, या फिर आप किसी भी एरोप्लेन से जाएं, हवाई यात्रा करें, कोई भी सफ़र हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ बातें ज़रूर होती हैं जो हर किसी को जाननी ज़रूरी होती हैं, और हम उन्हीं बातों पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमें किन बातों को सोचने की आवश्यकता है जब कभी हम प्लान करते हैं अपने सफ़र के बारे में। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि जब कभी भी हम कोई डेस्टिनेशन प्लान करते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमें साधन कौन सा चुनना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात इसलिए भी है, कई बार हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि कुछ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और हम क्योंकि थ्रिल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांचक स्थिति में होते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम बाई रोड जाएं, सेल्फ ड्राइव से जाएं या गाड़ी लेकर के जाएं। तो इस बात का चयन करना, इस बात का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा एक वाइज डिसीजन होता है कि यदि बहुत ज़्यादा लोकल घूमने की या इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है तो हमेशा से प्रेफर किया जाना चाहिए कि वहाँ पर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, ना कि अपनी स्वयं की गाड़ी को। क्योंकि इसके पीछे का एक कारण, एक सोच जो है वो ये कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी वाहन में समस्या आती है, कोई भी प्रकार की दिक्कत कुछ भी होती है, तो आप कहीं ना कहीं बंद जाते हैं और सफ़र का जो मज़ा है, जो डेस्टिनेशन पे जाने का जो एक रोमांच है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा जो सबसे पहला थॉट है वो ये कि जब कभी भी आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने का प्लान करें तो कोशिश करें कि यदि वहाँ पर जाने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो आप उसको सेलेक्ट करें, ना कि अपनी पर्सनल गाड़ी को। लेकिन डिस्टेंस के ऊपर बहुत हद तक ये चीज़ डिपेंड करती है। और दूसरी बात कि यदि आप कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हमेशा होने चाहिए। यदि आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग योर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के पेपर्स, पॉल्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं तो भी यू मस्ट कैरी योर आईडी। आधार कार्ड एक बड़ी आम सी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने साथ हमेशा रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण देश में है, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आपके पास अपनी पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो हमारे पुलिस की अगर हम बात करें वो, या कहीं भी कोई भी सुरक्षा कर्मी यदि हमसे इस प्रकार की कोई पहचान पूछता है तो हमारे पास वो संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अभी हमने बात की, यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ना कि अपनी गाड़ी का। किसी न किसी प्रकार का एक बंधन हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ यदि वो डिस्टेंस बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और आप कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो आप अपनी गाड़ी से एक सुविधाजनक तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि एक फ़ायदा जो इस बात का रहता है कि जब आप जाते हैं अपनी गाड़ी से, अपनी कार से,
तो कोशिश रहती है कि आसपास के नज़ारों का भी आनंद आप पूरा ले सकते हैं। यदि कोई पर्टिकुलर जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है या कुछ खाने का मन कर रहा है या किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है तो आप अपनी गाड़ी को जब चाहें जहाँ चाहें रोक सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बात यह भी है कि जब आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें होती हैं। उसमें सबसे पहले ज़रूरी होती है कि आपको डिस्टेंस के हिसाब से यानी आप कितनी दूरी के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए गाड़ी कौन सी और कैसे लेकर के जानी है। दूसरी बात, आपको उस गाड़ी की प्रॉपर जांच जाने से पहले कर लेनी चाहिए। यदि ये लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर चेकअप गाड़ी का सर्विस सेंटर भेज करके करा लेना चाहिए। और छोटी छोटी बातें कि जिस प्रकार का भी मौसम है, जैसे आमतौर पर देखने में आता है कि गर्मी के मौसम में टायरों की जो हवा है बहुत ज़्यादा अपने आप से बढ़ जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसा वेदर है उसके हिसाब से हम टायर का प्रेशर प्रॉपर चेक करें। और गाड़ी में सारे ही संबंधित डॉक्यूमेंट, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है या हमारे अपने आइडेंटिटी के पेपर हैं, वो हमें कैरी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि गाड़ी में नॉर्मली आजकल सभी कारों में एक्स्ट्रा टायर्स होते हैं, उन टायर्स की जांच पूरी तरह से करें। सारे गाड़ी से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं उनकी किट हमारे पास होनी चाहिए। और जिस रूट पर भी आप जा रहे हैं उस रूट पर संबंधित स्थानों के बारे में आप एक जानकारी जरूर अपने साथ लेकर के चलें कि यदि किसी प्रकार की हेल्प आपको उस मार्ग में उस रास्ते में पड़ने वाली है तो कहाँ से आपको मदद मिल सकती है। और एक ज़रूरी बात, हालांकि चलिए हमेशा से हम एक अच्छे मन से और अच्छी सोच के साथ घर से निकलते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार की समस्या होती है उससे निपटने के लिए फर्स्ट एड किट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी गाड़ी में कैरी करें। आजकल आम तौर पे देखने में आता है कि हम जितनी भी लग्जरी गाड़ियों की बात करें या छोटी गाड़ियों की बात करें, कोई भी फायर सेफ्टी किट या कोई सीज फायर जिस प्रकार की हम बात करते हैं प्रोडक्ट होता है, बुझाने में काम आता है, वो हम कैरी नहीं करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है कि आपको वो लेकर के चलनी चाहिए ताकि कोई छोटी मोटी परेशानी यदि उससे रिलेटेड आती है तो उससे बचा जा सके, वो किसी बड़ी दुर्घटना में ना कन्वर्ट हो। और दूसरी ज़रूरी बात, बरसात का मौसम है आजकल चल रहा है, लेकिन यदि कभी भी इस प्रकार का कोई मौसम है और आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो विंडशील्ड की चेकिंग अलोंग विद वाइपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है करने की, क्योंकि यदि आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आप गाड़ी को अच्छे प्रकार से ड्राइव नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। और एक ज़रूरी बात ये भी कि जब कभी भी आप, जो मैं ये बात विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत अनदेखी कर जाते हैं, जिन गाड़ियों में भी एयरबैग्स होते हैं उन पर एक सावधानी के लिए एक नोटिस लगा हुआ होता है कि आगे की गाड़ी, आगे की जो फ्रंट सीट होती है उस पर किसी भी बच्चे को लेकर के आप ना बैठें या बच्चे को ना बिठाएं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं यदि गाड़ी में किसी भी प्रकार का जर्क लगता है, किसी भी प्रकार का धक्का लगता है जो एक लिमिट से ज़्यादा का है तो एयरबैग खुल जाते हैं। और यकीन मानिए हमारे लिए एयरबैग जितने सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आपके साथ कोई छोटा बच्चा आपकी गोदी में बैठा हुआ है या सीट पर आपने किसी छोटे बच्चे को बिठाया हुआ है तो वही एयरबैग आपके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं उस बच्चे के लिए, क्योंकि जब गाड़ी में एक सीमा से ज़्यादा का धक्का लगता है, झटका लगता है तो एयरबैग खुल जाते हैं। और एयरबैग के खुलने के बाद जो प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको एक वयस्क व्यक्ति, एक जो एडल्ट जो मेल होता है, फीमेल हो, एक आयु के बाद जो आप हैं तो आपकी कैपेसिटी होती है उस जर्क को झेलने की, लेकिन छोटे बच्चों में उस एयरबैग के प्रेशर को झेलने की सामर्थ्य नहीं होती है। तो हमेशा से कोशिश करें कि बच्चों को आगे की सीट पर ना बिठाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह भी है कि बच्चे जब साथ में बैठे होते हैं, कई बार आमतौर पर देखा जाता है कि ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के साथ वो किसी प्रकार की खेल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये करें कि जब कभी भी ड्राइविंग कोई भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो आपका ड्राइवर है या कोई भी, उससे किसी प्रकार की वार्तालाप ना करें ताकि वो डिस्टर्ब हो, उसको बिल्कुल फोकस्ड होकर के रोड पर गाड़ी चलाने दें और फ़ोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। और एक ज़रूरी बात ये भी है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ख़तरनाक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करने की। यदि ऐसा कुछ मन है भी तो आप रुकें, ड्रिंक करें, बट ड्राइविंग ना करें बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखेंगे यदि हम, तो अपने सफ़र को एक बेहतर सफ़र बना पाएंगे और अपने हॉलीडेज़ और अपनी जो ट्रैवलिंग है उसका पूरा आनंद ले पाएंगे। और दोस्तों, अब हम चर्चा जारी करते हैं सुहाना सफ़र कैसे बनता है, उसके बारे में हमने कुछ टिप्स डिस्कस किए हैं और हमने अभी आपसे चर्चा की यदि हम कहीं जाते हैं और अपनी गाड़ी से जाते हैं तो क्या सावधानियाँ
हमें बरतनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं एक और साधन जो अक्सर बड़ा आजकल पॉपुलर हुआ हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यदि आप यही ट्रैवलिंग, यही आपने जो सफ़र है अपना, यदि आपने बस से जाने का प्लान किया है, तो वो कौन सी खास बातें हैं जो एक बस के सफ़र में आपको ध्यान रखनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी ट्रैवलिंग एजेंसी, ट्रैवलिंग कंपनियां या ट्रैवल एजेंट्स बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बसें जाती हैं, बहुत अच्छी सुविधा वो प्रदान करते हैं, चाहे वो स्लीपर कोच वाली हैं, वॉल्वो बसेज हैं, और बहुत अच्छी कंपनी की, बहुत अच्छी क्वालिटी का सफ़र वो आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, वो हम चर्चा करेंगे आज आपके साथ। एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि यदि जब कभी भी हम ऐसा कोई डेस्टिनेशन प्लान करते हैं कि जिसमें हमें बस से जाना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है इस बात की कि हम उस सफ़र का टाइम देखें कि वो समय कितना लगने वाला है, और उस सफ़र के टाइम के हिसाब से हमें अपना कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र की आदत नहीं होती है और हम सडनली 10 या 12 घंटे वाली किसी वॉल्वो का कोई चयन कर लेते हैं, किसी बस का चयन कर लेते हैं, और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत लोगों को वॉमिटिंग का इशू हो जाता है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ों की जाँच हमें अपने लेवल पर उस सफ़र को शुरू करने से पहले करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए बेहतर है कि हम अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोई भी ऐसी मेडिसिन साथ में कैरी करके चलें कि यदि इस प्रकार की समस्या हमें होती है तो हम उसका सेवन कर सकें और अपने सफर में आने वाली परेशानियों से बच सकें। और बहुत जरूरी बात यह कि जब हम ऐसी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, जब हम बस की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों के डिफरेंट लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए, हमारी भारतीय महिलाओं में एक बड़ी टेंडेंसी है कि वो कीमती जो आभूषण हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो पहन करके चलते हैं, ज्वेलरी पहन करके चलते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरी है, उसको पहन करके बस में सफ़र ना करें, वो कहीं ना कहीं किसी अपराध का कारण बन सकती हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल इतने महंगे महंगे आ गए हैं, यदि किसी कारणवश आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी है उनको कैरी करना, तो केवल और केवल इस्तेमाल के समय उनको निकालें, अदरवाइज़ उनको बड़ी सेफ्टी के साथ अपने सामान के अंदर रखें ताकि वो किसी भी प्रकार की परेशानी का कारण आपका ना बने। और दोस्तों, एक ख़ास बात कि जब कभी भी आप अपने सामान की पैकिंग करते हैं ले जाने के लिए बस के अंदर, तो चूंकि उसका सारा सामान एक अलग तरीके से अलग जगहों पर रखा जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सामान ना रखें जिसके टूटने की या ख़राब होने की या बिखेरे जाने की संभावना हो। उनको अलग से सेपरेट बैग में रखें और अपने साथ लेकर के रखें बस के अंदर, क्योंकि एक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो बड़ा ही एक सार्वजनिक सा नियम है और हमें समझना भी चाहिए, ये हमारा एक नैतिकता भी बनती है कि हम बस के अंदर धूम्रपान ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, और ना ही किसी इस प्रकार की एक्टिविटीज किसी के द्वारा अगर की जा रही है तो उसको रोकें। और एक बहुत ज़रूरी बात कि एक आम धारणा हम अपने मन में बना लेते हैं कि जब कभी भी जिस बस में हम चढ़ रहे हैं, जिस बस में हम जा रहे हैं, तो उसका चालक, उसका जो ड्राइवर है, उसका जो कंडक्टर, जो परिचालक साथ में होता है, वो सभ्य होंगे, सुशिक्षित होंगे, या उन्होंने ड्रिंकिंग नहीं की होगी। तो इस बात की भी जाँच कर लेनी चाहिए कि क्या वो ड्राइवर, क्या वो जो परिचालक, जो कंडक्टर साथ में है, वो प्रॉपर स्वस्थ है, एकदम हेल्दी माइंड के साथ है। यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट होता है उनकी किसी भी उनके व्यवहार से या उनकी शारीरिक दशा से आपको इस तरह का डाउट होता है, तो उसका निराकरण, उसका जो सोल्यूशन है, बस का सफ़र शुरू करने से पहले कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात कि यदि आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, तो बस को अक्सर देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रोक दिया जाता है, तो हमेशा से ध्यान रखें कि इस सफ़र के दौरान जहाँ कहीं भी आप खाना खाते हैं या कुछ भी भोजन आपने करना होता है, तो वह बहुत ज़्यादा हाइजीनिक जगह हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके सफ़र का मज़ा ख़राब कर सकती है और आपके डेस्टिनेशन जो हॉलीडेज हैं उसका मज़ा ख़राब कर सकती है। तो दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी टिप्स आप ध्यान रखते हैं और आप सावधानी से इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सुहाने सफ़र को एंजॉय करके आएंगे, अपने हॉलीडेज को एंजॉय करके आएंगे। और चाहे वो आप किसी व्यापारिक कार्य से जा रहे हैं, चाहे आप घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपका अनुभव बेकार नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, एक बेहतरीन अनुभव के साथ
आप लौट कर आएंगे। तो अभी हमने बात की अपने प्राइवेट व्हीकल से जाने की, हमने बात की बस की यात्रा की, और अब हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो हमारे देश की लाइफ लाइन कही जाती है, यानी ट्रेन। दोस्तों, कमोबेश एक बात आम तौर पर देखने में आती है, जब कभी भी लंबी दूरी के सफ़र की बात आती है तो एक भारत में एक कल्चर है कि सबसे पहला जो थॉट आता है हमारे दिमाग में, चाहे हम परिवार के साथ जाएं, चाहे अकेले जाएं या बच्चों के साथ जाएं, तो हमें कहीं ना कहीं सुविधाजनक और अच्छा जो सफ़र लगता है, आसान, वो लगता है ट्रेन का। उस सफ़र के अच्छे और सुविधाजनक लगने के पीछे का कारण है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सफ़र कितना भी लंबा हो, चाहे वो 24 घंटे का हो, चाहे 40 घंटे का हो या 20 घंटे का हो, आपको आपकी आवश्यकता की सारी सुविधाएं आपको उस ट्रेन के अंदर मिलती हैं। चाहे वो टॉयलेट्स हैं, चाहे वो आपको सोने का स्थान है, चाहे वो सामान रखने का स्थान है या खाने पीने की सुविधा है, तो ट्रेन एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें आपको सभी प्रकार का कंफर्ट मिलता है लंबी दूरी की यात्रा के दौरान। और एक सर्वे में हमने, जो हिंदुस्तान में एक सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों ने ट्रेन की यात्रा को अपना सबसे पहली चॉइस बताया है। हालांकि एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि जब कभी भी सीजन होता है तो रिजर्वेशन के लिए बहुत लंबा लंबा समय मिल जाता है, हमारे पास हमें रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब कभी भी आप प्लान करते हैं कहीं डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस वाली जगह पे जाने का, तो आपको ये प्लानिंग काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए ताकि रिजर्वेशन आसानी से मिल जाए और आपको मनचाही ट्रेन और मनचाहे समय पर आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रायर प्लानिंग की ज़रूरत है ट्रेन की यात्रा में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही सबसे पहली है कि हमें रिजर्वेशन समय से करा लेना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि ट्रेन के अंदर एक, यदि हम इसको सुविधा भी कहें तो और दुविधा भी कहें, कि जो भी सामान आपका है वो आपको कैरी करना पड़ता है। हालांकि कुली की सुविधा पोर्टर की हमारे पास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामान की हैंडलिंग है या स्पेस है वो लिमिटेड होता है, तो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान की पैकिंग को बड़ा तरीके से कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी हम खाने का सामान ले जाने की हमारी एक व्यवस्था रहती है, आमतौर पर देखा जाता है कि हम लोग जब भी लंबे सफ़र पर जाना हो तो घर का खाना बना करके लेके जाते हैं, लेकिन हमें जांचने की ज़रूरत होती है ये बात कि उस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर, क्योंकि आजकल जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं वहाँ पर हमारी जो इंडियन रेलवे है उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि वो खाना उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। यदि ऐसी सुविधा ट्रेन की तरफ से आपको मिलने वाली है तो आपको अपने साथ कुछ भी खाने का सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिस बात पर ध्यान देने की है, आज फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले भी हमने ऐसी घटनाएँ देखने में आई हैं कि जब आप ट्रेन में अपनी लाई हुई कोई भी चीज़ खाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि भाईचारे में, आपसदारी में हम ऑफ़र कर देते हैं किसी को कोई चीज़ खाने के लिए, या किसी व्यक्ति द्वारा हमें कोई चीज़ ऑफ़र कर दी जाती है खाने के लिए, और कोई इसमें संदेह नहीं है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे साथ कि हम उसमें कोई बेहोशी की दवा मिली है या अमुक व्यक्ति अपनी एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती हैं। और न केवल आपके खाने से, बल्कि एक बहुत विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपनी तरफ से भी किसी को कोई चीज़ खाने को दे रहे हैं तो इस प्रकार के गिरोह सक्रिय रहते हैं ट्रेनों में कि वो आपकी दी हुई चीज़ खाने के बाद कोई दवाई मुंह में पहले से कंज्यूम कर लेते हैं और वो दिखाते हैं कि आपकी दी हुई चीज़ खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई, और एक प्रकार का आरोप आपके ऊपर लगा देते हैं और आप एक बेवजह आप एक नए संकट में फंस जाते हैं और आपके सफ़र का मज़ा ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को ध्यान देने की कि यात्रा के दौरान ना आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करें, ना किसी की दी हुई चीज़ लें। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात जो आमतौर पर सभी जगह आजकल लिखी भी रहती है कि यदि आपको कोई ट्रेन में कोई लावारिस चीज़, कोई भी बैग, कोई पैकेट रखा हुआ दिखता है तो उसको बेवजह ना छेड़ें, और यदि आपको लगता है कि काफ़ी समय तक उसका कोई केयर टेकर नहीं है तो उसकी सूचना जितनी जल्दी हो सके RPF को दें। रेलवे जो पुलिस फोर्स है, जो प्रोटेक्शन फोर्स है, वो इस काम के लिए हमेशा तैनात रहती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। और जब कभी भी आप ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो एक ज़रूरी बात ये भी रहती है कि जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं तो आप अच्छी तरह जांच लें कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। अक्सर देखा गया है कि हमें प्लेटफॉर्म का नंबर नहीं पता होता या एट द सेम मोमेंट कुछ समय पहले ही प्लेटफॉर्म का नंबर चेंज कर दिया होता है तो हम भागा दौड़ी की स्थिति में आ जाते हैं और एक परेशानी हमारे लिए पैदा हो जाती है, तो जो सफ़र का आनंद आने वाला होता है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। और साथ ही साथ एक ज़रूरी बात ये भी कि जब आप ट्रेन को बोर्ड करते हैं, जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं
तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ट्रेन में आप चढ़ रहे हैं उसमें रिजर्वेशन का चार्ट आप देखें, उसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आपको किस बर्थ पर बैठना है, किस सीट पर बैठना है, उसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ का कारण एक ये भी है कि जब आप सफ़र में बैठ जाते हैं आकर के, जो टीटी आपको चेक करते हैं, तो बेवजह की जो परेशानी बाद में सीट चेंज करने की या किसी प्रकार की रहती है, तो वो आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, इस बात का ज़रूर आप ध्यान दें। हमने अभी चर्चा की ट्रेन की सफ़र के बारे में, बहुत सारी बातें आपसे साझा की, उसी में कुछ और बातें जोड़ते हैं कि यदि आप ट्रेन की यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना आपके साथ होती है या किसी अमुक व्यक्ति या आपके को पैसेंजर के साथ होती है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत ट्रेन की चेन को खींचें। ट्रेन की चेन को खींचने का सीधा सा संदेश जाता है RPF के पास, ट्रेन के चलाने वाले लोगों के पास, जो सुरक्षा कर्मी उसमें मौजूद होते हैं, वो आपके कंपार्टमेंट में आकर के दुर्घटना में या कोई भी घटना, जो अप्रिय घटना किसी के साथ यदि घटी है, तो उसमें आपकी सहायता करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। कई बार होता है चलती हुई ट्रेन में यदि किसी व्यक्ति की किसी प्रकार से कोई तबीयत खराब हो गई है, उनको फर्स्ट एड देनी है, या कोई भी समस्या अगर इस प्रकार की है, तो उसका एक कॉमन, एक सेंट्रलाइज मैसेज देने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चेन पुल कर दें, ताकि आपकी उस समस्या का हल उसी समय हो जाए। और एक गलती अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग करते हैं कि जब कभी लंबे सफर में ट्रेन जा रही होती है, तो बीच में पड़ने वाले स्टेशन पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब वो रुकती है, तो हम बड़े एक्साइटेड होकर के वहां पर बिक्री हुई किसी चीज को देख करके या कुछ उसको खरीदने के लिए उतर जाते हैं या पानी लेने के लिए उतर जाते हैं, और हम उतरने के बाद इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि इस ट्रेन का रुकने का समय मात्र 1 या 2 मिनट है। और जब तक हम वापस आते हैं, तो कई बार देखा गया है कि ट्रेन छूट जाती है, आपका कीमती सामान ट्रेन में होता है या आपके परिवारजन ट्रेन में होते हैं, तो आप उनसे बिछड़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि इस प्रकार की कहीं कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है, तभी आप ट्रेन से उतरें और एक नियत समय के अंदर सामान लेकर के या जो भी वस्तु आपने खरीदनी है उसको लेकर के अंदर आ जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि ट्रेन अपने आप में एक सार्वजनिक साधन है, तो हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। ये सावधानी में नहीं आता, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव अप्रोच की हमें इस बात की आवश्यकता है कि जो चीज़ हमें खुद को अच्छी नहीं लगती, अगर ट्रेन के अंदर गंदगी है, किसी प्रकार का कोई किसी ने कुछ नाम लिख दिया है या सीटें फाड़ दी हैं या खाने के सामान वहाँ पर कोई फेंक दिया है, फैला दिया है, कई बार देखा गया है टॉयलेट्स में गंदगी हो जाती है, तरह तरह की चीज़ें लोग वहाँ पर फेंक देते हैं, तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार से गंदा ना करें, उसको हानि ना पहुंचाएं। आजकल देखा गया है भारत सरकार ने इतनी बेहतरीन सुविधाएं वाली, जैसे वंदे भारत की हम बात करते हैं या शताब्दी है और बहुत तरह की जो ट्रेनें हैं जिनको चलाया गया है विशेष रूप से हम लोगों की सुविधा के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें खूबसूरत बनाए रखें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप इस प्रकार का कोई गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो आपके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कभी भी आप ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की संपत्ति को हानि नहीं पहुँचानी है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टिकट के साथ अपना ID कार्ड, अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी का प्रूफ, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ना हो, आप उसको ज़रूर कैरी करें, ताकि किसी प्रकार की जो जांच होती है जब TT आते हैं टिकट चेकर, वो आप उनको दिखा करके वो वेरीफाई करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपको यदि आप इस प्रकार की कोई कैरी नहीं करते हैं, तो एक संदेह के घेरे में आप आ जाते हैं कि टिकट आपका ही है और आपके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। और विशेष बात जो मैंने अभी आपको कहा था कि जब आप ट्रेन को बोर्ड करते हैं, आप ट्रेन में चढ़ते हैं, तो आप चार्ट को देख करके अपने ही नियत कंपार्टमेंट के अंदर जाएं। यदि आप किसी भी कैटेगरी के हिसाब से किसी दूसरे कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं, तो ये रूल है ट्रेन का, ट्रेन में सफ़र का, कि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और वो जुर्माना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो बेवजह की परेशानियों से बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ख़ास बात यह कि ट्रेन जितनी भी होती हैं, किसी भी स्थान से कहीं भी चलती हैं, कई बार होता है कि विलम्ब हो जाता है, देरी हो जाती है, तो उस चीज़ की भी जानकारी हमें घर से निकलने से पहले ले लेनी चाहिए, ताकि असुविधा ना हो, किसी प्रकार का लंबे समय का इंतज़ार हमें स्टेशन पर ना करना पड़े, और यदि हमें अपडेट मिलता रहे तो हम अपने आप को
प्रिपेयर्ड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और दूसरी बात, जब ट्रेन की यात्रा से हम किसी भी डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो एडवांस में हम इस चीज़ की प्लानिंग भी करके रखें कि वहाँ से आगे का सफ़र, चाहे वो लोकल साइट सीन का किसी भी प्रकार का हो, उसकी भी तैयारी यदि हम अपना सफ़र आरंभ करने से पहले कर लें तो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद जो हमें एक अलग तरह की सुविधा होती है उससे बचा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखते हैं अपने सफ़र में चलने से पहले और चलने के दौरान भी, तो हम अपने सफ़र को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं, सुविधाजनक बना सकते हैं। जिस आनंद और उल्लास के साथ हम सफ़र पर जाते हैं वो आनंद और उल्लास पूरे समय हमारे साथ कायम रहेगा। तो हमने सारी चर्चा की और अब हम बात करेंगे एक ऐसे साधन की जो काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुका है। एक आम तौर पे हम अगर बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक सपना देखा और एक प्रोजेक्ट उड़ान जो चलाया था, जिसका जो डिटेल में नाम था उसका था कि उड़ेगा देश का आम नागरिक। तो उसके चलते आज हम बात करते हैं हवाई जहाज़ से यात्रा की, उसके बारे में क्या हैं टिप्स और क्या ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आप हवाई यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो एक सबसे पहला जो थॉट दिमाग में आता है वो ये कि हमारे पास क्या फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है, कौन सी फ़्लाइट हमें किस रेट पर क्या सुविधा प्रदान कर रही है। तो उसका चयन करते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात को ध्यान देने की, कुछ फ़्लाइट्स अपने रेट्स को कम दिखाने के लिए उसमें बैगेज की फैसिलिटी को हाइड कर देते हैं, उसमें आपको पता नहीं चल पाता है। और हम कई बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड बैगेज की, जो चेक इन बैगेज की फैसिलिटी है वो तो इसमें होगी ही, लेकिन हमें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है जब हम जाते हैं चेक इन काउंटर पे कि हमारा तो बैगेज उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो इस बात की जाँच आप बेहतरी से कर लें। केवल और केवल फेयर कम होने का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको समानांतर सुविधा उस फ्लाइट में दी जा रही है। और दूसरी ज़रूरी बात जिसके बारे में बहुत कम लोगों को शायद कभी कभी अनदेखी कर दियो, एक आम तौर पर हमारे एक कल्चर रहता है कि हम क्रेडिट कार्ड से बुकिंग कराते हैं एयरलाइंस की, कोई भी टिकट बुक करानी होती है। तो दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब कभी भी क्रेडिट कार्ड से आप बुकिंग कराते हैं किसी भी टिकट की, तो यदि वो क्रेडिट कार्ड आपका नहीं है और आप उस क्रेडिट कार्ड को कैरी नहीं कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने भी उस क्रेडिट कार्ड से आपकी बुकिंग कराई है उस क्रेडिट कार्ड की एक फोटोकॉपी के ऊपर एक स्टेटमेंट उस अमुक व्यक्ति से लिखवा दें कि हाँ, ये बुकिंग मैंने इस यात्री की कराई है एंड आई एम द पर्सन, और उस कॉपी को आप कैरी करें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि चेक इन काउंटर्स पे आपसे वो क्रेडिट कार्ड मांग लिया जाता है कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने बुक कराई है टिकट और आप ये क्रेडिट कार्ड दिखाएं। यदि आप वो नहीं दिखाते हैं तो उन अधिकारियों को ये उनका राइट रहता है कि वो आपकी बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सूचना हर एयरलाइन की वेबसाइट पे सारे नियमों के अंदर मेंशन होती है, और हम बहुत लापरवाही करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आमतौर पर देखा गया है कि जो एयरलाइन कर्मी हैं वो इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं भी देते हैं, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो आप किसी प्रकार से उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी बात ये ध्यान देने वाली है कि यदि आपका टिकट क्रेडिट कार्ड के थ्रू बुक हुआ है तो या तो आप उस क्रेडिट कार्ड को कैरी करें, और यदि आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके किसी परिवार के सदस्य का है तो उस क्रेडिट कार्ड की फोटोकॉपी के ऊपर उस अमुक व्यक्ति से वो स्टेटमेंट लिखवा करके ले करके जाएं। और ख़ास बात, हर एयरलाइन का एक पर्टिकुलर पैकेज होता है कि इस टिकट के साथ में आपको इतना बैगेज अलाउड है, तो वो बैगेज की जो क्वांटिटी है वो आप घर से ही चेक करके जाएं। अक्सर देखा गया है कि हम वज़न ज़्यादा ले जाते हैं और वहाँ पर या तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं या हमें उस समय पर वो सामान उसमें से निकालना पड़ता है, और हमारे पास कोई उपचार उस समय नहीं बचता है कि हम उस सामान का करें क्या। या तो आपको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, या फिर आपको उस सामान को निकाल करके कहीं भी छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आजकल हर वेबसाइट पे, हर जगह एयरलाइन की साइट पे मेंशन होता है कि आप कौन सी चीज़ें कैरी कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको फ़्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं है, और उसमें भी डिफरेंशिएट किया होता है कि चेक इन बैगेज में आपको ये सामान अलाउड है और हैंड बैगेज में ये अलाउड है। तो उन चीज़ों की बारीकी से जाँच कर लें और आप देख लें कि कहीं भी आप कोई ऐसी वस्तु तो लेकर नहीं जा रहे हैं जो वहाँ पर अलाउड नहीं है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इस बात की होती है, कई बार हम बहुत कीमती चीज़ें अपने साथ लेकर के चल जाते हैं लेकिन हमें पता चलता है कि सुरक्षा मानकों के कारण वो चीज़ ले जाना प्लेन में अलाउड नहीं है और हमें वो वस्तु वहीं पर छोड़नी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं होता है वहाँ से उस वस्तु को वापस बाहर किसी को देने का। तो उस नुकसान से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सामान के अंदर ले जाने वाली सारी वस्तुओं को प्रॉपर तरीके से जाँच कर लें। और एक ज़रूरी बात,
अभी हाल ही में हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई, जो एक अहमदाबाद से जो प्लेन जा रहा था लंदन, उसकी एक दुर्घटना हुई। और उसमें यदि आपने नोटिस किया होगी, एक व्यक्ति सौभाग्यशाली जिनको हम कह रहे थे विश्वास कुमार रमेश, उनकी जान बची। तो उसके पीछे की मैं एक आपको छोटा सा एक बात बताना चाहता हूँ, जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कभी भी प्लेन के अंदर सुरक्षा निर्देश बताए जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, या फिर किसी ना किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, या आपस में बातें करने लगते हैं और उन चीज़ों की अनदेखी करते हैं, सुनने में समझने में ये मानकर कि ये बात तो हमें पहले से पता है या हमारे सामने चार्ट रखा हुआ है उसमें वो बात दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों, विश्वास कुमार रमेश की ज़िंदगी अगर किसी चीज़ ने बचाई थी तो वो ये कि उनको उस एमरजेंसी डोर को खोलने का तरीका पता था और वो उस एमरजेंसी एग्जिट के पास खड़े थे। लेकिन यदि आप कल्पना कीजिए इस बात की कि उनको यदि ये ना पता होता कि एमरजेंसी एग्जिट खुलता कैसे है, तो शायद वो भी अन्य लोगों की तरह आज हमारे बीच नहीं होते। तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात की कि परिस्थिति कभी भी कोई भी आ सकती है। जिस प्रकार से उसमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं निकल के, या कई बार होता है कि सेफ्टी जैकेट्स के बारे में बताया जाता है कि यदि प्लेन पानी में उतारना पड़ जाता है तो आपको किस प्रकार से सेफ्टी जैकेट्स पहननी है और वो जैकेट्स कहाँ रखी होती है। तो हमें या एमरजेंसी एग्जिट पे जाने के लिए या एग्जिट डोर पे जाने के लिए पट्टियाँ हैं, ये ग्लो करेंगी, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। जब कभी भी आप हवाई यात्रा करते हैं तो अनिश्चितताएं हमेशा साथ रहती हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात को देखने की कि हम कितना अलर्ट रहते हैं, कितना सावधान रहते हैं। और यदि आप अलर्ट रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने संगी साथियों को भी उस परेशानी से बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी अलर्टनेस उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का, सावधानी का साधन बनेगी। और दोस्तों, साथ में ज़रूरत होती है इस बात की भी कि जब कभी भी आप हवाई यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात के बारे में भी सोच करके चलने की कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ का मौसम किस प्रकार का है, या जहाँ से आप फ्लाइट ले रहे हैं वहाँ का मौसम किस प्रकार का है। ये दोनों चीज़ें आपको सहायता करती हैं ये डिसाइड करने में कि आपको किस प्रकार की क्लोथिंग, किस प्रकार के कपड़े कैरी करने हैं। हालांकि आमतौर पर हम सब लोग ध्यान दे देते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि हमें क्या लेना है, लेकिन आपके सामान की जो पैकिंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि वेट वाला जो इशू रहता है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे साथ स्थिति बन जाती है। और ख़ास करके जब हम किसी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम कोई भी ऐसा सामान, कोई ऐसी वस्तु अपने साथ ना लेकर के जाएं जो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बैन हो। कई बार होता है कि हम जाने अनजाने में कोई सामान ऐसा ले जाते हैं जो वहाँ उस देश में अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है ले जाना, और वहाँ हमारे पास जाँच के दौरान जब वो सामान पाया जाता है तो एक व्यर्थ की परेशानी में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और दोस्तों, एयरलाइंस के साथ एक और सुविधा आजकल आमतौर पर एयरपोर्ट्स पे देखी जाती है कि आप यदि कोई व्यक्ति पहली बार यात्रा कर रहा है तो वो पोर्टर की सुविधा ले सकता है सामान ले जाने में, या कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर अक्षम है तो वो व्हीलचेयर की फैसिलिटी वहाँ पर ले सकता है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर वो मिल जाती है। तो परेशानी ना झेलें और इस प्रकार की जो सुविधाएँ हैं उनको भी लें। दूसरी बात, जब कभी इमिग्रेशन की लाइन पे आप लगते हैं, सिक्योरिटी चेक में लगते हैं, तो वहाँ पर जो दिशा निर्देश, जो डायरेक्शंस आपको दी जाती हैं उनको पूरी तरह से पालन करें, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान ना डालें। ये सुरक्षा मानक जितने भी निर्देश होते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं हमारी आपकी जीवन से और हमारी आपकी सुविधा से। तो उसको इस प्रकार से आप मान करके चलें कि ये सुविधा जो है ये हमारे लिए ही नहीं है, सबके लिए है, और हमें उसका पार्ट बनना चाहिए, सहयोग बनना चाहिए, ना कि किसी प्रकार की न्यूसेंस हम क्रिएट करें। और जब कभी भी आप हवाई यात्रा करते हैं तो एक वातावरण जो बना रहता है, कई बार देखा गया है कि ट्रिबुलेंस के कारण प्लेन में जर्क्स आते हैं या दिक्कत आती है तो हम आमतौर पर चीखने चिल्लाने लगते हैं या एक व्यवस्था ख़राब कर देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पैनिक ना फैलाएं, यदि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस स्थिति को संभालने में सहयोग दें, ना कि बिगाड़ने की कोशिश करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस बात को समझने की। सीट बेल्ट बांधने के लिए जब आपसे कहा जाए बांधें, साथ ही साथ हम कई बार कहने के बावजूद भी हम मोबाइल का प्रयोग करना बंद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन में बाधक बनता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के पालन करने की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, ये सब वो बातें थी जो हमने बताई आपके सफ़र को सुहाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आई होप कि आपको
काफ़ी सारी टिप्स समझ में आई होंगी और आप हम प्रयास करते रहते हैं समय समय पर कि हम आपसे जुड़ें और आपको इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। दोस्तों अब दीजिए इजाज़त अपने दो कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल को, हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए मुद्दे पर चर्चा करके उसमें तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। नमस्कार दोस्तों।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, हर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक एक्सपर्ट। वहीं सारी बातें करने से पहले आपको मैं एक नंबर देना जरूर चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिसको हम साझा करना चाहते हैं। अब वो साझा करने के लिए भाई हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है, वो कई बार हमें नहीं पता होता जिस वजह से, या फिर नंबर अगर रेडियो जॉकी वो देता भी है तो हम भूल जाते हैं। उससे क्या होता है, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो हम नहीं पूछ पाते हैं और हमारे सवाल सवाल ही बन के रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आए तो ज़रूर हमसे साझा कीजिए। नंबर है हमारा 8010781078। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ कई जिंदगियों को रोशन किया बल्कि ओवरसीज एजुकेशन के क्षेत्र में एक मिसाल बनाई है। मैं बात कर रही हूँ मिस शीनू कथुरिया की। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रियंका
1: जी,
2: और मैं खुद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आज हम इस डिस्कशन का पार्ट है
1: जी।
2: सो थैंक यू
1: जी। जी मिस शीनू कथुरिया एक ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड IELTS मास्टर ट्रेनर हैं, साथ ही एक ग्लोबल सर्टिफाइड करियर काउंसलर भी हैं। और एक ख़ास बात यह है कि ये एक कह सकते हैं कि वीज़ा अधिकारी भी रह चुकी हैं और 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव बैंकिंग से लेकर के इमिग्रेशन और ट्रेनिंग तक, मतलब हर क्षेत्र में इनका योगदान जो है वो लाजवाब रहा है
2: जी।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप स्टूडियो में हैं, इतने सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे?
2: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपका शुक्रिया करना चाहूँगी फिर से कि इस माध्यम के थ्रू हम इतने सारे लोगों को रीच आउट करके कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड एज अ करियर काउंसलर मेरा इनिशिएटिव और मेरी इच्छा हमेशा से ये रही है। पता है प्रियंका, ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना इनिशिएटिव, मैंने अपने बेटे को ध्यान में रख के किया था।
1: वाओ।
2: सो ये मेरे लिए सिर्फ एक मेरा काम नहीं है, करियर काउंसलिंग हुआ, ओवरसीज एजुकेशन जो मैं कर रही हूँ अभी, ये एक थॉट है कि जो हर बच्चा डिजर्व करता है और साथ में हर पेरेंट डिजर्व करते हैं। सो जो करियर गाइडेंस है ना, ये थॉट पिछले कुछ 6-7 साल पहले से मेरे को माइंड में था जब वीजा ऑफिसर भी थी, कि जब हम एप्लीकेशंस देखते थे और तो मुझे लगता था कि अगर मुझे अपने बेटे कबीर को करेक्ट गाइडेंस, या करेक्ट नहीं, सही उसके हिसाब से गाइडेंस करनी है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो उससे फिर ये आइडिया आया, उससे इसका इस इनिशिएटिव का जन्म हुआ। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि अपने माध्यम से, अपने तरीके से और अपनी मेहनत से आई हैव बीन एबल टू चेंज फ्यू लाइव्स। तो बस अब मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एंड सबके साथ, एंड आई एम रियली होपफुल कि मेरे इस डिस्कशन से आज काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस मिले।
1: बिल्कुल, काम के साथ जब इमोशंस जुड़ जाते हैं ना तो वो काम काम नहीं लगता है,
2: फिर वो एक इमोशन ही है,
1: वो एक इमोशन है, फिर मज़ा भी आता है वो काम करने में। और बहुत बढ़िया आपने कहा कि आपका जो बेटा है कबीर, उसको ध्यान में रख के आप काम
2: जी।
1: तो एक होता है ना कि जब हम कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली आते ही हैं लाइफ में, तो आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा चैलेंज रहा, कोई भी अच्छी खट्टी मीठी बातें जो आप शेयर करना चाहें हमसे।
2: एब्सोल्युटली, और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो चैलेंजेस इस जर्नी का पार्ट है।
1: यस।
2: तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी भी कामयाब इंसान को या जो भी कामयाब

0: हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एज वी से. तो मैंने क्या करा कि जब सब कुछ क्लोज ही हो गया था, थॉट तो नहीं क्लोज हुआ क्योंकि इंटेंशन ही वो थी कि भाई ये तो करना है.
1: कितनी बड़ी बात बोली आपने. कितने लोग होते हैं जो हार कर बैठ जाते हैं कि अरे अब तो ये हो गया अब क्या करें.
0: मैंने वो थॉट को खत्म करने का, नहीं थॉट आया ही नहीं वो थॉट खत्म करने का. सो हमने क्या करा ना, तब सब कुछ जब दुनिया पूरी जूम पर ही आ गई थी तो मैंने भी सोचा कि मैं जूम पे ही शुरू करती हूँ. सो हमने उस चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी करके मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए आईएलएस की ट्रेनिंग जूम पे शुरू करी. पता नहीं था कि क्या होगा, बस शुरू कर दिया. एक स्टूडेंट से शुरू किया था तो ऐसा हुआ ना प्रियंका, बिना जब इंटेंशन आपका एक डायरेक्शन में होता है ना तो अपने आप फिर चीजें स्टार्ट हो जाती है. तो वो पहला चैलेंज था. और करते करते जब मैंने साल 2020 एंड करा, एक स्टूडेंट से शुरू करा था, 53 स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने जूम में ट्रेन कर दिया था, जूम प्लेटफॉर्म पे. सबसे पहला चैलेंज वो ओवरकम कर लिया हमने. फिर वो 53 स्टूडेंट्स कहाँ से आए मुझे नहीं पता, वो बस डायरेक्शन मिलती गई. दो स्टूडेंट सिंगापुर के भी थे.
1: वाओ.
0: सो एंड एक स्टूडेंट दुबई की, शी वाज अ डॉक्टर. तो उन्होंने भी किसी रेफरेंस के थ्रू मुझसे कनेक्ट किया और मैंने उनको आईएलएस की ट्रेनिंग दी क्योंकि उनको एक कोई सर्टिफिकेट करना था ऑस्ट्रेलिया का. सो ऐसे बस एक ये बाधा आगे बढ़ी. उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ. हमने अपना फिजिकल सेटअप के लिए तैयारी शुरू करी. तो वो चैलेंजिंग टाइम था. फिर सेकंड चैलेंजिंग टाइम, अगर मैं आपसे आप चैलेंजिंग टाइम नहीं बोलूंगी, एक मेरे मन में ये थॉट था कि मुझे जब अपना ये इनिशिएटिव शुरू करना है मेरे को फंडिंग कहीं से नहीं लेनी. सो ये मेरा सेकंड थॉट था क्योंकि जब एक वो था ना, जब भावना ये थी कि बच्चे को नर्चर करना है तो मैं लायबिलिटी नहीं शुरू करना चाहती थी. ये मेरा पर्सनल वो था. तो जो भी मेरी थोड़ी सेविंग्स थी मैंने जीरो कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू किया और आज तक हमने कोई फंडिंग नहीं ली एक्सटर्नली. सो एज आई स्टार्टेड अपने घर में, मैंने अपने घर में अपना इनिशिएटिव शुरू किया अकेले. और आज हम, मेरे साथ 6 मेरे टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं और हमने अभी तक कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं ली है. जितना आई मीन, सो वी आर ट्राइंग, जैसे हमें घर चलाते हैं ना, मैं उस इस इनिशिएटिव को एक घर की तरह से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उस घर में दिल भी है. सो जब हम पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है ट्रस्ट. एंड मैं आपको जरूर ये चीज शेयर करना चाहूंगी कि ये सारे चैलेंजेस आए लेकिन एक मुझे भगवान से और एक हर पेरेंट और हर स्टूडेंट से इतना सपोर्ट और ट्रस्ट मिला है कि उससे मेरी मोटिवेशन हर रोज 10 बार बढ़ती है. 10 times it grows. So I have tried कि मेरा हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो. तो आए चैलेंजेस अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है ना, न्यू डे न्यू चैलेंज न्यू अपॉर्चुनिटी.
1: बिल्कुल. तो जिंदगी में ना बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनसे वाइब मैच होती है, जिनसे हम बातें शेयर कर पाते हैं. और जब बातें शेयर करते हैं ना तो अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है कि यार दिल खोल के बात करनी चाहिए. इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे आपसे ऐसी ही वाइब आ रही है.
0: थैंक यू.
1: तो ये एक हम कह सकते हैं, आप जो कह रहे थे ना कि जूम मीटिंग में एक स्टूडेंट से मैंने शुरू किया और उसके बाद ये कारवा बढ़ता ही चला गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके बात करने का तरीका और चीज़ों को समझने का और अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास में है तो वो भी काम आया. और कितना मुश्किल होता है जहाँ कोरोना की बात हम कर रहे हैं, ऑफिस से जूम पर आना एक चैलेंज था हमारे लिए, बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि आज से पहले हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ. किसी को पता ही नहीं था कि जूम पर भी हम काम कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं, एक ऑफिस हो सकता है वो हमारा. लेकिन आपने कहा कि मेरी जो शुरुआत है वो हुई ही वहीं से है. तो जूम पर बच्चों से कनेक्ट होना और धीरे धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाते जाना सच में चैलेंजिंग होगा. लेकिन हाँ, जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि जब इमोशंस जुड़ जाते हैं ना काम में तो काम करने में मजा आता है. बहुत बढ़िया, आपसे अच्छा लग रहा है बात
0: करके. एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करूंगी, सॉरी. प्रेरणा मेरे को ना कबीर की टीचर्स से भी मिली. जब हम सब ऑनलाइन ही थे ना, स्कूल की टीचर्स ने उस टाइम सबसे ज्यादा मेहनत करी है और सबसे ज्यादा चैलेंज. तो यहाँ पे आई वुड रियली वॉन्ट टू थैंक सारी टीचर्स क्योंकि मैंने एक चीज और जो मुझे जिसने मोटिवेट करा, मैंने जूम पे जो शुरू करा, जब मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस होती थी ना और मैं देखती थी टीचर्स स्ट्रगल कर रही हैं, बोर्ड का विजन, कनेक्टिविटी, तो हमेशा मेरे को यही थॉट आता था कि जब ये कर सकते हैं सब तो मैं तो कर सकती हूँ.
1: बिल्कुल.
0: तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था. तो रियली ग्रेटफुल टू ऑल द एजुकेटर्स जिन्होंने उस टाइम को इतने स्मूथ तरीके से और बच्चों के साथ

0: कनेक्ट बना के रखा, इमोशनल कनेक्ट भी. मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए रोज सुबह टाइम से उठ रहा था हर रोज कि मैम ने बोला है हम कनेक्ट करेंगे. एम आई ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल, उस सब फेज को पार करके बच्चों ने वो टाइम जो निकाला तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी. तो वो जब किया तो फिर हम भी तो कर सकते हैं.
1: बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए अगर सोच है और पक्की है
0: बस
1: तो आप हर चीज कर सकते.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन अगर सोच में दम नहीं तो फिर आप चाहे जितने सपने देख लो वो कभी पूरे ही नहीं हो सकते. बहुत बढ़िया मैम. अब थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ भी आ जाते हैं बिकॉज ये जो टाइम है ना, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास में, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसमें से एक चीज को ग्रैब करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आज के समय में अगर हम बात करें तो कैसे पेरेंट्स डिसाइड करें बच्चे के लिए ओवरसीज एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं तो सही है या नहीं वो आप बताइए.
0: बिल्कुल. सबसे पहले तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन शेयर किया. हम काउंसलिंग में एंड आज के डेट में जब मीडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बच्चों के लिए अवेलेबल है, बच्चे एक्सेस भी करते हैं, पेरेंट्स का कंफ्यूज्ड होना बिल्कुल जायज़ है.
1: बिल्कुल.
0: हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, मैं अपना एक आपको बताऊंगी कि मैंने एक थॉट प्रोसेस क्या रखा है और उसको एक मैंने कैसे स्ट्रीमलाइन करा. हम जब स्टूडेंट से काउंसलिंग करते हैं, पहले मैं स्टूडेंट से काउंसलिंग करती हूँ, फिर मैं पेरेंट से बात करना चाहती हूँ एज अ पेरेंट. क्योंकि क्या होता है, कहीं कई बार पेरेंट्स को थोड़ा सा ना हमें अनलर्न भी कराना होता है. क्या एज अ मदर मेरा मन करेगा कि मेरा बेटा पायलट बने. मेरा मन था मैं यूनिफॉर्म वाले किसी पोजीशन में जाऊं, तो अब मैंने वो नहीं किया तो मेरा मन करेगा कि मेरे बेटे को ना वो बनना चाहिए.
1: बिल्कुल,
0: अब
1: बिल्कुल.
0: बेटा बनना चाहता है रेसर. बेटे का मन है कि मेरे को गिटार चलाना है. अब या तो मैं बेटे को बोलूं बेटा वो कोई करियर है नहीं, आप ये बनो, यू नो यूनिफॉर्म वाली पोजीशंस में जाइए या आप इंजीनियरिंग में जाइए. सो सबसे पहले ये बैलेंस क्रिएट करना, संतुलन क्रिएट करना बहुत जरूरी है. तो उस और ऑफ कोर्स एज आपके सबसे पहले वेल विशर्स पेरेंट्स ही हैं सबसे पहले, बिकॉज आप उनका अंश हैं, यू नो. तो वो जो चाहेंगे वो गलत तो हो ही नहीं सकता. बट जैसे हमें गाइडेंस चाहिए एज काउंसलर्स, आज के पेरेंट्स को बहुत गाइडेंस चाहिए. हम भी तो अपडेटेड रहते हैं ना. सो जब मेरा पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होता है, हमेशा हर वार्तालाप में एक कॉमन गोल ये निकला है कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या होगा. सो हम एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं कि आपके बेटे या बेटे के लिए क्या बेस्ट है. उसमें नाउ अगर मैं टेक्निकल चीजों की बात करूं, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी होता है, चाहे वो इंडिया में पढ़ाई करे या ओवरसीज, आई विल कम टू ओवरसीज, सबसे पहले बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट.
1: Right.
0: जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो. अब अगर मेरे किसी स्टूडेंट के पास कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी, तो वो बच्ची या बच्चा नर्सिंग में नहीं जा सकते. सो एंड वो मेरी ड्यूटी है एक्सप्लेन करना, यू नो. अब जैसे कोई कॉमर्स है और मैथ नहीं है, आप पायलट कोर्सेज में नहीं जा सकते. सो एंड हमें नहीं पता, यू नो एज अ पेरेंट मुझे नहीं पता होगा, मुझे गाइडेंस चाहिए. लेकिन मेरे मन में आया कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अब ये बने या मेरा बेटा ये बने, तो ऑफ कोर्स आई विल नॉट से नहीं नहीं वो नहीं ऐसे बन सकती. हमें रीजनिंग देनी है, यू नो, प्रॉपरली, सो दैट दे नो कि उनकी ये अच्छा इस वजह से नहीं, लेकिन एवेन्यूज क्या क्या है जो सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरे बच्चे के लिए अवेलेबल है. सबसे पहले अवेयरनेस वो बनाना. सेकेंड, आज की डेट में चाहे इंडिया हो या बाहर, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बच्चों ने और क्या क्या किया है वो बहुत मैटर करता है. सुप्रियंका, हम इसमें क्या करते हैं, व्हाट आई डू, करियर काउंसलिंग इज नॉट जस्ट कि ये पांच सब्जेक्ट है आप इसमें से अप्लाई कर दो. नहीं, करियर काउंसलिंग इज कि आपके बच्चे की प्रोफाइल ये है, इसको हम और बिल्ड कैसे करें और अच्छा कैसे बनाए. वो शुरू होती है क्लास 7 से. हम क्लास 7 से छोटे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर बच्चे को उस लेवल तक कोशिश करते हैं, तो वो हम पेरेंट्स के साथ पूरा गाइड शेयर करते हैं कि गाइड इन द सेंस मैंने एक सिंपल सा बड़ा अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है. उनको समझ में भी आता है कि ठीक है, आपने कहीं कोई सस्टेनेबिलिटी का असाइनमेंट कर लिया, कहीं आपने किसी एनजीओ में कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया, जिस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन ग्रेड 11 में जब हम अप्लाई करते हैं वो निकल के आता है ना, आपको मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो सी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पेरेंट के ड्रीम के साथ कनेक्ट कर पाऊँ. सो वो ड्रीम यही है कि उनका बच्चा जहाँ पर भी हो सुरक्षित हो, सक्सेसफुल हो, और जो वो करना चाहे. आपको पता है शुरू में पेरेंट्स यही बोलेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये बने, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन खत्म होता है ना, तो बात होती है कि बच्चा खुश रहे, बच्चा सुरक्षित रहे और बच्चा सक्सेसफुल रहे जो भी वो करे, मन वही है पेरेंट्स का आज भी, बट हम इतना सब सोचते देखते हैं ना, तो हमें लगता है वो भी आगे रहे, आगे रहेंगे बट इन सब चीजों के साथ। तो वी ट्राई कि पेरेंट्स अनलर्न करें, बैलेंस हम बनाएं और फिर हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एकेडेमिक नॉन एकेडेमिक एंड बाहर खाली पढ़ाई और ना पढ़ाई, दोनों चीजें नोनो नहीं है, आपको दोनों पे बैलेंस करना। सो द करियर गाइडेंस दैट वी गिव इज टू पेरेंट्स आल्सो एंड टू किड्स आल्सो, दोनों के साथ हम कंबाइन करके एक सिनर्जी बनाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, बच्चों के तो सपने होते ही हैं, उन्हें बाहर जाना है, कुछ करना है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो ना बच्चों को कुछ बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना वो एक रहता है कि मेरा बच्चा सेफ तो रहेगा,
0: समेट या समेट,
1: वो सारी चीज़ों को ना कलेक्ट करके वो समेट के रखना चाहते हैं। अब ऐसे में ना बड़ा चैलेंज होता है, और ये एक चीज़ जैसे आपने कहा कि मुझे सिर्फ उनको बताना नहीं है, मुझे उनको अच्छे से समझाना है कि देखिए ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको हम करा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, और दोबारा कहूँगी के अपनी जॉब से जब प्यार होता है, अपने काम से जब प्यार होता है, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छे से निखर के आती हैं, जो कि आपकी बातों से वो लग भी फील हो रहा है कि आप कितने अच्छे से पेरेंट्स को समझाती होंगी। अभी जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपका कोई सवाल है तो आप हमें जल्दी से मैसेज कर दीजिए, नंबर है हमारा 8010781078। अभी इन सारी बातों के बीच एक किस्सा मुझे याद आया, मेरे ही किसी नोन का है, जहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं, वो एयरफोर्स में हैं और उनके दो बेटे हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों बेटे एयरफोर्स में जाएं, बट जो पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, वो स्पोर्ट्स में है, बहुत अच्छा वो फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है, और साथ के साथ फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और उसकी आप पिक्चर्स देखोगे तो मतलब आप खुद बोलोगे कि अरे वाह, मतलब आपको तो फोटोग्राफी में जाना चाहिए, पर उनके पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ नहीं मानते हैं बिल्कुल। छोटा बेटा है, वो भी कुछ कुछ करना चाहता है, बट उनका ये कहना है कि आप दोनों को ही एयरफोर्स में जाना है। अब इससे घर में टेंशन, वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं। यहाँ आप क्या कहना चाहोगे, बिकॉज ये ज़्यादातर घरों की कहानियाँ हैं कि जब पेरेंट्स जो हैं, या तो दो कंडीशन में चीज़ें होती हैं, या अगर पिताजी कुछ हैं और बच्चों को भी वो वही बनाना चाहिए एक तब, और एक जब एक सपना देखा वो पूरा नहीं कर पाए, पर अब वो सपना अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये दो कंडीशंस आती हैं ज्यादातर घरों का, यह आप क्या कहना चाहेंगे?
0: थैंक यू, ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, अगर अगर मैं आपको ये बोल सकूं तो
1: जी।
0: सबसे पहले आजकल के जो बच्चे हैं, हम हमारे पेरेंट्स ना, हम आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन क्या है उनके एक्सपीरियंसेस के उसमें उनको एक डाउट भी रहता है, क्योंकि वो बाहर की जो पेरिफेरीज है ना वो बड़ी अनसर्टन है, और घर के बाहर का दुनिया। चार साल पहले का आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चार साढ़े चार साल पहले एक फैमिली आई मेरे पास, फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, मदर हाउसवाइफ होममेकर
1: जी,
0: एंड 12th का बच्चा था हमारे पास आया था, ब्रिलियंट लुकिंग स्टूडेंट एंड एवरीथिंग वाज फाइन। अब जब वो तीनों मेरे सामने बैठे ना, तो फादर मुझसे बात कर रहे थे, मदर वॉज साइलेंट बिल्कुल, और बेटा ना खिड़की के बाहर देख रहा था, टोटली जीरो इंटरेस्ट इन डिस्कशन। पापा ने उसके बोला मुझे कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं अपने बेटे को बीबीए कराना चाहता हूँ यूके से, ये जाएगा और बीबीए कंप्लीट करके वापस आके ये घर का बिजनेस, फैमिली बिजनेस टेक ओवर करेगा, ये मेरा मन है, और वेरी अथॉरिटेटिव, जैसे यू नो वेरी सॉर्टेड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फादर होते हैं, तो उनका वो डिमीनर था। अब मैंने उनके पेरेंट्स की बात सुनी, मदर वॉज लाइक न्यूट्रल, तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी आपको बेस्ट लगे। यहाँ पे ना एक काउंसलर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रियंका। मेरा फर्स्ट, अगर आप मेरे को एज अ यू नो समझे कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेस, मैं एक काम कर सकती थी, उनको बीबीए के कोर्सेज देती कि ये यूनिवर्सिटीज हैं बच्चे के स्कोर देखकर, और आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं कभी भी नहीं करती है, क्योंकि जब मैं एक स्टूडेंट का प्रोफाइल अपने पास लेती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो मेरी फाइल बन जाती है, वो मेरी जिम्मेदारी। तो एज आई सेड कि मेरे लिए हर बच्चा कबीर हो जाता है। सी दैट्स
1: वन बड़ी बात बोली
0: नहीं है, और ये मैं आज आप मुझसे बात करेंगी, हम 5 साल बाद मिले, 10 साल, वो क्योंकि मेरी नर्व ही वही थी शुरू करने की इसको। अब मैंने उस बच्चे से बात की
1: तो वो ज्यादा अच्छे से कनेक्शन फील कर पाते
0: हैं, और वही रीजन है कि टच वुड टिल डेट हर पेरेंट के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ है, हर पेरेंट के साथ। बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, जे सबके टच वुड, आई एम स्टिल इन टच विद ऑल द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, उन सबके साथ। तो आते हैं उस बच्चे पे, तो मैंने देखा वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उस बच्चे ने एक भी वर्ड नहीं बोला, एक वर्ड नहीं बोला। मैंने पेरेंट्स के साथ एक रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके बेटे से अलग से एक बार मिलना चाहती हूँ। अगले दिन आया, बच्चा आया मेरे पास, वो अपने साथ ना एक फाइल लेकर आया
1: जी।
0: उस फाइल में ना 8 levels ऑफ गिटार के उसके सर्टिफिकेट्स थे बच्चे के, पिछले 7 साल के। और उस बच्चे ने मुझे बोला, मैम ऐसे जस्ट जनरली कि मेरा बैचलर्स ये बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वही जैसे आपने अभी बोला कि मेरा अपने फादर के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट हो चुका है, मदर मेरी मतलब ज्यादा वो ओपिनियन नहीं देती, उनके लिए मेरी खुशी भी है और पापा के लिए भी जरूरी है। तो मैं तो छोड़ दूंगा, अगर आप मेरे को कोर्स करवा भी दोगे तो मैं करूंगा नहीं कंप्लीट। मतलब वो बच्चा, सी आजकल के बच्चे हैं, आप उनके ऊपर ना सिर्फ इम्पोज नहीं कर सकते, आपको डिस्कशन करना है बच्चों के साथ एज एन इंडिविजुअल। तो वो वही मैं पेरेंट्स के साथ कोशिश करती हूँ, एंड दे अंडरस्टैंड, बिकॉज सी एज वी सेड कॉमन गोल क्या है, बच्चों की खुशी, करियर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे का समझा, फिर मैंने अच्छा एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, उस बच्चे के पास जो सब्जेक्ट्स थे स्कूल में वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। सो अब आप समझिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल में उसका इंटरेस्ट है, 8 levels ट्रिनिटी के उसने सारे कंप्लीट करे हुए थे गिटार के, फादर चाहते हैं कि वो बीबीए करे क्योंकि वो वापस आके वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में उनको ज्वाइन करे। बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पेरेंट्स को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और बच्चे के लिए भी अच्छा चाहती हूँ। मैंने 3 दिन मांगे फैमिली से, मैंने अपना रिसर्च किया जो कि बहुत जरूरी है, दिस इज फॉर अ कंसल्टेंट, एज जैसे आपने बोला कि क्यों कैसे कंसल्टेंट चूज करें, एवरी डे रिसर्च बहुत जरूरी है। एक आप एक सिंपल डिक्शनरी ऑफ प्रोग्राम्स नहीं बना सकते, उसको हर रोज अपडेट करना है। खैर मैंने 3 दिन लिए, 3 दिन के बाद मैंने पूरी फैमिली को बुलाया, बच्चे को भी बुलाया और पेरेंट्स को भी बुलाया
1: जी।
0: मैंने उनको एक प्रोग्राम ऑफर करा यूके में ही, 2 universities में, साउंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का, साउंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन प्रोग्राम्स अभी इंडिया में कम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत पिकअप कर रही हैं, विद डायनामिक्स मानव रचना ने बहुत कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ और इंडिया में है, इंडिया में अभी लेकिन पिकअप हो रहे हैं। सो टू वेरी गुड यूनिवर्सिटीज, और मैंने उनको सजेस्ट करे वो प्रोग्राम, और मैंने फादर को बोला, सर देखिए ये प्रोग्राम का रीजन है, उसके पास सब्जेक्ट साइंस के हैं, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी है, आपका थॉट प्रोसेस मैं समझती हूँ कि ये आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम करियर नहीं है, लेकिन साथ में मैंने मैनेजमेंट का कोर्स भी उसको दे दिया है बैचलर्स के बच्चे के लिए, तो 3 साल में वो सब्जेक्ट भी सीखेगा और वो स्किल भी सीखेगा। तो वर्स्ट कम वर्स्ट, अगर वो इंजीनियरिंग और साउंड में अच्छा नहीं करता तो वो मैनेजमेंट स्किल सीख कर आ जाएगा, आपका बिजनेस वो तब भी टेक ओवर कर लेगा।
1: राइट,
0: ठीक है। बच्चा खुश था क्योंकि उसमें उसने मॉड्यूल्स देखे, उसमें म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट के मॉड्यूल्स थे। पेरेंट्स मान गए, बच्चा वॉज हैप्पी, ही वेंट, दिस वॉज इन 2021। उस बच्चे ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। 2023 में मेरा फादर के साथ एक रिकनेक्ट हुआ कि सर यू नो हाउ इज योर सन, अभी कैसे है, वो वापस आ रहा है, यू नो अभी मेरे को ये बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं। तो फादर ने बोला, मैम वो तो वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सर्ट्स कर रहा है, एंड मैं नहीं चाहता वो वापस आए, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत बढ़िया वो सेलिब्रिटी टाइप्स वो वहाँ पे प्ले शोज कर रहा है, कॉन्सर्ट्स एंड गिटार एंड इंस्ट्रूमेंट के, जब आना होगा देख लेगा, बिजनेस तो चल ही रहा है। दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू डू। एंड जैसे हर घर में ये डिस्कशन है, अब क्या है, उस बच्चे ने एक नया ड्रीम बना दिया अपने पेरेंट्स के लिए कि हम बैरियर्स को ब्रेक करके भी एक करियर को हम आगे कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने स्किल सीख लिया और वापस आके वो गाइड भी कर सकता है अपने ऑफिस के स्टाफ को, अपने फादर के ऑफिस के स्टाफ को, उन अपने फादर को सपोर्ट भी कर सकता है, और साथ साथ वो अपना करियर भी परस्यू अपने दिल से कर रहा है। सो इसके लिए ना रिसर्च बहुत चाहिए होती है, एंड आई ट्राई टू डू दैट। तो हमने क्या करा ना, 3 चीजों को एड्रेस करके, बच्चा, पेरेंट एंड उसके लिए क्या अच्छा है, हमने ब्रिज करके वो सोल्यूशन दिया, एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो ये हम हर स्टूडेंट के साथ करते हैं और हर पेरेंट के साथ। सो क्या है ना, पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है, बच्चे के ड्रीम को समझना बहुत जरूरी है। हाँ ये जरूरी है कि बच्चों को रियालिटी चेक भी देना है। हम सब कुछ हंकी डोरी रोजी पिक्चर नहीं कर सकते। अब अगर उस बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं होते प्रियंका, तो शायद मेरे को कुछ और देखना पड़ता है ना, क्योंकि उस बच्चे के पास वो अचीवमेंट्स और क्रेडेंशियल्स थी जो वो करना चाहता था, उससे मेरे को हिम्मत मिली एंड उससे मेरे को रिसर्च करने का मौका मिला कि मैं उसको क्या दूं। अब कोई बच्चा ज्यादा जैसे एकेडमिक अच्छा है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं है, बट बोले मेरे को ये बनना है, वो फिर यू नो देन वी हैव टू बी रियलिस्टिक, फिर हमें उस हिसाब से आगे अप्रोच करना होता है उस। लेकिन ये जो डिस्कशंस हैं हर घर के, आई एम ट्राइंग कि एक घर एट अ टाइम, एंड आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई वे ऑफ माई हार्ट एंड एक्सपीरियंस.
1: कितने बच्चों के सपने बच जाते हैं, कितने पेरेंट्स की उम्मीदें बच जाती हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बोलूंगी कि एक सही काउंसलर की भी जरूरत जो है वो होती. अच्छा मैं अपने टाइम की बात करूं तो थैंक गॉड कि हम उस वक्त में थे जब हमारी काउंसलिंग अच्छे से हुई, पेरेंट्स की हुई. बट जब हम अपने मम्मी पापा के उसमें देखते हैं तो आज मुझे समझ में आता है कि यार मेरे पापा तो ये बनना चाहते थे, मेरी मम्मा तो डॉक्टर बनना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं सपने पूरे नहीं हो पाए क्योंकि पेरेंट्स शायद कहूँ कि ध्यान नहीं दे पाए या वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए या शायद उन्हें पता ही नहीं था कि काउंसलर जैसी भी कोई चीज़ होती है, कुछ होता है जिनके पास जाके एक सही समझ हमें मिल सकती है. बहुत सारे रीजंस जो शायद उसके जवाब नहीं मिल पाएंगे, बट थैंक गॉड, थैंक यू बोलूँगी कि हम इस टाइम पर हैं जब एक सही काउंसलिंग के साथ में हमारे लिए क्या सही है वो हमें पता चलता है. अच्छा, अक्सर जो पेरेंट्स हैं ना उनको वीज़ा प्रोसेस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से डर लगता है. आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जो कि मस्ट है, कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है.
0: इस क्वेश्चन को मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी कि जब हम बाहर भेजने की बात करते हैं ना, स्टडी अब्रॉड, पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना है कि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि बाहर जाने का मतलब है एकदम से इतना खर्चा. ऐसा नहीं होता. सो यहाँ पे भी अवेयरनेस, हम फाइनेंशियल लिटरेसी की भी वर्कशॉप करते हैं हर पेरेंट के साथ, लेकिन उसमें मैं करती क्या हूँ मैं आपको ये बताऊंगी. सबसे पहली चीज ना, हमें वो थॉट को ईजी करना है हर पेरेंट के लिए कि अगर आपका बच्चा बैचलर्स के लिए जा रहा है सो तीनों सालों की पढ़ाई का खर्चा आपको आज नहीं करना, पहली चीज. दूसरा, लिविंग एक्सपेंसेस जो वहां पे रहने खाने का खर्चा है वो भी आपको तीनों सालों का एक साथ नहीं करना. कई बार माइंड में ये आता है अरे मैं अपने बच्चे या डॉटर या बेटे को बाहर भेजना है तो 70 लाख से 1 करोड़ का तो हो ही जाएगा, बट वो आपको आज नहीं देना. तो क्या होता है जो लेवरेजिंग वाला पार्ट है ना, एंड पेरेंट्स फिर समझते हैं बिकॉज मैंने उनका एक्सप्रेशन देखा है कि सर या मैम हमें अभी जो चाहिए ना वो हमें फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस दिखाना है, फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी, फर्स्ट ईयर का लिविंग एक्सपेंसेस. तो वो ब्रेक हो गया और फिर हमारे पास 3 साल का टाइम भी हो गया. एक तो वो चीज तो दे उनको थोड़ा इजी लगता है, अच्छा ये 1 करोड़ एक साथ नहीं करना मुझे, है ना, वो ब्रेक हो गया 30 लाख 1 या 3 या 4 में डिपेंड. दूसरी चीज एजुकेशन लोन. सो इवन इफ पेरेंट्स, और मैं हमेशा ये एडवोकेट करती हूँ, उसकी 2 वजह है. अगर पेरेंट्स की कैपेसिटी है भी कि भाई हम कोई कैपिंग नहीं है एंड हम लोग आराम से एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद भी आई एडवोकेट कि आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए. एक तो आपका जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है, कुछ आपने सेविंग से दे दिया अपने अर्निंग से, कुछ आप बैंक से लेवरेज कीजिए. क्योंकि एजुकेशन लोन का जो पेमेंट है ना प्रियंका, वो day 1 से नहीं शुरू होता. एजुकेशन लोन का जो रीपेमेंट टाइम होता है वो बच्चे की पढ़ाई खत्म होने के बाद होता है. तो आपको वो 3 या 4 ईयर्स की विंडो मिल गई अपने बच्चे के लिए.
1: जी.
0: दूसरा, एक बच्चे के माइंड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी जरूरी है. जब हम सब कुछ कहते हैं ना कि ठीक है, इधर मैं ड्रीम्स की भी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हम सब कुछ प्लेटर पे कई बार सर्व कर देते हैं ना तो हमें अहमियत नहीं पता चलती.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहूंगी कि पेरेंट्स जब हम एजुकेशन लोन के लिए जब मैं बोलती हूँ तो बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है पूरी लाइफ. और दूसरा, एक उन्होंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर ली है लोन की मेरी पढ़ाई के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना पूरा 100% से भी ज्यादा उस पढ़ाई को दूं. एंड पेरेंट्स आपसे इनकम नहीं मांगेंगे, वो क्या चाहेंगे, आपकी सुरक्षा, आपकी आपका करियर, आपकी खुशी. तो उसको आप पे बैक कीजिए बाय कंप्लीटिंग इट प्रॉपरली. इसलिए नहीं कि बस मैं अब्रॉड जाऊं और मैं एक ब्रांड दिखाऊं, नहीं, वो करिए, लिव योर लाइफ. वो आपको खुश रहना देखना चाहते हैं, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी ऐड हो जाती है. सो मैं एडवोकेट करती हूँ कि, और ये पेरेंट्स को मैं थोड़ा सा इजी करती हूँ कि सर मैम ये आपका खर्चा आज नहीं हो रहा, हमें अभी इतना देना है या इतना दिखाना है. एक्चुअली देना भी नहीं होता पूरा, वो फिर कंट्री कंट्री कभी हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे. कुछ कंट्री में फीस देनी होती है, लिविंग एक्सपेंसेस देने ही नहीं होते कहीं पर भी, वो हमें अपने ही अकाउंट में दिखाने होते हैं. तो हमें ये सब चीजें कौन बताएगा एज अ पेरेंट. वहां पे अ गुड काउंसलर, अ गुड नॉलेजेबल काउंसलर. तो मैं अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस और वीजा ऑफिसर का एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज करती हूँ. उनको मैं एजुकेट करती हूँ, आई एजुकेट द पेरेंट्स कि ये जो ब्रेक ये अमाउंट है हम इसको ब्रेकअप करेंगे और आपको अभी सिर्फ इतना देना है. एंड ऑनेस्टली वो बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होती है प्रियंका, और उसमें उनके बड़े सारे नोशंस ब्रेक हो जाते हैं कि हमें तो लगा था कि अगर अगले साल भेजना है तो मुझे एकदम से इतना, नहीं ऐसा नहीं है. एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू फैसिलिटेट इजीली फॉर दीज.
1: और कहीं ना कहीं यही एक प्रेशर होता है कि

0: कितने पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को कुछ
1: लेकिन
0: कराना,
1: नहीं भेज पाते,
0: बट वो नहीं भेज पाते क्योंकि उनको लगता है इतना खर्चा आएगा।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे भी ना कहीं ऐसे कि हमें अब्रॉड जाना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ वो वहाँ जाकर वो तो भूल जाते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं। पेरेंट्स के बारे में बात हुई, लेकिन जब बच्चों की बात आती है उनको आप कैसे काउंसिल करते हैं, किस तरीके से उनको बताती हैं कि क्या सही है और वहाँ जाके क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको?
1: मेरे पूरे काउंसलिंग में मेरा स्टूडेंट सेंटर में है, न्यूक्लियस है। सो अब कई बार बच्चे आएंगे कि मेरा फ्रेंड वहाँ जा रहा है, मेरी दोस्त वहाँ जा रही है, तो मुझे वहीं जाना है।
0: और ये ज्यादातर देखने में
1: 90% एक्चुअली मैं आपको मैं बताऊँ, अभी तो खैर थोड़ा कनाडा में थोड़ा सा चल रहा है अनरेस्ट। कई बार क्वेरीज ऐसी आती हैं कि स्टडी अब्रॉड इज इक्वल टू कनाडा। तो हमें स्टूडेंट्स को ये बताना पड़ता है कि हमारे वर्ल्ड में ना बहुत कंट्रीज हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है इसमें आप कनाडा नहीं, आप यूके भी, यूएस भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लिमिट नहीं करती सबसे पहले। तो हम अपने स्टूडेंट की जो शॉर्टकमिंग्स हैं थॉट प्रोसेस की, प्रोफाइल की नहीं, पहले उनको एड्रेस करते हैं कि भाई अच्छा आपने सपोज अगर आपने यूके जाना है तो आपने यूके क्यों जाना है, तो मैं रीजन आउट करती हूँ। क्योंकि देखिए 12वीं क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा, कई बार सी हम कहते हैं कि कई बच्चों को बहुत क्लैरिटी होती है, लेकिन 70% बच्चों को आज भी क्लैरिटी नहीं है इवन आफ्टर द रीच 12th। लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो आर दे रॉन्ग? एब्सोल्यूटली नॉट। क्यों? हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी है, हम इतनी बातें करते हैं, तो क्या करें, कितना करें? तो उन बच्चों को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे पहले। नहीं पता क्या करना है, एब्सोल्यूटली फाइन, हमें भी नहीं पता था, है ना? लेकिन क्या कर सकते हैं अब, उस पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि देखो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने एनवायरमेंट के लिए ये करा है, आपने ब्लड डोनेशन किया है, इसको कंबाइन करके मैं आपके लिए ये प्रोग्राम्स निकालती हूँ। तो हम अगेन, मैं एक जब शॉर्टलिस्टिंग करती हूँ कोर्सेज की, करीब करीब हम 10-12 प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्री में। उन बच्चों को मैं होमवर्क देती हूँ, उन प्रोग्राम्स की जब मैं लिस्ट देती हूँ, खाली नेम्स नहीं देती, प्रोग्राम का लिंक, उसकी एलिजिबिलिटी। आई आस्क देम टू डू अ होमवर्क, आप इन लिंक्स पे जाओगे, मुझे हफ्ते के बाद बताओगे आपको कौन सा पसंद आया प्रोग्राम, एंड ये वर्क करता है। सबसे पहले उन बच्चों को ना एक डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा अपने प्रोग्राम्स जो मेरे, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं यहाँ जा सकता हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। सो वो एक पहला डायरेक्शन हमारा हुआ। उसके बाद फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप इन करियर्स में जा सकते हैं, यू नो। सो उससे उनका हम क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। फिर हम नेगोशिएट करते हैं बच्चों के साथ, अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है, फिर मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ उनके साथ। और तो एंड वी हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शंस। फिर मैं उन बच्चों को एंगेज करती हूँ कि आप अपना माई सेल्फ का एसे लिख के दीजिए मुझे, जैसे हम सेकंड में लिखते थे ना प्रियंका। सो वो मैं उनसे अब लिखवाती हूँ, चाहे 12th के स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएशन के, कि अपना माई सेल्फ का एसे लिखिए और मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आपको और समझ पाऊँ। अब वो लेकिन माई सेल्फ का एसे थोड़ा मेच्योर होता है, मेरे लाइक्स, मेरे इंटरेस्ट, अगर मुझे बाहर जाना है तो क्यों, इसलिए नहीं कि मेरे पड़ोसी के बच्चे गए हैं या मेरी फ्रेंड वहां जा रही, आप क्यों जाना चाहते हो, आपको ये प्रोग्राम ने क्या इंस्पिरेशन दी है आपने। फिर उससे बच्चे डीप जाते हैं। तो हम ना उनको बेबी स्टेप्स में गाइडेंस देते हैं, एंड आई इन्वॉल्व देम। मैं स्पून फीड में कभी बिलीव नहीं करती, हम टीम वर्क के साथ एंगेज करते हैं और फिर उनको डायरेक्शन ऐसे देती हूँ मैं। और फिर धीरे धीरे, फिर ये जो शुरू का जो प्रोसेस है ना, सबसे टफ प्रोसेस ये होता है। उसके बाद तो मुझे मालूम है, स्टूडेंट्स को पता है, बच्चों को, पेरेंट्स को पता है, हमने ये अप्लाई करना है, हमने ये प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और फिर तो स्टेप बाय स्टेप
0: वो थॉट्स क्लियर
1: रहता है। बस पहला जो 2-3 इंटरेक्शंस होते हैं ना, और स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग हम करते रहते हैं, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज उसमें हम शेप कर रहे हैं उनका फ्यूचर, और बाद में तो स्टेप्स हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड वी ट्रेनिंग करती हूँ, आइल्स की ट्रेनिंग, उनको स्किल, हम स्किल ट्रेनिंग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स, उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर इंडस्ट्री बेसिकली। बस थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन हाँ ये जरूर करते हैं हम, एंड आई लव दिस मेहनत।
0: मेहनत आप लोगों की, और फिर उसके बाद जो वो बच्चा भविष्य में करता है उसकी खुशी भी आप लोगों को ही सबसे ज्यादा।
1: मैं तो ब्लेसिंग्स पे ही जीती हूँ।
0: यस,
1: सो पेरेंट्स और बच्चों की विशेस।
0: अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी। अब ये तो कोर्सेज जो काफी अच्छे लग रहे हैं सुनने में, बातें जो हैं, बट वो बच्चे जो कोर्स करने बाहर गए हैं लेकिन वापस वो इंडिया में आके कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि
1: कई स्टूडेंट्स आजकल, एक अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज इनिशिएट करी हैं G20 के अंडर, एंड अदरवाइज आल्सो लुक एट मानव रचना, यू नो आई मस्ट से कि आपकी यूनिवर्सिटी लीडर्स क्रिएट कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स क्रिएट कर रही है. सो जो एक बाहर की पढ़ाई है वो एक एनहांसमेंट है कि वापस आके आप कंट्रीब्यूट करें और लर्न भी करें कि आप देखिए ना स्टार्टअप्स, लुक एट स्टार्टअप्स यू नो द वे. लेकिन क्या होता है कई बार अगर स्टार्टअप्स एक पर्टिकुलर नॉलेज को डिप्राइव हो के में ना हो या एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस में नहीं हुआ तो फिर वो ओपन एंड शट हो जाते हैं. तो अगर स्टूडेंट्स बाहर जाके एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं एक पर्टिकुलर उसमें एंड वो वापस आके किसी असाइनमेंट को ज्वाइन करें या कोई बिग फोर को ज्वाइन करें या कुछ स्टार्टअप करें, उसका जो लॉन्गेविटी होती है या उस रोल का जो यू नो टाइम वो होगा ना, वो शॉर्ट लिव नहीं होगा. बिकॉज आपने वो टेक्निक सीख लिया, आपने वो डिटेल सीख लिया और आपने स्ट्रैटेजी सीख ली, तो जब आप आएंगे वापस तो आपको उसका रिटर्न डेफिनेटली आएगा इन टर्म्स ऑफ गुड रोल्स, गुड प्रोजेक्ट्स. तो वो हम वापस, अब कई बार हमारे पास एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी, पेरेंट्स पूछते हैं कि यहाँ की डिग्रीज इंडिया में एक्सेप्ट होंगी.
0: ये एक सवाल,
1: यस, जितनी इन कंट्रीज की डिग्रीज हैं दे विल बी एक्सेप्टेड, इम्प्लीमेंटेड एंड वेल रिकग्नाइज्ड इन इंडिया. तो उनकी रिकग्निशन है इंडिया में, बट अगेन अवेयरनेस हमें बताना है. ये मेरी ड्यूटी है. एंड जैसे पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई वापस आके अगर बच्चों को कुछ करना है तो ये डिग्री रिकग्नाइज्ड है, जहां नहीं होती वो हम बताते हैं. सपोज अगर कोई यूरोपियन कंट्री है, हर कंट्री की नहीं है रिकग्नाइज, तो फिर हम उनको अल्टरनेट्स देते हैं कि अगर आपके बच्चे का प्लान है कि वो वापस इंडिया आए फिर हम रेकमेंड ये करेंगे. अगर उनको कैरी ऑन करना है इन दैट कंट्री इट्स एक्सीलेंट फिर आप, लेकिन वापस आने का अगर ड्रीम है या प्लान है तो यू शुड लुक एट थोड़े बड़ी कंट्रीज, बिगर इकोनॉमीज जिनकी डिग्रीज रिकग्नाइज्ड. सो ये गाइडेंस हम देते हैं स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी कि आप वापस आके ये कर सकते हैं.
0: जी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली हमें, बहुत अच्छा लगा बात करके. चलने का भी वक्त हो गया है, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं शो को ख़त्म करूं और मैं आपसे, ऐसा मन कर रहा है कि बस आपसे बातें करती जाऊं. सवाल बहुत सारे हैं लेकिन कई सारे सवाल लिसनर्स के भी मन में हैं. हम आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है इस वक्त आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा. नंबर है 8010781078. मैम चलने का वक्त हो गया, चलते चलते आप सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: ड्रीम करते रहिए, कोई भी पॉसिबिलिटी छोटी नहीं है. और कीप स्माइलिंग. थैंक यू.
0: और मेरा तो स्लोगन पता ही है आपको कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM. चलिए मुझे दीजिए इजाजत और थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर दिस.
0: और इसी के साथ जरूर हमें मैसेज कीजिएगा. एक बार फिर से नंबर बताती हूँ, 8010781078. चलिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय.
2: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था. मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है. और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा.
3: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे. रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश.
2: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट. जब रात के इस सुकून भरे पल में जब चांद भी चुपके से मुस्कुराए, तब दिल के कोने से कुछ यादें जैसे पुरानी कहानियां बन जाएं, जहां खुलते हैं पन्ने एक डायरी के कुछ पुरानी यादों के साथ, क्योंकि हर लफ्ज के पीछे होती है दिल से दिल की बात, दिल की बात. तो सुनिए हर शनिवार और रविवार रात 7 से 8 सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आरजे प्रियंका के साथ प्रोग्राम यादों की डायरी.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है मैं, तुम और हम, जिसे लिखा है दीप्ति मित्तल ने।

0: आज सुबह कुछ अलग थी। क्या अलग था पता नहीं, पर कुछ तो था। शायद ये कि मेरे बेडरूम की खिड़की पर झूलती नीलगिरी की डाली के ऊपर बड़े दिनों बाद एक कोयल आकर बैठी थी, जो पिछले कुछ मिनटों से कुकू कर रही थी। या ये कि सामने बन रही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क, जो सुबह सुबह शुरू हो जाता था, आज रुका हुआ था। तुषार उठो, 8 बज रहे हैं, ऑफिस को लेट हो जाएगा। तुमने रात को अलार्म नहीं लगाया था?
1: वर्क फ्रॉम होम है यार।
0: आराम से उठूंगा, तुम भी सो जाओ। नींद में ही बड़बड़ाकर वो फिर पलट कर सो गया। वर्क फ्रॉम होम, उफ, बिल्कुल भूल गई थी, आज तो काम वाली कुक कोई भी नहीं आएगा। अब नींद कहाँ आने वाली थी मुझे, घर पर इतने सारे काम जो सामने खड़े दिख रहे थे, आज ऑफिस में भी टाइम बेहद शेड्यूल था। तुषार को यूं बेखबर बेपरवाह सोता देख मन किया उसे झकझोड़ दूं और कहूं, चलो उठो, कितना काम पड़ा है घर में, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी निपटेगा। मगर नहीं कर सकी, पता नहीं क्यों उस पर कभी वो हक महसूस ही नहीं कर पाई जो एक पत्नी करती है अपने पति पर, हक जिद करने का, वो भी ना सुने तो बहस करने का, रोटने का और मनाने पर मान जाने का। हम दोनों के बीच तो शुरू से ही एक परायापन पसरा था, एक ऐसी अदृश्य दीवार खींची थी जिसे हम कभी भेद ही नहीं पाए। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, अरेंज मैरिज थी। एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से पापा ने मेरे लिए परफेक्ट मैच खोजा था। परफेक्ट यानी हम दोनों हम उम्र आईटी इंजीनियर थे, एक शहर में जॉब करते थे और एक सा कमाते थे। उनके लिए परफेक्ट मैच शायद यही परिभाषा थी। हमारी शादी का पहला साल डिस्टेंस रिलेशनशिप में गुजरा। शादी होते ही उसे साल भर के लिए अमेरिका जाना पड़ा। मैंने बहुत हाथ पैर मारे मगर मुझे अपनी कंपनी से अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं मिला। तुषार के घर वालों ने कितना फोर्स किया था मुझे कि मैं अपना जॉब छोड़कर स्पाउस वीजा पर उसके पास चली जाऊं, मगर मैं क्यों अपनी जॉब अपना करियर का त्याग करती? क्या वो यहां प्रोजेक्ट ट्राई नहीं कर सकता था? कारण चाहे जो भी रहा हो, मगर हमारे रिश्ते में कभी वो गर्माहट, वो एहसास पनप ही नहीं पाया जो एक के दूर होने पर दूसरे को बेचैन कर डालते हैं, सूनी आंखों को इंतजार से भर देते हैं, और वो राह तकती रहती है उस पल का जब उसका साथी लौट कर आएगा और उसके पास उसकी बाहों में। हम दोनों तो जैसे तैसे अपने अपने दायरों में सिमटे, अपने अपने काम में उलझे, अपनी अपनी जिंदगी जीने के आदि हो चले थे। मैंने उठकर अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर बाहर टेरेस पर आकर बैठ गई। आज मौसम कुछ घिरा हुआ सा लग रहा था, मौसम में भी हल्की सी ठंडक थी। चाय पीते हुए मोबाइल पर मैसेज चेक करने लगी। 10 बजे टीम के साथ वीडियो कॉल, 12 बजे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और लॉकडाउन पर बनी कुछ बेहद फालतू जोक्स। लोग भी ना अपनी सारी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पर ही निकालते हैं। मैंने झल्लाते हुए चैट को क्लियर किया। गुड मॉर्निंग। कुछ देर बाद तुषार अलसाते हुए मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी नजरें इधर उधर कुछ खोजने लगी। आज नहीं आया? जानती थी वो अखबार ढूंढ रहा है। चाय पीते हुए अखबार पढ़ना, देश दुनिया की एक एक बात जानना उसके रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा था और शायद मेरा भी। हम इंफॉर्मेशन का भंडार थे। मुझे तो ऑफिस में गूगल कहा करते थे सब, बस एक दूसरे को ही नहीं जान पाए हम। आंखों को पढ़ना, मन को सुनना, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, पता ही नहीं था हमें। वो मोबाइल में आंखें गड़ाए अखबार की कमी न्यूज ऐप से पूरी करने लगा तो मैंने उसे टोक दिया। आज तो डिलीवर नहीं हुआ है तो खुद जाकर लाना पड़ेगा। उसने अनसुना किया तो मैं आगे बोली, तुमको? क्या मुझे? उसने आंखें मिचमिचाई। मैं कहां से लाऊं? सोसाइटी के बाहर जो शॉप है वहीं मिलेगा, और अगर वहां नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, तरसोगे पूरा दिन चाय और कॉफी के लिए, मैंने तलखी से कहा। तो वो झल्ला कर दूध लेने चला गया। पानी में उबलती अदरक इलायची मिली, चाय पत्ती की महक पूरे घर को महका रही थी। तुषार दूध ब्रेड बटर के साथ खूब सारे नूडल्स के पैकेट भी ले आया था। इतने नूडल्स में 3 दिन तो निकल जाएंगे ना, उसकी बात से लगा शायद उसे बिल्कुल भरोसा ही नहीं था कि मैं खाना भी बना सकती हूँ। होता भी कैसे, कभी खाया ही कहाँ था उसने मेरे हाथ का खाना। शादी के बाद हमेशा से हमारे पास कुक रही थी, कभी वो छुट्टी पर होती तो बाहर से ऑर्डर कर लेते। मेरी 9:30 बजे एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट कॉल है, अगर उससे पहले नाश्ता मिल जाता तो। तुषार की आवाज में रिक्वेस्ट थी। ओह, मुझे भी तो टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, याद आते ही मेरे हाथों में तेजी आ गई। मैंने दोनों के लिए फटाफट टोस्ट बनाए और उसे जैसे तैसे खाकर हम अलग अलग कमरों में अपने अपने ऑफिस खोल कर बैठ गए। मुंबई की पॉश सोसाइटी की 3री मंजिल पर स्थित 3 BHK फ्लैट में इस वक्त 2 आभासी दुनिया बनी हुई थी, जिसमें ना जाने कितने लोग कितनी बातों का कितनी जानकारियों का लेन देन कर रहे थे। ज्यादातर काम कंप्यूटर से ही निपट रहे थे और रहे सहे फोन पर। किस कलीग की सुबह कैसी गुजरी, किसने क्या परेशानियां झेली, क्या नाश्ता किया, बीच बीच में यह भी डिस्कशन चल रहा था। सब आपस में कितने जुड़े हुए थे, कितने कनेक्टेड थे, सिवाय 2 लोगों के, तुषार और मेरे।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है मैं तुम और हम, जिसे लिखा है दीप्ति मित्तल ने।

एक छत एक रिश्ता साझा करते हुए भी शायद हम दोनों एक दूसरे से दूर थे, बेहद अलग, अपनी अपनी दुनिया के बाशिंदे जो बस आते जाते टकरा जाते और जरूरत पड़ने पर काम भर की बातें कर लिया करते थे। दिन धीमे धीमे सरकता हुआ शाम की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। इसका मुझे जरा भी अंदाजा ना होता अगर आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट और ताबड़तोड़ पड़ते ओले मेरी खिड़की पर शोर ना करते। मैं डरकर कमरे से बाहर आई, पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। बाहर प्रकृति का भयंकर रौद्र रूप चल रहा था, मगर तुषार इन सब से बेखबर कानों पर हेडफोन लगाए लैपटॉप स्क्रीन में आंखें गड़ाए अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके कमरे का दरवाजा धीमे से बंद कर मैं रसोई में चाय बनाने आ गई। कुछ ही पलों बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर आया, मानसी अरे ये नेट को क्या हुआ यार, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल चल रही थी मेरी। उसके आते ही मैंने चाय का पानी बढ़ा दिया। जानती थी किस तूफानी मौसम में उड़ने वाला नेटवर्क अब जल्दी नहीं आएगा। तुषार अब पूरे घर में नेटवर्क एजेंसी और मौसम को कोसता हुआ घूमेगा। वैसे उसकी भी गलती नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम करते हुए इंटरनेट का उड़ना हाथ पैर कटनी जैसा लगता है, मगर हम दोनों के ही काम बीच में लटक गए। सुबह टोस्ट, दोपहर में नूडल्स और शाम की चाय के साथ खाली बिस्किट, ये इतना भी बुरा नहीं लगता अगर सामने वाले फ्लैट की रसोई से उड़ती हुई प्याज भजिया के पकौड़े की महक हम दोनों तक ना पहुंच रही होती। तो ये बड़ी ज्यादती है यार, ऐसे समय जब राशन पानी की किल्लत है, कुक नहीं आ रही है।

0: भजिया खा रहे हैं।
1: वो बड़बड़ाया। मैं साफ देख पा रही थी उसकी आंखों में उठती चाहत को। तुम्हें आते हैं बनाने प्याज की भजिया? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। कभी बनाई तो नहीं, बट हाँ मॉम को बनाते हुए देखा था। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्याज काटो, बेसन और मसालों को मिलाओ और बस तल दो। मैंने अपना थियोरिटिकल ज्ञान बखारा। तो फिर? उसकी आवाज में फरमाइश छिपी थी।
0: देखो मैं प्याज नहीं काटूंगी, बहुत आंखें जलती है मेरी।
1: मैंने पहले ही हाथ खड़े कर लिए। अगर मैं काट दूं तो? उसकी आंखों में मनोहार झलकने लगा तो मैं मना ही नहीं कर पाई। हवा में घुली भजिया की महक से बौराई हम दोनों कुछ ही पलों बाद रसोई में खड़े थे। राशन के डिब्बे टटोलते, आलू प्याज की बास्केट में झांकते, थोड़ी ही देर में आंसू बहाते हुए उसने आड़ी तिरछी प्याज की फांके काट दी।
0: अरे तुम्हें तो आता है सब्जी काटना, वाह।
1: हाँ शादी से पहले 3 साल अकेले रहा हूं ना, और 1 साल तो बाद में भी। जब कुक नहीं आती थी तो हम दोस्त मिलकर कुछ ना कुछ बना लेते थे। मुझे से पुरानी यादों में खो गया।
0: चलो अब तुम्हारी बारी है।
1: मैंने कढ़ाई में तेल डाला और कटे प्याज सामने रख अंदाजा लगाने लगी कि कितना बेसन कितना नमक डालूं। मुझे यह उलझन में देख बोला,
0: मम्मी को फोन कर पूछ ले क्या?
1: नहीं कोई जरूरत नहीं है,
0: आई विल मैनेज।
1: जानती थी मॉम से पूछने का मतलब था पहले आधे घंटे का लेक्चर सुनना। मैंने प्याज में अंदाजे से मसाले और बेसन मिलाए और भजिया तलने छोड़ दी। वो गरम तेल में लहराते हुए ऊपर उठाए तो हम दोनों की आंखें चमक उठी। लगा जैसे उम्मीद से परे कोई बड़ा कारनामा कर गुजरे हो। भजिया बनकर तैयार थी। मैं 2 प्लेटों में सर्व करने लगी तो तुषार ने 1 प्लेट हटा दी। साथ ही खा लेंगे, इससे बर्तन कम गंदे होंगे। मैं कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही। वहां एक फिक्र सी बैठी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी मैंने। आज वो आंखें किसी अपनी सी लग रही थी, जानी पहचानी सी। वो शाम शायद पहली ऐसी शाम थी जब हमने किसी बहाने से ही सही साथ बैठकर 1 प्लेट शेयर कर कुछ खाया था। इधर उधर की बातें बनाते, कभी हंसते तो कभी झल्लाते। कुछ देर ही सही हम अपनी अपनी दुनिया से निकल हमारी दुनिया में चले आए थे। तूफान से गुजर सुबह और सुहानी हो चली थी। खिड़की का पर्दा थोड़ा खिसका था, वहीं से पैठ बनाकर सूरज की चंद किरणें मेरे तकिए पर उतर आई थी। मैंने गहरी सांस भरकर कम्बल वापस मुंह तक खींच लिया। बाकी दिनों में कैसे इस समय तक मेड आधे सारे काम निपटा दिया करती थी और मैं और तुषार भी भाग भाग कर तैयार हो रहे होते, मगर आज जैसे वक्त ने अपने कदम थाम लिए हैं। कुछ देर बाद मेरे कानों में तुषार की तेज आवाजें आने लगी। टेरेस की तरफ से आ रही थी, शायद फोन पर किसी से उलझ रहा था। मैं दबे पांव उसके पास जाकर सुनने लगी।
0: आप लोग पैसे तो पूरे रखवा लेते हो लेकिन सर्विस देने के नाम पर 0 हो। आज मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और आपका नेट नहीं चल रहा है।
1: 2-4 और सुनाकर उसने फोन रख दिया। वो एक हाथ रेलिंग पर और दूसरा कमर पर रख अजीब से झुककर खड़ा था।
0: क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हो, एनी प्रॉब्लम?
1: नहीं कुछ खास नहीं, शायद फिर से कमर दर्द बढ़ गया है यार। उसके माथे की सिलवटों में दर्द की लकीरें छिपी थी।
0: फिर से यानी?
1: हाँ वो 2-3 महीने से बार बार हो रहा है। बैक सपोर्ट बेल्ट खरीदी थी मगर लास्ट डे ऑफिस में ही रह गई। पेन किलर से आराम मिल जाता है मगर आज तो उसने भी साथ नहीं दिया।
0: सुनकर मुझे थक्का लगा।
1: 2 लोग हर रोज 1 कमरा एक छत शेयर करते हैं, फिर भी इतनी दूरी है कि एक की तकलीफ एक का दर्द दूसरे तक नहीं पहुंचता। यार दोस्तों से हर बात शेयर करने वाले हम क्यों एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा जाते हैं? इतना भी रिश्ता नहीं बना पाए हम कि अपनी खुशियां बांट ले, दुख साझा कर ले। किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा ले?
0: लॉकडाउन है मैडम, सारे ओपीडी बंद है, और वैसे भी इतना भी इमरजेंसी केस तो नहीं है। वैसे दिखाया था मैंने, कोई घबराने वाली बात नहीं है, रेस्ट से ठीक हो जाएगा। अच्छा वैसे मैंने दूध लाकर फ्रिज में रख दिया है, देख लेना।
1: मैं रसोई में चली आई और चाय चढ़ा दी। मन तुषार के दर्द में ही अटका था। चाय पीकर तुषार फिर लेट गए। मुझे याद आया कि माँ ने दर्द मोज की पर्ची लगाकर एक तेल दिया था, उसे ढूंढकर तुषार के पास गई और उसे पलटकर लेटने को कहा।
0: अरे रहने दो, इसकी क्या जरूरत है?
1: उसने ना नुकुर की तो मैंने उसे जबरन पलट दिया और उसकी पीठ पर तेल की मालिश करने लगी। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह ऐसी आंखें मूंद ली जिसे आराम मिल रहा हो। फिर उसके हाथों पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने लगी जो पापा से सीखे थे। उन पलों में मैंने महसूस किया कि ये हाथ जो मैंने थाम रखा है, ये मेरा अपना ही तो है। फिर क्यों इन्हें थामने में हमेशा हिचक सी लगती है? आराम मिलने पर उसकी आंखें लग गई थी। मैंने उसके पास बैठे हुए उसके बेसुध चेहरे को देखते हुए पापा की कही एक बात सोचने लगी।
2: वो क्या है बेटा, किस्मत को जब एक नया दरवाजा खोलना होता है ना, तो वो पहले सारे दरवाजे बंद कर देती है ताकि ताकि जिद्दी इंसान के सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता ना बचे।
1: शायद इस समय किस्मत ने हमारे वो सारे दरवाजे इसलिए बंद कर दिए जो हमें अलग अलग दुनिया में ले जाते थे। ऑफिस जाना बंद, दोस्तों से मिलना जुलना बंद, और सबसे बड़ा इंटरनेट जो हमें पल भर में एक दूसरे से मीलों दूर पटक देता था, आज तो वो भी बंद था। ऐसे में एक दरवाजा हौले हौले से खुल रहा था हमें पुकारते हुए, हमारी अपनी दुनिया का दरवाजा। अच्छा लग रहा था आज पहली बार पास होकर यूं साथ जीना। कुछ देर बाद मैं रसोई में आ गई। पहली बार मन किया कि आज नाश्ते में अपने लिए नहीं तुषार के लिए कुछ बनाऊं, कुछ अच्छा सा जिसे वो पसंद करे। और तारीफ करते हुए बोले, क्या कमाल बना है मानसी। अभी सोच ही रही थी कि वो भी उठकर किचन में आ गया। यू नो मानसी, मुझे बैक पेन में कितना आराम है। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ इंजीनियर के साथ डॉक्टर भी है। काश मैं तुम्हें पहले ही बता देता। वो आगे कुछ कहते हुए रुक गया। वैसे कैसे बताता, आज से पहले हम एक दूसरे को देखते ही कहां थे। अपने सुखों अपने दुखों की गठरी उठाए दो मुसाफिरों की तरह एक छत के नीचे रात बसर कर फिर अपनी अपनी राह चल पड़ते। वैसे गलती मेरी भी थी, अपने इस बड़ी बालकनी वाले 3 BHK फ्लैट को घर कहाँ बना पाई मैं। टेरेस पर लगे अपने पसंदीदा पौधों को नियम से पानी देती रही, मगर हमारे रिश्ते को कहाँ सींचा था कभी। मैं इधर पोहे बना रही थी और वो उधर बर्तन साफ करने लगा, तो मैंने उसे रोका। कमर दर्द है ना तुमको, रहने दो। कहा ना अभी ठीक है, साथ काम करेंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा। वो कुछ गुनगुनाते हुए हाथ चलाने लगा। मैंने पोहे एक प्लेट में रख लिए 2 चम्मच के साथ। वो पीछे से नींबू और हरी मिर्च लेकर आ गया। इसके साथ खाती हो ना तुम? ये सुनकर मैं चौंक गई। ये कब जाना उसने? हमेशा उसे मोबाइल में आंखें गड़ाए नाश्ता करते हुए देखा था। अच्छा तुम्हें पता है, और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा।
0: बहुत कुछ, जैसे घर छोड़ने से कम 4 बार गैस, कमरे के लाइट पंखे, और मेन गेट का लॉक चेक करते हो तुम।
1: मैं झेप गई। सही तो कह रहा था वो, शायद उतनी अनजान भी नहीं थे हम जितना मैं सोचे बैठी थी। वैसे मुझे भी तो बहुत कुछ पता था उसके बारे में। हर दूसरे दिन अपना वेट चेक करता था और फिर डिसाइड करता था नाश्ता करेगा या नहीं। हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश करता था मगर हो नहीं पाता था। फ्राइड फूड कमजोरी है उसकी,
0: सोशल मीडिया पर हर वक्त ऑनलाइन रहता है। चश्मा सर पर चढ़ाए भूल जाता है और फिर खोजता रहता है। मैं ये सब सोचकर हंस पड़ी। टेरेस पर बैठे साथ चाय पीते, लॉकडाउन की हालत की चर्चा करते, गमलों में खिले ताजा फूलों को देखते हम थोड़ा और करीब आ रहे थे। लग रहा था वो खोल जो हमने अपने अपने ऊपर जबरन ओढ़े थे सरकने लगे हैं। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे। दो दिन बाद आज शाम को नेटवर्क आ गया था। हम दोनों ही अपने अपने पेंडिंग वर्क निपटाने अपने अपने लैपटॉप की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद तुषार हाथों में लैपटॉप उठाए मेरे कमरे में आया। मैं भी यहां काम कर लूं? उसने पूछा तो मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर उसके लिए जगह बना दी और अपनी दुनिया में भी। अब हम अलग अलग दुनिया के नहीं बल्कि एक ही दुनिया के बाशिंदे थे, जो मैं या तुम नहीं बल्कि हम बनकर जीना सीख रहे थे।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल की लिखी कहानी मैं तुम और हम प्रियंका के साथ।

0: भारत को गर्व का पल दे चुके हैं पैरालंपिक्स में और एशियन गेम्स में। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो मौजूद है मनीष नरवाल जो कि पिस्टल शूटर हैं और 2020 पैरालंपिक्स और 2024 पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं और शूटिंग के क्षेत्र में एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जिसको आप पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचानते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये हमारे शहर फरीदाबाद से ही हैं। सो मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू।
0: तो मनीष जी सबसे पहले तो आप समय निकाल कर आए हैं, ये बहुत अच्छा लगा हमें। पहले भी आपसे ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, एक इंटरव्यू ओलंपिक्स के दौरान हुआ था जब आप वहां पर जाने की तैयारी कर रहे थे पैरालंपिक्स में।
1: हाँ जी मैम।
0: और अब आप दो मेडल जीतने के बाद जब हिंदुस्तान में आते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या आपको कैसा महसूस होता है, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी सपना तो लेता है कि हाँ हमें मेडल जीतना है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद आज के जमाने में एकदम से छवि बदल जाती है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं रातों रात, तो वो कैसा महसूस होता है?
1: काफ़ी अच्छा महसूस होता है मैम आने के बाद, और ऐसा लगता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर पाए और जो हमने इतनी मेहनत की वो भगवान की दया से मतलब सफल हुई हमारी वो मेहनत। और जब इंडिया में आते हैं तो जो मतलब परिवार का, समाज का जो मतलब प्यार मिलता है, और फिर मन करता है कि हाँ यार ऐसे काम दोबारा करता रहे
0: जी,
1: जिस वजह से मतलब ये प्यार बना रहे
0: जी। और आप दो बार ऐसा काम कर चुके हैं।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: पहली बार जब मेडल लाया था आपका, जब 2020 में आप पैरालंपिक्स में मेडल लाए, वो इतने गर्व की अनुभूति हुई, सिर्फ आपको नहीं हम सबको हुई, क्योंकि जब हमें पता चला कि एक फरीदाबाद का एक बेटा है और मेडल लेकर आया है, उसके साथ साथ सिंगराज अधाना भी थे, मनीष नरवाल के साथ साथ सिंगराज अधाना भी थे, वो भी मेडल लाए थे। सो ये सारी चीजें देखकर फरीदाबाद का जो नाम था वो भारत में एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था कि फरीदाबाद से दो खिलाड़ी, दो शूटर्स पैरालंपिक में इस बार पूरे तरीके से हरियाणा का दबदबा करके आए हैं। सो जब आप भारत वापस आए, फिर आपकी मुलाकात हुई भारत के प्रधानमंत्री साहब से, तो प्रधानमंत्री जी से जो बातचीत है पहले उसके पल हमें बताइए, फिर हम आपसे आगे की जर्नी जानना चाहेंगे, फ्लैशबैक में फिर जाना चाहेंगे।
1: मैम उस टाइम पे जब मैंने टोक्यो 2020 में जब पैरालंपिक्स का गोल्ड लिया
0: जी,
1: तो गोल्ड लेने के बाद ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर, मेडल सेरेमनी होते ही विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपने पीएम का
0: फोन आ गया
1: और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पीएम श्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। और उन्होंने जब ऐसे बोला मुझे लगा कि यार शायद कोई मजाक
0: कर रहा है,
1: क्योंकि उस टाइम पे भीड़ इतनी थी चारों तरफ। और फिर एकदम से फ़ोन सर ने दिया कि मनीष सर का फ़ोन है, आपको अटेंड करना। तो फिर मैंने जैसे अटेंड किया, वो कहने लगे कि बेटा कैसे हो आप? मैं कि सर मैं ठीक हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मतलब भारत को गोल्ड मेडल मिला है, आपको बधाई हो, आपकी फैमिली पूरी सेलिब्रेट कर रही है, आपके सिस्टर वेट कर रही है, मम्मी जी हलवा वगैरह बना के, खीर वगैरह बना के तैयार हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और जितनी जल्दी आप आ जाओगे हमसे मिलना आप ये वो। तो मुझे लगा कि यार मतलब इतनी अच्छे तरीके से मतलब एक प्रधानमंत्री जी मतलब बात कर रहे हैं, और ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब हम प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे एक दोस्त से, एक
0: कोई
1: मतलब
0: जान पहचान के जो लोग
1: जान पहचान, और जैसे मतलब पेरेंट्स की तरह जैसे मतलब इतने अच्छे तरीके से बात करी उन्होंने। और आते ही सबसे पहले वो मिले हमसे और वहां पे भी बात करी, और फिर आते ही मिले और खूब टाइम दिया हमें
0: जी जी,
1: पूरा मतलब पूरा दिन दिया उन्होंने। और हर हर किसी एथलीट के पास जाना,
0: उनकी टेबल्स पे जाना,
1: उनकी टेबल्स पे जाना, उनसे बात करना फेस टू फेस, और कोई प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट बताओ मुझे हम स्पोर्ट्स को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार अब जो कमांड है ना वो रियलिटी में एक ऐसे बंदे के हाथ में है जो अपने देश को और हर फील्ड में अपने देश को आगे ले जाना चाहता है। क्योंकि बड़े होने के बाद मतलब लोगों के पास टाइम कम होता है, लेकिन वो अपने ड्यूटी से आज भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: अपने देश को हर फील्ड में वो आगे ले जाना चाह रहे हैं वो। और ऐसा ही नेता मतलब हमें चाहिए।
0: बिल्कुल, और स्पोर्ट्स में काफी बदलाव हुए हैं पिछले लगभग 10-12 सालों में।

0: हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं और बहुत सारे मेडल्स भी देखे हैं।
1: हाँ जी,
0: पहले जहां हम एक मेडल देखते थे सिल्वर या एक ब्रॉन्ज आ जाता था तो हम खिलाड़ी को कंधों पे उठाकर घूमने लग जाते थे। अफकोर्स उनकी मेहनत थी लेकिन बाकियों से भी उम्मीद लगाई जाती थी कि कभी इनका भी मेडल आए, लेकिन नहीं आ पाता था। अब एक साथ पाँच पाँच छः छः सात सात मेडल आते हैं तो दिल बहुत खुश होता है।
1: पैरालंपिक्स में तो मैम 20 के अप्रोक्स मेडल, 19 मेडल
0: पैरालंपिक्स में, काफी मेडल जी। और पहले मैं मनीष जी आपको ये बताऊं, एक आम इंसान की नजर में पैरालंपिक्स के बारे में पता ही नहीं चलता था, और ये अभी थोड़े समय से बदलाव हुआ है कि पैरालंपिक्स में जो टीम जा रही है उन खिलाड़ियों की बातचीत, उनके बारे में पूरा ब्यौरा, उनकी डिटेल्स, वो किस किस स्पोर्ट में जा रहे हैं या उन स्पोर्ट्स की थोड़ी सी प्रमोशन करना, ये अभी थोड़े समय से शुरू हुआ है। आपको लगा ऐसा कुछ बदलाव?
1: मैम ये इसका पूरा श्रेय जो जाता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है
0: जी,
1: जिन्होंने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को एक इक्वल दृष्टि से देखा उन्होंने और दोनों को साथ लेके चले। वो पहले क्या होता था कि एबल को ही मतलब आगे लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें देखना चाहिए कि यार हमारे देश का तिरंगा जहाँ भी लहरा रहा, जिस भी एथलीट की वजह से लहरा, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का नाम ऊपर गया, हमें देखना चाहिए कि हाँ यार इस बंदे ने मेहनत की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हुई।
0: बिल्कुल,
1: हम एक कहते हैं ना कि आर्मी अगर कहीं पे तिरंगा लहराती है उसका भी उतना ही सम्मान है, एथलीट कहीं पे लहराता है उसका भी उतना ही सम्मान।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो उसमें फील्ड डिपेंड नहीं करती आपकी, भाई आप एबल से हो, आप पैरा से हो, या आप डेफ कैटेगरी भी होती है
0: जी, जी।
1: उससे हो, और इक्वल जो लेके चले हमारे प्रधानमंत्री जी, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा स्पोर्ट्स काफी ज्यादा मतलब पीक पे आ गया। जहाँ 5 मेडल आते थे, 6 मेडल आते थे, किसी टाइम में पैरालंपिक्स में 1 मेडल आता था
0: और वो भी पता नहीं होता था कि किसने जीता
1: है। हाँ, क्योंकि उसको प्रॉपर किसी नेता, कोई प्रधानमंत्री उसको एज ए सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि स्पोर्ट्स को हम एक सेकंड स्टेज लेके चलते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जैसे
0: नौकरी मिल जाए,
1: एजुकेशन है, नौकरी मिल जाए, और लेकिन अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आने लगी है पब्लिक कि हाँ यार ये भी एक फील्ड है और इसमें भी अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अब खेलों की बात जब चल ही रही है और आपने देश का नाम इतना रोशन किया है, तो एक सवाल जो मैं आपसे अब जानना चाहूंगी वो ये है कि डिसेबिलिटी को लेकर लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि ये बच्चा लाइफ में शायद कुछ ना कर पाए, ये पेरेंट्स सबसे पहले इसी बात को लेकर डरते हैं, लेकिन आपके केस में ये एक ताकत बन के उभरा और आपने शूटिंग के क्षेत्र में वो किया जो मुझे लगता है 100% सक्षम इंसान भी नहीं कर पाता है। तो किस तरीके से शुरुआत हुई शूटिंग की, किसने आपको इनकरेज किया और कहां से हुई ये शुरुआत?
1: मैम मेरा बाय बर्थ था ये कि मैं आपको बताऊं, पहले मैं भी ऐसे शर्माता था कि यार अपने डिसेबिलिटी के बारे में क्या बात करनी ये वो, तो अब धीरे धीरे लगा कि यार नहीं यार एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है और वो जगह टाइम ऐसा कुछ नहीं देखता वो। तो मैं नर्स के हाथ से छूट गया था जैसे मैं मतलब
0: जब आपका जन्म हुआ।
1: हाँ जी मैम, और मैं एक शोल्डर के तरफ गिरा था।
0: ओके,
1: तो उसमें उस टाइम पे मतलब होश नहीं था मुझे, तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है और सारी मैं सब ठीक है। कुछ टाइम बाद में पता चला कि यार ये जो हाथ है ये काम नहीं कर रहा।
0: ओके,
1: और शोल्डर में मतलब इंजरी हो गई है।
0: ओके,
1: और वो सीरियस हो गई है काफी। तो ऑल ओवर इंडिया मतलब पापा ने दिखाया पूरी हर जगह, मतलब पेरेंट्स कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि यार मेरा बच्चा ठीक ठाक ना हो या फिर मतलब एक हेल्दी बच्चा ना हो।
0: बिल्कुल,
1: तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, मेरे पापा मम्मी ने दोनों ने ही, कि ये ठीक हो जाए बस। फिर कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर थोड़ा नॉर्मल होने लगा कि यार ढूंढते रहे वो खोज
0: कोई ना कोई ट्रीटमेंट।
1: हाँ, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल हो जिसके जो मतलब ठीक कर दे। तो नहीं हुआ तो फिर पापा ने सोचे कि यार इन बच्चों को ना, पापा स्पोर्ट्स काफी सारे खेल चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसमें इतनी पावर डालूंगा मतलब इन नॉर्मल बच्चों को भी पीछे
0: छोड़ देगा। क्या बात है।
1: और उन्होंने स्टार्टिंग से ही फिजिकल वर्कआउट करवाना और एक्सरसाइज अपने अंडर में ही कि मैं ही करवाऊंगा फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट, तो वो खुद ही करवाते थे। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर पहले तो फील नहीं होती थी, बाद में जैसे फील होने स्टार्ट हुई, यार तू पैर आ है, तू कर नहीं सकता, पापा कहने लगे कि यार नहीं यार ऐसा नहीं है, तो उनसे भी अच्छा कर सकता।
0: स्कूल में बच्चे कई बार ऐसा कह जाते हैं कि बच्चों को बुरा लगता
1: है, तो कोई बोलता ही नहीं था।
0: अच्छा, स्कूल में
1: पावर पावर इतनी थी मेरे में, बच्चे डरते भी थे उस टाइम पे।
0: अच्छा,
1: कि मतलब मार देगा। और
0: मतलब आपके फादर ने इतना मसल वाइज आपको इतना स्ट्रांग बना दिया,
1: इतना स्ट्रांग मुझे कर दिया था, और रनिंग करवाते थे एक्सरसाइज इस टाइप से। तो फिर जब मुझे फील होने लगी तो मैं एक दिन पापा से बोली कि पापा मुझे ठीक होना है। कहने लगे कि यार नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने कोशिश कर लिया, मैंने कही कि अभी मुझे समझ आई है तो मैं एक बार अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करूँगा मैं, और मैंने अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करे, तो उन्होंने कहा कि यार मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार, जब चीजें ठीक नहीं हो सकती तो हमें जो है हमारे पास उसी में बेस्ट करना,
0: बिल्कुल
1: उसी में बेस्ट करना। तो स्पोर्ट्स करता था मैं, सुबह 4 बजे उठ जाता था मैं, और रनिंग करना, एक्सरसाइज, वर्कआउट। तो फिर पापा स्पोर्ट्स ढूंढने लग गए। तो फिर एक भैया ने सजेस्ट किया कि शूटिंग अच्छा गेम है, इंडिविजुअल गेम है, और इसमें आगे बढ़ने के चांस ज्यादा है। तो फिर मैं शूटिंग में आया, तो फिर धीरे धीरे मेडल्स आने लगे।
0: क्या बात,
1: मेहनत करी।
0: तो किस एज में शूटिंग आपने शुरू करी?
1: मैंने करी थी 9th क्लास में। मैं 9th क्लास में मतलब आया ही था, मतलब 8th के एग्जाम चल रहे थे और 9th क्लास में स्टार्ट कर दी।
0: ओके, सो 9th क्लास में जब बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चे ट्यूशन्स में और तैयारी के आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, ये सारी तैयारी कर रहे होते हैं। आपने शूटिंग को चुना, और क्या ही कोई अपनी फील्ड को चुनता होगा जो आपने चुना, क्योंकि कमाल कर दिखाया इसमें। फरीदाबाद में उस दौरान जब आपने शुरू करा तो क्या शूटिंग रेंज की फैसिलिटी होती थी? क्योंकि आज आप जैसे बहुत से नाम हो गए हैं शूटिंग के क्षेत्र में, अभिनव बिंद्रा है या गगन नारंग है या फिर विजय कुमार हैं, आप हैं, सिंगराज अधाना है, ऐसे कुछ नाम है, मनु भाकड़ है ऑफकोर्स, तो ये सारे नाम है, और इनमें से काफी सारे नाम फरीदाबाद शहर से जुड़े हुए हैं। तो क्या उस दौरान आपको ये शूटिंग की फैसिलिटी अच्छी मिली थी, क्या रेंज अच्छी होती थी, या फिर मुश्किल तब भी आई थी?
1: उस टाइम पे मैम जब मैंने स्टार्ट की थी तो रेंज इतनी प्रॉपर नहीं थी उस टाइम पे, और अंधेरा सा होता था रेंज में,
0: मतलब लाइटिंग नहीं,
1: हाँ
0: फैसिलिटीज नहीं,
1: इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन भी कम होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने मतलब फैसिलिटीज नहीं होती थी। और पर धीरे धीरे जैसे 2016 में मैंने स्टार्ट की थी तो धीरे धीरे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती चली गई, अच्छी रेंज में प्रैक्टिस करते थे हम, और फिर करणी सिंह शूटिंग रेंज आने लग गया था मैं
0: जी,
1: तो यहाँ से फिर धीरे धीरे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे मैम।
0: करणी सिंह शूटिंग रेंज आना, फिर वहाँ से प्रॉपर कोचिंग लेना, उससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी
1: मैम। स्टार्टिंग 1 साल मेरी ऐसे थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था और रात के 10:30 बजे मैं घर पे आता था।
0: ओके,
1: क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनिंग भी करनी होती थी, ट्यूशन्स भी थे मेरे, तीन चार में ट्यूशन होते थे,
0: पढ़ने का भी एक अलग ही स्ट्रेस होता है इस दौरान।
1: और पापा हमारे ऐसे थे कि मतलब इसको अभी बाइक स्कूटी अभी कुछ देना नहीं है, अभी इसको क्या करना है कि साइकिल से जाएगा ये, इसका वर्कआउट भी चलता रहेगा और मेहनत भी करता रहेगा।
0: क्या बात है,
1: तो साइकिल से ही मतलब अप्रोक्स 15-20 किलोमीटर तो मेरी साइकिलिंग हो जाती थी,
0: तो अपने आप में ही वो फिजिकल वर्कआउट काफी अच्छा चलता था। क्या बात है, और आजकल के पेरेंट्स में ये चीज होती है, साइकिल दिलाते हैं शौक के लिए कि बच्चा थोड़ा सा साइकिल चलाता रहे, लेकिन सड़कों पर शायद सिचुएशन भी नहीं है बच्चों के साइकिल चलाने वाले आज की तारीख।
1: थोड़ी सिचुएशन भी वैसी हो गई है, पोल्यूशन वगैरह, इन
0: ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो बच्चों का रिस्क, फिर भी बच्चे साइकिल चलाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी मेडल लेकर आए, तो साइकिलिंग जरूर करवाइएगा, ये मैं जरूर एडवाइस करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खुद फील किया हुआ है कि बच्चे जब साइकिल चलाते हैं, एक तो फिजिकली फिट रहते हैं, बॉडी उनकी एकदम ठीक रहती है, और दूसरा वो अपने आप को समझ पाते हैं, अपने से भी वक्त बिता पाते हैं, ट्रैफिक को समझ पाते हैं, लोगों को देख पाते हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठा कर बच्चे को कैब में या खुद छोड़ने और लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा जो है वो नाजुक भी बन जाता है।
1: मैम एक टाइम था कि मैं मतलब साइकिल से जाता था पहले तो, फिर जैसे मेडल्स वगैरह आए तो पापा ने कहा कि हाँ यार अब इसको गाड़ी दिला देते। कुछ टाइम मैं स्कूल में गया मैं गाड़ी से भी, लेकिन फिर वो मजा नहीं आया, मैंने दोबारा साइकिल ली। फिर
0: साइकिलिंग में ही मजा आया।
1: हाँ, मैं कि यार ये जो चीज है ना, ये चीज अभी कुछ टाइम की है, 12th के बाद में ये सारी चीजें खत्म हो जानी है, तो कुछ टाइम मैं अपना वो ही बिताऊं जो मैंने स्टार्टिंग की थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो मनीष, शूटिंग की बात हम कर रहे हैं, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे अभी, जब IPL चलता है या वर्ल्ड कप में इंडिया का कोई स्कोर अच्छा आ जाता है तो सबको लगता है कि बच्चों को क्रिकेट खिलाना चाहिए। जब ओलंपिक्स में मेडल लाते हैं तो सबको लगता है भाई नीरज चोपड़ा गोल्ड ले आए, अब बच्चे को भाला फेंकने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ऐसे में शूटिंग में अब बहुत बच्चे जाने लगे हैं, अब अवेयरनेस भी है ऑफकोर्स और बहुत सारे बच्चे जाने लगे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शूटिंग में किन बच्चों को जाना चाहिए या क्या ऐसी एबिलिटी एक व्यक्ति में होनी चाहिए कि अब उसे शूटिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो किसी भी एज में किया जा सकता है।
1: हम किसी भी चीज का जब सिलेक्शन करते हैं, जैसे मेरे पापा ने मुझे अप्रोक्स 8-10 गेम्स मतलब करवाए थे।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने देखा था कि हाँ मतलब ये गेम भी खेल, ये भी खेल, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा वहां से, और जीतने की एक वो बनेगी अंदर, एक एबिलिटी मतलब पैदा होगी कि हाँ मतलब
0: स्पोर्टिंग स्पिरिट आएगी।
1: हाँ, स्पोर्टिंग स्पिरिट आएगी और खेल की तरफ इसकी रुचि भी बढ़ेगी। तो जब इतने सारे गेम मैंने खेल लिए थे तो फिर एक गेम पापा ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि हाँ ये गेम अच्छा। ऐसे हमें मतलब जो हमारा यूथ, जो अपनी यूथ जनरेशन है उसको देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज्यादा मतलब
0: एक्सेल कर रहा है,
1: हाँ, है उसकी रुचि है, उसका अंदर से, उसका अंदर से मतलब दिल कहता है कि हाँ यार मुझे ये गेम करना है, और उसी गेम में डालें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मन मार के या फिर दिल को रोक के यार नहीं यार मेरा
0: खेला
1: गेम
0: तो क्या खेला,
1: फिर वो खेल नहीं हुआ मैम, वो एक प्रेशर टाइप में हो जाता है। कुछ टाइम के लिए आपका बच्चा मान भी लेगा कि हाँ यार ये मम्मी पापा ने बोला यार करने के लिए, पर वो अंदर से नहीं आएगा, और जब तक अंदर से नहीं आएगा ना तो आगे वो नहीं बढ़ पाएगा
0: और फिर शायद वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा।
1: वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि कुछ टाइम बाद यार मेरे ऊपर ना ये चीजें थोप दी गई है।
0: बिल्कुल।
1: इससे अच्छा है कि हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपनी यूथ जनरेशन को, कि यार हम हमारा दिल किसमें है, जिस चीज में दिल है उसी चीज को करने में फायदा है।
0: और जैसे आपने कई सारे स्पोर्ट्स पहले ट्राई किए, ऐसे मैंने मनु भाकर के पेरेंट्स से जब बात करी थी तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारी बेटी ने पहले कई सारे स्पोर्ट ट्राई किए, मतलब कभी हॉर्स राइडिंग चल रही है, कभी कुछ और चल रहा है, तो क्योंकि स्कूलों में सारी फैसिलिटी धीरे धीरे आने लग जाती है तो बच्चे को सब पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं, फिर फाइनली शूटिंग की तरफ वो बढ़ी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि पेरेंट्स ऐसा ना हो कि पहला स्पोर्ट खिलाया और बच्चों को बस उसी में ही डाल दिया। अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है या आपको लग रहा है बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो 2-4 अलग अलग खेल ट्राई करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाए और बच्चे का भी इंटरेस्ट खेलों में है, वो भागना दौड़ना चाहता है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे गेम्स को जरूर खिलवाना चाहिए ताकि आपका बच्चा भी खेलों को समझ सके। सो मनीष जी, एक और बहुत बड़ी चीज, आपकी जो फैमिली है, मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दूं, इनकी पूरी फैमिली ही शूटर्स की हो चुकी है। अब इनके भाई भी चैंपियन रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा। इनकी बहन भी है छोटी जो कि शूटिंग के क्षेत्र में ही है और वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स इन सब में पार्ट लेते रहते हैं। सो मैं थोड़ा चाहूँगी आप परिवार के बारे में बताएं और उनकी जो मेडल की लिस्ट है वो भी हमें बताएं।
1: मेडल की लिस्ट तो मैम काफ़ी लंबी है उनकी, लेकिन मैं थोड़ा मेन बता देता हूँ।
0: जी जी।
1: मैंने जब स्टार्ट कर लिया था तो कुछ टाइम बाद पापा ने देखा कि मेरा जो छोटा भाई है और उसको देखा कि यार ये डेली मतलब टूट फूट के आता है, क्योंकि वो गेम जो करता था वो था कबड्डी। तो कबड्डी गेम में क्या होता है कि टूट फूट होती रहती है, इंजरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं उसमें। तो फिर पापा ने उसको भी डाल दिया, पीछे से पापा कहने लगे कि नहीं यार पिस्टल चलानी तो बहन को भी आनी चाहिए, तो इसको भी डालो।
0: और कोच तो घर में है ही।
1: हाँ जी हाँ जी। तो मेरे पीछे पीछे फिर भाई ने भी स्टार्ट की, बहन ने भी स्टार्ट की, और फिर कुछ मतलब ये लगा लो कि कुछ पूछते तो मैं भी बता देता, फिर सर भी थे उस टाइम पे राकेश सिंह ठाकुर,
0: ओके,
1: तो वो कोच भी थे हमारे, आज भी हैं
0: आपके गुरु, वो हैं जिन्होंने शुरू कराया।
1: हाँ जी, जिन्होंने शुरू करवाई थी बल्लभगढ़ में। और फिर जैसे भाई एशियन गेम्स में मेडल लेके आया, काफी सारे इंटरनेशनल मेडल लेके आया, और नेशनल में भी रिकॉर्ड बना रखे हैं उसने,
0: ओके।
1: और फिर पीछे पीछे से मतलब बहन ने भी स्टार्ट की थी।
0: आपसे छोटे हैं दोनों?
1: हाँ जी, दोनों ही छोटे हैं, और सिस्टर ने भी एशियन चैंपियनशिप में मतलब मेडल ले रखे हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं दोनों ही।
0: क्या बात है, मतलब आप अपनी शूटिंग रेंज खोलने के बारे में प्लान कर रहे हैं कुछ फ्यूचर में?
1: नहीं अभी तो नहीं मैम, अभी तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि 4 से 5 ओलंपिक तो मैं खेलूँ।
0: Oh,
1: और nice. मतलब जब तक है मेरे में जान जब तक मैं खेलूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपकी उम्र क्या है इस समय?
1: मेरी 2001 है।
0: 2001 में आपका बर्थ हुआ था, तो आज की तारीख में ये सिर्फ 24 साल के हैं।
1: हाँ जी।
0: और 24 साल की उम्र में ये 2 ओलंपिक्स खेल चुके हैं, जिनमें ये एक गोल्ड और एक सिल्वर ला चुके हैं, और एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज ला चुके हैं। और
1: एशियन मैं आपको बताऊं मैम, 2021 में एशियन गेम्स, इसमें 2021 में जो ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गया था, 2020 का, उसमें गोल्ड था, पेरिस 2024 में सिल्वर
0: था,
1: और एशियन 2018 में गोल्ड सिल्वर था मेरा एशियन गेम्स में, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 3 ब्रॉन्ज, और 2023 एशियन गेम्स ब्रॉन्ज, और अप्रोक्स 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 एशियन रिकॉर्ड, 1 पैरालंपिक्स रिकॉर्ड।
0: कमाल की बात है, मैं आज बहुत लकी फील कर रही हूं कि मैं आपके साथ बैठी हुई हूं।
1: 2020 में अर्जुन अवार्ड, और
0: फिर खेल रत्न अवार्ड,
1: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और फिर भीम अवार्ड। तो भीम अवार्ड मुझे काफी बाद में मिला, लेकिन ठीक था,
0: मतलब कोई ऐसा अवार्ड बचा नहीं है, पद्मश्री और पद्म भूषण ही बचे हैं, पद्म भूषण जैसे
1: अवार्ड बचे हुए हैं
0: जी, वो भी ऑफ कोर्स जिस तरीके का आपका ग्राफ है उस हिसाब से आपको जल्दी मिलने वाला है मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी मनीष आपसे, ये अलग से मेडल्स रखने के लिए कोई आपने घर बनाया हुआ है या क्योंकि आपके और आपके भाई बहनों के मिला के मुझे लगता है मेडल्स ही मेडल्स घर में होते होंगे दीवार पे लगे हुए।
1: मैं अभी घर बना रहे हैं सेक्टर 62 में, और चल रही है उसकी तैयारी भी, एक बड़ा सा अवार्ड रूम हमने बनाया।
0: क्या बात है,
1: कि जिसमें मेडल्स और शील्ड वगैरह रखे जाए, पता नहीं कितने मेडल हैं, मुझे तो
0: मतलब मैं ही नहीं गिन पा रही हूँ, तो आपके घर में तो 3 लोग हैं जो मेडल्स ला रहे हैं।
1: हाँ जी मैम, तो काफी मतलब एक रूम ही समझ लो कि आप भरा हुआ एक रूम मतलब मेडल से।
0: क्या बात है, और पेरेंट्स जो है वो बहुत गर्व महसूस करते होंगे आप तीनों को देख के, क्योंकि आपके अलावा अगर 2 छोटे भाई बहन, और क्या उम्र है उनकी, आप 24 साल के हैं, भाई आपके कितने साल?
1: मैम शिवा के 2006 है DOB
0: जी, तो आपसे 5 साल छोटे हो।
1: हाँ जी मैम, और शिखा की 2004 है।
0: ओके, तो आपसे 3 साल छोटे,
1: तो एक 3 साल से 3 साल छोटे, और एक मतलब 5 साल छोटा।
0: ओके,
1: तो दोनों ही मेडल लेके आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और एक घर में एक शूटिंग का माहौल है कि कभी भाई जीत जाता है, कभी मैं जीत जाता हूँ, कभी
0: मतलब जीतना तो ऐसा होता होगा ना कि ये टूर्नामेंट में गए हैं तो कोई ना कोई तो मेडल लाएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि खाली हाथ आ जाएंगे। तो
1: ठीक है मैम, घर में भी एक माहौल है कि हाँ यार शूटर है पूरी फैमिली, और शूटिंग रेंज भी घर में ही बना रखी है अब, तो वहीं पे
0: तो गंज ही गंज होती होगी घर में भी।
1: हाँ जी मैम।
0: तो आपकी, मुझे लगता है आपकी फैमिली जो है वो एक लौती फैमिली होगी पूरे भारत में, जहाँ पर तीनों भाई बहन एक वर्ल्ड लेवल के शूटर्स हैं, ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर होगा भारत में, ऐसा है?
1: मुझे भी नहीं लगता मैम अभी तक।
0: तो भाई साहब ये जो बता रहे हैं जिस तरीके से ये भाई बहन गेम्स खेलते हैं और शूटिंग में इंटरनेशनल लेवल के इतने मेडल्स लाते हैं, अगर आपकी सोच में या आपकी समझ में आपकी जान पहचान में कोई और ऐसा घर हो जो ओलंपियंस या फिर वर्ल्ड चैंपियन से भरा हुआ हो, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। बहुत सारी बातें मनीष नरवाल जी से हम कर रहे हैं, और अभी बहुत सारी बातें और भी जाननी बाकी हैं। बियॉन्ड द गेम प्रोग्राम में बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम मनीष नरवाल जी के साथ, 2 बार के पैरालंपियन मेडलिस्ट हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इनके पास हैं, और एशियन पैरा गेम्स की तो मैं लिस्ट ये ऑलरेडी खुद अपने मुंह से बता चुके हैं कि सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज सब हैं इनके पास, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल्स हैं इनके पास, तो मतलब लिस्ट बहुत लंबी है और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं आज इस कार्यक्रम में। अब जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि जब हम शूटिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है शूटिंग इज अ वेरी वेरी सिंपल गेम, जहां पे आपने गन उठाई, जैसे फिल्मी हीरो है, गन उठाई और सामने निशाना लगाया और उसके बाद बस गन चला दी। लेकिन इसमें सांस का बहुत बड़ा गेम होता है, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, तभी शायद इतने बड़े लेवल पर जाकर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस के साथ ट्रेनिंग भी लेते हैं और सालों साल लेते रहते हैं, तब जाके एक मेडल आता है। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या टेक्निक्स होती हैं शूटिंग को लेकर?
1: मैम, काफ़ी टेक्निक्स हैं, हर शूटर की अपनी टेक्निक होती है और ब्रीथिंग की भी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। और स्पेशली जब हम ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 4 साल में एक बार आता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम है, वो वहाँ पर जाके एक नर्वसनेस होती है, एक जैसे कहते हैं ना कि यार स्टेज पे जाने के बाद पैर कांपते हैं किसी के, क्योंकि हमें देखने वाली जनता मतलब ऑडियंस बहुत होती है। और वहाँ पे जब पता चले कि यार 4 साल मेहनत करके
0: यही मौका
1: है, इतनी मेहनत करने के बाद, दिन रात खड़ा होने के बाद आज एक दिन मिला तुझे और वो एक घंटा, वो एक घंटे में अपनी पूरी जान लगानी है, तो कई बार क्या होता है कि हाथ पैर कांप जाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
1: और ब्रीथिंग ऐसे खिचकियाने लग जाती है, ऐसे लंबी लंबी सांस आती है,
0: घबराहट, एंजाइटी हो जाती है,
1: घबराहट हो जाती है। और जो चीज पे, जिस चीज पे अपनी टेक्निक्स पे फोकस करना होता है, वहां से हम कहीं ना कहीं हम मेडल्स की तरफ सोचने लग जाते हैं, या फिर अपने आप को कि यार मुझे दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है। तो जहां हमें, मुझे ऐसा लगता है, जहां हम दिखाने की कोशिश करते हैं ना किसी को, वहां पे हम डाउनफॉल जाते हैं फिर।
0: बिल्कुल।
1: और मेरा जो करियर रहा है, मतलब इतने साल मैंने मतलब शूटिंग को दिए हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को दिखाने के लिए शूटिंग नहीं करनी। कोई भी स्पोर्ट्स है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मतलब शूटिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करना,
0: खुद के लिए करें,
1: वो खुद के लिए करना है वहाँ पे। और अपने आप को काम रखना है वहाँ पे, एकदम अपने ब्रीथिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रीथिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, ऐसी हमारे वेदों में, ग्रंथों में ऐसा बताया गया कि सांसों पे अगर हम ध्यान दें तो भगवान को भी पा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और
0: मेडिटेशन यही होता है,
1: मेडिटेशन भी यही होता है। तो जब सांसों पे ध्यान देने से हम भगवान को पा सकते हैं, तो अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं पा सकते?
0: क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया।
1: तो मैम, हम मतलब शूटर हैं, काफी अच्छे जो एथलीट हैं, वो सब एक ब्रीथिंग की एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने आप को मेडिटेट करते हैं डे बाय डे, और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे। हम अपने आप को शांत रख लेंगे किसी भी टूर्नामेंट्स में, कोई अच्छा टूर्नामेंट्स है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वहां पे अपने आप को काम रखना हमें, क्योंकि हमें शूटिंग आती है।
0: हाँ।
1: शूटिंग आती है जब भी तो हम वहाँ पे हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब भी तो हम वहाँ पे खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को, अपने आप पे बिलीव रखना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने मैंने इतनी मेहनत की है, तो उस पे अपना कॉन्फिडेंस रखना,
0: भरोसा खुद पे रखना जरूरी है।
1: उस भरोसे के साथ और अपने आप को शांत रख के वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस ये सोचो कि यार आज मैं अपने दिल से, अपने लगन से यहाँ पे खेलूंगा, एंड द एंड रिजल्ट जो भी है वो उसके ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दो।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम सांसों पे कंट्रोल पा के और भगवान को पा सकते हैं, तो खुद पे कंट्रोल करना तो हमें आना ही चाहिए, अपनी सांसों को कंट्रोल करके। लेकिन जब आप ऐसे माहौल में जाते हैं, मैं शुरुआती दौर की बात करना चाहूंगी, जब आपने 9th में शुरू करी शूटिंग, तो 10th 11th में ऑफकोर्स आप टूर्नामेंट्स में जाने लग गए होंगे, और इंटरनेशनल पहली बार आपने कब खेला?
1: 2017
0: में, मतलब आज से 7-8 साल पहले जब आप गए। सो पहला देश याद है आपको जहां आप गए थे? और क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, एक छोटे से शहर से निकल के जब आप बाहर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई लंबे चौड़े लोग शूटिंग करने आ रहे हैं और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, उनकी किट और उनके कपड़े ज्यादा चमकीले और ज्यादा स्टाइलिश हैं, ऐसा कुछ तो प्रेशर फील होता है शुरू में, पहली बार की बात करें?
1: मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज का जो हमने एक लिमिट
0: बैरियर
1: सेट कर
0: बना लिया,
1: हाँ। बैरियर सेट कर रखा है, ये खाली अपने देश में ही है देखा मैंने। मैं पिछले 7-8 साल से मतलब मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ मैं, और साल में 2 से 3 बार तो मेरा टूर्नामेंट्स होता ही होता है। मैंने देखा कि जो जैसे चाइनीज है, जैपनीज है, अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं। और मैंने ये भी चीज फील की है कि जो अपनी लैंग्वेज में हम किसी से बात करें तो जो इम्पैक्ट जो उसके दिल और दिमाग में जाएगा ना, वो 100 गुना अच्छा होगा किसी दूसरी लैंग्वेज से। वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत है पूरे वर्ल्ड में, लैंग्वेज अगर देखा जाए तो बहुत लैंग्वेज है। और अपनी लैंग्वेज में जो दिल और दिमाग में जो इम्पैक्ट जाता है, जो सीख मिलती है उसे, वो उसकी मातृभाषा में ही मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: और मैं जब स्टार्टिंग में गया तो मेरा थाईलैंड टूर्नामेंट था, और वहाँ पे मैंने देखा कि इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट कर ही नहीं रहे थे, वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट कर रहे थे।
0: ओके।
1: और अपनी लैंग्वेज में ही वो सारे काम करते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे कुछ भी हो। और जो एथलीट्स देखे मैंने वहाँ पे, कि यार अभी मतलब कईयों की एज ज्यादा थी, मतलब अप्रोक्स 50 के आसपास, कि यार वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, हम तो अभी यंग है, हमें तो अभी स्टार्ट करी है, तो हमें मेहनत करनी है। और इस टाइप से एक मोटिवेट हुआ मैं कि हाँ यार मेहनत करनी है, और लगातार मतलब लगे रहना, छोड़ना नहीं अपने आप को, ये नहीं सोचना कि यार नहीं हो पा रहा या ये है वो है। तो मैम उस टाइम पे पहले टूर्नामेंट में मेरा सिल्वर मेडल आया, इंडिविजुअल सिल्वर था और टीम गोल्ड था।
0: क्या बात।
1: और फिर जैसे कोच सर ने आके गले मिला और फिर कहा कि यार बहुत अच्छा,
0: ये कमाल कर दिया,
1: तो मजा आ गया था मैम जब तिरंगा अपना ऊपर जा रहा था।
0: क्योंकि पहली बार जो होती है वो पहली बार होती है, वो आखिरी बार होती है, और बहुत कमाल की चीज होती है।
1: रोंगटे खड़े हुए थे कि हाँ यार तिरंगा ऊपर जा रहा, फिर राष्ट्रीय गान बजा था, तो इतनी अच्छी वाइब थी। उसके बाद फिर मैंने मेहनत करना सीखा कि यार नहीं, मेहनत आज मैंने अगर 10% किया तो कल मैं 20% करूंगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और उस टाइम से 2017 से जैसे मैं इंटरनेशनल मेडल आया, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली मेहनत दिन रात की है, जिस वजह से मतलब किसी भी टूर्नामेंट में मैं गया हूँ तो वहाँ पे अप्रोक्स
0: मेडल आई है,
1: 2-3-4 मेडल लेके आया हूँ मैं।
0: अच्छा, मतलब एक मेडल नहीं, 2-3-4 मेडल लानी है, इससे कम पे बात ही नहीं बनती है इस फैमिली की। क्योंकि ये लाते हैं, इनके भाई लाते हैं मेडल, और इनकी बहन भी लाती है मेडल, इनसे दोनों छोटे हैं, लेकिन मेडल की जो लिस्ट है वो इन तीनों के मिला के मुझे लगता है एक बड़ी टीम से भी ज्यादा की होती है।
1: भगवान की कृपा लगा लो, या फिर हम इतना मानते हैं उन भगवान को, हमारे हाथ में बस मेहनत करना होता है, और रिजल्ट हमेशा उसी के हाथ में छोड़ दे तो ज्यादा बेटर है।
0: बिल्कुल। तो वो दोनों भी ऑफ कोर्स ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे होंगे।
1: हाँ जी मैम, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी 2024 में शिवा थोड़ा सा मतलब चूक गया था ओलंपिक्स में जाने से, बाकी तैयारी चल रही है उनकी भी एक अच्छे लेवल पे, और मतलब भगवान की दया से आगे अच्छा ही करेंगे। 2028
0: बिल्कुल
1: टारगेट, 2028 ही है मैम।
0: बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है, डेफिनेटली अगला जो ओलंपिक्स है उसमें भी बहुत सारे मेडल्स आने वाले हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी मैम,
0: और फरीदाबाद से ही आने वाले हैं, और ये जो फैमिली के मेंबर आप देख रहे हैं मनीष नरवाल जी, इन्हीं की फैमिली से आने वाले हैं, ये भी उम्मीद लग रही है हमें। क्योंकि इतने मेडल्स मैंने नहीं सुने कभी भी किसी परिवार के। ऑफकोर्स एक खेलता है, दो खेलते हैं खिलाड़ी, पर ऐसे पूरा परिवार जो है वो शूटिंग में इतना पारंगत अक्सर नहीं होता है, तो बहुत कमाल की बात है, जिसके बारे में आज आप सबको पता चल गया है कि ऐसा परिवार फरीदाबाद में है। और बहुत डाउन टू अर्थ है मनीष, जो कि बहुत सी बातें बता रहे हैं अपने परिवार के बारे में, अपनी शूटिंग के प्रति लगाव के बारे में। तो आइए जानते हैं और भी बहुत सी बातें। तो मनीष जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी, अब क्योंकि हम खेलों की बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो शूटिंग मेडल आने शुरू हो गए थे, अभिनव बिंद्रा, फिर उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऐसे मेडल्स जो हैं वो आने लग गए थे, और लोग जो हैं वो शूटिंग के खेल को समझने लग गए थे। अब जाकर पिछले 5-7 सालों में शूटिंग को लोगों ने बहुत करीब से जाना है, और इसमें अपने बच्चों को, और अकेडमीज बहुत सारी हो गई हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों ने अपनी अकेडमी शुरू कर ली है, तो एक्सपोजर अब ज्यादा मिलने लगा है। लेकिन आपके कौन से ऐसे फेवरेट शूटर हैं जिनको देख के आपको लगा कि मुझे इनकी तरह खेलना है, या इनसे कुछ सीखा आपने, इंस्पायर हुआ?
1: मैम वैसे तो मैंने मतलब मेरे पापा ही हैं,
0: आपके आइडल आपके पापा हैं?
1: मेरे पापा ये हैं कि वो आज भी हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हर फील्ड में जो उनकी फील्ड है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वो देख के ही किसी को
0: बिल्कुल
1: किसी से इंस्पायर हो के ही जा रहे हैं। मैं अपने पापा को इंस्पायर मतलब पापा को देख के ही मैं आगे बढ़ाऊँ मैं कि यार उन्होंने इतनी मेहनत की है अपने फील्ड में और आज भी खड़े हैं वो अपने फील्ड के ऊपर मतलब इतनी एज होने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा ही हैं मैम।
0: क्या बात है। और मुझे लगता है कि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है और उनसे बड़े कोई आइडल्स भी नहीं हो सकते हैं।
1: वो दोनों लगे रहे हैं पीछे आज भी लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इस वजह से ही मतलब हम तीनों मतलब ऊपर आ गए, नहीं तो अगर पेरेंट्स का साथ नहीं होता तो शायद ऊपर तक नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन निखारने वाले अगर माता पिता हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी आपको बड़े कोच की या किसी की जरूरत
1: नहीं। अगर पेरेंट्स पीछे खड़े ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं हो। कहते ना भगवान को भी मतलब पीछे हटना पड़ता है, जैसा उन्होंने बोल दिया जो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया
0: बिल्कुल
1: वो भगवान को भी माननी पड़ती है।
0: बिल्कुल।
1: तो मैम वही है जो है उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है।
0: क्या बात है। मतलब माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता ये हम सब जानते हैं और हम सब मानते भी हैं, लेकिन इनके केस में मुझे लगता है कि ये विजिबल है, ये सामने है और इस तरीके से मेडल लाना एक के बाद एक ये छोटी चीज नहीं होती और अपने पिता को ये।
1: मैम एक चीज और मैंने फील की है कि मेहनत हर कोई करता है अपने फील्ड में, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते ना तो वो भगवान भी कहता कि नहीं यार तेरा नहीं है।
0: बिल्कुल। एटीट्यूड ईगो नहीं होनी चाहिए।
1: ईगो जहाँ पे आ गई तो कहते हैं रावण को भी ईगो थी। इतना इतना साम्राज्य था उसका।
0: अहंकार तो रावण का भी नहीं चला।
1: हाँ अहंकार तो उसका भी नहीं चला। तो फिर हम तो बहुत छोटी चीज है।
0: क्या बात है।
1: तो अपनी मेहनत हर फील्ड में अपनी जिस भी फील्ड में है अपनी मेहनत करो और ग्राउंड टू अर्थ रहे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि उड़ने वाले जल्दी नीचे गिर जाते हैं।
0: बिल्कुल उड़ने वाले जल्दी नीचे गिर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेंगे तो ऐसे मेडल भी ला सकते हैं फ्यूचर में। तो अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी शिक्षा जरूर दीजिएगा। अब मनीष जी थोड़ी सीरियस बातों के बाद थोड़ी मजाक की बात और सिंपल सी बातें हो जाए। स्ट्रेस बहुत होता है इस स्पोर्ट में, ऑफकोर्स होता ही है, प्रेशर बहुत होता है। तो अपना स्ट्रेस कैसे दूर करते हैं? फिल्में देखकर, घूम के?
1: मैम घूमना सबसे अच्छा है।
0: घूमना सबसे अच्छा लगता है। वैसे तो आप सरकारी खर्चे पे काफी घूम लेते होंगे। हाँ जब
1: मैं अपने पैसों से भी घूमता।
0: अच्छा अपने पैसों से? कहाँ कहाँ घूमते हैं?
1: मैम मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है।
0: ओ।
1: और वहाँ पे जाना, वहाँ पे शांति में रहना थोड़ा ज्यादा पसंद है मुझे। और घूमने से देखा मैंने, मैं 2024 में जैसे ओलंपिक्स के लिए कैंप लगा मेरा, तो जैसे सर ने छुट्टी दी कि हाँ यार 2 दिन का रेस्ट अब तुम्हारा।
0: अच्छा कैंप कहाँ लगा था?
1: करनी सिंह।
0: अच्छा यहीं पे। ओके।
1: हाँ जी मैम। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी है और थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद आने के बाद में और ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि ओलंपिक्स के लिए टाइम कम था। मैंने प्लान किया कि नहीं यार 2 दिन कोई मूवी वगैरह, जैसे दोस्तों ने बोली मूवी देखते हैं, मैंने कहा नहीं यार मूवी वगैरह देख ली दिमाग में और एक चीज घुस जाएगी, उस मूवी के बारे में सोचते रहेंगे प्रैक्टिस के दौरान। कोई ऐसी चीज जहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिले। तो फिर हम पहाड़ों पे गए। वहाँ पे जाने के बाद मैंने कहा कि यार लाइफ में ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि ओलंपिक के पोडियम पे हम खड़े हैं और हम कहें कि यार कहीं थोड़ी सी चूक, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता, शायद मैं अपना डर पहले निकाल लेता तो शायद मैं यहाँ पे मेडल पे खड़ा होता मैं। मैंने कहा कि यार नहीं, पहाड़ों पे जाना है, थ्रिल करके आनी है अपनी बंजी जंपिंग वगैरह और ये सारी चीजें।
0: अच्छा।
1: अपना दिल खोल के जीना। फिर दिल खोल के मैं जिया और वहां से ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिली कि यार तुम्हें पता है कि हम जैसे बंजी जंपिंग करते हैं या फिर पैराग्लाइडिंग करते हैं उसमें पता होता है डर होता है, वो कुछ ऐसा ही डर मैंने अपना वहां पे भी निकाला और अभी मैं निकालता हूँ मैं ऐसी चीजें।
0: मतलब एडवेंचर पसंद है आपको?
1: एडवेंचर पसंद भी है मैम और वहां से शांति भी मिलती है। एक आगे एक जिस स्टेज पे हम खड़े होते हैं ना, जैसे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे डर होता है हमारे अंदर, तो वहां पे जाने के बाद एक डर निकल जाता है कि हाँ यार जब हमने मतलब मौत को इतनी करीब से देख लिया
0: है ये क्या चीज है।
1: तो ये क्या चीज है, अपने आप पे विश्वास रखना और ये चीजें करता रहता हूँ मैं।
0: करते रहते हैं। एडवेंचर जरूर करिए लाइफ में अगर माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, क्योंकि ओटीटी पर वेब सीरीज और फिल्म्स देख के माइंड रिलैक्स नहीं होता है।
1: नहीं होता मैम।
0: तो फिल्में नहीं देखते आप बिल्कुल भी?
1: देखता हूँ मैम।
0: तो कौन सी फिल्में देखते हैं, कोई हीरो हीरोइन कोई बढ़िया फेवरेट पसंद है तो बता दीजिए थोड़ी सी आपकी फैन फॉलोइंग।
1: मुझे थोड़ी कॉमेडी मूवी पसंद है और जो ये भूत वगैरह की होती है ये नहीं देखता मैं।
0: हॉरर फिल्म में से?
1: हॉरर मूवी मैम पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अजीब सा ही, मैं बचपन से ही नहीं देखता।
0: अच्छा, डर लगता है?
1: हाँ थोड़ा डर भी लगता है।
0: तो ये जो है ये शूटिंग करते हैं, इनके पास 50 मीटर 10 मीटर सब में मेडल्स हैं, लेकिन ये भूत से डरते हैं। तो ये एक बात है जो आप
1: डरता नहीं हूँ मैम। भूत मैंने अपने पास एकदम करीब से भी देखे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूँ, लेकिन
0: अच्छी नहीं लगती, अपील नहीं करती,
1: उसमें अच्छी नहीं लगती। मुझे कॉमेडी मूवी और थोड़ा थ्रिल पसंद है,
0: माइंड रिलैक्स हो जाता है,
1: माइंड रिलैक्स हो जाता है, कुछ अच्छी चीजें हंस लेते हैं, थोड़ा थोड़े सॉन्ग वगैरह अच्छे होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है।
0: रेडियो पर आए और गानों की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई गाने जो आपके फेवरेट हैं, कोई सिंगर आपके फेवरेट हैं?
1: मैम पंजाबी सॉन्ग थोड़े पसंद है।
0: अच्छा।
1: और वैसे सुनता मैं हर टाइप के हूँ, इंग्लिश हिंदी और पंजाबी भी।
0: ओके।
1: तो सारे चलते रहते हैं, पर
0: जो नए आते लेटेस्ट हिट होते हैं वो आप सुनना शुरू कर लेते हैं, या फिर ऐसा कि नहीं, कुछ फेवरेट लिस्ट होती है ना?
1: पुराने भी होते हैं कि हाँ जो थोड़े से अटैच होते हैं।
0: ओके।
1: तो उनको भी सुन लेते हैं। बाकी सॉन्ग ऐसे मतलब ज्यादातर मैं ऐसे सुनता हूँ जिससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए।
0: ओके, सॉफ्ट जैसे। हाँ, सुन लिए। ओके।
1: अरिजीत थोड़ा ज्यादा पसंद है मुझे इस चीज में।
0: अरिजीत सिंह ज्यादा पसंद है इनको? तो अरिजीत सिंह मुझे लगता है कि सबको ही पसंद है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पसंद नहीं आते।
1: हाँ जी मैम।
0: तो अरिजीत सिंह इनको पसंद है, हॉरर फिल्म इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि खिलाड़ियों के खाने पर बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है।
1: हाँ जी मैम।
0: जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं तब तक खाना दिल खोल के नहीं खा पाते हैं। लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि आपने खूब मक्की की रोटी, सरसों का साग भी खाया होगा, मक्खन भी खाया होगा, दूध दही। तो ये थोड़ा सा अपनी डाइट आज बता दीजिए हमें, जिससे आप इतने स्ट्रांग बने थे कि आपके फादर ने आपको बना दिया था स्ट्रांग और बच्चे आपसे स्कूल में डरते थे।
1: मैम स्टार्टिंग से ही मतलब पापा का और मम्मी का ये था कि बाहर की जो मतलब गंदी पैकेट की जो चीजें हैं वो नहीं खानी है, और घर पे ही मतलब सब्जी रोटी दाल खीर हलवा इस टाइप की चीजें, मतलब हमारे घर पे हरियाणा से हैं, ऊपर से सोनीपत से हैं, तो
0: बढ़िया
1: दूध घी तो होता ही
0: मतलब
1: है,
0: उसके बिना तो खाना होता ही नहीं है ना।
1: हाँ जी मैम। और ये चीजें खाई है हमने, और आज भी मतलब बाहर की चीजें नहीं खाते हम, आज भी अवॉइड करते हैं। जैसे अदर कंट्री में चला जाता हूँ तो फिर तो
0: खाने पड़ता है।
1: कोशिश यही रहती है कि मैं फ्रेश ही खाऊं।
0: ओके।
1: और वेजिटेबल्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह ये चीजें ज्यादा इनटेक करूं मैं। तो ये चीजें मतलब मेरे डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी ठीक रखती हैं। जब पेट लिवर हमारी बॉडी ठीक है तो फिर माइंड भी ठीक रहेगा।
0: ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बॉडी को ठीक रखने के लिए सबसे बड़ी टिप ही मुझे लगता है आजकल हर डॉक्टर हर रील में यही बता रहा था कि घर का खाना खाएं।
1: हाँ जी मैम, घर का फ्रूट्स वेजिटेबल्स और घी वगैरह खाओ अगर हरियाणा से हो तो, क्योंकि हरियाणा के बाहर वो जिलता नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ जी, तो वो भी एक लिमिट में ही ठीक रहता है।
0: बिल्कुल, वो भी आप मतलब ऐसा ना हो कि आप घी खाते नहीं, कि मनीष नरवाल जी ने बोला है भाई घी खाइए शूटिंग अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
1: एक कहते ना कि एक लिमिट में ही हर चीजें अच्छी रहती हैं।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो ट्रेनिंग हुई या हंसना मजाक, हंसी हंसी मजाक बोलना, ये सारी चीजें लिमिट की अच्छी होती है, और लिमिट से बाहर फिर वो दुखी करती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारी बातें हमने आपसे करी हैं, और अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसके साथ साथ ओलंपिक के मेडल्स, भीम अवार्ड, ये सब कुछ अवार्ड जो हैं ये जीत कर सिर्फ 24 साल की उम्र में आज अभी भी 3 से 4 और पैरालंपिक्स खेलने की पूरी कोशिश में है।
1: हाँ,
0: और इनका परिवार जो है वो भी शूटिंग के क्षेत्र में है, इनके दोनों भाई बहन जो हैं वो भी ओलंपिक्स की रेस में हैं, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि गर्व के जो पल अभी तक इन्होंने दिए इससे और ज़्यादा पल आने वाले समय में हमें मिलने वाले हैं। तो मनीष जी, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं और शूटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं वो, और जो चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहते हो लेकिन फोकस अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे जाएं?
1: मैम कोई अगर स्पोर्ट्स को नहीं समझ पा रहा है कि हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, तो स्पोर्ट्स खेलो। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलो और फिर देखो यार तुम्हारा दिल क्या बोलता, जो तुम्हारा दिल बोले उसको करो। और किसी भी फील्ड में, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले नॉलेज लो उसकी,
0: हाँ, उसका बैकग्राउंड चेक
1: करो, पहले उसकी नॉलेज गेन करो, फिर मेहनत करो और अपने आप पे बिलीव रखो कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है और मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने हर चीज इसके बारे में समझी है। हम, मुझे ऐसा लगता है किसी फील्ड में हम डरते क्यों हैं, डरते इस वजह से हैं क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं होती हमें।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: नॉलेज एक ऐसी चीज है, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, अगर नॉलेज है तो डरेगा नहीं वो।
0: बिल्कुल।
1: तो अपने डर को निकालो नॉलेज से और मेहनत करो और अपने ऊपर बिलीव रखो कि यार कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जो सामने जो वर्ल्ड चैंपियन बन रहा है या फिर कोई भी है, वो उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इंसान तो वो भी है, जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, इंसान तो सभी हैं।
1: बिलीव रखो अपने अंदर और हार मत मानो, अपनी हार से सीखते रहो। मैं लाइफ में इतना सक्सेस हुआ हूँ तो मैं हारा भी हूँ, मेरी हार की भी बहुत सारी चीजें हैं, रीजन रही हैं,
0: लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि जीत ने उसको ढक लिया।
1: लेकिन हमें अंदर, हमारे अंदर एक भगवान ने दे रखा, जिसको पता होता है कि यार इस वजह से तू हारा है, इस वजह से तू जीता है। तो अपनी हार से सीखो, क्योंकि हारता हर कोई है। देश, ये कंट्री है, ये देश है, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मतलब कंटिन्यूसली जीता ही है।
0: बिल्कुल।
1: हारते हैं, अपने हार से सीखो और आगे बढ़ते रहो, रुको मत बस।
0: बिल्कुल, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। चलते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, जाते रहिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़कर जरूर कामयाब होंगे। बस कोशिश ये करनी है आपको कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। सो मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शूटिंग जैसे स्पोर्ट में आपने इतने भारत को गौरवान्वित पल दिए हैं, आपने अपनी जो जर्नी है कैसे शुरू करी है हमें बताई, माता पिता ने आपका कैसे सपोर्ट किया ये आपने बताया है, रेडियो मानव रचना के कार्यक्रम बियॉन्ड द गेम में आने के लिए और अपनी ये पूरी यात्रा को विस्तार से सिंपल सी भाषा में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आज बियॉन्ड द गेम में मनीष नरवाल जी से हमने बातचीत करी। अगले एपिसोड में फिर से करेंगे मुलाकात एक ऐसी ही खेल जगत की शख्सियत के साथ जिन्होंने देश को गौरवान्वित पल दिए हैं, मेडल्स और ट्रॉफीज के साथ एक अलग ही लेवल पर पहुंचाए हमारे देश के गेम्स को, अलग अलग स्पोर्ट्स को। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। और इस पूरे पॉडकास्ट को आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना 107.8 प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में आरजी दीक्षा के फोल्डर में आपको ये सारी जानकारी, ये पूरा पॉडकास्ट मनीष नरवाल जी के साथ मिल जाएगा प्रोग्राम बियॉन्ड द गेम में। तो अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन

0: प्लॉट ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुंचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
1: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आ चुका है आपका दोस्त फहीम लेकर अन्नदाता। देखिए दोस्तों, हर सब्जी का अपना एक मौसम होता है। ठीक उसी तरह से फलों का भी अपना मौसम होता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फलों को उगाया जाता है, लेकिन एक ऐसा फल जो कि फलों का राजा कहलाता है और वो है आम। और देश में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन के नजरिए से आंध्र प्रदेश कहीं आगे है। रंग, सुगंध और स्वाद के मामले में आम देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक जाना पहचाना जाता है। इसमें विटामिन ए और बी बहुत अच्छी तादाद में मिलता है। विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए फायदेमंद है और विटामिन बी जो कि हमें शक्ति देता है। और आम की अगर बात करें तो आम से कोई चटनी बनाता है, कोई अचार बनाता है, कोई मुरब्बा बनाता है, कोई सिरप बनाता है। तरह तरह के पेय पदार्थ में भी आम का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज बात होगी फलों के राजा आम के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, कोई भी खेती हो, जब भी हम उसकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि वो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जो हमारी फसल के लिए फायदेमंद हो। और पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, आम की बागवानी की अगर हम बात करें तो आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन भूगर्भीय जल जिन जिन इलाकों में नहीं पाया जाता है वहां इससे अच्छे फल की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए 2 से 2.5 मीटर मिट्टी की जरूरत होती है और आम के बाग 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले इलाकों में अच्छे होते हैं, लेकिन 23.8 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को इसके लिए अच्छा तापमान माना जाता है। यानी ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में इससे आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो ये तो रही मिट्टी पानी की बात। इसके बाद आती है किस्मों की बात कि आम की जो अच्छी किस्में हैं वो कौन सी होनी चाहिए। तो किस्मों का भी आपसे जिक्र होगा। देखिए दोस्तों, आम की बात हो रही है तो अब बात कर लेते हैं उसकी किस्मों की। आम की एक से बढ़कर एक किस्म तैयार हो चुकी है और कई किस्मों की मांग देश नहीं विदेशों तक होने लगी है। जी हाँ, दशहरी किस्म की अगर हम बात करें सबसे लोकप्रिय है। इसे 10 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बनावट, स्वाद, सुगंध और रंग के नजरिए से ये बेहद ही खूबसूरत लगता है दशहरी आम। दशहरी किस्म के अलावा एक और किस्म है जो जानी जाती है मुंबई हरा के नाम से। और किसान भाइयों, ये अगेती किस्म है। इसे मालदा और सरोली भी कहते हैं। पकने के बाद भी ये अपने आप को हरा हरा रखता है। इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, थोड़ा सा नाजुक मिजाज होता है। एक कहलाता है जो बड़ा मशहूर है, लंगड़ा आम। दोस्तों लंगड़ा भी दशहरे की तरह मध्य मौसम में पकने वाली किस्म है। इसे दरभंगा रू अफजा और हर दिल अजीज भी कहते हैं। 4 दिन की भंडारण क्षमता वाला ये आम बेहद ही मीठा होता है। इसके अलावा होती है एक रटोल किस्म। रटोल किस्म को भी अगेती माना जाता है। इसका फल छोटे आकार का अंडाकार और सुगंधित और मीठा होता है। एक कहलाता है चौसा आम। चौसा पछेती किस्म है। इसे काजरी और खाजरी के नाम से भी जाना जाता है। 5 दिन की भंडारण क्षमता वाला ये आम आकार में बड़ा होता है। ये तो रही आम की किस्मों की बात, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। आम में बहुत सारी किस्में हैं, उन किस्मों का भी जिक्र आपसे करूंगा। दोस्तों, बात चल रही थी आम की किस्मों के बारे में। दो चार किस्में आपको और बताना चाहता हूँ, जिसमें पहली है फजरी किस्म। फजरी किस्म का आम पछेती होता है, यानी कि बाजार में इसके फल देर से आते हैं। इसे फजली भी कहते हैं। धारण क्षमता कम होती है और इसके अलावा होता है एक राम अकेला। राम अकेला भी देर से पकने वाली किस्म है। इसका फल पकने के बाद भी खट्टापन लिए रहता है और इसे अचार के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आम्रपाली किस्म दशहरी और नीलम किस्मों के सहयोग से विकसित की गई है और ये मध्य मौसम की बोनी और नियति फलत वाली किस्म है। इसका एक हेक्टेयर में बाग लगाने के लिए 2.5 मीटर पर पौधा लगाने पर 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें मल्लिका किस्म की, तो किसान भाइयों, मल्लिका किस्म नीलम और दशहरी के सहयोग से विकसित होती है। ये मध्यम मौसम की फसल है। ये नियमित रूप से चलने वाली मध्य मौसम की किस्में हैं। भंडारण क्षमता ज्यादा है, लेकिन फल कम लगते हैं। निर्यात के लिए इसके फलों को अच्छा माना जाता है। एक किस्म और है सौरभ किस्म। सौरभ किस्म का आम दशहरी और फजरी जाफरानी के सहयोग से विकसित किया गया है। ये मध्य मौसम की किस्म है। गौरव किस्म। गौरव किस्म के आम को दशहरी और तोतापरी आम हैदराबादी किस्मों के क्रॉस से तैयार किया गया है। एक किस्म और है जिसका नाम ही अपने आप में बड़ा सुंदर है, राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण के आम को दशहरे और रोमानी किस्मों के सहयोग से तैयार किया जाता है। ये जुलाई के तीसरे सप्ताह में जाकर के पकती है और फल मध्यम आकार के होते हैं। तो ये तो रही किस्मों की बात, लेकिन अब

गड्ढा खोदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि ऊपरी 1.5 फीट मिट्टी बाईं तरफ और नीचे की 1.5 फीट मिट्टी दाईं तरफ डालनी चाहिए और हफ्ते या 10 दिन मिट्टी को धूप लगने के बाद उसमें पर्याप्त सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर आधी मिट्टी गड्ढे में भर देनी चाहिए और ध्यान रहे कि गड्ढे में खुदाई के समय बाईं तरफ डाली गई ऊपरी 1.5 फीट मिट्टी ही डालनी चाहिए। ऊपरी मिट्टी को ही उपजाऊ माना जाता है और उसके बाद या तो 1-2 बरसात होने का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा गड्ढे में 1-2 बार पानी भरने के बाद पौधे लगा देने चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग अपने घरों में भी फलों के पेड़ लगाते हैं लेकिन उनका पालन पोषण फसल की तरह से नहीं करते, ना तो पौधों में पर्याप्त कंपोस्ट डालते हैं और ना ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण डालते हैं। हमें बागवानी के लिए समुचित रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी कोई भी फसल हो वो बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन फसल आपकी तभी बेहतर हो सकती है जब आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी फसल में किसी भी तरह का कोई कीट या फिर किसी भी तरह का कोई रोग ना होने पाए। मैं आपको बताऊंगा कि आम को किस तरह से कीटों से बचाया जा सकता है, किस तरह से रोगों से बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी फसल हो अगर उसमें किसी भी तरह का कोई कीट लग जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई रोग उसमें लग जाता है तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। बात आम की चल रही है तो आम को भुनगा कीट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उसके शरीर का आकार तिकोना होता है। इस कीट के कंट्रोल के लिए कीटनाशक छिड़काव करें और ये काम 3 इंच लंबा होने पर ही कर देना चाहिए। इसके 15 से 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। इसके कीटों को मारने के लिए किसी भी प्रभावशाली कीटनाशक का छिड़काव जरूर करना चाहिए, जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करें, क्यूनोलफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के छिड़काव से आप आम में लगने वाले भुनके नाम के कीट को रोक सकते हैं। दूसरा एक कीट और होता है जो कहलाता है मैंगो मिली बग, यानी कि ये कीट भी हमारे आम की जो फसल है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सफेद रंग का ये कीट शाखाओं का जो रस होता है ना, उस रस को चूस लेता है। इसके साथ ही एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ता है जिस पर काली फफूंद उग जाती है। बचाव के लिए दिसंबर के महीने में पौधों के छालों की बुराई करते समय मिथाइल पैराथियन डस्ट 2% 150 से 200 ग्राम प्रति छाले मिला देनी चाहिए जिससे कि आपकी आम की बागवानी बेहतर से बेहतर हो सके। इसके अलावा एक कीट और है जिसका नाम है सिल्क कीट। सिल्क कीट मुलायम टहनियों और पत्तियों की निचले सतह पर सैकड़ों की संख्या में चिपके रहते हैं, पौधे और फल दोनों को प्रभावित करते हैं। इसके बचाव के लिए भी जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव जरूरी है। और दोस्तों, आम को तना भेदक कीट से बचाने के लिए आपको गिटार के जरिए तने में बनाए गए क्षेत्र में मोनोक्रोटोफॉस या DDVP का घोल छिड़क कर तने के छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए जिससे आम का जो तना है जिसको ये कीट भेद देता है और उसको नष्ट कर देता है, इस तरीके को अपनाने से आपकी आम की बागवानी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, आम के बारे में आज आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं लेकिन इन बातों को जब तक आप अमली तौर पर नहीं लाएंगे आपकी कोई भी फसल बेहतर नहीं हो सकती है। आम की बात चल रही थी तो कौन सा आम, कौन सी किस्म, किस मौसम में और कौन से पानी, कौन सी मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है, वो सारी बातें आपके साथ मैंने साझा की हैं। इसके अलावा जो रोग हमारे आम की बागवानी में लग जाते हैं बल्कि पूरे पूरे बागों को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे कीट थे जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। उन कीटों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उनको कंट्रोल करके अपनी आम की बागवानी को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी बातें आपके साथ मैंने साझा कर ली हैं। लेकिन अब वक्त मेरे जाने का है, इसलिए आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए,

आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना और सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम। सलाम।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। देखिए दोस्तों, बड़नगर के बापू के नाम से मशहूर कवि प्रदीप के गीतों के बोल सरहद पर लड़ते फौजी के दिल में जोश भर देते हैं। कभी मोहब्बत में डूबे दो दिलों की धड़कन बनकर सुनाई देते हैं, तो कभी मजदूरों के हक की आवाज। उनके गीतों में हमेशा एक सादगी रही, एक ऐसी सादगी जो आपको मस्ती से भर देती है, जो आपके रोम रोम में जज्बात जगा देती है। उनके गीत ऐसे समय का आईना है जिनमें हर दौर का इंसान नजर आता है। इंसानियत के तमाम चटख और खूबसूरत रंगों को वो हिंदुस्तान के कैनवास पर चमकते हुए देखना चाहते थे। लेखनी से भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है, उत्सर्ग की भावना जगाई जा सकती है। प्रदीप ने अपने गीतों से बखूबी ये सिद्ध कर दिया। ये कहानी है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जैसे कालजयी गीत के कवि प्रदीप की। आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम। देखिए दोस्तों, ये जो यादें होती हैं ना, यादें खेत भी होती हैं, खंडर भी होती हैं, जल भी होती हैं, तेजाब भी होती हैं, राग भी होती हैं, द्वेष भी होती हैं। ये यादें सहलाती हैं तो खर हरे की तरह छील भी डालती हैं। कभी उन्हें सरसब्ज खेतों की तरह समेट लेने का मन करता है, तो कभी जली हुई बस्ती की तरह छोड़कर भाग जाने का मन करता है। ये यादें कभी कुएं में उतर जाती हैं तो लगता है कभी लौटेंगी नहीं, लेकिन उनके पर होते हैं, अचानक अबाबीलों की तरह उड़ती हुई चली आती हैं। लेकिन स्मृतियां जब सिर्फ हरी हों, विस्मृति के कुएं में कभी उतरी ही ना हो, तो इस बात से पूरी तरह सहमत होना कठिन है। जब स्मृति में भाईचारे का पैगाम देने वाला प्रदीप जैसा कवि हो, तो यादें सरसब्ज खेतों की तरह और भी ज्यादा हरी हो उठती हैं। दोस्तों, आज कवि प्रदीप के बारे में बात हो रही है, आइए जानते हैं उनके बचपन के बारे में। 6 फरवरी 1915 को उज्जैन जिले के बड़नगर कस्बे के जूना शहर नाम के मोहल्ले में नारायण भट्ट के घर दूसरे बेटे ने जन्म लिया। इस बच्चे को रामू नाम से पुकारा गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जन्म स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी जान लेना जरूरी है। जन्म का स्थान उज्जैन जिले में रतलाम और इंदौर के बीच चामला नदी के किनारे मालवा के पठार पर मौजूद है। मालवा प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था। यहीं उज्जैनी के महर्षि संदीपनी का गुरुकुल था, वो गुरुकुल जिसमें कृष्ण, बलराम और सुदामा भी पढ़ने आते थे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि बात हो रही है कवि प्रदीप के बारे में, बचपन की बात चल रही थी और उनके बचपन का नाम रामू था। दोस्तों, बालक का पूरा नाम हुआ रामचंद्र नारायण द्विवेदी, और बाद में जब वो इलाहाबाद गए और कविता का अंकुर फूटा तो खुद अपना उपनाम यानी प्रदीप रख लिया। हिमालय की चोटी से ललकारने वाले प्रदीप के पूर्वज हिमालय के धुर उत्तरी भाग से आए थे, इसलिए वो उदीच ब्राह्मण कहलाते थे। सोलंकी राजवंश ने सिद्धपुर पाटन में भव्य शिव मंदिर रुद्र महालय बनवाया था। और मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1000 उद्दीच ब्राह्मणों को बुलाया भी था। इसी मौके पर प्रदीप के पूर्वज भी आए, फिर लौट कर नहीं गए, वहीं बस गए। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके सिद्धपुर को लूटा और रुद्र महालय नष्ट कर दिया। प्रदीप के पूर्वज वहां से पलायन करके पहले गुजरात, फिर राजस्थान से होते हुए उज्जैन के बड़नगर पहुंचे, जो उस समय नौलाई कहलाता था। नारायण राय भट्ट के दो बेटे थे, ज्येष्ठ कृष्ण वल्लभ। अपने नाम के आगे यही परिपाटी प्रदीप ने भी ग्रहण की। रामचंद्र ने कई नाम बदले। दोस्तों, कवि प्रदीप के बारे में बात चल रही है और उनके परिवार का जिक्र कर रहा था आपसे। परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनके पिता यानी कि नारायण भट्ट पुरोहिताई करने लगे। अति मंदा कर्म होने के कारण ये काम उन्हें रुचिकर ना लगा, इसलिए व्यापार में हाथ डाला, उसमें भी मन न लगा। चामला नदी के किनारे गार खेरी स्थान पर 300 बीघे जमीन खरीद कर खेती करना शुरू कर दिया, पर वो अपने बेटों को खेती में ना खपाकर उनको अच्छी तालीम दिलवाना चाहते थे। दोनों भाई रतलाम यानी कि इंदौर में शुरुआती शिक्षा हासिल कर रहे थे, फिर वो इलाहाबाद पहुंचे। यहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज से प्रदीप ने 1935 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। प्रदीप अपने अग्रज कृष्ण वल्लभ द्विवेदी की छत्र छाया में रहते थे और जो कृष्ण वल्लभ थे वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनका दखल कई विधाओं पर था। वो अनुवादक, गद्यकार और कवि भी थे। उनके जरिए अनुदित 3 यूरोपीय उपन्यास समादृत हो चुके थे। तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिका यानी सरस्वती में उनका लेख हमारी सभ्यता प्रकाशित होकर मशहूर हो चुका था और वो गद्यकार के रूप में जमने लगे थे। पागल प्यार नाम की 180 पंक्तियों की उनकी कविता चांद पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। अग्रज की इस गंभीर सारस्वत साधना का गहन प्रभाव प्रदीप पर पड़ा। एक बार आकाशवाणी में साक्षात्कार के दौरान कृष्ण वल्लभ द्विवेदी से जब ये सवाल पूछा गया कि उनकी वास्तविक लेखन विधा गद्य है या पद्य, तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए साहब, दरअसल हम दो भाई हैं, भाइयों में अक्सर संपत्ति का बंटवारा हुआ करता है, इसलिए मैंने गद्य भाग खुद ले लिया है और पद की विरासत अनुज के लिए छोड़ दी है। दोस्तों, बात हो रही है आज कवि प्रदीप के बारे में। पद प्रदीप की सहज वृत्ति के अनुकूल था, इसीलिए उन्होंने कविता चुनी। इलाहाबाद में 1933 से 1935 तक का समय उनकी गीत यात्रा का प्रस्थान बिंदु रहा। वो गीत लिखते और मधुर कंठ से उन्हें सुनाते। कंठ का स्वर उन्हें अपने पिता से मिला था, जो अच्छे गायक थे। इसी कालखंड में उन्होंने अपना उपनाम प्रदीप रखा। अब उनका पूरा नाम हो गया था पंडित रामचंद्र नारायण द्विवेदी प्रदीप। प्रदीप ने राष्ट्रीय चेतना के वाहक गीत लिखे, जिनकी पृष्ठभूमि में उनका व्यक्तिगत अनुभव था। वो 1931 से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे और कई बार लाठियां भी खाई थीं, हाथ पैर भी टूटे थे और महीनों अस्पताल में रहे। देशभक्ति के बीज यहीं पड़े, जो बाद में फिल्म नगरी में गीतों के रूप में खिलकर पूरे देश के सामने आए और पूरे देश के श्रोताओं को आंदोलित करते रहे। और दोस्तों, इस सफर में बात कर रहे हैं प्रदीप के बारे में। प्रदीप अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है दोस्तों कि उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं। कवि प्रदीप, उन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा को ऐसे ऐसे मोतियों के रूप में गीत दिए हैं कि जब भी आप उनको सुनते हैं वो गीत अपने अपने से लगते हैं। उन गीतों में आपको अपना दुख भी नजर आता है, आपको उसमें सुख भी नजर आता है, अतीत भी नजर आता है, भविष्य भी नजर आता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कवि प्रदीप। उन्हीं के बारे में बहुत सारी बातें लेकर के हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में प्रदीप की अंतस चेतना में दबे काव्यांकुरों को फूटने का पर्याप्त अवसर मिला। यहाँ उन्हें हिंदी के अनेक साहित्य शिल्पियों का स्नेहिल सानिध्य मिला। वो गोष्ठियों में कविता पाठ करने लगे। इलाहाबाद में एक बार हिंदी दैनिक अर्जुन के संपादक और स्वामी श्रद्धानंद के सुपुत्र पंडित विद्यावाचस्पति के सम्मान में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे थे। महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, बाल कृष्ण राव, रमा शंकर शुक्ल रसाल, पद्मकांत मालवीय जैसे दिग्गज रचनाकारों ने अपने काव्य पाठ से गोष्ठी को आलोकित किया। इसी गोष्ठी में 20 वर्षीय तरुण प्रदीप ने अपने सुरीले सुरीले काव्य पाठ से सभी को मुग्ध कर दिया। उस दिन काव्य जगत में एक नया सितारा चमका, जिसका नाम है कवि प्रदीप। दोस्तों, नेहरू जी की एक पुस्तक के अनुवाद के सिलसिले में प्रदीप के अग्रज लखनऊ आए और यहीं टिक गए। प्रदीप उनके साथ ही थे। यहां उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश ले लिया। पढ़ाई के अलावा प्रदीप लगातार कविताएं लिखते रहे और कवि सम्मेलनों में भी जाते रहे। इन्हीं दिनों कवि सम्मेलनों में पढ़ी गई एक कविता पानीपत से उन्हें बड़ा यश और मान मिला। प्रदीप ने 300 पंक्तियों की ऋषि गाथा शीर्षक से स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर एक लंबी कविता लिखी। हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। उनकी कविताओं में दार्शनिकता भी उभरने लगी थी दोस्तों। बड़े साहित्यकारों से उनके संबंध बनने शुरू हो गए। पहले पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, फिर उन्हीं के माध्यम से पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए और लोग उनकी कविताओं को सराहने लगे। दोस्तों, निराला जी ने लखनऊ की पत्रिका माधुरी के फरवरी 1938 के अंक में प्रदीप पर लेख लिखकर उनकी काव्य प्रतिभा पर स्वर्ण मोहर लगा दी। निराला जी ने लिखा, आज जितने कवियों का प्रकाश हिंदी जगत में फैला हुआ है, उनमें प्रदीप का अत्यंत उज्जवल और स्निग्ध है। हिंदी के हृदय से प्रदीप की दीपक रागिनी कोयल और पपीहे के स्वर को भी परास्त कर चुकी है। इधर 3-4 साल से अनेक कवि सम्मेलन प्रदीप की रचना और रागिनी से उद्भासित हो चुके हैं। निराला जी की प्रशंसा पढ़कर प्रदीप ने विनम्रता से कहा, निराला जैसे महान व्यक्ति द्वारा मेरी प्रशंसा से लगता है मैं कवि बन जाऊंगा। इससे प्रदीप को वास्तव में नई रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई। कवि सम्मेलनों में अपनी धाक जमा कर प्रदीप पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जैसे काव्य गुरु के जब इसने पात्र बन गए, तब इसमें कोई संशय ही नहीं रहा कि निराला जो कहा करते थे कि मेरे बाद प्रदीप ही छायावाद का महान उत्तराधिकारी बनेगा, सो भविष्यवाणी यथार्थ बनकर ही रहेगी। दोस्तों, प्रदीप बीए की परीक्षा दे चुके थे और उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके शुभ चिंतक श्री नारायण चतुर्वेदी चाहते थे कि प्रदीप बीए के बाद सीटी यानी कि अध्यापक प्रशिक्षण का डिप्लोमा प्राप्त करके 60-70 रुपए की सरकारी अध्यापकी प्राप्त कर जीवन निर्वाह के लिए निश्चिंत हो जाए। कहावत मेरे मन कुछ और है, विधना के मन कुछ और, प्रदीप के जीवन पर घटित होती है। प्रदीप को पता चला कि हरिद्वार में प्रणव मंदिर के उद्घाटन समारोह में देश के विभिन्न भागों से खास लोग आ रहे हैं, तो प्रदीप भी वहीं जा पहुंचे। समारोह तो एक बहाना था, विधि ने तो गुजरात के स्वामी नित्यानंद जी महाराज से उनकी भेंट निश्चित कर रखी थी।

इसलिए समारोह के बाद प्रदीप ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी किसी सूत्र से प्रदीप का नाम और कवि रूप में ख्याति के बारे में जान चुके थे। स्वामी जी ने प्रदीप को देखा और उनसे एक कविता सुनाने को कहा। अब उनके कहने पर कवि प्रदीप ने जो रचना सुनाई वो रचना कौन सी थी? दोस्तों, कवि प्रदीप की जब गुजरात के स्वामी नित्यानंद जी महाराज से भेंट हुई तो स्वामी जी ने उनसे अपनी एक कविता सुनाने को कहा। तो कवि प्रदीप ने एक रचना सुनाई, वो कुछ यूं थी। मुरली के छेड़ सुरीली तान, सुना सुना आई मादक अधरे विश्व विमोहन गान। मुरली के छेड़ सुरीली तान, प्रात जगा सोई विभावरी, खग कुल ने छेड़ी असावरी, तू ध्वनि विरहित पड़ी बावरी, उठ अब सलवर तू भी सज धज कर ले स्वर संधान, मुरली के छेड़ सुरीली तान। दोस्तों, सारा उपस्थित समाज शब्द सौंदर्य और स्वर माधुरी से मंत्र मुग्ध हो गया। स्वामी जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, आगे क्या इरादा है? प्रदीप ने कहा, शिक्षक बनने का। स्वामी जी ये सुनकर ध्यानस्थ हो गए, जैसे अदृश्य के लेख पढ़ रहे हों। चैतन्य होकर कहा, पर तुम्हारा भविष्य तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तुम्हारा अभ्युदय पश्चिम दिशा में होना है, और वो भी 2 महीने में। प्रदीप ने सुना पर चुप रहे। दोस्तों, कहते हैं कि संयोग कभी कभी अपना दरवाजा खुद खोल देता है। ऐसा ही कवि प्रदीप के साथ हुआ। संयोग ने अपना दरवाजा खोला। गुजरात से आए चित्रकार रविशंकर रावल प्रदीप के काव्य पाठ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। काव्य प्रेमी थे, इसलिए प्रदीप को साग्रह अपने साथ अहमदाबाद ले गए। तभी मुंबई में बॉम्बे टॉकीज के छायांकन विभाग में कार्यरत रविशंकर के पुत्र नरेंद्र रावल का तार आया कि वो बीमार हैं। वास्तव में वो अपने पिता से मिलना चाहता था। तभी झूठा तार भेज दिया। रविशंकर मुंबई जाने लगे तो अपने साथ प्रदीप को भी घसीट ले गए। अब जब प्रदीप मुंबई पहुंचे तब क्या हुआ? दोस्तों, 1970 में देश के महान फिल्मकार राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर बैठ गई। राज कपूर के सपने खील खील होकर बिखर गए। दर्शकों को उनकी ये लंबी और दार्शनिकता से भरपूर फिल्म अच्छी नहीं लगी। नीरज का लोकप्रिय गीत ए भाई जरा देख के चलो, ये गाना भी इसे उबार नहीं पाया। राज कपूर ने इस पर पानी की तरह पैसा बहाया था। वो फिल्म के नाकामयाब होने पर दुखी और परेशान रहने लगे। इसी समय उन्हें कई साल पहले प्रदीप का गाया और नियति वाद पर लिखा एक चमत्कारी गीत कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, इस गाने की याद आई। प्रदीप से परिचय था ही, इसलिए उसका रिकॉर्ड मंगवा लिया। उन बुरे दिनों में वो गीत उनका बहुत सहारा बना। इस गीत के प्रभाव से राज कपूर को अपने मन को कंट्रोल करने की कला आ गई। दोस्तों, एक दिन गोकुल भाई हाई स्कूल के सभागार में हिंदी प्रेमियों के लिए प्रदीप के काव्य पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नरेंद्र रावल, बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों के सह निर्देशक NR आचार्य को भी ले आए। प्रदीप ने अपने गीतों से अच्छी महफिल जमाई। श्रोता झूमने लगे। वहां से लौटकर आचार्य ने बॉम्बे टॉकीज के मालिक और दिग्गज फिल्म निर्माता हिमांशु राय को प्रदीप के बारे में बताया। आगे के घटना चक्र के बारे में प्रदीप खुद बताते हैं। कहते हैं कि दूसरे दिन मेरे पास बॉम्बे टॉकीज की गाड़ी आई। अब वो गाड़ी आई क्यों आई, कवि प्रदीप के पास इसके बारे में भी जिक्र होगा। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता रहा था
कि कभी प्रदीप के यहाँ बॉम्बे टॉकीज की गाड़ी आई उन्हें लेने के लिए। उसमें से एक सज्जन एन आर आचार्य उतरे और पास आकर कहा कि उनके बॉस मेरी कविता सुनना चाहते हैं। उन्होंने बताया वो बंगाली हैं पर हिंदी समझ लेते हैं। उनकी पत्नी देविका रानी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की रिश्तेदार हैं। देविका रानी की माँ सुकुमारी देवी गुरुदेव की प्रपोत्री थी। खैर, प्रदीप बताते हैं कि मैं बॉम्बे टॉकीज पहुंच गया। प्रदीप हिमांशु राय के दफ्तर में उनसे मिले। उस समय वहां देविका रानी, अशोक कुमार, लीला चिटनिस, निर्देशक फ्रेंज आस्टेन, शशधर मुखर्जी और अम्मी चक्रवर्ती जैसी हस्तियां मौजूद थीं। राय ने प्रदीप से एक गीत सुनाने के लिए कहा। ये फिल्मों में उनकी प्रवेश परीक्षा थी। प्रदीप भी रॉ में आ गए, लेकिन उन्होंने वहां पर जो कविता सुनाई वो कविता कौन सी थी उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, कवि प्रदीप हिमांशु राय के जब दफ्तर में पहुंचे तो वहां पर एक से बढ़कर एक हस्तियां बैठी हुई थीं। और जब उनसे कहा गया कि आप अपनी कोई कविता सुनाइए, तो उन्होंने अपनी कविता सुनाई। वो कुछ यूं थी, तुम कहो कौन, अब तो खुलो प्राण, मूंद कर रहो यूं ना, तुम हो कहो कौन। मेरे गगन में घिरी थी सघन रात, तुमने किरण तूल से रंग दिया प्रात, मुकलित किए स्पर्श से मिलान जल जात, मैं था चकित तुम चपल कर पुलक गात, कुछ मैं उठा पूछ तुम हंस हुए मौन, तुम हो कहो कौन। दोस्तों, स्वर और शब्दों का जादू सभी श्रोताओं के सर चढ़कर बोलने लगा। पार के हिमांशु राय को प्रदीप जच गए। उन्होंने कहा, आपको बॉम्बे टॉकीज में गीतकार के रूप में मैं रखना चाहता हूं। जैसे सभी कलाकारों और कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलता है, आपको भी मिलेगा, करने को काम हो या ना हो। बोलो, क्या कहते हो? अब हिमांशु राय के इस सवाल पर कवि प्रदीप ने जवाब क्या दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, निर्माता हिमांशु राय ने कवि प्रदीप से जब कहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर रखना चाहता हूँ और जैसे दूसरे कर्मचारियों को मैं वेतन देता हूँ, तुम्हें भी दूंगा, काम हो या ना हो, महीने पे तुम्हें पगार जरूर मिलेगी। प्रदीप ने स्पष्ट कहा, मुझे फिल्मों में गीत लिखने का अनुभव नहीं है। अगर मेरे गीतों की वजह से आपकी फिल्म कामयाब नहीं हो सकी तो आप खुद को ठगा महसूस करेंगे, और अगर फिल्म कामयाब हुई और गीत लोकप्रिय हुए तो मुझे लगेगा कि इस वेतन में मैं ठग गया हूं। प्रदीप के जहन में वही अध्यापकी वाला 60-70 रुपए का वेतन था। हिमांशु राय को लड़के की अखड़ता में ईमानदारी नजर आई। आचार्य हतप्रभ था कि ये कल का छोकरा हिमांशु राय जैसी हस्ती से कैसे बात कर रहा है, पर एक अनामिक आकर्षण उसे प्रदीप की ओर खींच रहा था। वो प्रदीप को पकड़कर दफ्तर के बाहर लाए। दफ्तर के बाहर लाकर के उन्होंने प्रदीप से क्या कहा, इस बात की भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आचार्य कवि प्रदीप का हाथ पकड़ के हिमांशु राय के दफ्तर से बाहर ले आए और छूटते ही बोले, मैं सच्ची बात कहता हूं, बुरा मत मानना, तुम महामूर्ख हो। लक्ष्मी तिलक करने जा रही है और आप माथा छिपाए छिपाए घूम रहे हैं। आचार्य के कठोर वचनों के पीछे छिपा इसने भावुक हृदय प्रदीप ने तत्काल पहचान लिया। फिर भी उनके संशय बने रहे। साहस करके कहा, भाई मुझे मालूम नहीं कि फिल्म लाइन में क्या करना चाहिए। गुरु मंत्र सा देते हुए आचार्य ने कहा, अरे भाई सब आ जाएगा, बस एक बात का ध्यान रखो कि हमारा जो ये फिल्म का माध्यम है वो सरल भाषा का है। तुम यहाँ पांडित्य का प्रदर्शन करोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए ऐसे गीत लिखो जो सीधे हों, सरल हों, छोटे छोटे छंद के हों। तुम इतना नहीं कर सकते क्या? समय सत्य को स्वीकारो कवि। दोस्तों, प्रदीप की शंकाएं
अभी भी शमित नहीं हुई थी। संकोच से पूछा, मैं रहूंगा कहाँ, और अगर मैं फेल हो गया तो? अब इस बात का जवाब आचार्य ने क्या दिया वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, आचार्य साहब से कवि प्रदीप ने जब ये पूछा कि मैं रहूंगा कहाँ और अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, कथन में छिपी व्यवस्था को पहचान कर आचार्य ने हंसते हुए कहा, इधर हमने बॉम्बे टॉकीज में फांसी घर बना रखा है, फेल होने पर वहीं लटका दिए जाओगे। मैं तुम्हारे भाई की तरह हूं, रह जाओ यहां, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करूंगा। भगवान के भेजे इस दूत को प्रदीप देखते रह गए। हिमांशु राय जानते थे कि अपने तर्कों से आचार्य प्रदीप के हृदय में संशय का कोई अवकाश नहीं छोड़ेगा। उन्होंने जो खास खास जरूरतें थीं पूरी कराई और उन दोनों को बुलाया। हिमांशु राय ने प्रदीप को एक कागज पकड़ाया जिसमें कुछ लिखा था। अब उस कागज में क्या लिखा था मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, मशहूर निर्माता हिमांशु राय के दफ्तर में कवि प्रदीप बैठे थे और कवि प्रदीप के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाया गया जिसमें लिखा था, रामचंद्र नारायण द्विवेदी प्रदीप हैज बीन अपॉइंटेड एज अ लिरिक राइटर इन आर कंसर्न ऑन अ पे ऑफ 200 रुपीज पर मंथ। बाद में प्रदीप ने बताया, पत्र देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि हम तो 60-65 रुपए की अध्यापकी की कल्पना कर रहे थे। आचार्य प्रदीप को बाहर ले गए, उन्हें एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, इसमें 200 रुपए हैं, बॉस ने कहा है कि उसको दे देना, शायद उसके पास पैसे ना हो, कहां मांगता फिरेगा, और ये भी कहा है कि कल से काम पर आ जाए। प्रदीप बताते हैं कि डर के मारे वो कांपने लगे। अभी एक आश्चर्य उनकी और प्रतीक्षा कर रहा था। आचार्य प्रदीप को अपने घर ले गए और उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया। आचार्य के कोई संतान नहीं थी, वो कवि प्रदीप को अपने भाई की तरह प्यार कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, बातें और भी थीं, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: It's a 1 month long pageant, so there are 60 plus outfits, and I'm getting some of them custom made. So I go for fittings of those garments. After that, I come back and practice my ramp walk. So it is around 8 to 9. I practice, then I have dinner, relax for a bit. That's how it is.
1: Okay, that's wonderful, Radhika. It's working for you. But if someone is listening to you and if she is inspired by you, like what's the roadmap that you want to give her? Like how to be a model?
0: Okay, so modeling and beauty pageants are very different. Modeling is a part of beauty pageants. Beauty pageants are about having a voice, having your opinion, and expressing it, while modeling is about posing in front of the cameras. These two fields are very different. So if I have to suggest someone to be a model, I would say that have your base ready first, be it for beauty pageants and modeling. Have your base ready first, which is have your education covered. I did my master's, only then I jumped into this field, because I believe that you cannot put all your eggs in one basket. Sometimes it doesn't work out, so you cannot risk it. I would say take risks, but also protect yourself. So first have your education covered, then work on yourself, groom yourself, get your Polaroids clicked, and apply to modeling agencies. That's how it starts.
1: But there are a lot of scams as well, Radhika. बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से यू नो इंटरप्रेट करते हैं चीजों को और बताते हैं कि हम लोग मॉडलिंग एजेंसीज हैं बट ऑल दे नीड इज मनी एंड यू.
0: सो नंबर वन थिंग इज, मॉडलिंग एजेंसीज नेवर आस्क यू फॉर मनी. दे नेवर डू. दे जस्ट साइन यू अप, एंड वेन यू गेट सम वर्क, दे टेक अ कट आउट ऑफ इट, 20%, 30%. सो इफ अ मॉडलिंग एजेंसी इज आस्किंग यू फॉर मनी, इट्स अ स्कैम. रन अवे फ्रॉम इट. एंड दीज थिंग्स कम वेन यू हैव अ मेंटोर, वेन यू रिसर्च, वेन यू डू योर रिसर्च एंड हैव अ स्ट्रांग वाई एट द कोर ऑफ इट. वाई डू यू वॉन्ट टू मॉडल? वाई आर यू चूजिंग दिस फील्ड? बिकॉज आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट एन ईजी फील्ड टू बी इन. सो वेन यू फेस चैलेंजेस, इफ यू हैव अ स्ट्रांग क्लियर वाई आई वॉन्ट टू डू दिस, यू कैन सेल थ्रू एनी चैलेंज.
1: सो वंडरफुल एंड बहुत बहुत प्यारे शब्दों के साथ राधिका ने यहाँ पर बात बताई है कि डोंट कीप स्टेक्स टू हाई. ओके, पढ़ाई कंप्लीट करो, एटलीस्ट अपना इतनी स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए.
0: एग्जैक्टली.
1: इफ दिस इज नॉट वर्किंग दैट आई डू हैव समथिंग एल्स. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट शुड नॉट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड.
0: यस.
1: ऑलवेज कीप समथिंग ऑन. एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स?
0: माई फ्यूचर प्लान्स, सो एज आई सेड दैट whatever I want to do in life, I want to do it global. I do not want to be bounded by something. So that's why I chose Spanish. After this experience with me, I'm interested in taking my modeling career further, try acting for a bit, and business. Business is something that I'm really interested in, and that's where my Spanish language skills would also come in.
1: So wonderful. ऑल राइट राधिका, आई एम डन विद माई क्वेश्चंस. इज देयर एनीथिंग जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो?
0: I would just like to thank you for having me. You have been super sweet, and you ask such detailed questions about my journey that makes me think that you're actually very interested, and so are the viewers in knowing all of this.
1: इट्स एन ऑनर टू हैव यू हेयर एंड यू आर एक्सट्रीमली क्लियर विद योर थॉट्स एंड विद योर विजन. And literally those people who are successful, who are somewhere, they are very clear with the things. What do I want? You are sure about it, you're gonna get it. Period. And I'm just wishing you on behalf of entire Manav Rachna family, on behalf of our listeners from Faridabad, you're gonna be global star. You're gonna be Miss Universe one day. And
0: Yes,
1: yeah, that's
0: thank
1: a
0: you. That means a
1: wholehearted wish.
0: lot.
1: Yeah. सो ऑल राइट दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी कॉन्वर्जेशन पसंद आई होगी. काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी. आई जस्ट ट्राइड टू मेक श्योर कि राधिका से मॉडलिंग के बारे में ज्यादा बात कर पाए हम. अभी के लिए यहाँ पर अपने शो को हमें खत्म करना होगा. सो इजाजत चाहूंगा आप लोगों से. थैंक यू सो मच राधिका.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
1: थैंक यू. इट्स एन ऑनर टू हैव यू अगेन एंड वी आर विशिंग यू लक. एंड दोस्तों, आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया यहाँ तक इस शो को सुनने के लिए. चलता हूँ. दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ. फील गुड, फील लाइव.

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूँ यारो। और इस टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे शो में, जो बेस है ट्रैवलिंग के ऊपर, जहाँ पर बात होती है घूमने फिरने की, जिसका अक्सर हमें मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका दोस्त आपको पूरी आजादी देता है कि आप सभी मुसाफिर बन जाएं। तो चलिए साथ मिलकर मुसाफिर बनते हैं और थोड़ी सी आवारगी कर लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारे देश में क्या कुछ है जो हमें और एक्सप्लोर करना है, यानी कि हिडन जेम्स। ऐसी बहुत सी जगहें हैं, ये मैं कई बार प्रूव कर चुका हूं, और आज भी मैं ऐसी एक जगह के सफर पर आपको लेकर जाने वाला हूं जो बहुत अमेजिंग है, बहुत लाजवाब है, और जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूं आज हम कहां पर चलने वाले हैं। देखिए, जगह के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा हम चलने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश। अब जब भी बात हिल स्टेशंस की होती है, बात नेचर के बीच में जाने की होती है, बात उस सन्नाटे को महसूस करने की होती है, तो हम अक्सर हिमालयस की तरफ भागते हैं या फिर हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसका हमने नाम सुना है। बट अरुणाचल प्रदेश हमारी लिस्ट में बहुत कम आ पाता है, और जो लोग वाकई में वांडरलस्ट हैं वो उस जगह को जानते हैं और वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, जाते हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में। तो मैं आपको अरुणाचल प्रदेश की एक बात बताऊं, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, एंड इसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा खासा टाइम और स्पेस मिलता है अपने साथ बिताने का। तो अरुणाचल प्रदेश वाकई में बहुत ही लाजवाब एक स्टेट है। आज तो मैं एक ही डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगा, बट उसके बाद बहुत सी जगह है, पूरा का पूरा स्टेट है आपके पास जिसको जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत से रीजंस हैं, लाइक लिटरली आपको लगेगा कि धरती में जन्नत है जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि यहां पर ना बहुत ही अमेजिंग आपको हरियाली मिलती है और बहुत ही लाजवाब बर्फीले पहाड़ मिलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज जब आपको लेने हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस तो जरूर सुना होगा आपने स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंस। उसका मतलब होता है जब पिन भी एक गिरती है तो वो आवाज करे, वो हमें सुनाई दे। वो आपने कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? नहीं। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वाकई में आप इस जगह के दीवाने हो जाएंगे जब आप यहां पर जाएंगे। रीजन मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन कम है, लोग बहुत कम है, क्राउड बहुत कम पहुंच पाता है, बट एरिया बहुत बड़ा है। इसके अलावा लोग इतने फ्रेंडली हैं, क्योंकि उसका वही लॉजिक आने वाला है कि पॉपुलेशन कम है, लोग कम पहुंच पाते हैं, तो जितने भी लोग उनके पास पहुंचते हैं उनसे उन्हें प्यार हो जाता है। और डेफिनेटली आप वहां पर जाएंगे और वहां से वापस आएंगे तो उन सभी लोगों को, उन तमाम लोगों को आप मिस करने वाले हैं यहां पर आकर। देन आपका एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपका बदलने वाला है। लाइक हिमालयस को आपने कई बार देख लिया होगा शायद, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जाने के बाद जो हिमालयस के व्यूज आपको मिलने वाले हैं ना, उसके बाद आप वापस आएंगे और दोबारा आप हिमालय जाएंगे यहां हिमाचल प्रदेश में या फिर कहीं पर भी, तो आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरा का पूरा बदल चुका होगा। ये मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बात करी हमने अरुणाचल प्रदेश की, मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ है, मतलब जगह नहीं बताई, बट ये बताया कि आपका ओवरऑल फील कैसा रहने वाला है उस स्टेट में जाकर। लाइक होता है ना, पंजाब जाएंगे तो ये फील रहेगा, हरियाणा जाएंगे तो ये रहेगा, तो इसी तरीके से अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां पर ढेर सारा पीस और सुकून आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जगह कौन सी है जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं जीरो, इसको जायरो के नाम से भी लोग जानते हैं, जीरो के नाम से भी लोग जानते हैं। ये मैं कहूंगा उन लोगों के लिए जन्नत साबित हो सकती है जिनको वाकई में पीस चाहिए, और बिल्कुल वो पिन ड्रॉप साइलेंस वो अगर चाहिए तो डेफिनेटली ये जगह आपको कंसिडर करनी चाहिए। ये एक ओल्ड टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जाकर आपको हिस्टोरिक चीजें देखने को मिलने वाली है, यानी कि अगर आपको जानना है पुराने जमाने का अरुणाचल प्रदेश कैसा था, अलग अलग स्टेट्स का जो हम टेस्ट जायका जो हम लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको एक बहुत ही पुराना ट्राइब है अपाटाणी, उस ट्राइब को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ये उन सभी का, ये उस ट्राइब का गढ़ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं। और हो सकता है कि आप जो चावल खा रहे हैं माइट बी वो चावल अरुणाचल प्रदेश के जीरो से आया हो, तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस जीरो या जायरो के खेतों की तरफ। क्लाइमेट की अगर बात करें तो पूरे साल ये जो है थोड़ा माइल्ड रहता है, मतलब ये कंफर्टेबल है आपके लिए, आप पूरा साल में कभी भी जाएंगे आप इजीली इसको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब टाइम आप जो है स्पेंड करके आने वाले हैं। एंड ये जगह सबसे ज्यादा उन लोगों को भाने वाली है जो लोग कहते हैं ना कि हाँ हमें ट्रू इंडिया देखना है, हमें देखना है कि वाकई में एक्सप्लोर करने के बाद क्या कुछ निकल के आता है, मतलब क्या वाकई में वो गहराई है जो विदेशों से लोग आते हैं वीजा लगवा कर और जो पूरा का पूरा साल यहाँ पर इंडिया को एक्सप्लोर करने में गुजारते हैं, क्या वर्थ इट है? डेफिनेटली वर्थ इट है। बट उसके लिए आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लाइक हर बार हमें हिल स्टेशन के नाम पर हिमाचल प्रदेश नहीं जाना है, हमें कहीं और भी चले जाना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये जगह जिसका नाम है जीरो। तो आज हम निकले हैं जीरो या फिर जायरो के सफर पे, और पहली जगह जो मैं इसमें आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है किले पाखो। किले यहाँ पर खेतों को बोलते हैं और एग्जैक्टली वहां भी कुछ ऐसा ही मीनिंग होगा इसका, बट ये जगह जो है ये इसी एक टर्म को जो है डिफाइन करती है। किले यानी कि खुली खुली जगह है, खुले खुले फील्ड्स, वो आपको वहां पर जाकर विटनेस करने को मिलने वाले हैं। और यहाँ की अमेजिंग बात पता है क्या है? लाइक आप यहाँ पर कहीं किसी गांव में जाएंगे, खेतों के बीच में हरियाली जो आप देखकर इम्प्रेस होने वाले हैं, वहां पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको खेत ही नजर आएंगे। लेकिन बात अगर किले पाखो की करूं तो यहाँ पर एक तरफ आपको खेत नजर आएंगे और दूसरी तरफ आपको बर्फीले पहाड़ नजर आएंगे, ऐसा कुछ यहाँ का व्यू रहने वाला है। प्रॉपर यहाँ पर चावलों की जो है खेती की जाती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको देखकर आपके साथ फोटो खिंचवाने आ जाएंगे, मतलब यू विल फील लाइक अ सेलिब्रिटी। डेफिनेटली ये होने वाला है क्योंकि आप निकले हैं अरुणाचल प्रदेश में जीरो के सफर पर, जहां पर बहुत कम टूरिस्ट पहुंच पाते हैं। सो अगेन वही कंडीशन है, अगर आप वांडरलस्ट हैं और आपको नेचर को एक्सप्लोर करना है तो आपको इस जगह को कंसिडर करना चाहिए। ये जगह वैसे बता दूं आपको अटमोस्ट पीस आपको मिलने वाला है। अगर आपको डेफिनेटली वो कल्चर एक्सप्लोर करना है प्लस आपको पीस चाहिए प्लस आपको नेचर चाहिए तो आपको ये जगह कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है बहुत से जानवर जो रेयर स्पीशीज है उनको आप यहाँ पर स्पॉट कर ले, क्योंकि देखिए खुला एरिया है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इवन यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खुला एरिया है, आसपास जंगल है, आसपास पहाड़ है, तो हो सकता है ऐसे कुछ आपके पास आ जाए। बट डेफिनेटली कुछ कुछ नहीं, बहुत से ऐसे मोमेंट्स आपको मिलने वाले हैं जिनको आप कैप्चर करके अपने साथ लाना पसंद करेंगे। तो जाइएगा जीरो। जीरो में पहली जगह जो मैंने आपको बताई वो है किले पाखो, याद रखिएगा। अगली जगह जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ वो है टेली वैली। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, टेली वैली ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाम इसका टेली है और एक अच्छे खासे एरिया में फैली हुई है। लाइक 337 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैली हुई है और बहुत बड़ी एक सेंचुरी है जहां पर आपको वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलने वाले हैं। लाइक आपको चाहे वनस्पति देखनी है, पेड़ पौधे देखने हैं या फिर आपको जानवर देखने हैं, एनिमल्स देखने हैं, आपको जो भी देखना है, जो भी आपको रेयर स्पीशीज देखना है जो वहां के हैं, मतलब हर एरिया वाइज होते हैं। लाइक कुछ स्पीशीज आपको बर्फ में मिलेंगे, कुछ स्पीशीज आपको बिल्कुल रेगिस्तान में मिलेंगे। सो यहां पर आपको अलग तरह के स्पीशीज जो है देखने को मिलने वाले हैं, जो अगेन मैं कहूंगा रेयर है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एरिया वाइज होते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं क्लाउडेड लियोपर्ड्स, जो सबसे ज्यादा स्पॉट करने को हमें यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा वनस्पति की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे पेड़ हैं जैसे कि सिल्वर फायर ट्री है, जैसे कि फर्न्स है, ऑर्किड्स है, बैम्बू है, तो ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके के पेड़ भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जो रेयर हैं एंड फोटोज उनकी बहुत लाजवाब आती है। ये मैंने आपको एक प्रो टिप दिया था कि जाकर आप उन्हें कैप्चर कर लें। तो जाइए और जाकर कैप्चर करिए टैली वैली। एंड एक चीज आपके साथ बाय डिफॉल्ट चल रही है, हर जगह पर चल रही है, वो है पीस, क्योंकि आप नेचर के बीच में हैं और नेचर का वो वर्जन जहां पर क्राउड नहीं है, बहुत लिमिटेड क्राउड है और वहां के लोकल लोग हैं जो वो आपको सेलिब्रिटी वाला फील देने वाले हैं। तो मुसाफिर हुई यार, जहां पर हम जीरो के सफर पर आज निकले हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और बहुत कुछ हम अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है टेरन फिश फार्म। ये एक पैडी कल्टीवेशन अगर आपको देखना है तो ये वहां का मैं ये भी बता दूं कि मेजर ऑक्यूपेशन है। लाइक आपको देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है वहां के वो यही सब करते हैं एंड वो काफी खुश है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको जाकर लगेगा शायद कि यहां तो यार इतनी टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है, मॉल्स बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, मतलब लोगों के पास ना वो अप टू डेट रहने का, ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो करने का। बट यहां पर ये जो सब चीजें लोग करते हैं उनसे वो काफी सेटिस्फाइड है, काफी खुश है। पैडी फील्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, चावल यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में उगाया जाता है, और चावल को यहाँ पर दो तरीके से उगाया जाता है, यानी कि दो वैरायटीज हैं जिनसे चावल को उगाया जाता है, और दो तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक एक होता है कि मछली पानी में होती है, समथिंग लाइक दिस, एंड सेकेंड आपको जाकर खुद एक्सपीरियंस करना होगा। बट यहाँ पर सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि यहाँ पर कॉफी प्लांटेशन भी किया जाता है। चावल उग रहे हैं, उसके पास ही कॉफी प्लांटेशन, तो मेजरली आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहने वाला है वो रहने वाला है कि यहाँ नेचर के बीच में बहुत सारा आपको फार्मिंग वाला पार्ट जो है देखने को मिलेगा। आप जाकर देखेंगे नई तरीके से फार्मिंग कैसे की जाती है, और वहां के लोग हैं जो कैसे सर्वाइवल करते हैं, एंड वो खुश है। ठीक है, उनके घर में नहीं पहुंच पाएंगे शायद मंचूरियन, ठीक है उनके घर में शायद डेली नहीं पहुंच पाएंगे मैकडी के बर्गर्स, ठीक है शायद उनके घर में डेली नहीं पहुंच पाएंगे पिज्जा वाले, बट वो खुश है जो भी वो बना रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लाइक हमें जो हम कहीं बाहर जाते हैं किसी कल्चर को देखते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वहां के लोगों के पास जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो क्या है। एंड ये भी आप पाएंगे कि वहां के लोग जो है कम बीमार होते हैं। उसका रीजन अगेन ये है कि वो लोग सेटिस्फाइड है काफी। सो इस एक फैक्टर को याद रखिए। और दोस्तों देखिए, बहुत हो गई नेचर की बातें, बहुत सी शांत जगह मैंने आपको बताई, अभी थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं। तो चलेंगे, आपको जीरो में ही एक एडवेंचरस चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर बेसिकली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और जहां पर आप ट्रैकिंग करेंगे वो है डोलोमेंडो। वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन है जीरो का, जो लोग जाते हैं, लोग तो क्या वही लोग जाते हैं जो जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट उनके लिए बहुत अमेजिंग अट्रैक्शन है ये जगह। इसका नाम है डोलोमेंडो। यहाँ पर हमें ट्रैकिंग करने का ऑप्शन मिलता है, एंड ट्रैकिंग प्रॉपर ट्रैकिंग है वहां पर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब प्रो लेवल के लोगों के लिए ही है, बट हाँ अच्छा खासा एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रॉपर ट्रैक करने का। एंड जब आप वहां पर हिलॉक पर पहुंचेंगे, जब उस हिल टॉप पर आप पहुंचेंगे, तो आपको एक तो हपोली टाउन देखने को मिलेगा, एक आपको ओल्ड जीरो वहां पर देखने को मिलेगा। मतलब जीरो एक तो खुद एक पुराना टाउन है, उसके अलावा वहां पर भी पुराने टाउन में एक और पुराना टाउन है, तो वो आपको वहां पर जाकर देखने को मिलेगा। ये वेस्टर्न साइड ऑफ जीरो पर मौजूद है, और ये आपको मिलने वाला है एक्सेस करने को डेपो रिजर्व रोड पर। इसके अलावा जब आप यहां पर खड़े होंगे, तो आप बर्ड आई व्यू से जो नजारा ले रहे होंगे ना, जो आपकी आंखों के रास्ते होते हुए सुकून आपके दिल तक पहुंचेगा, और आपके दिल से आपकी जो हैप्पीनेस है, चेहरे पर स्माइल जो आने वाली है, मतलब मुझे तो अभी से मजा आ रहा है। तो जाइएगा और आकर मुझे भी आप बता सकते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जैसा कि हिंट मिल चुका है, बहुत पुरानी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, तो चलिए उसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। और अगर वहां पर आपको लेकर चले, तो जगह का नाम है मेघना केव टेम्पल। देखिए, एक मंदिर है, एक आम सा मंदिर है, लेकिन आम मंदिर की खास बात यह है कि ये 5000 साल पुराना है और 3000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। तो दो USPs हैं जो इस जगह पर जाने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं। ये मंदिर जो है भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। ऑल्दो 10 मिनट का आपका रास्ता लगने वाला है, 10 मिनट के आपके एफर्ट्स लगने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली इंक्लाइंड वे में आप चढ़ रहे होंगे स्टेयर्स को, बट वो 10 मिनट के बाद जो आप 5000 साल पुराना स्ट्रक्चर वहां पर देखेंगे, वो आपके लिए चेरी ऑन द टॉप होने वाला है। वो आपके 10 मिनट वाले एफर्ट्स को वसूलने वाला है। सो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक केव है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, और याद रखिएगा 5000 साल पुरानी आप एक इमारत जो है वो देख रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिल ही रहा है। मतलब जो मैंने बता दिया 5000 साल पुराना, तो वो सब चीजें आज भी यहाँ पर है। यहाँ के त्रिशूल आपको काफी अलग देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यूजुअली अब ऐसे नहीं होते हैं, बट आप 5000 साल पहले की अगर बात हो रही है तो हम कन्विंस हो जाएंगे। इसके अलावा पाइन ग्रोव एक और जगह है जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, जीरो में ही मौजूद है, एक मजेदार पिकनिक स्पॉट। यानी कि फैमिली के साथ गए हैं, बच्चों के साथ गए हैं, नेचर के बीच में बैठना है, सो ये जगह आप कंसीडर कर सकते हैं। इस जगह को नाम दिया गया है पाइन ग्रोव। और यही सब वो चीजें थी जो जीरो में मुझे आपको बतानी थी या एक्सप्लोर करवानी थी। और अब मेरा वक्त हो चला है शो को यहाँ पर खत्म करने का। दोस्तों मुझे उम्मीद है शो आपको पसंद आया, एंड मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि वो सभी अंडररेटेड जगहें आपके लिए लेकर आऊं जहां पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। सो प्लीज जाइए, इंडिया को एक्सप्लोर करिए, इंडिया को जरूरत है आपके दर्शन की। सो जाइए, जाकर एक्सप्लोर करिए और मुझे भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ दोस्तों, आप मजा लेते रहिए ऐसी मजेदार शो का। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर एक नया शो। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, शो का नाम है मुसाफिर हूं यारो, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मानवश्ना 107.8 FM। तो क्योंकि शो है मुसाफिर हूं यारो, तो बात ट्रैवलिंग की होगी, तो ट्रैवलिंग का भी आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए थीम के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। और रेडियो का तो मतलब ये है ना कि वो आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेयरनेस, एंटरटेनमेंट, वो सब चीजें पहुंचाए। सो करेंगे जी, वादे को निभाएंगे, और मुसाफिर हूं यारों जो शो की थीम है हमारी, उसको भी डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। बात करेंगे ट्रैवलिंग की, फिर एक जगह के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसी जगह जो बेहद खूबसूरत है, एक ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद आपका शायद वापस आने का मन नहीं करेगा, जहां पर आप बस जाना चाहेंगे, जहां पर आप थम जाना चाहेंगे। तो वो जगह है आज अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश बेहद खूबसूरत एक जगह है, जहां पर गर्मी बहुत कम पड़ती है और सर्दी का मजा जिसको लेना होता है वो वहां पर जाकर रहता है, कई कई महीने वहां पर गुजार कर आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जो बेहद खूबसूरत है, जगह बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ है जो अपने आप में समेटे हुए है। उस जगह के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे वहां पर क्या कुछ है जो आप कर सकते हैं विजिट, एक्सप्लोर, और क्या कुछ है जो आपकी जिंदगी में सुकून ला सकता है। और वहां पर एग्जैक्टली जगह की अगर बात करूं तो जगह का नाम है तेजू। तेजू एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है, जहां पर बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, जैसे कि मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं वो अक्सर आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं आसपास की अगर बात करें। लेकिन आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि 50% जो अमाउंट है जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश से सप्लाई किए जाते हैं। दैट मींस कि बहुत ही रेयर स्पीशीज जो आसपास देखने को नहीं मिलते हैं वो वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड दैट मींस कि वहां पर नेचर को बहुत अच्छे अमाउंट में प्रिजर्व किया हुआ है लोगों ने। फिर इसके बाद अगर बात करें तो अगर आपको सिटी लाइफ से एक एस्केप चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नेचर के बीच में जाकर कहीं आपको कुछ खूबसूरत से नजारे चाहिए, तो ये जगह आपके लिए बेहद खूबसूरत है। और तो बात करेंगे तेजू की, तो तेजू जो है वो लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक छोटा सा टाउन है बहुत, लेकिन यहां पर बहुत प्यारी प्यारी वैलीज है, यहां पर बहुत खूबसूरत नदियां हैं। वेल, अगर इसके एंशियंट इनहेबिटेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर मिश्मी ट्राइब्स रहा करते थे, जिनका इतिहास अपने आप में बहुत रोचक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा की जो पहली रानी थी यानी कि रुक्मिणी, वो मिश्मी ट्राइब से ताल्लुकात रखती है। आई डोंट नो यार, वही माइथोलॉजी के हिसाब से ये चीजें, बट हाँ जगह ऑल एंड ऑल बहुत खूबसूरत है। तो आज का सफर तेजू का रहने वाला है, बहुत सी बातें करेंगे, आपको बताएंगे यहाँ पर और क्या कुछ है। और दोस्तों, अब मैं आपको जिस जगह पर लेकर चलने वाला हूँ वो एक ऐसी जगह है, जब भी सूरज उगता है ना तो भारत में सबसे पहली किरण सूरज की जो पड़ती है वो इस जगह में दिखाई देती है, यानी कि डोंग। जी बिल्कुल, डोंग इस जगह का नाम है। डोंग से मुझे कुछ याद आया, डोंग खुश नहीं होता, आई डोंट नो क्या डायलॉग था, बट हाँ डोंग का कुछ डायलॉग था बॉलीवुड में। बहरहाल अगर बात अगर इस जगह की करें तो ये एक छोटा सा गांव है जहां पर सनराइज की पहली किरण आपको देखने को मिलेगी। ये 1,240 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, ऑल्टीट्यूड पर मौजूद है, और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यानी कि इसको ट्री जंक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर 3 कंट्रीज का जंक्शन आइडियली माना जाता है, इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में आपको नेचर देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आपको करने को मिल जाती है, जैसे कि ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग। देन इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत वेलकमिंग लोग हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 2 नदियां हैं, लोहित और सती, जहां पर जाकर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, जहां पर जाकर आप स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ना भी करें तो आप नदी किनारे बैठकर अगर उस नेचर को निहार रहे हैं ना तो वो भी आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। सो ये है जगह जिसका नाम है डोंग। और अगली जगह अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ग्लो लेक। ग्लो लेक एक वाटर बॉडी है वैसे तो, लेकिन ये जगह अपने आप में इतना बड़ा एक अट्रैक्शन है कि आपको वहां पर अलग से टाइम निकाल कर जाना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो कमलंग सेंचुरी में ये जगह जो है वहां पड़ती है, सो ग्लो लेक इसका नाम है। और ये लेक जो है वो लगभग 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर करे। लेकिन पता है रोचक बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह को आपको एक्सेस करने के लिए ट्रैकिंग ही करनी होगी और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको हार्डवर्क करके जाना होगा। और वहां पर जाकर जो नायाब नमूना आपको कुदरत का देखने को मिलने वाला है वो मैं कहूंगा यार वर्थ इट है। वो जो भी आपने वहां पर मेहनत की है, वो जितने भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, वो आपका रिवॉर्ड आपको वहां पर मिल रहा है। सो आपको जरूर जाना चाहिए ग्लो लेक, जो कि मौजूद है तेजू में, और तेजू अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। तेजू में अगर बात करें अगली जगह की तो जगह है हवा कैंप। हवा कैंप वहां पर एक लोहित वैली नाम से वैली है, उसका आपको सबसे अमेजिंग या फिर कहूं परफेक्ट अगर व्यू कहीं से मिल सकता है ना पूरे अरुणाचल प्रदेश में, तो वो आपको हवा कैंप से मिल सकता है। ये एक छोटा सा गांव है वैसे तो, और यहाँ पर बहुत ही कम आबादी है लोगों की, यानी कि छोटे से गांव में बहुत कम आबादी वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो जितने भी लोग हैं ना, वो आपको ऐसा फील होने नहीं देंगे कि आप कहीं बाहर से गए हैं। वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके परिवार के सदस्य हैं। और अगर पूरे तेजू में बात करूं तो पूरे तेजू में आपको सबसे अमेजिंग सनसेट और सनराइज का जो व्यूज मिलने वाले हैं वो हवा कैंप से मिलने वाले हैं। देन इसके बाद अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपकी मतलब लॉटरी निकल पड़ी है जी, क्योंकि नेचर का जो फॉर्म आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिलता है, जितने मोमेंट्स आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिलते हैं, उन्हें कैप्चर करने के बाद आप वाकई में अपने आप को ही थैंक यू बोल रहे होंगे कि आपने ऐसी मोमेंट्स कैप्चर किए। सो ऐसे में आपको जाना होगा हवा कैंप अगर ये तमाम चीजें आपको अनुभव करनी है तो। वेल, अगर बात अगर यहाँ तेजू की करें तो तेजू में विजिट करने का जो आइडियल टाइम बताया जाता है वो फरवरी एंड अप्रैल बताया जाता है, फिर उसके बाद सितंबर एंड अक्टूबर बताया, बट उसके आगे पीछे भी अगर आप जाते हैं तो चलेगा, बट आपको इतना इंश्योर करना होगा कि वहां पर बर्फबारी ना हो, यानी कि वहां के जो रास्ते हैं वो बंद ना कर दिए हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है, फिर उस वजह से वहां के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और हम नहीं जा पाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों तेजू में अगली जगह की, तो तेजू में जो अगली जगह है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वहां का म्यूजियम एंड क्राफ्ट सेंटर। देखिए, कहीं भी हम जाएं, किसी भी स्टेट में जाएं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जाएं या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जाएं, वहां से जो हमारा टेक अवे होता है ना वो होते हैं वहां के मूवमेंट्स, वो होता है वहां का कल्चर, वहां के रिचुअल्स, वहां के आर्टिफैक्ट्स। सो उनको आपको अगर जानना है तो उसमें बेस्ट जगह जो होती है ना वो होती है म्यूजियम एंड क्राफ्ट सेंटर, अगर वहां पर अवेलेबल है, नहीं तो वहां के लोकल विलेज आप एक्सप्लोर करिए, बट उससे भी ज्यादा अगर आपको इतिहास को जानना है तो म्यूजियम बेस्ट प्लेस है। सो यहां पर बहुत प्यारे प्यारे आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, वहां के जो ट्राइबल्स रहा करते थे उनके आपको वहां पर कुछ प्रूफ्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि वहां पर कैसा कुछ कल्चर रहा करता था, कैसी कुछ आइडियोलॉजीज रहा करती थी, और वहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव आर्टिस्टिक कलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद वहां पर बहुत ही प्यारे प्यारे आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। सो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पर जाकर आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ये है तेजू का म्यूजियम एंड आर्ट सेंटर, और ये था हमारा आज का सफर। आज हमने तय किया तेजू का सफर, आपको बहुत कुछ हमने बताया तेजू के बारे में। और दोस्तों फिर एक बार बता दूं आपको कि आज हमने 13 साल कंप्लीट कर लिए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले कई सालों तक हम ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। मीनवाइल आप अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि देखिए साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो साथियों प्यार हम तक पहुंचाते रहिए 8010781078 पर। अब इसी के साथ मैं अपने शो को खत्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फील गुड, फील लाइव।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दियो तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, खुशहाल हैं, और मैं अपना बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हमारा मुसाफिर हूँ यारो, ये बहुत ही खास है बहुत सारे लोगों के लिए, और इस बात का पता हमें चलता है जब आप लोगों की फीडबैक हमारे पास आते हैं, आपके मैसेजेस हमारे पास आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं। तो अगर आप नए लिसनर हैं या फिर आपको कुछ कहना है या कोई फीडबैक हम तक पहुंचाना है, तो 8010781078 इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम है मुसाफिर हूँ यारो, ये पूरा पूरा ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि दुनिया बोर हो चुकी है और दुनिया को जरूरत है ट्रैवलिंग की। अब देखिए, हर इंसान ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उस जगह को महसूस तो कर सकता है ना, उस जगह के बारे में जान तो सकता है, इतना भी काफी होता है। तो यही बेसिकली हमारा प्रोग्राम होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को जाना होता है, जो लोग ट्रैवलिंग करने के लिए निकलने वाले होते हैं या फिर प्लान कर रहे होते हैं, उनको भी काफी हेल्प मिल जाती है। तो चलेंगे दोस्तों, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपने एक लिसनर का मैं फीडबैक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनका नाम है मिस्टर अजय देशवाल, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और ये अभी लास्ट टू लास्ट वीक मसूरी गए थे घूमने, और वहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इन्हें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी, और ये काफी परेशान हुए, इनके साथ जो लोग थे वो भी परेशान हुए। दरअसल ये जा रहे थे और इनकी गाड़ी के सडनली दोनों टायर पंचर हो गए आगे वाले। अब गाड़ी में स्टेपनी तो एक ही होती है, और वो जो जगह थी वो पूरी जंगल थी, वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने स्टेपनी निकालकर एक टायर तो चेंज कर लिया, लेकिन दूसरे टायर का क्या करें? अगर गाड़ी ऐसे चलाएं पंचर हालत में, तो उसके बाद तो आपका जो गाड़ी का रिम या अलॉय होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन्हें इंतजार ही करना पड़ा। इन्होंने बहुत सारे लोगों का वेट किया, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, पूरा सुनसान रास्ता था वो। हालांकि लोग वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब भी किसी से हेल्प मांगी तो लोग वहाँ से इन्हें इग्नोर करके निकल गए। हाँ, देख तो सब रहे थे कि हुआ क्या है, लेकिन रुका कोई नहीं। ये एक बात थोड़ी सी गलती है यार, क्योंकि देखिए, आप ट्रैवलिंग करें कुछ भी करें, बात ये है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इसमें मैं कोई पाप या पुण्य वाला एंगल नहीं डाल रहा हूँ, बट सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम सब ऐसे हो जाएंगे, सपोज आपको किसी की हेल्प की जरूरत है और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, या फिर मुझे कभी किसी की हेल्प की जरूरत है, या फिर कोई वहाँ पर पहुँच जाए, तो आप सोचकर देखिए ना, रिश्ते कितने प्यारे बन जाएंगे दुनिया में, और कितना प्यारा एक दुनिया का माहौल बन जाएगा, कितना पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए यार, जब भी आप कहीं पर भी जाए, अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा दिखाई देता है जिसको हेल्प की जरूरत है, या फिर कोई खड़ा है आपको लग रहा है कि परेशान है, तो एक बार आप रुक कर पूछ लीजिए। हो सकता है यार आपका इतना पूछना भरी उसके लिए बहुत हो जाए। तो ये एक बात है जो ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जब भी किसी को जरूरत पड़े, अगर आप वहां पर पहुंच सके तो प्लीज पहुंच जाइए, या फिर आप निकल रहे हैं और कोई इंसान आपको लग रहा है कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो रुक कर आप उसका हाल भी पूछ लेंगे ना। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो वो भी काफी है, बट प्लीज ये इनिशिएटिव हमें खुद देने पड़ेंगे। क्योंकि किसी बहुत महान राइटर का एक कोट है कि आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव अपने अंदर ले आइए, अगर वो बदलाव आपके अंदर आ जाएगा तो दुनिया वैसी बन जाएगी। तो बिल्कुल सही है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया एक पीसफुल जगह बने, दुनिया एक पॉजिटिव जगह बने, जहाँ किसी को शिकायत ना हो लोगों से, और वहाँ पर लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले हो, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना होगा और हमें खुद लोगों की हेल्प करनी होगी। तो अभी इसी एक रिक्वेस्ट के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि इंसानियत को हम बढ़ावा देंगे अभी, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने सफर की, और आपको बताते हैं कि आज हम कहां पर जाने वाले हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं आपके साथ क्विज खेलता हूं, कई बार मैं आपको ये मौका देता हूं गेस करने का, लेकिन जगहें इतनी प्यारी प्यारी हैं, पर अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इन जगहों के बारे में सुना ही नहीं। तो इसके लिए हम कोई क्विज नहीं खेलने वाले हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं, आज हम चलने वाले हैं थेनवाला। थेनवाला का बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, अगर सुना भी होगा, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने विजिट किया होगा, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। लेकिन ट्रस्ट मी यार, जगह वर्थ है, आपको लगेगा कि यार किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं आप, इतनी कमाल की जगह है। तो थेनवाला मौजूद है केरला में, और वाकई में ये एक प्राइड डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंडिया की। ये कोल्लम सिटी से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बहुत कमाल कमाल की चीजें आपको देखने को मिलती है। एक तो आपको यहाँ पर तीन तीन हिल रेंजेस देखने को मिलती है, त्रिवंद्रम, कोल्लम और पथनमथिट्टा। एंड वाकई में जब आप यहाँ पहुंचेंगे और पहली बार आप केरला जाएंगे, तो सच में आपको ऐसा लगने वाला है कि आप किसी कहानियों की दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ आपको नेचर, शांति, साफ सुथरे रोड, मतलब बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहता है यार वहाँ पहुँचने के बाद। तो ब्यूटी तो उसकी एक तरफ है ही, इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिया का जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का टिम्बर मिलता है वो यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी के टिम्बर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं और यहीं से सप्लाई भी किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की हनी यानी शहद भी मिल जाएगा। और थेन वालों को अगर आप वाकई में ट्रांसलेट करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज में तो आपको पता चलेगा हनी हिल नाम से ये फेमस है। और देखिए किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता है जी, क्योंकि जो लोग भाई एडवेंचर से प्यार करते हैं, जो थ्रिल सीकर्स हैं, उनको भी काफी मजा आने वाला है। क्योंकि एक तो फॉरेस्ट एरिया है, ऊपर से यहाँ पर ऊंची ऊंची माउंटेन की पीक्स है जो आपको वाकई में फैसिनेट करने वाली है। तो देखिए एक बहुत कमाल का पैकेज मिल रहा है आपको, बहुत सही जगह है जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग। दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि आज हम थेनमाला चलने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि थेनमाला पहुंचा कैसे जाए। तो देखिए अगर आप बाय रोड जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये वेल कनेक्टेड है लगभग सारी जो मेजर सिटीज है वहां पर उनसे। आप अगर कोल्लम, त्रिवेंद्रम, पेनालूर और भी किसी फेमस डेस्टिनेशन से ट्रेवल कर रहे हैं तो या तो आप वहां के रेगुलर एक स्टेट रन जो प्राइवेट बसेस मिलती है या फिर गवर्नमेंट बसेस भी मिलती है वो आपको मिल सकती है वहां रोड पर। इसके अलावा लोकल कैब्स और टैक्सीज का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और यहां से अगर आप अपनी गाड़ी पर जाते हैं तो वहां से भी आप पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। इसके लिए आपको कोल्लम जाना होगा, कोल्लम से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह मौजूद है। तो दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन आपके लिए है वो है ट्रेन का। तो देखिए जी थेनमाला पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा कोल्लम शेनकोट्टा ट्रेन रूट का। और यहाँ पर उतरने के बाद आप वहाँ पर कैब ले सकते हैं, वहाँ की लोकल बसेस का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके लिए आपको कोल्लम स्टेशन पर उतर कर वहाँ से आपको कोई कैब करनी होगी। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है आपके लिए वो है बाय एयर, यानी आप फ्लाइट से अगर जाना पसंद करते हैं तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप उतर सकते हैं जो कि वहां से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही सबसे जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो मिलेगा आपको थेनमाला में। हालांकि बहुत सारे लोग आते हैं जो इंडिया से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं और वो सभी लोग यहीं पर आकर जो है उनकी फ्लाइट लैंड करती है, वो यहां से फिर कैब कर सकते हैं, आप बस पकड़ सकते हैं या फिर कोई भी आपको कन्वीनियंट जो चीज लगती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ ऑप्शंस काफी सारे हैं आपके लिए। और फिर इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से गए हैं, आजकल तो यार मैप हर किसी के पास मौजूद है, आप मैप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी जो मैंने आपको बताई तीन चीजें जैसे आप थेनमाला पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइम के ऊपर, क्योंकि ये बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा आपको कि किस टाइम पर जाना चाहिए, क्या सही सीजन है आपके लिए। तो देखिए अगर आप दिसंबर टू फरवरी जाते हैं तो आपकी जो मॉर्निंग ड्यूज है, जो मौसम में आपको क्रिस्पीनेस मिलने वाली है और जो बाहर का ओवरऑल आपको मिस्टी आउटलुक मिलने वाला है वो विंटर से मिलने वाला है और वो बहुत कमाल रहने वाला है। और सही बताऊं वो इतना कमाल रहने वाला है कि वो आपको वाकई में इस जगह से प्यार करवा देगा। इसके अलावा अगर आप इन महीनों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर गॉर्जियस इको टूरिज्म डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर काफी नीचे गिर चुका होता है। और ऐसा कहा जाता है जो लोग फ्रीक्वेंटली वहां जाते रहते हैं या फिर वहां के जो लोकल लोग हैं वो खुद यही सलाह देते हैं कि विंटर्स आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है जब आप यहां पर विजिट करना चाहिए। इसके अलावा बात अगर समर की जाए मार्च टू मई, तो देखिए यहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है, 39 डिग्री तक यहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है समर्स में। तो ये भी आपके लिए अच्छा समय है, लेकिन तभी जब आप हाई टेम्परेचर झेल पाए, जब आपको आदत हो इतना हाई टेम्परेचर झेलने की और टेम्परेचर का राइज जो है आप इग्नोर कर सके, तो प्लीज तभी आप समर्स का प्लान बनाइएगा। इसके अलावा गर्मियों में आपको यहाँ पर मौसम बहुत खुला हुआ और बहुत साफ दिखाई देगा, ये शायद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है साइट सीइंग के लिए। तो अगर आपको आदत है हाई टेम्परेचर में आप सर्वाइव कर सकते हैं तो आप जाइए, क्योंकि गर्मियां भी आपके लिए सही साबित होने वाली है। और नेचर के बीच में यार आप कभी भी चले जाओ आपको अच्छा ही महसूस होगा। और तीसरा जी बात करते हैं मॉनसून की, जून टू सितंबर, इसका भी मैं कहूंगा कि गुड है, लेकिन हाँ तभी जब आप इग्नोर कर पाए वो हैवी रेनफॉल्स और चारों तरफ आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे, तो अगर आप वो इग्नोर कर सकते हैं तभी आप मॉनसून में वहां जाइए। बट मॉनसून का यार अपना अलग ही मजा है, यहाँ पर आपको एक काफी फ्रेश लुक मिल जाता है हर तरफ देखने को, आपको नेचर का बेस्ट वर्जन मिलता है क्योंकि काफी धुला हुआ और काफी साफ आपको नेचर दिखाई देगा, काफी साफ सुथरी रोड्स आपको दिखाई देंगी, आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने रीपेंट कर दिया है। लेकिन हाँ हर मौसम की अपनी एक कमी है, अपनी एक खूबी है, तो ये आप डिसाइड करिएगा आपके लिए कब सुटेबल होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको विंटर्स में जाना चाहिए क्योंकि ये प्रोबेबली बेस्ट टाइम हो सकता है आपके लिए। पहली जो जगह मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है पलारुवी फॉल्स। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो है स्ट्रीम ऑफ मिल्क, अब आप समझ गए होंगे दूध की धारा। तो ये वाकई में एक वंडरफुल वाटरफॉल है जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कंट्री में यानी पूरे इंडिया में ये 32nd नंबर पर आता है अपनी हाइट की वजह से। हाईएस्ट वाटरफॉल 32nd नंबर का आप इंडिया में पररुवी फॉल्स को पाएंगे। लगभग 300 फीट की हाइट पर ये मौजूद है और लगभग 18 किलोमीटर जो है आपको दूर पड़ेगा इको टूरिज्म टाउन से। लेकिन जगह बहुत कमाल की है, बहुत सारा पीस आपको मिलने वाला है यहाँ पर। अब दूसरी जो जगह है इसको मैं नाम दूंगा एडवेंचर जोन। ये उन लोगों के लिए मक्का के बराबर है जो एडवेंचर सीकर्स होते हैं, जिनको थेनमाला में जाकर एडवेंचरस एक्टिविटीज करना पसंद है, जिनको थ्रिल्स पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी बम्पिंग एक्टिविटीज मिल जाती हैं जो आपको वाकई में मोटिवेट करती हैं अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए। जैसे कि रिवर क्रॉसिंग, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, जैसे कि एलिवेटेड वॉकवेज, जैसे कि रैपलिंग, और भी ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगर आप थ्रिल लवर हैं, अगर आप एडवेंचर लवर हैं, तो आपको कतई ये जगह मिस नहीं करनी चाहिए। तो एडवेंचर जोन आपको जरूर जाना चाहिए। और तीसरी जो जगह है वो उन लोगों के लिए जिनको मदर नेचर से कनेक्ट करने में बहुत मजा आता है, यानी कि थोड़े स्पिरिचुअल लोग, और ये जगह है लेजर टू। ये स्पेशली है ही उन लोगों के लिए जिनको मदर नेचर से रिकनेक्ट करने में मजा आता है, क्योंकि ये जगह जो आपको काफी काम करती है, आपको काफी शांत करती है, काफी ठहराव देती है। खासतौर पर कुछ लोग होंगे जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे या जिनको थोड़ी स्पिरिचुअल लाइफ जीनी पसंद होगी, तो वो यहाँ पर जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जाकर सच में आपको बहुत सारा सुकून मिलने वाला है। देखिए सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता है, सफर में आगे और भी बहुत कुछ है। जैसे कि हमारी अगली जगह है, इसका नाम है म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन। हालांकि ये आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगा, कई शहरों में देखने को मिल जाता है, लेकिन यार जब आप गए हैं और आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं तो यहाँ पर नेचर के बीच में इस जगह को एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक मजा है। आप यहाँ पर जाएंगे शाम को और शाम को आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे कलर्स और म्यूजिक होगा और वो फाउंटेन आपको अलग अलग करतब दिखा रहा होगा। यहाँ पर आपको ओपन एयर डांसिंग फाउंटेन दिखाई देगा और वाकई में म्यूजिक के और लाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, उसके बाद जो फील आता है वो तो यार अलग ही लेवल है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके साथ छोटे बच्चे गए हैं तो उनके लिए है अगली जगह, उसका नाम है चिल्ड्रंस पार्क। अब भाई बच्चों के लिए बनी है तो बच्चों को तो बहुत अट्रैक्ट करने वाली है, और ये पूरी पूरी जगह जो है बच्चों को ही डेडिकेट की गई है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर बच्चे अपना दिन बिता सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं और अपने जैसे बहुत सारे नटखट बच्चों के साथ वहाँ पर दोस्ती कर सकते हैं। क्योंकि यार हम जाते हैं, हम अपने पसंद के हिसाब से अपनी चीजें चूज तो कर लेते हैं, अपनी अपनी जगहें तो चुन लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या, उनको भी तो फन चाहिए ना। तो यहाँ पर बहुत सारा फन उनको मिलने वाला है। यहाँ पर उनको बहुत सारे स्विंग, जिगजैग राइड्स, बहुत सारे स्लाइड्स और भी बहुत सी चीजें मिलने वाली है। तो जो भी जूनियर चैंपियन आपके साथ जाने वाला है वो डेफिनेटली बहुत मजे करने वाला है, क्योंकि सच में ये जगह बहुत प्यारी है। और इसी के साथ जो अगली जगह है उसका नाम है नक्षत्र वनम। दोस्तों ये जो गार्डन है बहुत खास है उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 27 बर्थ स्टार्स होते हैं उनके 27 ट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और वो 27 ट्रीज जो है आपके उन सारे बर्थ स्टार्स को सिम्बलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं यार उन 27 पेड़ों को, मतलब बहुत खास, बहुत अमेजिंग होते हैं वो। एंड आप यहाँ पर जाएंगे ना तो आप देखेंगे लोग उन पेड़ों की पूजा भी करते हैं। तो देखिए बात तो ये है कि वो पेड़ चाहे हमारे बर्थ से जुड़े हो या ना हो, या फिर उनका कोई और लाभ हो या ना हो, पर इतना तो पक्का है ना कि वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो पेड़ों को यार वैसे भी हमें पूजनीय ही मानना चाहिए हमेशा हर जगह, लेकिन पता नहीं लोग क्यों उन्हें काटने पर लग जाते हैं। खैर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, यही हमारा फ्यूचर है। तो अगली जो जगह है इसका नाम है कुलाथुपुझा। ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है थेनमाला से, लेकिन एक अपने आप में एक अलग ही छोटा सा पैकेज आपको मिलने वाला है। एक तो यहाँ पर आपको बहुत प्यारे से नजारे मिलने वाले हैं नेचर के, और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मंदिर भी मौजूद है जिसका नाम है सास्ता टेम्पल। यहाँ पर लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, और अगर आप यहाँ गए हैं अप्रैल टू मई के बीच में तो आप वाकई में मजा करने वाले हैं, क्योंकि इस टेम्पल में एक फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको विष्णु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली वो कल्चर, वो रिचुअल्स, वो सब एक्सपीरियंस करने वाले हैं जिनके लिए हम सब लोग बाहर जाते हैं। यस तो याद रखिएगा कुलाथुपुझा। इसके अलावा जो अगली जगह है इसका नाम है अय्यप्पा टेम्पल, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है वहाँ का जो केरला में मौजूद है अय्यप्पा टेम्पल। इसको श्री धर्मा सस्था टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और लॉर्ड अय्यप्पा टेम्पल के नाम से भी। ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो भगवान है जिनकी पूजा की जाती है उनका नाम है तिरु, आपने शायद पहली बार सुना होगा। तो ये जो एक टीनेजर के उम्र के लगभग भगवान बनाए हुए और वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी जाता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाती है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफर तेलमाला का। अभी वक्त हुआ है सफर को यहाँ खत्म करने का, लेकिन जब भी आप कहीं पर भी जाएं प्लीज देख कर जाएं कि वहाँ पर जो भी गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो इंश्योर करके जाएं और अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक नया सफर। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.
1: Good morning, Namaskar, Sashri Akal, Ram Ram, Jai Mata Di, Assalamu Alaikum, दोस्तों मैं हूं आरजी सागर. आ चुका हूं लेकर प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की. और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव. तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में. शो की थीम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं. यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं उन तमाम स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज जो कभी स्टार्ट हुए एक थॉट से, बट आज जो हम बोलते हैं हमारा भारत आत्मनिर्भर हो चुका है. तो भारत को यहां तक लाने में हर एक फील्ड में किसी न किसी कंपनी ने, किसी न किसी इंसान ने बेसिकली अपना योगदान दिया. अब लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है कि हम लोग कंपनीज को जानते हैं, प्रोडक्ट्स को जानते हैं, सर्विसेज को जानते हैं, क्योंकि उनके नाम हमने सुने होते हैं या कभी ना कभी उनका हमने जो है इस्तेमाल किया होता है. बट हम लोग उन हीरोज को नहीं जानते, उन नामों को नहीं जानते जिनकी वजह से ये सब चीजें स्टार्ट हुई होती है. तो यहां पर एक मोटिव ये भी है इस शो को स्टार्ट करने का कि हम उन लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज आप इतनी सारी सर्विसेज का जो है आप इस्तेमाल कर पाते हैं और जिनसे हमारा जो जीवन है वो स्मूथ हो पाया है. तो ये है हमारा शो आत्मनिर्भर भारत. मैं हूं आरजे सागर. इस एक शो के अलावा और भी शोज हैं जो यहां पर मैं होस्ट करता हूं रेडियो मानव रचना पे, जैसे कि टैक्सी नंबर 107.8 मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 से 8, जहां पर हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड करंट अफेयर्स की. इसके बाद हमारा सैटरडे को एक शो होता है मुसाफिर हूं यारों, बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग. एंड उसके बाद एक और शो हमारा होता है संडे को वॉइस ऑफ यूथ, जहां पर हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं, मतलब एक एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं हर बार, और उन एक्सपर्ट से हम जानते हैं एक स्किल सेट के बारे में, मतलब वो जिस भी फील्ड से आते हैं उनके फील्ड में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो ये है मेरा परिचय. आई होप अब आप शो को जान चुके हैं, मुझे जान चुके हैं. बाकी रेडियो मानव रचना 107.8 FM 14 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपकी सेवा में है, 24 घंटे आपकी सेवा करते हैं हम. और यहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों तक हम कन्वे करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है. हालांकि रेडियो मानव रचना को ज्यादा परिचय की जरूरत है नहीं, क्योंकि फरीदाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और कम्युनिटी के वॉइस उभर के सामने आया है. मतलब लोगों की आवाज को बुलंद करना और अलग अलग मुद्दों पर बात करना, ये रेडियो मानव रचना करता है. तो ये है एक पूरा परिचय जो आप इस टाइम सुन रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा शो है, होस्ट कौन है. तो दोस्तों शो की थीम के बारे में आपको पता है, और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम अपने शो को जब स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के ऊपर डायरेक्ट हम जंप नहीं करते हैं, कंपनी का नेम तक हम आपको नहीं बताते हैं. उसके पहले हम आपको इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, जितने इनसाइट्स हमारे पास मौजूद होते हैं. तो वही प्रोसेस हम वापस से फॉलो करने वाले हैं. अभी हम आपको बताएंगे कि आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो किस इंडस्ट्री में, किस सेगमेंट में डील

करती है। तो ये जो कंपनी है डील करती है बायोमेडिकल इंडस्ट्री में। अब बायोमेडिकल इंडस्ट्री इसको आप समझ लें थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपको मिल जाएगा तो आप और अच्छे तरीके से इस कंपनी को समझ पाएंगे, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कंपनी कैसे अपनी जगह बना पाई और कैसे इस कंपनी ने हमारी लाइफ को स्मूथ बनाया है। सो बायोमेडिकल इंडस्ट्री जो है यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब एक पूरा वाइड एरे आप देख सकते हैं यहाँ पर। मोटिव होता है इसका हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेप्यूटिक ड्रग्स, साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी। और ये बहुत क्रिटिकल एक रोल प्ले करता है इन हेल्थ केयर सेगमेंट, क्योंकि ये एडवांस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस, डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट्स एंड इम्प्रूविंग डायग्नोस्टिक मेथड्स। मतलब छोटा सा रेफरेंस अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आज से 100 साल पहले जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम था इस वर्ल्ड में, क्या आज भी वही है? देखिए ना, आप अगर उस कॉन्ट्रास्ट को देखने बैठेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि पहले इतनी एडवांस्ड मशीनरी हमारे पास नहीं हुआ करती थी, पहले रोबोटिक सर्जरीज नहीं हुआ करती थी, पहले MRIs नहीं हुआ करते थे। तो ये सब चीजें टाइम टू टाइम जो है डेवलप की गई हैं और इस एक इंडस्ट्री को हम जानते हैं बायोमेडिकल इंडस्ट्री के नाम से। अब छोटा सा यहां पर हम डिस्कस करना चाहेंगे एक सेगमेंट के बारे में, दैट इज की सेगमेंट्स ऑफ द बायोमेडिकल इंडस्ट्री, सो दैट आपको पता रहे कि इसको सेगमेंट वाइज कैसे डिवाइड किया जाता है। पहला आता है फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स। अब जब हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो सीधा हम फोकस कर रहे हैं ऑन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, जहां पर दोनों तरीके के जो ड्रग हैं उनकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, लाइक ट्रेडिशनल केमिकल बेस्ड ड्रग्स एंड बायोलॉजीज ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपने देखा होगा कि अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके नए ड्रग्स जो है वो डिस्कवर किए जाते हैं, नई चीजें बनाई जाती हैं। तो ये है फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये वर्ड वैसे आपने बहुत सुने होंगे। सेकंड आता है मेडिकल डिवाइस, यहां पर हम लोग बात करेंगे उन तमाम डिवाइसेस की, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हम चीजों को क्योर कर पाते हैं जो बीमारियां हमें होती हैं। अब चाहे छोटे से छोटा टूल, एक सिरिंज की आप बात करें, या फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टूल, MRI मशीन, सर्जिकल रोबोट्स, आप उनकी बात करें, सब कुछ जितने भी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं मेडिकल फील्ड में वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद थर्ड की सेगमेंट आता है डायग्नोस्टिक, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड प्रोसीजर्स जिससे जो है डिजीज को हम डिटेक्ट कर सकें और अपनी हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर कर सकें। इसमें शामिल होते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज एंड लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट। ये सब कुछ हम यहां पर लेकर आएंगे जिसमें हम किसी पर्टिकुलर बीमारी को, अपनी हेल्थ कंडीशन को डायग्नोस कर पाते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ये इंसान टेस्ट कराने गया और वहां पर डायग्नोस किया गया कि ये पर्टिकुलर बीमारी उन्हें थी। तो ये वाली जो चीज है, ये तमाम जो चीजें की जाती हैं या तमाम जो वहां पर प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो इस की सेगमेंट में फॉल करते हैं। देन फोर्थ आता है बायो टेक्नोलॉजी, यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है सो दैट कि नए जो जेन है वो बनाए जा सके, नए जो सेल्स हैं वो बनाए जा सके, नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए, जीन थेरेपी की जा सके। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जेनेटिकली कुछ इश्यू होते हैं, लेकिन अभी ये भी होता है कि हम उनको क्योर कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल्स में इश्यू होते हैं तो उनको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है, यानी कि किसी एक इंसान के जीन्स को सुधारा जा सकता है। जैसे कोई एक इंसान है जिसको पिछले 4-5 जनरेशन से एक पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अगर वो जीन्स में है तो उसके ऊपर काम किया जा सके, रिसर्च की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत एडवांस हम हो गए हैं मेडिकल फील्ड में। देन उसके बाद आता है R&D, जो कि है फिफ्थ की सेगमेंट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पर अपने नाम से बहुत कुछ बताता है, बायोकेमिकल या फिर बायोमेडिकल इंडस्ट्री में जितनी भी चीजें रिसर्च की जाती हैं, जितना भी वहां पर डेटा लिया जाता है, जितना भी वहां पर पढ़ा जाता है, जितनी भी नई थेरेपीज डेवलप की जाती हैं, चाहे नए डिवाइस जो है वो डेवलप किए जाते हैं या फिर नए ड्रग्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं R&D के बिहाफ पर, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले रिसर्च किया जाता है फिर डेवलप किया जाता है। जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड का आप टाइम लीजिए,
एक नई बीमारी दुनिया के सामने है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, कोई इसका इलाज मौजूद नहीं है, उसके पहले कभी किसी ने नाम तक नहीं सुना इसका। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर रिसर्च की गई, जैसे जैसे उसके केसेस सामने आए, हमने उसकी वैक्सीन बना ली और लाखों करोड़ों लोगों की जान वाकई में बचा ली गई। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। दिस इज द की सेगमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंडस्ट्री। अभी हमने यहाँ पर पांच सेगमेंट्स डिस्कस किए, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D के नाम से जानते हैं। आई होप अभी तक एक अच्छी खासी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है बायोमेडिकल इंडस्ट्री। अब चलिए आगे कुछ इनसाइट्स आप लोगों को हम बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो इसको हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, पहला है इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अगर आप इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट आता है हाई R&D एक्सपेंडिचर। नो डाउट बायोमेडिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट दिस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड। कंपनीज जो हैं बहुत हैवी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करती हैं R&D में, ताकि वो नए ड्रग्स जो हैं वो डेवलप कर सके, वो डिस्कवर कर सके, एडवांस मेडिकल डिवाइसेस बना सके, साथ साथ जो इनोवेटिव डायग्नोस्टिक्स हैं वो क्रिएट कर सके। आपने बीते दिनों सुना होगा कि कुछ कंपनीज ने ऐसे कैप्सूल्स या ऐसे इंजेक्शंस बनाए हैं जिनसे कैंसर को अगर आप अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करते हैं तो महज कुछ एक डोजेस से उसको खत्म किया जा सकता है। सो मुझे नहीं पता इसके प्रमाण कितने आए निकलकर, मुझे नहीं पता मार्केट में उसके ट्रायल्स जब किए गए तो कितना पॉजिटिव रेट निकल के सामने आया, बट मुझे इतना पता है एटलीस्ट किसी एक इंसान ने वहां तक टच करने की कोशिश करी एंड ये सब कुछ हो पाया बिकॉज ऑफ R&D। तो इसलिए R&D बहुत जरूरी है हर एक चीज की, हर एक ड्रग की, हर एक डिवाइस की। देन इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट में सेकंड चीज आती है वेंचर कैपिटल फंडिंग। अब देखिए यहां पर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है किसी भी एक बायोमेडिकल स्टार्टअप के लिए। मतलब एक तो होता है कि आपने बूटस्ट्रैप से स्टार्ट किया चीजों को और उसके बाद जाकर आपका आइडिया थोड़ा अच्छा लगा लोगों को और मार्केट में थोड़ा काम करने लगा तो आपके पास इन्वेस्टर्स आ गए, आपको पैसा दे दिया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल इंडस्ट्री की तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है R&D में, तो इसलिए आपको इनिशियल स्टेज पर फंडिंग चाहिए होती है। इसीलिए यहां पर जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है वो बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है, बिकॉज अर्ली स्टेज कंपनीज अगर कुछ नया बनाना चाहती हैं, अगर कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उनके पास है उसको कमर्शलाइज करना चाहती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा स्टेक्स जो है वो हाई देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी एक नया आइडिया है, नई टेक्नोलॉजी काम करेगा नहीं करेगा और लोग उसको अडॉप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उसके पहले उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि उसको मार्केट तक लाया जा सके। देन इसके बाद हमने आपको सेकंड पॉइंट बताया था इनसाइट्स में ही रेगुलेटरी एनवायरमेंट, उसमें पहला पॉइंट आता है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। देखिए बायोमेडिकल इंडस्ट्री एक हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि यहां पर देखिए मेडिकल प्रोडक्ट्स में डील की जाती है और यहां पर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है, इसीलिए यहां पर बहुत नजर रखी जाती है। रेगुलेटरी बॉडीज लाइक FDA, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल्स जो है वो प्ले करती हैं। कोई भी अगर ड्रग या डिवाइस अगर नए बनाए जाते हैं, हमारी अपनी कंट्री में भी हमारे पास अपनी रेगुलेटरी है, अपनी एक गवर्निंग बॉडी है, इसीलिए इन सब चीजों पर बहुत स्ट्रिक्ट जो है नजर रखी जाती है। आपने सुना भी होगा बहुत बार कि ये दवाइयां बैन कर दी गई, क्योंकि अगर थोड़ी भी हमें कैजुअलिटी देखने को मिलती है, थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम लोगों में होती है तो इंस्टेंटली एक्शन लिया जाता है, इसीलिए स्टेक्स बहुत हाई होती है। वापस से बात बोलूंगा। देन उसके बाद रेगुलेटरी एनवायरमेंट में सेकंड आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। यहां पर एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत होती है, एक्सटेंसिव क्लिनिकल टेस्टिंग की जरूरत होती है इसके पहले कि कोई भी ड्रग या मेडिकल डिवाइस मार्केट में लाया जाए, ताकि लोगों की सेफ्टी को खतरा ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं XYZ कंपनी हूं कोई और मैंने कोई नया ड्रग बना दिया जो कैंसर को क्योर करता है, मैं दावा कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक कर देगा आपको, लेकिन उसको एज इट इज मार्केट में नहीं उतारा जा सकता। अनलाइक अदर सेगमेंट्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, फैशन की बात करें, वहां पर चीजों को ऐसे लाया जा सकता है, ठीक है कि ठीक है लोग पहन लेंगे, नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे। लेकिन इस अगर सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर स्ट्रिक्टली जरूरत होती है क्लिनिकल ट्रायल्स की। अगर ट्रायल्स में पास हो पाया तो ही उसको मार्केट में लाया जाता है।
सो दैट्स हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क्स, और ये बहुत क्रूशियल हो जाता है. ये थे बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स. इसके पहले कि कुछ भी अगर स्टार्ट किया जाए इस एक सेगमेंट में, ये सब चीजें पता होनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर फाउंडर को. अब समझते हैं मार्केट ट्रेंड्स को. और देखिए, ये भी एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कंपनी का नाम अभी तक मैंने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया है क्योंकि कंपनी बहुत छोटा रोल प्ले करती है. बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि वो कंपनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डील करती है. इसीलिए कंपनी के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आपको इंडस्ट्री समझाते हैं सो दैट आपको इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट्स वो सब कुछ पता रहे. उसके बाद कंपनी को समझ पाना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है और नए आइडियाज के लिए एक जगह आपके पास होती है, एक स्कोप आपके पास होता है, ताकि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी खासी जानकारी है. अब हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स की. तो बायोमेडिकल इंडस्ट्री में मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं? पहला ट्रेंड है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. अब देखिए, बहुत एडवांस हो गए हैं, सो एडवांसेस इन जेनोमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये एक नया शिफ्ट देखने को मिला है टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जहां पर ट्रीटमेंट्स जो है वो टेलर किए जाते हैं टू इंडिविजुअल पेशेंट्स, डिपेंड की उनकी जेनेटिक प्रोफाइल क्या है. जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जिनको जेनेटिकली हेयर लॉस होता है, मतलब उनकी 3-4-5 जनरेशन से हो रहा है कि उनके हेयर लॉस होगा ही होगा, तो उसके लिए अलग से एक ट्रीटमेंट होगा. मतलब आप उसको कह सकते हैं दिस इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, क्योंकि जेनेटिकली यहां पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं. वहीं एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी ही 5-6 जनरेशन होती है, उनके हेयर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. अगेन इट प्लेज द सेम रोल. अगर वहां पर कुछ पर्टिकुलर चीज होती है या पर्टिकुलर दवाई की जरूरत होती है, तो अगेन इट इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. सेम चीज जो है हर एक फंडामेंटल में अप्लाई कराते हैं. कुछ लोगों को जेनेटिकली डायबिटीज होती है, कुछ लोगों को जेनेटिकली ब्लड प्रेशर होता है, तो इसीलिए उन सबको अल्टर किया जाता है. पर्सनलाइज्ड बेसिस पर जो है दवाइयां रेकमेंड की जाती हैं, जिसमें उनके जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है और उनके जेनेटिक्स को वहां पर स्टडी किया जाता है. देन सेकेंड मार्केट ट्रेंड इज डिजिटल हेल्थ. यहां पर हम समझ सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि AI हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया. ये सब जो है हेल्थ केयर डिलीवरी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ पेशेंट्स के जो आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं. मतलब काफी एक्यूरेटली चीजों के साथ अब डील किया जा सकता है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे भी पोर्टल्स हैं जहां पर आप केवल कुछ सिम्टम्स डालेंगे, मुझे हेडेक है, साथ साथ मुझे पैरों में दर्द होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मुझे जॉइंट्स पेन होता है, तो वहां पर वो जो भी एल्गोरिथम होगा, वो जो टूल होगा, वो जो पोर्टल होगा, वो आपको थोड़ा सा बता पाएगा कि आपको इस एक सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए. मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ये वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है. इसीलिए आप अर्ली स्टेज पर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और ऐसे करके अपनी हेल्थ को आप एंश्योर कर सकते हैं कि आप ठीक हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अर्ली स्टेज पर आप ठीक कर पाएंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज एजिंग पॉपुलेशन. दिस इज अगेन वन ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स, एजिंग पॉपुलेशन, जहां पर हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग प्रिवेलेंस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस. जो ग्लोबली पॉपुलेशन में एजिंग की वजह से चीजें होती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बुजुर्गों में जल्दी से कुछ प्रॉब्लम्स जो है फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, तो उनको डिटेक्ट करना, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, उस एक फील्ड में काम करना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आना. जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर कंपनीज स्पेशली डील करती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए. आपने बहुत बार देखी होंगी इस तरह की एड्स की आपके घर में भी बुजुर्ग हैं, उनको भी घुटनों में दर्द होता है, तो ये वाला तेल लगाइए. मतलब उसको मैं एक रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक है. आई एम नोबडी टू से एनीथिंग एंड आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग जब तक कि मेरे पास कोई लैब रिजल्ट ना हो या क्लिनिकल टेस्ट का कोई प्रमाण मेरे साथ ना हो. लेकिन मैं एक रेफरेंस आपको बताना चाह रहा हूं. दैट मीन्स कि लोग स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं उस एक सेगमेंट के ऊपर कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो लेट्स एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स. दैट्स हाउ चीजें शिफ्ट हो रही हैं. सो दीज आर दी मार्केट ट्रेंड्स जो आपको पता होने चाहिए बायोमेडिकल इंडस्ट्री के बारे में. इसमें अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है चैलेंजेस. अब चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं इस एक इंडस्ट्री के. इसके पहले कि आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आपको इन चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए. पहला है हाई कॉस्ट. तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि अगर आप कुछ भी नया मेडिकल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते हैं,
तो जाहिर सी बात है बहुत सारा टाइम आपका जाने वाला है, बहुत महंगा होने वाला है, साथ साथ हाई कॉस्ट जो है वो एसोसिएट होती है आरएनडी पे, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एज आई सेड कि बिना आरएनडी के आप इस सेगमेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं, इवन दो आप एक छोटी सी टैबलेट बना रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को टारगेट कर रही है, तो आपको बहुत सारा डाटा चाहिए होगा, बहुत सारी आपको नई चीजें करनी होंगी वहां पर, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू होकर गुजरना होगा, तब जाकर आपको एक ग्रीन परमिट मिलेगा, और उसमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पैसा आपका खर्च होने वाला है। तो इसीलिए इसको एक चैलेंज के तौर पर आपको कंसिडर करना चाहिए। साथ साथ रेगुलेटरी के अप्रूवल्स इजीली नहीं मिलते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट को टारगेट करें या वर्ल्ड वाइड किसी भी मार्केट को आप टारगेट करें, हर जगह पर एक रेगुलेटरी, एक गवर्निंग बॉडी होती है जो इन सब चीजों के ऊपर क्रूशियली जो है वो टेस्ट करती है। उसके बाद सेकंड चैलेंज आता है एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए, ये तो हमने इंश्योर कर दिया कि नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कितने एक्सेसिबल हैं और कितने अफोर्डेबल हैं। मतलब द होल सोल पॉइंट इज कि लोगों की जान को हम बचा सकें, द होल सोल पॉइंट इज कि लोगों की हेल्थ को हम इंश्योर कर सकें कि लोग अच्छे से जिए, लंबा जिए, हेल्दी लाइफ रहे और एक सुकून भरा जो जीवन है वो जी पाए अपने परिवार के साथ। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि भैया वो कितने लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं? क्या हर एक इंसान उसको एक्सेस कर सकता है? क्या लो एंड मिडिल इनकम जो क्लासेस होते हैं वो उसको एक्सेस कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे वो उन पर्टिकुलर चीजों को? क्या रूरल एरियाज तक हम उसको पहुंचा सकते हैं? इसलिए सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर मैं इन सब चीजों को एज अ चैलेंज पेश कर रहा हूं यहां पर, तो इनको आप एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ करना है और आप इन चैलेंजेस से वाकिफ हैं, तो इनमें अपॉर्चुनिटी की तरह आप इनको सीख करके उन तमाम चैलेंजेस को यहां पर एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैलेंज, एथिकल कंसिडरेशन, जहां पर हम लोग बात करते हैं द यूज ऑफ एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजीज सच एज जीन एडिटिंग, स्टेम सेल रिसर्च रेजेस एथिकल एंड सोशियल क्वेश्चंस, जो पता होने चाहिए सभी लोगों को। यानी कि छोटे और सरल शब्दों में इस बात को समझें तो अभी जीन्स के साथ हम जो है थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। एज आई सेड कि किसी को चार या पांच जनरेशन से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और वो जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो पास ऑन होती जा रही है, अब लेकिन वो टाइम आ गया है कि आप जीन्स की स्टडी कर सकते हैं, सेल्स की स्टडी कर सकते हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं, आप उनको वहां पर फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है, दैट्स व्हाई आई सेड कि रेगुलेटरीज के थ्रू होकर गुजरना और क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू होकर गुजरना इज नॉट एन इजी प्रोसेस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट योर टाइम, नॉट जस्ट योर एनर्जी एंड नॉट जस्ट योर मनी, मतलब उससे भी कहीं गुना ज्यादा चीजें वहां पर इन्वॉल्व होती हैं। सो दैट्स हाउ ये सारे चैलेंजेस जो है वो मैटर करते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब इसमें हम ये भी समझना चाहेंगे कि भैया कोविड 19 के बाद से कितना कुछ बदला है। नो डाउट चीजें बहुत सारी चेंज हो गई हैं कोविड 19 के बाद से, जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है और जितना फास्ट पेस्ड हुआ है, मतलब इट वॉज नॉट इवन ईजी टू इमेजिन कि इतना जल्दी हो पाएगा क्या। महज कुछ सालों में सब कुछ शिफ्ट हो गया। By the way, that's the potential of human beings. But यहाँ पर हम बात करेंगे impact of COVID-19 on biomedical industry. पहली चीज, acceleration of innovation. No doubt, हम सभी ने देखा COVID-19 pandemic जब से आया तब से innovation में कितना तेजी से हमने देखा है कि वो accelerate हुआ है in biomedical industry. जैसे कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट, जैसे आपने देखा कि दूर से टेम्परेचर आपको चेक किया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी जो है हर घर में आ गई, ऑक्सीमीटर्स हर घर में आ गई, साथ साथ कितना फास्ट पेस जो है हमने देखा कि कोविड 19 के चेकअप्स किए जाने लगे, वैक्सीन्स बना दी गई और वो ओवरनाइट पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ये सब चीजें हो पाई कोविड 19 का जो इम्पैक्ट था उसके बाद, तब क्योंकि लोगों की सेफ्टी इंश्योर करनी थी इसलिए डे एंड नाइट काम किया गया, आरएनडी को भी बढ़ा दिया गया, हर चीज मतलब वहां पर बढ़ा दी गई सो दैट कि लोगों की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस।
अब ये एक नई चीज आप कह सकते हैं, हालांकि नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बट स्टिल फ्यूचर पेंडेमिक्स को यहाँ पर देखा जा सकता है, उनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज को देखा जा सकता है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, जैसे कोविड 19 के भी बहुत सारे वेरियंट्स आए, उनके बारे में हमने आपको बताया, ऐसे मल्टीपल वायरस आए जिनके बारे में हमने आपको बताया, ब्लैक फंगस जैसी चीजें हमने आपको बताई, क्योंकि अब कोई भी चीज आएगी तो हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। जैसे कोविड 19 का अगर पहली बार किसी ने सुना होगा तो उसने लिया होगा, ठीक है यार एक वायरस है, आया आया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यार ये पूरी दुनिया बदल के रख देगा, सारी दुनिया चेंज होगी उसके बाद से। सो दैट्स हाउ कोविड 19 चेंज दिस एंटायर वर्ल्ड। अब अगर कोई भी वायरस आता है, कुछ भी ऐसा नया टर्म आता है, तो उसके ऊपर जो है अच्छे से रिसर्च की जाती है, देखा जाता है कितनी पोटेंशियल है और कितना जल्दी वो ट्रांसमिट होता है, कहीं उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, ये नहीं फ्यूचर में एक नई पैंडेमिक तो हमारे सामने नहीं खड़ा है। इस तरीके से अब हम ज्यादा अलर्ट हो गए हैं और R&D के ऊपर अगेन ज्यादा जो है कॉस्ट इन्वॉल्व हो गई है। इससे जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई है इन R&D, बट नो डाउट ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सही है, ह्यूमन बीइंग्स की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सो दैट्स हाउ कोविड 19 की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगा है, उनको स्टडी किया जाने लगा है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक है तो पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन बायोमेडिकल इंडस्ट्री इज फ्यूचर आउटलुक। बायोमेडिकल इंडस्ट्री जो है ग्रोथ एंड इनोवेशन की तरफ बढ़ रही है, इन कमिंग ईयर्स हमें बहुत रैपिडली दिखाई दे रही है, बिकॉज AI एंड मशीन लर्निंग, जेनोमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजीज, ये बहुत तेजी से जो है इनके ऊपर काम किया जा रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये डेवलपमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेरेपीज एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी, ये हम वहां पर देख पा रहे हैं। इंश्योर किया जा रहा है कि लोग सेफ है, इंश्योर किया जा रहा है कि कम से कम टाइम में जो है मेजर से मेजर प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सके, ठीक किया जा सके, क्योर किया जा सके, ताकि ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके और साथ साथ जो पेशेंट्स हैं उनको एक अच्छी लाइफ दी जा सके, सो दैट वर्ल्ड जो है एक पीसफुल तरीके से यहां पर सर्वाइव कर पाए। सो दैट्स हाउ कोविड 19 के इम्पैक्ट से चीजें बदली। तो अभी तक हम समझ चुके हैं बायोमेडिकल इंडस्ट्री को, उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आई है। अब इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले बता देना चाहता हूं कि आज की जो कंपनी है दैट इज एल्यूसी डेटा। अब कंपनी को समझना बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री को अच्छे से समझ चुके हैं, चैलेंजेस को आप जान चुके हैं, इंपैक्ट ऑफ कोविड 19 आप समझ चुके हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को आप समझ चुके हैं, की सेगमेंट्स को आप समझ चुके हैं, आप इनसाइट्स को समझ चुके हैं, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी एनवायरमेंट, आपको ओवरव्यू मिल चुका है, सब कुछ आपको पता है। अब एल्यूसी डेटा को थोड़ा समझते हैं। सो एल्यूसी डेटा इज अ बायोमेडिकल डेटा कंपनी, जहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, मतलब यहां पर AI को प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, लार्ज स्केल पर विजुअलाइज किया जाता है, साथ साथ यहां पर मेटाबोलोमिक्स में डील किया जाता है, जेनोमिक्स में डील किया जाता है, प्रोटोमिक्स में डील किया जाता है। इस कंपनी का जो एम है, अगर आप एक लाइन में इसको समझना चाहें, दैट इज टू एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स जो एनहेंस करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा। अब भैया मेरे मुंह से भारी भरकम शब्द तो आपने सुन लिए और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को समझ आया होगा, लेकिन साथ साथ थोड़ा स्कोप छोड़ रहा हूं कि कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो देखिए इसको थोड़ा समझते हैं कि बायोलॉजिकल डेटा को समझ पाना इजी नहीं होता है। जैसे अगर 800 करोड़ से ज्यादा इस दुनिया की आबादी है तो 800 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीन्स जो हैं वो अलग होंगे, उनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, हर एक बॉडी की अपनी पोटेंशियल है, हर एक स्ट्रक्चर अलग है, हर एक बंदे का स्किन का टाइप अलग है, बॉडी की रिकवरी का जो फेज होता है हर इंसान का अलग होता है, हर चीज अलग होती है, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये समझना। इसी बिहाफ पर कुछ चीजें कॉमन रखी जाती हैं, कुछ चीजों को यहां पर सेम पेज पर रखा जाता है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली वही एल्यूसी डेटा करती है। और ये कैसे हेल्पफुल है बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके डेटा के बिहाफ पर, इसका जो भी वहां पर एनालाइज करने का तरीका है, एग्जामिन करने का तरीका है, जितना ये डेटा को रीड करते हैं, जितना R&D कंपनी करती है, उससे बहुत हेल्प होती है नए ड्रग्स बनाए जाने में। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है इसकी USP क्या है, तो एल्यूसी डेटा क्या ऐसा अलग करती है, देखिए ये ऑपरेट तो करती है विद इन बायोटेक एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये कंपनी की USP है।
जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया है यहां पर, जहां पर एआई एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी डाटा प्रोवाइड किया जाता है। एक्शनेबल इनसाइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा सेट्स, जहां पर जो रिसर्चर्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो डिसीजन लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि अब उनके पास जो दिशा है, जो थोड़ी सी ब्लरी एक डायरेक्शन थी, अब वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। तो इसमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, तो ड्रग्स की जो डिस्कवरी का प्रोसेस है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा और जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि अफोर्डेबल होगा हेल्थ केयर। जो नए ड्रग्स बनाए जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डील करने में सक्षम होंगी, वो अब अफोर्डेबल हो पाएंगे, एक्सेसिबल हो पाएंगे। और जितना ज्यादा इस डेटा को रीड किया जाएगा, जितना ज्यादा इस डेटा के ऊपर काम किया जाएगा, जितना ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को यहां पर फिक्स किया जाएगा, उतना ही जो है हमें देखने को मिलेगा कि दवाइयां जल्दी जल्दी डिस्कवर की जा रही हैं, उतना ही हमें देखने को मिलेगा कि कैसे वो दवाइयां, वो ड्रग्स जो है वो एक्सेसिबल हो गए हैं, वो अफोर्डेबल हो गए हैं लो इनकम और मिडिल इनकम लोगों के लिए भी। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग, इट्स ऑल वेल कनेक्टेड। जैसे मैंने कहा कि आप इंडस्ट्री को समझ लीजिए, इंडस्ट्री को अगर आपने समझ लिया तो कंपनी को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इंडस्ट्री को तो हम जानते ही, अभी तक सब कुछ हमने जाना उसके बारे में, कैसे डिस्कवरी की जाती है, कैसे अलग अलग सेगमेंट्स में डील किया जाता है। वहीं पर अगर एल्यूसी डेटा जैसी कंपनीज की बात करें, तो ये कंपनीज आती हैं लेकर एआई एंड मशीन लर्निंग, जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत सिंपल वर्ड्स में प्रोवाइड करती है। दैट्स हाउ नई कंपनीज की हेल्प होती है, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी है तो वो रिसर्च करने में काफी उसकी मदद मिलने वाली है उसको इन सब डेटा शीट्स के बिहाफ पर। कंपनी स्टार्ट हुई 2015 में, कंपनी को स्टार्ट किया अभिषेक झा एंड श्वेताब पाठक ने। कंपनी का अगर आप बात करें तो विजन बहुत क्लियर है, जहां पर ये डेटा ड्रिवन अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जहां पर क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको फिक्स करने का काम ये दो लोग कर रहे हैं, अभिषेक झा एंड श्वेताब पाठक। अभिषेक झा की अगर आप बात करेंगे तो अभिषेक झा की अगर एजुकेशन को हम समझें तो इनके पास बैचलर्स डिग्री है इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम आईआईटी रुड़की, साथ साथ मास्टर्स डिग्री भी है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इससे ही पता लगता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अपनी पढ़ाई भी उसी में की है, तो एक अच्छी खासी नॉलेज जो है वो रखते हैं। अब जानते हैं इनके थोड़े से एक्सपीरियंस को। तो एल्यूसी डेटा कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने काम किया है एज अ बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट एट येल यूनिवर्सिटी, जहां पर इन्होंने जो है इंटरेस्ट डेवलप किया इन यूटिलाइजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, या फिर कहें कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करके सिंपल बनाना, जो है वहां पर उस एक चीज में इंटरेस्ट डेवलप हुआ अभिषेक का। एंड द नेक्स्ट नेम इज श्वेताब पाठक। श्वेताब की जो बैचलर डिग्री है वो है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, साथ साथ उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट की है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेनोसेता। अब श्वेताब की अगर आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वर्सेटाइल है, बट एक फील्ड में मल्टीपल चीजें इन्होंने एक्सप्लोर की है इन मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स, जहां पर वेरियस रोल्स इन्होंने प्ले किए, जहां पर टेक इंडस्ट्री को अच्छे से समझा बिफोर को फाउंडिंग एल्यूसी डेटा। तो ऐसी चीजें काम करती हैं, मतलब एक इंसान लेकर आए अपनी नॉलेज एआई एंड मशीन लर्निंग में, दूसरे इंसान लेकर आए अपनी नॉलेज इन बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स हाउ दोनों ने मिलाकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, और नॉट जस्ट एक कंपनी खड़ी की बल्कि एक मेजर प्रॉब्लम को भी वहां पर ये एड्रेस कर रहे हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स जो बायोटेक्नोलॉजीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये फिक्स कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ हेल्थ केयर सेगमेंट हमारा हमारे देश में इंप्रूव हो रहा है। अभी तक बहुत कुछ हम कंपनी के बारे में जान चुके हैं, कंपनी की यूएसपी पता है, फाउंडर्स के बारे में पता है, इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, की सेगमेंट्स को समझ चुके हैं, हम इस इंडस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं वो आपको बता चुके हैं, रेगुलेटरी एनवायरमेंट को बता चुके हैं, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स को भी हम बता चुके हैं, कैसे कैसे इनोवेट किया जाता है, कहां कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, मार्केट ट्रेंड्स बता चुके हैं, चैलेंजेस बता चुके हैं, इंपैक्ट्स ऑफ कोविड-19 बता चुके हैं, साथ साथ एल्यूसी डेटा के बारे में सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं ग्रोथ एंड इम्पैक्ट की। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, सिंस इट्स इंसेप्शन, इसने बहुत तेजी से ग्रो किया है, बहुत रैपिडली ग्रोथ हमने देखी है, लेकिन ये
इतना इजी नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया कि दो इंसानों का वर्सेटाइल एक्सपीरियंस यहां पर काम आया है। एक इंसान वहां पर नॉलेज लेकर आते हैं जो डील कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी, दूसरे इंसान नॉलेज लेकर आते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग की। दोनों के पास मल्टीपल रोल्स का एक्सपीरियंस था, अलग अलग फील्ड्स की जो है पढ़ाई इन्होंने करी, और एक टेबल पर जब वो दोनों मर्ज हुए दैट्स हाउ ये कंपनी बड़ी हुई, क्योंकि दोनों का पैशन भी सेम था कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, दैट्स हाउ यहां पर हेल्थ केयर काफी इम्प्रूव हुआ है। आई होप अब इसी के साथ जो आज की केस स्टडी थी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। आपका फीडबैक क्या है इसके ऊपर 8010781078 पर बताइएगा जरूर। नाउ विद दिस नोट शो को खत्म करेंगे, फिर मुलाकात होगी फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खैरियत से रहें, सुनते रहें रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। गुड बाय, नमस्कार।

ख्याल करना कि सुख से भी बड़ी संभावना दुख में है, क्योंकि आदमी सुख में तो सो जाता है, दुख में जागता है। घर बन जाए तो स्वभाव का हम कहते हैं हमारे गुरु की कृपा, घर जल जाए तब भी तुम हिम्मत रखना कहने की हमारे गुरु की कृपा। जो घर बारे आपनों चले हमारे संग, कबीर ने कहा है, जो सब जला जलू के तैयार हो जाए वो हमारे साथ चल सकता है। तो ठीक ही हुआ माणिक बाबू, आग भी लग गई, अग्निकांड में जल भी गया, संजय गांधी भी डूबे, 5 लाख भी ले गए, स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा है, हृदय भी दुर्बल हुआ है, ये सब भी ठीक है। इस सब को भी वरदान में बदला जा सकता है, सिर्फ जाग के इसे देखना, इससे तादात्म्य मत बनाना। जो घर जल गया वो अपना था ही नहीं, और जो हृदय दुर्बल हो गया है वो भी तुम्हारा असली हृदय नहीं है, और जो शरीर बूढ़ा होने लगा है वो भी तुम नहीं हो, और जो रुपए तुम्हारे डूब गए उसमें तुम्हारा क्या था, किसका क्या है। हम ऐसे ही आते बिना कुछ लिए और बिना कुछ लिए जाते, इसमें अगर हम साक्षी हो पाए, जाग के देख पाए, तो परम प्रसाद उपलब्ध होता है। और ध्यान रखना, दुख में जागने की संभावना ज्यादा है, सुख में तो आदमी सो जाता है, सुख में जागना ही कौन चाहता है। जब तुम कोई सुखद सपना देख रहे हो फिर कोई जगाने लगे तो तुम कहते हो ठहरो भी, अभी पूरा सपना तो हो जाने दो, लेकिन दुखद सपने में कोई जगाए तो तुम धन्यवाद देते हो। फिर ख्याल करना, कहते हैं ना हम कि दुख में भगवान की याद आती, दुख में हमें दिखाई पड़ना शुरू होता है जगत का सत्य, सुख में तो आंखों पर पर्दे पड़ जाते और झूठ सच मालूम होने लगता है, दुख में असलियत दिखाई पड़ती। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कि दुख है, पहला आर्य सत्य अनुभव में आना शुरू होता है, बुद्ध के वचन सार्थक होने शुरू होते हैं कि दुख है, जरूर दुख है। अब इस दुख के साथ अपना तादात्म्य मत करना, ये ऐसा मत सोचना कि मैं दुख हूं तो सौभाग्य की घटना घट जाएगी। दूर खड़े रहना, देखते रहना, जो हो रहा है वो दृश्य है, मैं देखने वाला हूं। अगर हम दृष्टा होकर खड़े हो जाएं तो फिर कोई विचलित कर नहीं पाती बात, फिर हम असंग मन, निर्लिप्त मन, अकंप मन अपने भीतर इतने दूर बने रहते हैं इस जगत में होकर जितने दूर हुआ जा सकता है। जगत में होना और जगत में न होना एक साथ घट जाते, और जब दोनों बातें एक साथ घटती हैं तभी कुछ घटा, तभी जानना कुछ घटा, तभी जानना कि मेरा संन्यास फलित हुआ। तुम्हारे बाबू ठीक ही हुआ है, इस सबको सौभाग्य मानना, इस सबके बीच शांत भाव से देखते रहना, ये भी चला जाएगा। एक सूफी कहानी, एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसने अपने वजीरों को कहा कि मुझे कुछ ऐसा सूत्र चाहिए जो हर हालत में काम आ जाए। वजीरों ने बहुत सोचा, ऐसा सूत्र जो हर हालत में काम आ जाए, उनकी कुछ समझ में ना पड़ा। वो एक फकीर के पास गए, उस फकीर ने एक सूत्र लिखा एक कागज पर, एक अंगूठी में बंद किया और सम्राट को लाके अंगूठी दे दी और कहा इसे खोलना तभी जब और कोई सहारा न रह जाए, जब सब तुम जो कर सकते हो कर चुके हो और कुछ सहारा ना रहे तभी खोलना, जल्दी मत खोजना। ये सूत्र ऐसा है कि कठिनाई की आखिरी घड़ी में ही इसका अर्थ प्रकट होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली, कई बार उत्सुकता भी जगी लेकिन वचन दे दिया था तो खोला नहीं। फिर देश पर हमला हुआ कोई 10 साल बाद, सम्राट हार गया, भागा अपने घोड़े पर, जंगल में दुश्मन पीछा कर रहे हैं, दुश्मन करीब आते जाते हैं, उसकी घबराहट बढ़ती जाती, तभी उसे अचानक अपने हाथ में अंगूठी की याद आई और तभी वो घड़ी भी आ गई, लेकिन सोचा कि अभी भी ऐसी घड़ी कहां आई है, अभी भी बच सकता हूं, अभी भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन

0: घड़ी भी आ गई, आगे जाके रास्ता समाप्त हो गया, नीचे खाई थी, पीछे लौट नहीं सकता था, दुश्मन करीब आता जा रहा है, घोड़ों की टाप और भी करीब आने लगी, और भी करीब आने लगी। उसने आखिरी क्षण तक धीरज रखा। जब उसे लगा कि बस अब क्षण भर की देर है कि दुश्मन आ जाएंगे, उसने अंगूठी खोली, कागज निकाला, कागज में कुछ भी न था, एक छोटी सा वाक्य लिखा था, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। एक क्षण में जैसे एक बिजली कौन गई, एक क्षण में उसे दिखाई पड़ा अपना सब जीवन, सब बीत गया, तो स्वभाव था यह भी बीत जाएगा, रुकता क्या है। बचपन नहीं रुका, जवानी नहीं रुकी, पिता नहीं रुके, पत्नी नहीं रुकी, बेटे नहीं रुके, कुछ नहीं रुका, आया और गया। गंगा कितनी बह गई, जीवन के इस चित्र को देखते वो तो भूल ही गया क्षण भर को कि दुश्मन पास, और जब वो जागा इस जीवन की कथा से, तो अचानक उसने पाया घोड़ों की टाप सुनाई नहीं पड़ती, वे किसी और दिशा में मुड़ गए थे। 7 दिन बाद वो पुनः जीत गया, वापस अपने महल में आ गया। जब महल में आया तो बड़ा उसका स्वागत हुआ, असरफियां लुटाई गईं, फूल फेंके गए, सारे गांव में दीप मालिका जलाई गई, सारा गांव पागल होकर नाचा, उत्सव मनाया। जब ये सारे उत्सव में अपने हाथी पर सवार उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी, तब एक क्षण को फिर उसने अंगूठी खोली, ये सुख, उसने फिर वो कागज पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। उसने अंगूठी वापस कर ली, जैसा वो अलिप्त हो गया था दुख की घड़ी में, वैसा ही अलिप्त हो गया सुख की घड़ी में भी। कहते हैं वह सम्राट बिना कुछ किए समाधि को उपलब्ध हो गया। तो मानिक बाबू, इन घड़ियों का उपयोग करना, जो हो होता है, बीत जाता है। एक ही चीज है हमारे भीतर जो कभी नहीं बीतती, वो हमारा साक्षी भाव है, वही है शाश्वत, सनातन, सदैव। उस एक को पकड़ के ही आदमी परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है। आखिरी प्रश्न, आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते हैं, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं, इससे शुभ और क्या होगा। आंसू बहते हैं अर्थात आंसू कुछ कहते हैं, आंसू दुख के ही थोड़ी होते हैं, आंसू आनंद के भी होते हैं, और आंसू सदा उदासी का ही थोड़ी प्रमाण लाते हैं, आंसू उत्सव की भी खबर लाते हैं। आंसू का तो एक ही अर्थ होता है, कुछ जो हम शब्दों से नहीं कह पाते वो आंसू से कहना पड़ता है। आंसू तो बड़ी गहरी अभिव्यक्ति है। आंसू का अर्थ पूछते हो, आंसू के अर्थ यदि भाषा में समा पाते तो फिर मैं रोता क्यों, कविता और कहानी ना लिखता। जब भाषा असमर्थ हो जाती, आंख से आंसू बहते, जो बात हम किसी भी विधा में नहीं कह पाते उसे रो रो कर कहते। आंसू कुछ कहते, कुछ ऐसा कहते हैं जो और किसी विधा में कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा कहते हैं जो शब्दों में अटता नहीं, बनता नहीं, शब्दों की सीमा है, आंसू असीम है। तो आंसू के संबंध में एक बात समझना, जब भी तुम्हारे मन में कोई भाव इतना घना हो जाएगा, चाहे दुख चाहे सुख, चाहे शांति चाहे अशांति, चाहे उदासी चाहे उत्सव, कोई भी भाव जब इतना घना हो जाएगा कि तुम उसे संभाले ना संभाल सकोगे, तो वही भाव आंसुओं में बहता है। आंसू निर्भर करते, और इनको कुछ रोकना मत। कभी कभी मेरी बात सुन के आनंद के आंसू बहेंगे, कभी कभी मेरी बात सुन के तुम्हें अपने सारे जीवन का दुख याद आ जाएगा, सारे जीवन की व्यर्थता याद आ जाएगी, सारे जीवन का घाव जैसे मैंने छू दिया हो पीला बहने लगेगी, तब भी आंसू बहेंगे। दोनों हालत में शुभ है। आंसू तो इतना ही कह रहे हैं कि तुमसे मेरे हृदय का नाता हो गया, अब नाता बुद्धि का ना रहा, और बुद्धि का जब तक नाता है तुम विद्यार्थी, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन शिष्य, जब तक बुद्धि का नाता है तब तक मैं तुम्हारा शिक्षक, जिस दिन हृदय का हो गया उस दिन गुरु। जिस दिन तुमने आंसुओं से सेतु बना लिया, जिस दिन तुमने आंसुओं में पातियां लिखकर मेरी तरफ भेज दी, दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं, जो कुछ भी मुझको मिल पाया उतने से संतोष मुझे था। घिरा अभावों की सीमा में फिर भी तो परितोष मुझे था। परब अकुलाया सा धीरज असहयोग करने को आतुर अश्रु स्वयं ही ढलक गए। पलकों का अपराध नहीं, गीतों का अपराध नहीं। बादामी नैनों से प्रतिबल दिया तुम्हीं नेह निमंत्रण, समझ बूझ आंचल उलझाया फिर क्यों मुझ पर दोषारोपण। रतनारे सपनों ने पढ़ ली मिलनातुर मंत्रों की भाषा, सोम स्वयं ही छलक गया है। अधरों का अपराध नहीं, गीतों का अपराध नहीं। प्यार भरे दो शब्द कहे थे पर तुमने रच दिए कथानक, ज्ञात नहीं था बदनामी के व्यग उड़ेंगे कभी अचानक। आकर्षण की विष कन्या से अनजाने ही ब्याह रचाया, सुरभि स्वयं ही बिखर गई है। भ्रमरों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं है। अश्रु स्वयं ही धुलक गए हैं, पलकों का अपराध नहीं है, गीतों का अपराध नहीं। दर्द स्वयं ही मचल गया है, गीतों का अपराध नहीं। जो स्वयं हो शुभ, जो सहज हो शुभ। आंसू बहे तो रोकना मत, ना बहे तो बहाने की चेष्टा मत करने लगना। जो सहज हो शुभ, जो असहज हो अशुभ। आंसू बहे तो बह जाने देना, संकोच मत करना। यहां कोई लोकलाज थोड़ी करनी है। कहा ना मीरा ने, सब लोकलाज खोई। यहां भी रोके रखोगे आंसुओं को तो फिर कहां रोओगे, और अगर आंसू रोक लिए तो फिर मुस्कुराहट भी रुक जाएगी, क्योंकि उसी द्वार से मुस्कुराहट भी आती है जहां से आंसू आते हैं, वहीं से गीत भी पैदा होते हैं जहां से आंसू पैदा होते हैं, वहीं से उत्सव भी झरता है जहां से उदासी पैदा होती। तुम हल्के बनो, तुम सहज बनो, जो आए उसे आने दो, जैसा आए वैसा ही आने दो। तुम जरा भी हेरफेर ना करना। दोनों तरह की संभावनाएं, कुछ लोग जो नहीं रो सकते वो भी चेष्टा कर सकते रोने की, वो गलत हो जाएगी। अभी अपने से नहीं आए हैं तो प्रतीक्षा करो, और कुछ लोग जो रो सकते हैं उनको भी भय लगता है कि रोना कि नहीं, कोई क्या कहेगा, पास पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, गांव में खबर होगी तो लोग समझेंगे पागल, बुद्धि खराब हो गई, तो तुम भी प्रभावित हो गए, सम्मोहित हो गए, लोग कुछ कुछ कहेंगे, तो आदमी रोकता है। नहीं, रोकना मत, क्योंकि यहां अगर हम कुछ भी काम करने इकट्ठे हुए हैं तो वो काम सहजता में ही हो सकता है। यहां तो मैं एक गीत गा रहा हूं, यहां तो मैं तुम्हारे हृदय के तारों को छेड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यहां कुछ सिद्धांत थोड़ी दिए जा रहे हैं, यहां तो एक साधना की जा रही है। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रणय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक। रागे हैं लाचारे मेरी, ताने बांध तुम्हारी मेरी, इन रंगीन मृतक खंडों पर अमृत रस ढुलका दो मालिक। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, संस्कृति का बोझ न छू, छू मत इतिहास लोक, छू मत माया न ब्रह्म, छू मत तू हर शोक, सिर पर मत रख अतीत, एक गीत एक गीत। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रणय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक। गीत हो कि जी का हो, जी से मत फीका हो, आंसू के अक्षर हो, स्वर अपने ही का हो, प्रलय हार प्रलय गीत, एक गीत एक गीत। मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, प्रणय प्रलय की मधु सीमा में जी का विश्व बसा दो मालिक। यहां तो प्रभु का गीत तुम सुन सको इसका प्रयास चल रहा है, मैं तुम्हारे हृदय के तार छेड़ सकूं इसके लिए तुम्हें राजी कर रहा हूं। ये सारी बातें कि गीता की, कि धम्मपद की, कि जिन सूत्रों की बहाने, इन बहानों से तुम्हारे हृदय के तार किसी तरह छिड़ जाएं, उनमें झंकार उठे। तुम सहज होगे तो ही झंकार उठ सकेगी। मैं चाहता हूं तुम रोमांचित हो जाओ, तुम्हारा रोआ रोआ कपने लगे, प्रभु के लिए पुकार से, सत्य की आकांक्षा से, अभीप्सा से, उस यात्रा में सहजता पाथे, पुण्य पाथे, वही कलेवा है उस यात्रा में मार्ग का। तो जिनकी आंखें सक्षम है रोने को, रोकना मत, उन्हीं आंखों से अभी आंसू बहते, उन्हीं आंखों से रोशनी भी बहेगी। आंसू साफ कर देंगे रास्ते को ताकि रोशनी बह सके। और ये जो घटना घटती है ये बुद्धि की नहीं, हृदय की है, ये जी की है, ही की है। इसे तो वही पा सकते हैं जो पागल होने को तैयार है। ये मतवालों की दुनिया है, यहां तुम्हें मैं थोड़ी शराब पिला सकूं तो काम पूरा हो गए, यहां से तुम थोड़े डगमगाते लौटो तो मैं सफल हुआ। तुम कहीं पैर रखो और कहीं पड़ने लगे तो बात हो गई। एक तरफ तुम बेहोश हो जाओ तो दूसरी तरफ होश जगता है। इस संसार के प्रति बेहोशी आ जाए तो परमात्मा के प्रति होश आता है। यहां तुम अगर बहुत ज्यादा होश से जिए, संभल संभल के जिए, नियंत्रण से जिए तो परमात्मा में कभी भी न जाग सकोगे। और ध्यान रखना, धन्य भागी हैं वे जो यहां सो जाएं और वहां जाग जाएं। तो लोकलाज की फिक्र छोड़ो। पूछा है आपको सुनकर आंसू ही आंसू बहते, रोके नहीं रुकते, मैं क्या करूं? रो, करने को क्या है? कर करके तो तुमने सब खराब किया है। करने से ही तो कर्म पैदा हुआ है। करो मत, अब होने में बहो। भगवान जेतवन में विहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था, कारण न हो तो कारण खोज लेता था, कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान न दे तो निंदा करता है, और कोई दान दे तो कहता अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता है। शेष सारे संसार की निंदा और अपने परिवार की प्रशंसा, यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत न था, शायद इसलिए वह संन्यास्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसे वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी, वह तो अत्यंत हीन वृत्तियों वाले परिवार से आया था। भिक्षुओं ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ है उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है, वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता है, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्मों में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही कमाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से तो यह कभी का निर्वाण का अधिकारी हो गया होता। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर ले सकता था। भिक्षुओं, इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित करती है। ये दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकना है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें? कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें? और कोई हमें तो दान न दे और दूसरों को दान दे तो हम कैसा भाव रखें? उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने भगवान ने आज की पहली दो गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खानपान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। ददाति वे यथा सद्धम यथा प्रसादनम जनो
1: तथ यो मंकु भवति परेशम।

अहंकारी था, यह बात पहले समझ लेने जैसी। लोग धन भी जोड़ते अहंकार के लिए और त्याग भी करते अहंकार के लिए। पहले अकड़ के चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ के चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं हूं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता, कभी धन कमा के, कभी बड़ी दुकान चला के, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर, लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, ये भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पे पत्थर जैसा रख जाता है। ये ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं और तुम्हें पंख लग जाते। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांतारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, ना तो कोई साधारण है ना कोई असाधारण, अस्तित्व एक है। इसलिए कौन साधारण होगा, कौन असाधारण होगा? तो या तो कहो सभी साधारण है तब भी सच, या कहो सभी असाधारण है तब भी सच। लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती, कोटियां बांटी की भूल हो जाती, वर्ग बांटे की भूल हो जाती, वर्ण बनाए की भूल हो जाती, कहा कि ब्राह्मण शूद्र भूल हो गई, कहा कि ऊंचा नीचा भूल हो गई, कहा कि शुभ अशुभ भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद है वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो ये कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बड़ा साधारण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घोड़े से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वो बोल सकते तो वो भी कहते कि तुम हो क्या, आदमी मात्र असाधारण हम है। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वो भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते, हम असाधारण हैं। कोई ना कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है, साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड़ी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट इस दशा को उपलब्ध होते। ये कथा कहती उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद संन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही संन्यास ले तो संन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जाग के कोई संन्यास ले तो संन्यास की सार्थकता है। कोई ये देख के संन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो संन्यास है, नहीं तो संसार से संन्यासी हो गए। अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया, भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। ये झूठ चल नहीं सकता, इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, ये प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे

मेरे कुछ भी नहीं है ये सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है, अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती है। दूसरे कुछ भी नहीं है ये बताना ही पड़ेगा, ये रोज रोज बताना पड़ेगा। तो वो युवक निंदा करने में संलग्न रहता और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में आश्रमों में तुम्हारे तथा कथित साधु सन्यासी को सुनो, वो निंदा कर रहा है, वो उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो, और शायद वो भी तुम्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ये तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि स्त्री के शरीर में क्या है, हड्डी मांस मज्जा मल मूत्र और कुछ भी नहीं है, जब वो तुम्हें ऐसा समझाता हो तो जान लेना उसे अभी स्त्री का रूप आकर्षित करता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहा, तुम्हारे बहाने अपने को समझा रहा है। जब वो सांसारिक जीवन की निंदा करता हो तो वो ये कह रहा है कि देखो हम सन्यासी कैसे पवित्र, कैसे पुण्य को उपलब्ध, कैसे साधु, कैसे सरल, और देखो तुम अपना पाप और अपना नरक। वो अपने को ऊपर रख रहा है, वो तुम्हें नीचे रख रहा है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वो तुम्हें नीचे नहीं रखता, वो तो कहता है तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं, मुझे पता चल गया तुम्हें पता नहीं चला, इतना सा भेद है। ये भी कोई खास भेद है, तुम्हारे जेब में 1000 रुपए पड़े, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े, मुझे पता चल गया मैंने जेब में हाथ डाल लिया तुमने हाथ नहीं डाला, ये भी कोई बड़ा भेद है। 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड़े, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे, ना भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध है ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं, बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम में वही है जो बुद्ध में, तुम में वही है जो कृष्ण में, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में, रत्ती भर कम नहीं। सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ खोलकर देखी नहीं, तुमने कभी अपने भीतर टटोला नहीं। बस टटोलने का फर्क है, जिस दिन टटोल लोगे उसी दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो, परमात्मा पापी कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम नारकी हो, परमात्मा कैसे नारकी हो सकता है। तुम हो तो परम अवस्था में, लेकिन तुम लौट के अपनी तरफ देखते नहीं, तुम्हारी आंखें बाहर भटक रही, बाहर भटकती आंखें भीतर के खजाने से अपरिचित रह जाती, बस इतना ही फर्क है। फिर अगर साधु को भी यह न दिखाई पड़े कि फर्क ना के बराबर है ना कुछ है, तो फिर किसको दिखाई पड़ेगा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ, बुद्ध ने कहा फिर एक बात घटी, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उस दिन से मैंने अज्ञानी नहीं देखा। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को यही समझाने में बीता कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जिद करते हो कि हम अज्ञानी, और बुद्धों का सारा प्रयास यही है समझाना कि तुम नहीं हो, तुम्हारी भ्रांति तोड़नी, तुम मालिक हो, तुमने गुलाम समझा हुआ, तुम विराट हो, तुमने छोटे के साथ अपना संबंध बना लिया। आंखें आकाश की तरफ उठाओ, सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आंखें जमीन पर गड़ाए खड़े हो। इससे यह नहीं होता कि आकाश तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी आंखें छोटे में उलझ गई, मगर आंखों की क्षमता आकाश को भी समा लेने की है, कितने ही छोटे में उलझे रहो, जिस दिन आंख उठाओगे उस दिन पूरा आकाश तुम्हारी आंखों में प्रतिबिंबित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ, आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खजाने को देखता है उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता सब खजाना लिए चल रहे, सबके भीतर दीप्त है वो दिया, सबके भीतर रोशनी जल रही, अजीब है
हालत के लोग अपनी रोशनी नहीं देखते, भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में, और धन भीतर पड़ा है, ऐसा धन जिसे तुम चुकाओ तो भी चुके नहीं, जिसे तुम उलीचो तो उलीच ना पाओ, जिसे तुम फेंकते जाओ और बढ़ता चला जाए, ऐसा धन, ऐसा परम धन भीतर पड़ा है। बुद्ध पुरुष तुम्हें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते, तुमने अपने को देखा नहीं है, बस तुम्हें अपने को देखने की सूझ सीख देते हैं। यह युवक सबकी निंदा में संलग्न रहता है, कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, तब तो चूके ही कैसे। जिसको निंदा करनी है वो कारण होगा तब तो चूकेगा ही नहीं, कारण नहीं होगा तब कारण निर्मित करेगा। जिसको निंदा नहीं करनी है वो कारण तो निर्मित करेगा ही नहीं, जब कारण होगा तब भी दया करेगा, तब भी वो कहेगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा जीना तुम जियो, मैं कौन, मैं हस्तक्षेप करूं ऐसा मैं कौन, मैं बाधा डालूं, मैं कहूं कि बुरा भला ऐसा मैं कौन। तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुमने जैसा उसे जीना चाहा है तुम जियो, निंदा नहीं होगी। जीसस के पास एक स्त्री को लाया गया है, गांव स्त्री के खिलाफ है क्योंकि स्त्री ने व्यभिचार किया है, और पुरानी बाइबल कहती है कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हो गया है, और उन्होंने कहा जीसस से पूछ लो, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है, और इससे एक बात ये भी पता चल जाएगी कि पुराने धर्म के पक्ष में है या विरोध में। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो, पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो स्त्री अनाचार करे व्यभिचार में पड़े उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए, तुम क्या कहते हो? क्योंकि जीसस तो हमेशा ऐसा ही कहते थे, पुराने पैगंबरों ने ऐसा कहा लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, तो अब तुम क्या कहते हो? जीसस ने कहा पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो तुम्हें ईंट मारे उसे तुम पत्थर मारना, और जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम उसकी दूसरी भी फोड़ देना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारा कोट छीन ले कमीज भी उसे दे देना, और जो तुमसे कहे एक मील तक इस बोझ को ढो तुम दो मील तक उसके साथ चले जाना, मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कहते हो? पुराने पैगंबर कहते हैं पत्थर मार के इसे मार डालना। उन्होंने एक उपाय खोजा था जीसस को फांसने का, या तो जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर गलत कहते तो भी वो जीसस पर नाराज होते, तो एक तुम ही पैगंबर हो अब तक सब ना समझ ही हुए, या जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर ठीक कहते तो हम कहेंगे फिर क्या हुआ तुम्हारे उस प्रेम के सिद्धांत का कि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा कर देना, पत्थर मार के मारने को मार डालने को कहते हो, हत्या के लिए कहते हो, दोनों हालत में जीसस फंस जाएंगे। गांव बड़ा उत्सुक था, गांव का जो रबाई था जो धर्म गुरु था वो भी आगे खड़ा था, आगे कि पूछो इस युवक से ये क्या कहता है, और जीसस ने एक क्षण सोचा और कहा आप पत्थर उठा ले, नदी का किनारा था पत्थर तो पड़े ही थे ढेर लगे थे, लोगों ने पत्थर उठा लिए, और जीसस ने कहा अब मैं कहता हूं जिस आदमी ने कभी व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार का विचार न किया हो वो पहला पत्थर मारे। वो जो आगे खड़े बड़े बुजुर्ग थे धीरे धीरे भीड़ में पीछे हट गए, धर्मगुरु भी भीड़ में भीतर सटक सरक गया, धीरे धीरे भीड़ छट गई, जीसस और वो स्त्री अकेले वहां छूट गए। वो स्त्री तो उनके पैरों में गिर पड़ी, उसने कहा तुमने मुझे जीवन दान दिया, तुमने मुझे बचा दिया, अन्यथा आज भी मुझे मार डालते, लेकिन पाप तो मैंने किया है। उनसे तो मैं इंकार भी करती रही, तुमसे मैं इंकार भी कैसे करूं, पाप तो मैंने किया है, अब तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो। जीसस ने कहा मैं तुझे सजा देने वाला कौन, ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है, मैं बीच में आने वाला कौन, अगर तुझे लग गया कि पाप है तो अब मत करना, और अगर तुझे लगता हो कि पाप नहीं है तो तेरी मर्जी, जो तुझे पाप न लगे तो जरूर करना। रही बात निर्णय की तो तेरा परमात्मा और तेरे बीच निर्णय होगा, मैं कौन हूं बीच में। उस स्त्री के जीवन में क्रांति घट गई, क्रांति घट गई इसलिए कि इस आदमी ने निंदा नहीं की, इसने कहा मैं कौन हूं, इस आदमी ने कोई वक्तव्य भी ना दिया, इसने ये भी ना कहा कि ये पाप है, इसने कहा तुझे पाप लगता हो तो छोड़ देना, जब तुम्हें पाप लगता है तो छूट ही जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता, दूसरे के कहने से कोई छोड़ता है,
और निंदा तो करना ही मत, निर्णय तो लेना ही मत। दूसरे आदमी के हम मालिक नहीं, उसकी स्वतंत्रता परम है, उसकी गरिमा परम है। उसके ऊपर निंदा का एक शब्द भी उठाना सिर्फ अपनी हीनता की घोषणा है। लेकिन वो युवक कारण होता तब तो चूकता ही कैसे, कारण को खूब बढ़ा चढ़ा लेता होगा। कारण ना हो तब भी कारण खोज लेता था, निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता कि देखो कृपण, देखो कंजूस, मरेगा पापी, नरकों में सड़ेगा, इसी धन की ढेरी पर सांप बन के बैठेगा जब मरेगा तो निंदा करता। और कोई दान देता तो कहता अरे ये भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो, ये क्या मुट्ठी मुट्ठी दे रहे हो। अगर कोई किसी दूसरे को दान देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। उसको देता तब भी नहीं छोड़ पाता था निंदा करना, लेकिन दूसरे को देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। इसके साथ ही साथ उसका दूसरा काम था अपने परिवार की प्रशंसा, अपनी जाति की प्रशंसा, अपने वर्ण की प्रशंसा। ख्याल करना, तुम जब अपने देश की प्रशंसा करते, अपनी जाति की, अपने वर्ण की, अपने धर्म की, अपने कुल परिवार की, तो तुम वस्तुतः क्या कर रहे हो? तुम प्रकारांतर से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जब तुम कहते हो भारत देश धन्य, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं भारतवासी हूं। अगर तुम चीन में पैदा हुए तो होते तो तुम कभी ना कहते भारत देश धन्य, तुम कहते चीन देश धन्य। तुम जहां पैदा होते वही देश धन्य होता। ये देश की प्रशंसा नहीं है, ये बड़ी तरकीब से अपनी प्रशंसा है, ये आत्म प्रशंसा है। तुम कहते हो हिंदू कुल धन्य, जैन से पूछो वो कहता जैन कुल धन्य, बौद्ध से पूछो वो कहता बौद्ध कुल धन्य। ये संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हो गए इसलिए जैन कुल धन्य हो गया। ये संयोग की बात है कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए इसलिए हिंदू कुल धन्य हो गया। ये विश्व भरी बातें हैं, लेकिन इनको तुम इस तरह दोहराते हो कि तुमने जैसे विचार ही नहीं किया इन पर। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो लोग निरअहंकार की शिक्षा देते हैं वो भी इन बातों में पड़े। तुम जैन मुनि से जाकर पूछो तो वो कहेगा जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, बाकी आदमी कोई आदमी थोड़ी, बाकी आदमी तो बस नाम मात्र के आदमी। जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता, जन्म जन्म के पुण्यों से होता है। अब यही आदमी रोज समझाता है निरहंकार अहंकार छोड़ो, और बड़ी गहराई में अहंकार को पोषण दे रहा है। तुम ब्राह्मण से पूछो वो कहता ब्राह्मण होना कोई साधारण बात थोड़ी, असाधारण बात है। तुम पुरुष से पूछो पुरुष कहता है पुरुष होने में धन्यता है, स्त्री होने में दुर्भाग्य। शास्त्रों में लिखा है कि पहले तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ, फिर पुरुष होना बहुत दुर्लभ, फिर ब्राह्मण होना और भी दुर्लभ, फिर इस भारत देश में पैदा होना। ये तो धर्म देश है, यहां तो सदा धर्म की धारा बहती रही, यहां पैदा होना और भी दुर्लभ, बाकी सब तो मलेच्छ। मगर यही धारणा उनकी भी है। और तुम ये मत सोचना कि बड़े बड़े मुल्कों की, छोटे से छोटे मुल्क की भी धारणा यही है। ये धारणा मनुष्य के अहंकार की है। दुनिया में 300 धर्म है और सभी धर्मों के मानने वालों की यही धारणा है। और दुनिया में कितने देश हैं, सभी देशों की यही धारणा है। और अब तो स्त्रियों ने भी घोषणा करनी शुरू कर दी, और ठीक किया है क्योंकि बहुत हो गया। अब पश्चिम में स्त्रियां घोषणा कर रही हैं कि स्त्री होना धन्य भाग है, पुरुष होने में क्या रखा है। पूरब के देशों में बूढ़ों के हाथों से शास्त्र लिखे गए तो बूढ़े कहते हैं बूढ़ों का आदर करो क्योंकि बूढ़ों ने शास्त्र लिखे। पश्चिम में जवान किताबें लिख रहे हैं वो कहते हैं कि 30 साल के ऊपर किसी आदमी का भरोसा मत करना। मैं एक बड़ी मजेदार घटना कल पढ़ रहा था। जेरी रूबिन जिसने इस बात का नारा दिया अमेरिका में कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा मत करना, 30 साल के बाद आदमी बेईमान हो ही जाते, वो ये भूल ही गया ये कहने में कि 30 साल के ऊपर उसको भी एक दिन होना पड़ेगा। जब उसने ये कहा था तब वो 26 साल का था, भूल ही गया होगा जोश खरोश में। फिर वो 32 साल का हो गया। अमरीका में उसके पीछे एक आंदोलन चला इप्पी, और इप्पियों ने सारे अमरीका में तहलका मचा दिया कि 30 साल के ऊपर जितने लोग सब बेईमान। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 30 साल के ऊपर हो गए।
एक दिन वो होटल से बाहर निकला जहां ठहरा हुआ था। बाहर आया तो देखा कि उसकी कार में किसी ने आग लगा दी। वो बहुत हैरान हुआ कि किसने ये किया। जब पास गया तो पता चला वहां एक तख्ती लगी, उस पर लिखा है कि जेरी रूबिन अब तुम 30 साल के ऊपर के हो गए, अब हमारे नेता नहीं रहे। जिनका उसने आंदोलन खड़ा किया था वही उसके विरोध में हो गया, क्योंकि वो 30 साल के ऊपर हो गया। तब उसको पता चला, अभी मैं उसकी किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि तब मुझे पता चला कि 30 साल के ऊपर एक दिन मुझे भी होना पड़ेगा, तब मैं ही झंझट में पढ़ूंगा। पश्चिम में युवक किताबें लिख रहे हैं तो बूढ़ों का सम्मान नहीं, पूरब में बूढ़ों ने किताबें लिखी तो युवकों का सम्मान नहीं, किसी दिन अगर बच्चे किताबें लिखेंगे तो जवानों का भी सम्मान नहीं रह जाएगा। पुरुषों ने किताबें लिखी तो स्त्रियों का अपमान, स्त्रियां किताबें लिखती हैं तो पुरुषों का अपमान। आदमी किस किस भांति अपने अहंकार की पूजा किए चला जाता। हम जो हैं हम प्रकारांतर से उसकी प्रशंसा करते, इससे जागना। ये अहंकार के सूक्ष्म सहारे हैं। मत भूल के कहना कि तुम हिंदू हो तो बड़ा कोई पुण्य हो गया, मत भूल के कहना कि तुम ईसाई हो तो कोई बड़ा पुण्य हो गया। पुण्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ना कुछ हो जाओगे, उसके पहले कोई पुण्य नहीं है। न तुम्हारा कोई देश रहेगा, न कोई जाति रहेगी, न कोई कुल रहेगा, न स्त्री पुरुष का भाव रहेगा। पुण्य तो उस दिन होगा, धन्यता तो उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई रोग न रह जाएंगे, कोई तादात्म्य न रह जाएगा। तुम ये कह ही ना सकोगे कि मैं हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि जैन, तभी तुम धन्य होगे। उसके पहले तो धन्यता झूठी है। वह युवक शायद इसीलिए संन्यास्त भी हुआ था ताकि वो कह सके कि देखो मैं संन्यास्त हूं, सारा जगत पापी है। संन्यास का मजा ही यही है, उससे तुम्हें बड़ी सुगम सुविधा मिल जाती सारी दुनिया को निंदा करने की। संन्यास्त होते से ही तुम एकदम शिखर पर विराजमान हो जाते हो। एक क्षण पहले सड़क पर थे, एक क्षण बाद शिखर पर विराजमान हो जाते। तुम देखते हो जीव दीक्षाएं होती तो कितना शोर शराबा जुलूस निकलता और बड़ी उत्सव मनाया जाता कि कोई सज्जन दीक्षा ले रहे। इसमें उत्सव की क्या बात है। मैं संन्यास देता हूं तो जरा भी आहट नहीं होने देता, क्योंकि आहट की क्या बात है, इसमें उत्सव की क्या बात है। उत्सव तो अहंकार की ही पूजा है। उत्सव का तो मतलब यह हुआ कि तुमने दीक्षा लेने वाले का खूब अहंकार पोषित कर दिया, अभी अकड़ के चलेगा। देखते हैं जैन मुनि हाथ जोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है मुनि और नमस्कार करे ग्रस्तों को श्रावकों को, गैर सन्यासियों को नमस्कार करे मुनि। मुनि सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है, नमस्कार नहीं कर सकता। ये तो हद हो गई। और उनसे जो कि निरअहंकार की बात करते ये हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे में सिर्फ ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। ये सब अहंकार के ही नए नए रूप है, नए नए ढंग है। तो संन्यास्त हो गया युवक, कथा बड़ी मीठी है। कहती कि शायद इसीलिए संन्यास्त हुआ कि ये अहंकार में एक और नया पंख लग जाएगा, एक नया रंग लग जाएगा। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि वो व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता है और व्यर्थ ही अपने कुल की प्रशंसा करता है। उसके कुल में तो कुछ था ही नहीं, कुछ खास बात ही न थी, वो तो साधारण लोग थे, साधारण से भी गए बीते लोग थे। बड़े हीन कुल से वो आया था, बड़ी हीन वृत्तियों वाले कुल से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। 2500 साल पहले बुद्ध ने जो वक्तव्य दिया उस पर फ्रायड और जुंग को ईर्ष्या हो, एडलर परेशान होता अगर इस वक्तव्य का उसे पता चल जाता, क्योंकि एडलर ने अभी जो मनोविज्ञान विकसित किया है उसका मौलिक आधार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हीनता की ग्रंथि। वो कहता है जो लोग जितने हीन होते हैं उतने ही श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। काश उसे बुद्ध की ये कथा पता होती तो उसे ये ख्याल पैदा नहीं होता कि उसने कोई अनूठी बात खोज ली। तुम अगर पुराने शास्त्रों में गहरे उतरो तो तुम चकित हो जाओगे, शायद कोई अनूठी बात खोजने को बची नहीं। होना भी ऐसी चाहिए। कितने अनंत काल से आदमी सोचता रहा है, सब पहलू देख लिए गए, सब परतें उलट ली गई, सब द्वार खोल लिए गए, मगर वहां भी अहंकार का एक खेल चलता है। हर युग कहता है कि जो हमने खोजा वो किसी ने नहीं खोजा, और हर आदमी कहता है कि जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता, मैं मौलिक हूं। ये सदियों से आदमी सोचता रहा है,
हजारों वर्षों से आदमी चिंतन करता रहा है। बड़े बड़े मनीषी हुए,

अच्छा कैसे होगा कुछ तुम्हारे लिए मौलिक होने को। जिससे कृष्णमूर्ति के अनुयायी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं मौलिक, तो उन्होंने अष्टावक्र नहीं पढ़ा, नहीं तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति का एक भी वक्तव्य नहीं है जो अष्टावक्र वक्तव्य से आगे जाता हो। खैर, कृष्णमूर्ति तो शास्त्र पढ़ते नहीं, उनकी जिद है कि वो पुराने शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, चलो उनको क्षमा किया जा सकता है, मगर उनके शिष्य जो दावा करते हैं उनको तो कम से कम इधर उधर देखना चाहिए इसके पहले कि मौलिक होने का दावा हो। ऐसा एक वक्तव्य नहीं है जो आदमी दे सके जो कि पहले नहीं दिया गया हो। यह हो सकता है कि समय ने बहुत धूल जमा दी हो, दूरी हो गई हो, हम भूल भी गए हो, लेकिन जो भी आज है वो कल भी था, परसों भी था, कल भी होगा, परसों भी होगा। हमारी मूढ़ता वैसी ही है जैसे गुलाब का एक फूल जो आज खिला है वो खिलते ही से कहे ऐसा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं खिला, या सूरज आज उगा है वो कहे कि ऐसा सूरज पहले कभी नहीं उगा, कि रात तारे आकाश में फैले हों और घोषणा कर दें कि ऐसी तारों भरी रात पहले कभी नहीं हुई। जो आज हो रहा है वो सदा होता रहा है, आज अनूठा नहीं, सूरज के तले नया कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत बार बातें खोजी जाती हैं, फिर खो जाती, समय की धारा में भूल जाती, फिर खोज ली जाती, इसलिए हर खोज पुनर्खोज है, कोई खोज नई नहीं। बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। एडलर की पूरा मनोविज्ञान इस वचन में आ गया। तुम देखना आदमी के व्यक्तित्वों में झांकना तो तुम पाओगे जहां जहां हीनता की ग्रंथि होती है वहां वहां श्रेष्ठ होने का भाव पैदा होता है। चोर सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, चोर बड़ी जोर से कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है भीतर से, हूं तो चोर ही, सिद्ध तो करूंगा, नहीं सिद्ध कर पाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। चोर अगर चुप रहे तो उसे डर लगता है कि मेरी चुप्पी कहीं मेरी चोरी का प्रमाण न बन जाए। झूठ बोलने वाला सिद्ध करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच। जो लोग बहुत कसमें खाते हैं समझ लेना कि वो झूठ बोलने वाले लोग, नहीं तो कसमें नहीं खाएंगे। हर बात पर कसम, कि भगवान की कसम, कि तुम्हारी कसम। जो आदमी कसमें खाता है ये झूठ बोलने वाला आदमी है, क्योंकि इसे सच अपने आप में काफी है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। इसे लगता है कसम जोड़ो साथ में, अपने आप में तो कुछ है नहीं, कसम की बैसाखी लग जाए तो शायद झूठ थोड़ा चल जाए। सच बोलने वाला आदमी कसम नहीं खाएगा। कसम का मतलब ये होता है झूठ का तुम्हें पता है, अब तुम झूठ को लीपापोती कर रहे हो, अब तुम किसी तरह से प्रमाण जुटा रहे हो कि सच हो जाए। हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। तुमने दुनिया में देखा, अगर तुम बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की जीवन कथा पढ़ो तो तुम बहुत चकित हो जाओगे। उनमें कोई ना कोई हीनता की ग्रंथि थी, इसलिए वो पदों की तरफ भागे। नेपोलियन की ऊंचाई कम थी, 5 फीट 2 इंच, मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही कारण था। वो हमेशा बेचैन था इस बात से कि उसकी ऊंचाई बहुत कम है। वो दुनिया को बताना चाहता था मेरी ऊंचाई कितनी, वो ये दिखाना चाहता था कि मेरे शरीर से मुझे मत तौलो, शरीर में क्या रखा है, मेरी असली ऊंचाई देखो, मेरे सिंहासन से देखो। उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन बनवाया था ताकि उसके ऊपर बैठ कर वो दिखला सके। वो चाहता था सारी दुनिया को जीत लूं ताकि मैं बता सकूं कि मेरी ऊंचाई कितनी। एक दिन वो घड़ी ठीक करना चाहता था, घड़ी जरा ऊंची लगी थी दीवार पर और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसका जो अंग रक्षक था उसने कहा रुकिए महानुभाव, मैं आपसे ऊंचा हूं, मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा कि चुप, भूल के इस तरह का शब्द मत उपयोग करना, मुझसे ऊंचा, मुझसे लंबा है, ऊंचा नहीं। उसने तत्काल सुधार करवा दिया, लंबाई और ऊंचाई में फर्क होता, मुझसे लंबा तू जरूर है लेकिन ऊंचा क्या है, ऊंचा कैसे होगा, मेरा अंग रक्षक और मुझसे ऊंचा। नेपोलियन ने सिद्ध करने की कोशिश की। कहते हैं कि लेलिन जब बैठता था तो उसके पैर बहुत छोटे थे, ऊपर का शरीर तो ठीक था, पैर बहुत छोटे थे, कुर्सी पे लटक जाते थे पैर उसके, जमीन से नहीं लगते थे, इससे वो बड़ा पीड़ित था। वो छिपा के बैठता था अपने पैरों को, और मनोविज्ञानिक कहते हैं कि वो पैरों की कमजोरी ही उसकी दौड़ थी कि जमा के बता देगा पैर।
ऐसे जमा के बता देगा कि कोई भी उखाड़ ना सके। तुम इसे अगर खोजोगे तो पालोगे, दूसरों में नहीं अपने में भी पालोगे। तुम अपने में भी पालोगे कि कौन सी चीज तुम्हें बेचैन किए जा रही है, कौन सी बात तुम्हें घाव की तरह खटक रही है। उसी के कारण तुम दौड़ रहे हो, जिसके सब घाव भर गए उसकी कोई पदाकांक्षा नहीं रह जाती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। उसके जीवन से राजनीति विसर्जित हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी। राजनीति का अर्थ ही होता है हीन ग्रंथियों से पीड़ित लोगों की दौड़। राजनीति का अर्थ होता है विक्षिप्तता, एक तरह का पागलपन। धन की दौड़ भी एक तरह का पागलपन है। महत्वाकांक्षा ही पागलपन का सार है, सूत्र पागलपन का महत्वाकांक्षा है। कुछ हो के दिखा दूं, क्यों? क्या तुम नहीं हो? कुछ बन के बता दूं, क्यों? क्या तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो? विंसेंट वान गाग पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार बहुत कुरूप था, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी कुरूपता के कारण ही वो सौंदर्य का आराधक हो गए। उसने बड़े सुंदर चित्र बनाए, सुंदरतम चित्र बनाए। वो चित्रों से सिद्ध करना चाहता था कि मेरी छोड़ो, मेरे हाथ के सौंदर्य को देखो। चेहरा उसका कुरूप था, कुरूप आदमी सौंदर्य में उत्सुक हो गया। तुमने कभी किसी सुंदर स्त्री को चित्र बनाते देखा? सुंदर स्त्री को कविता लिखते देखा? मैं एक घर में मेहमान था एक बार, एक गांव में। वहां एक कवित्री सम्मेलन हो रहा था, अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन। तो मेरे मित्र ने मुझे भी कहा आप भी चलिए, सारे देश की महिला कवित्रियां इकट्ठी हो रही। मैंने कहा तुम जाओ, सिर्फ एक बात मुझे बताना, उनमें कोई एक आध सुंदर भी है? उन्होंने कहा क्यों आप ऐसा प्रश्न क्यों उठाते? मैंने कहा तुम जाके फिर मुझे बताना। वो जब रात 12 बजे लौटे, मैं तो सो गया था, मुझे आके उठाया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर रख नहीं सकूंगा इस बात को, मैंने आपने हैरान कर दिया, उनमें एक भी सुंदर नहीं थी। मगर आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? मैंने कहा प्रश्न इसलिए पूछा था कि सुंदर स्त्री कुछ और करती नहीं, सौंदर्य काफी। असुंदर स्त्रियां कुछ करती देखी जाती, समाज सेविकाएं बन जाएंगी, कवित्रियां बन जाएंगी, चित्रकार बनेंगी, क्योंकि सौंदर्य की कमी है, कुछ खटक रहा है। जो खटक रहा है उसे किसी तरह भरना होगा, तो कुछ करके उसे भर लिया जा सकता है। कुछ और पैदा करके वो जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में आदमी ने किया है वो आदमी का है, स्त्रियों ने कुछ खास नहीं किया। और जिस कारण को वो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो कारण सुनने और समझने जैसा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्रियां बच्चे पैदा करने कर लेती, ये इतना बड़ा कृतित्व है मां बनना। क्या वो और क्या बनाना है? एक मूर्ति बनाने से क्या होगा, एक जिंदा मूर्ति पैदा करती है। एक चित्र बनाने से क्या होगा, एक जिंदा तस्वीर पैदा कर दी, एक जिंदा चेहरा पैदा कर दिया, जीवित आंखें, चलता फिरता बच्चा पैदा कर दिया। इससे बड़े सौंदर्य का और क्या जन्म होगा? स्त्रियां तृप्त है एक बच्चे को जन्म देके, पुरुष बड़ा बेचैन है। स्त्रियों के सामने वो अपने को जरा असहाय पाता है, वो किसी चीज को जन्म नहीं दे सकता है। तो उसकी परिपूर्ति करता वो एक मूर्ति बनाएगा, एक चित्र बनाएगा, कविता लिखेगा, काव्य रचेगा, कुछ करके वो सृजनात्मक होता है। सिर्फ इसीलिए ताकि स्त्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, वो कह सके मैंने भी कुछ बनाया है। और धीरे धीरे उसने इतनी चीजें बना डाली कि स्त्री बेचैनी अनुभव करती, उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पुरुष ने इतना बना डाला, तुम चकित होगे, जिन कामों में स्त्रियों को ही खोज करनी चाहिए उनमें भी पुरुष ही खोज करता है। पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते हैं, स्त्रियां नहीं लिखती। और दुनिया की बड़ी होटलों के जो बड़े से बड़े भोजन बनाने वाले लोग हैं, रसोइये हैं, वो पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। क्यों? स्त्री तृप्त है, पुरुष अतृप्त है। कुछ बात खटक रही, कुछ कम है, कुछ खाली जगह है, तो कुछ करके इसे पूरा कर लेना। कुछ भी करने से पूरा नहीं होता, क्योंकि कमी कैसे पूरी हो सकती है? कमी तो स्वीकार करने से विसर्जित होती। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक जगत में प्रवेश नहीं करता, उसकी हीनता नहीं मिटती। वो लाख उपाय कर ले, धन इकट्ठा कर ले, पद इकट्ठा कर ले, प्रतिष्ठा बना ले, कमी नहीं मिटती। तो बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ है उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है।
वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सुश्री शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीज़ें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएं और मैं चाहूँगा कि आप बात करें।
2: वही टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहाँ दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
1: और बाहर ज़्यादा
2: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहाँ हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज friend circle there, we will have people who are very close to us, but now it becomes all the more important कि हमारे जो close परिवार के जो संबंध है वो और भी एक strong foundation पर base होते जाए। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, he also has to do a little work because maybe उन्हें लग रहा है कि सारा काम
1: कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे।
2: क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा है कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी doesn't have too much of a doubt. Maybe I am feeling like that. Because कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ questions पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो sometimes maybe just out of you know कि जैसे इकट्ठे रहते हैं तो it's good to know about each other. It's good to know कि हम एक क्या कर रहे हैं सारा दिन में, लेकिन जब और किसी की नेचर ज्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे क्यों
1: डाउट कर रही है।
2: यू नो ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है, तो मे बी If she has not said it directly, तो maybe it did not start from there. Maybe because क्या होता है जिस वायुमंडल में हम आज हैं तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती हैं। These have become the topic of conversation everywhere. के हस्बैंड का कुछ और
1: वाइफ। That's what he has written. Yeah. It irritates me so much. मुझे continuous irritation रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उसे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता। I don't want to talk to her.
2: अब हम जब बात करना बंद कर देंगे
1: तो पनिशमेंट वाला जो फैक्टर
2: है कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं, नाउ अगर कर रही है हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुंच रही।
1: बार मिलानी पड़ेगी आपको विनय।
2: तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी
1: ज्यादा
2: बढ़ता जाएगा। तो now if I look at her with compassion, right now I'm looking at her with anger. Ki ye kyun doubt

0: मेबी यू नो अगेन दिस थिंग कम्स यहाँ पे शिवानी की, शायद वो अगर डाउट कर रही है तो वो पेन में है,
1: पेन में तो है ही, बहुत दर्द में है। आप इमेजिन करो ना, दो क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो वो कितने दर्द में है। अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूँ तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर। टू बी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं। तो आई हैव टू फील कंपैशन कि वो डाउट कर रही है, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा। तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, कि मे बी बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया है। मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी। सी दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर रिलेशनशिप मैटर करता है देन इट इज नॉट अबाउट ईगो कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं है।
0: दे डेफिनेटली बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ। सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद कर रहे हैं।
1: तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूँ तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे। यू सी दैट्स ईगो, that's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will say it's okay, accept, it's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे उतनी जल्दी वो trust बहुत जल्दी build हो जाएगा। हमें लगता है इसने doubt कर दिया तो इसका मतलब कोई trust
0: हो गया, वो लड़ाई होती है। बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, if you really
1: love, बहुत important होना चाहिए मेरे लिए।
0: अगर वो इतना important है आपके लिए और you really love your wife, then accept her. This is what we said. Loving somebody means accepting. और अगर आप उन्हें accept कर लेंगे तो उनकी जो problem है वो भी accept कर रहे हैं।
1: जैसे कई बार क्या होता है कि husband और wife में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से। मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं।
0: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू नो, सी वी डोंट टेक इट एज एन एलिमेंट, वी से यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
1: रिस्पॉन्सिबल एंड नाउ यू हैव हर्ट मी, सो नाउ आई हैव द राइट टू हर्ट यू। तो आपने मुझे डाउट किया,
0: इमोशनल एलिमेंट है,
1: यही तो हो रहा है ना। तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में, तो आपने मुझे डाउट किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूंगा, तो क्या हुआ? आप भी दर्द में, मैं भी दर्द।
0: वंडरफुल, दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा।
1: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे। मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है, मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं
0: कम है, बहुत कम।
1: इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना, इट्स नॉट लेकिन इट्स नॉट राइट.
0: बात वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं, और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर परमात्मा,
1: दैट्स व्हाट इट्स ऑल बिकम अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड करना
0: आसान हो जाएगा. वेरी वेरी ब्यूटीफुल शिवानी. और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर. ये एक बच्चे का मेल है, और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते. एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड. शी सेज माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल. Till some time, I had a lot of confidence on her. I was very proud of her. वो एक working woman है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा relationship था. लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, I started hating her. Why? Because I find her much more beautiful than me. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैंने ये देखा, अपनी friend से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ. This is a child talking.
1: It just shows कि हमारी इनसिक्योरिटी किस लेवल तक पहुंच गई है. पहले ये होता कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, या मेरी सिस्टर या ब्रदर मेरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती. लेकिन पेरेंट्स के साथ इस तरह की चीज़ फील करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि ब्यूटीफुल एक्चुअली मतलब क्या है, है ना. अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है? इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स. इट इज बिकॉज जो ज्यादा सुंदर है फिजिकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. और उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है. क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी. एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है, और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा, मे बी कि जहां भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. और जहां ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता, तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. So and in your mother, I mean, you can never compete with a mother.
0: No, but then I can understand. Yeah. She's Yana from Rajasthan, and yeah. she is so hurt. मतलब आप anger और hurt से जुड़ा हुआ कि she was my best friend. My mother was my best friend, and now I don't even want to talk to her.
1: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई problem ही नहीं है. ये problem तो खुद अपनी create की हुई है, and one thought and वो finish हो जाएगी.
0: ज़्यादा teenagers के साथ ये problem आ रही है, कहीं ना कहीं,
1: क्योंकि self esteem बहुत low है इस time. और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज़्यादा आधारित है, एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग
0: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे देखते हैं.
1: सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए, और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, है ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
0: दूर होते जाएंगे
1: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा. तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू.
0: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल. यू नो
1: मदर इज ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इंटरनली आल्सो. इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी शुड लाइक द आइडिया दैट हर मदर इज सो ब्यूटीफुल.
0: या सो इट्स लाइक
1: एक थॉट है कि यू नो इनसिक्योरिटी किस बात की. कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों इकट्ठे होंगे
0: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं इतना हर्ट में रह के, इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली. यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना.
1: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीफ को यहाँ ही नहीं ठीक कर दिया तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है. तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी. आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है.
0: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है. इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए, आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं, और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे.
1: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसी थॉट्स आई क्यों रही हैं. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दे और अपने आप.
0: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली. शिवानी, एक ये एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है और ये है विदेश शर्मा जी हैं. ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों, एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं लेकिन अब मैं 65 के करीब हूँ, ज़्यादा हूँ. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा. अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूँ, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको. और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है, मेरे पास ना मैं कह पाता हूँ अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूँ क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है. और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं. एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन. सो आई वांट टू शेयर इट विद यू.
1: ट्रू. नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है. और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसके. यू नो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया.
0: आई थिंक ही सेड बिकॉज़ ऑफ द यू नो प्रोग्राम आई हैव बीन सीइंग आई एम रियलाइजिंग दैट
1: बिकॉज़ यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टेप होता है क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता. तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था. अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे. हाँ मैं चेंज हो सकता हूँ लेकिन औरों को और लोग भी क्योंकि है तो फैमिली तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये तो बहुत नज़दीक के संबंध है. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे. इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना बहुत समय से.
0: अच्छा उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए. यू नो हमने कहा था एक बार पहले
1: क्यों क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से चल रहा है क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ यू नो जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है, हाँ. अब क्या होगा वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ

0: कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड एंड सो आई हैव चेंज्ड, यू नो, नॉट इवन वांटिंग, आई हैव चेंज्ड. एंड कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो रिलेशनशिप बिल्ड होना है. वो एक बैरियर है जो मैंने ही रखा था बीच में. अब मुझे जाकर सिर्फ उस बैरियर को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही रेडी थे, तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूँ तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा. एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता. ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं. दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज. ठीक है, बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था, आज वो वॉल हट गया. क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट. इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन. एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन,
1: स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं से
0: मैसेज कन्वे कर देंगे ना. अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे. और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है, सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है.
1: इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट ऑफ एक्चुअली. और इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाए हुए होती है वो चीज कि ये पॉसिबल नहीं हो पाए,
0: उनको वो वाइब मिल जाएगा. एंड इमेजिन दे आर तो एनीवेज वेटिंग, तो वेट कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है.
1: बिल्कुल. एंड मे बी यू नो कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं, कि क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया है
0: वही इनसिक्योरिटी है. लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, देयर इज नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा. हो सकता है थोड़ा अप्रिहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा अप्रिहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप
1: वक्त नहीं है खत्म करें कि ये जो पूरा राजयोग का ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते. क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू?
0: अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है. लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा. और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं, जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है. लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या इसमें वेयर डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग. जैसे यू वेंट रॉन्ग, फोकस इज चेंज. तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स. जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुक इनवर्ड्स, तो लुक इनवर्ड्स इज नॉट के क्या देखूं, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें, और कहां मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा.
1: बहुत सुंदर आपने बात की सिस्टर शिवानी, और यही वक्त है कि हम विराम लें. लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: अब शांति.